0: दे दे तो चुनाव का पैसा तो बचेगा देश का।
1: उस पर कोई FIR नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई सजा नहीं, लेकिन नामांकन रद्द कर दिया क्योंकि वो कांग्रेस की प्रत्याशी थी।
2: लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर था, इसलिए उसने जानबूझकर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करा दिया।
3: जिस दिन दिग्विजय सिंह जी को टिकट नहीं मिला तो उनके नेताओं ने खुलेआम बोला था कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होगी, और कांग्रेस को मालूम था क्रॉस वोटिंग होगी, और इसीलिए मेरा स्पष्ट आरोप है, मेरा स्पष्ट मानना है कि ये फॉर्म कांग्रेस ने स्वयं ने रिजेक्ट करवाया है।
2: मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद अब MP में तीनों सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट निर्विरोध हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: मुंबई में NCP का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया। शरद पवार ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की तुलना नेहरू के कार्यकाल से नहीं है, नहीं करनी चाहिए, सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश बेहद ही मुश्किल चुनौतियों से गुजर रहा था। शरद पवार ने इंदिरा गांधी को भी याद किया। 3 साल पहले NCP दो हिस्सों में बंट गई थी,

0: कई दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत का केंद्र रहे शरद पवार की मौजूदगी में एनसीपी का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में एनसीपी के स्थापना दिवस पर पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने नेहरू गांधी परिवार की विरासत का खुलकर बचाव करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। शरद पवार ने पहले प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल की तुलना पीएम मोदी के कार्यकाल से करने को गलत बताया।
1: नेहरू जिसके प्रधानमंत्री उससे जिसके प्रधानमंत्री आनंद है
0: स्थापना दिवस के मौके पर शरद पवार की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा।
2: आज एनसीपी पार्टी का 27वां फाउंडेशन डे समारोह पूरा हुआ। मुंबई में सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता समेत खुद पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार उन्होंने सभी को संबोधित भी किया। हमारे साथ सांसद नीलेश लंके जी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कई सारे मुद्दों पर आज संबोधन हुआ, लेकिन सबसे अहम बात जो आज शरद पवार इन्होंने कही वो ये थी कि पीएम मोदी उनका सबसे ज्यादा कार्यकाल वो मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसकी तुलना सीधे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके कार्यकाल से की जा रही है, तो उस पर आपत्ति जताइए, क्या कहना है आपका? आप भी दिल्ली में संसद में काम करते हैं।
3: पवार साहब ने अभी बोला है नेहरू का और किसी का भी तुलना नहीं हो सकती। जो देश के लिए नेहरू गांधी परिवार ने किया है, गांधी परिवार ने तो देश के लिए बलिदान दिया है और नेहरू परिवार ने भी देश के लिए बहुत दिया है। आज की स्थिति और वो टाइम की स्थिति में बहुत बदलाव था, इसलिए नेहरू का काम सबसे ऊंचा ही है।
0: शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, पार्टी का कर्तव्य जनता की सेवा करना है, खासकर ऐसे समय में जब देश बढ़ती महंगाई और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जूझ रहा है।
2: आज जो संबोधन किया उससे क्या कुछ चीजें आप लेकर जा रहे हैं, क्योंकि संघर्ष का काल है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आंदोलन करने पड़ेंगे, सड़क पर उतरना पड़ेगा।
3: किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए आंदोलन करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे नेता ने ये सिखाया हमें सबको, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए आपने काम ही करना पड़ेगा। आज जो गवर्नमेंट में, राज्य में और सेंट्रल में काम करता है वो किसानों के खिलाफ में, खिलाफ का गवर्नमेंट है, बेरोजगारों के खिलाफ का गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट में कुछ एजेंडा नहीं, उसमें एक ही एजेंडा है, डेवलपमेंट का कोई एजेंडा नहीं, किसानों के लिए कोई एजेंडा नहीं। उनके पास यही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम राजनीति करने का और दंगल करने का काम करते हैं।
0: स्थापना दिवस के मौके पर इंदिरा गांधी के देशभक्ति को बताने के लिए शरद पवार ने मॉस्को की उनकी यात्रा का एक किस्सा भी सुनाया। वहीं एनसीपी शरद गुट के सांसद नीलेश लंके ने उनकी पार्टी में कथित बगावत की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया।
2: बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के पार्टी के भी सांसद अब एकनाथ शिंदे के गुट के संपर्क में हैं। क्या आपकी पार्टी पर भी ऐसा कुछ प्रयास किया जा रहा है किसी से?
3: हमारी पार्टी और हमारे सांसद लोग, हम दिल्ली में सुप्रिया ताई के नेतृत्व में काम करते हैं। हमारे पार्टी में कोई भी ऐसा नहीं, बातचीत भी नहीं आने होने भी वाली नहीं। हम सब पवार साहब के साथ है और पवार साहब के साथ ही रहने वाले।
0: स्थापना दिवस के मौके पर शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले के साथ शरद पवार के पौत्र रोहित पवार भी मौजूद रहे।
4: आदरणीय पवार साहब ने हम सबसे मार्गदर्शन किया, हमको बताया कि लोगों की लड़ाई आप सबको रास्ते पे जाके लड़नी पड़ेगी। किसानों का विषय हो, विद्यार्थी का विषय हो, महिला सुरक्षा का विषय हो, या कोई भी जो बेरोजगारी का मुद्दा है, उसके लिए आप सबको रास्ते पे उतरना पड़ेगा। आज तक जो भी लड़ाई हमारे नेताओं ने वहां पे की है, जैसे प्याज का आंदोलन हो, विद्यार्थी का आंदोलन हो, उसी के साथ शिक्षकों का आंदोलन हो, ये और ज्यादा ताकती से लड़ने की जरूरत है। इसलिए 12 तारीख को किसानों के हित पे हम सब पंडरपुर, जो अतिशय पवित्र ठिकान है, वहां पे हम किसानों के लिए कर्ज माफी के लिए वहां पे एक बहुत बड़ा अन्न त्याग आंदोलन वहां पे कर रहे हैं। और उसमें हमारा पक्ष हो, मित्र पक्ष हो, क्योंकि वो अपॉलिटिकल विषय है। बहुत सारे लोग वहां पे आएंगे ऐसे आप सबको लगता है, और ये आंदोलन के माध्यम से किसानों को न्याय देने की हम सब कोशिश करेंगे।
5: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर 10 जून 1999 को एनसीपी का गठन किया था, लेकिन जुलाई 2023 में एनसीपी उस समय विभाजित हो गई थी जब उनके भतीजे अजीत पवार शिवसेना बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार में शामिल हो गए थे, जिसके बाद ज्यादातर विधायक, सांसद और बड़े नेता अजीत पवार के साथ चले गए थे। आखिर में चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी माना और शरद पवार की अगुवाई वाले गुट को एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम दिया गया। अपने संबोधन में शरद पवार ने महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन की उन टिप्पणियों की भी आलोचना की जिसमें उन्होंने सिख विरोधी दंगों के लिए कांग्रेस नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया था।
2: आज इस फाउंडेशन दिन के मौके पर हमने देखा कि सभी सांसद, सभी विधायक और सभी पदाधिकारी इकट्ठा यहाँ पर आए थे और उन्होंने शरद पवार ने किए हुए संबोधन को सुना और आगे जाकर इसी तरह संघर्ष करने का प्रण भी किया। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक बालेकर, मुंबई आज तक।
6: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का कंसा पासी किला विवाद अब बड़ा राजनीतिक रूप ले चुका है, बड़ा मुद्दा बन चुका है। लखनऊ के मलिहाबाद स्थित कंसा पासी किला विवाद में अब पासी समाज का संगठन लाखन आर्मी सड़कों पर उतर आया है। लाखन आर्मी ने सूरज पासी के अगुवाई में हरदोई से एक यात्रा की शुरुआत की है।
7: पासी स्वाभिमान यात्रा लखनऊ के लिए निकली है। हरदोई में इस यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। देखिए, फूल माला से लदे हैं लाखन आर्मी के मुखिया सूरज पासी। दरअसल लखनऊ के अंदर एक नया विवाद पैदा हुआ है जिसमें कंसा पासी किले पर कब्जे को लेकर दलितों और मुसलमानों के बीच सियासी मुद्दा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में अब मलिहाबाद के कंसा पासी किला विवाद को लेकर खुद को पासी समाज का प्रतिनिधि बताने वाले लाखन आर्मी ने 31 जिलों में यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। हरदोई जिले से शुरू हो रही ये पासी स्वाभिमान यात्रा किले में शिव मंदिर को वापस पाने की मांग के साथ की जा रही है।
8: तो हमारे किला था, हमारे किले के धार्मिक स्थान थे, वो भी तो हमको संरक्षित चाहिए, वहाँ भी मजारे बना दी जा रही है, तो चिंता का विषय है। इसलिए आज हम उनकी किले को बचाने के लिए, उनके अस्तित्व को बचाने के लिए, उनके इतिहास को बचाने के लिए 31 जिलों में भ्रमण कर रहे हैं।
7: सिर्फ लाखन आर्मी ही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता भी यही मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान के दल के नेता आज कंसा पासी किले तक जाना चाहते थे मगर पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया।
9: लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता आज कंसा पासी को किले को लेकर निकले हुए हैं और साफ तौर से वहां जाना चाहते थे पासी पर, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो पुलिस ने पूरी तरीके से वहां पर रोका हुआ है।
7: एलजेपी रामविलास भी कंसा पासी के सम्मान की बात कर रही है।
10: पासी राजा, राजा कंस जी का किला, यह मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, यह पासी पासवान समाज के गौरव और विरासत की का प्रश्न है, उनकी लड़ाई है।
7: अब ओवैसी का दल आरोप लगा रहा है कि 2027 के चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान वाली सियासत को धार दी जा रही है।
11: अयोध्या का मामला जो है ठंडा नहीं हुआ था, एक अयोध्या के लिए यात्रा निकली थी, राजा कंसा पासी के किले को लेकर के यात्रा निकाली जाएगी, तो ये जो लोग हैं ये देश के अंदर 2027 के चुनाव को देखते हुए एक नैरेटिव सेट करने के लिए नए नए सबूत तैयार कर रहे हैं।
7: उत्तर प्रदेश में इस बार दलित वोट की राजनीति में कई नए दावेदार नजर आने लगे हैं और कंसा पासी का किला उसके केंद्र में है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
6: कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं और बिना सरकारी आदेश के शहर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन गुजरात के सूरत में एक ऐसा अजीबोगरीब वाक्य सामने आया है जिसने पूरे प्रशासन की नींद उड़ा कर रख दी है, क्योंकि 100 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, घरों को जमींदोज कर दिया गया और कोई नहीं जानता कि एक्शन किसके कहने पर लिया गया।
12: सूरत में बुलडोजर गरजा और देखते ही देखते 100 मकान ध्वस्त कर दिए गए। इन मकानों के मालिकों को इतना मौका भी नहीं मिला कि अपना सामान बाहर निकाल सके। तस्वीरें 3 जून की है जब सूरत के कतारगाम इलाके के नासिर नगर में बुलडोजर पहुंचा और देखते ही देखते 100 परिवारों की छतें छीन ली। लेकिन तमाशा तब शुरू हुआ जब सूरत नगर निगम ने यह कह दिया कि हमने घरों को तोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया। ऐसी कोई भी कार्रवाई में नगर निगम का कोई रोल नहीं है।
13: डिमोलिशन तो हमने नहीं किया है, सूरत महानगर पालिका के लोगों ने फक्त इतना बताया कि नगर पालिका के जो लोग थे वो जगह हमारा कलम 205 के अंडर में जो रास्ता है वो माप लेने के लिए गए थे हमारे कर्मचारी।
12: निगम जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहा है, मगर जिनके घर टूटे हैं वो बता रहे हैं कि जिस समय बुलडोजर एक्शन हुआ निगम के अधिकारी और कर्मचारी एसओजी के साथ यहीं थे।
14: पुलिस एसओजी के जो मेन थे वो हमारे को टाइम देने से मना कर रहे थे, भाई तुम्हें कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, तुम अब भी निकलो। इन लोग पूरी टीम सामान भरने वाली भी लेकर आए थे साथ में।
15: मोनिक गड़िया को हमने बोला कि सर आप हमारे को कुछ टाइम दो, तो बोले कोई टाइम नहीं, इतने बरसों से रह दिया, बहुत टाइम दे दिया आपको, अब चलो निकलो।
16: 2 घंटे का भी समय नहीं दिया, बस फटाफट उन लोग ने बुलडोजर से चालू कर दिया, तोड़ना ही चालू कर दिया।
12: सूत्रों के मुताबिक ये पूरी कवायद नासिर नगर के ठीक पीछे बन रहे एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रास्ता देने के लिए की गई थी। आरोप है कि बिल्डर के फायदे के लिए रातों रात सड़क चौड़ी करने का प्लान बनाया गया और सालों से रह रहे लोगों के आशियाने उजाड़ दिए गए। हैरानी की बात यह है कि बिना किसी आधिकारिक नोटिस या कानूनी प्रक्रिया के इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली पुलिस मूक दर्शक बनी रही।
17: मामले के तूल पकड़ता देख अब नगर निगम ने 6 सदस्यों की जांच समिति बनाई है, जो जिस अधिकारियों ने ये डिमोलिशन किया उनकी भूमिका को लेकर जांच करेगी। किसके कहने पर ये डिमोलिशन किया गया, किन अधिकारियों ने किया और क्यों किया, इसके सारे वीडियो तो सामने हैं, पर किस वजह से किया गया, किसके कहने पर किया गया, ये कोई बोलने को तैयार नहीं है।
12: जांच कमेटी तो बन गई है, मगर अब सवाल उठता है कि अगर नगर निगम ने आदेश नहीं दिया तो पुलिस की मौजूदगी में किसकी शह पर 100 घर गिरा दिए गए। संजय सिंह राठौर के साथ ब्रजेश दोषी, सूरत आज तक।
6: ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। एक हेलीकॉप्टर पर हमले के चलते अमेरिका ने युद्ध विराम को धुआं धुआं कर दिया। पहले तो अमेरिका ने अपने एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने का दावा किया और फिर उसके जवाब में ईरान पर भीषण हमले शुरू कर दिए गए। आधी रात के बाद ईरान के 5 बड़े शहरों में धमाके शुरू हुए, तो बदले में ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर तबाही मचाना शुरू कर दिया है।
7: ईरान पर अमेरिका की फिर से चढ़ाई, अब होगी सबसे भयंकर लड़ाई। एक हेलीकॉप्टर पर हमले का बदला, अमेरिकी हमलों से ईरान तहला। ईरान पर अमेरिका की फिर से चढ़ाई, अब आगे होगी एटमी लड़ाई। अमेरिका ने ईरान के 20 ठिकाने उड़ाए, ईरान ने 21 अमेरिकी बेस तहलाए। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान की चेतावनी, अब भीषण रण होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पीस डील करके जिस तरह से युद्ध विराम को धुआं धुआं किया है, ईरान ने भी अब जैसे नई जंग का प्रण ले लिया है। जिस तरह से अमेरिका ने ईरान में फिर से बारूदी तबाही मचाई है, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ईरान पर फिर से चढ़ाई के लिए एक बहाना ढूंढ रहा था। ईरान ने अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया था, बदले में अमेरिका ने ईरान के 5 शहरों में तबाही मचाकर रख दी। 8 जून की रात सब

0: का दक्षिणी तट। अमेरिका ने ईरानी सीमा में कदम रखे बिना सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही स्टैंड ऑफ हथियारों से अचूक वार किया। इस हमले में ईरान के रडार सिस्टम, एयर डिफेंस मिसाइल बैटरियों और शाहिद ड्रोन के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों को नेस्त नाबूद कर दिया गया। अमेरिका ने इस ऑपरेशन में सबसे खतरनाक AGM-158 JASSM यानी जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल और SLAMER यानी स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल एक्सपैंडेड रिस्पांस जैसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया ताकि अमेरिकी जेट्स को ईरान के एयर डिफेंस के पास ही न जाना पड़े। इसके साथ ही आसमान से सटीक तबाही मचाने के लिए JDAM यानी GPS गाइडेड प्रिसीजन बम बरसाए गए, जिन्होंने बादलों को चीरकर रडार और कमांड सेंटर्स को मलबे में तब्दील कर दिया और इस पूरी तबाही का जायजा लेने के लिए आसमान में मंडरा रहे थे अमेरिका के घातक MQ-9 रीपर ड्रोन। ईरान इन हमलों से हिल गया, लेकिन इसके बाद ईरान का पलटवार शुरू होता है और पूरा मिडल ईस्ट थर्रा उठता है। अमेरिका ने ईरान में 20 ठिकानों को निशाना बनाया तो पलटवार में ईरान ने मिडल ईस्ट में 21 अमेरिकी बेस को टारगेट किया। सबसे बड़ा दावा जॉर्डन में F-35 हैंगर को तबाह करने का है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि उसने पश्चिम एशिया में अमेरिकी और सहयोगी देशों के कुल 21 हवाई और नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान ने दावा किया कि जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर मौजूद F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर नष्ट कर दिए गए हैं। ईरान ने यह भी दावा किया है कि जॉर्डन में मौजूद एक अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। इसके अलावा IRGC का कहना है कि उसने ईरान के जम शहर के ऊपर उड़ रहे एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराया है। ईरानी सेना ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका की ओर से कोई नई सैन्य कार्रवाई की जाती है तो उसका जवाब और अधिक ताकत से दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने अमेरिका के ताजा हमलों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि लड़ाई में हार के बावजूद अमेरिका ने हमारी दृढ़ता को परखने की कोशिश की। हमारी ताकत पर सेना किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगी। अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारे क्षेत्र से चले जाएं। ईरान ने दावा किया कि उसने बहरीन में अमेरिकी ठिकाने पर सीधा हमला किया है। IRIB न्यूज ने वीडियो जारी कर दावा किया कि ईरान की मिसाइल सीधे अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर जाकर गिरी है। ईरान ने बहरीन और जॉर्डन के साथ साथ कुवैत में भी हमले किए। यहाँ अमेरिकी सेना के अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान की मिसाइलें और ड्रोन काल बनकर टूटे, जिससे कुवैत एयरपोर्ट तक थर्रा उठता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि उनकी सेना ने ईरान के हौसले पस्त कर दिए हैं, उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन ईरान ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखा दी। आपको बता दें कि ईरान पहले ही कह चुका है कि अभी तक उसने अपना ब्रह्मास्त्र नहीं निकाला है। ईरान ने बाकायदा वीडियो जारी कर मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया। ईरान ने इन हमलों के लिए बड़े पैमाने पर लंबी दूरी की मिसाइलें लॉन्च की। वीडियो में अमेरिकी ठिकानों की ओर लंबी दूरी की कद्र, इमाद और खैबर शेकन मिसाइलों को लॉन्च करते हुए दिखाया गया। ईरान ने चुन चुन कर अमेरिकी एयरबेस पर प्रहार किया। जैसे ही ईरान ने अमेरिकी हमलों पर पलटवार किया तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा कि फिलहाल अमेरिकी हमले खत्म हो चुके हैं, लेकिन स्थिति अब भी सक्रिय बनी हुई है। जबकि IRGC ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर और भी ज्यादा बड़ा और तगड़ा हमला किया जाएगा। IRGC ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने ये हमले दक्षिणी ईरान में अमेरिकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना को झूठा बहाना बनाकर किए हैं और हमारे ये हमले अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में हैं। जबकि ट्रंप ने ईरान के हारने का दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरानी सेना पूरी तरह से बिखर चुकी है, नौसेना और वायुसेना लगभग खत्म हो चुके हैं। ईरान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। वो खुद को मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा दबंग समझता था लेकिन अब खत्म हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान ने उस समझौते पर बातचीत करने में बहुत ज्यादा देर कर दी जो उसके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता था। अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी ये क्लियर है कि जंग अब अंजाम तक पहुंचकर ही रहेगी। उधर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर रूस ने गहरी चिंता जताई है। रूस ने दोनों देशों से अपील की है कि वो संयम बरतें और तुरंत सैन्य हमले बंद करें। आज तक ब्यूरो।
1: और अब आपको ट्रंप की नई धमकी सुनवा देते हैं जो उन्होंने ईरान को लेकर कही है, सुनिए जरा उनको।
2: See what happens. But we hit them hard yesterday, and We're going to hit them again hard.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

ईरान अमेरिका में लगातार दूसरे दिन छिड़ी जंग, समंदर में आमने सामने दोनों सेनाएं, केशन द्वीप से तेहरान तक धमाके। ट्रंप ने कहा एपिक फ्यूरी से ज्यादा भीषण हमले। ईरान ने बंद किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बारूदी हमलों के बीच दोनों देशों में जुबानी जंग। ट्रंप ने कहा बमबारी रोकने के लिए गिड़गिड़ाया तेहरान। अधिकारियों के हवाले से ईरानी मीडिया का दावा, युद्ध से बचने के रास्ते तलाश रहे हैं ट्रंप। ओमान तट के पास कमर्शियल ऑयल टैंकर पर अमेरिकी सेना का हमला। जहाज पर सवार 24 भारतीयों में से 21 का रेस्क्यू, 3 लापता। भारत ने जताई नाराजगी, दिल्ली में अमेरिकी राजनयिक तलब किए गए। बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका। विद्रोही सांसदों की लिस्ट में 19 नाम। शत्रुघ्न सिन्हा और सियानी घोष जैसे वफादारों ने छोड़ा साथ। ऋतुव्रत ने किया 64 विधायकों के साथ होने का दावा।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की अहम बैठक। एक्शन प्लान के साथ पहुंचेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। 2047 तक विकसित भारत की योजना पर मंथन।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। को सुबह के 6 बज चुके हैं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम एशिया में संकट एक बार फिर बड़ा हो गया है। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर ये कहती है कि समंदर में अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए हैं। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी और अमेरिकी सेनाओं के बीच समंदर में जमकर झड़प हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ की चेतावनी के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया है। तो भारतीय समय अनुसार बीती शाम को ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, उन्होंने हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराया है, तो अब उससे भी बड़ा हमला होगा। अमेरिकी हमलों की ईरानी समाचार एजेंसियों ने भी पुष्टि की है। ईरान के केशम द्वीप बंदर अब्बास में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। अमेरिकी स्ट्राइक के तुरंत बाद ईरान और सिरिया के मिनाब क्षेत्रों से भी बड़े विस्फोट की खबर है। अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास में एयरबेस और एयरपोर्ट के पास एयर स्ट्राइक की है। ईरान के कांगर बंदरगाह में कई धमाकों की आवाजें भी सुनी गई हैं। तो आखिरकार वो हमला किया गया है, और उस बीच ईरान ने भी जलडमरू मध्य को बंद किया है। तो बंदर अब्बास उसके सबसे बड़े पोर्ट पर भी हमला हुआ है। केशन दीस से लेकर तेहरान तक कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई है। और कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि चूंकि ईरान ने हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराया है, अब इसके बदले में उन पर कार्रवाई होगी और बहुत ही कड़ी कार्रवाई होगी। ईरान की मीडिया के मुताबिक देश के कई इलाकों में धमाके सुने गए हैं, और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मल्टीपल टारगेट्स इन ईरान, ये कहा है सेंट्रल कमांड ने। और इस बीच अब से थोड़ी देर पहले जो हमले शुरू हुए हैं, अमेरिका द्वारा एयर स्ट्राइक की गई है, कई इलाकों को निशाना बनाया गया है। हालांकि सेंट्रल कमांड ने भी कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद किए जाने का ईरान का दावा भी गलत है। लेकिन इस बीच ईरानी समाचार एजेंसियों के मुताबिक कई जगहों पर धमाके सुने गए हैं, और सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने
1: सेंटकॉम सेंट्रल कमांड विल बी बिजी टुनाइट बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप सेड वी विल बी हिटिंग ईरान हार्ड एंड वी विल बी बिकॉज ईरान हैज अ चांस टू मेक अ गुड डील अ ग्रेट डील टू कॉडिफाई व्हाट दे सेड दे हैव बीन विलिंग टू डू एंड दे हैवंट बीन विलिंग टू डू इट एंड दैट्स नॉट बिकॉज we want to restart anything. We don't have to restart. It's because we are, the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
0: तो पीट हेगसेथ को आप सुन रहे थे। थोड़ी देर पहले स्ट्राइक शुरू हुई है, और अगर हम समय देखें तो लगभग 4 से 5 बजे के बीच का वो समय था भारतीय समय अनुसार, जब ईरान के अलग अलग इलाकों में हमले हुए। हमारे साथ सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था हमारे अपाचे को गिराया गया, अब इसका बदला लिया जाएगा और भीषण हमला होगा, और अभी जो ईरानियन एजेंसियां जो रिपोर्ट कर रही हैं, दुनिया भर की जो मीडिया एजेंसियां रिपोर्ट कर रही हैं, बता रही हैं कोई इलाका बचा नहीं है। केशन द्वीप से लेकर के तेहरान तक हर जगहों पर हवाई हमले हुए हैं।
2: बिल्कुल, लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक अटैक लगातार आशुतोष स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास, यानी बंदर अब्बास के आसपास, मिनाब के आसपास, खर्ब के आसपास, और आप कह सकते हैं ये पर्टिकुलर एरियाज हैं जहां पर ज्यादा अटैक किए गए। और अभी जो ताजा हमले हैं उसके अंदर एक बड़ा पैटर्न अमेरिका द्वारा देखा जा रहा है कि अमेरिका जो अटैक कर रहा है वो उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनके जो बाकी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनको टारगेट करके किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर एक तरीके का ये आप कह सकते हैं कि वहां के लोगों पर प्रेशर बनाना कि देखिए आपका रजिम बातचीत नहीं कर रहा है, लगातार उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां से वहां के मूलभूत सुविधाओं पर असर पड़ सके, वो अटैक किए जा रहे हैं। अभी मौजूदा हालात में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही कहा जा रहा है कि एकदम बंद हो गई है। अमेरिका ये कह रहा है कि हमने बिल्कुल पूरी तरीके से वहां से चीजों को ब्लॉकेट किया हुआ है। ईरान कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये तमाम चीजों के बीच आप ऐसा लग रहा है कि संघर्ष अब बातचीत की टेबल से बिल्कुल उतर चुका है, क्योंकि पिछले 48 घंटे में करीबन 2 बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने बड़े स्ट्राइक्स किए हैं अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के मारे जाने के बाद। लगातार अमेरिका ये कोशिश कर रहा है इस बात को जस्टिफाई करने की कि अगर हमारे कोई भी मिलिट्री एसेट्स को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसका बदला हम इतने व्यापक स्तर पर लेंगे कि ईरान को ये सोचना पड़ेगा ताकि वो हमारे एक बार फिर से मिलिट्री एसेट्स को टारगेट ना करें। लेकिन मौजूदा हालात बहुत ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। मौजूदा हालातों में यह है कि अब ईरान भी बड़े अटैक्स की कोशिश कर रहा है, वो बहरेन की बात कर रहे हैं जो अमेरिका का फिफ्थ फ्लीट है उसको मिसाइल से टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के जो मौजूदा इस समय एयरक्राफ्ट माफ कीजिएगा की शिप्स मौजूद है उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी ये परिस्थितियां ऐसी हैं कि वार पलटवार एक ऐसे मोड पर जा रहा है जहां पर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है।
0: सुमित, आपसे ठीक 2 घंटे पहले जो सेंट्रल कमांड है, मैं आपको भी बता दूं, उसमें उन्होंने लिखा कि हमने 5:15 PM ईस्टर्न टाइम के हिसाब से एडिशनल सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक की है, मल्टीपल टारगेट्स इन ईरान, जो उन्होंने कहा, और डायरेक्शन ऑफ कमांडर इन चीफ, यानी ईरान में सिर्फ एक नहीं कई ठिकानों पर, जिसको उन्होंने नाम दिया है कि ये सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक है। ट्रंप कह रहे हैं कि ये तो बदले की कार्रवाई, उन पर हमने हमले किए हुए हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी भी उम्मीद है कि पाकिस्तान इसमें मध्यस्थता कर रहा है और बातचीत होकर कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन अब ये लग रहा है कि एस्केलेशन लैडर पर बात काफी आगे बढ़ गई है।
2: देखिए, दो चीजें हैं। पिछले 24 घंटे में अगर आप देखें तो ये दूसरी फेज ऑफ आप कह सकते हैं स्ट्राइक्स हैं अमेरिका की, और अमेरिका ने कल भी इस बात को ये कहकर जस्टिफाई किया था कि ये सेल्फ डिफेंस ऑपरेशंस हैं, सेल्फ डिफेंस ऑफ स्ट्राइक्स हैं। और ये कहा जा रहा था कि देखिए ये स्ट्राइक्स इसलिए की जा रही है ताकि ईरान की तरफ से जो ड्रोन और मिसाइलें दागी जा रही है उससे अमेरिका के किसी भी मिलिट्री असर्ट्स को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए उनकी उन कैपेबिलिटीज को, उनके मोबाइल लॉन्चर्स को, उनके कमांड कंट्रोल सेंटर्स को दोबारा से टारगेट किया जा रहा है। बंदर अब्बास के इलाकों को स्पेसिफिक तौर पर, मिनाब के इलाकों को स्पेसिफिक तौर पर टारगेट किया जा रहा है। करज के जो इलाका है उसको स्पेसिफिक तौर पर टारगेट किया जा रहा है। तो ये सारे अंदेशे तो इसी तरफ के दिखाते हैं कि अमेरिका ये जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन अब मध्यस्थता करेगा कौन? आशुतोष, अभी के मौजूदा हालात में तो कल भी कतर की तरफ से कोशिश की गई थी, ईरान ने उसको मानने से इंकार कर दिया, ईरान ने निगोशिएशन पे बैठने के लिए मना कर दिया। तो ये तमाम चीजें ऐसी दिखाती हैं कि अब बातचीत बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगी, इसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा कम है। अब ये जरूर होगा कि दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान कोशिश करेगा और पाबंदियां लगाने की, और ज्यादा अपने बोर्ड को या फिर माइंड्स को स्ट्रिक्ट करने की।
0: ठीक है सुमित, आप बने रहे हमारे साथ, एक बार आपको दिखाते हैं कि आखिर हमले कहां कहां किए गए हैं। ईरान ने इस बीच कहा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, सेंट्रल कमांड कह रहा है कि यह दावा गलत है, लेकिन आज जो हे स्ट्राइक हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी चेतावनी दी थी। नक्शे पर समझिए हमले कहां कहां हुए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान इस बार ईरान की 9 सैनिक अड्डों को पहुंचाया गया है, समंदर किनारे उसके जो बंदरगाह हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। तो कहां कहां पर देखिए, बंदर अब्बास, केशम द्वीप, और इसी के साथ साथ जो दूसरे इलाके हैं इनमें है मिनाब और सिरिक, ये 4 सबसे महत्वपूर्ण इलाके। और अगर आप इनको नक्शे के जरिए समझें तो यहीं से आपको समझ में आता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो आप यू कर्व ऊपर से देख रहे हैं, यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और इसको अगर आपको नियंत्रित करना हो तो आप इसी से समझ पाएंगे कि ये 4 वो ठिकाने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं। आपको दिखाते हैं कि आखिर केशम द्वीप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका ऑयल रिजर्व है, बहुत बड़ा भंडार है। बंदर अब्बास उसका नौसेना का पोर्ट है, मतलब ये जो इलाका है ये है गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान से जब आप आगे बढ़ते हैं, ये दरअसल एक पेनिनसुला है, आगे यूएई पड़ता है। इस पेनिनसुला के बाद ये जो इलाका है यही स्ट्रेट ऑफ जलडमरू मध्य है, और हार्मुज के जरिए जहां पर सप्लाई होती है, अमेरिका ने यहां ब्लॉकेड लगाया है। और 4 हमले जो किए गए हैं वो है आगे सिरिक, दूसरा है मिनाब का इलाका, तीसरा है बंदर अब्बास और केशम। इनमें सबसे क्रिटिकल जो है वो है बंदर अब्बास और केशम, क्योंकि इस तरफ का जो इलाका है यहां पर ईरान का नियंत्रण ज्यादा है, यहां पर वो ज्यादा ताकतवर है, और इन्हीं जगहों से वो अपनी नौसेना की जो कार्रवाई है वो कर सकता है, उसी के साथ साथ वो माइंस बिछा सकता है, समंदर के भीतर हमले कर सकता है। और बंदर अब्बास जहां पर उसका सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व भी है, उसका सबसे बड़ा पोर्ट भी है, और उसी के साथ साथ उसकी नौसेना जो भी उसके पास बची खुची है उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो स्ट्रेटेजिक रूप से यहां पर जिन इलाकों में अमेरिकन डिस्ट्रॉयर खड़े हैं, यहां से वो उन्होंने निशाना बनाया है मिनाब को, सिरिक को, उसके बैटलशिप यहां खड़े हैं, यहां से फाइटर जेट्स ने स्क्रैम्बल किया, और इन 4 ठिकानों को निशाना बनाया गया, यानी ईरान की कमर तोड़ने के लिए उन जगहों को चुना गया। और इसीलिए 10 मई से जो हमलों की शुरुआत हुई, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा हमला, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अब बड़ा हमला होगा, और उस बड़े हमले के लिए जो 4 ठिकाने चुने गए वो हैं बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मिनाब और सिरिक। शरीक। हालांकि मीना आपको देख के बारे में नाम सुनते आपको याद आएगा कि जब पहला हमला हुआ था 28 फरवरी के बाद, तो उसमें वही मीनाब की वो स्कूलें थी जहां 160 से ज्यादा बच्चियां मारी गई थी। लेकिन अगली बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरान की शीर्ष संयुक्त सैन्य कमान की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अब हॉर्मुज से किसी भी तेल टैंकर या कमर्शियल जहाज को गुजरने नहीं दिया जाएगा। जो भी जहाज हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश करेगा उस पर ईरानी सेना हमला करेगी। तो हॉर्मुज को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इन दावों को खारिज किया है, लेकिन ईरान की सर्वोच्च सैन्य इकाई IRGC ने तुरंत यह ऐलान कर दिया है कि अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद किया जा रहा है। सुमित चौधरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, ये वो फैसला था जिसके चलते ईरान को एक स्ट्रेटजिकल विक्ट्री मिल रही थी। लगातार ये लग रहा था कि अब वो पूरी दुनिया पर दबाव डाल रहा है, जिसका असर अमेरिका पर हो रहा है। सेंट्रल कमांड ये कह रहा है कि ऐसा तो कुछ है नहीं, हॉर्मुज अभी भी चल रहा है, लेकिन IRGC कह रही है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरा बंद है। अगर इसको सामान्य भाषा में डीकोड करें तो क्या समझा जाए?
2: देखिए, सामान्य भाषा में यह है कि 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज भी पाबंदियों के साथ बंद ही है। अगर आप मौजूदा हालात में देखें कि हर रोज इससे पहले जब 40 दिन की वॉर के बाद से जब सीजफायर हुआ था, तब भी एक दो करके ही शिप्स गुजर पा रहे थे। 28 फरवरी से पहले की यथास्थिति अब भी ना तो अमेरिका कायम कर पाया था, ना ही ईरान कायम कर पाया था। और ये कोशिश की जा रही है कि देखिए, बातचीत की टेबल पर दोनों अपनी शर्तें लेकर तो बैठ रहे हैं, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज की परिस्थितियां या सिचुएशन बिल्कुल बरकरार वैसी है जो 28 फरवरी के बाद से बन गई थी, युद्ध के बाद। लेकिन अभी मौजूदा हालात में मैं आपको एक और बड़ा अपडेट आपको बताऊं कि IRGC की तरफ से लगातार क्लेम किया जा रहा है आशुतोष, कि उसने 18 की पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लगातार अमेरिका के टारगेट किया। IRGC का एक क्लेम है कि देखिए, उन्होंने अल सलेम एयरबेस को, अहमद अल जबीर एयरबेस को और शेख ईसा एयरबेस को टारगेट किया है 18 जगहों पर। ये दो वेव्स के अंदर उनकी तरफ से टारगेट किए जा रहे हैं। यानी अब लगातार ईरान ये क्लेम कर रहा है कि उसकी तरफ से भी बड़ी मिसाइलों की लॉन्च करना शुरू कर दिया गया है, और वो भी अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद बेसिस को टारगेट कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में तो आप मान के चलेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की परिस्थितियां या वहां की सिचुएशन और ज्यादा गंभीर हो जाएंगी, क्योंकि ईरान अब कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा माइंस को और डिप्लॉय कर सके। अभी अमेरिका की तरफ से एक माइन, आप देखिए 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, एक माइन अमेरिका की तरफ से वहां पर रिकवर नहीं की गई। कहा जा रहा है कि माइंस इतनी ज्यादा आगे फ्लोट कर चुकी हैं कि वो ओमान के आसपास के इलाकों में भी देखी गई, स्पॉट की गई पिछले कई दिनों में। तो आप मानिएगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो इस इलाके में कहां कहां ईरान डेस्परेशन में, या फिर आप कह सकते हैं कि अपने सिक्योर करने के स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए कहां कहां माइंस बिछा देगा, ये ईरान को भी नहीं पता। और शायद उसको खोलने में अगर बातचीत कल भी सार्थक रूप से लागू हो जाते, तब भी उसको निकालने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा।
0: बिल्कुल, और ये समय तो ठीक है कि आप आगे कितना समय लगाएंगे, लेकिन जो नुकसान अभी हो रहा है, पूरी दुनिया पर ऊर्जा संकट। सुमित, आप बने हमारे साथ। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि ओमान तट के पास एक कमर्शियल ऑयल टैंकर शिप पर हमला हुआ है। इस जहाज पर कुल 28 लोग सवार थे, जिनमें 24 भारतीय थे। अमेरिकी हमले के बाद 21 भारतीयों को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 3 भारतीय अभी भी लापता है जो इस जहाज पर मौजूद थे। इस हमले के बाद भारत ने कड़ी निंदा की है। जिस जहाज पर हमला किया गया उसका नाम सेट्रेबेलो है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ओमान में भारतीय दूतावास फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए है, खोज और बचाव अभियान भी चल रहे हैं। ओमान के अधिकारियों के साथ दूतावास लगातार संपर्क में है। और दिल्ली में इस बीच अमेरिकी राजनयिक चार्ज द अफेयर्स को तलब किया गया, टॉप अमेरिकी राजनयिक को तलब किया गया। अमेरिकी सेना ने पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर सेट्रेबेलो पर हमले की भी पुष्टि की है। एक बयान जारी करके उन्होंने कहा है कि ऑयल टैंकर क्रू बार बार दिए जा रहे निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया। ऑयल टैंकर पर ईरान से तेल ले जाने का आरोप लगाया जा रहा था। और ये देखिए, ये ओमान तट के पास वो हमला है, इसको अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने डीक्लासिफाई किया है इन तस्वीरों को, और इंजन रूम को सीधा निशाना बनाया गया था। इस जहाज पर 24 भारतीय थे, जिनमें से 3 अभी भी लापता हैं, 21 को बचा लिया गया। और लगातार ऊर्जा संकट इन्हीं परिस्थितियों के चलते जो बना हुआ है, सुमित चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। सुमित, यही एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि अगर हॉर्मुज से लेकर के ओमान का इलाका भी अगर इस चपेट में आता है तो बेसिकली जो दायरा एक छोटे से 33 किलोमीटर के व्यास की परिधि में जो हो सकता था वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अब लगातार अमेरिका भी ऑयल टैंकर को निशाना बना रहा है, तो ये तो ऐसा लग नहीं रहा कि 6 महीने के भीतर भी परिस्थितियां बिल्कुल जो है फिर से पटरी पर लौटेंगी।
2: देखिए आशुतोष, दायरा तो इतना बढ़ चुका है कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ चुकी है। इसके आर्थिक दायरों की अगर बात करें तो इस समय पूरी दुनिया इसकी चपेट में, लेकिन मौजूदा हालात में जब आप सैन्य कार्रवाई की बात करते हैं, जब आप मिलिट्री ऑप्शंस की बात करते हैं, तो भले ही वो 35 किलोमीटर का एरिया हो या मिडिल ईस्ट के तमाम पर्शियन गल्फ की बात कर लीजिए, गल्फ ऑफ ओमान की बात कर लीजिए, वहीं तक इन चीजों को परिस्थितियों को समझा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि अभी तो मौजूदा हालात में पूरे मिडिल ईस्ट के देशों में भी ईरान अटैक करने की कोशिश कर रहा है। खासतौर पर उसका पूरा फोकस बहरीन रहता है, उसका उसका पूरा फोकस यूएई रहता है। तो ऐसे में तो आप मानेगा कि सारा का सारा फोकस अभी शिफ्ट हो गया है, ना सिर्फ ईरान बल्कि मिडिल ईस्ट के देश पे। और वहीं दूसरी तरफ इसराइल और लेबनन के बीच में भी जो चीजें चल रहे हैं, हिजबुल्ला को लेकर इसराइल के भी ऑपरेशन लगातार नॉर्थन इसराइल के, साउथ ऑफ इसराइल के अंदर, साउथ ऑफ लेबनन के अंदर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी दिखा रही है कि ये कंफ्लिक्ट एक जगह पर लिमिटेड नहीं है, ये लगातार अपना दायरे को बढ़ाता जा रहा है। और अभी जिस तरीके से ईरान ने दोबारा से ये ऐलान किया है कि वो अब इसका बदला लेगा, लगातार 2 वेव ऑफ अटैक उसकी तरफ से किए गए हैं, और वो कोशिश करेगा कि उसने 18, ईरान की तरफ से कहा गया उसने 18 की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अमेरिका के टारगेट किया है। तो ये दिखाता है कि अब ये बदस्तूर इसी तरीके से जारी रहेगा, इसकी कंटिन्यूटी ऐसी ही रहेगी, और अब एक नया न्यू नॉर्मल है जिसमें बातचीत हो ना हो लेकिन अटैक हर दूसरे घंटे, हर दिन में 2 बार लगातार
0: जिसमें
2: एक दूसरे
0: कोई
2: पर वार
0: सीज फायर नहीं है, ये एक अलग ही तरीके का सीज फायर है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी के लिए। वेस्ट एशिया संकट और युद्ध की इन परिस्थितियों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर का। 10 जून यानी इतिहास के पन्नों में दर्ज किए गए नए कीर्तिमान की तारीख है। लगातार सबसे लंबे समय तक जनता के वोट के दम पर मिली जीत से प्रधानमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड अब नरेंद्र मोदी के नाम है। मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड बतौर प्रधानमंत्री के पद पर रहने का तोड़ दिया है। लेकिन तोड़ने से ज्यादा यह तारीख जोड़ने के लिए याद इसलिए रहेगी कि जनता से जुड़ने वाले लीडर जनता के उस दौर में भी हमेशा प्रिय बन जाता है जब लगातार 3 बार सत्ता हासिल करना दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देशों में फिलहाल नामुमकिन नजर आता है। जनता को भगवान मानने वाले नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता का प्रसाद जनता सौंपकर सब मुमकिन कर देती है।
3: जैसे यहां बताया गया कि मैं पहली बार यहां आया हूं, शायद मेरे जीवन में हर बार ऐसा ही हुआ है। मुख्यमंत्री बना उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री की चैम्बर देखी थी, मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने विधानसभा गृह देखा था। आज भी ऐसा ही एक अवसर आया है, लेकिन हम इस ऐतिहासिक स्थान पर बैठे हैं। तब मैंने प्रारंभ में कहा यह लोकतंत्र का मंदिर है, 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं इस पवित्र मंदिर पर टिकी हुई है।
4: लोकतंत्र के उसी मंदिर में अब 140 करोड़ लोगों की आकांक्षा की पूर्ति के लिए प्रधान सेवक के पद पर नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के विश्वास को ऐतिहासिक 12 साल हो चुके हैं। जब नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है तो कैबिनेट ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, प्रधानमंत्री को बधाई दी, मंत्रियों ने उनकी उपलब्धि पर खड़े होकर तालियां बजाई, मेज थपथपाई। 12 साल कहना शायद पूरी तरह सही ना, सही होगा कहना कि 4,399 दिन से नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। जिस दौर में सत्ता से हाथ छूटने पर गठबंधन का साथ छोड़ने में पल भर सियासत नहीं लगाती, राजनीति के उस युग में भी 35 दल 75 नेता 22 मुख्यमंत्री को साथ लेकर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, आज से नहीं लगातार अनवरत निरंतर।
5: मैं अभिभूत हूं, कृतज्ञ हूं। चरैवेति चरैवेति के मंत्र का जाप करते हुए इस राजनीतिक यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए एक दिन ये पड़ाव भी आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था।
4: 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई, संसदीय दल ने नेहरू को अपना नेता चुना। पंडित नेहरू 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक लगातार निर्वाचित पीएम रहे। नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल 4,398 दिन का रहा। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री, जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री, 4,399 दिन अब पूरे कर चुके हैं। इसीलिए निर्वाचित पीएम के तौर पर मोदी ने कीर्तिमान रचा है। उसी कीर्तिमान को रचने वाले ऐतिहासिक मौके पर भारत मंडपम में पूरा एनडीए एकजुट होता है। रिकॉर्डधारी प्रधानमंत्री का लगातार जनता के बीच चुना जाना क्यों ऐतिहासिक है, ये गृह मंत्री बताते हैं। एनडीए की इसी बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पीएम मोदी के सम्मान में एक विशेष प्रस्ताव पेश करते हैं। प्रस्ताव में पीएम मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री बनने का उल्लेख किया जाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और बताते हैं कि मोदी केवल 12 साल के नहीं बल्कि इस सदी के लीडर हैं।
6: 21st century belongs to नरेंद्र मोदी जी। Always is energetic. Not only energetic, he will give energy for others. That is how he is maintaining himself. First time नरेंद्र मोदी जी is equal to any leader in the world. I can say very clearly, all surveys are indicating who is very popular leader globally. That is our Honorable Prime Minister. That is our pride for the nation. We are very happy for that.
7: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल, सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व में आज हमारा भारत विकास और समृद्धि के नए क्षितिज को छू रहा है। मोदी जी के इसी मजबूत नेतृत्व के बदौलत आज देश विकसित भारत बनने की राह पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज भारत सिर्फ प्रगति ही नहीं कर रहा है बल्कि प्रगति की नई परिभाषा लिख रहा है।
8: हम लोग इस गठबंधन का हिस्सा बने और पिछले 12 सालों से निरंतरता से न सिर्फ हमारा ये रिश्ता मजबूत रहा बल्कि एनडीए गठबंधन का दायरा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कहीं और राजनीतिक दल इस गठबंधन का हिस्सा बने उसका कारण सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सबको एक साथ लेकर चलने की उनकी सोच, सबको परिवार की तरह उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े होने की सोच ने ही उनको आज देश के सर्वोच्च नेता की श्रेणी में सबसे आगे उनको खड़ा करने का काम किया।
4: जिस वक्त विपक्ष चुनावी हार के बाद बिखरा हुआ है तब सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए नए उच्चमान स्थापित करते नरेंद्र मोदी एनडीए की बैठक में कांग्रेस शासनकाल याद कराते हैं। बताते हैं कि पहले विफलता कांग्रेस की होती रही लेकिन कलंक हिंदू आबादी पर लगाया जाता रहा।
5: सवाल ये है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा।
0: और एक बड़ी खबर इस समय आ रही है कि खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने हमला किया है। ईरान की सुप्रीम सेना यूनिट IRGC ने कहा है कि अमेरिकी ठिकानों पर 16 जगहों पर हमला किया गया। आपको बता दें थोड़ी देर पहले जब अमेरिका की ओर से यह कहा गया कि उसने ईरान के 4 प्रमुख शहरों को निशाना बनाया गया, तो अब अमेरिका के 18 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यानी पूरे मिडिल ईस्ट देश में देखिए युद्ध का दायरा कैसे पिछले 48 घंटों में बढ़ा है। पूरे मिडिल ईस्ट में 18 अमेरिकी ठिकानों पर IRGC ने हमला करने का दावा किया है। इतना ही नहीं, अब से थोड़ी देर पहले बहरीन में जहां पर अमेरिकी नेवी की 5वीं बटालियन 5th फ्लीट है, सबसे बड़ा फ्लीट नेवल फ्लीट है, वहां पर भी सायरन अलर्ट किया गया है। बहरीन में भी वहां पर प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है, इंडोर सेफ जाने के लिए कहा है। अल सलेम एयरबेस अहमद अल जाबेर, आपको बता दें जॉर्डन पर भी हमला किया गया, बहरीन में ईसा एयरबेस पर भी हमला किया गया है। आईआरजीसी ने अमेरिका को जवाब दिया है, उसकी कार्रवाई का पलटवार किया है पूरे मिडिल ईस्ट में। अब बहरीन, आपको याद हो पहले दौर के इस युद्ध में जहां जॉर्डन बचा हुआ था, इस बार उसकी चपेट में जॉर्डन भी आया है, तो किन किन देशों को निशाना बनाया गया है? अब तक कुल मिलाकर के अगर देखें तो यूएई, बहरीन, कुवैत और उसी के साथ अब जॉर्डन भी उसकी फायर लाइन में आ चुका है। अल सलेम एयरबेस अहमद अल जावेद पर भी हमला किया गया है। ईरान ने F-16 हैंगर्स को भी ध्वस्त करने का दावा किया है। बहरीन में ईसा एयरबेस पर हमले का दावा किया गया है और बहरीन की ओर से औपचारिक जानकारी जो आई है उसके मुताबिक सायरन साउंड किया गया है, अलर्ट किया गया पूरे इलाके को। आईआरजीसी एयरोस्पेस की ओर से भी कहा गया है कि कई सारे जो अमेरिकी ठिकाने हैं वो अब उसके निशाने पर हैं। तो मिडिल ईस्ट के यूएस एयरबेसों पर आईआरजीसी ने हमला किया है और जैसे ही कल ट्रंप ने कहा कि एक बड़ा हमला ईरान की ओर होगा, एयर स्ट्राइक होगी खासकर चार उसके सबसे प्रमुख ठिकानों पर, जिसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए आईआरजीसी ने बहरीन को निशाना बनाया है, जॉर्डन को निशाना बनाया है और उसी के साथ खाड़ी देशों में कुल 18 अमेरिकी सैन्य ठिकाने, कहीं पर एयरफोर्स यूनिट है, उसी कहीं नेवल फ्लीट है और उसी के साथ साथ ये तमाम वो इलाके हैं जो इस समय अमेरिका के क्रॉस फायर में आए हैं। इतना ही नहीं, जॉर्डन को भी इस बार निशाना बनाया गया। युद्ध का दायरा जो है खाड़ी देशों में वो लगातार बढ़ रहा है। सवाल ये उठता है कि ये कैसा सीज फायर है जिसमें कहीं किसी फायर को नहीं रोका गया है, सीज फायर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। ये देखिए कैसे एक के बाद एक तमाम उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है, बहरीन से लेकर के कुवैत तक, जॉर्डन तक और उसी के साथ साथ अमेरिका के कुल ऐसे 18 सैन्य ठिकाने खाड़ी देशों में अमेरिका की जो मौजूदगी है वो काफी बड़ी है। तो अमेरिका के 18 प्रमुख ऐसे सैन्य ठिकाने हैं पूरे खाड़ी देशों के इलाके में जिन पर आईआरजीसी ने मिसाइलों से हमले किए हैं, ड्रोन दागे हैं। हालांकि सेंट्रल कमांड यह कह रहा है कि ईरान के हमलों को निष्क्रिय किया गया है, लेकिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया है। इसे ठीक पहले अमेरिका ने केशन द्वीप को निशाना बनाया, बंदर अब्बास को निशाना बनाया, मिनाब को निशाना बनाया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए तो अमेरिका के 18 ठिकानों पर जहां पर बड़े हमले आईआरजीसी ने किए, उधर अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई की है। ईरान के कई सारे इलाकों में धमाके सुनाई दिए हैं। सबसे पहले जो जानकारी उन चार इलाकों की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध का दायरा यानी हमला और उसका पलटवार बढ़ रहा है। ईरान के करज में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। सुमित, ऐसा लग रहा था कि चार जगह हमले, जो डिफेंसिव स्ट्राइक है उसके बाद उनको क्या ये उम्मीद थी कि ईरान चुप बैठेगा? ईरान ने 18 जगहों को निशाना बना दिया और उसके बाद अब अमेरिका फिर पलटवार कर रहा है। यहां कौन सीमा रेखा कौन तय करेगा? और अगर ये स्थिति चल रही है, क्या इसे अब हम मान सकते हैं औपचारिक रूप से कि जो सीज फायर डॉक्यूमेंटेशन बातचीत थी उसका अंत यहीं पर, उस पर विराम लग रहा है यहां पर?
2: देखिए, ये अंत भी है और नया आगाज भी है, क्योंकि हर बार हमने देखा है कि इसी तरीके के अटैक एक दूसरे पर किए जाते हैं और उसके बाद नए नेगोशिएशंस की बात कही जाती है। लेकिन मौजूदा हालात में क्या अभी की चीजें ऐसी हैं जहां पर दोनों ही यानी अमेरिका और ईरान किसी बात को लेकर सहमत होते हों? तो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता आशुतोष, ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हो, ना मनी को लेकर हो, इन तमाम चीजों के अंदर कहीं से भी दोनों की सहमति नहीं बन पा रही है। अभी दोबारा से अमेरिका ने सिरज के अंदर, बंदर अब्बास के अंदर और कर्ज के अंदर तीनों जगहों पर बड़े फ्रेश अटैक करना शुरू किया है। लगातार ईरान की मीडिया द्वारा कहा जा रहा है कि वहां पर कई ड्रोन्स को स्पॉट किया गया है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि फ्रेश अटैक किए जाए ताकि ईरान के वो पलटवारों का जवाब दिया जा सके जो ईरान ने थोड़ी देर पहले दिए थे। यानी ईरान ने भी 18 जगहों को की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को मिडिल ईस्ट में, चाहे खासतौर पर बहरीन को लेकर बड़े अटैक्स इनिशिएट किए थे। तो ये मौजूदा हालात में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता कि बातचीत आने वाले कभी किसी वक्त में होने वाली है या दोनों किसी एक मुद्दे के ऊपर सहमति जताएंगे। लेकिन
0: पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति पर लगातार हमारी नजर बनी। आगे बढ़ने से पहले नजर डाल रहे हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से।

अमेरिका में लगातार दूसरे दिन छिड़े जंग, समंदर में आमने सामने दोनों सेनाएं, केशन द्वीप से तेहरान तक धमाके। ट्रंप ने कहा एपिक फ्यूरी से ज्यादा भीषण हमले। ईरान ने बंद किया हॉर्मुज। बारूदी हमलों के बीच दोनों देशों में जुबानी जंग। ट्रंप ने कहा बमबारी रोकने के लिए गिड़गिड़ाया तेहरान। अधिकारियों के हवाले से ईरानी मीडिया का दावा, युद्ध से बचने के रास्ते तलाश रहे हैं ट्रंप। ओमान तट के पास कमर्शियल ऑयल टैंकर पर अमेरिकी सेना ने हमला किया। जहाज पर सवार 24 भारतीयों में से 21 का रेस्क्यू, 3 लापता। भारत ने जताई नाराजगी। दिल्ली में अमेरिकी राजनयिक तलब। बंगाल में ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका। विद्रोही सांसदों की लिस्ट में 19 नाम। शत्रुघ्न सिन्हा और सियानी घोष जैसे वफादारों ने छोड़ा साथ। ऋतुव्रत ने किया 64 विधायकों के साथ होने का दावा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की अहम बैठक। एक्शन प्लान के साथ पहुंचेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। 2047 के विकसित भारत कार्यक्रम पर मंथन।

0: तो बड़ी खबर समंदर में अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी और अमेरिकी सेनाओं के बीच समंदर में जमकर झड़प हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ की चेतावनी के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी हमलों की ईरानी समाचार एजेंसियों ने भी पुष्टि की है। ईरान के केशन द्वीप बंदर अब्बास में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद ईरान के सिरिक और मिनाब क्षेत्रों से बड़े विस्फोटों की खबर आ रही है। अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास में एयरबेस और एयरपोर्ट के पास एयर स्ट्राइक की है। ईरान के कंगन बंदरगाह में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। यानी 48 घंटे में लगातार दो बड़े हमले अमेरिका की ओर से ईरान के प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाया गया। सबसे पहले उसकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को नेस्तोनाबूद किया गया और अब उसके बाद ईरान के उन जगहों को निशाना बनाया गया है जहां उसकी स्ट्रेटेजिक लाइन है। और अमेरिका की पूरी कोशिश ये कि इन जगहों से ईरान की बची खुची ताकत को भी ध्वस्त किया जाए। तो एक तरफ जहां सीज फायर, तो दूसरी तरफ एक बार फिर नए हमले का आगाज। लेकिन अगर आपको हम ये समझाएं कि आखिर हमले आज कहां कहां पर हुए हैं और ये महत्वपूर्ण क्यों हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान की खाड़ी है, इसके आगे ये ईरान का इलाका है और ये पूरा जो है वो यूएई है। अब इन हमलों में आज जो निशाने लगाए गए हैं वो है सिरिक, मीनाब, बंदर अब्बास, केशम, ये गल्फ ऑफ ओमान में। यहां दरअसल अमेरिका का ब्लॉकेड है इस इलाके पर और इसी के साथ अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जो है वो इन इलाकों में तैनात हैं। अगर आप हॉर्मुज को समझना चाहें तो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इसी में ईरान की सबसे बड़ी जो पावर है वो है बंदर अब्बास और केशम द्वीप। इन इलाकों से न सिर्फ उसका जो ऊर्जा स्रोत है उसका सबसे बड़ा भंडार है बल्कि उसकी नौसेना की वो ताकत जहां से वो माइनिंग कर सकता है, जहां से वो हमले कर सकता है, वो इन इलाकों में। तो बंदर अब्बास से लेकर के केशम, मीनाब से आपको याद आएगा वो स्कूल जहां पर 160 लड़कियां मारी गई थी अमेरिकी बमबारी में। तो अमेरिका ने यहां से निशाना बनाया सिरिक को, मीनाब को, बंदर अब्बास को, केशम द्वीप को, इन आईलैंड पर ईरान की उस ताकत को जहां पर उसकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, जहां उसके रेडार्स हैं और जहां उसके पास जो उसकी बची खुची नौसेना है जो कि माइन समंदर के भीतर न सिर्फ माइनिंग कर सकती है बल्कि रोबोटिक जो ड्रोन्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकती है। तो अमेरिका ने उनको निशाना बनाया है लेकिन कई सारे ऐसे इलाके हैं जो आज अमेरिका के निशाने पर हैं। ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करेंगे, पलटवार करेंगे, तो पलटवार करने के लिए एक बार फिर, और बीच ईरान ने कहा कि उसने इस हॉर्मुज को बंद कर दिया है। इसी के साथ साथ इस पूरे घटनाक्रम में अब तक क्या हुआ है, गल्फ ऑफ ओमान में जहां पर एक शिप जा रही थी उस शिप पर भी हमले किए गए हैं। लेकिन ये चार वो प्रमुख बड़े ठिकाने हैं जिनको अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किया गया। सुमित चौधरी हमारे साथ हमें बने हुए हैं। सुमित, बंदर अब्बास, सिरिक, मीनाब, ये तमाम वो इलाके हैं और अभी हम देख रहे हैं 48 घंटे में दो बड़े हमले हो गए हैं। यानी अमेरिका सीधे सीधे तो ये कह रहा है कि अगर उस पर जरा सी भी कार्यवाही को पलटवार करेगा। IRGC कह रहा है अगर आपने हमला किया हम पीछे नहीं हटेंगे। और जैसा आप, ये लग रहा है कि आगाज और अंजाम ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है, रुकेगा कौन पहले?
1: देखिए, रुकने वाले तो दोनों ही नहीं है क्योंकि दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगा अपने कदमों को पीछे खींच पाना। भी मौजूदा हालात में जिस तरीके से आपने मैप पे लोगों को, हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की, दरअसल ये वो कोस्टल एयर बेसिस के आसपास की जगह है जहां पर ईरान ने अपने एयर डिफेंस इक्विपमेंट डिप्लॉय किए हुए हैं। यहां पर ही उनके जो मिसाइल साइलोज है वो भी डिप्लॉय किए गए हैं। अभी आपको याद होगा कि जब 40 दिन का संघर्ष या फिर वॉर चला था उस समय अमेरिका और इसराइल ने स्पेसिफिक तौर पर इन्हीं कोस्टल एरियाज में सबसे ज्यादा टारगेट किया था। पूरी की पूरी ईरान की नेवी को बर्बाद कर दिया गया था, करीबन 40 के करीब शिप बताया जाता है कि जिनको डुबा दिया गया था। तो अमेरिका और ईरान को, अमेरिका और इजराइल को यह अनुमान था कि अब इसके बाद से ईरान की जो कैपेबिलिटीज है एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज के साथ उनकी जो नेवल कैपेबिलिटीज है खत्म होगी। लेकिन ईरान ने पिछले 60 दिनों के अंदर दोबारा से इसको रिवाइव कर लिया और यहां पर मौजूद अमेरिका के पेट्रोलिंग करने वाले एयरक्राफ्ट को, उनके ड्रोन्स को मार गिराया जा रहा है और ये अमेरिका के लिए एक बड़ा मेजर कंसर्न था। इसीलिए इन स्पेसिफिक जगहों पर दोबारा से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उन कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच बात यह है आशुतोष, ये जगह ऐसी है क्योंकि मैं खुद इन इलाकों में ट्रैवल कर चुका हूं, यहां के साइलोज ऐसे हैं जो 90-90 मीटर नीचे हैं। यहां पर आप कितने भी बम्बारमेंट कर लीजिए, आप यहां पर बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर लीजिए, आप यहां पर लगातार बड़े एम्युनिशन का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन उनको नुकसान ना के बराबर होता। और शायद यही कैपेबिलिटीज ईरान ने पिछले कई दशकों से अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप किया है और इन्हीं कैपेबिलिटीज के मुकाबले वो अमेरिका को जवाब दे रहा है
0: और सिर्फ
1: अभी
0: अमेरिका नहीं सुमित,
1: इतने।
0: बल्कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। बड़ी खबर एक ये भी जो आ रही है कि बहरीन में, अभी वहां से बहरीन के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा है कि बहरीन के कई इलाकों में सायरन सुने गए हैं। लोगों से उन्होंने तत्काल कहा है कि वो सुरक्षित बंकर में चले गए हैं। बहरीन में जहां पर उसकी फिफ्थ फ्लीट है, बहरीन के नौसैनिक ठिकाने जो हैं, जो अमेरिका में हैं, उस पर ये दूसरा हमला। देखिए पहली तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, जब पहले दौर का आक्रामकता हुई थी 10 जून को बहरीन पर हमला हुआ था, अमेरिकी बेस को हिट किया गया था ड्रोन और मिसाइलों के जरिए। तो अब से थोड़ी देर पहले फिर बहरीन में सायरन बजा है, वहां अलर्ट है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। लोगों से कहा गया कि वो शांत रहें और सुरक्षित रहें, सुरक्षित ठिकानों पर रहें, यानी ज्यादातर इंडोर रहें। तो बहरीन में फिर से सायरन बजे हैं, और इसके पहले हमने देखा था कि सिर्फ बहरीन नहीं, बहरीन, कुवैत और उसी के साथ साथ यूएई और जॉर्डन भी चपेट में आया था। तो बहरीन के कई इलाकों में सायरन बज गए हैं, यानी यूएई में जो अब अमेरिकी ठिकाने हैं वो आईआरजीसी के निशाने पर हैं। तो जिस तरह की इसमें एस्केलेशन हो रही है अमेरिका को लेकर के, ईरान ने एक और बड़ा दावा किया है। आईआरजीसी का ये कहना है कि बहरीन में अमेरिका के पांचवें बेड़े पर हमला किया गया है। यानी अब से थोड़ी देर पहले जो खबर हम आपको बता रहे थे, बहरीन में सायरन बजे अलर्ट है, उस पर आईआरजीसी की ओर से दावा किया गया है कि अमेरिका के पांचवें बेड़े पर कई ड्रोन से हमले किए गए हैं। बहरीन और यूएई 40 दिनों के संघर्ष में सबसे ज्यादा हमला झेलने वाले ये दो देश थे। अमेरिकी कम्युनिकेशन सिस्टम, अमेरिकी रेडार को सीज फायर उल्लंघन करने पर हमला किया गया है। ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, एयर स्ट्राइक की है, और इसी को लेकर के जवाबी कार्रवाई करते हुए अब बहरीन में फिफ्थ फ्लीट पर अमेरिकी कम्युनिकेशन सिस्टम और उसके रेडार पर हमला किया गया है। उसको नष्ट करने का दावा ईरान की आईआरजीसी ने किया है। तो बहरीन में अमेरिका के पांचवें बेड़े पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश अब ईरान की होगी, और इसीलिए आज 48 घंटे में यह लगातार दूसरा बड़ा ऐसा हमला। इसके पहले आईआरजीसी ने कहा कि उसने 18 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, बहरीन हमने देखा 40 दिनों का जब जंग की जंग पहली राउंड की जंग हुई उसमें बहरीन और यूएई, लेकिन इस बार उसके निशाने में जॉर्डन तक भी बात पहुंच गई। जॉर्डन में भी अमेरिकी ठिकानों को पिछली बार सिर्फ एक या दो बार इस तरह के अलार्म वहां पर बजे थे, इस बार तो उसने वहां पर बाकायदा बेस पर हमला कर दिया, F-16 हैंगर को भी निशाना बनाया।
1: बिल्कुल, देखिए 40 दिन की जंग के बाद दो महत्वपूर्ण चीजें हुई। 40 दिन की जंग के बाद ईरान ने सबसे पहले तो अपने आप को रिवाइव करना शुरू किया, अपने मिसाइलों को रिवाइव करना शुरू किया। अमेरिका की तरफ से भी लगातार जॉर्डन हो, बहरीन हो, इन जगहों पर अपने जो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम थे, अपने डिफेंस सिस्टम थे, उनको रीलोकेट करना शुरू किया गया। और उसकी सेटेलाइट तस्वीरें भी लगातार सामने आई थी कि कैसे जो बहरीन में मौजूद फिफ्थ फ्लीट के आसपास के इलाकों के अंदर अमेरिका ने अपनी मौजूदगी को और ज्यादा बढ़ाया। जॉर्डन के अंदर भी चीजों को रिवाइव किया गया, उन लोकेशन से हटाया गया जो लगातार एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के मिसाइल्स की रेंज में आते थे। तो अब ईरान भी दोबारा से उन्हीं जगहों पर लगातार अटैक कर रहा है, नई लोकेशंस पर अटैक कर रहा है जहां से अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आपने यूएई की बात की, आपने बहरीन की बात की, ये दोनों लोकेशंस आप देखिए कि वो लोकेशन थी जैसा आपने भी बताया कि सबसे ज्यादा अटैक इन्हीं जगहों पर किया गया था, क्योंकि फिफ्थ फ्लीट यहां पर मौजूद है, यहां पर लगातार सबसे ज्यादा उनके एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया गया था। लेकिन इन दोनों जगह के ऊपर अगर अटैक किया जाता है तो ये एक संदेश बड़ा पहुंचता है कि इतनी ज्यादा भारी भरकम मौजूदगी में भी जब अमेरिका इन लोकेशंस को सेफ नहीं कर पा रहा है, लगातार सिक्योर नहीं कर पा रहा है, तो फिर ईरान की कैपेबिलिटीज कितनी ज्यादा मजबूत होंगी ये दिखाने की कोशिश ईरान कर रहा है। और अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं तब भी कहा जा रहा है कि कई इंटरसेप्शन मिसाइल्स किए जा रहे हैं बहरीन के अंदर, लोगों को अलर्ट कर दिया गया, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि नुकसान जरूर हुआ है अमेरिका बेसिस को। और यही वजह है कि आप मानिए कि ईरान के पास भी एक ऐसा आप कह सकते हैं चोकिंग पॉइंट है जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। और दूसरा चोकिंग पॉइंट यह है कि ईरान अब अमेरिका को नुकसान पहुंचाते हुए मिडिल ईस्ट को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है।
0: और इसी के साथ हम जो देख रहे हैं कि जो हमलों का दायरा है वो उन इलाकों पर बढ़ रहा है जहां वो अमेरिका को ज्यादा नुकसान पहुंचा सके, यानी ईरान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई हो रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो सीज फायर है वो अब आगे कहां है। उधर अमेरिका की ओर से दावा किया गया कि युद्ध बड़ा होगा, यानी जवाबी कार्रवाई ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि उन्होंने उसके अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया था जिसके बाद अमेरिका ने कार्रवाई की। क्या खाड़ी में एक बार फिर युद्ध का ज्वालामुखी फूट पड़ा है? ईरान पर एक बार फिर अमेरिका का हमला हुआ है, करज इलाके में धमाके सुने गए हैं। ईरान के करज में धमाके की आवाज सुनी गई है। आपको बता दें ईरान में 40 दिनों तक इंटरनेट बंद कर दिया गया था, जिसके बाद अब वहां से कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, तो कुछ कुछ जानकारियां भी अब आ रही हैं। अब फिलहाल ईरान से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक करज का जो इलाका है वहां बहुत सारे धमाके सुने गए हैं। इसके पहले तटीय इलाकों में मिनाब से लेकर के केशमद्वीप तक जो उसके तटीय इलाके हैं वहां पर भारी भरकम हमला हुआ है, और उन हमलों के बाद अब ईरान के करज में भी धमाके सुने गए हैं। 48 घंटों के भीतर ये दूसरा बड़ा ऐसा हमला, वैसे अगर देखा जाए तकनीकी तौर पर 24 घंटे के भीतर ये बड़ा हमला है, लेकिन 48 घंटों में जो परिस्थितियां बदली हैं, वो किस तरह आक्रामक हुई हैं, और पूरा ये जो इलाका है वो अब खाड़ी का जो एक जो जंग रुकी थी 40 दिनों के बाद वो एक बार फिर उसकी शुरुआत होती नजर आ रही है। अमेरिका रुकने को तैयार नहीं है, ईरान जवाबी कार्रवाई से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और अब अगर ऐसा होता है ये युद्ध का दायरा बैठता है तो खाड़ी के तमाम इलाकों में तमाम देशों में भी अब तनाव की स्थिति बढ़ सकती है। तो IRGC ने इस बीच ये बड़ा दावा किया है कि उसने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है, अमेरिका के उन ठिकानों को निशाना बनाया है जो कि खाड़ी के देशों में मौजूद हैं। 18 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर अमेरिका को निशाना बनाया गया, उसके सैन्य ठिकानों पर, उसके फाइटर जेट के हैंगर पर, उसके नौसैनिक अड्डों पर, 18 ऐसे बड़े ठिकाने। अब 18 ठिकाने कहां पर हैं? ये ठिकाने हैं सऊदी में, ये ठिकाने हैं कुवैत में, ये UAE में हैं, बहरीन में हैं, जॉर्डन में हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर अमेरिका के फाइटर जेट से लेकर के उसके नौसैनिक बेड़े मौजूद हैं। तो अल सलीम एयरबेस, अहमद अल जाबेर एयरबेस, ये वो इलाके हैं बहरीन में, फिफ्थ फ्लीट का जो नेवल बेस है, ईसा एयरबेस, ये वो इलाके हैं जहां पर IRGC ने हमले का दावा किया है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल,
3: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी?
2: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल,
3: सीबीएसई के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
2: छात्रों को दिया मंच,
3: उज्मा हमारे साथ कोटा से और अदिति मुंगेर से हैं और तानिया कोटा से हैं और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
4: मैंने देखी, इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
5: आईआईटी मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
2: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर,
3: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक, और अब सरकार की तरफ से सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
2: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: कौन सा रत्न एक साथ तीन तीन ग्रहों को बेहतर कर देता है? कौन सा रत्न छोटे बच्चों के बोलने की समस्या को सुधार देता है? और कौन सा रत्न दुर्घटनाओं से, डर से, भय से मुक्ति देता है? कौन से हैं चमत्कार के रत्न, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य।
2: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
3: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
2: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere.

दुनिया को अमन और शांति का फर्जी ज्ञान बांटने वाले कंगाल पाकिस्तान का असली और वैश्विक चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान की कायराना फौज ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का सरेआम उल्लंघन किया और आधी रात के अंधेरे में घोष, कुनार और पक्तिका प्रांत के रिहायशी इलाकों पर बारूद की बरसात। पाकिस्तानी हवाई हमलों ने सोते हुए अफगानी नागरिकों के आशियानों को शमशान बना दिया। इस अमानवीय और बर्बर हमले में अब तक कई बेगुनाह नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद मासूम बच्चों और महिलाओं की है। घोस्ट के स्पीर जिले के मैना गांव में हुए हमले की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक ही झटके में एक महिला और 7 से 10 साल की उम्र के 8 मासूम बच्चों को मौत की नींद सुला दिया गया। 10 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इस क्रूरता पर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और तालिबान प्रशासन भड़क उठा। करजई ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि इस्लामाबाद अपनी गलती और शत्रुतापूर्ण नीतियों का नतीजा भुगत रहा है और अफगानिस्तान के प्रति युद्ध व विनाश की नीति उसे ले डूबेगी। अब जरा पाकिस्तान के पाखंड का लेवल भी देखिए। ये वही पाकिस्तान है जो फिलिस्तीन और गाजा के नाम पर छाती पीटता है, दुनिया भर में इस्लाम का स्वयंभू ठेकेदार बनता है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कल ही रावलपिंडी में लेबनान के आर्मी चीफ को शांति और सुरक्षा का पाठ पढ़ा रहे थे और उसी रात मुनीर ने अपनी फौज को अफगानिस्तान के मासूम बच्चों पर बम गिराने का हुक्म दे दिया। यही नहीं, उसी दिन मुनीर की कातिल फौज पीओके में अंधाधुंध गोलियां बरसा रही थी, लाशें गिरा रही थी, वही रात में अफगानिस्तान में मासूमों का कत्ल करने का पाप कर रही थी, यानी एक

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
3: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
2: Smartless.
4: Hey, guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
2: Marketplace.
5: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
2: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
6: मासूम बच्चों को मौत की नींद सुला दिया गया। 10 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इस क्रूरता पर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और तालिबान प्रशासन भड़क उठा। करजई ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि इस्लामाबाद अपनी गलती और शत्रुतापूर्ण नीतियों का नतीजा भुगत रहा है और अफगानिस्तान के प्रति युद्ध व विनाश की नीति उसे ले डूबेगी। अब जरा पाकिस्तान के पाखंड का लेवल भी देखिए। ये वही पाकिस्तान है जो फिलिस्तीन और गाजा के नाम पर छाती पीटता है, दुनिया भर में इस्लाम का स्वयंभू ठेकेदार बनता है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कल ही रावलपिंडी में लेबनान के आर्मी चीफ को शांति और सुरक्षा का पाठ पढ़ा रहे थे और उसी रात मुनीर ने अपनी फौज को अफगानिस्तान के मासूम बच्चों पर बम गिराने का हुक्म दे दिया। यही नहीं, उसी दिन मुनीर की कातिल फौज पीओके में अंधाधुंध गोलियां बरसा रही थी, लाशें गिरा रही थी, वही रात में अफगानिस्तान में मासूमों का कत्ल करने का पाप कर रही थी। यानी एक तरफ शांति का ढोंग और दूसरी तरफ बेकसूरों और मासूमों का कत्लेआम। पाकिस्तानी सेना की इसी दरिंदगी पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बुरी तरह बेनकाब कर दिया। भारत ने यूएनएससी में दहाड़ते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की लैंडलॉक्ड यानी चारों तरफ से जमीन से घिरे होने की लाचारी का हथियार की तरह इस्तेमाल किया और हवाई हमले करके सैकड़ों बेगुनाह नागरिकों की जान ले ली। चारों तरफ से थू थू होने के बाद अब बौखलाया पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ रोना रो रहा है। वो पाकिस्तान जिसने दुनिया भर में आतंक फैलाया अब अफगानिस्तानियों को आतंक का गढ़ बता रहा है। पाकिस्तान के राजदूत आसिम इफ्तिकार उल्टा अफगानिस्तान पर TTP और BLA को पनाह देने का बहाना बना रहे हैं। ऐसे झूठे आरोपों से पाकिस्तान न तो अपनी कायरता छिपा सकता है और न ही आतंकी होने का दाग मिटा सकता है। सच यही है कि जनरल आसिम मुनीर के हाथ बेगुनाह बच्चों और महिलाओं के खून से रंगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
7: पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में जुल्म की इंतहा हो रही है, बेगुनाह लोगों पर गोलियों की बौछार की जा रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। पीओके में लोग काफी वक्त से बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हैं। वहां लोगों ने तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन की तैयारी की। JAAC यानी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले 9 जून को बंद का ऐलान किया गया, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने 5 जून को ही JAAC पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही पूरे POJK में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गयी। अगले ही दिन बड़े पैमाने पर नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसे एक्शन के विरोध में 7 जून से उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए। पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी सेना को इन लोगों पर खुलेआम गोलियां बरसाने को कहा। फायरिंग में 27 लोगों की मौत हो गई। POJK में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ऐसी कार्रवाई को लेकर भारत ने गंभीर चिंता जताई है। साथ ही यूरोप स्थित मानवाधिकार संगठन ECHRD ने भी सवाल उठाए हैं और मांग की है कि इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विशेष बैठक बुलाई जाए। आज तक ब्यूरो।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

ईरान अमेरिका में लगातार दूसरे दिन छिड़े जंग, समंदर में आमने सामने दोनों सेनाएं, केशन द्वीप से तेहरान तक धमाके। ट्रंप ने कहा एपिक फ्यूरी से ज्यादा भीषण हमले। ईरान ने बंद किया हॉर्मुज। बारूदी हमलों के बीच दोनों देशों में जुबानी जंग। ट्रंप ने कहा बमबारी रोकने के लिए गिड़गिड़ाया तेहरान। अधिकारियों के हवाले से ईरानी मीडिया का दावा, युद्ध से बचने के रास्ते तलाश रहे हैं ट्रंप। ओमान तट के पास कमर्शियल ऑयल टैंकर पर अमेरिकी सेना ने हमला किया। जहाज पर सवार 24 भारतीयों में से 21 का रेस्क्यू, 3 लापता। भारत ने जताई नाराजगी। दिल्ली में अमेरिकी राजनयिक तलब। बंगाल में ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका। विद्रोही सांसदों की लिस्ट में 19 नाम। शत्रुघ्न सिन्हा और सियानी घोष जैसे वफादारों ने छोड़ा साथ। ऋतुव्रत ने किया 64 विधायकों के साथ होने का दावा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की अहम बैठक। एक्शन प्लान के साथ पहुंचेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। 2047 के विकसित भारत कार्यक्रम पर मंथन।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको तीन ऐसे रत्नों के बारे में बताएंगे जो तीन रत्न जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, और ये रत्न केवल एक ग्रह को नहीं, एक साथ दो दो या तीन तीन ग्रहों को प्रभावित कर देते हैं। कौन से हैं वो चमत्कार के तीन रत्न, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 10:36 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, प्रातः 8:16 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 8:16 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। आज दक्षिण दिशा की तरफ दिशाशूल है, यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ऐसे रत्नों के बारे में बताने वाले हैं जो बड़े रिसर्च के बाद ज्योतिष में प्रयोग में आए हैं, और वो बड़े चमत्कारी रत्न हैं। मुख्य रत्नों की तुलना में वो और ज्यादा प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि चमत्कार के रत्न कौन से हैं। देखिए, ज्योतिष में 9 रत्नों के अलावा कुछ अत्यंत विशेष रत्न भी हैं, और इन रत्नों को लंबी रिसर्च के बाद, लंबे शोध के बाद प्राप्त किया गया है। इनको चमत्कारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक साथ एक ही रत्न कई ग्रहों को प्रभावित कर देता है। सामान्यतः इनको धारण करने के भयंकर नुकसान नहीं होते, और ये रत्न बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं होते, नॉर्मल मुख्य रत्नों की तुलना में थोड़े कम महंगे होते हैं। और कुछ ऐसी विशेष दशाएं होती हैं जब केवल यही रत्न लाभकारी होते हैं, उनमें

करते हैं, आज उन रत्नों पर चर्चा आगे करते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।

धार होगा, काम की प्रशंसा होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृषभ राशि,

स्थिति बन रही है। अगर आज केले का दान कर दें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोई मनोकामना पूरी होगी, काम की रुकावट दूर होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। चमत्कार का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जो पॉपुलर रत्न है उसका नाम है ओपल। क्या खासियत है इसकी? देखिए, ओपल चमत्कारी रत्नों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। वैसे तो ओपल अनेक रंगों का होता है, लेकिन ज्योतिष में जिस ओपल का प्रयोग करते हैं वो सफेद या हल्के नीले रंग का ओपल होना चाहिए। जब आप ओपल धारण करते हैं

चंद्रमा और बृहस्पति, ये तीन ग्रह ओपल पहनने से एक्टिव हो जाते हैं। ओपल जल तत्व को सीधा प्रभावित कर देता है। जो लोग कर्क राशि से जुड़े हुए हैं, जिनकी राशि कर्क है या जिनका लग्न कर्क है, उनके लिए ओपल अत्यंत लाभकारी होता है। जो लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते, मन को बैलेंस नहीं कर पाते, उनके लिए ओपल बहुत फायदेमंद है। भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए और मन को संतुलित बनाने के लिए ओपल बहुत लाभकारी होता है। चमत्कार के दूसरे रत्न की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

योग हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंता आपकी दूर होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि।

होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

आवट आ सकती है, बड़ों की सलाह मान लेना फायदेमंद होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न निशांत जी ने हमें लिखा है, कोलकाता पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 जून 1994। जन्म का समय शाम के 7:50। जन्म का स्थान है नदिया, पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मैं अपना एक व्यापार शुरू किया हूँ, नौकरी तो मैं कर ही रहा हूँ, साथ में मैंने अपना एक व्यापार शुरू किया है, तो क्या मेरा व्यापार अच्छा चलेगा और क्या भविष्य में मैं नौकरी छोड़कर पूरी तरह से व्यापार में आ सकता हूँ? निशान जी, अभी आपकी कुंडली के हिसाब से अगले 1.5 साल तक आप नौकरी के साथ व्यापार करिए, व्यापार आपका अच्छा है, धीरे धीरे ट्रैक पर आ जाएगा। 2028 के मार्च के बाद आप नौकरी छोड़ करके पूरी तरह व्यापार में आ सकते हैं और उस समय आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत है। आपको जहां तक संभव हो किसी आउटसाइडर के साथ, बाहरी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप से बचना होगा। परिवार के लोगों के साथ काम करेंगे तो अच्छा।

घाटी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अब एक बड़ा खूबसूरत सा बड़ा चमत्कारी रत्न है, उसका नाम है पेरी डॉट। क्या खूबियां हैं इसकी? पेरी डॉट जो होता है ये चमकदार हरे रंग का रत्न है, लाइट ग्रीन थोड़ा धानी रंग का होता है। पेरी डॉट जो है ये दो ग्रहों को एक साथ कंट्रोल करता है, बृहस्पति और बुध। पेरी डॉट ज्ञान के लिए और बुद्धि के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली रत्न माना जाता है। जो लोग किसी भी रूप में मिथुन या कन्या राशि से जुड़े हैं, मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, मिथुन राशि है, कन्या राशि है, उनको पेरी डॉट जरूर पहनना चाहिए। पेरी डॉट रत्न धारण करने से बुरी आदतें दूर होती हैं।

पहनना चाहिए। अगर आप पेरीडॉट पहनते हैं तो वाणी के मामले में और आकर्षण क्षमता के मामले में इससे बहुत लाभ होता है। जो बच्चे जल्दी नहीं बोल पाते या जिन बच्चों के बोलने में वक्त लगता है कि भाई उम्र के 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, बच्चा कुछ ही शब्द बोल पाता है, ज्यादा नहीं बोल पाता है, ऐसे बच्चों को पेरीडॉट का लॉकेट बनवाकर गले में पहनाना चाहिए। और जो बच्चे ऑटिज्म की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनको भी अगर पेरीडॉट का लॉकेट बनवाकर गले में पहनाया जाए और साथ में रेगुलर माता प्रयास करें, थेरेपी भी करवाते रहें, तो इम्प्रूवमेंट बहुत तेजी से होता है। चमत्कार के तीसरे रत्न पर भी चर्चा करेंगे।

आने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

होगा, किसी यात्रा पर जा सकते हैं, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

ने विवाद समाप्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

मानसिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब चमत्कार के तीसरे रत्न की बात करते हैं जिसका नाम है लाजवर्त, इंग्लिश में कहते हैं लैपिस। क्या विशेषताएं हैं इसकी? जो ये लैपिस है, लाजवर्त है, ये नीले रंग का बहुत सुंदर रत्न है और इस पर सुनहरे छींटे पाए जाते हैं। ज्योतिष के दो सबसे शक्तिशाली ग्रहों को अकेला लाजवर्त कंट्रोल करता है, एक शनि और एक बृहस्पति। जो लोग कुंभ राशि से कहीं भी जुड़े हुए हों, जिनकी राशि कुंभ है या जिनका लग्न कुंभ है, उनके लिए लाजवर्त धारण करना बहुत लाभकारी होता है। चोट चपेट से रक्षा के लिए और भय को दूर करने के लिए, आध्यात्मिक लाभ के लिए लाजवर्त पहनना चाहिए। जिनके मन में हर चीज का डर है या जिनको बार बार चोट चपेट लगती है, उन्हें सलाह लेकर लाजवर्त पहनना चाहिए। ये जितना ज्यादा नीला होगा उतना ज्यादा प्रभावशाली होगा। जिन लोगों की नौकरी और करियर स्टेबल नहीं रहता, बार बार नौकरी छूटती है, बार बार नौकरी से हटाए जाते हैं, उसमें स्टेबिलिटी जिनके जीवन में नहीं आ रही है, उनको लाजवर्त अवश्य ही पहन लेना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।

रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए हो।

स्थिति अच्छी रहेगी। कोई रुका हुआ काम इस समय आपका बन जाएगा। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

ना दें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि ओपल जो है वो हीरे का सब्स्टिट्यूट है, हीरे के स्थान पे पहनाया जाता है। क्या ऐसा है? देखिए, ओपल हीरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है। हीरे के सब्स्टिट्यूट हैं जरकन, एगेट, अमेरिकन डायमंड। हीरे के लिए ओपल नहीं पहना जाता है हीरे के स्थान पर, क्योंकि ओपल के अंदर शुक्र के गुण भी हैं, चंद्रमा के गुण भी हैं और बृहस्पति के गुण भी हैं। टेक्निकली वास्तव में जिनको अपने चंद्र और शुक्र दोनों को संतुलित करना हो ऐसे लोगों को ओपल पहनने से ज्यादा फायदा होगा। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ओपल शुक्र का सब्स्टिट्यूट रत्न है। वास्तव में ओपल एक स्वतंत्र रत्न है और ये तीन ग्रहों को प्रभावित करता है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर एक से लेके नंबर नौ तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है आइए जानते हैं। नंबर एक, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर दो, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर तीन, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर चार, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। नंबर पांच, काम की अधिकता रहेगी। नंबर छह, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर सात, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर आठ, निर्णयों में सावधानी रखें। नंबर नौ, करियर में लाभ होगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाए।

शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके नाम और आपके यश में वृद्धि होगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सुशीला देवी ने हमें लिखा है और सुशीला देवी रांची झारखंड से हमें मेल लिखती हैं। अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी बेटी की जन्म तारीख है 6 जनवरी 2012। जन्म का समय शाम के 7:30 और जन्म का स्थान है रांची झारखंड। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी अभी 8वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही है, आगे उसका करियर किस दिशा में जाए, अभी से हम उसे किस दिशा में ले जाने की कोशिश करें। सुशीला जी, आपकी बेटी की कुंडली मेडिकल से संबंधित दिखाई देती है, तो अगर आप अपनी बेटी को बायोलॉजी पढ़ाएं और मेडिकल में ले जाएं या फार्मा में ले जाएं या नर्सिंग में ले जाएं तो उसमें उनका करियर अच्छा हो सकता है। करियर का मामला वैसे भी इनकी कुंडली में अच्छा है। इनकी आंखों का बहुत ध्यान दीजिए और साथ ही साथ इनके बढ़ते मोटापे का ध्यान दीजिए। इन दो चीजों का ध्यान देना थोड़ा जरूरी है। आप अपनी बेटी को कहें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और आप अपनी पुत्री के लिए सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें तो बहुत बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सुबह भगवान कृष्ण के नाम का या मंत्र का जप करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है चिकित्सा के लिए, इलाज के लिए, तो पीले चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, वस्त्र, तो पीले रंग का रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान।

तनाव दूर होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मिथुन राशि वालों के लिए। करियर में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा, चिंताएं दूर होंगी। आज सावधान रहना होगा कन्या राशि के लोगों को। सेहत बिगड़ सकती है, चोट चपेट लग सकती है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। इस समय अधिक मास चल रहा है तो इस समय कोई भी शुभ कार्य आरंभ ना करें। आज जल, केला और पीली मिठाई, इनका अगर दान करें तो बहुत शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। कहा है कि तेहरान में शांति समझौते पर बातचीत में बहुत अधिक समय ले लिया है और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी। कहा ईरान ने बातचीत में देरी की है, अब उसकी कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का जबरदस्त पलटवार। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर किया हमला। इससे पहले अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया था। ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। इस्माइल बगाई ने कहा में उठा धुएं का गुबार। सीजफायर के बावजूद लेबनान पर इसराइल लगातार हमले कर रहा है। लेबनान सीरिया में इसराइली हमले पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का बयान। कहा इसराइल के हमले तुर्की के लिए भी अब खतरनाक हैं। वैश्विक समुदाय तुरंत इसराइल की आक्रामकता को रोके। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में अंधाधुन फायरिंग। 12 लोगों की मौत, 9 घायल। 10 से ज्यादा संदिग्ध हमलावरों ने गाड़ी से उतरकर नागरिकों पर फायरिंग की। इंडोनेशिया में ईरानी जंग का असर देखने को मिल रहा। पेट्रोल की कीमतों में 32% की बढ़ोतरी हुई है। गैर सब्सिडी वाले ईंधन के दाम 30% से ज्यादा बढ़ गए हैं। आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सुबह 9:45 पीएम मोदी बैठक में शामिल होंगे। मीटिंग में 2047 के विकसित भारत विजन पर मंथन होगा। बैठक की थीम विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखी गई है, जो 4 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित होगा। इस बैठक में देशभर के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों, केंद्रीय मंत्रियों और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने की संभावना जताई गई। मीटिंग में मानव विकास के राष्ट्रीय विजन को राज्य स्तरीय योजनाओं के साथ जोड़ने पर भी जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया कॉन्क्लेव में कांग्रेस पर हमला किया। बोले 2014 में देश में कांग्रेस के कुचक्र से आजादी मिली थी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर धीमी विकास दर और घोटालों का आरोप लगाते हुए एनडीए सरकार की नियत, नीति और निर्णय की सराहना की। इंडिया कॉन्क्लेव के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया अपनी सरकार का फोकस, विकास की दौड़ में कोई पीछे न छूटे। मोदी ने कहा कि विकसित भारत एनडीए का संकल्प है, आज बड़े लक्ष्य तय कर रहा है हिंदुस्तान। बंगाल में बीजेपी की जीत का जश्न देखने को मिला। शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी को झालमुड़ी खिलाई। आज कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है। राहुल और खड़गे मौजूद रहेंगे। कांग्रेस महासचिव, राज्यों के अध्यक्षों और प्रभारी भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा राजनीतिक हालत मंथन पर चिंतन किया जाएगा। इसमें महंगाई जैसे मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई की रणनीति भी तैयार की जाएगी। मीटिंग में नीट, सीबीएसई की गड़बड़ियों को लेकर देशवासी विरोध प्रदर्शन की योजना पर भी सब बात हो सकती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। सूत्रों से खबर है कि 19 बागी लोकसभा सांसदों की सूची अब सामने आ चुकी है। इन बागी सांसदों की सूची में शत्रुघ्न सिन्हा, सयानी घोष और यूसुफ पठान का नाम भी शामिल है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर के विवाद। आज चुनाव आयोग मीनाक्षी नटराजन के मामले पर अपना फैसला सुना सकता है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से फैसला वापस लेने की अपील की है। कांग्रेस का दावा है कि मीनाक्षी के खिलाफ तेलंगाना का मामला अभी शुरुआती चरण में है। रांची से भी कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नामांकन वैध पाया गया है। कांग्रेस ने परिमल के नामांकन पत्र पर सवाल उठाए थे, नाम सही न लिखने का आरोप लगाया था। झारखंड में कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त का अब डर है। सभी 16 विधायकों को दिल्ली भेजा जाएगा। दिल्ली दौरे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय, सोनिया राहुल गांधी से भी मुलाकात। नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होंगे। डीके शिवकुमार भी दिल्ली पहुंचे, सोनिया राहुल प्रियंका से मुलाकात। कसमंडी पासी किला विवाद अब गर्मा चुका है। लाखन आर्मी के मुखिया सूरज पासी 31 जिलों की यात्रा पर निकल चुके हैं। लखन आर्मी कर रही है किले को शिव मंदिर घोषित करने की मांग। 31 जिलों की यात्रा के खिलाफ एआईएमआईएम और धर्मगुरुओं ने सवाल उठाए हैं। लखनऊ में लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने भी मार्च किया, किले तक जाने से पुलिस ने रोका। वाराणसी में यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संगठन को सरकार से ऊपर बताते हुए कहा कि संगठन ही चुनाव लड़ता और चुनाव जीतने के बाद संगठन ही तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी। बंगाल में बीजेपी में शामिल होने पहुंचे कई तृणमूल कांग्रेस के नेता। बीजेपी नेताओं ने हरा गुलाल लगाकर लौटाया। बाराबंकी में घटना की जबरदस्त चर्चा हो रही है। राजस्थान में आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंत्री किरोड़ी लाल महल का बचाव किया। बोले भजन लाल शर्मा टारगेट कर रहे हैं। कोचिंग टीचर खानसर और रोशन आनंद के विवाद पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि प्रशासन ने जल्दबाजी में दिखाई। मानता हूं खानसर की गलती होगी, लेकिन ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के महावीर इनक्लेव में अतिक्रमण को पीडब्ल्यूडी के बुलडोजर ने हटाया। मालवीय नगर में आग की घटना के बाद सीवी की एजेंसी अचानक एक्टिव हुई। दयारा बुग्याल ट्रैक से लापता एमबीए छात्रा बबीता पांडे की तलाश युद्धस्तर पर जारी है। बबीता की तलाश में 120 जवान, 3 ड्रोन तैनात किए गए हैं। गोई से 200 मीटर नीचे अंतिम लोकेशन मिली थी। बागेश्वर के पिंडारी ट्रैक

लापता पर्यटक की तलाश जारी है। घटनास्थल पर पुलिस द्वारा रिक्रिएशन कर साक्ष्य जुटाने में लगी है। मालवीय नगर अग्निकांड में एक और घायल ने दम तोड़ा, मृतकों का आंकड़ा 23 हो गया। बिहार के टेंडर घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है, 3 बड़े अफसर गिरफ्तार किए गए। ईडी के छापे में करोड़ों रुपए मिले थे। मुजफ्फराबाद के पास पाकिस्तानी सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, उसमें सवार सभी लोग मारे गए। दिल्ली NCR को आज से मिल सकती है गर्मी से राहत, मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्री मानसून गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। आज दिल्ली समेत हरियाणा पंजाब में तेज बारिश की उम्मीद है। आंधी तूफान बिजली कड़कने और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। आज पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पहुंचने वाला है नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से 14 जून तक दिल्ली पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश की संभावना जताई गई है, गर्मी से राहत मिलेगी। प्री मॉनसून बारिश से अगले कुछ दिन में तापमान 40 डिग्री से नीचे भी रहने की उम्मीद है। फिलहाल सूरज की तपिश के बीच हीट वेव से जूझ रहे हैं लोग। मौसम विभाग ने पहाड़ों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जम्मू कश्मीर में ओलावृष्टि का अनुमान जताया गया है। मुंबई के लिए गर्मी और उमस के बीच राहत भरी खबर यह है कि मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून के बाद मानसून की बारिश आ सकती है, मानसून दस्तक देने वाला है। मानसून के कारण केरल में 14 जून तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी है। कोलकाता में मूसलाधार बारिश, मानसून की एंट्री के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के भलेसा में भारी भूस्खलन हुआ, थाथरी के लोथन हाईवे पर यातायात पर असर में पड़ा। भूस्खलन के बीच जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ, मलबा हटाने में प्रशासन जुट गया है। इंदौर में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान टीम को बाहर करने पर विवाद हुआ, 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज, खिलाड़ियों के बीच मारपीट की घटना से हड़कंप मचा। गुरुग्राम में मामूली सड़क विवाद को लेकर निजी बस चालक और कैंटर से चला रहे सिख ड्राइवर के बीच मारपीट, घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। जानकारी के अनुसार एक कैंटर और निजी बस के बीच हल्की टक्कर हो गई थी, टक्कर के कारण निजी बस का साइड शीशा टूट गया, जिसके बाद कहासुनी के बाद विवाद शुरू हो गया। झांसी रेलवे की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, गढ़मऊ के पास घंटों एक ट्रेन रुकी रही, भीषण गर्मी में यात्री पैदल ही बाहर निकले, वीडियो सामने आया। उत्तर प्रदेश के झांसी में कुत्ते के काटने की शिकायत पर पड़ोसियों ने युवक को जमकर पीटा, वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली के सराय जुलैना रेड लाइट पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक हेड कांस्टेबल को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, सीसीटीवी से आरोपी वाहन की पहचान की गई। मधेपुरा में एक हॉस्टल में 6 साल के छात्र की हत्या का खुलासा हुआ है, अवैध संबंध का राज खुलने पर मासूम की जान ले ली गई। फिरोजाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी मौलाना पुलिस मुठभेड़ में ढेर किया गया, पैर में गोली लगने के बाद दबोचा गया। रुड़की में छतों से ताबड़तोड़ फायरिंग और पथराव का वीडियो वायरल हुआ, आरोपियों की पहचान में जुटी है पुलिस। गुजरात के वलसाड़ में डिलीवरी बॉय की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई, सोशल मीडिया पोस्ट और मोबाइल की जांच में जुटी है पुलिस। फिरोजाबाद शराब ठेके पर महिलाओं ने हंगामा किया, तोड़ फोड़ कर सड़क पर शराब फेंकी, आबकारी विभाग ने बताया राजनीति से प्रेरित मामला। अकोला में यूरिया के लिए रात भर लाइन में खड़े किसानों की मदद को आगे आया दुकानदार, नाश्ता और पानी उपलब्ध कराया। गाजियाबाद के MMG अस्पताल में चाकू लेकर एक महिला घुसी, इमरजेंसी में अफरा तफरी मची, वीडियो वायरल हुआ। गोरखपुर में मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण के दौरान टला बड़ा हादसा, रेलवे स्टेशन पर पलट गई क्रेन, चालक और ऑपरेटर सुरक्षित। गोंडा में SUV और बाइक की टक्कर, 4 लोगों की मौत, 2 लोगों के घायल होने की सूचना। बद्रीनाथ के जयकारों से गूंज उठा है उत्तराखंड, बद्रीनाथ यात्रा में रिकॉर्ड 10 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार हो चुका है। पिछले साल 25 जून को 10 लाख दर्शन का आंकड़ा पार हुआ था, इस बार 10 जून तक ही 10 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान विशाल के दर्शन किए। भक्तों की भीड़ के साथ साथ मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है, श्रद्धालुओं को सुविधा और सुलभ दर्शन कराने में जुटा है प्रशासन। खराब मौसम के बीच भी भक्तों का जोश कम नहीं हुआ, बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, अब तक करीब 35.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, केदारनाथ में सबसे ज्यादा 12 लाख लोगों ने दर्शन किए। आज फीफा फुटबॉल विश्व कप का आगाज होगा, अमेरिका कनाडा मेक्सिको की मेजबानी में 29 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता, पहली बार 3 देश कर रहे हैं संयुक्त मेजबानी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में होंगे कुल 104 मैच, ग्रुप स्टेज में होंगे 72 मुकाबले। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार खिताब के लिए 32 जगह भिड़ेंगी 48 टीमें, 20 जुलाई को अमेरिका के न्यूजर्सी में खेला जाएगा विश्व कप का फाइनल। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का, मेक्सिको टोरंटो लॉस एंजलिस में होगी ओपनिंग सेरेमनी, कई मशहूर सितारे दिखाएंगे जलवा। भारत में भी दिख रहा है फुटबॉल विश्व कप का फीवर, केरलम में गलियों सड़कों घरों तक दिख रहा फुटबॉल का क्रेज, चहेते खिलाड़ियों की तस्वीरों से पटे हैं इलाके।

0: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
5: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
4: सिंह जैसी
6: शक्ति मुझ में।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: इन एसोसिएशन विद
9: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
8: हिंट, बड़े आराम से
9: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
8: विमल, बोलो जुबा केसरी।
10: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
11: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
12: एक तरफ तो KGMU में जो कैंसर पेशेंट को इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो एक इंजेक्शन उनको ना देकर कहीं ना कहीं उसका हेरा फेरी की गई। साथ ही साथ कई मरीज ऐसे भी हैं जिनको इंजेक्शन लगाया नहीं गया जबकि उनके नाम पर इंजेक्शन रिलीज कर लिया गया। ये हालात हैं कैंसर पेशेंट्स के जो KGMU में आते हैं, जिसकी एक वृद्ध जांच चल रही है। इससे परे दूसरी जगह जो हार्ट के पेशेंट हैं उसमें स्टेंट डालने के लिए एक ही मरीज को 5-5 स्टेंट डाल दिए गए।
13: लोगों की जानकारी में आया है कि कुछ आयुष्मान के मरीजों में 5 स्टेंट का प्रश्न उठ रहा है। देखिए, कुछ विशेष परिस्थितियों में 5 स्टेंट भी लगते हैं कुछ समय के भीतर, लेकिन उसकी जांच करना जरूरी है क्योंकि आयुष्मान में 3 स्टेंट से ज्यादा का पैकेज अलाउड नहीं है। तो अगर विशेष परिस्थितियों में कोई चीज करनी होती है तो उसकी एक प्रक्रिया है जो नहीं की गई है। तो ये तो क्लियर है कि 5 स्टेंट जो लगाए गए हैं उनमें वृहद जांच की जरूरत है। जैसे पहला बिंदु यह है कि 5 स्टेंट लगे कि नहीं। अगर 5 स्टेंट लगे हैं तो फिर उनके इंडिकेशंस पूछे जाएंगे, वो एक दूसरा विषय होगा। दूसरा जो जिसकी बात की शंका ज्यादा है कि 5 लगे ही नहीं होंगे, 2 लगे हैं और 5 को दिखा दिया गया है 5 लगे हुए हैं और जो 3 स्टेंट एक्स्ट्रा HRS से आए उसको लोगों ने गायब कर दिया। अगर ऐसा है जिसकी संभावना है तो ये देखना है कि केवल आयुष्मान के लोग मिले हुए थे या विभाग का जो है जो टेक्निकल और फार्मास्यूटिकल स्टाफ था वो मिला था।
14: मुंबई में मॉडलिंग करने वाली मेरठ की लड़की ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि दोनों पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब शादी की बात आई तो लड़के ने धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। पीड़िता के मुताबिक 2016 से दोनों मुंबई में साथ रह रहे थे। इस दौरान उसके मॉडलिंग के पैसों पर बॉयफ्रेंड वासिल ऐश करता था। इतना ही नहीं, वो उन पैसों का बड़ा हिस्सा अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा करने में खर्च कराता था। लड़की के मुताबिक करीब 50 से 60 लाख रुपए उससे ऐंठे जा चुके हैं। पीड़िता का कहना है कि वासिल ने एक्टर बनाने के सपने दिखाकर उससे नजदीकियां बढ़ाई और शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए। इस दौरान पीड़िता 3 बार गर्भवती हुई, लेकिन हर बार वासिल बच्चा गिरवा देता। पीड़िता के मुताबिक 21 मई 2026 को वो आरोपी के घर पहुंची और करीब 15 दिन वहां रही। इसी दौरान मोहल्ले के लोगों से उसे पता चला कि वासिल की शादी पहले ही महविश नाम की लड़की से हो चुकी है। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी और उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की, उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उधर बरेली में भी एक महिला ने एक मुस्लिम शख्स पर पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि शख्स ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। पीड़ित ने ये भी आरोप लगाया है कि हकीकत सामने आने के बाद उसे धमकाया गया, दरगाह पर ले जाकर उसको जबरदस्ती कलमा भी पढ़ाया गया, वहीं धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया, जिसकी शिकायत अब उसने पुलिस से की है। यूपी में एक के बाद एक इस तरह के धर्मांतरण के मामलों को लेकर प्रशासन एक्शन में है, जहां जांच और गिरफ्तारी का दौर जारी है। आज तक ब्यूरो।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: दुनिया को अमन और शांति का फर्जी ज्ञान बांटने वाले कंगाल पाकिस्तान का अस्त्री और वैश्य चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान की कायराना फौज ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का सरेआम उल्लंघन किया और आधी रात के अंधेरे में घोस्त, कुनार और पक्तिका प्रांत के रिहायशी इलाकों पर बारूद की बरसात। पाकिस्तानी हवाई हमलों ने सोते हुए अफगानी नागरिकों के आशियानों को शमशान बना दिया। इस अमानवीय और बर्बर हमले में अब तक कई बेगुनाह नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद मासूम बच्चों और महिलाओं की है। घोस्त के स्पीर जिले के मैना गांव में हुए हमले की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक ही झटके में एक महिला और 7 से 10 साल की उम्र के 8 मासूम बच्चों को मौत की नींद सुला दिया गया। 10 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इस क्रूरता पर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और तालिबान प्रशासन भड़क उठा। करजई ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि इस्लामाबाद अपनी गलती और शत्रुतापूर्ण नीतियों का नतीजा भुगत रहा है और अफगानिस्तान के प्रति युद्ध व विनाश की नीति उसे ले डूबेगी। अब जरा पाकिस्तान के पाखंड का लेवल भी देखिए। ये वही पाकिस्तान है जो फिलिस्तीन और गाजा के नाम पर छाती पीटता है, दुनिया भर में इस्लाम का स्वयंभू ठेकेदार बनता है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कल ही रावलपिंडी में लेबनान के आर्मी चीफ को शांति और सुरक्षा का पाठ पढ़ा रहे थे और उसी रात मुनीर ने अपनी फौज को अफगानिस्तान के मासूम बच्चों पर बम गिराने का हुक्म दे दिया। यही नहीं, उसी दिन मुनीर की कातिल फौज पीओके में अंधाधुंध गोलियां बरसा रही थी, लाशें गिरा रही थी, वही रात में अफगानिस्तान में मासूमों का कत्ल करने का पाप कर रही थी। यानी एक तरफ शांति का ढोंग और दूसरी तरफ बेकसूरों और मासूमों का कत्लेआम। पाकिस्तानी सेना की इसी दरिंदगी पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बुरी तरह बेनकाब कर दिया। भारत ने यूएनएससी में दहाड़ते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की लैंडलॉक्ड यानी चारों तरफ से जमीन से घिरे होने की लाचारी का हथियार की तरह इस्तेमाल किया और हवाई हमले करके सैकड़ों बेगुनाह नागरिकों की जान ले ली। चारों तरफ से थू थू होने के बाद अब बौखलाया पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ रोना रो रहा है। वो पाकिस्तान जिसने दुनिया भर में आतंक फैलाया, अब अफगानिस्तानियों को आतंक का गढ़ बता रहा है। पाकिस्तान के राजदूत आसिम इफ्तिकार उल्टा अफगानिस्तान पर TTP और BLA को पनाह देने का बहाना बना रहे हैं। ऐसे झूठे आरोपों से पाकिस्तान न तो अपनी कायरता छुपा सकता है और न ही आतंकी होने का दाग मिटा सकता है। सच यही है कि जनरल आसिम मुनीर के हाथ बेगुनाह बच्चों और महिलाओं के खून से रंगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में जुल्म की इंतहा हो रही है, बेगुनाह लोगों पर गोलियों की बौछार की जा रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। पीओके में लोग काफी वक्त से बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हैं। वहां लोगों ने तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन की तैयारी की। JAAC यानी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले 9 जून को बंद का ऐलान किया गया, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने 5 जून को ही JAAC पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही पूरे POJK में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गयी। अगले ही दिन बड़े पैमाने पर नेता और

कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसे एक्शन के विरोध में 7 जून से उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए। पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी सेना को इन लोगों पर खुलेआम गोलियां बरसाने को कहा। फायरिंग में 27 लोगों की मौत हो गई। पीओजेके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ऐसी कार्रवाई को लेकर भारत ने गंभीर चिंता जताई है। साथ ही यूरोप स्थित मानवाधिकार संगठन ECHRD ने भी सवाल उठाए हैं और मांग की है कि इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विशेष बैठक बुलाई जाए। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

सेनाएं केशम द्वीप से तेहरान तक धमाके, ट्रंप ने कहा एपिक फ्यूरी से ज्यादा भीषण हमले। अमेरिकी हमले से बौखलाया ईरान, फिर से बंद किया हॉर्मुज। मिडल ईस्ट में 18 अमेरिकी बेसों पर मिसाइल ड्रोन अटैक, अमेरिकी पांचवें बेड़े पर हमले। बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका, विद्रोही सांसदों की लिस्ट में 19 नाम। सियानी घोष जैसे वफादारों ने छोड़ा साथ, ऋतव्रत ने किया 64 विधायकों के साथ होने का दावा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की अहम बैठक, एक्शन प्लान के साथ पहुंचेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, 2047 तक विकसित भारत की योजना पर मंथन। फुटबॉल के महामुकाबले का आज से आगाज, पहली बार तीन देश मेजबान अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में 48 टीमों के बीच 104 मैच, नॉकआउट में 32 टीम।

0: स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग प्राइम टाइम सुपर 8 में। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज सुपर 8 में क्या कुछ खास होने वाला है, कौन सी बड़ी अहम खबरें आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले मिडिल ईस्ट में फिर से जो युद्ध भड़का है बात उसकी करेंगे, और वहीं हाउसिंग स्ट्रेट फिर से बंद कर दिया गया है उस खबर पर भी विस्तार से करेंगे बात। पाकिस्तान के टुकड़े होंगे इस पर भी करेंगे बात। साथ ही आपको भी बताएंगे कि हिंदू ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट के बीच क्या चल रहा है। वही टीएमसी की टूट में अब कौन सा नया नाम सामने आया है और कौन टीएमसी के साथ है। बात नोएडा की भी होगी, जहां पर नोएडा से पहली उड़ान कब होने वाली है। दिल्ली की सड़क पर बेलगाम, और वही मणिपुर तनाव को लेकर भी पूरी खबर आपको बताएंगे। 6 लोगों की इस बीच मौत हो चुकी है। तो शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि युद्ध के मैदान से आ रही है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच फिर से लड़ाई छिड़ गई है। लगातार दूसरे दिन ईरान के दक्षिणी तट के लेकर तेहरान तक अमेरिका ने जबरदस्त हमले किए। समंदर में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट में 18 अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया। अल सलेम एयरबेस और अहमद अल जाबेर एयरबेस और साथ ही बहरीन में ईसा एयरबेस पर हमले का दावा किया गया है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने होर्मुज फिर से सील कर दिया है, और ईरान होर्मुज पार कर रहे दो अमेरिकी जहाजों पर हमले का दावा भी कर रहा है। तो दूसरा दिन आज फिर से लड़ाई काफी भड़क उठी है। ईरान के दक्षिणी तट से लेकर तेहरान तक अमेरिका ने जबरदस्त हमले किए। समंदर में दोनों सेनाएं आमने सामने अब आ चुकी हैं। तो लगातार दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में ईरान ने मिडिल ईस्ट में 18 अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया है। अल सलेम एयरबेस, साथ ही अहमद अल जाबेर एयरबेस और बहरीन में ईसा एयरबेस पर हमले का दावा किया गया है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने होर्मुज एक बार फिर से सील कर दिया है, जो कि काफी बड़ी दिक्कत है। वही ईरान होर्मुज पार कर रहे दो अमेरिकी जहाजों पर हमले का दावा भी कर रहा है, लेकिन अभी तक अमेरिका का इसको लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। तो एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, और अमेरिका ने यह सब इसलिए किया था क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर पर जो ईरान की तरफ से हमला किया गया उसके जवाब में ये अमेरिका ने रिटेलिएट किया है। और ऐसे में अब ये युद्ध एक तरफ से फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले बातचीत की खबर चल रही थी सामने, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो बातचीत में खलल जरूर पैदा हो सकती है। ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो कहां कहां पर कौन कौन से एयरबेस पर हमला किया गया है, चलिए अब आपको विस्तार से बता देते हैं। अभी युद्ध का लगभग 100 दिन से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, और ऐसे में ये आग भड़क उठी है। बंदर अब्बास, मिनाब, बंदर जस्क, सिरिक, कहां कहां पर आज हमला हुआ है वो आप समझिए। तेहरान में कंगन और साथ ही गोरगान बंदरगाह पर, केशम द्वीप पर हमला किया गया है, और ड्रोन से हमले किए गए, मिसाइलें दागी गई हैं, और उसका जवाब भी दोनों ही देश एक दूसरे को दे रहे हैं। ये वो जगहें हैं जहां पर आज हमला किया गया। बंदर अब्बास, मिनाब, बंदर जस्क और सिरिक, कंगन, तेहरान, गोरगान बंदरगाह और केशम द्वीप पर एक बार फिर से हमला किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि ईरान होर्मुज पार कर रहे दो अमेरिकी जहाजों पर हमले का दावा कर रहा है। अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। अशरफ, अभी क्या अपडेट है?
1: पूजा, जैसे आपने कहा कि ये बीती रात, जो अगर हम कहें तो 24 घंटे के भीतर अमेरिका का दूसरा हमला है। शुरुआत हुई थी एक अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराने से, जिसका दावा अमेरिका कर रहा था कि ईरान ने वो हेलीकॉप्टर मार गिराया। और उसके बाद जो है कल हमने देखा कि कई ठिकाने जो ईरान में काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी जो ये है कोस्टल लाइन के इलाके हैं जो स्टेट ऑफ हार्मूज के आसपास है। लेकिन आज थोड़ा सा इनका दायरा बढ़ाया गया, स्टेट ऑफ हार्मूज के किनारों के साथ साथ भीतर जो ईरान में है। अमेरिका का दावा है कि कई सैन्य ठिकानों और कई महत्वपूर्ण ठिकानों को उसने निशाना बनाया है। अमरीका का दावा है कि 47 जो टोमहॉक मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल हुआ है, और उससे जो है ईरान को काफी चोट पहुंचाएगी। जबकि ईरान ने भी इस कल की तरह आज भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। उनका कहना है कि उन्होंने अमेरिका के वार शिप्स जो हैं उनको निशाना बनाया है, जिनमें से एक मिसाइल अमेरिका के एक वार शिप पे लगा है और उसमें भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे अमरीका ने इनकार किया है। दरअसल पूजा, वजह अब क्या है इसकी, जो पिछले कुछ दिनों के दौरान जैसे आपने कहा बातचीत के बीच ये युद्ध दोबारा बढ़ गया है।
0: एक बड़ी खबर का सीधा रुख करते हैं। ईरान ने एक बार फिर से जॉर्डन पर हमला किया। जॉर्डन के कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई है। जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस और साथ ही मुवाफाक सॉल्टी एयरबेस पर जबरदस्त धमाकों की खबर सुनाई गई। वही जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ईरानी मिसाइलों को नष्ट करने का दावा भी किया है। एक तरफ ईरान होर्मुज पार कर रहे दो अमेरिकी जहाजों पर हमले का दावा कर रहा है, तो वही जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ईरानी मिसाइलों को भी नष्ट किया है। ईरानी हमले के बाद जॉर्डन सेना का बयान भी सामने आया है और जबरदस्त एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। ईरान ने एक बार फिर से जॉर्डन पर हमला किया और इसके बाद जॉर्डन के कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। तो वही मिडिल ईस्ट जंग को लेकर एक और बड़ी खबर। ईरान ने एक बार फिर से बहरीन पर हमला किया। हमले के बाद बहरीन में कई जगहों पर धमाके की आवाज सुनी गई। ईरानी हमले के बाद बहरीन सरकार ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। बहरीन में बज रहे सायरन की आवाज सुनाई दी गई है और ऐसे में काफी हबड़ा तबड़ी का वहां माहौल हो गया और लोगों को सही जगह पर जाने को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। ईरानी हमले को लेकर बहरीन में भी अलर्ट के सायरन सुनाई दिए गए। सरकार ने अलर्ट जारी किया है। बहरीन में कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई। तो अमेरिका को लेकर ईरान का एक और दावा सामने आया है। बहरीन में अमेरिका के पांचवें बेड़े पर हमला किया। ईरान ने कई ड्रोन से अमेरिका के पांचवें बेड़े पर बड़ा हमला करने का दावा किया है। आईआरजीसी ने कहा है कि अमेरिका द्वारा सीजफायर का उल्लंघन करने पर हमला किया गया। ईरानी सेना ने दावा किया है कि ड्रोन हमले में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट से जुड़े कम्युनिकेशन एंटीना को निशाना बनाया गया। ईरान ने यह भी दावा किया है कि ऑपरेशन के दौरान पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े रडार इंस्टॉलेशन पर भी हमले किए गए हैं। अमेरिकी कम्युनिकेशन और रडार को निशाना बनाया गया है। सीजफायर उल्लंघन करने पर यह हमला किया गया है, ईरान का यह साफ तौर पर कहना है। और साथ ही ईरान ने होर्मुज को भी सील कर दिया है। जहाजों की कोई एंट्री नहीं हो रही है। दावा यह किया जा रहा है कि होर्मुज पार कर रहे दो अमेरिकी जहाजों पर हमला भी ईरान ने किया है। अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, अभी कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर ईरान ने हमला किया है और आगे कौन कौन सी जगह को ईरान निशाना बना सकता है? अशरफ, आपको आवाज आ रही है? चलिए अशरफ के पास चलेंगे हम, आपको और भी जानकारी देंगे। वही ये ताजा वीडियो आप देख रहे हैं और वही ईरान ने एक बार फिर से कुवैत पर भी हमला किया है। कुवैत में हमले के बाद कई जगहों पर धमाके की आवाज सुनी गई। हमले के बाद कुवैत में अलर्ट जारी किया गया। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम हमलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। वही कुवैती सेना का कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हवाई लक्ष्यों को निशाना बना रहा है। हमले के बाद कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनाई दी गई, सायरन सुनाई दिए गए और लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। कुवैत एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट भी कर रहा है और दुश्मन के हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाया जा रहा है। तो वही ईरान अमेरिका जंग को लेकर एक और बड़ी खबर। आपको बता दें कि अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हमला किया। ईरान के करज में हमले के बाद धमाकों की आवाज सुनी गई। करज के कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। एक बार फिर से अमेरिका पर हमला किया है और करज में कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। इससे पहले 18 अमेरिकी एयरबेस को भी निशाना बनाने का दावा ईरान ने किया है। वहीं अल सलीम एयरबेस, अहमद अल जाबेर एयरबेस और बहरीन में ईसा एयरबेस पर भी हमले का दावा किया और करज के भी कई इलाकों में धमाके की आवाज सुनी गई है। ईरान के करज में धमाकों की आवाज़।

0: अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ अभी बताइएगा कौन कौन सी जगहों को ईरान निशाना बना रहा है, कहां कहां पर ईरान अभी तक हमले कर चुका है।
1: कि न सिर्फ वो खाड़ी के में अलग अलग जो बेसिस हैं अमेरिका के उनको निशाना लगातार बनाएगा जब भी उन पर कोई हमला होता है, चाहे इसराइल का हो या फिर अमेरिका का हो, और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में जिस अंदाज से अब ईरान ने घोषणा की है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज सभी जहाज़ों की आवाजाही के लिए, जो समुद्री जहाज़ है उनके लिए बंद है, तो जो भी जहाज़ निकलने की कोशिश करेगा, ये वार्निंग दी है ईरान ने, उन पर हमला किया जाएगा। तो यहाँ तक कि ईरान का ये भी दावा है कि दो अमरीकी वेसल्स ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में मूव करने की कोशिश की थी, उन पर उन्होंने जो है हमला किया है रॉकेट से। तो जाहिर है कि अब ये तनाव जो है कहीं ना कहीं बहुत बढ़ रहा है। यहाँ दूसरी तरफ अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी धमकी दी है कि वो आने वाले मतलब 24 घंटों के भीतर और एक हमला जो है वो ईरान पर हो सकता है, और उसी के चलते जो है ईरान भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार बैठा है। हमने कल भी देखा कि संदाज से उन्होंने दायरा इसका बढ़ाया था, न सिर्फ बहरीन, कुवैत के साथ साथ जो है उन्होंने जॉर्डन में भी जो है अमेरिकी बेस को निशाना बनाया था। यहाँ तक कि दावा था कि 35 क्लिप हैंगर्स जो एयरबेस अमेरिका की जॉर्डन में है उसको भी निशाना बनाया, उसको तबाह किया गया। तो जाहिर है कि ये तनाव जो है अब सीधे तौर पर जो है बढ़ ही रहा है, और इसका निर्भरता अब अमेरिकी राष्ट्रपति है। लेकिन दरअसल हमारे दर्शकों को ये समझना जरूरी होगा, आखिर सीज फायर के बीच में क्यों अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हुए दोबारा जो है ईरान पर हमला करने के लिए। उसकी एक ही वजह है, क्योंकि जिस अंदाज से पिछले कई हफ्तों से, करीब 5 हफ्तों से बातचीत की बात हो रही है, डील की बात हो रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई बार कहा कि वो कुछ ही दिन जो है ईरान के साथ डील से दूर है, लेकिन उस बीच जो है कहीं ना कहीं जिस अंदाज से दोनों देशों की तरफ से अपने अपने पॉइंट्स को, अपने अपनी लिस्ट्स को सामने रखा गया है, वो कहीं मेल नहीं खाता है। अब अमेरिका का आरोप है कि सीधे तौर पर डिप्लोमेसी पर ईरान भरोसा नहीं कर रहा है, इसलिए जो है ताकत का इस्तेमाल करके उनको जो है कमजोर करके उनको डील के लिए आमादा किया है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं देखिए, अमेरिका को लेकर ईरान ने बड़ा दावा किया है। दरअसल अमेरिका के 18 ठिकानों पर ईरान ने बड़ा हमले करने का दावा किया है। IRGC ने दावा करते हुए कहा है कि हमारी एरोस्पेस फोर्स और नेवी ने दो चरण में ऑपरेशन चलाकर हमला किया। मिडिल ईस्ट के अल सलेम एयरबेस, अहमद अल जाबेर एयरबेस और शेख ईसा एयरबेस पर मौजूद अमेरिका के 18 अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया गया। 18 ठिकानों पर अमेरिका के हमला किया गया है। मिडिल ईस्ट के US एयरबेसों पर अटैक किया गया, ड्रोन दागे गए हैं, 18 अहम सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो ये ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं, मिसाइल से अटैक किया गया है, और अमेरिका को लेकर IRGC ने यह बड़ा दावा किया है। कहा है कि हमारी एयर स्पेस फोर्स और नेवी ने दो चरण में ऑपरेशन चलाकर यह हमला किया है, 18 ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। ये हमले की तस्वीरें ताजा आप देख रहे हैं। तो अमेरिका ने नए हमले से पहले ईरान को चेताया, फिर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। ईरान के अलग अलग शहरों को निशाना बनाया गया, लगातार दूसरी बार आज भारी बमबारी की गई, और ईरान भी जवाबी कार्रवाई का हमला दे रहा है।
2: सीज फायर के बाद उम्मीद थी कि हालात संभलेंगे, लेकिन अमेरिका ने अपने हेलीकॉप्टर को टारगेट बनाए जाने के बाद ईरान पर फिर से हमला बोला है। सीज फायर के बाद जारी लड़ाई का आज दूसरा दिन है। अमेरिकी फौज ने ईरान के बंदर अब्बास, केशम, हिंगम, कंगन, गुरगान बंदरगाह, सिरी, मिनाब और असलूब ए पर भी भारी बमबारी की है। ईरान की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक केशम और हिंगम में मिसाइल दागे गए हैं, कंगन और गोरेगन बंदरगाह पर भी कई धमाके सुने गए हैं। IRNA की माने तो बंदर अब्बास में लगातार दूसरे दिन अमेरिका ने हमला किया है। आज वहां एयरपोर्ट और एयरबेस को निशाना बनाया गया है। धमाके मिनाब शहर में भी सुने गए हैं। यह वही शहर है जहां सीज फायर से पहले हुई लड़ाई में एक धमाके में 165 से ज्यादा स्कूली बच्चों की मौत हुई थी। बीती रात ट्रंप का बयान आया, उन्होंने कहा कि अमेरिकी फाइटर जेट लगातार ईरान के आसमान के ऊपर मौजूद हैं, बमबारी की पूरी तैयारी है।
3: But we hit them hard yesterday and We're going to hit them again hard today in case you miss, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid presidents, I have to say that.
2: ट्रंप के इस बयान के चंद घंटे बाद ही ईरान में धमाके पर धमाके होने लगे। आज तक पेरो।
0: तो वही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि डील साइन करना ईरान के लिए युद्ध से ज्यादा अच्छा विकल्प है।
3: Now look, I've been working with Iran for a number of months, and they should sign their deal. It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear weapon. In fact, it totally prohibits them from ever having a nuclear weapon. I don't know what they're doing.
0: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ती हुई महंगाई पर एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है। महंगाई के ताजा आंकड़ों पर सवाल पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, नहीं मुझे ये पसंद है, मुझे महंगाई पसंद है। मई में अमेरिका की उपभोक्ता महंगाई दर 4.2% पर पहुंच गई, जो कि पिछले दो वर्षों का उच्चतम स्तर है। ट्रंप का ये बयान राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है। डेमोक्रेट नेताओं ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि ये आम लोगों की आर्थिक परेशानियों के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है। ट्रंप ने कहा कि मुझे महंगाई पसंद है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने बोला है, आई लव इन्फ्लेशन। और ऐसे में विवाद अब काफी ज्यादा वहां पर बढ़ गया है। महंगाई को लेकर ट्रंप ने चौंकाने वाला बयान दिया।
3: I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now, something you didn't know. You know, we've been taking out millions of barrels of oil. Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now.
0: तो वही ओमान तट पर ऑयल टैंकर स्टेबेलो पर अमेरिकी सेना के हमले के मामले में भारत सरकार कड़ी निंदा कर रहा है। दरअसल दिल्ली में अमेरिकी राजनयिक चार्ल्स डी अफेयर्स को तलब किया और इस कमर्शियल ऑयल टैंकर शिप पर कुल 28 लोग सवार थे, जिनमें 24 भारतीय थे। अमेरिकी हमले के बाद 21 भारतीयों को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 3 भारतीय अब भी लापता है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर बनाए हुए है। खोज और बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है भारतीय अधिकारी। वहीं भारत के नाराजगी जताने के बाद अमेरिकी सेना ने सफाई भी दी है कि ऑयल टैंकर क्रू बार बार दिए जा रहे निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया। ऑयल टैंकर पर ईरान से तेल ले जाने का आरोप लगाया गया है। चलिए अब बात कर लेते टीएमसी और ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी के हाथ से तृणमूल कांग्रेस रेत की तरह फिसल रही है। विधायकों की बगावत के बाद अब सांसदों के तेवर भी सख्त नजर आ रहे हैं। दरअसल पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से 19 सांसदों की एक लिस्ट आज तक को मिली है, जो कि एक अलग गुट बनाने की योजना बना रहे हैं। इस लिस्ट में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान के साथ साथ दो ऐसे नेता भी शामिल हैं जिन्हें लंबे समय से ममता बनर्जी का करीबी माना जा रहा था। शत्रुघ्न सिन्हा और सायनी घोष। ये संकट तब और गहरा गया है जब सायनी घोष, प्रतिमा मंडल और माला रॉय और साथ ही मिताली बाग ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। जबकि ममता गुट का दावा है कि शत्रुघ्न सिन्हा और दीपक अधिकारी अभी भी मजबूती से ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए हैं। इस बीच अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली दौरे के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कांग्रेस टीएमसी गठबंधन की संभावना पर चर्चा है। और चलिए अब बात कर लेते हैं खेल जगत की। आज से फीफा विश्व कप की शुरुआत हो रही है और ओपनिंग मैच के मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला है। इस बीच इस बार फीफा विश्व कप की मेजबानी 3 देश कर रहे हैं, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। और इन तीनों देशों की ओपनिंग सेरेमनी भी होगी। पहली ओपनिंग सेरेमनी मेक्सिको सिटी में होने वाली है, दूसरी ओपनिंग सेरेमनी कनाडा के टोरंटो में और तीसरी सेरेमनी अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगी। भारतीय समय के अनुसार आज रात 11 बजे से आप इस आयोजन को देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वक्त हो गया है सुपर 8 में फटाफट खबरों का। यूपी के फिरोजाबाद में शराब की दुकान पर महिलाओं पर धावा बोल दिया। महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकान से घर परिवार में दिक्कत हो रही है। अचानक हुए इस हमले से दुकान मालिक भाग खड़ा हुआ। कुछ ही देर में शराब और बियर की बोतल केन निकालकर रोड पर फेंक दी गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कानून व्यवस्था और यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने हुए रेलबाजों का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हापुड़ रोड पर एक खुली जीप में सवार कुछ युवकों ने करीब 2 किलोमीटर तक सड़क पर जमकर उत्पात मचाया और स्टंटबाजी की। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में मिंगिंग टूटिंग सड़क पर भूस्खलन के कारण हुई एक दुखद सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर हमले और हिट एंड रन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा और सनसनीखेज मामला दक्षिण पूर्वी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके से सामने आया, जहां ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को तेज रफ्तार कार ने कुचलने की कोशिश की। हादसे को अंजाम देने के बाद आरोपी चालक कार समेत मौके से फरार। महाराष्ट्र के बीड से जहां पर बीड परली हाईवे पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य से उड़ने वाली धूल के कारण एक किसान की 1.25 एकड़ में लगी पपीते और मिर्च की फसल भारी मात्रा में बर्बाद हो गई। बार बार महंगी दवाइयों का छिड़काव करने के बाद भी जब कोई फायदा नहीं हुआ तो हताश और गुस्से में आकर किसान ने पपीते और मिर्च की खड़ी फसल को अपने हाथों से उखाड़ फेंका। हरिद्वार के मंगलोर क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प का नया वीडियो सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में फायरिंग और पथराव की घटना कैद होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। यह घटना 7 जून को हुई थी, जब किसी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद 2 पक्षों के बीच टकराव बदल गया। अगली खबर गुरुग्राम के फरुखानगर इलाके से, जहां पर एक मामूली सड़क हादसे के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि निजी बस के चालक और कंडक्टर ने कैंटर चालक के साथ मारपीट की, जिसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। यूपी के झांसी में कुत्ते के काटने की शिकायत पर पड़ोसियों ने युवक को जमकर पीटा, वीडियो तेजी से वायरल। सुपर हिट में यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

तो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
9: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
10: लाइन डेसर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेसर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
11: लाइन डेसर्ट किंग डेट्स,
10: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
12: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
13: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
14: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
12: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
15: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
13: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
12: जहां खबर वहां खबरदार।
16: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
12: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल।
18: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी।
12: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल।
18: CBSE के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
12: छात्रों को दिया मंच।
18: उज्मा हमारे साथ कोटा से और अदिति मुंगेर से हैं और तानिया कोटा से हैं और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
19: मैम ये देखिए, इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
20: IIT मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
12: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर।
18: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक, और अब सरकार की तरफ से CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
12: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।
21: वैभव इंडिया खेलेंगे ये सबको पता था, इतनी जल्दी खेलेंगे ये नहीं पता था।
22: हाँ सर, बहुत खुश है सर, और आपको भी प्रणाम करते हैं सर। वैभव के लिए आप जो बोलते हैं का स्पोर्ट्स तक की क्या पर्स पर।
21: जी,
22: हम पूरा सर आपका देखते रहते हैं, तो आपका भी सर आशीर्वाद वैभव को लगा, और हम लोग बहुत खुश हैं सर। इसी के लिए इतना मेहनत बच्चा किया था सर।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। राष्ट्रपति ट्रंप और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ की चेतावनी के बाद कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी हमलों की ईरानी समाचार एजेंसियों ने की पुष्टि। एजेंसी ने बताया कि ईरान के किश द्वीप और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज सुनी गई। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद ईरान के सिरिक और मेनाब क्षेत्रों से बड़े विस्फोटों की खबरें आई सामने। हमले के तुरंत बाद देश के कई हिस्सों में जवाबी कार्रवाई के लिए एंटी एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम को तुरंत एक्टिव कर दिया गया। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। कमान ने कहा कि जो भी जहाज वहां से गुजरने की कोशिश करेगा उस पर गोली चलाई जाएगी। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव लगातार जारी और अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के पास सतेबेलो नाम के ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला किया जिससे जहाज के इंजन रूम में आग लगी। इस टैंकर पर 28 क्रू मेंबर थे जिसमें 24 भारतीय शामिल थे। हादसे के बाद 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि 3 भारतीय अब भी लापता। इस घटना पर भारत सरकार ने कड़ी नाराजगी जताई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। मामले की गंभीरता देखते हुए भारत ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी राजदूत को तलब किया। ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया। कहा कि तेहरान ने शांति समझौते पर बातचीत में बहुत अधिक समय लिया और अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी। कहा ईरान ने बातचीत में देरी की, अब कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का जबरदस्त पलटवार। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर किया हमला। इससे पहले अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी ठिकानों को बनाया था निशाना। ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। इस्माइल बगाई ने कहा देश की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटेगी सेना। अमेरिका पर बार बार युद्धविराम उल्लंघन का आरोप लगाया। यूरोप के नए प्रतिबंध पर रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया का बयान। नए प्रतिबंधों में कामयाब नहीं होगा यूरोपीय संघ, रूस देगा कड़ा जवाब। रूस के चेबोक्सारी में सैन्य प्लांट पर यूक्रेन का बड़ा हमला। धू कर जली इमारत, तेल ठिकानों के बाद सैन्य प्लांट किया हमला। रूस की राजधानी मॉस्को में कार में बम धमाका, कार में लगी भीषण आग, एक व्यक्ति की मौत। रूसी अधिकारियों ने विस्फोट मामले की शुरू की जांच। लेबनान में इसराइल की भीषण हमला, होमीन अल फोका में उठा धुएं का गुबार। सीजफायर के बावजूद लेबनान पर हमले कर रहा इसराइल। लेबनान सीरिया में इजरायली हमले पर टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इसराइल के हमले टर्की के लिए भी खतरा, वैश्विक समुदाय तुरंत रोके इसराइल की आक्रामकता। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में अंधाधुंध फायरिंग, 12 लोगों की मौत, 9 घायल। 10 से ज्यादा संदिग्ध हमलावरों ने गाड़ी से उतरकर नागरिकों पर फायरिंग की। इंडोनेशिया में ईरान जंग का असर, पेट्रोल की कीमतों में 32% की बढ़ोतरी। गैर सब्सिडी वाले ईंधन के दाम 30% से ज्यादा बढ़े। पेट्रोल की कीमतों में 32% की बढ़ोतरी, गैर सब्सिडी वाले ईंधन के दाम 30% से ज्यादा बढ़े। आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की करेंगे अध्यक्षता। सुबह 10:45 पीएम मोदी बैठक में शामिल होंगे। मीटिंग में 2047 के विकसित भारत के रोडमैप पर मंथन। बैठक की थीम विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखी गई है जो कि 4 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित होगा। इस बैठक में देश भर के मुख्यमंत्रियों, उप राज्यपालों, केंद्रीय मंत्रियों और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने की संभावना। मीटिंग में मानव विकास के राष्ट्रीय विजन को राज्य स्तरीय योजनाओं के साथ जोड़ने पर भी जोर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने एनडीए कॉन्क्लेव में किया कांग्रेस का हमला। बोले 2014 में देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर धीमी विकास दर और घोटालों का आरोप लगाते हुए एनडीए सरकार की नियत, नीति और निर्णय की सराहना की। एनडीए कॉन्क्लेव के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बताया अपनी सरकार का फोकस, विकास की दौड़ में कोई नहीं छूटे पीछे। पीएम ने कहा कि विकसित भारत एनडीए का संकल्प, आज बड़े लक्ष्य तय कर रहा है देश। बंगाल में बीजेपी की जीत का भी दिखा जश्न। शुभेंदु अधिकारी ने पीएम को खिलाई झालमुड़ी। आज कांग्रेस की एक अहम बैठक, राहुल खड़गे रहेंगे मौजूद। कांग्रेस महासचिव राज्यों के अध्यक्षों और प्रभारी भी होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा राजनीतिक हालात पर मंथन किया जाएगा। इसमें महंगाई जैसे मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई की रणनीति भी तैयार की जाएगी। मीटिंग में नीट सीबीएसई की गड़बड़ियों को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की योजना पर बात हो सकती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका। सूत्रों से खबर, 19 बागी लोकसभा सांसदों की सूची आई सामने। बागी सांसदों की सूची में शत्रुघ्न सिन्हा, सयानी घोष और यूसुफ पठान का नाम शामिल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद, आज चुनाव आयोग मीनाक्षी नटराजन के मामले पर फैसला सुना सकता है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से फैसला वापस लेने की अपील की। कांग्रेस का दावा है कि मीनाक्षी के खिलाफ तेलंगाना का मामला अभी शुरुआती चरण में। रांची से भी कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नामांकन वैध। कांग्रेस ने परिमल के नामांकन पत्र पर उठाए थे सवाल, नाम सही ना लिखने का आरोप लगाया था।
झारखंड में कांग्रेस को विधायकों की खरीद फरोख्त पर डर, सभी 16 विधायकों को दिल्ली भेजेगी। दिल्ली दौरे पर तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय, सोनिया, राहुल गांधी से मुलाकात की, नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। डीके शिव कुमार भी पहुंचे दिल्ली, सोनिया, राहुल, प्रियंका से की मुलाकात। कसमंडी पासी किला विवाद गरमाया, लाखन आर्मी के मुखिया सूरज पासी 31 जिलों की यात्रा पर निकले। लाखन आर्मी के पर कर रही है किले को शिव मंदिर घोषित करने की मांग, 31 जिलों की यात्रा के खिलाफ एआईएमआईएम और धर्मगुरुओं ने उठाए सवाल। लखनऊ में लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने भी किया मार्च, किले तक जाने से पुलिस ने रोका। वाराणसी में यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संगठन को सरकार से बताया ऊपर, कहा संगठन ही चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद संगठन ही तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी। बंगाल में बीजेपी में शामिल होने पहुंचे कई तृणमूल नेता, बीजेपी नेताओं ने हरा गुलाल लगाकर लौटाया बाराबनी में, घटना की जबरदस्त चर्चा। राजस्थान में आरपीएल सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का किया बचाव, बोले भजनलाल शर्मा कर रहे टारगेट। कोचिंग टीचर फैजल खान और रोशन आनंद के विवाद पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा प्रशासन ने दिखाई जल्दबाजी, मैं मानता हूं खान सर की गलती होगी, ऐसा घटना नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के महावीर एनक्लेव में अतिक्रमण को पीडब्ल्यूडी ने बुलडोजर से हटाया और मालवीय नगर में आग की घटना के बाद सिविक एजेंसी अचानक एक्टिव मोड में आई। दयारा बुग्याल ट्रैक से लापता एमबीए छात्रा बबीता पांडे की तलाश युद्धस्तर पर जारी, बबीता की तलाश में 120 जवान और 3 ड्रोन तैनात, गोई से 200 मीटर नीचे मिली अंतिम लोकेशन। बागेश्वर के पिंडारी ट्रैक पर लापता पर्यटक की तलाश जारी, घटनास्थल पर पुलिस द्वारा रिक्रिएशन कर साक्ष्य जुटाने की कोशिश। मालवीय नगर अग्निकांड में एक और घायल ने तोड़ा दम, मृतकों का आंकड़ा हुआ तेज। बिहार के टेंडर घोटाले में बड़ा एक्शन, 3 बड़े अफसर गिरफ्तार, ईडी के छापे में मिले थे करोड़। मुजफ्फराबाद के पास पाकिस्तानी सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसमें सवार सभी लोग मारे गए। दिल्ली NCR को जल्द मिलेगी गर्मी से राहत, मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्री मानसून गतिविधियां तेज होने की उम्मीद। आज दिल्ली समेत हरियाणा और पंजाब में तेज बारिश की उम्मीद की जा रही है। आंधी तूफान, बिजली कड़कने और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना। आज पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पहुंचने वाला है नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से 14 जून तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश की संभावना। प्री मानसून बारिश से अगले कुछ दिन से तापमान 40 डिग्री से नीचे आने की उम्मीद। फिलहाल सूरज की तेज तपिश के बीच हीट वेव से जूझ रहे हैं लोग। मौसम विभाग ने पहाड़ों के लिए भी जारी किया अलर्ट, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में ओलावृष्टि का जताया अनुमान। मुंबई के लिए गर्मी और उमस के बीच राहत भरी खबर, मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून के बाद आ सकते हैं मानसून की बारिश। मानसून के कारण केरल में 14 जून तक भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी। कोलकाता में मूसलाधार बारिश और मानसून की एंट्री के साथ तापमान में गिरावट। जम्मू कश्मीर के भलेसा में भारी भूस्खलन, थाथरी किलोथ्रन हाईवे पर यातायात पर असर, भूस्खलन के बीच जानमाल का नुकसान नहीं, मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। इंदौर में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान टीम को बाहर करने पर हुआ विवाद, 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज, खिलाड़ियों के बीच मारपीट की घटना से हड़कंप। गुरुग्राम में मामूली सड़क विवाद को लेकर निजी बस चालक और कैंटर चला रहे 6 ड्राइवर के बीच मारपीट हुई और घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल। जानकारी के अनुसार एक कैंटर और निजी बस के बीच हल्की टक्कर हो गई थी, टक्कर के कारण निजी बस का साइड का शीशा टूट गया, इसके बाद कहासुनी के बाद विवाद शुरू हुआ। झांसी रेलवे की बड़ी लापरवाही, गढ़माओं के पास घंटों रुकी ट्रेन, भीषण गर्मी में पैदल निकले यात्री, वीडियो आया सामने। यूपी के झांसी में कुत्ते के काटने की शिकायत पर पड़ोसियों ने युवक को जमकर पीटा, वीडियो वायरल। फिरोजाबाद शराब ठेके पर महिलाओं का हंगामा, तोड़फोड़ कर सड़क पर फेंकी शराब, आबकारी विभाग ने बताया राजनीति से प्रेरित मामला।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि,

में संचरण कर रहे हैं प्रातः 8:16 तक, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। आज दक्षिण दिशा की तरफ दिशाशूल है, यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।

पक्ष मजबूत होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृषभ राशि, काम की अधिकता रहेगी, रिश्तों की समस्या से बचिएगा, करियर में परिवर्तन की स्थिति बन रही है। अगर आज केले का दान कर दें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोई मनोकामना पूरी होगी, काम की रुकावट दूर होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

योग हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंता आपकी दूर होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग

सिंह राशि धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्याएं कम होंगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

आ सकती है, बड़ों की सलाह मान लेना फायदेमंद होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

तकते हैं, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

योग हैं, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, पुराने विवाद समाप्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

मानसिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।

ऑफिस में विवादों से बचाव करें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

स्थिति अच्छी रहेगी। कोई रुका हुआ काम इस समय आपका बन जाएगा। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ राम कथा से 2027 की सियासी महाभारत का संदेश सुनाते हैं। जिस अयोध्या का राम मंदिर बनवाकर भी 24 में जाति में वोट बंटने से अयोध्या से जुड़ी लोकसभा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, वहां राम के नाम पर अस्त्र शस्त्र सत्ता और विपक्ष में चलने लगा। पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, लिखा राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज किया। जब लखनऊ में बीजेपी विधायक की तरफ से कराई जाती राम कथा में मुख्यमंत्री पहुंचे तो नया सियासी संदेश सुनाई दिया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं निगेटिव ताकतें रावण काल की तरह सिर उठाएंगी तो उजाड़ करेंगी। क्या योगी का निशाना विपक्ष है, जहां पर वो खर दूषण मारीच ताड़का तक की बात करके एक ऐसी राम कथा का जिक्र करते हैं जिसमें चाचा मामा का नाम आते ही तंजनुमा हंसी आती है। इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं, जब दावा हो रहा है कि हिंदू लड़कियों ही नहीं हिंदू लड़के तक को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, तब मुख्यमंत्री योगी लव जिहाद के खिलाफ श्री राम से सीख लेने को कहते हैं। लव जिहाद ही नहीं बल्कि त्रेता युग में खर दूषण मारीच के जरिए कलयुग में लैंड जिहाद तक का जिक्र योगी आदित्यनाथ करते हैं।
5: राजधानी बेलफास्ट सुलग रहा है, बसों में आग लगा दी गई, कई कारें फूंक दी गई, एक एक कर कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी दहक उठी। यह हिंसा तब भड़की जब सोमवार को वहां चाकू वाले हमलावर ने एक शख्स का सिर काटने की कोशिश की। आरोप एक सुडानी शरणार्थी पर है। उसी वारदात के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मंगलवार को उत्तरी आयरलैंड में इमिग्रेशन विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए। बड़े पैमाने पर हिंसा फैल गई। सुरक्षा बलों से टकराव के दौरान उग्र प्रदर्शनकारियों ने बस और कई अन्य गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कुछ इलाकों में घरों को निशाना बनाया, खिड़कियां तोड़ी और दरवाजे तोड़ दिए गए।

सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों से टकराते रहे, नकाबपोश युवक हमले करते रहे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस हमले की निंदा की है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

ईरान अमेरिका में दूसरे दिन जंग, समंदर में आमने सामने दोनों सेनाएं, केशम द्वीप से तेहरान तक धमाके। ट्रंप ने कहा एपिक फ्यूरी से ज्यादा भीषण हमला। अमेरिकी हमले से बौखलाया ईरान, फिर बंद किया हॉर्मुज। मिडल ईस्ट में 18 अमेरिकी बेसों पर मिसाइल ड्रोन अटैक, अमेरिकी पांचवें बेड़े पर हमले। बंगाल में ममता बैनर्जी को बड़ा झटका, विद्रोही सांसदों की लिस्ट में 19 नाम। शत्रुघ्न सिन्हा और सियानी घोष जैसे वफादारों ने छोड़ा साथ। मित्रव्रत ने किया 64 विधायकों के साथ होने का दावा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की अहम बैठक। एक्शन प्लान के साथ पहुंचेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। 2047 तक विकसित भारत की योजना पर मंथन।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या आज बुलेटिन में शामिल रहेगा। आगे आपको दिखाएंगे अमेरिका और ईरान में तेज घमासान शुरू हो चुका है, मिसाइल ड्रोन से कहां कहां घातक प्रहार किया जा रहा है। साथ ही रुख करेंगे पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन का, कैसे शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ बढ़ा है गुस्सा, ये भी आपको दिखाएंगे। इस बुलेटिन में कई अहम सियासी खबरें होंगी। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की तमाम खबरों पर विस्तार से नजर डालें। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। हांसी में सरेआम जिम संचालक की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने जिम संचालक को गोलियों से भून डाला और फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक आज सुबह हमलावरों ने जिम संचालक को 10 गोलियां मारी। इस फायरिंग के दौरान एक लड़की भी घायल हो गई है और इस वारदात की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। हरियाणा पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमन, क्या है ये, आपसी रंजिश का मामला है या फिर कुछ और?
1: देखिए, पुलिस ने इसमें हर पहलू से जांच कर रही है क्योंकि कपिल है ये लड़का जिसकी जान गई है, जिम संचालक ये था और 27 से 28 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। और जो एक निकलकर जानकारी आई है कि इसकी 3 साल पहले कोर्ट मैरिज हुई थी, जो एक तरीके से विवादित भी रही थी, और इसकी माता का यह बयान आया है और शक उस परिवार पर जताया जा रहा है जिसके घर की वो लड़की थी जिससे इसने शादी की। हालांकि पुलिस हमलावरों की जो स्प्लेंडर पर 2 जने आए जिन्होंने पॉइंट ब्लैक रेंज से ये फायरिंग की और पीछे आप देखिए कि सिर्फ पर पीठ पर तकरीबन 10 राउंड फायर किए गए और फवारा चौक हिसार की ये हांसी की घटना है। और उसके बाद चाहे वो सीसीटीवी हो, चाहे वहां से मिले खोल हो गोलियों के, चाहे वहां पर फोरेंसिक टीम आई जो एविडेंस लेकर गई है, तो इन सबको पॉइंट कनेक्ट कर और क्या ये निजी मामला था या किसी ने ये टारगेट किलिंग करवाई है, किसी ने सुपारी दी है, शूटर्स भेजे हैं, तो इन सभी चीजों की जांच पुलिस करेगी। और एफएसएल की टीम्स ने एरिया को सील कर वहां से एविडेंस लिए। शिखा नाम की लड़की एक जो छर्रे से, क्योंकि 6 से 7 जो यंगस्टर्स थे वो एक्सरसाइज कर रहे थे स्टेयर्स के ऊपर, जब ये एक्सरसाइज करवा रहा था कपिल, तभी एक शिखा नाम की लड़की घायल भी हुई है छर्रे से, तो उसको भी अस्पताल लेकर जाया गया। लेकिन सभी के जो वहां पर मौजूद थे और जो एविडेंस पुलिस,
0: अमन बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब खबर अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग की। आज फिर अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तट से लेकर तेहरान तक जबरदस्त हमले किए हैं। हॉर्मुज में दोनों सेनाएं आमने सामने। ईरान ने मिडिल ईस्ट में 18 अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया है। अल सलेम एयरबेस, अहमद अल जाबेर एयरबेस और बहरीन में ईसा एयरबेस पर हमले का दावा किया गया। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज फिर सील कर दिया है। ईरान हॉर्मुज पार कर रहे 2 अमेरिकी जहाजों पर हमले का दावा कर रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर जंग को लेकर। ईरान अमेरिका जंग में एक बार फिर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया है। ईरान के करज में यह हमला किया गया है। धमाकों की आवाज करज के कई इलाकों में सुनी गई है, तो करज एक बार फिर अमेरिकी निशानों का शिकार हुआ है।

0: उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, युद्ध में अब कौन से वो जगह हैं जिनको अमेरिका या फिर ईरान इस कदर टारगेट कर रहा है कि एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश सामने आया कि ये युद्ध अब अलग ही लेवल पर एस्केलेट कर चुका है।
1: देखिए नेहा, सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि एक बार फिर हालात जो हैं वो 7 अप्रैल 2026 के हालात पर पहुंच गए हैं, उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे थे। अगर आप देखें कि किस तरीके के इलाकों को अमेरिका की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, तो अमेरिका खास तौर पर ईरान के जो द्वीप इलाके हैं, चाहे वो कश्म आइलैंड हो, चाहे सिर्फ हो, या इन इलाकों को ठिकाना बना रहा है, निशाना बना रहा है। इसके अलावा बंदर अब्बास से लेकर और गोरख तक, तेहरान तक, इन उन इलाकों को खासतौर पर जहां पर कोस्ट लाइन है, जहां पर ईरान के रडार और सर्वेलेंस स्टेशन है, जहां पर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप ईरान के पलटवार को देखें तो ईरान भी अमेरिका की जो जो मिलिट्री एसेट्स हैं पूरे इलाके के अंदर, यानी जहां जहां उसके ठिकाने हैं, चाहे वो कुवैत के अंदर अमेरिका का सैन्य ठिकाना हो, चाहे बहरीन के अंदर मनामा में स्थित ईरान अमेरिका का जो फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर है वो हो, या जॉर्डन जैसी दूरी के ऊपर मौजूद जो अमेरिका के ठिकाने हैं, वहां भी निशाना बनाया जा रहा है। यानी दोनों की कोशिश है कि इस आधार पर, यानी जो फिलहाल एक आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसके आधार पर स्कोर सेटल कर लिया जाए, एक दूसरे को मैक्सिमम नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति ये है नेहा, कि अभी तक ना तो हथियारों के जरिए किसी तरीके का कोई निर्णय हो पाया है, ना ही बातचीत के जरिए किसी तरीके का कोई समाधान निकल पाया है। और जिन दुनिया की चिंता लगातार हर दिन हर घंटे के साथ बढ़ रही है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज 106 दिन से लगातार बंद है, जो तेल और ऊर्जा की सप्लाई है वो लगातार बाधित चल रही है। और साथ ही तेल और ऊर्जा का ही मसला नहीं है, दुनिया भर में फर्टिलाइजर संकट गहरा रहा है, इसके अलावा जो एसेंशियल केमिकल्स हैं उनकी आपूर्ति भी बाधित हो रही है, और अभी तक किसी तरीके का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है।
0: मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर और, ईरान ने एक बार फिर जॉर्डन पर हमला किया है। जॉर्डन के कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई है। अल अजराक एयरबेस और मुवाफाक सॉल्टी एयरबेस पर जबरदस्त धमाकों की आवाज आई है। जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ईरानी मिसाइल्स को नष्ट किया है। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। 12 बैलिस्टिक मिसाइल से आशुतोष हमला किया गया है। जाहिर तौर पर ईरान, जिसको कम आंका जा रहा था, चाहे वो इसराइल हो चाहे अमेरिका हो, उनका ये मानना था कि इतने लंबे चले युद्ध के बाद उनकी सैन्य क्षमता, उनके जो हथियार हैं, वो डिप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है।
2: बिल्कुल नहीं, और इसी वजह से जो रिकैलिब्रेशन कहते हैं कि 40 दिनों की जंग के बाद जब सीज फायर हुआ तो ऐसा नहीं था कि ईरान चाहता था कि सीधे समझौते पर बैठे। आईआरजीसी और उसकी बाकी जो रेगुलर आर्मी है वो कोशिश कर रही थी कि अपने आप को रिकैलिब्रेट करें, और इसीलिए देखिए कि अगर आपको याद हो पिछले 40 दिनों के दौरान जॉर्डन पर सिर्फ एक बार हमला हुआ था, लेकिन कल अगर आप देखेंगे कि 36 घंटे में दो बार ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जॉर्डन के जो मुक्कर एयरबेस है वहां पर उनके एमक्यू रीपर ड्रोन, जो कहते हैं MQ-9 रीपर ड्रोन, सबसे घातक ड्रोन है, प्रेडेटर ड्रोन, वो वहां पर होते हैं। F-35 का पूरा हैंगर वहां पर है और लगातार उसने जॉर्डन को निशाना बनाया है। और इसी के साथ साथ आज सुबह कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, कुवैत पर हमला हुआ है, बहरीन में ड्रोन और मिसाइलें दागी गई हैं। ये कैपेबिलिटी इसलिए भी दिखाता है कि ईरान ने अपनी वो तैयारियां पूरी की थी और हमेशा से कहा था कि हमारी मारक क्षमता अभी बची हुई है। और अगर आप देखें अमेरिका के हमलों में उस पर एक पैटर्न दिखाई देता है कि वो उसके एयर डिफेंस रेडार सिस्टम के साथ साथ कोस्टल लाइन पर अगर कहीं उनके मिसाइल के साइलोस है तो उनको ध्वस्त करना चाह रहा है। लेकिन क्या अमेरिका या इसराइल हो उनके पास इतना इंटेलिजेंस है कि उन साइलोस की सही जानकारी मुहैया करा सके, क्योंकि अभी भी ईरान के पास जो ताकत है वो रहस्यमयी है। और उसी का असर दिख रहा है कि जैसे अमेरिका ने हमला किया उसके बाद ईरान की ओर से 18 जगहों पर एयरबेस को निशाना बनाया गया। तो आप चाहे कुवैत देख लीजिए, बहरीन देख लीजिए, यूएई देख लीजिए, जॉर्डन देख लीजिए, उसके एयरबेस से लेकर के नौसैनिक हवाई अड्डों तक जहां जहां उसकी क्षमताएं हैं, जहां जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, उन सब पर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। नेहा,
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। भाई, अमेरिका ने नए हमले से पहले ईरान को चेताया, फिर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, ईरान के अलग अलग शहरों को निशाना बनाया गया, लगातार दूसरी आज भारी बमबारी की दूसरे दिन, और ईरान भी जवाबी कार्रवाई का हवाला दे रहा है।
3: सीज फायर के बाद उम्मीद थी कि हालात संभलेंगे, लेकिन अमेरिका ने अपने हेलीकॉप्टर को टारगेट बनाए जाने के बाद ईरान पर फिर से हमला बोला है। सीज फायर के बाद जारी लड़ाई का आज दूसरा दिन है। अमेरिकी फौज ने ईरान के बंदर अब्बास, केशम, हिंगम, कंगन, गुरगान बंदरगाह, सिरी, मिनाब और असलूह एह पर भी भारी बमबारी की है।
4: CENTCOM, Central Command, will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be. Because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it.
3: ईरान की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक कीशम और हिंगम में मिसाइल दागे गए हैं। कंगन और गोरेगन बंदरगाह पर भी कई धमाके सुने गए हैं। IRNA की माने तो बंदर अब्बास में लगातार दूसरे दिन अमेरिका ने हमला किया है। आज वहां एयरपोर्ट और एयरबेस को निशाना बनाया गया है। धमाके मिनाब शहर में भी सुने गए हैं। यह वही शहर है जहां सीज फायर से पहले हुई लड़ाई में एक धमाके में 165 से ज्यादा स्कूली बच्चों की मौत हुई थी। बीती रात ट्रंप का बयान आया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फाइटर जेट लगातार ईरान के आसमान के ऊपर मौजूद हैं। बमबारी की पूरी तैयारी है।
5: But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today. In case you miss, if in case you don't turn on your television set, and we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid presidents. I have to say that.
3: Trump के इस बयान के चंद घंटे बाद ही ईरान में धमाके पर धमाके होने लगे। आज तक ब्यूरो।
0: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहां जहाजों की आवाजाही एक बार फिर पूरी तरह से बंद है। ताजा अमेरिकी हमलों के बाद से ईरान ने ऐलान कर दिया है किसी भी जहाज को वहां से नहीं गुजरने देंगे, तो अमेरिका ने भी उसे चेतावनी दी है। ऐसे में तेल संकट और गहराने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि इससे पहले जब युद्ध रुका हुआ था, शांति वार्ता चल रही थी, तब कुछ जहाजों के लिए ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला हुआ था। ईरान ने थोड़ी ढिलाई की थी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है।

0: हॉर्मुज से आया खतरे का नया अलर्ट। दुनिया के सामने और बढ़ेगा तेल संकट। हॉर्मुज के समंदर में बारूदी खतरा बढ़ा। तेल और गैस की सप्लाई पर गंभीर असर। हॉर्मुज में जो स्थिति सीज फायर से पहले हो गई थी, वही हालात एक बार फिर बन गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई के पहले दौर में हॉर्मुज में सैकड़ों जहाज फंस गए थे। वहां बेहिसाब खतरा था। बहुत सीमित संख्या में तेल और गैस के जहाजों की आवाजाही हो रही थी। लेकिन अब ईरान ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि हॉर्मुज बंद है। एक बार फिर अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। अब वहां बारूदी वार पलटवार तेज है, तो जहाजों का आना जाना ठप हो गया है। हॉर्मुज का समंदर फिर से सुलग उठा है। अमेरिका ने कोस्टल पॉइंट को निशाना बनाया। ताजा हमले में अमेरिकी फौज ने हॉर्मुज के इलाके में बमबारी की, तो इसके जवाब में ईरान ने ऐलान किया कि हॉर्मुज से किसी भी जहाज की आवाजाही नहीं होने देंगे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि ईरान के टॉप ज्वाइंट मिलिट्री कमांड के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट सभी वेसल के लिए बंद हैं। नाकेबंदी के आदेश में तेल टैंकर और वाणिज्यिक जहाज भी शामिल हैं। ईरानी मिलिट्री कमांड के मुताबिक किसी वेसल ने अगर हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश की तो उसे निशाना बनाया जाएगा। हॉर्मुज में ताजा संकट के बीच ट्रंप का बयान आया। उन्होंने पोस्ट कर कहा कि पिछले महीने मैंने अमेरिकी सेना को हॉर्मुज से तेल टैंकरों और अन्य वाणिज्यिक जहाजों को सहायता प्रदान करने को कहा था। इसके लिए एक खुफिया मिशन अंजाम देने के निर्देश दिए गए थे। ट्रंप के मुताबिक आदेश के बाद से अब तक 10 करोड़ बैरल से अधिक तेल हॉर्मुज से होकर खुले बाजार में पहुंच गया है। 200 से अधिक कमर्शियल जहाज जल डमरू मध्य से सुरक्षित रूप से गुजर चुके हैं। ये अभूतपूर्व सफलता है। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि हॉर्मुज पर अमेरिका का नियंत्रण है, ईरान का नहीं। अमेरिका लगातार हॉर्मुज पर फुल कंट्रोल का दावा कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से कमर्शियल जहाजों की आवाजाही लगातार हो रही है। हॉर्मुज पर ऐसे दावों को लेकर IRGC एयरस्पेस ने सवाल उठाए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि दुनिया के सामने तेल और गैस का संकट और बेहिसाब बढ़ने वाला है। आज तक ब्यूरो।
1: मिडिल ईस्ट जंग को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने एक बार फिर बहरीन पर हमला कर दिया है। बहरीन में कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई। इस हमले के बाद बहरीन सरकार ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं।

0: वहीं ईरान ने एक बार फिर कुवैत पर हमला किया है। कुवैत में हमले के बाद कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई। कुवैत में भी अलर्ट जारी किया गया है। डिफेंस सिस्टम हमलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। कुवैती सेना का कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हवाई लक्ष्यों को निशाना बना रहा है। तो एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इंटरसेप्ट तो किए जा रहे हैं हमले, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर कुवैत में ये हमले कामयाब भी हुए हैं। अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि डील साइन करना ईरान के लिए युद्ध से ज्यादा अच्छा विकल्प है।
1: नो लुक, आई हैव बीन वर्किंग विद ईरान फॉर अ नंबर ऑफ मंथ्स एंड दे शुड साइन द डील। इट्स अ गुड डील। इट डजंट गिव देम द राइट टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन। इन फैक्ट इट टोटली प्रोहिबिट्स देम फ्रॉम एवर हैविंग अ न्यूक्लियर वेपन। आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग।
0: वहीं ट्रंप ने बढ़ती महंगाई पर एक हैरान करने वाला बयान दिया। महंगाई के ताजा आंकड़ों पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुझे महंगाई पसंद है। इस तरह के बयान अक्सर ट्रंप देते हैं जिसका कोई सिरपैर नहीं होता है, क्योंकि जाहिर तौर पर महंगाई बढ़ेगी अगर इसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर पाबंदी जारी रही ईरान की, तो तेल के दाम सबसे पहले बढ़ेंगे और उसके बाद बाकी चीजें जो तेल से जुड़ी हुई हैं उनके भी दाम बढ़ना स्वाभाविक है।
1: I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now, something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran, until right now.
0: अगली खबर पाकिस्तान के जुल्म की। POJK में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के अत्याचार और गोलीबारी में हुई मौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज है। बीती रात भी पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किए गए। इस दौरान पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। रावलकोट में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद की।
2: विद्रोह की ये तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की है। शहबाज सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि 1.5 लाख प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए।

0: 8 जून को प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग के बाद ये आंदोलन तेज हो गया है। फायरिंग में 11 लोगों की मौत पर लोगों का गुस्सा और भड़क गया है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व JAAC नाम का संगठन कर रहा है, जिसे पाकिस्तानी सरकार ने पिछले हफ्ते बैन कर दिया था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तानी सरकार उनकी आवाज को दबा रही है और उनके अधिकारों और बुनियादी जरूरतों की लगातार अनदेखी कर रही है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने राजद्रोह के आरोप लगाकर 4 प्रदर्शनकारी नेताओं पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है।
1: निहत्थे आवाम को, अस्पताल मांगने वाले आवाम को, रोटी मांगने वाले आवाम को, अपने हकूक पर हक मांगने वाले आवाम को इन्होंने कलदम करा के दहशतगर्द करा दिया। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, बलोचिस्तान से पूछा दहशतगर्द कौन है, वो तुम्हारे लिए कहेगा तुम दहशतगर्द हो। KTK से पूछा दहशतगर्द कौन है, वो तुम्हारे लिए बताते हैं तुम दहशतगर्द हो। गिलगित बल्तिस्तान से पूछो, पंजाब से पूछो, सिंध से पूछो और आज कश्मीर से पूछो कि कौन दहशतगर्द है।
0: ये पूरा विवाद 5 जून को बढ़ा था, जब बिजली और गेहूं की बढ़ती कीमतों के चलते लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने मासूमों का नरसंहार कर डाला। इसके बाद से ही रावलकोट, बाग, हटियान, बाला, कोटली, मीरपुर, सुतनोती, देरकोट, डडियाल और मुजफ्फराबाद में प्रदर्शन जारी है। JAAC का दावा है कि अलग अलग इलाकों से प्रदर्शनकारियों के बड़े बड़े जत्थे पहले रावलकोट में इकट्ठा होंगे और फिर वहां से एक साथ मुजफ्फराबाद की ओर कूच करेंगे। प्रदर्शनकारियों को मुजफ्फराबाद पहुंचने से रोकने के लिए मुख्य सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि हाईवे और रास्तों पर पेड़ काट कर डाल दिए गए हैं ताकि प्रदर्शनकारी आगे न बढ़ सके। आज तक पे
2: और अब बात मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव की, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी नटराजन ने निर्वाचन आयोग से जवाब न मिलने पर कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। नटराजन की ओर से राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में समक्ष याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए अवकाशकालीन पीठ में मेंशन करेंगे और पार्टी की कानूनी टीम ने गुरुवार तड़के यानी 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मीनाक्षी नटराजन की ओर से कांग्रेस ने पहले निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा, लेकिन नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख गुरुवार 11 जून से पहले तक जवाब न मिलने पर कांग्रेस उम्मीदवार ने यह रुख अख्तियार किया है। अनीशा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। अनीशा, कोर्ट्स बंद हैं, ऐसे में इस मामले को स्पेशल ट्रीटमेंट देकर जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी?
3: देखिए नेहा, कोर्ट्स बंद तो हैं लेकिन समर वेकेशन में वेकेशन बेंचेस जरूर बैठती हैं। रोज सुप्रीम कोर्ट की 4 पीठें बैठ रही हैं, अर्जेंट पेंशनिंग मैटर सुने जा रहे हैं। जैसे आपने की कहा कि नामांकन भरने की जो तारीख है वो खत्म हो रही है, इसलिए इस बिना पर क्या अब बेंचनिंग की जाएगी कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, आज ही सुनवाई की जाए। अब सवाल ये उठता है कि कोर्ट इस मांग को मानेगी या नहीं, क्योंकि याद रखिएगा सुबह 6 बजे तक तो कम से कम जो इलेक्शन कमीशन का फाइनल डिसीजन है, जो ऑर्डर है, उसकी कॉपी मिली नहीं थी। हमने बात जब की कांग्रेस के लीगल सेल के लोगों से कि कॉपी मिली है या नहीं, उन्होंने कहा कि हमें कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं दी गई है। हम रिटर्निंग ऑफिसर का जो डिसीजन है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो रद्द किया है, उसको खारिज किया है, उसको चैलेंज करें। दूसरी बात ये कि आप लीगली भी देखिए कि मुद्दा क्या है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन इसलिए खारिज हुआ क्योंकि उन्होंने अपने नामांकन पत्र में एक प्राइवेट कंप्लेंट का जिक्र नहीं किया था। अब अगर आप लीगली देखें तो एक कांग्रेस की तरफ से, मीनाक्षी नटराजन की तरफ से सीधे तौर पर यही आर्ग्यूमेंट दी जा रही है बार बार कि प्राइवेट कंप्लेंट जिसमें कि ना कॉग्निजेंस की गई है,
2: जो मामला है वो अब कोर्ट के संज्ञान में है और सुप्रीम कोर्ट इस पर अलग से सुनवाई करेगी। इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, दोनों दल एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं
4: कि चुनाव होते तो भी हम जीत रहे थे, तीसरी सीट भी भाजपा जीतती, इसमें कहीं कोई संशय नहीं था। और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग होने वाली ये दीवारों पर लिखा था, ये मीडिया कह रहा था, ये कांग्रेस के नेता स्वयं कह रहे थे। जिस दिन दिग्विजय सिंह जी को टिकट नहीं मिला तो उनके नेताओं ने खुलेआम बोला था कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होगी और कांग्रेस को मालूम था क्रॉस वोटिंग होगी। और इसीलिए मेरा स्पष्ट आरोप है, मेरा स्पष्ट मानना है कि ये फॉर्म कांग्रेस ने स्वयं ने रिजेक्ट करवाया है।
5: हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी पेपर दे रही है नामांकन का, 6:30 बजे कहते हैं आपका नामांकन कैंसिल। कि आपको फना साल में एक नोटिस आया था, उस पे कोई FIR नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई सजा नहीं, लेकिन नामांकन रद्द कर दिया क्योंकि वो कांग्रेस की प्रत्याशी थी।
2: टीएमसी में बगावत का सिलसिला जारी। एक तरफ ऋतव्रत बैनर्जी ने कल ऐलान किया कि उनके साथ 64 विधायक हैं, तो उधर बागी सांसदों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। आज तक को पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से 19 की एक लिस्ट मिली है जो एक अलग गुट बनाने की योजना कर रहे हैं, और इस लिस्ट में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेता सायोनी घोष और शत्रुघ्न सिन्हा के नाम है। एक दिन पहले ही सायोनी घोष, प्रतिमा मंडल, माला रॉय और मिताली बाग ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की थी। अब आपको बताते हैं कि जिन 19 बागी सांसदों के नाम सामने आए उनमें कौन कौन शामिल है। काकुली घोष, सायोनी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा। सायोनी घोष जो काफी करीबी मानी जाती थी ममता बनर्जी की, वो भी अब बागी की लिस्ट में है। जगदीश चंद्र, खली उर रहमान और यूसुफ पठान।
6: संसद से सड़क तक मोदी सरकार को घेरने वाली सायोनी घोष।
7: हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए, तो आप बोलेंगे देशद्रोही।
6: प्रधानमंत्री मोदी के कट्टर विरोधी शत्रुघ्न सिन्हा।
8: मोदी जी ने ये सौगात दिया, उत्तर प्रदेश को ये दिया, महाराष्ट्र को ये दिया, फलाने स्टेट को ये दिया। अरे वो नहीं देते हैं, वो हमारा ही पैसा है, हमारे लोगों का पैसा है।
6: और यूसुफ पठान। कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे ये नेता उन बागियों में शामिल हैं जिन्होंने काकुली घोष दस्तेदार की अगुवाई में अलग गुट बनाया है। खबर है कि टीएमसी के बागी सांसद बीजेपी या एनडीए में शामिल नहीं होंगे, बल्कि सदन में अलग गुट के रूप में रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस के 19 बागी लोकसभा सांसदों की जो लिस्ट आई है उसमें कई चौंकाने वाले नाम है, लेकिन सायोनी घोष भी ममता से बगावत करेंगी, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सुष्मिता देव की असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात की तस्वीरें आई। दोनों असम से हैं। ये भी तय लग रहा है कि इस्तीफे से खाली सीट पर उपचुनाव में बीजेपी सुष्मिता को उम्मीदवार बनाएगी।
9: सच्चाई तो ये है कि मेरी राजनीति बंगाल में नहीं है, मेरी राजनीति आसाम में है और मुझे आसाम में ही राजनीति करना है।
6: टीएमसी के पास लोकसभा में कुल 28 सांसद हैं। 19 से 20 सांसदों की बगावत के बाद उनके खेमे में अब सिर्फ 9 सांसद ही शेष बचे हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 80 विधायकों में टीएमसी के 58 विधायकों ने अलग गुट बनाया था। इसकी अगुवाई ऋतव्रत बनर्जी कर रहे हैं। पार्टी पूरी तरह से टूट के कगार पर है। सवाल ये कि अब ममता बनर्जी क्या करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: तापसेन गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जो 19 सांसद बागी बताए जा रहे हैं, धीरे धीरे करके अब क्या जो नाम नहीं पता चले हैं और जिनका थोड़ा सा सीक्रेटिव रवैया है, उनके भी नाम सामने आ रहे हैं?
10: जी देखिए नेहा, ये सूत्रों के मुताबिक खबर कि 19 का जो संख्या है ये आगे और बढ़ सकता है, और सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि अगर विधानसभा की बात की जाए तो कल ऋतव्रत बंदोपाध्याय ने साफ तौर पे कह दिया था कि 64 विधायक उनके साथ है। पहले 60 कहा गया था, कल उन्होंने खुलासा किया कि 64 विधायक उनके साथ है और आज एक और नाम जुड़ सकता है तो कुल मिलाकर 65 हो सकता है। यह अटकलें लगाई जा रही है कि फिराद हकीम, जो ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते हैं, वो इस खेमे में शामिल हो सकते हैं। तो दूसरे छोर पर दिल्ली की राजनीति में बड़ी हलचल है। ममता बनर्जी के साथ एक के बाद एक जितने सांसद थे उनके करीबी माने जाने वाले माला राय, सायोनी घोष, काकुली घोष दोस्तेदार, ये सब ने उनका दामन छोड़ा है। अब उन्होंने जाकर दामन पकड़ा कांग्रेस का। ये अटकलें लगाई जा रही है कि शायद कांग्रेस के साथ मिलकर वो पश्चिम बंगाल के राजनीति में वापस आना चाहती हैं, लेकिन ऐसे में अगर होता है तृणमूल और कांग्रेस एक साथ आए तो फिर जाकर ऋतव्रत फैक्शन जो है, जो दूसरा गुट है, वो भी अपने
2: ठीक है। लौटूंगे मैं आपके पास। बीच बड़ी खबर नीति आयोग की बैठक से अब से कुछ ही देर बाद। ये बैठक राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में होने जा रही है। इसके तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। नीति आयोग की अहम बैठक है ये। प्रधानमंत्री खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 2047 के लिए विकसित भारत के लक्ष्य पर इसमें चर्चा की जा सकती है। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में इसका आयोजन किया जाएगा।
6: पीएम मोदी आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। नीति आयोग की ओर से जारी बयान में बताया गया है किस बार बैठक की थीम होगी 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। नीति आयोग का कहना है कि ये थीम उम्र, क्षेत्र, लिंग या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से परे हर भारतीय की भलाई और विकास पर केंद्रित है। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में जिन अहम मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें बुनियादी मानव पूंजी और भविष्य के लिए जरूरी कौशल, उत्पादक रोजगार और उद्यमिता, स्वास्थ्य, पोषण, सभी के लिए समानता और सम्मान का एजेंडा शामिल है। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल 26 से 28 दिसंबर 2025 के बीच हुई मुख्य सचिवों की 5वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में दी गई सिफारिशों पर भी चर्चा करेगी। शुरुआती शिक्षा, स्किल और खेल क्लासरूम से परे एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियां शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

ईरान अमेरिका में जंग जारी, समंदर में आमने सामने दोनों सेनाएं, केशम द्वीप से तेहरान तक धमाके, ट्रंप ने कहा एपिक फ्यूरी से ज्यादा भीषण हमले। अमेरिकी हमले से बौखलाया ईरान, फिर बंद किया हॉर्मुज, मिडल ईस्ट में 18 अमेरिकी बेसिस पर मिसाइल ड्रोन अटैक, अमेरिकी पांचवें बेड़े पर हमले। बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका, विद्रोही सांसदों की लिस्ट में 19 नाम, शत्रुघ्न सिन्हा से यानी घोष जैसे वफादारों ने छोड़ा साथ, रुद्रव्रत ने किया 64 विधायकों के साथ होने का दावा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की अहम बैठक, एक्शन प्लान के साथ पहुंचेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, 2047 तक विकसित भारत पर होगी चर्चा। फुटबॉल के महामुकाबले का आज से आगाज, पहली बार तीन देश मेजबान, अमेरिका कनाडा मेक्सिको में 48 टीमों के बीच 104 मैच, नॉकआउट में 32 टीमें।

अमेरिका में ईरान ने ईरान पर फिर से शुरू किए हमले। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा सचिव पीट हैक्सर की चेतावनी के बाद कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी हमलों की ईरानी समाचार एजेंसी ने भी पुष्टि की। एजेंसी ने बताया ईरान के किश द्वीप और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज सुनी गई। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद ईरान के सिरिक और मिनाव क्षेत्रों से बड़े विस्फोट की खबर आई। हमले के तुरंत बाद देश के कई हिस्सों में जवाबी कार्रवाई के लिए एंटी एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम को तुरंत एक्टिव कर दिया गया। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज़ जलडमरू बंद को बंद करने की घोषणा की। कमान ने कहा कि जो भी जहाज वहां से गुजरने की कोशिश करेगा उस पर गोली चलाई जाएगी। रिलीज में जारी तनाव लगातार जारी। होर्मुज़ स्ट्रेट के पास सेतबेल्लो नाम के ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला। इस टैंकर में 26 क्रू मेंबर, 24 भारतीय। हादसे के बाद 21 भारतीय को सुरक्षित बचाया गया, 3 भारतीय अब भी लापता। घटना पर भारत सरकार ने नाराजगी जताई। विदेश मंत्रालय ने बताया ओमान में भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। मामले की गंभीरता देखते हुए भारत ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी राजदूत को तलब किया। ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर सख्त रुख अपनाया। कहा कि ईरान ने शांति समझौते पर बातचीत में बहुत अधिक समय लिया है, अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी। कहा ईरान ने बातचीत में की देरी, अब कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का जबरदस्त पलटवार। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला। ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। इस्माइल बघाई ने कहा देश की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटेगी सेना। अमेरिका पर बार बार युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप। ईयू के नए प्रतिबंध पर रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाकरोवा का बयान, नए प्रतिबंधों में कामयाब नहीं होगा यूरोपीय संघ। रूस के चेबोक्सारी में सैन्य प्लांट पर यूक्रेन का बड़ा हमला। दूदू कर जली इमारत, तेल ठिकानों के बाद सैन्य प्लांट पर हमला। रूस की राजधानी मॉस्को में कार में बम धमाका, कार में लगी भीषण आग, एक व्यक्ति की मौत। रूसी अधिकारी ने विस्फोट मामले की शुरू की जांच। लेबनान में इसराइल का भीषण हमला। होमीन अल फोका में उठा धुएं का गुबार। सीज फायर के बावजूद लेबनान पर हमले कर रहा है इसराइल। लेबनान सीरिया में इजरायली हमले पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का बयान। कहा इसराइल के हमले तुर्की के लिए खतरा, वैश्विक समुदाय तुरंत रोके इसराइल की आक्रामकता। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में अंधाधुंध फायरिंग, 12 की मौत, 9 घायल। 10,000 संदिग्ध हमलावरों ने गाड़ी से उतरकर नागरिकों पर की फायरिंग। इंडोनेशिया में ईरान जंग का असर, पेट्रोल कीमतों में 32% की बढ़ोतरी। गैर सब्सिडी वाले ईंधन 30% दाम बढ़े। आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी बैठक। सुबह 10:15 पीएम मोदी होंगे शामिल। 2047 के विकसित भारत के रोड मैप पर होगा मंथन। बैठक की थीम विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखी गई है, जो 4 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है। इस बैठक में देश भर के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों, केंद्रीय मंत्रियों और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने की संभावना। मीटिंग में मानव विकास के राष्ट्रीय विजन को राज्य स्तरीय योजनाओं के साथ जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने एनडीए कॉन्क्लेव में किया कांग्रेस पर हमला। बोले 2014 में देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर धीमी विकास दर और घोटालों का आरोप लगाते हुए एनडीए सरकार की नियत, नीति और निर्णय की सराहना की। एनडीए कॉन्क्लेव के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बताया कि सरकार का फोकस विकास के दौर में कोई ना छूटे पीछे। पीएम ने कहा विकसित भारत एनडीए का संकल्प आज बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। बंगाल में बीजेपी की जीत का दिखा जश्न, शुभेंदु अधिकारी ने पीएम को खिलाई झालमुड़ी। आज कांग्रेस की अहम बैठक, राहुल खड़गे रहेंगे मौजूद। कांग्रेस महासचिव, राज्यों के अध्यक्ष और प्रभारी भी होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा राजनीतिक हालात पर मंथन किया जाएगा। महंगाई जैसे मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई की तैयारी। मीटिंग में नीट सीबीएसई की गड़बड़ियों को देख लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की योजना पर बात हो सकती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका। 19 बागी लोकसभा सांसदों की सूची आई सामने। बागी सांसदों की सूची में शत्रुघ्न सिन्हा, सयानी घोष और यूसुफ पठान शामिल। मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद। आज चुनाव आयोग मीनाक्षी नटराजन के मामले में सुना सकता है फैसला। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के फैसले वापस लेने की अपील की। कांग्रेस का दावा मीनाक्षी के खिलाफ तेलंगाना का मामला अभी शुरुआती चरण में है। रांची में कांग्रेस को लगा झटका। बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नामांकन वैध। कांग्रेस से परिमल के नामांकन पत्र पर उठाए थे सवाल, नाम सही न लिखने का था आरोप। झारखंड में कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला। 16 विधायकों को दिल्ली भेजा जाएगा। दिल्ली दौरे पर तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से की मुलाकात। डीके शिवकुमार पहुंचे दिल्ली, सोनिया राहुल प्रियंका से की मुलाकात। कसमंडी पासी किला विवाद गरमाया। लाखन आर्मी के मुखिया सूरज पासी 31 जिलों की यात्रा पर निकले। लाखन आर्मी कर रही किले के शिव मंदिर घोषित करने की मांग। 31 जिलों की यात्रा के खिलाफ एआईएमआईएम और धर्मगुरुओं ने उठाए सवाल। लखनऊ में लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने किया मार्च, किले तक जाने से पुलिस ने रोका।
वाराणसी में यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संगठन को सरकार से बताया ऊपर का, संगठन ही चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतने के बाद संगठन ही तय करता है सरकार कैसे बनेगी। बंगाल में बीजेपी में शामिल होने के लिए तृणमूल नेता पहुंचे, बीजेपी नेताओं ने हरा गुलाल लगाकर लौटाया। बाराबंकी में घटना की जबरदस्त चर्चा। राजस्थान में आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का किया बचाव, बोले भजनलाल शर्मा कर रहे हैं टारगेट। कोचिंग टीचर फैजल खान और रोशन आनंद के विवाद पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा प्रशासन दिखाई जल्दबाजी, मैं मानता हूं खान सर की गलती होगी, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के महावीर एनक्लेव में अतिक्रमण को पीडब्ल्यूडी के बुलडोजर ने हटाया। मालवीय नगर में आग की घटना के बाद सिविक एजेंसी अचानक एक्टिव मोड में। दयारा बुग्याल ट्रैक से लापता एमबीए छात्रा बबीता पांडे की तलाश युद्ध स्तर पर, बबीता की तलाश में 120 जवान, 3 ड्रोन और 200 मीटर नीचे मिली अंतिम लोकेशन। बागेश्वर के पिंडारी ट्रैक पर लापता पर्यटक की तलाश जारी, घटनास्थल पर पुलिस द्वारा रिक्रिएशन कर साक्ष्य जुटाने की कोशिश। मालवीय नगर अग्निकांड में एक और घायल ने तोड़ा दम, मृतकों का आंकड़ा 23। बिहार के टेंडर घोटाले में बड़ा एक्शन, 3 बड़े अफसर गिरफ्तार, ईडी में छापेमारी में मिले थे करोड़ों। मुजफ्फराबाद के पास पाकिस्तानी सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, सवार कई लोग मारे गए। इंदौर में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान टीम को बाहर करने पर हुआ विवाद, 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज, खिलाड़ियों के बीच मारपीट की घटना से हड़कंप। गुरुग्राम में मामूली सड़क विवाद को लेकर निजी बस चालक और कैंटर चला रहे सिख ड्राइवर के बीच मारपीट, घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। जानकारी के अनुसार एक कैंटर और निजी बस के बीच हल्की टक्कर के कारण निजी बस का साइड शीशा टूटा, इसके बाद कहासुनी हुई और विवाद। झांसी रेलवे की बड़ी लापरवाही, गड़मों के पास घंटों रुकी ट्रेन, भीषण गर्मी से पैदल निकले यात्री, वीडियो आया सामने। यूपी के झांसी में कुत्ते के काटने की शिकायत, पड़ोसी ने युवक को जमकर पीटा, वीडियो वायरल। दिल्ली के सराय जलैना रेड लाइट पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक हेड कांस्टेबल को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। मधेपुरा में एक हॉस्टल में 6 साल की छात्रा की हत्या का खुलासा, वैध संबंध का राज खुलने पर ली गई मासूम की जान। फिरोजाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी मौलाना पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली लगने के बाद दबोचा गया। रुड़की में छतों से ताबड़तोड़ फायरिंग और पथराव का वीडियो वायरल, आरोपियों की पहचान में जुट गई है पुलिस। वलसाड में डिलीवरी बॉय की ऊंचाई से गिरने से मौत, सोशल मीडिया पोस्ट और मोबाइल की जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद शराब ठेके पर महिलाओं का हंगामा, तोड़फोड़ कर सड़क पर फेंकी गई शराब, आबकारी विभाग ने बताया राजनीति से प्रेरित। अकोला में यूरिया की रात भर लाइन में खड़े किसानों की मदद को आ गया दुकानदार, नाश्ता और पानी कराया गया उपलब्ध। गाजियाबाद के MMG अस्पताल में चाकू लेकर घुसी महिला, इमरजेंसी में मची अफरा तफरी, वीडियो वायरल। गोरखपुर में मल्टी लेवल पार्क निर्माण के दौरान चला बड़ा हादसा, रेलवे ट्रैक पर पलटी क्रेन, चालक और ऑपरेटर सुरक्षित। गोंडा में एसयूवी और बाइक की टक्कर, 4 की मौत, 2 घायल। बद्रीनाथ के जयकारों से गूंज उठा उत्तराखंड, बद्रीनाथ यात्रा में रिकॉर्ड 10 लाख श्रद्धालुओं ने किए हैं दर्शन। पिछले साल 25 जून को पार हुआ था 10 लाख दर्शन का आंकड़ा, इस साल 10 जून को ही ये आंकड़ा पार हो चुका है। भक्तों की भीड़ के साथ यात्रा मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार, श्रद्धालुओं को सुविधा और सुलभ दर्शन कराने में जुटा है प्रशासन। खराब मौसम के बीच कम नहीं हुआ भक्तों का जोश, बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। देवभूमि धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, अब तक करीब 33 लाख श्रद्धालुओं ने किए केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन। आज फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज, अमेरिका कनाडा मेक्सिको की मेजबानी में 39 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता, 3 देश कर रहे हैं संयुक्त मेजबानी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में होंगे कुल 104 मैच, ग्रुप स्टेज में 72 मुकाबले। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार खिताब के लिए 32 की जगह भिड़ेंगी 48 टीमें। 20 जुलाई को अमेरिका के न्यूजर्सी में खेला जाएगा विश्व कप फाइनल। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का, मेक्सिको टोरंटो और लॉस एंजलिस में होगी ओपनिंग सेरेमनी। भारत में दिख रहा है फुटबॉल विश्व कप का फीवर, केरला में गलियों सड़कों से घरों तक दिख रहा है फुटबॉल का क्रेज, चेहते खिलाड़ियों की तस्वीरों से पट गए हैं इलाके। नोएडा एयरपोर्ट से उड़ाने शुरू होने के बस कुछ दिन बाकी, एयरपोर्ट ने इंडिगो के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया अंतिम ऑपरेशनल रेडीनेस एक्टिवेशन और ट्रांजिशन ट्रायल। ट्रायल में विमान के उड़ने लैंड करने से लेकर दोबारा उड़ान भरने तक हर प्रक्रिया का परीक्षण किया गया, व्यवस्था तकनीकी प्रणाली एजेंसियों के समन्वय की जांच की गई। परीक्षण में विजुअल डॉकिंग, गाइडेंस सिस्टम, पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, ग्राउंड पावर यूनिट, बैगेज हैंडलिंग सिस्टम और कार्गो संचालन जैसी सुविधाओं की जांच की गई। विमान में केटरिंग, ग्राउंड हैंडलिंग, ईंधन भरने से जुड़ी प्रक्रियाओं का परीक्षण किया गया, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, रिक्वायर्ड नेविगेशन परफॉर्मेंस, अप्रोच प्रक्रिया की भी जांच। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 15 जून को शुरू होने वाली कमर्शियल उड़ानें, एयरपोर्ट पर पहले चरण में बनाया गया एक रनवे और एक यात्री टर्मिनल।

और अब खबर खेल जगत से। आज से फीफा वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है। इतिहास का सबसे बड़ा फुटबॉल महाकुंभ है जो 19 जुलाई तक खेला जाएगा। इस बार अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तीन देश मिलकर इस महाआयोजन की मेजबानी कर रहे हैं। पहली बार इस महासमन में 48 टीमें हिस्सा लेनी। कुल 16 शहर हैं, 104 मुकाबले खेले जाने हैं। आज होने वाले पहले मैच में मेक्सिको सिटी में मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला होना है। मेक्सिको सिटी में पहले ओपनिंग मैच की तैयारी हो रही है। तीन मेजबान है मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा। लगभग 100 से भी ज्यादा मुकाबले खेले जाने हैं। पहला मुकाबला मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच होगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज 19वां जन्मदिन है। आरजेडी लालू के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के तौर पर मना रही है। वैसे जन्मदिन के मौके पर लालू यादव ने आधी रात परिवार के साथ मिलकर केक काटा। मौके पर राबड़ी देवी और घर के अन्य सदस्य मौजूद थे। तेज प्रताप यादव ने लालू यादव के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं भेजी और कहा कि आप पर हमेशा हमें गर्व रहेगा। तेज प्रताप ने अपनी सभी कामयाबी को अपने पिता को समर्पित किया और उनका व्यक्तित्व और जीवन संघर्ष प्रेरणा उन्हें देता है, ये कहा। 79वां जन्मदिन लालू प्रसाद यादव मना रहे हैं। परिवार के साथ लालू यादव की फोटो, देर रात केक काटा गया जिसमें मीसा भारती और राबड़ी देवी को आप देख सकते हैं। साथ में तेज प्रताप यादव अपने परिवार के साथ मौजूद हैं। वक्त एक ब्रेक का उछला, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
5: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
6: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
5: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
7: इन एसोसिएशन विद
8: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े समकूल कूलर लाइफ।
9: मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर, ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
10: एक तरफ तो केजीएमयू में जो कैंसर पेशेंट को इंजेक्शन दिए जाते हैं वो एक इंजेक्शन उनको ना देकर कहीं ना कहीं उसका हेरा फेरी की गई। साथ ही साथ कई मरीज ऐसे भी हैं जिनको इंजेक्शन लगाया नहीं गया जबकि उनके नाम पर इंजेक्शन रिलीज कर लिया गया। ये हालात हैं कैंसर पेशेंट्स के जो केजीएमयू में आते हैं, जिसकी एक वृद्ध जांच चल रही है। इससे परे दूसरी जगह जो हार्ट के पेशेंट हैं उसमें स्टेंट डालने के लिए एक ही शख्स को, एक ही मरीज को पांच पांच स्टेंट डाल दिए गए।
11: लोगों की जानकारी में आया है कि कुछ आयुष्मान के मरीजों में पांच स्टेंट का प्रश्न उठ रहा है। देखिए, कुछ विशेष परिस्थितियों में पांच स्टेंट भी लगते हैं कुछ समय के भीतर, लेकिन उसकी जांच करना जरूरी है क्योंकि आयुष्मान में तीन स्टेंट से ज्यादा का पैकेज अलाउड नहीं है। तो अगर विशेष परिस्थितियों में कोई चीज करनी होती है तो उसकी एक प्रक्रिया है जो नहीं की गई है। तो ये तो क्लियर है कि पांच स्टेंट जो लगाए गए हैं उनमें वृहद जांच की जरूरत है। जैसे पहला बिंदु यह है कि पांच स्टेंट लगे कि नहीं, अगर पांच स्टेंट लगे हैं तो फिर उनके इंडिकेशंस पूछे जाएंगे, वो एक दूसरा विषय होगा। दूसरा जो जिसकी बात की शंका ज्यादा है कि पांच लगे ही नहीं होंगे, दो लगे हैं और पांच को दिखा दिया गया है पांच लगे हुए हैं और जो तीन स्टेंट एक्स्ट्रा एचआरएस से आए उसको लोगों ने

0: गायब कर दिया। अगर ऐसा है जिसकी संभावना है तो ये देखना है कि केवल आयुष्मान के लोग मिले हुए थे या विभाग का जो है जो टेक्निकल और फार्मास्यूटिकल स्टाफ था वो मिला था।
1: मुंबई में मॉडलिंग करने वाली मेरठ की लड़की ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि दोनों पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब शादी की बात आई तो लड़के ने धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। पीड़िता के मुताबिक 2016 से दोनों मुंबई में साथ रह रहे थे। इस दौरान उसके मॉडलिंग के पैसों पर बॉयफ्रेंड वासिल ऐश करता था। इतना ही नहीं, वो उन पैसों का बड़ा हिस्सा अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा करने में खर्च कराता था। लड़की के मुताबिक करीब 50 से 60 लाख रुपए उससे ऐंठे जा चुके हैं। पीड़िता का कहना है कि वासिल ने एक्टर बनाने के सपने दिखाकर उससे नजदीकियां बढ़ाई और शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए। इस दौरान पीड़िता 3 बार गर्भवती हुई, लेकिन हर बार वासिल बच्चा गिरवा देता। पीड़िता के मुताबिक 21 मई 2026 को वो आरोपी के घर पहुंची और करीब 15 दिन वहां रही। इसी दौरान मोहल्ले के लोगों से उसे पता चला कि वासिल की शादी पहले ही महविश नाम की लड़की से हो चुकी है। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी और उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की, उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उधर बरेली में भी एक महिला ने एक मुस्लिम शख्स पर पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि शख्स ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। पीड़ित ने ये भी आरोप लगाया है कि हकीकत सामने आने के बाद उसे धमकाया गया, दरगाह पर ले जाकर उसको जबरदस्ती कलमा भी पढ़ाया गया, वहीं धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया, जिसकी शिकायत अब उसने पुलिस से की है। यूपी में एक के बाद एक इस तरह के धर्मांतरण के मामलों को लेकर प्रशासन एक्शन में है, जहां जांच और गिरफ्तारी का दौर जारी है। आज तक ब्यूरो।

0: के 8 मासूम बच्चों को मौत की नींद सुला दिया गया। 10 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इस क्रूरता पर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और तालिबान प्रशासन भड़क उठा। करजई ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि इस्लामाबाद अपनी गलती और शत्रुतापूर्ण नीतियों का नतीजा भुगत रहा है और अफगानिस्तान के प्रति युद्ध व विनाश की नीति उसे ले डूबेगी। अब जरा पाकिस्तान के पाखंड का लेवल भी देखिए। ये वही पाकिस्तान है जो फिलिस्तीन और गाजा के नाम पर छाती पीटता है, दुनिया भर में इस्लाम का स्वयंभू ठेकेदार बनता है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कल ही रावलपिंडी में लेबनान के आर्मी चीफ को शांति और सुरक्षा का पाठ पढ़ा रहे थे और उसी रात मुनीर ने अपनी फौज को अफगानिस्तान के मासूम बच्चों पर बम गिराने का हुक्म दे दिया। यही नहीं, उसी दिन मुनीर की कातिल फौज पीओके में अंधाधुंध गोलियां बरसा रही थी, लाशें गिरा रही थी। वही रात में अफगानिस्तान में मासूमों का कत्ल करने का पाप कर रही थी। यानी एक तरफ शांति का ढोंग और दूसरी तरफ बेकसूरों और मासूमों का कत्लेआम। पाकिस्तानी सेना की इसी दरिंदगी पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बुरी तरह बेनकाब कर दिया। भारत ने यूएनएससी में दहाड़ते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की लैंडलॉक्ड यानी चारों तरफ से जमीन से घिरे होने की लाचारी का हथियार की तरह इस्तेमाल किया और हवाई हमले करके सैकड़ों बेगुनाह नागरिकों की जान ले ली। चारों तरफ से थू थू होने के बाद अब बौखलाया पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ रोना रो रहा है। वो पाकिस्तान जिसने दुनिया भर में आतंक फैलाया अब अफगानिस्तानियों को आतंक का गढ़ बता रहा है। पाकिस्तान के राजदूत आसिम इफ्तिकार उल्टा अफगानिस्तान पर TTP और PLA को पनाह देने का बहाना बना रहे हैं। ऐसे झूठे आरोपों से पाकिस्तान न तो अपनी कायरता छिपा सकता है और न ही आतंकी होने का दाग मिटा सकता है। सच यही है कि जनरल आसिम मुनीर के हाथ बेगुनाह बच्चों और महिलाओं के खून से रंगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में जुल्म की इंतहा हो रही है, बेगुनाह लोगों पर गोलियों की बौछार की जा रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। पीओके में लोग काफी वक्त से बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हैं। वहां लोगों ने तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन की तैयारी की। JAAC यानी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले 9 जून को बंद का ऐलान किया गया, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने 5 जून को ही JAAC पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही पूरे POJK में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गयी। अगले ही दिन बड़े पैमाने पर नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसे एक्शन के विरोध में 7 जून से उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए। पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी सेना को इन लोगों पर खुलेआम गोलियां बरसाने को कहा। फायरिंग में 27 लोगों की मौत हो गई। POJK में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ऐसी कार्रवाई को लेकर भारत ने गंभीर चिंता जताई है। साथ ही यूरोप स्थित मानवाधिकार संगठन ECHRD ने भी सवाल उठाए हैं और मांग की है कि इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विशेष बैठक बुलाई जाए। आज तक ब्यूरो।

2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर मोदी सरकार, नीति आयोग की बैठक में आज बड़ा मंथन, मुख्यमंत्रियों के साथ एक्शन प्लान पर विस्तार से विचार।

0: मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ अर्जी, दिल्ली से भोपाल तक सियासी तनातनी। ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत की आग और ज्यादा भड़की। बीजेपी का दावा, शत्रुघ्न सिन्हा और सयानी घोष ने भी बुलंद किया विरोध का झंडा। टीएमसी का लिस्ट फर्जी होने का आरोप। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव। बीएसएफ ने घुसपैठिए को वापस भेजा तो भारी विरोध। बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश और स्थानीय लोगों का जमावड़ा। और ईरान अमेरिका के बीच जंगी हालात। साउथ ईरान समेत कई इलाकों में एयर स्ट्राइक। मिडल ईस्ट के यूएस बेसों पर आईआरजीसी का हमला। F-35, F-15 एंड F-16 फाइटर जेट्स तबाह करने का दावा। ईरान ने बंद किया हॉर्मुज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। In association with
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ मानशु दीक्षित। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आज खास क्या है, आगे किस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो आगे बात होगी अमेरिका ईरान जंग की, जो एक बार फिर से भीषण हो गई और दोनों तरफ से मिसाइलें दनादन दागी जा रही है, बमबारी हो रही है, ड्रोन से हमले हो रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि हेलीकॉप्टर अटैक यानी अपाचे अटैक से शुरू हुआ युद्ध आखिर कहां तक जा पहुंचा है और आगे कितना पहुंचेगा। साथ ही बात होगी विकसित भारत के संकल्प पर छिड़े सियासी जंग की। बताएंगे कि नीति आयोग की मेगा बैठक से पहले प्रधानमंत्री के हिंदू ग्रोथ वाले बयान पर बयानों का युद्ध शुरू हो गया है। साथ ही हम ये भी रुक करेंगे हरियाणा का कि वहां 5 सेकंड में 10 गोलियां दागकर जिम ट्रेनर की हत्या की गई है। ये सारी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नीति आयोग की बड़ी बैठक की बात करते हैं। थोड़ी देर पहले ही ये बैठक राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में शुरू हुई। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में 24 राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं और ये माना जा रहा है कि इस बार चर्चा के केंद्र में राज्यपाल भी होंगे। विकसित भारत का रोडमैप, राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, रोजगार, निवेश और बुनियादी ढांचों को रफ्तार देना है। तो देखिए, दिल्ली में नीति आयोग की बैठक शुरू हो गई है। आने वाले वक्त में भारत को आगे बढ़ाने की नीतियां क्या होंगी, ये नीति निर्धारण इस बैठक में होता है। विकसित भारत 2047 के रोडमैप पर चर्चा होगी कि क्या नीतियां निर्धारित करनी है, क्या लक्ष्य लेकर चलना है, कैसे भारत को मजबूत करना है, कैसे विकसित करना है, 2047 तक का जो लक्ष्य है वो पाना है। अब इस बैठक पर नजर इसलिए भी है क्योंकि देश 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है और इस सफर में राज्यों की जरूरतों, उनकी चुनौतियों, उनके सुझावों को कितना महत्व मिलता है। कल ही कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने स्लो विकास दर को लेकर कांग्रेस को घेरा था। तो विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर यहां पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो स्लो ग्रोथ रेट रही उसको लेकर भी उन्होंने ये कांग्रेस पर निशाना साधा था। कांग्रेस पर हिंदू ग्रोथ वार भी यहां पर हुआ था, पीएम मोदी का बड़ा प्रहार देखने को मिला था। अब यहां पर राज्यपाल भी इस बैठक का बहुत अहम एक पार्ट रहने वाले हैं कि 2047 विकसित भारत के लिए क्या लक्ष्य रखा गया और कैसे उस लक्ष्य को पाया जाएगा। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे हम बात करेंगे। जितेंद्र, इस बैठक से जुड़ी क्या जानकारी है, 2047 तक का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या नीतियां निर्धारित हो सकती हैं?
1: देखिए हिमांशु, ये महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इस बैठक में शामिल हुए हैं और इस बैठक की शुरुआत राष्ट्रपति भवन का जो सांस्कृतिक केंद्र है वहां पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि विकसित भारत 2047 का जो एजेंडा केंद्र सरकार का है, राज्यों के साथ मिलकर के उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इस बैठक में इसको लेकर के बड़े स्तर पर चर्चा किया जाएगा क्योंकि इस बैठक की थीम ही रखा गया है विकसित भारत 2047 समावेशी मानव विकास, यानी कि एक बड़े स्तर पर ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से डेवलप करना है आगे आने वाले 2047 तक के लिए, वो राज्यों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। इस वजह से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस बात को लेकर के बैठक किया जाएगा कि कौशल विकास को लेकर के राज्यों के साथ किस तरीके से आगे कदम बढ़ाना है, इसके साथ साथ रोजगार और साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातें लगातार राज्यों के साथ होती रहती हैं वहां पर उसको लेकर के कैसे आगे उसको मूर्त रूप तक ले जाना है, इन तमाम चीजों को लेकर के इस बैठक में चर्चा किया जाएगा। इसके साथ ही जो मुख्य सचिवों की एक बैठक हुई थी पिछले साल दिसंबर में, उस बैठक में कुछ निर्णय लिए गए थे, कुछ सिफारिश की गई थी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ, उसको सिफारिश को किस तरीके से आगे लागू करना है इस बैठक में इसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी और तमाम चीजें जो है स्किल डेवलपमेंट, रोजगार और राज्यों के साथ मिलकर के कैसे अलग अलग जो क्षेत्र है उस पर काम करना है उसको लेकर के इस बैठक में विस्तृत चर्चा होगी।
0: एक कड़ी जो भारत की विकास को रफ्तार दे सकती है उसको मजबूत यहाँ पर किया जाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के दौर को भ्रष्टाचार का दौर बताकर कांग्रेस पर हमलों की बौछार की। उन्होंने कहा कि 12 साल पहले कांग्रेस के कुचक्र से देश को अब आजादी मिली है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता यह भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। और बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट, यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया, जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय।
0: तो जब प्रधानमंत्री ने सवाल उठाए कांग्रेस पर धीमी विकास दर, हिंदू ग्रोथ रेट को लेकर, तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार करने में देर नहीं की।
3: प्रधानमंत्री जी के पास हिंदू के अलावा, मुस्लिम के अलावा कोई एजेंडा नहीं रहता। कब आप मुझे बता दीजिए किस जगह हिंदू ग्रोथ रेट इस्तेमाल हुआ? ग्रोथ रेट तो देश का होता है, और प्रधानमंत्री जी 2014 से 2004 से और 2014 को उठाएं, विश्व ने जब महाआर्थिक मंदी 2008 में देखने का काम किया, तो मनमोहन सिंह जी उस आर्थिक मंदी के भंवर से देश को निकाल कर ले गए। प्रधानमंत्री जी को $58 के ऊपर देश मिला था। प्रधानमंत्री जी देश को $100 के ऊपर लेकर के चले गए। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के अंदर कितना विदेशी निवेश, मोटा मोटी आंकड़ा $28 बिलियन का निवेश जो था, 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश था वो देश से चला गया। और लगभग 2021 तक 2783 कंपनी अपना कारोबार बंद कर चुकी थी। ये तो आपकी ग्रोथ रेट है।
0: और अब बात करेंगे जंग की, जो शांति वार्ता से शुरू होकर फिर से बम बारूद तक पहुंच गई है।

0: तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों को तबाह करने का दावा किया और ईरान का दावा यहां नहीं रुका। ईरान का दावा है कि जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमले में अमेरिका का F-35, F-15 और F-16 जेट के ठिकाने नष्ट कर दिए गए। ईरान ने अल अज़राक एयरबेस और कंट्रोल सेंटर पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने सिकराज, नजर आबाद और पिशवा के पास यूएस के हमलों का जवाब बताया। ईरान कह रहा है जो यूएस ने हमले किए थे ना कराज, नजर आबाद और पिशवा में, ये उसका जवाब है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर यूएस फाइटर जेट्स तबाह करने का जो ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है, F-35, F-15, F-16 जेट के ठिकाने को नष्ट करने का दावा ईरान की तरफ से किया गया और ईरान तो कह रहा है कि हमारे हाथ तो हमेशा से ट्रिगर पर है, आपने एक इशारा किया तो यहां से हम खामोश नहीं रहेंगे, करारा जवाब दिया जाएगा। तो देखिए ये तीन तस्वीरें आपके सामने, बताया जा रहा है कि 18 अमेरिकी बेस टारगेट किए गए हैं ईरान की तरफ से। और क्या कह रहा है ईरान? ईरान कह रहा है कि अमेरिका की तरफ से जो भारी बमबारी की गई थी ये उसका जवाब है, यानी दक्षिणी ईरान में जो तबाही हुई थी जो अमेरिका की तरफ से की गई थी, जहां यूएई का सहारा लिया गया था और हॉर्मुज बंद करने का दावा भी किया गया है ईरान की तरफ से। और यह खबर आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको लेकर ये जंग और ये तनाव बढ़ता जा रहा है, देश दुनिया परेशान हो रही है, वो फिर से बंद करने का दावा है, जहाजों की आवाजाही रुक गई है। अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट को ड्रोन से निशाना बनाया। ईरानी सेना ने दावा किया है कि ड्रोन हमले में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से बड़े रडार इंस्टॉलेशन पर भी हमले किए गए हैं और ईरान की सेना के अनुसार ये दक्षिणी ईरान में अमेरिकी हमले का जवाब है जो कल अमेरिका की तरफ से किया गया था। और अमेरिका की तरफ से क्यों किया गया था? क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरान ने निशाना बनाया, तो उसके बाद अमेरिका ने बम बारूद बरसा दिया दक्षिणी ईरान पर। और अब ईरान कह रहा है कि हमने तो जवाब दे दिया। जॉर्डन सेना का यह बयान भी सामने आया ईरानी हमले के बाद कि एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की कई मिसाइलों को नष्ट किया है। ईरानी सेना ने यह दावा किया कि ड्रोन हमले में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से बड़े रडार इंस्टॉलेशन पर हमले किए गए। देखिए अल अज़राक मुवाफाक सॉल्टी एयरबेस पर यह हमला हुआ है और यह मुवाफाक सॉल्टी एयरबेस कहां है? यह जॉर्डन में है। 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है ईरान के, सामने आए थे। हालांकि जॉर्डन की तरफ से यह कहा गया कि हमने ज्यादातर जो मिसाइल है उनको इंटरसेप्ट किया गया है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, एक हेलीकॉप्टर से शुरुआत हुई इस सिलसिले की, अपाची हेलीकॉप्टर, फिर दक्षिणी ईरान में अमेरिका का हमला और उसके बाद अब ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ बमबारी, आगे आपको क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं?
1: देखिए कहा जा सकता है हिमांशु कि हम एक बार फिर 7 अप्रैल 2026 के पहले की स्थिति में पहुंचते नजर आ रहे हैं, यानी संघर्ष विराम के पहले की स्थिति। दोनों तरफ से एक दूसरे पर बमबारी की जा रही है, स्ट्राइक्स की जा रही हैं, अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और दोनों ही पक्ष ये कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम नुकसान कहां और कैसे पहुंचाया जा सकता है। यदि खासतौर पर यदि आप देखें कि ईरान की कोशिश है कि अमेरिका के जितने भी सैन्य ठिकाने इलाके के अंदर हैं और जॉर्डन को किया गया जो टारगेटिंग है वो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। इसलिए अहमियत रखता है कि अगर आप देखें तो पिछला जो कॉन्फ्लिक्ट था, 40 दिनों तक जो लड़ाई चली, उसके अंदर भी एक ही बार जॉर्डन को निशाना बनाया गया था, लेकिन बीते 36 घंटों के अंदर दो बार जो है वो जॉर्डन के इस जो मुवाफाक सॉल्टी एयरबेस और साथ ही अरिफ जो बेस है उसको निशाना बनाया गया। और ये वो जगह है हिमांशु जहां पर अमेरिका की सबसे ज्यादा बड़ी जो पेट्रियट एंड थर्ड मिसाइल सिस्टम्स की बैटरीज लगी हुई हैं, यानी हर उस जगह से जहां से ईरान पर वार किया जा सकता है उसको वो स्ट्राइक करना चाहता है, उसको वो टारगेट करना चाहता है। वहीं ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, ईरान के सर्वेलेंस सिस्टम, ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम, उनको निशाना बनाते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांड जो है
0: दोनों एक दूसरे पर टारगेट साध रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे। लेकिन मिडिल ईस्ट जंग को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। ईरान ने एक बार फिर से बहरीन पर हमला किया और हमले के बाद बहरीन में कई जगहों पर धमाकों की गूंज सुनाई दी। ईरानी हमले के बाद बहरीन सरकार ने अलर्ट भी जारी किया गया है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। बहरीन में इस वक्त सायरन की गूंज सुनाई दे रही है और ये सायरन इसीलिए ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित जगह पर चले जाएं अपने अपने परिवार के साथ, क्योंकि कहीं भी कोई मिसाइल ड्रोन गिर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान ने एक बार फिर कुवैत पर भी हमला किया। कुवैत में हमले के बाद कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनाई दी। बहरीन, कुवैत, अब हमले के बाद कुवैत में अलर्ट जारी किया गया है। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम हमलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। कुवैती सेना का कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हवाई लक्ष्यों को निशाना बना रहा है। तो बहरीन से खबर आई, कुवैत से खबर आई, जॉर्डन से खबर आई। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। प्रणय, किस रणनीति के साथ ईरान अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है?
1: देखिए, ईरान की रणनीति स्पष्ट है। ईरान की तरफ से हमेशा ये कहा गया कि यदि उसके ऊपर जंग मुसल्लत की गई, उसके ऊपर किसी तरीके का हमला किया गया, तो फिर उसका उसके पलटवार का दायरा उस क्षेत्र या उस देश तक सीमित नहीं होगा, बल्कि वो इसे और व्यापक बनाने की कोशिश करेगा। ईरान ने लगभग वही किया है, यानी एक अपाचे हेलीकॉप्टर जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के करीब जो है वो अमेरिका का गिरा था, उसके बाद अमेरिका के जो जितने भी ठिकाने हैं इस इलाके के अंदर, यानी बहरीन के मनामा के अंदर जो अमेरिकी नेवी, जो अमेरिकी नौसेना का फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर है, उसको निशाना बनाया गया। इसके अलावा जो कैंप अरिफिजान एयरबेस है कुवैत के अंदर अमेरिका का, उसको निशाना बनाया गया। इसके अलावा जो अन्य इलाके हैं अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं, चाहे जॉर्डन हो या अन्य क्षेत्र,
0: उन सबको टारगेट किया जा रहा है और ईरान की तरफ से। और ईरान ने कह दिया यहां पर हम शांत नहीं बैठने वाले। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ईरान है, अमेरिका है, और दोनों की जंग को लेकर एक और बड़ी खबर है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया। ईरान के करज में हमले के बाद धमाकों की आवाज सुनाई थी। करज के कई इलाकों में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही। अब देखिए, अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर गिरता है, फिर अमेरिका ईरान पर हमला करता है, ईरान फिर अमेरिका पर हमला करता है, और फिर यह खबर आ रही है कि अमेरिका ने ईरान के, ये बताया जा रहा है कि ईरान के करज में हमले किए, धमाकों की गूंज सुनाई दी। दोनों तरफ से वो हमले हो रहे हैं। जहां बात एक तरफ शांति तक पहुंच गई थी जो कि अस्थाई थी, लेकिन अस्थाई शांति को स्थाई शांति में बदलने की कोशिशें जारी थी, और उसी बीच एक चिंगारी और फिर धमाकों की गूंज। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि डील साइन करना ईरान के लिए युद्ध से ज्यादा अच्छा विकल्प है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से कह रहे हैं कि ईरान को डील साइन करनी चाहिए।
2: At first they said they didn't do it, then they admitted they did it. Sort of easy, because we have the bomb. We actually have the bomb. We got very lucky that bomb didn't explode. That bomb was lodged in the helicopter, it didn't explode. It was on fire, but it didn't explode. It's just, those two guys, they knew how to fly, but they got very lucky. And then we had the unmanned boat going very, very fast at speeds that you wouldn't want to go.
3: CENTCOM, Central Command, will be busy tonight, because President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be. Because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it. So, as President Trump said, they've been tap, tap, tapping. You can see when someone's trying to tap, tap, tap on a deal. Instead, they're going to have tap, tap, tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America. And that's not because we want to restart anything. We don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
0: तो हर जगह ईरान अमेरिका की बात की जा रही है। तो ईरान अमेरिका से जुड़े कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, वहां की स्थिति आपको समझाते हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं कि आखिर हो क्या रहा है। अमेरिका ईरान जंग तेज हो गई है। ईरान का मिसाइल से ड्रोन अटैक होता है, 18 अमेरिकी बेस टारगेट किए जाते हैं ईरान की तरफ से। अमेरिका की भारी बमबारी, दक्षिण ईरान में तबाही होती है, जोरदार अमेरिका की तरफ से होता है। अब हॉर्मुज बंद करने का दावा ईरान की तरफ से कहा जाता है, मतलब जो जहाजों की आवाजाही कुछ वक्त के लिए शुरू हो गई थी वो फिर से बंद हो जाती है। लेकिन इसी बीच, जंग के बीच, ईरान की वॉलीबॉल टीम का एक जज्बा दिखाई दिया, ब्राजील के लिए रवाना हुई, और रवानगी से पहले टीम के खिलाड़ियों ने मिलिट्री स्टाइल में सैल्यूट किया। तो वो तस्वीरें आप देखिए, ये ईरान की वॉलीबॉल टीम है और मिलिट्री स्टाइल में सैल्यूट किया जा रहा है। रावलकोट में जबरदस्त विरोध हुआ, एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रदर्शन, हजारों लोग रात भर जुटे रहे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के रावलकोट में रविवार रात को लोगों का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें पूरे इलाके से हजारों लोग इकट्ठा हुए। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें पाकिस्तान की नींद खोलने के लिए काफी है। ये तस्वीरें हत्यारे मुनीर को सच का आईना दिखाने के लिए काफी है। शहर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे ये विरोध प्रदर्शन हाल के महीनों में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में हुए सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक बन गया। ये देखिए रावलकोट में जनसैलाब, बगावत का अब बिगुल बजा दिया गया है, और जब ये बिगुल बजा तो पाकिस्तान की नींद हिल गई। मांग पर प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं, फायरिंग के बाद भी डटे हुए हैं, क्योंकि उनको उनका हक चाहिए, उनको पाकिस्तान के जुल्म से आजादी चाहिए। और अब बात भारत बांग्लादेश बॉर्डर की, जहां जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। फेंसिंग हो रही, लेकिन अभी तनाव वहां पर है। ये तनाव एक घुसपैठिए को वापस भेजने को लेकर हुआ। अब जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हिरासत में लेने के बाद बॉर्डर के उस पार वापस भेज दिया, जहां से आया है वहीं जाओ। लेकिन बॉर्डर पार करने के बाद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और बांग्लादेश की तरफ से स्थानीय लोगों ने उस व्यक्ति को लेने से इनकार कर दिया। खबर है कि वो व्यक्ति बॉर्डर फेंसिंग के उस पार फंसा हुआ है, जिससे इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। अब सूत्रों के मुताबिक ये घटना महेंद्रगंज के पास नंदिर चार सेक्टर में हुई। यहां एक व्यक्ति जिसके बांग्लादेशी नागरिक होने का आरोप है, बीएसएफ ने हिरासत में लिया था, और आरोप है कि वो मेघालय बॉर्डर से गैर कानूनी तरीके से भारतीय इलाके में घुस आया। अब ये माना जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर बारीकी से नजर रखी हुई है। खबर जो मिली है अभी तक बीएसएफ या बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन तनाव बना हुआ है। ये देखिए, एक तरफ बीएसएफ है, दूसरी तरफ बीजेपी है। तापस सिंह गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, क्या स्थिति बनी हुई है?
4: जी देखिए, स्थिति पिछले दो दिन से काफी तनावपूर्ण बनी हुई थी। ये दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स के पास की घटना है, जहां मेघालय से सटा हुआ जो बांग्लादेश का सीमा है, वहां से एक घुसपैठ करने की एक शख्स कोशिश कर रहा था। तो उस समय बीएसएफ ने उसे धर दबोचा, उसे पूछताछ करने के बाद उसने कबूल किया कि वो बांग्लादेशी नागरिक है। उसे जब वापस भेजे जाने की मुहिम चली गई, उसे जीरो लाइन पर ले जाकर दूसरे चौक पर भेजा जा रहा था। तभी ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की ओर से काफी तादाद में बांग्लादेशी नागरिकों को साथ लेकर वो बीएसएफ के सामने पहुंचे और उस शख्स को अपने देश में वापस लेने से इनकार कर दिया। इससे तनाव काफी ज्यादा फैल गया था। धीरे धीरे भारत की तरफ से भी कई जगहों पर लोगों की जमावड़ा देखने को मिल रहा था, लेकिन फिलहाल स्थिति गंभीर है। और ये
0: स्थिति गंभीर है, लेकिन तापस एक बात बहुत स्पष्ट है कि अब बॉर्डर पर निगरानी बहुत चुस्त है। अगर कोई आता है तो तुरंत वापस भेज दिया जाता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। हरियाणा के हांसी में सरेआम जिम संचालक की एक के बाद एक कई गोलियां डालकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने जिम संचालक को गोलियों से भून दिया और बाइक से फरार हो गया। आज सुबह की बात है, हमलावरों ने जिम संचालक को 10 गोलियां मारी हैं। इस फायरिंग के दौरान एक लड़की भी घायल हो गई। इस वारदात की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं और इसी के आधार पर हरियाणा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये देखिए, यहाँ पर कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, लेकिन पीछे जैसे ही एक शख्स खड़ा रहता है, वो बताया जा रहा है जिम संचालक है, और उसके ठीक आगे एक लड़की है। बाइक से लोग आते हैं, एक के बाद एक कई फायर करते हैं, 10 गोलियां दागी जाती हैं। जिम संचालक मौके पर ही ढेर हो जाता है और दूसरी तरफ एक महिला भी घायल हो जाती है। यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
8: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
10: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffeehouse Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffeehouse favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffeehouse or ask your device to play Coffeehouse on TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
10: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
9: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
11: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
12: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
13: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
14: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
15: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
13: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
16: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
14: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
13: जहां खबर वहां खबरदार।
17: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
18: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

0: 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर मोदी सरकार। नीति आयोग की बैठक में आज बड़ा मंथन, मुख्यमंत्रियों के साथ एक्शन प्लान पर विस्तार से विचार। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ अर्जी, दिल्ली से भोपाल तक सियासी तनातनी। ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत की आग और भड़की, बीजेपी का दावा। शत्रुघ्न सिन्हा और सयानी घोष ने भी बुलंद किया विरोध का झंडा। टीएमसी का लिस्ट फर्जी होने का आरोप।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 10 जून यानी इतिहास के पन्नों में दर्ज नए कीर्तिमान की तारीख। लगातार सबसे लंबे समय तक जनता की वोट के दम पर मिली जीत से प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड अब नरेंद्र मोदी के नाम है। मोदी ने आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन तोड़ने से अधिक यह तारीख जोड़ने के लिए याद रहेगी, जो बताती है कि जनता से जुड़ने वाला लीडर ही जनता का उस दौर में सुप्रिय बन जाता है जब लगातार 3 बार सत्ता हासिल करना दुनिया के विभिन्न लोकतांत्रिक देशों में असंभव है, लेकिन जनता को भगवान मानने वाले नेता की अनुभव कर देती है।
2: आया गया कि मैं पहली बार यहां आया हूं, शायद मेरे जीवन में हर बार ऐसा ही हुआ है। मुख्यमंत्री बना उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री की चैम्बर देखी थी, मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने विधानसभा गृह देखा था। आज भी ऐसा ही एक अवसर आया है, लेकिन हम इस ऐतिहासिक स्थान पर बैठे हैं। तब मैंने प्रारंभ में कहा यह लोकतंत्र का मंदिर है, 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं इस पवित्र मंदिर पर टिकी हुई है।
3: लोकतंत्र के उसी मंदिर में अब 140 करोड़ लोगों की आकांक्षा की पूर्ति के लिए प्रधान सेवक के पद पर नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के विश्वास को ऐतिहासिक 12 साल हो चुके हैं। जब नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो कैबिनेट ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, प्रधानमंत्री को बधाई दी, मंत्रियों ने उनकी उपलब्धि पर खड़े होकर तालियां बजाई, मेज थपथपाई। 12 साल कहना शायद पूरी तरह सही ना हो, सही होगा कहना कि 4,399 दिन से नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। जिस दौर में सत्ता से हाथ छूटने पर गठबंधन का साथ छोड़ने में पल भर सियासत नहीं लगाती, राजनीति के उस युग में भी 35 दल, 75 नेता, 22 मुख्यमंत्री को साथ लेकर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। आज से नहीं, लगातार, अनवरत, निरंतर।
4: मैं अभिभूत हूं, कृतज्ञ हूं। चरैवेति चरैवेति के मंत्र का जाप करते हुए इस राजनीतिक यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए एक दिन ये पड़ाव भी आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था।

0: 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई, संसदीय दल ने नेहरू को अपना नेता चुना। पंडित नेहरू 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक लगातार निर्वाचित पीएम रहे। नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल 4,398 दिन का रहा। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री, जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री, 4,399 दिन अब पूरे कर चुके हैं। इसीलिए निर्वाचित पीएम के तौर पर मोदी ने कीर्तिमान रचा है। उसी कीर्तिमान को रचने वाले ऐतिहासिक मौके पर भारत मंडपम में पूरा एनडीए एकजुट होता है। रिकॉर्डधारी प्रधानमंत्री का लगातार जनता के बीच चुना जाना क्यों ऐतिहासिक है, ये गृह मंत्री बताते हैं। एनडीए की इसी बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पीएम मोदी के सम्मान में एक विशेष प्रस्ताव पेश करते हैं। प्रस्ताव में पीएम मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री बनने का उल्लेख किया जाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और बताते हैं कि मोदी केवल 12 साल के नहीं बल्कि इस सदी के लीडर हैं।
1: 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू नरेंद्र मोदी जी, ऑलवेज इज एनर्जेटिक, नॉट ओनली एनर्जेटिक, ही विल गिव एनर्जी फॉर अदर्स, दैट इज हाउ ही इज मेंटेनिंग हिमसेल्फ। फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी जी इज इक्वल टू एनी लीडर इन द वर्ल्ड, I can say very clearly, all surveys are indicating who is very popular leader globally, that is our Honorable Prime Minister, that is our pride for the nation, we are very happy for that.
2: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल, सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व में आज हमारा भारत विकास और समृद्धि के नए क्षितिज को छू रहा है। मोदी जी के इसी मजबूत नेतृत्व के बदौलत आज देश विकसित भारत बनने की राह पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज भारत सिर्फ प्रगति ही नहीं कर रहा है बल्कि प्रगति की नई परिभाषा लिख रहा है।
3: हम लोग इस गठबंधन का हिस्सा बने और पिछले 12 सालों से निरंतरता से न सिर्फ हमारा ये रिश्ता मजबूत रहा बल्कि एनडीए गठबंधन का दायरा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कई और राजनीतिक दल इस गठबंधन का हिस्सा बने, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सबको एक साथ लेकर चलने की उनकी सोच, सबको परिवार की तरह उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े होने की सोच ने ही उनको आज देश के सर्वोच्च नेता की श्रेणी में सबसे अग्नि, सबसे आगे उनको खड़ा करने का काम किया।
0: जिस वक्त विपक्ष चुनावी हार के बाद बिखरा हुआ है, तब सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए नए उच्चमान स्थापित करते नरेंद्र मोदी एनडीए की बैठक में कांग्रेस शासनकाल याद कराते हैं। बताते हैं कि पहले विफलता कांग्रेस की होती रही लेकिन कलंक हिंदू आबादी पर लगाया जाता रहा।
4: सवाल ये है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा।
5: हमारे भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है, वहां पर नेता पर विश्वास होना अपने आप में अभूतपूर्व है। हमारे देश की जनता का मोदी को पिछले 12 वर्षों से दिया जाने वाला समर्थन मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनाता है। जहां एक तरफ दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों की सरकारें कमजोर हो रही हैं, नेताओं को अपने पद से हाथ धोना पड़ रहा है, वहीं नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री पद पर रिकॉर्ड बनाकर मिसाल कायम कर रहे हैं।
6: प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस।
7: आई डोंट नीड टू टेल एनीवन हियर, ही इज द मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर फॉर अ रीजन।
8: I think you are an inspiration for the rest of the world.
9: The thing is that the most loved one of all around the world.
10: Prime Minister Sri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude. I am a fan of Modi, so.
11: His vision for digital India, was ahead of its time.
0: नरेंद्र मोदी भारत में सबसे लंबे वक्त तक सत्ता के शिखर पर रहने वाले नेता ही नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुनिया के भी सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं।
12: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
1: ए हिस्टोरिक ट्रिब्यूट टू इंडिया लॉन्गेस्ट सर्विंग कंटिन्यूअसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 32 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सर्वोच्च या नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुकी हैं, जिसमें फ्रांस, रूस, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं। जब दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में जनता सरकारें बदल रही हैं, तब भारत में 12 वर्षों से नेतृत्व और नीतियों में निरंतरता है। यही बात दुनिया को नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान से भर देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जो मोदी की तारीफ का कोई मौका नहीं छोड़ते। आज तक से बातचीत में पुतिन ने मोदी को लेकर जो कुछ कहा था वो आपको सुनना जरूरी है।
13: He's a very reliable person. In that sense, I'm speaking very sincerely. India got lucky. He lives India. I'm talking to him and I know him.
0: व्लादिमीर पुतिन हो या फिर दुनिया का दूसरा कोई बड़ा नेता, सबकी एक राय है कि दबाव डालकर नरेंद्र मोदी को झुकाना नामुमकिन है।
4: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है, दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतरकर दिखाना है। साथ ही हमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है। हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है।
0: मोदी की यही बात दोस्तों को भाती है, जिनके लिए भारत किसी प्रेरणा से कम नहीं है। ये बात दुनिया भर के नेताओं की तरफ से भेजी गई शुभकामनाओं में भी दिखती है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने बधाई संदेश में लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने कई वर्षों तक भारत के विकास और प्रगति का नेतृत्व किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि न केवल आपके कार्यकाल की अवधि को दर्शाती है, बल्कि उस भरोसे और विश्वास का भी प्रमाण है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता ने बार बार आपके नेतृत्व में जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने भारत की सीमाओं से परे श्रीलंका सहित कई देश के लोगों को प्रेरित किया है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक निजी वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को एक रोल मॉडल और लीडरशिप की मिसाल बताया है।
14: Congratulations on reaching a historic milestone, the longest continuous prime minister of the great country of India. You have now surpassed the record as the longest serving prime minister of India.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री पद पर रहने की 4,398 दिन के रिकॉर्ड को ही पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि वो 9,013 दिन से सत्ता के शिखर पर रहने वाले एकमात्र नेता है जो लगातार सीएम और पीएम पद पर रहते हुए 25 साल पूरे कर चुके हैं।
4: मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने वालों में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पिछले दिनों रोम में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके और एक विशेष रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत करके खुशी हुई, जो भविष्य में हमारे देशों और लोगों के लिए नए अवसर बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगी। दुनिया भर के करीब 20 देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को 146 करोड़ लोगों का नेतृत्व करते हुए 12 साल पूरे होने पर बधाई दी। दुनिया के लिए हैरानी की बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी इतनी लंबी पारी खेलने के बावजूद भारत की तरह पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कैसे हैं? ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट ने अप्रैल 2026 में बताया कि मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा 70% अप्रूवल रेटिंग वाले नेता हैं। उनके बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग 63% अंकों के साथ हैं। ईरान संघ युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे नीचे से 10वें नंबर पर हैं।
4: इन वन डेकेड इंडिया हैज सीन अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन देन वी वेयर द 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड Now, we are knocking on the doors of the top three.
0: बड़ी बात यह है कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले दूसरे देशों के नेताओं की छवि लगातार वहां की जनता की नजरों में कमजोर हो रही है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज सर्वे में दुनिया के सबसे अलोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। करीब 76% उत्तरदाताओं ने उनके कामकाज से असंतुष्टि दिखाई, जबकि वो पिछले साल मई महीने में जर्मन चांसलर बने। सर्वे में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन दूसरे सबसे अलोकप्रिय नेता हैं। उनके काम से 75% उत्तरदाता असंतुष्ट रहे। लोकतांत्रिक देशों में नेताओं की इस अलोकप्रियता की वजह जंग के कारण महंगे तेल से बढ़ती महंगाई और कमजोर होती उनके देश की अर्थव्यवस्था है, खतरनाक होती दुनिया नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, जिसके असर से जनता को बचाने में मोदी सरकार अब तक खुद को कामयाब बताती है।
5: सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य करने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम बन चुका है और वो अभी भी प्रधानमंत्री हैं। इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
17: To kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
18: You use AI every day, but what if you built what it runs on? WGU's online software engineering degree helps you turn your coding skills into a future-shaping career. Learn more at wgu.edu.
19: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news...
20: After multiple assassination attempts, they can't even get...
21: They're reliable.
22: Always when I need them.
19: To live sports action.
23: One-hand jam by LeBron on the break.
24: That's another three, Steph Curry.
19: And your favorite music.
25: Well, the dawn begins to crack.
19: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
26: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
27: Money, money, money, money, every month.
28: Soch batlo aur bank bhi.
0: अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ राम कथा से 2027 के सियासी महाभारत का संदेश सुनाते हैं। जिस अयोध्या का राम मंदिर बनवाकर भी 24 में जाति में वोट बंटने से अयोध्या से जुड़ी लोकसभा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, वहां राम के नाम पर अस्त्र शस्त्र सत्ता और विपक्ष में चलने लगा। पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, लिखा राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज किया।
29: उच्च कोर्ट में और
0: जब लखनऊ में बीजेपी विधायक की तरफ से कराई जाती रामकथा में मुख्यमंत्री पहुंचे तो नया सियासी संदेश सुनाई दिया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं निगेटिव ताकतें रावण काल की तरह सिर उठाएंगी तो उजाड़ करेंगी। क्या योगी का निशाना विपक्ष है, जहां पर वो खर दूषण मारीच ताड़का तक की बात करके एक ऐसी रामकथा का जिक्र करते हैं जिसमें चाचा मामा का नाम आते ही तंजनुमा हंसी आती है। इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं, जब दावा हो रहा है कि हिंदू लड़कियों ही नहीं हिंदू लड़के तक को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, तब मुख्यमंत्री योगी लव जिहाद के खिलाफ श्री राम से सीख लेने को कहते हैं। लव जिहाद ही नहीं बल्कि त्रेता युग में खरदूषण मारीच के जरिए कलयुग में लैंड जिहाद तक का जिक्र योगी आदित्यनाथ करते हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: और एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, टीएमसी के एक और राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी राज्यसभा के सांसद प्रकाश चेक बराइक राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके हैं। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और अब बताया जा रहा है कि तीसरे राज्यसभा सांसद प्रकाश चेक बराइक इस्तीफा दे चुके हैं। और कल ही जब हिमांशु मिश्रा से हमारी बात हो रही थी, हमारे सहयोगी, उन्होंने कहा था कि कल एक और विकेट गिर सकता है। और देखिए, आज एक और सांसद ने इस्तीफा दे दिया टीएमसी के, और अब यह बताया गया है कि सिर्फ 10 सांसद रह चुके हैं राज्यसभा में, अब 10 रह जाएंगे क्योंकि 3 इस्तीफा दे चुके हैं, सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और अब प्रकाश चेक बराइक। रुकेंगे एक और बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
4: एकोजे, द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: Oh, I have had no luck lately. Wait, lady luck?
1: Bretzky, I got you. I've had so much luck on SpinQuest.com. They have all of my favorite games, slot games, live blackjack craps, and bubble craps. You can even get a $30 coin pack for just 10 bucks.
0: 10 bucks for 30? I'm headed over to SpinQuest.com right now.
2: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
3: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
4: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
5: You're listening to CNBC.
6: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
7: Keep it on smooth jazz.
8: This is Roots Reggae.
9: Exclusively on TuneIn.
10: This is classic hip-hop.
11: Exclusively on TuneIn.
4: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn, and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
12: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
13: Buzz, did you know APG&E offers a choice of affordable fixed-rate electricity plans and that they have thousands of 5-star reviews?
14: Where did you see all this?
13: Online at apge.com.
14: Watson, you're always so plugged in.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
15: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
16: फोन की घंटी बजती है, एक मैसेज आता है, किसी लिंक पर क्लिक होता है और कुछ ही मिनटों में बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। साइबर ठगी का जाल इतना बड़ा हो चुका है कि अपराधी हजारों किलोमीटर दूर बैठकर लोगों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता ये है कि इस खेल में विदेशी गैंग, फर्जी सिम कार्ड और किराए के बैंक खाते बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। डेटा के मुताबिक सालाना साइबर अपराध 1 लाख के करीब पहुंच गए हैं, जिनमें ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी निवेश स्कीम और डिजिटल ठगी सबसे बड़ी चुनौती हैं। कई मामलों में विदेशी नेटवर्क भारतीय सिम और बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें खुलासा हुआ है कि 36,000 भारतीय सिम कार्ड कंबोडिया से ऑपरेट किए जा रहे थे। इनमें 5,300 सिम कार्ड तो सीधे साइबर फ्रॉड मामलों से जुड़े मिले हैं। ये सिम ग्राहकों के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके एक्टिवेट किए गए थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन सिम कार्ड का इस्तेमाल व्हाट्सएप कॉल्स और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को फंसाने में किया जा रहा था। साइबर अपराधी ठगी की रकम इधर उधर भेजने के लिए म्यूल अकाउंट का यूज करते हैं। हाल ही में गुजरात में करीब 398 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिनमें 228 साइबर शिकायतों से जुड़े बैंक खातों की पहचान की गई है। इसमें 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जो कई खातों के जरिए ठगी की रकम देश भर में ट्रांसफर कर रहे थे। जांच में सामने आया कि कुछ लोगों को कमीशन का लालच देकर उनके नाम पर फर्म और बैंक खाते खुलवाए गए। बाद में एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी साइबर गिरोहों तक पहुंचा दी गई। इसके बाद ये खाते ठगी के पैसों को छिपाने का जरिया बने। लगातार बढ़ते साइबर फ्रॉड के बीच पीड़ितों को राहत देने की कोशिशें तेज हो गई हैं, जिसके तहत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करने वालों को राहत मिलेगी। वहीं कई मामलों में

में ऑनलाइन रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फ्रॉड की रकम फ्रीज होने पर पैसा वापस मिलने का रास्ता आसान हो जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो डिजिटल दुनिया जितनी सुविधाजनक हुई है उतनी ही सतर्कता भी मांगती है। साइबर सुरक्षा अब एजेंसियों की जिम्मेदारी भर नहीं बल्कि हर मोबाइल यूजर की पहली जरूरत बन चुकी है। आदित्य के राणा आज तक।

0: 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर मोदी सरकार, नीति आयोग की बैठक में आज बड़ा मंथन, मुख्यमंत्रियों के साथ एक्शन प्लान पर विस्तार से चर्चा।
1: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ अर्जी, दिल्ली से भोपाल तक सियासी तनातनी।
0: भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव, बीएसएफ ने घुसपैठियों को वापस भेजा तो भारी विरोध, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और स्थानीय लोगों का जमावड़ा।
1: ईरान अमेरिका के बीच जंगी हालात, साउथ ईरान समेत कई इलाकों में स्ट्राइक, मिडल ईस्ट के यूएस बेस पर आईआरजीसी कामला F-35, F-15, F-16 फाइटर जेट्स तबाह करने का दावा, ईरान ने बंद किया हॉर्मुज।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1:11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम।
0: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा पराश। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, सीधा रुख करते हैं टीएमसी से। एक और राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल टीएमसी राज्यसभा के सांसद प्रकाश वैरायक राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके हैं।
1: इससे पहले टीएमसी के दो राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके हैं। अब ये सांसदों के जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
0: तो आज हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। हिमांशु, अब देखिए एक और इस्तीफा, ऐसे में अब टीएमसी में जो सांसदों की संख्या है 10 हो चुकी है, क्या लग रहा है आगे और इस्तीफे हो सकते हैं?
3: देखिए बिल्कुल, आने वाले दिनों में 2 से 3 इस्तीफे जो हैं वो और हो सकते हैं, और आज प्रकाश सिंह बहराई ने जो है वो इस्तीफा दिया है। अगर आप देखें तो प्रकाश सिंह बहराई जो है वो टी बागांग के बड़े मजदूर नेता रहे हैं और ममता बनर्जी के बहुत क्लोजेस्ट लोगों में थे, और उनको राज्यसभा से उन्होंने इस्तीफा दिया है। और जल्द ही जो है, क्योंकि कल सुष्मिता जो सिंह देव है उन्होंने इस्तीफा दिया था और उन्होंने हेमंता विश्व शर्मा से मुलाकात की थी, क्योंकि संगीता देव सिंह कांग्रेस से सांसद थी सिलचर से, उसके बाद वो टीएमसी गई और आसाम की पॉलिटिक्स करती हैं। और उससे पहले सुखेंदु
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वक्त हो गया है शतक आज तक का।

0: आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक जारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की कर रहे हैं अध्यक्षता। पीएम मोदी बैठक में शामिल, मीटिंग में 2047 के विकसित भारत के रोडमैप पर मंथन। बैठक की थीम विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखी गई है, जो कि चार प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित। बैठक में देशभर के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों, केंद्रीय मंत्रियों और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल। मीटिंग में मानव विकास के राष्ट्रीय विजन को राज्य स्तरीय योजनाओं के साथ जोड़ने पर भी जोर। आज कांग्रेस की अहम बैठक, राहुल खड़गे रहेंगे मौजूद, कांग्रेस महासचिव राज्यों के अध्यक्ष और प्रभारी भी होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा राजनीतिक हालात पर मंथन किया जाएगा, इसमें महंगाई जैसे मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई की रणनीति भी तैयार की जाएगी। राज्यसभा में टीएमसी को बड़ा झटका, प्रकाश बेराय के इस्तीफे के बाद और तीन सांसदों के छोड़ने की अटकलें तेज। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका, सूत्रों से खबर, 19 बागी लोकसभा सांसदों की सूची आई सामने। बागी सांसदों की सूची में शत्रुघ्न सिन्हा, सयानी घोष और यूसुफ पठान का नाम।
1: सीएम योगी आज दिल्ली से नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में शामिल होंगे। यूपी में बीएसपी की भाईचारा कमेटी की बैठक का दौर शुरू, दलित ओबीसी वोट बैंक को एकजुट करने का पार्टी का फोकस। पीडीए के जवाब में संगठनात्मक रिपोर्ट तैयार कर रही है बसपा। यूपी चुनाव से पहले एसपी कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर नया फॉर्मूला, जीत की गारंटी के आधार पर तय होंगे टिकट, मजबूत उम्मीदवारी और जाति समीकरण के आधार पर बटेंगी सीटें। यूपी मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण रोकथाम सेल बनेगा, गवर्नर के निर्देश पर सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में विशेष निगरानी सेल गठित करने का आदेश। केजीएमयू नेत्र विभाग जांच के घेरे में, मरीजों को बाहर से लेंस और दवाएं खरीद लिखने के आरोप, शासन स्तर पर रिपोर्ट की जांच, कार्रवाई की संभावना। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न, 75 जिलों में से 1183 केंद्र पर 3 दिन चली परीक्षा खत्म, 12 एफआईआर दर्ज, 9 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। यूपी में 60,000 शिक्षकों की भर्ती की तैयारी, खाली पदों का ब्यौरा आयोग को भेजा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पदों पर होगी भर्ती। फिरोजाबाद में दुष्कर्म के आरोपी मौलाना से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली, हुआ गिरफ्तार, तमंचा कारतूस बरामद। फिरोजाबाद में शराब के ठेके पर महिलाओं का हंगामा, लाठी डंडों से की तोड़फोड़, सड़क पर फेंकी शराब, आबकारी विभाग बोला दुकान नियमों के तहत जांच जारी। बुलंदशहर के होटल में युवती की संदिग्ध हालत में मौत, युवक के साथ कमरे में जहरीला पदार्थ खाने की आशंका, युवक अस्पताल में भर्ती, पुलिस मामले की जांच कर रही।
0: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद, आज चुनाव आयोग मीनाक्षी नटराजन के मामले पर फैसला सुना सकता है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से फैसला वापस लेने की अपील की, कांग्रेस का दावा है कि मीनाक्षी के खिलाफ तेलंगाना का मामला अभी शुरुआती चरण में। रांची से भी कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका, बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नामांकन वैध। कांग्रेस ने परिमल के नामांकन पत्र पर उठाए थे सवाल, नाम सही न लिखने का धारो। झारखंड में कांग्रेस को विधायकों की खरीद फरोख्त का डर, सभी 16 विधायकों को दिल्ली भेजेगी। दिल्ली दौरे पर तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय, सोनिया राहुल गांधी से की मुलाकात। डीके शिव कुमार भी पहुंचे दिल्ली, सोनिया राहुल प्रियंका से मुलाकात की। कसमंडी पासी किला विवाद गरमाया, लाखन आर्मी के मुखिया सूरज पासी 31 जिलों की यात्रा पर निकले। लाखन आर्मी पर कर रही है किले को शिव मंदिर घोषित करने की मांग, 31 जिलों की यात्रा के खिलाफ एआईएमआईएम और धर्मगुरुओं ने उठाए सवाल। लखनऊ में लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने भी किया मार्च, किले तक जाने से पुलिस ने रोका।
1: दयारा बुग्याल ट्रैक से लापता एमबीए छात्रा बबीता पांडे की तलाश, युद्ध स्तर पर बबीता की तलाश में 120 जवान, 3 ड्रोन, 200 मीटर नीचे मिली अंतिम लोकेशन। बागेश्वर की पिंडारी ट्रैक पर लापता पर्यटक की तलाश जारी, घटनास्थल पुलिस द्वारा रिक्रिएशन कर साक्ष्य जुटाने की कोशिश। मालवीय नगर अग्निकांड में एक और घायल ने तोड़ा दम, मृतकों का आंकड़ा हुआ 23। बिहार में टेंडर घोटाले में बड़ा एक्शन, 3 बड़े अफसर गिरफ्तार, ईडी की छापेमारी में मिले थे करोड़ों। मुजफ्फराबाद के पास पाकिस्तानी सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, सवार सभी लोग मारे गए। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए, डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा सचिव पीट हैक्सेल की चेतावनी के बाद कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी हमलों की ईरानी समाचार एजेंसी ने की पुष्टि, एजेंसी ने बताया कि ईरान के कीच द्वीप और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज सुनी गई। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद ईरान के सिरीक और मिनाब क्षेत्रों से बड़े विस्फोटक की खबरें सामने आई। हमले के तुरंत बाद देश के हिस्सों में जवाबी कार्रवाई के लिए एंटी एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम को तुरंत एक्टिव किया गया। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की, कमान ने कहा कि जो भी जहाज वहां से गुजरने की कोशिश करेगा उस पर गोली चलाई जाएगी।
0: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव लगातार जारी। अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के पास सतेबेलो नाम के एक ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला किया और जिससे जहाज के इंजन रूम में आग लग गई। इस टैंकर पर 28 क्रू मेंबर थे जिसमें 24 भारतीय शामिल थे। हादसे के बाद 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया जबकि 3 भारतीय अब भी लापता। इस घटना पर भारत सरकार ने कड़ी नाराजगी जताई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी राजदूत को तलब किया। ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया। कहा कि तेहरान ने शांति समझौते पर बातचीत में बहुत अधिक समय लिया और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ड्रोन को सख्त ईरान को सख्त चेतावनी। कहा कि ईरान ने बातचीत में देरी की, अब कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का जबरदस्त पलटवार। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर किया हमला। इससे पहले अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी ठिकानों को बनाया था निशान। ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। इस्माइल बगाई ने कहा, देश की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटेगी सेना। अमेरिका पर बार बार युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाया। यूरोप के नए प्रतिबंध पर रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया का बयान, नए प्रतिबंधों में कामयाब नहीं होगा यूरोपीय संघ, रूस देगा कड़ा जवाब। रूस के चेबुकसारी में सैन्य प्लांट पर यूक्रेन का बड़ा हमला। धू कर जली इमारत, तेल ठिकाने के बाद सैन्य प्लांट का किया हमला।
1: मॉस्को में कार में बम धमाका, कार में लगी भीषण आग, एक व्यक्ति की मौत। रूसी अधिकारियों ने विस्फोटक की जांच शुरू की। लेबनान में इसराइल का भीषण हमला, होमीन अल-फोका में उठा धुएं का गुबार। सीजफायर के बावजूद लेबनान पर हमले कर रहा है इसराइल। लेबनान सीरिया में इसराइली हमले पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का बयान, कहा इसराइल के हमले तुर्की के लिए भी खतरा। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में अंधाधुंध फायरिंग, बारह की मौत, 9 घायल। 10 से ज्यादा संदिग्ध हमलावरों ने गाड़ी से उतरकर नागरिकों पर की फायरिंग। इंडोनेशिया में ईरान जंग का असर, पेट्रोल की कीमतों में 32% का इजाफा, गैस सब्सिडी वाले ईंधन के दाम 30% बढ़े। इंदौर में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान टीम को बाहर करने पर हुआ विवाद, 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज, खिलाड़ियों के बीच मारपीट की घटना से हड़कंप। गुरुग्राम में मामूली सड़क विवाद को लेकर निजी बस चालक और कैंटर चला रहे सिख ड्राइवर के बीच मारपीट, घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। जानकारी के अनुसार एक कैंटर निजी बस के बीच हल्की टक्कर हुई, टक्कर के कारण निजी बस का साइड शीशा टूट गया, इसके बाद कहां सुनी हुई और विवाद हो गया। झांसी रेलवे की बड़ी लापरवाही, गड़मऊ के पास घंटों रुकी रही ट्रेन, भीषण गर्मी से पैदल निकले यात्री। यूपी के झांसी में कुत्ते के काटने की शिकायत में पड़ोसी ने युवक को जमकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल।
0: दिल्ली के सराय जुलैना रेड लाइट पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक हेड कांस्टेबल को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, सीसीटीवी से आरोपी वाहन की पहचान। मधेपुरा के एक हॉस्टल में 6 साल के छात्र की हत्या का खुलासा, वैध संबंध का राज खुलने पर ली गई मासूम की जान। फिरोजाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी मौलाना पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ, पैर में गोली लगने के बाद दबोचा गया। रुड़की में छतों से ताबड़तोड़ फायरिंग और पथराव का वीडियो तेजी से वायरल, आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस। वलसाड में डिलीवरी बॉय की ऊंचाई से गिरने के कारण मौत, सोशल मीडिया पोस्ट और मोबाइल की जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद शराब ठेके पर महिलाओं का हंगामा, तोड़फोड़ कर सड़क पर फेंकी शराब, आबकारी विभाग ने बताया राजनीति से प्रेरित मामला। अकोला में यूरिया के लिए रात भर लाइन में खड़े किसानों की मदद को आगे आया दुकानदार, नाश्ता और पानी कराया उपलब्ध। गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में चाकू लेकर घुसी महिला, इमरजेंसी में मची अफरा तफरी, वीडियो वायरल। गोरखपुर में मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण के दौरान टला बड़ा हादसा, रेलवे स्टेशन पर पलटी क्रेन, चालक और ऑपरेटर सुरक्षित। गोंडा में एसयूवी और बाइक की भीषण टक्कर, 4 लोगों की मौत और 2 के घायल होने की सूचना।
1: सुल्तानपुर में छेड़खानी के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, पैर में लगी गोली, तबंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। मेरठ में खुली जीप पे युवकों की खतरनाक सनबाजी का वीडियो वायरल, आप रोड पर चलती जीप पे लटक कर रहे थे करतब, पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। कानपुर देहात में नदी किनारे मिला संदिग्ध मोर्टार, मचार कम, ग्रामीणों को मिला विस्फोटक, इलाके में सील, जांच के लिए बम निरोधक दस्ता और फोरेंसिक टीम पहुंची। बांदा में बिजली संकट से ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, 25 दिन में अंधेरे में 350 ज्यादा घर, डीएम ऑफिस पहुंचे ग्रामीण, डीएम ने बिजली अफसरों को लगाई फटकार। सहारनपुर की छतों पर चमकी सोलर क्रांति, 10,000 से ज्यादा घरों को रोज 34 मेगावाट बिजली उत्पादन, बढ़ रही है ऊर्जा आत्मनिर्भरता।
0: बद्रीनाथ के जयकारों से गूंज उठा उत्तराखंड, बद्रीनाथ यात्रा में रिकॉर्ड 10 लाख श्रद्धालु का आंकड़ा पार। पिछले साल 25 जून को पार हुआ था 10 लाख दर्शन का आंकड़ा, इस बार 10 जून तक ही 10 लाख श्रद्धालु ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। भक्तों की भीड़ के साथ यात्रा मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार, श्रद्धालुओं को सुविधा और सुलभ दर्शन कराने में जुटा प्रशासन। खराब मौसम के बीच भी कम नहीं हुआ भक्तों का जोश, बड़ी संख्या के लिए दर्शन में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, मानसून के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासन तैयार। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 35.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 12 लाख लोगों ने दर्शन किए। आज फीफा फुटबॉल विश्व कप का होगा आगाज, अमेरिका कनाडा मेक्सिको की मेजबानी में 39 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता, पहली बार 3 देश कर रहे हैं संयुक्त मेजबानी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में होंगे कुल 104 मैच, ग्रुप स्टेज में होंगे 72 मुकाबले। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार खिताब के लिए 32 की जगह भिड़ेंगे 48 टीमें, 20 जुलाई को अमेरिका के न्यूजर्सी में खेला जाएगा विश्व कप का फाइनल। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का, मेक्सिको टोरंटो और लॉस एंजलिस में होगी ओपनिंग सेरेमनी, कई मशहूर सितारे दिखाएंगे जलवा। भारत में भी दिख रहा फुटबॉल विश्व कप का फीवर, केरलम में गलियों सड़कों से घरों तक दिख रहा है फुटबॉल का क्रेज।
1: नोएडा एयरपोर्ट से उड़ाने शुरू होने में बस कुछ दिन बाकी है, एयरपोर्ट ने इंडिगो के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया अंतिम ऑपरेशनल रेडीनेस एक्टिवेशन और ट्रांजिशन ट्रायल। ट्रायल विमान के उड़ने लैंड कराने से लेकर दोबारा उड़ान भरने तक हर प्रक्रिया का परीक्षण, व्यवस्था, तकनीकी प्रणाली, एजेंसियों के समन्वय की जांच। परीक्षण में विजुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम, पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, ग्राउंड पावर यूनिट, बैगेज हैंडलिंग सिस्टम और कार्गो संचालन जैसी सुविधाओं की जांच। विमान में केटरिंग, ग्राउंड हैंडलिंग, ईंधन भरने जुड़ी प्रक्रियाओं का परीक्षण, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, रिक्वायर्ड नेविगेशन परफॉर्मेंस, अप्रोच प्रक्रिया की भी जांच। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 15 जून से शुरू होने वाली है कमर्शियल उड़ानें, एयरपोर्ट पर पहले चरण में बनाया गया है एक रनवे और एक यात्री टर्मिनल।

0: रबात भारत बांग्लादेश बॉर्डर की, जहां जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। यह तनाव एक घुसपैठी को वापस भेजने को लेकर हुआ, जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने हिरासत में लेने के बाद बॉर्डर के उस पार वापस भेज दिया। लेकिन बॉर्डर पार करने के बाद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी और बांग्लादेश की तरफ से स्थानीय लोगों ने उस व्यक्ति को लेने से इनकार कर दिया। खबर यह कि व्यक्ति बॉर्डर फेंसिंग बाढ़ के उस पार फंसा हुआ है, जिससे इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति है। सूत्रों के मुताबिक यह घटना महेंद्रगंज के पास नंदरचार सेक्टर में हुई है। यहां एक व्यक्ति जिसके बांग्लादेशी नागरिक होने का आरोप है, वो बीएसएफ ने हिरासत में लिया था। आरोप यह है कि वो मेघालय बॉर्डर से गैर कानूनी तरीके से भारत की सीमा में दाखिल हुआ। माना जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। बीएसएफ या बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक बयान अब तक जारी नहीं हुआ है।
1: हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तापस हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आपको खबर बता रहे हैं, घुसपैठियों को वापस भेजने पर बॉर्डर पर काफी तनाव हुआ, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने वापस लेने से इनकार कर दिया है। तापस हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, पूरा मामला क्या है, क्यों इतना बवाल मचा है, स्थानीय लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है?
2: जी देखिए, ये दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स के पास जो भारत और बांग्लादेश का सीमा लगता है, उस इलाके में ये घटना हुई है, जहां पर एक शख्स ने बांग्लादेश से भारत घुसपैठ करने की कोशिश की और भारत में प्रवेश भी कर गया था। लेकिन वहां पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने उसे इंटरसेप्ट किया, उनसे पूछताछ करने के बाद ये पता चला और उसने स्वीकार किया कि वो बांग्लादेशी नागरिक है, वो भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया। तो उससे बातचीत करने के बाद, उसके दस्तावेजों को छानने के बाद, जब उसे दोबारा बांग्लादेश भेजने की कोशिश में थी बीएसएफ, तब बीजीबी ने अचानक से उस पर ये पुशबैक पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया और साथ में कई बांग्लादेशी नागरिकों को साथ में ले आए और स्थिति काफी तनावपूर्ण बन गई थी। लेकिन उसके बाद फ्लैग मीटिंग किया गया, उसके बाद भी कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला। सूत्रों के हवाले से खबर, ये शख्स भारत और बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन पर अभी भी मौजूद है, इसे भारत में प्रवेश आने दिया जाएगा या फिर उन्हें बांग्लादेश वापस लेगा, इस बारे में अभी भी कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कोई भी आधिकारिक रूप से ना बीजीबी ना ही बीएसएफ की ओर से कोई पुष्टि की गई है। हालांकि इस मामले को ध्यान में रखते हुए चौकसी बढ़ा दी गई है भारत बांग्लादेश सीमा में, और यह पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले भी बंगाल के कई इलाकों में इस तरह की घटनाएं हुई थी, लेकिन फिलहाल इस शख्स का क्या भविष्य होगा, इसको लेकर बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो गया।
0: रिकॉर्ड्स और इसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, या फिर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है जो साबित करते हो कि किस सीमा के पार किधर जाना चाहिए इसे, या कहां की इसकी नागरिकता है?
2: जी देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि इनके पास से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए जो ये पुष्टि करता है कि ये बांग्लादेशी नागरिक है, और उसने बकायदा कबूल भी किया है कि वो बांग्लादेशी नागरिक है, वो काम के तलाश में भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बावजूद इसके तमाम दस्तावेज सामने रखने के बाद उस शख्स ने बीजीबी और बीएसएफ के सामने भी ये बयान रखा, बावजूद इसके बीजीबी उन्हें वापस लेने को तैयार नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी कोशिश जारी है कि उसे बांग्लादेश भेजा जाए। लेकिन इस पूरे मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, ये वीडियो सामने
0: ठीक है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी में टूट, कानूनी आधार पर असली पार्टी का दावा करेंगे बागी गुट। टीएमसी अपने संविधान के हिसाब से नहीं चल रही थी, कई फैसले पार्टी संविधान के खिलाफ थे। लोकसभा स्पीकर को लिखे पत्र में काफिली घोष ने विस्तार से यह जानकारी दी है। टीएमसी में टूट का मामला शिवसेना और लोजपा की तरह विलय की आवश्यकता नहीं होगी, अलग गुट को ही मान्यता मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो बागी गुट अब टीएमसी पर अपना दावा करेगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अलग पार्टी बनेगी, इसका अलग सिंबल अलग नाम होगा, या फिर महाराष्ट्र की तर्ज पर ही वहां पर बंगाल में देखने को मिलेगा संविधान के मुताबिक पार्टी ना चलने की शिकायत। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, महाराष्ट्र की तर्ज पर ही ये पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है, और ये कौन सा गुट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब तो सभी बागी हो गए हैं। ये विधायक वाला बागी गुट है, ये एमपीज वाला बागी गुट है, कौन सा गुट है ये?
3: ये सांसदों का जो गुट है, काकोली घोष जिसका नेतृत्व कर रही है बागी सांसदों का, उन्होंने उनके अनुसार जो है पार्टी जो है वो पार्टी के संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, और उसी आधार पर जो है वो एक अलग गुट की मांग करेंगे, और इसमें किसी भी पार्टी में विलय की कोई वो नहीं रहेगा। ये उस तरीके से होगा जिस तरीके से जो है शिवसेना जो है उसमें टूट हुई और एकनाथ शिंदे के अलग गुट को मान्यता मिली, एनसीपी की जो टूट हुई उसमें एनसीपी के अंदर अजीत पवार गुट को अलग मान्यता मिली, एलजेपी में जो टूट हुई उसमें पशुपति पारस के अलग गुट को मान्यता मिली थी, तो ये उसी आधार पर होगा।
0: तो हम ये मान लें कि पार्टी सिंबल और पार्टी नाम वही रहेगा, सिर्फ दो अलग गुट हो जाएंगे, जिसमें एक ममता बनर्जी टीएमसी को लीड करेंगी और दूसरा गुट ये होगा।
3: जी दूसरा गुट वो होगा, और उसके बाद जो लड़ाई है पार्टी के अंदरूनी लड़ाई है वो दोनों ही गुटों की तरफ से अगर कोशिश की जाएगी, जो सिंबल की लड़ाई है पार्टी के नाम की है उसको लेकर जो है चुनाव आयोग दोनों ही दल जा सकते हैं, दोनों ही गुट जाए जा सकते हैं, और उसके वहां पर भी अगर किसी को आपत्ति हुई चुनाव आयोग के फैसले के बाद तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया जा सकता है, जैसे जो है वो उद्धव ठाकरे के मामले में हुआ और उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट गए थे वो, तो उसके बाद जो है हम सब जानते हैं वहां क्या रहा। तो ये तमाम इस तरीके की चीजें होती हैं जब पार्टियां अपने संविधान के अनुरूप जो है काम नहीं करती हैं और उन्हीं को मुद्दा बनाकर जो है बागी गुट ये दावा करते हैं कि वो असली पार्टी है। इसी आधार पर काकोली घोष दफ्तवार जो है वो ये दावा करेंगी कि वो असली टीएमसी है, पार्टी के अंदर जो है संविधान के अनुरूप जो है वो काम नहीं हो रहे थे, जो संविधान के अनुरूप जो है जिन एग्जीक्यूटिव बॉडी है जनरल बॉडी है वो काम नहीं कर रही थी। तो ये तमाम इश्यूज को लेकर स्पीकर को पत्र लिखा और इसलिए अलग गुट की मांग की जा रही है।
1: चलिए ठीक है मानशु, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, टीएमसी के एक और राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी राज्यसभा के सांसद प्रकाश बहराइक राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके हैं। इससे पहले टीएमसी के दो राज्यसभा सांसद सुकेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके हैं, और आज प्रकाश बहराइक के इस्तीफे के बाद टीएमसी के राज्यसभा में 10 सांसद रह जाएंगे, और माना जा रहा है कि अगले एक हफ्ते में 2 से 3 सांसद और इस्तीफा दे सकते हैं। राज्यसभा सांसद प्रकाश बहराइक ने इस्तीफा सौंप दिया है और ऐसे में अब राज्यसभा में 10 सांसद रह गए हैं टीएमसी। रुकेंगे यहाँ शुरू से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर। इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Stay in the game with TuneIn. Hear non-stop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
7: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
4: AU सोच बदलो और बैंक भी।
5: इन एसोसिएशन विद
6: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: हिंट, बड़े आराम से
6: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
5: विमल बोलो जुबां केसरी।
7: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
8: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
9: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: और भड़की राजस्थान पार्टी का एक और विकेट गिरा। सांसद प्रकाश चिकबराई का इस्तीफा। बागी गुट ने स्पीकर को खत लिखकर पार्टी पर किया दावा। दो हजार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर मोदी सरकार। नीति आयोग की बैठक में आज बड़ा मंथन। मुख्यमंत्रियों के साथ एक्शन प्लान पर विस्तार से विचार। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस से घट रहा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ अर्जी। दिल्ली से भोपाल तक सियासी तनातनी। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव। बीएसएफ ने घुसपैठिए को वापस भेजा तो भारी विरोध। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और स्थानीय लोगों का जमावड़ा। ईरान अमेरिका के बीच जंगी हालात। साउथ ईरान समेत कई इलाकों में स्ट्राइक। मिडल ईस्ट के यूएस बेसिस पर आईआरजीसी का हमला। F-35 F-15 F-16 फाइटर जेट्स तबाह करने का दावा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर।
0: रिकॉर्ड 11 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर लेते हैं राजनीति की खबर की। दरअसल ममता बनर्जी की टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। एक के बाद एक सांसदों का इस्तीफा हो रहा है। ऐसे में लोकसभा सांसदों में की गुटबाजी और राज्यसभा के सांसदों की ओर से इस्तीफे दिए जा रहे हैं। आज भी एक सांसद ने इस्तीफा दिया। 8 मई से ये सिलसिला शुरू हुआ। पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा और टीएमसी छोड़ी और उसके बाद कल सुष्मिता देव ने टीएमसी और राज्यसभा को अलविदा कहा तो आज प्रकाश बैराइक ने इस्तीफा दे दिया है।
2: अच्छा आप इस्तीफे में क्या
3: बीजेपी जीता है। बार बार रहते हुए मेरा भी कंस्टिट्यूएंसी में एक भी सीट नहीं जीते। मैंडेट देखते हुए मैं
2: नहीं लेकिन क्या हमने नाराजगी थी अभिषेक ने बात अच्छा आप इस्तीफे में क्या वजह बताइए
4: प्रकाश जी पूरा डिटेल में बताइए क्या वजह।
5: मैं दो वर्ड में ही बोल रहा हूँ।
4: हाँ आप बताइए।
5: पश्चिम बंगाल का जो मैंडेट है इस गणतांत्रिक देश का गणदेवता यानी कि पब्लिक राय दिया। भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीती सरकार बनी। मेरा भी कंस्टिट्यूएंसी में एक भी सीट हम लोग नहीं पाए। नॉर्थ बंगाल का भी सीट अच्छा नहीं है। रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। इस मैंडेट को देखते हुए मुझको भी लगा कि ना अब रहना ठीक नहीं है। मैं अपना पद से भी इस्तीफा दिया पार्टी से भी इस्तीफा।
6: क्या ममता बनर्जी से आपकी बातचीत हुई?
5: नहीं
4: नहीं मतलब कोई रिजल्ट ही एक
6: कोई नाराजगी थी कुछ कोई नाराजगी थी ममता बनर्जी।
5: मैं दूसरा कोई टॉपिक में बात नहीं करना चाहता।
6: ममता बनर्जी से कोई नाराजगी थी?
5: नहीं मैं दूसरा कोई टॉपिक
7: में बात नहीं करना चाहता।
5: उस समय कोई का इंतजार कीजिए। मेरा जो देखिए मेरा उम्र ज्यादा नहीं है। इन फ्यूचर पॉलिटिक्स में क्या करना है नहीं वो समय समय के इंतजार कीजिए। समय की प्रतीक्षा कीजिए।
6: और भी कोई सांसद है आपके साथ?
5: मुझको मालूम नहीं
4: टीएमसी में क्या दिक्कत। टीएमसी में क्या दिक्कत?
5: मैं बार बार बोला ना ये जो असेंबली इलेक्शन का जो मैंडेट है ये तृणमूल कांग्रेस का पक्ष में नहीं था बीजेपी के पक्ष में है। ऑब्वियसली गणतांत्रिक देश का गणदेवता यानी कि पब्लिक अगर चाहता है कि यह पार्टी को जिताए इसको मैंडेट ना मिले। इस जनाधार को देखते हुए जिस तरह से सिचुएशन चल रहा है सब चीज को देखते हुए मेरा भी पर्सनल डिसीजन हुआ कि नहीं।
6: लेकिन आपको क्या सोच? आप ये सोच रहे थे सभी लोग छोड़ के जा रहे हैं तो हम भी छोड़ के चलते हैं।
5: मैं कौन? मैं तो एक छोटा सा एक सांसद था। बड़े बड़े सांसद बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो थे वो भी अपना डिसीजन लिए तो मेरा तो फर्स्ट टाइम।
6: आपके पास कहीं से कॉल भी आया था?
5: कहाँ से
6: कॉल भी आया था आपके पास?
5: ना आज नहीं आया।
7: अरे रुको यार रुको कर लो यार एक एक करके।
8: बंगला में दीदी
7: बांग्लार
8: मानुष देखी बोल रहे
5: बांग्लार।
0: तो ममता बनर्जी की टीएमसी में बगावत की आवाजें बुलंद हो रही हैं, आपने देखा किस तरीके से। लेकिन जो कभी ममता बनर्जी के खास सिपहसालार हुआ करते थे, आज वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं या फिर पार्टी में रहकर गुट बनाने में लगे हैं। टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसद हैं, सूत्रों के मुताबिक 19 में से उन 20 सांसदों ने अलग गुट बना लिया है, 19 से 20 सांसदों ने। और ममता बनर्जी की बेहद खास सयानी घोष भी बागी गुट में शामिल हो गई।
8: खुशी एक
9: क्या ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकल चुकी है? क्या टीएमसी में सिर्फ ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ही बचेंगे? क्या बंगाल चुनाव हारने के बाद टीएमसी का भी वही होगा जो महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना का हुआ है? पश्चिम बंगाल की सियासत की मुख्य विपक्षी पार्टी टीएमसी में भूचाल मचा है। हर गुजरते दिन के साथ सांसद विधायक पाला बदल रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं। जो कभी आज्ञाकारी भरोसेमंद थे, अब वो बगावत पर उतर आए हैं। सयानी घोष, प्रतिमा मंडल, माला रॉय, मिताली बाग, टीएमसी के बागियों में ये नाम भी जोड़ लीजिए। इन सांसदों ने टीएमसी के बागी गुट से हाथ मिला लिया है। ममता बनर्जी की टीएमसी में इस समय भगदड़ मची है। सांसदों में भगदड़, विधायकों में अफरा तफरी, कोलकाता से दिल्ली तक भागम भाग मची है। बुधवार को जब बीजेपी एनडीए के नेता मोदी के 12 साल का जश्न मना रहे थे, तो उसी दौरान ममता बनर्जी के 4 सांसद बीजेपी नेताओं से मिल रहे थे। जादवपुर की सांसद सयानी घोष, जयनगर की प्रतिमा मंडल, कोलकाता दक्षिण की माला रॉय और आरामबाग की सांसद मिताली बाग बागी खेमे में शामिल हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर बैठक हुई, जिसमें बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। करीब 1 घंटे तक चारों सांसदों और बीजेपी नेताओं की बैठक चलती रही। बागी गुट का दावा है कि 19 से 20 सांसद उनके संपर्क में हैं। टीएमसी के बागी लोकसभा में अलग गुट बनाना चाहते हैं। अभी लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। अगर ये बागी कामयाब हुए तो लोकसभा में टीएमसी नेता का पद भी उन्हें मिल जाएगा। बागियों में शत्रुघ्न सिन्हा और देव अधिकारी को लेकर भी चर्चाएं थी, लेकिन टीएमसी सूत्र कह रहे हैं कि ये दोनों दीदी के साथ हैं। लोकसभा में टीएमसी सांसद अलग गुट बनाने की कोशिश में है, तो वहीं राज्यसभा से भी टीएमसी को झटके पर झटका लग रहा है। पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दिया और अब सुष्मिता देव ने भी पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी है। सुष्मिता देव के पाला बदलने के पीछे असम के सीएम हिमंता बिस्वा की भूमिका अहम मानी जा रही है।
10: मैं इतनी बड़ी लीडर नहीं हूं कि मैं ममता दीदी पे कमेंट करूं, ठीक है? आज मैंने उनको छोड़ा है, कल मैं किसी और पार्टी में जा भी सकती हूं, पर मेरे से तो बहुत ज्यादा तजुर्बा उनको अनुभव।
11: और अभिषेक बनर्जी का कैसा लीडरशिप आपको लगता है?
10: कि अभिषेक बनर्जी पे कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। इट इज वेरी सिंपल, मैं आपको ये जरूर कह रही हूं कि ये मेरा राजनीतिक और व्यक्तिगत निर्णय है, और मैं मानती हूं कि अगर डेवलपमेंट की राजनीति मुझे आसाम में करनी है तो रास्ता यही है।
9: जो ममता बनर्जी मां माटी मानुष की राजनीति करने का दम भरती थी, उनकी पार्टी एक करारी हार में बिखरती जा रही है। पार्टी से बगावत करने वाले सांसद अपने ही नेता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। टीएमसी में आए इस तूफान को शांत करने की कोशिश ममता बनर्जी कर जरूर रही है, लेकिन सफलता कितनी मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: तो वहीं टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद बागियों को भगोड़ा कह रहे हैं। वो बागियों पर सवाल उठा रहे हैं कि जब तक पार्टी के साथ थे तब तक सब ठीक था, चुनाव बीतते ही भ्रष्टाचार याद आ रहा है।
12: अब एक लिस्ट आई है, 19 लोगों का नाम है और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नाम भी उसमें शामिल है।
13: आरोप तो नहीं लगाए? आरोप कैसे, कौन से आरोप?
12: रिबल,
13: आप ये तो रिबल कहां से हो गए? भगोड़े हैं। रिबल कहां से हो गए? ये तो भगोड़े हैं। रिबल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए। ये तो हमारे सिंबल पे लड़े थे, तो रिबल कहां से हो गए? ये तो भगोड़े हैं। हमारे सिंपल पर लड़े तो ये आरोप ना आरोप लगाए हैं, जो सच्चाई है उसको रखा है। आरोप क्या होते हैं? आरोप तो होते हैं जिनको सिद्ध करना होता है। इसमें क्या सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना? जिस सिंबल पर तुम लड़े, तुम रहे, चुनाव के 30 दिन नहीं हुए और तुम्हें भ्रष्टाचार देखने लग गया, अगर भ्रष्टाचार तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा था तो तुमने रोका, और भ्रष्टाचार वाली बात थी तो काकुली दस्तीदार जो बात कर रही है भ्रष्टाचार की, वो तो 5 लाख रुपए खुद कैमरा पे लेती पकड़ी गई। और भ्रष्टाचार छोड़कर, तथाकथित भ्रष्टाचार को छोड़कर, तुम साफ बीजेपी में जा रहे हो, क्लीन बीजेपी, जिस बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी तुम्हारा चीफ बना हुआ है, उधार का सिंदूर जो अमित शाह ने बीजेपी के मांग में भरा है, वो भी तो 5 लाख रुपए लेता पकड़ा गया। आपके आज तक में दिखाया था भाई, सुबह से शाम तक दिखा रहे थे, सीबीआई लगा दी।
0: अनुपम मिश्र में सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, जिस तरीके से कीर्ति आजाद तमाम आरोप लगा रहे हैं, जाहिर तौर पर उनका यह कहना है कि जब मैंडेट बीजेपी के पक्ष में आया तब सब पाला बदलने लगे, खेमा बदलने लगे, कोई दीन ईमान कुछ नहीं था इन लोगों का, भ्रष्टाचार अचानक से याद आया, लेकिन अब पार्टी का अस्तित्व क्या रह गया है, क्योंकि टीएमसी से एक एक करके विधायक हों, राज्यसभा लोकसभा सांसद हों, सब धीमे धीमे इस पार्टी की ओर आ रहे हैं, बीजेपी की ओर, और कोई खुले मुंह ये स्वीकार नहीं कर रहा है। कई लोग आ भी गए हैं लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि हमने पार्टी ज्वाइन कर लिया है। यहां तक कि जो लेटेस्ट इस्तीफा राज्यसभा सांसद का आया है उन्होंने भी नहीं माना, उन्होंने कहा कि वक्त बताएगा। तो अब किस बात का वेट हो रहा है और कब तक होगा?
8: जी देखिए, पार्टी दो टुकड़ों में बिखर गई है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, शक नहीं है। विधायकों की अगर बात करें तो 80 विधायकों में से 60 विधायकों ने पहले ही पाला बदल लिया था। अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, 64 विधायक जो बागी गुट है उसमें आ गए हैं, और हो सकता है कि आज दोपहर बाद एक दो और बड़े चेहरे, बड़े नाम भी बागी गुट में शामिल हो जाएं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। इसी बीच जो लोकसभा सांसद हैं उसमें जो सवाल आ रहा है कि 19 से 20 सांसद बागी हैं। अब इसमें देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत 19 सांसद चाहिए, क्योंकि 28 सांसद टीएमसी के पास हैं, इनमें से 19 सांसद चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, तो वो 19 से ज्यादा 20 की एक संख्या बताई जा रही है, लेकिन उसमें से कितने लोग हैं नहीं हैं इसमें अभी पूरी तरह से पुख्ता चीजें, एक दो दिन मुझे लगता है या एक सप्ताह बहुत ज्यादा से ज्यादा हुआ वो लगेगा ताकि पूरी चीजें स्पष्ट होंगी। हालांकि जैसे शत्रुघ्न सिन्हा का नाम आ रहा है, प्रतिमा मंडल का नाम आया कल, लेकिन प्रतिमा मंडल आज बोल रही कि वो दिल्ली गई नहीं, वो यहीं पर है, वो दीदी के साथ है, तृणमूल के साथ है, तो ऐसे में कभी इधर कभी उधर का भी एक मतलब बात सामने आ रही है। पुख्ता चीजें जो होंगी वो दो चार दिन और लगेगा, उसके बाद एक क्लियर नंबर सामने आ जाएगा कि इतने नंबर बागियों के साथ हैं, इतने नंबर ममता बनर्जी के साथ हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, ममता बनर्जी के साथ कम लोग हैं, विधायकों की संख्या तो बहुत ही कम हो गई है, सांसदों की संख्या भी धीरे धीरे टूट रही है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए करो या मरो की लड़ाई इस वक्त है, और ये राजनीतिक संकट पिछले लगभग 20-25 सालों में सबसे बड़ा राजनीतिक संकट है उनके लिए, वो कैसे इससे उभरती हैं, कैसे निकलती हैं, ये देखना होगा।
0: चलिए अनुपम, हमारे साथ बने रहिएगा। वही बागियों में प्रतिमा मंडल का भी नाम है, लेकिन प्रतिमा मंडल ने आज तक से बातचीत में ये कहा है कि मैं 4 तारीख को ही दिल्ली से वापस आ गई थी, मेरे पास फोन आते रहते हैं लेकिन मैं दिल्ली में किसी से मिलने नहीं गई। प्रतिमा मंडल का नाम सयानी घोष वाले ग्रुप में था, क्योंकि कल सयानी घोष 4 सांसदों के साथ भूपेंद्र यादव से मिलने गई थी, और अब सवाल ये है कि अगर कल प्रतिमा साथ में नहीं थी तो फिर 4था सांसद आखिर कौन था?
8: प्रतिमा जी, इसमें किस बात की कितनी सच्चाई है कि आप भी बागी गुट में शामिल हो गई हैं? एक खबर आएगी, कल एक मीटिंग हुई भूपेंद्र यादव के घर में जहां शुभेंदु अधिकारी भी थे, वहां आप भी मौजूद थी, इस तरह की खबरें आई थी।
14: देखिए, आप मेरा कलकत्ता का जो घर है आप वहीं पे बैठे हैं, और मैं आपके मीडिया से तरफ से मैं ये मेरा जयनगर लोकसभा का जितना सारा जनता है मैं उसको ये बोलना चाहती हूँ, 4 तारीख 4 जून मेरा एस्टिमेट कमेटी का मीटिंग था दिल्ली में, मैं 3 तारीख रात को दिल्ली पहुंची, 4 तारीख 11 बजे मेरा कमेटी का मीटिंग था, और 4:10 बजे एयर इंडिया का फ्लाइट से मैं कलकत्ता आ गई। उसके बाद मैंने दिल्ली नहीं गई हूँ, मैं अभी तक मेरा घर जो है बालीगंज स्टेशन रोड में वहीं पे हूँ, और जो दल बनाया है हमारा कोलिग ने, साथी ने, मैं उसमें साइन भी नहीं किया और दिल्ली में गई भी नहीं।
8: तो आपको क्या बुलावा आया था, आपको फोन आया था उसमें शामिल होने के लिए?
14: हाँ, फोन तो आया था मेरे कोलिग से नहीं, दूसरे साइड से आया था,
8: बीजेपी।
14: मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि जिन्होंने फोन किया है वो भी सम्मान मुझे दिया है तो इसका नाम मैं नहीं बताना चाहती हूँ। मैं एक फोन मुझे मिलता ही रहता है उनसे, वो बार बार बोलते हैं दिल्ली आने के लिए, लेकिन मैंने दिल्ली नहीं गई हूँ।
8: तो आप अभी ममता दीदी के साथ ही हैं?
14: देखिए, जो हमारा प्रतीक है घासेर उपरे जोड़ा फूल, वही प्रतीक से मैं 3 बार जीते हूँ। जनता ने मुझे आशीष दिया है, इस बार भी बहुत मैंडेट मुझे मिला, 4,70,000 से वोट से भी मुझे मिला और मैं जीत के आई हूँ। तो जनता ने मुझे आशीष दिया 5 साल के लिए, तो मैं 29 तक उनका एमपी हूँ, उनके काम करूंगी। तो मैं जनता को अपमानित नहीं करना चाहती हूँ। जनता ने तो मुझे नहीं बोला आप जाओ छोड़ के दूसरे साइड में, तो मैंने जनता को सम्मान देके उनका अपमानित नहीं करना चाहती हूँ। मैं 29 तक ही उनके साथ हूँ। तो घासेर उपरे जोड़ा फूल जो प्रतीक से मैं जीती हूँ वही सही हूँ।
0: तो क्या अचानक से टीएमसी में बगावत हो गया? इसके पीछे कोई गहरी बात है जो ममता बनर्जी समझ ही नहीं पाई। टीएमसी के बागियों का कहना है कि पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार, संगठन में जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। ये कोई एक दिन का मामला नहीं है।

0: बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी में जो तूफान आया है वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। कोलकाता में बागी विधायकों का भी अपना गुट बन गया है और विधायकों में बगावत का झंडा उठाया है ऋतव्रत बनर्जी ने। सबसे पहले ऋतव्रत ने ही टीएमसी में रहते हुए ममता और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका और फिर देखते ही देखते दिल्ली तक बात पहुंच गई। लेकिन सवाल ये है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी के विधायक और सांसद बगावत करने लगे? क्या बंगाल में टीएमसी हारी इसलिए ये भगदड़ मची है या फिर वजह कुछ और है?
1: दो साल में क्या ऐसा बदल गया कि आपको लगा कि पार्टी से अलग होना चाहिए, एक अलग गुट बनाना चाहिए?
2: देखिए, दो साल नहीं, काकुली घोष रिश्तेदार 40 साल से है, मैं 17 साल से हूँ। जो लोग अभी इस बार पहली बार जीत कर आए हैं, एक साल के लिए, दो साल के लिए, उसके लिए एक दो साल होगा, हम लोग के लिए इतना दिन, तो इतना दिन में तो कोई ना कोई अगर आप बोलेंगे जब जीते थे तब क्यों नहीं बोले थे, अभी हारने के बाद क्यों? जीतने के बाद भी बोले थे, बोलने की कोशिश किए थे, वहाँ पे सिस्टम नहीं है बोलने का, बोलने से सब रोकते हैं जो नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, तो और अगर बोले भी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलते, आप 7 दिन 10 दिन इंतजार करो, कुछ नहीं।
0: ये शताब्दी रॉय है, ममता बनर्जी के विश्वास पात्र सांसदों में से एक। शताब्दी कहती है कि बगावत का ये बम एक दिन में नहीं बना, पार्टी के अंदर असंतोष तो बहुत पहले से था, उसकी अभिव्यक्ति अब हुई है। मतलब टीएमसी में बगावत का बारूद एक दिन में इकट्ठा नहीं हुआ। बागी नेताओं का आरोप है कि पार्टी नेतृत्व जमीनी कार्यकर्ताओं और नेताओं से कट गया है, भ्रष्टाचार और संगठनात्मक समस्याओं से जुड़ी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। ममता बनर्जी की सादगीपूर्ण राजनीति दिखावा है, पार्टी के अंदर बोलने नहीं दिया जाता था।
3: लगभग 20 सांसदों के एक असंतुष्ट गुट के उभरने की खबरें बताती हैं कि नाराजगी अब सिर्फ कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है बल्कि ये एक व्यापक रूप ले चुकी है। बीजेपी की चुनावी बढ़त और पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच कुछ विधायक और सांसद अपनी राजनीतिक रणनीति पर पुनर्विचार कर रहे हैं और दल बदल की इन कोशिशों को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद हवा दे रहे हैं।
0: एक तरफ बागी सांसद है, दूसरी तरफ विधायक। बागी विधायकों का दावा है कि उनके पास 60 से अधिक विधायकों का समर्थन है। जैसे ही विधानसभा सत्र शुरू होगा हम अपनी शक्ति दिखाएंगे। बंगाल टीएमसी के पास 80 विधायक हैं और अगर इनमें से 60 विधायक बागी गुट में चले गए तो ममता के हाथ से पार्टी का नेतृत्व भी निकल जाएगा।
4: मैं एक ही बात कहूंगा, जहां तक हमारे आंकड़ा का सवाल है वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। जो आंकड़ा हम लोग प्रेजेंट किए थे 2/3 से ज्यादा, काफी सारे ज्यादा, वो जो आंकड़ा है जब आप लोग से मिलेंगे विधानसभा का अधिवेशन जो होगा वो आंकड़ा ऊपर जाएगा और आगे जाएगा। एब्सोल्युटली देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ड्रॉपिंग, इनफैक्ट आई वोंट नेम, लेट्स वेट एंड वॉच एज द थिंग प्रोग्रेसेस, यू विल सी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द एमएलएज, आई वोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर्स, other elected representatives, I won't go into that, but as far as the MLAs are concerned, I am pretty confident, we are pretty confident the numbers will go on increasing.
0: अब ममता बनर्जी के सामने एक नहीं कई चुनौतियां, बागियों से निपटना, पार्टी की खोई हुई जमीन वापस हासिल करना और अपने भतीजे अभिषेक को अपनी जगह पर सेट करना। लेकिन जिस तरह से बीजेपी बागियों को समर्थन दे रही है उससे ममता बनर्जी के लिए इन चुनौतियों से निपटना आसान नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।
5: चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का, सुप्रीम कोर्ट से जो है ये मीनाक्षी नटराजन से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं। मीनाक्षी का राज्यसभा पर्चा खारिज करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है कांग्रेस। कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि एक अनलिस्टेड मामला है जिसे तत्काल सुनना आवश्यक है, इसमें देरी नहीं हो सकती। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज नहीं सुनेंगे, कल सुनवाई करेंगे। सिंघवी ने कहा कि ये मामला कल तक इंतजार नहीं कर सकता, चुनाव का मामला है, आज कुछ नहीं हुआ तो फिर देरी हो जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी की दलील नहीं मानी और कांग्रेस का केस आज सुनने से इनकार कर दिया है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, क्योंकि ये मामला अर्जेंसी का है, इसमें एक डेडलाइन है जिसमें मीनाक्षी नटराजन को ये क्लैरिटी चाहिए कि उनका जो नामांकन है वो सही नहीं है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट रूटीन की तरह इस मामले को लेगा या रूटीन से थोड़ा हटकर?
6: सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों के आगे स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट नहीं आई है। मीनाक्षी नटराजन अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उम्मीदवार के रूप में सुप्रीम कोर्ट आई हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनकी दलील, उनकी ओर से दलील देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है, अगर आज सुनवाई नहीं हुई, इस पर स्टे नहीं लगा आरओ के आदेश पर जो पर्चा रद्द करने का है, तो हमें 6 साल इंतजार करना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से वीएस नायडू ने ऑनलाइन जुड़ते हुए ये कहा कि चूंकि पिटीशन की कॉपी उन्हें नहीं दी गई है, लिहाजा इसे अभी नहीं सुना जाए। और वहीं मुकुल रोहतगी जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से इस याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया है, लिहाजा अदालत को यह याचिका नहीं सुननी चाहिए। और अदालत ने भी ये कहा कि इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया है तो ऐसे में हम इसको कैसे सुन सकते हैं। तो इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बीच का रास्ता निकाला, उन्होंने कहा कि अदालत इसे सुन ले क्योंकि हमें फिर 6 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये सही है कि जो उनका पर्चा रद्द करने का जो आदेश है उस पर स्टे लगा दिया जाए और चुनाव होने दिया जाए, रिजल्ट रोक के रखा जा सकता है, अदालत चाहे तो रिजल्ट तब तक अपने अगले आदेश तक रिजल्ट को पेंडिंग रख सकती है। तो इस पर ये कहा, अदालत ने कहा कि वो कल इस मामले की सुनवाई करेगी, चूंकि याचिका में कई डिफेक्ट हैं जिसे करेक्ट करना जरूरी है, तो एक दिन का समय है, कल अब इसको सुनेंगे। कल सुनने से फिर आज फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी, तो ऐसे में रिटर्निंग ऑफिसर का जो आदेश है
5: का इंतजार थोड़ा और करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका। वही यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज।
7: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम, एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, दैट सीम्ड ऑड टू द बैंक एंड टू क्लेयर। टू टैप्स लेटर, क्लेयर सेज नोप टू द चार्ज एंड वेल्स फार्गो इज ऑन द केस। However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
11: Jack FM, now playing what we want, commercial-free, on TuneIn Premium.
12: What about me, Jack? What about me?
11: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
13: Well played, Jack. Well played.
11: Jack FM, playing what we want.
14: Sokudo.

पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में जुल्म की इंतहा हो रही है। बेगुनाह लोगों पर गोलियों की बौछार की जा रही है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। पीओके में लोग काफी वक्त से बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हैं। वहां लोगों ने तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन की तैयारी की। JAAC यानी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले 9 जून को बंद का ऐलान किया गया, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने 5 जून को ही JAAC पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही पूरे POJK में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गयी। अगले ही दिन बड़े पैमाने पर नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसे एक्शन के विरोध में 7 जून से उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए। पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी सेना को इन लोगों पर खुलेआम गोलियां बरसाने को कहा। फायरिंग में 27 लोगों की मौत हो गई। POJK में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ऐसी कार्रवाई को लेकर भारत ने गंभीर चिंता जताई है। साथ ही यूरोप स्थित मानवाधिकार संगठन ECHRD ने भी सवाल उठाए हैं और मांग की है कि इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विशेष बैठक बुलाई जाए। आज तक ब्यूरो।

0: వారి సోకుడు. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Acajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
1: Forget everything you had planned for this weekend because you are sitting on your couch and winning from the comfort of your own home. I'm here with SpinQuest, where you can play hundreds of slot games, all of the table games you love, and you could even win real cash prizes. New users, $30 coin packs are on sale for $10 at SpinQuest.com.
2: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
3: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
5: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pearce shared why she loves award show season.
6: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
5: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
7: हजारों किलोमीटर दूर जारी मिडिल ईस्ट का तनाव भारत के किचन, किराना स्टोर और सुपरमार्केट की शेल्फ पर साफ दिखाई देने लगा है। हालात ऐसे हैं कि ग्लोबल मार्केट में मची हलचल की वजह से कंपनियां परेशान हैं और ग्राहक बजट बदलने को मजबूर। इस संकट ने कच्चे तेल, माल ढुलाई और इंश्योरेंस की लागत को बढ़ा दिया है और ग्लोबल क्राइसिस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत शामिल हो गया है। तेल और फर्टिलाइजर्स के बढ़ते दाम इकोनॉमी पर दबाव बढ़ा रहे हैं। खाड़ी देशों में डिमांड घटने और फॉरेन फंड्स में गिरावट से विकास दर धीमी होने की आशंका बढ़ गई है। इस दबाव के बीच भारतीयों की खरीदारी में बड़ा बदलाव आया और लोग बड़ी पैकिंग छोड़कर छोटे पैकेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि पार्ले प्रोडक्ट्स के 20 रुपए तक के छोटे पैक्स में बड़े पैक के मुकाबले 3-4% ज्यादा ग्रोथ है। वहीं ब्रिटानिया की कुल सेल्स 5 और 10 वाले छोटे पैकेट्स की हिस्सेदारी 60-65% तक पहुंच गई है। FMCG सेक्टर की कुल बिक्री में छोटे पैक 30-60% तक योगदान दे रहे हैं और जनवरी मार्च तिमाही के मुकाबले छोटे पैकेट्स की बिक्री 8-10% बढ़ गई है। कंपनियां कीमतें बढ़ाने के साथ ही पैकेट का वजन कम करने का रास्ता अपना रही हैं और ग्राहक महंगा सामान खरीदने को मजबूर हो गए हैं। डेटा के मुताबिक HUL, गोदरेज और डाबर ने 10-20 रुपए वाले पैक्स की कीमतें 4-10% तक बढ़ा दी। कंपनियों ने मार्जिन बचाने के लिए कीमतें 3-10% तक बढ़ाई हैं। ऑटोमोबाइल और एयरलाइन सेक्टर पर भी पश्चिम एशिया के इस तनाव के असर से महंगी हुई माल ढुलाई और इनपुट कॉस्ट का असर पड़ने लगा है, जिससे कई बड़ी ऑटो कंपनियों ने गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। वहीं एयरलाइंस ने किराए में बढ़ोतरी की है। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद राहत की बात है कि गाड़ियों और FMCG प्रोडक्ट्स की डिमांड में मजबूती बनी हुई है। हालांकि आने वाले दिनों में मानसून को लेकर मौसम विभाग के अनुमान ने चिंता थोड़ी बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल अल नीनो के एक्टिव होने की वजह से सामान्य से कम मानसून की आशंका है। इस कम बारिश से ग्रामीण इलाकों की इनकम और खपत पर असर पड़ेगा और गाँव में कमाई घटने से FMCG सेक्टर्स की डिमांड प्रभावित हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट का ये जियोपॉलिटिकल तनाव और ऑयल मार्केट का संकट सभी की जेब पर सीधा असर डाल रहा है। कंपनियां जहां अपने प्रॉफिट मार्जिन को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहीं ग्राहक छोटे पैकेट्स के जरिए अपने घर का खर्च संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर ये जंग जल्द शांत नहीं हुई तो आने वाले दिनों में देश के बाजारों पर महंगाई का दबाव और ज्यादा गहरा सकता है। आदित्य किराणा, आज तक।

0: सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका, आज अर्जी पर सुनवाई से इनकार, कल तक करना होगा इंतजार, सिंघवी की दलील नाकाम। ममता बनर्जी के खिलाफ टीएमसी में बगावत की सुनामी, राज्यसभा में पार्टी का एक और विकेट गिरा, सांसद प्रकाश चिकबराइक का इस्तीफा, लोकसभा में प्रसून बनर्जी भी बागी गुट में शामिल। दो हजार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर मोदी सरकार, नीति आयोग की बैठक में बड़ा मंथन जारी, मुख्यमंत्रियों के साथ एक्शन प्लान पर विस्तार से विचार। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव, बीएसएफ ने घुसपैठिए को वापस भेजा तो भारी विरोध, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और स्थानीय लोगों का जमावड़ा। ईरान अमेरिका के बीच जंगी हालात, साउथ ईरान समेत कई इलाकों में एयर स्ट्राइक, मिडिल ईस्ट के यूएस बेस पर आईआरजीसी का हमला, F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट्स तबाह करने का दावा, ईरान ने बंद किया हॉर्मुज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकु।
0: नमस्कार, 12:12 रिपोर्टर में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर है, टीएमसी के बागी असली पार्टी होने का दावा करेंगे और खबरों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि टीएमसी अपने संविधान के हिसाब से नहीं चल रही थी, कई फैसले पार्टी संविधान के खिलाफ थे। लोकसभा स्पीकर को लिखे पत्र में काकोली घोष ने विस्तार से जानकारी भी दी है। तो टीएमसी इन दिनों लगातार अंदरूनी कला से जूझ रही है और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि पार्टी के एक और सांसद ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, सांसद का नाम है प्रकाश चिकबराइक, जिन्होंने इस्तीफा दिया। राज्यसभा से सबसे पहले टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने पद छोड़ा, फिर नंबर आया सुष्मिता देव का जिन्होंने कल इस्तीफा दिया और अब प्रकाश चिकबराइक ने टीएमसी को झटका दे दिया है, अलविदा कह दिया है। अब तक 3 राज्यसभा सांसदों ने टीएमसी छोड़ी है।
3: असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया, ये हम लोग के पक्ष में नहीं आया, साथ ही इस मैंडेट को देखते हुए मैं भी अपना पद से इस्तीफा दिया क्योंकि मेरा भी कंस्टिट्यूएंसी में उस तरह रिजल्ट नहीं हुआ। अभी गणतांत्रिक देश का गणतंत्रता जिसको चाहती है वो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है।
4: प्रकाश जी, कैसा काम आपको लग रहा है अभी जब से बीजेपी सरकार आई है, वो कैसा काम कर रही है बंगाल में?
3: अच्छा कर रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, अच्छा काम कर रहा है।
4: आपको लग रहा है कि अब तक केंद्र की तरफ से वो समर्थन जो जरूरत थी वो नहीं हो पाया?
3: असुविधा तो था अभी, लेकिन असुविधा नहीं है, अभी कोलैबोरेशन हम लोग को स्टेट एवं केंद्र दोनों को मिलकर काम करना है।
5: टीएमसी की समस्याएं जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ बागी विधायकों ने अलग गुट बना लिया है, दूसरी तरफ लोकसभा में काकोली घोष दफ्तवार के अगुवाई में जो है 20 के करीब सांसदों ने जो है वो चिट्ठी लिखी है स्पीकर को कि वो अलग गुट के रूप में उनको मान्यता मिले, अलग जगह उनको दी जाए, एनडीए के बेंचों के साथ दी जाए, वो आने वाले दिनों में एनडीए का सहयोग करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आज प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दे दिया है राज्यसभा से, वो तीसरे सांसद है राज्यसभा के जिन्होंने पिछले दिनों में इस्तीफा दिया है। अब राज्यसभा में टीएमसी की जो संख्या है वो 13 से घटकर 10 हो गई है। इन 3 सांसदों ने जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनमें सुखेंदु शेखर राव हैं, सुष्मिता देव हैं और अब प्रकाश चिकबराइक हैं। अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में जो हमको सूत्रों से खबर मिल रही है उसमें 3 सांसद और जो है वो राज्यसभा से इस्तीफा दे सकते हैं।
0: तो बागी से बगावत करने वालों पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने हल्ला बोल दिया, हमला बोला और कहा है कि वो सभी भगोड़े हैं, अब उन्हें भ्रष्टाचार दिख रहा है तो उन्हें ये पहले ही रोकना था। आरोप लगाने वाले बागी सांसदों ने भ्रष्टाचार रोका क्यों नहीं, ये कीर्ति आजाद पूछ रहे हैं।
3: आप
6: लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम आरोप लगाए अपने उन साथियों के लिए जो रिबेल फैक्शन में गए हैं। अब एक लिस्ट आई है, 19 लोगों का नाम है और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नाम भी उसमें शामिल हैं।
7: आरोप तो नहीं लगाए? आरोप कैसे, कौन से आरोप?
6: रिबेल,
7: आप ये तो रिबेल कहां से हो गए? भगौड़े हैं। रिबेल कहां से हो गए? ये तो भगौड़े हैं। रिबेल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए। ये तो हमारे सिंबल पे लड़े थे, तो रिबेल कहां से हो गए? ये तो भगौड़े हैं। हमारे सिंबल पे लड़े तो ये आरोप ना आरोप लगाए हैं, जो सच्चाई है उसको रखा है। आरोप क्या होते हैं? आरोप तो होते हैं जिनको सिद्ध करना होता है। इसमें क्या सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना? जिस सिंबल पर तुम लड़े, तुम रहे, चुनाव के 30 दिन नहीं हुए और तुम्हें भ्रष्टाचार देखने लग गया। अगर भ्रष्टाचार तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रहा था तो तुमने रोका, और भ्रष्टाचार वाली बात थी तो काकुली दस्तीदार जो बात कर रही है भ्रष्टाचार की, वो तो 5 लाख रुपए खुद कैमरा पे लेती पकड़ी गई। और भ्रष्टाचार छोड़कर, तथाकथित भ्रष्टाचार को छोड़कर, तुम साफ बीजेपी में जा रहे हो, क्लीन बीजेपी, जिस बीजेपी में सुवेंदु अधिकारी तुम्हारा चीफ बना हुआ है। वो धार का सिंदूर जो अमित शाह ने बीजेपी के मांग में भरा है, वो भी तो 5 लाख रुपए लेता पकड़ा गया। आपके आज तक में दिखाया था भाई।
0: और बागी सांसदों की जब बात की जा रही है तो उनमें एक नाम प्रतिमा मंडल का भी बताया जा रहा है। हालांकि आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं किसी से मिलने दिल्ली नहीं गई। आज तक पर टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल का बयान आया और वो कहती हैं कि मैं किसी से मिलने दिल्ली नहीं गई।
8: देखिए, आप मेरा कलकत्ता का जो घर है आप वहीं पे बैठे हैं और मैं आपके मीडिया से तरफ से मैं ये मेरा जयनगर लोकसभा का जितना सारा जनता है मैं उसको ये बोलना चाहती हूँ। 4 तारीख 4 जून मेरा एस्टिमेट कमेटी का मीटिंग था दिल्ली में। मैं 3 तारीख रात को दिल्ली पहुंची। 4 तारीख 11 बजे मेरा कमेटी का मीटिंग था और 4:10 बजे एयर इंडिया का फ्लाइट से मैं कलकत्ता आ गई। उसके बाद मैंने दिल्ली नहीं गई हूँ। मैं अभी तक मेरा घर जो है बालीगंज स्टेशन रोड में वहीं पे हूँ।
0: तो दौरे बगावत टीएमसी में जारी है। एक तरफ रुद्रत बनर्जी ने कल ऐलान किया था कि अब उनके साथ 64 विधायक हैं, तो उधर बागी सांसदों की लिस्ट को लेकर भी सियासत तेज है। इन सबके बीच आज फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी की याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है।
9: पश्चिम बंगाल की राजनीति में हर दिन अभी बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आज भी जो बागी विधायक हैं उनकी संख्या हो सकता है बढ़ सकती है, ऐसा ही संकेत ऋतुव्रतो ने दे दिया था और कहा था कि अब तक उनके पास 64 लोग हो चुके हैं। और इस बीच सांसदों की सुगबुगाहट भी बढ़ती जा रही है और इनके बीच में ही आज कोलकाता हाई कोर्ट में अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई होनी है, जहां पर जो फर्जी हस्ताक्षर वाला मामला है वो बहुत महत्वपूर्ण मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। तो देखने वाली बात होती है कि आज अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से राहत मिलती है या किस तरह से सुनवाई आगे बढ़ती है। और दूसरी ओर जो बागी विधायक और सांसद हैं, क्या उनकी संख्या और बढ़ती है?
0: तो बंगाल से आपको लिए चलते मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ और उसके बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी नटराजन ने निर्वाचन आयोग से जवाब न मिलने पर कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। पार्टी की कानूनी टीम ने आज तड़के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। मीनाक्षी नटराजन की ओर से कांग्रेस ने पहले निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा था, लेकिन नामांकन पत्र वापस लेने की आज आखिरी तारीख से पहले तक जवाब नहीं मिलने पर कांग्रेस उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
10: मध्य प्रदेश से राज्यसभा की कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से भी फिलहाल तो झटका ही लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर में जो मुख्य मांग थी कि रिटर्निंग ऑफिसर के उस आदेश पर रोक लगाई जाए जिस आदेश के जरिए उन्हें उनका पर्चा खारिज कर दिया गया है, निर्वाचन आयोग ने इस याचिका का विरोध किया। निर्वाचन आयोग के वकील वीएस नायडू ने कोर्ट से कहा कि चूंकि याचिका की कॉपी उन्हें नहीं मिली है लिहाजा उन्हें जवाब देने का उचित मौका नहीं मिला है। और वहीं ये भी कहा गया कि चूंकि ये याचिका की कॉपी नहीं मिलने से पक्षकारों को यानी विपक्षकारों को इस बारे में जवाब देने का अवसर नहीं मिला है। इसके साथ ही याचिका में कई डिफेक्ट हैं, उसे भी करेक्ट करने हैं, तो जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने, अवकाशकालीन पीठ ने, इस मामले की सुनवाई शुक्रवार तक लंबित कर दी है, टाल दी है, सरका दी है, यानी शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी।
0: और अब खबर नीति आयोग की बैठक की। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में यह बैठक हो रही है और इसके लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक में 2047 के लिए विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा हो रही है। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक, 2047 का लक्ष्य विकसित भारत बनाने का। तो विकसित भारत के एजेंडे पर मंथन जारी है। हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्या नीतियां निर्धारित की जा रही है 2047 तक के लिए?
11: देखिए मानशु, मैं आपको बता दूं, मैं जहां खड़ी हूं मेरे ठीक पीछे राष्ट्रपति भवन है और यहीं पर एक घंटे पहले नीति आयोग की जो 11th काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी वो चालू हो चुकी है। जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो सब के सब यहां आए हुए हैं। सिर्फ एनडीए के ही नहीं, पूरे देश भर से, यानी कि जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो, उन सबके चीफ मिनिस्टर्स आ चुके हैं। एक ब्लू प्रिंट तैयार किया जा रहा है, स्टेट्स वो भी बताएंगे, मुख्यमंत्री ये भी बताएंगे कि अगर उनको लगता है कि उनको केंद्र सरकार से किसी चीज की मदद की जरूरत है तो वो सब चीजें आज डिस्कस होंगी और किस तरीके से केंद्र सरकार राज्यों की मदद कर सकती है, इन सब चीजों पे आज विस्तार में बातचीत होगी। हिमांशु,
0: शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं अमेरिका और ईरान में लगातार दूसरे दिन हमले जारी है। अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तट से लेकर तेहरान तक जबरदस्त हमले किए। अब सीज फायर के बाद जारी लड़ाई के दूसरे दिन आज अमेरिकी फौज ने ईरान के बंदर अब्बास, केशम, हैंगम, कंगन, गौरगान बंदरगाह, सीरी, मिनाव और असलुयेह पर भारी भीषण बमबारी की है।
12: और अमेरिका के बीच युद्ध जो है अब और भीषण होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान अमेरिका की तरफ से ईरान पर दो हमले किए गए हैं। बीती रात के हमले में 47 मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका ने ईरान के अलग अलग ठिकानों के खिलाफ किया। टॉमहॉक मिसाइल्स के इस्तेमाल के बाद कई सारे महत्वपूर्ण राडार स्टेशन और कई सारे सैन्य ठिकाने ईरान के तबाह किए गए हैं, ये अमेरिका का दावा है। और जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से भी हुई है, न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के आसपास बल्कि साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ईरान का दावा है कि अमेरिका का एक नेवल वारशिप जो है वो भी ईरान के निशाने पर आया, जिसमें बारी तबाही मची है, जिससे अमेरिका ने इनकार किया है। आखिर सवाल खड़ा होता है, जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार ये दावा करते हैं कि ईरान के साथ डील मात्र कुछ घंटे या कुछ दिन दूर है, वहां पर अमेरिका को क्या मजबूरी पड़ी कि उसने एक के बाद एक प्रहार ईरान पर शुरू कर दिया है।
0: तो ट्रंप की धमकी आते ही जब अमेरिकी सेना ने बीती रात ईरान पर हमले किए तो ईरान ने भी पलटवार तेज कर दिया, देरी नहीं की। IRGC ने अमेरिका के सहयोगी देशों को टारगेट किया, जॉर्डन के कई इलाकों में धमाके किए, बहरीन में भी खतरे का सायरन बजा तो कुवैत में भी धमाकों से हड़कंप मच गया। IRGC के दावों के मुताबिक उसने US के F-35 F-16 फाइटर जेट को तबाह कर दिया, हैंगर को तबाह कर दिया।
13: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान के तटीय इलाकों में IRGC के मिलिट्री और उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया तो IRGC ने भी जवाबी कार्रवाई की। मिडिल ईस्ट के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां अमेरिकी सैन्य प्रेजेंस है, फिर वो चाहे बहरीन हो जहां पर सायरन बजे, तो कुवैत में बम धमाकों से हड़कंप मच गया। हालत ऐसी कि कुवैत ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। हमलों के निशाने पर IRGC के इस बार आया जॉर्डन भी, जहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा F-16 और F-35 का बेस है। उसी के साथ MQ-9 रीपर ड्रोन का भी जमावड़ा है, यानी खाड़ी देशों में अब एक नया नाम जॉर्डन का भी है जो IRGC के निशाने पर है। ईरान ने कहा है वो इन परिस्थितियों से डरेगा नहीं, पीछे हटेगा नहीं, अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई होगी और वो उस जवाबी कार्रवाई का दायरा खाड़ी के इलाके में एक बार फिर लगातार बढ़ता जा रहा है।
0: तो हॉर्मुज जहां जहाजों की आवाजाही एक बार फिर पूरी तरह बंद हो चुकी है, ताजा अमेरिकी हमलों के बाद से ईरान ने ऐलान कर दिया कि किसी भी जहाज को नहीं गुजरने देंगे, तो अमेरिका भी उसे चेतावनी दे रहा है। साथ ही अमेरिका की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि अभी हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही जारी है। तमाम टकराव के बीच तेल संकट और गहराने की आशंका बढ़ गई है।
14: अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग एक बार फिर संघर्ष विराम से पहले की स्थिति में लौटती नजर आ रही है। दोनों एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार भी कर रहे हैं और बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। वहीं दुनिया के सामने इस बात की चिंता लगातार गहराती चली जा रही है कि यह लड़ाई जो कुछ ही दिनों में लगभग 4 महीने का वक्त पूरा कर लेगी, वो अगर और लंबी खिंचती है तो इसका खामियाजा कितना ज्यादा होगा, कितना बड़ा होगा। दुनिया भर के सामने तेल की कीमतों से लेकर उर्वरक का संकट लगातार गहराता चला जा रहा है और इसके साथ साथ रोटी रोजगार का संकट भी दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर मंडराने लगा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस लड़ाई को आखिर कौन खत्म करेगा और कैसे खत्म करेगा, और यदि यह खत्म नहीं होती है तो उसका खामियाजा दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाएं और दूसरे देश आखिर कितना भुगतेंगे और क्यों भुगतेंगे।
0: तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने बुधवार को हॉर्मुज के पास तेल टैंकर MT-17 पर हमला किया और इसमें 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। हमले के बाद 3 लापता हो गए थे, सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है। रक्षित बचा लिया गया है जबकि 3 भारतीय लापता थे। इसी बीच अमेरिका और ईरान में लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी हमले जारी हैं। ट्रंप ने यह बताया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान पर 49 टॉमहॉक मिसाइलें दागी और लड़ाकू विमानों से भी हमले किए। तो वहीं ट्रंप ने बढ़ती महंगाई पर एक हैरान करने वाला बयान दिया। महंगाई के ताजा आंकड़ों पर सवाल पूछा गया और सवाल पूछे जाने पर ट्रंप कहते हैं कि मुझे महंगाई पसंद है। ट्रंप ये कह रहे हैं,
15: I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now, something you didn't know. You know, we've been taking out millions of barrels of oil. Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now.
0: अगली खबर है पाकिस्तान के जुल्म की। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के अत्याचार और गोलीबारी में हुई मौत के खिलाफ वहां विरोध प्रदर्शन तेज है। बीती रात भी पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हुए और इस दौरान पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की, जो आप देख रहे हैं। रावलकोट में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और वहां पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद की।
16: पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन जारी है। इस आंदोलन में लोगों ने रावलकोट में इकट्ठे होकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से पीओके में चल रहे इस प्रदर्शन में पाकिस्तान की सरकार दमनकारी नीतियां अपना रही है। पाकिस्तान के रेंजर्स लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं जिसमें 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और गर्भवती भी शामिल हैं। प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि लगातार आसिम मुनीर की फौज इन लोगों को अपना निशाना बना रही है। प्रदर्शन करने वाले लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं और ऐसा ही एक नज़ारा जो सरकार के खिलाफ नाराजगी का है वो रावलकोट में दिखाई दिया। पूरे पीओके में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं रोटी रोजगार और महंगाई के खिलाफ, लेकिन लगातार बदले में इन्हें गोलियां मिल रही हैं।
0: तो 12:12 रिपोर्टर में एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर भारत बांग्लादेश सीमा पर बड़े तनाव से जुड़ी हुई है। घुसपैठियों को खदेड़े जाने के बाद अब टेंशन बढ़ गई। मेघालय के दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स जिले में बांग्लादेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश करते एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ लिया। उसके बाद उसे बांग्लादेश वापस भेज दिया। अब खबर है कि उसी दौरान बांग्लादेश सीमा रक्षक बल ने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर सीमा पार करने वाले शख्स को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
17: मेघालय के भारत बांग्लादेश सीमा में एक बार फिर बीएसएफ और बीजीपी आमने सामने नजर आ रहे हैं। मेघालय के दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स के पास भारत और बांग्लादेश की सीमा में एक शख्स को बीएसएफ ने धर दबोचा था। वो बांग्लादेशी था और भारत में घुसपैठ करने की कोशिश में था। उसे पूछताछ करने के बाद उसे जब बीएसएफ दूसरे छोर पर भेजने की कोशिश में था तभी बीजेपी की ओर से लगातार उसका विरोध किया गया और बीजेपी के साथ कई सारे बांग्लादेशी नागरिक इकट्ठा हो गए। हालात काफी तनावपूर्ण बन गया था और ये पहला दफे इस तरह की चीजें सामने नहीं आ रही है। इससे पहले भी इस तरीके की वारदात अलग अलग जगहों पर हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी भी बीएसएफ की ओर से आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभजीत गायन के साथ तपस्विन गुप्ता, आज तक, कोलकाता।
0: तो 12:12 रिपोर्टर में अब एक अहम खबर मणिपुर के इम्फाल से, जहां नागा समुदाय का अगवा 6 लोगों के शव बरामद किए जाने के बाद तनाव फिर बढ़ गया है। बीती रात इम्फाल के जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से बाहर बड़े तनाव को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस डालने पड़े। एनआईए ने उन सभी 6 लाशों का फोरेंसिक परीक्षण भी किया है।
18: तो पूर्व के राज्य मणिपुर में एक बार फिर से अशांति देखने को मिली है, जहां पे राजधानी इम्फाल में बीती रात 6 नागा संप्रदाय के लोगों की शव लाया गया है जो इतने दिन से लापता थे। उनका शव बरामद होने के बाद मणिपुर के राजधानी इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बीती रात उनके शवों को लाया गया, जहां पे एनआईए की टीम इसको पोस्टमार्टम के लिए दे रही है। लेकिन
0: अब एक बड़ी खबर है हरियाणा के हांसी से, जहां सरेआम जिम संचालक की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने जिम संचालक को गोलियों से भून दिया, फरार हो गए। सुबह सुबह जब लोगों को ट्रेन कर रहे थे जिम संचालक, उसी वक्त हमलावर बाइक से आते हैं, 10 गोलियां तड़ातड़ मारते हैं। फायरिंग के दौरान एक लड़की जो जिम संचालक के ठीक सामने थी वो भी घायल हो गई। जिम संचालक की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है।
19: हरियाणा के हांसी में 27 वर्षीय कपिल की, जो एक जिम संचालक था, आज सुबह 5:30 बजे गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। पॉइंट ब्लैक रेंज से 10 राउंड फायरिंग की गई। दो बदमाश जो दो हमलावर थे स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर आए थे, जिन्होंने फवारा चौक हांसी में कपिल की गोलियां मारकर हत्या कर दी। सुबह के वक्त जिम ट्रेनिंग में कपिल व्यस्त था और साथ ही ट्रेनिंग लेने वाली जिम की एक सदस्य शिखा को भी छर्रा लगने से इंजरी आई है, जो कि अस्पताल।
0: और अब खबर है खेल जगत की। आज से फीफा वर्ल्ड कप का शुभारंभ हो रहा है और ये इतिहास का सबसे बड़ा फुटबॉल महाकुंभ है जो 19 जुलाई तक खेला जाएगा। इस बार अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको तीन देश मिलकर इस महा आयोजन की मेजबानी कर रहे हैं। पहली बार इस महासमर में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कुल 16 शहरों में 104 मुकाबले खेले जाने हैं।
20: एक बार फिर से फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है और इस बार ऐसा पहली बार है जब तीन देश मिलकर इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं, मेजबानी कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको वो ऐसे तीन देश हैं जहां पर सारे मुकाबले खेले जाएंगे। एक चीज और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि इस बार सबसे ज्यादा टीमें, यानी कि कुल 48 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। 16 शहर जहां पर 100 से ज्यादा मुकाबले खेले जाएंगे और सभी टीमों की, इन सभी 48 टीमों की नजरें और कोशिश सिर्फ एक होगी, चमचमाती ट्रॉफी, जो कि खिताबी मुकाबला खेला जाएगा 19 जुलाई को। मुकाबले की शुरुआत, टूर्नामेंट की शुरुआत मैक्सिको, जो कि होम टीम है, सामने होगी साउथ अफ्रीका। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ट्रॉफी पर कौन बाजी मारता है।
0: और यहां वह चुचरा बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
21: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
22: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
23: Oh, ouch.
22: However you make money work, we can work with that.
24: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
25: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
26: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। In association with
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accoje, the number one Korean skincare brand now in India.
22: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
24: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
25: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
3: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
4: Money, money, money, money, every month.
5: Soch badlo aur bank bhi.
6: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
7: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
8: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
6: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
23: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
7: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
6: जहां खबर वहां खबरदार।
25: इन एसोसिएशन विद
27: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
28: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
6: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल।
29: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी।
6: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल।
29: CBSE के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
6: छात्रों को दिया मंच।
29: उज्मा हमारे साथ कोटा से और अदिति मुंगेर से हैं और तानिया कोटा से हैं और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
30: मैम ये देखिए, इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
31: IIT मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
6: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर।
29: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक, और अब सरकार की तरफ से CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
6: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।
32: हॉर्मुज में जो स्थिति सीज फायर से पहले हो गई थी वही हालात एक बार फिर बन गए हैं। अमेरिका ने कोस्टल पॉइंट को निशाना बनाया। ताज़ा हमले में अमेरिकी फौज ने हॉर्मुज के इलाके में बमबारी की तो इसके जवाब में ईरान ने ऐलान किया कि हॉर्मुज से किसी भी जहाज की आवाजाही नहीं होने देंगे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि ईरान के टॉप ज्वाइंट मिलिट्री कमांड के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट सभी वेसल के लिए बंद हैं। नाकेबंदी के आदेश में तेल टैंकर और वाणिज्यिक जहाज भी शामिल हैं। ईरानी मिलिट्री कमांड के मुताबिक किसी वेसल ने अगर हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश की तो उसे निशाना बनाया जाएगा। हॉर्मुज में ताजा संकट के बीच ट्रंप का बयान आया। उन्होंने पोस्ट कर कहा कि पिछले महीने मैंने अमेरिकी सेना को हॉर्मुज से तेल टैंकरों और अन्य वाणिज्यिक जहाजों को सहायता प्रदान करने को कहा था। इसके लिए एक खुफिया मिशन अंजाम देने के निर्देश दिए गए थे। ट्रंप के मुताबिक आदेश के बाद से अब तक 10 करोड़ बैरल से अधिक तेल हॉर्मुज से होकर खुले बाजार में पहुंच गया है। 200 से अधिक कमर्शियल जहाज जलडमरू मध्य से सुरक्षित रूप से गुजर चुके हैं। ये अभूतपूर्व सफलता है। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि हॉर्मुज पर अमेरिका का नियंत्रण है, ईरान का नहीं। अमेरिका लगातार हॉर्मुज पर फुल कंट्रोल का दावा कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से कमर्शियल जहाजों की आवाजाही लगातार हो रही है। हॉर्मुज पर ऐसे दावों को लेकर IRGC एयरस्पेस ने सवाल उठाए हैं। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा।
1: अब समय है यूपी एक्सप्रेस वे का। सीएम योगी आज दिल्ली स्थित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में शामिल होने के लिए यूपी भवन से रवाना हुए। सीएम योगी बैठक में हिस्सा लेंगे। यूपी में बीएसपी की भाईचारा कमेटी की बैठकों का दौर शुरू। दलित ओबीसी वोट बैंक को एकजुट करने पर पार्टी का फोकस। पीडीए के जवाब में संगठनात्मक रिपोर्ट तैयार कर रही बीएसपी। यूपी चुनाव से पहले एसपी कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर नया फॉर्मूला। जीत की गारंटी के आधार पर तय होंगे टिकट। मजबूत उम्मीदवार और जातीय समीकरण के आधार पर बटेंगी सीटें। यूपी मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतरण रोकथाम सेल बनेगा। गवर्नर के निर्देश पर सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में विशेष निगरानी सेल गठित करने का आदेश दिया गया। केजीएमयू नेत्र विभाग जांच के घेरे में। मरीजों को बाहर से लेंस और दवाएं लिखने के आरोप पर शासन स्तर पर रिपोर्ट की जांच, कार्रवाई की संभावना। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न। 75 जिलों में 1183 केंद्रों पर 3 दिन चली परीक्षा खत्म हुई। 12 एफआईआर दर्ज, 9 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। यूपी में 60,000 शिक्षकों की भर्ती की तैयारी। खाली पदों का ब्यौरा आयोग को भेजा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पदों पर होगी भर्ती। फिरोजाबाद में दुष्कर्म के आरोपी मौलाना से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली, हुआ गिरफ्तार। तमंचा कारतूस बरामद। ट्रॉमा सेंटर में चल रहा इलाज। फिरोजाबाद में शराब ठेके पर महिलाओं का हंगामा। लाठी डंडों से की तोड़फोड़। सड़क पर फेंकी शराब। आबकारी विभाग बोला दुकान नियमों के तहत जांच जारी। बुलंदशहर के होटल में युवती की संदिग्ध मौत। युवक के साथ कमरे में जहरीला पदार्थ खाने की आशंका। युवक अस्पताल में भर्ती। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जेवर एयरपोर्ट पर इंडिगो के साथ अंतिम ट्रायल सफल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 15 जून से कमर्शियल उड़ानों के लिए तैयार। लैंडिंग से टेक ऑफ तक सभी प्रक्रियाओं का सफल परीक्षण। ग्रेटर नोएडा में बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश और ओलावृष्टि से भीषण गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग का अनुमान सही। गुरुग्राम में रोडवेज के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा। कंडक्टर पर सिख ड्राइवर से मारपीट का आरोप। वीडियो वायरल। तलवार लेकर नीचे उतरा ड्राइवर। हमलावर और भीड़ मौके से भागी। झांसी कानपुर रेल लाइन पर 3 घंटे थमी ट्रेन। यात्रियों की बड़ी परेशानी। गोरखपुर लोकमान तिलक एक्सप्रेस रुकी। 42 डिग्री से पैदल चले परीक्षार्थी। रेलवे ने बताया ब्लॉकिंग के कारण रोकी गई थी ट्रेन। वीडियो वायरल हुआ। झांसी में कुत्ते के काटने की शिकायत पर युवक की पिटाई। पड़ोसियों ने युवक को पीटा और घसीटा। वीडियो वायरल। पीड़ित शिकायत लेकर भटक रहा है। सुल्तानपुर में छेड़खानी के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। पैर में लगी गोली। तमंचा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। अस्पताल में भर्ती। मेरठ में खुली जीप में युवकों की खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। हापुड़ रोड पर चलती जीप में लटक कर रहे थे करता। पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा। कानपुर देहात में नदी किनारे मिला संदिग्ध मोर्टार। मचा हड़कंप। ग्रामीणों को मिला विस्फोटक। इलाका सील। जांच के लिए बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। बांदा में बिजली संकट से ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। 25 दिन से अंधेरे में 350 से ज्यादा घर। डीएम ऑफिस पहुंचे ग्रामीण। डीएम ने बिजली अफसरों को लगाई फटकार। सहारनपुर की छतों पर चमकी सोलर क्रांति। 10,000 से ज्यादा घरों से रोज 34 मेगावाट बिजली उत्पादन। बढ़ रही ऊर्जा आत्मनिर्भरता।

0: उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल से जुड़ी इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर, वो हम आपको बता देते हैं। इंडिया की बैठक में अखिलेश यादव के बयान का अब कांग्रेस की ओर से जवाब आ गया है। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे कह रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और पार्टी अकेले भी सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है।
1: कांग्रेस की कितनी तैयारी है?
2: 400 दिनों पर पूरी मजबूती के साथ हमने सभी अपनी तैयारी की है। संगठन बूथ स्तर पर जीतने की क्या रणनीति हो सकती है, उस पर हम काम कर रहे हैं।
0: पहले की बात नहीं, आपको याद होगा कि इंडिया की बैठक में अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक 8 जून की बैठक के दौरान अखिलेश यादव ने राहुल, सोनिया और 24 दलों के सामने कहा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का संगठन ज्यादा मजबूत है और कांग्रेस को जमीनी हकीकत समझकर सिर्फ जीतने वाली सीटें मांगनी चाहिए। अब कांग्रेस ने साफ कर दिया कि उनका संगठन किसी दूसरे दल के मुकाबले कमजोर नहीं है और वो सभी 403 सीटों पर लड़ सकती है। आपको एक बार फिर अविनाश पांडे का वो बयान सुनवाते हैं। चलिए, बयान आपने सुन लिया है। हमारे सहयोगी राहुल गौतम इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राहुल, अखिलेश यादव की तरफ से सुनाया जाता और कहा जाता है जहां संगठन मजबूत है वहां पर ज्यादा सीटें देनी चाहिए सामने वाले को, लेकिन अविनाश पांडे कह रहे हैं कि हम तो 403 सीटों पर लड़ेंगे, तो भविष्य के क्या आसार हैं? अब
3: देखिए, कांग्रेस का कहना है कि हम 403 सीटों पर हमने तैयारी करी है और गठबंधन को लेकर अंतिम फैसला हमारा जो टॉप लीडरशिप है वो करेगा। आप इस बयान को ऐसे देखिए कि ये एक प्रकार से ये बताया जा रहा है कि देखिए, कांग्रेस को आप हल्का मत आंकिए, कांग्रेस भी एक मजबूत फोर्स है उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारे भी सांसद जीत कर आए हैं, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी है उत्तर प्रदेश के अंदर, लगातार जो पार्टी का जो काडर है, संगठन है, वो मजबूत हो रहा है। और ऐसे में आप हमें राइट ऑफ नहीं कर सकते ये बोलकर कि आप जमीन पर नहीं है या आप सिर्फ वो सीट मांगिए जहां पर आपकी जीतने की प्रबल मावना हो। ऐसी कई सारी सीटें हैं जो हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस बयान को आप ऐसे समझिए कि ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है। पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से आप कह सकते हैं कि जगह दिखाई जाती है कांग्रेस को, देखिए हाँ। गठबंधन में आपकी ये जगह है, अभी आप उतने मजबूत नहीं है, हमारा संगठन है सबसे बड़ा। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि देखिए,
0: अच्छा, आप बने रहिए राहुल हमारे साथ। आशीष श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आशीष, कांग्रेस से कह रही है कि हम 403 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। अब सपा की तरफ से भी बयान आ रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी बयान आ रहा है, तो आगे तो 2027 की राह मुश्किल है।
4: बिल्कुल, देखिए, अगर इसे पहले का हम देखेंगे तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही अलायंस में आधी आधी सीटों की तकरीबन कहीं बात कर रहे थे, लेकिन अब इस बार अगर हम बात करें कि 403 सीटों पर लड़ाई होगी, तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर क्या कांग्रेस पूरी 403 सीटों पर लड़ेगी, फिर समाजवादी पार्टी का क्या होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि आप हमें उन सीटों के बारे में जानकारी दीजिए जहां पर आपकी जीत हो सकती है संभावित में, और ऐसे इसी वजह से पिछली बार भी यही हुआ था। तो अब कहीं ना कहीं ये कांग्रेस ने साफ कर दिया कि अगर वो 403 सीटों पर लड़ रही है तो समाजवादी पार्टी के सामने भी अब एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है कि आखिर अगर 403 सीटों पर वो लड़ेगी और 403 सीटों पर समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है, तो अब सीटों का अगर ये अलायंस होता है तो किस तरीके से गठबंधन में किस तरीके से सीट शेयरिंग,
0: और ऐसे ही अगर बयान आएंगे तो फिर बात कहां से बनेगी 27 के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर बताते हैं। यूपी में योगी सरकार ने 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को पक्के मकान, 5 लाख का मुफ्त इलाज और पेंशन देने का फैसला किया है। चुनाव नजदीक आते ही योगी सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें यूपी में 3 तलाक पीड़ित महिलाओं की सूची बनाई जा रही है। सीएम योगी ने राज्य के महिला कल्याण विभाग को ऐसी पीड़िताओं की सूची बनाने का निर्देश जारी कर दिया है। तो चलिए, सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सीएम योगी के इस बयान पर, इस बड़े फैसले को लेकर क्या कहा।
5: कितनी बड़ी मदद खासकर 3 तलाक वाली महिलाओं को इससे होने वाली है?
6: देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम पूरे प्रदेश की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक की जो पीड़ित हमारी बहनें हैं उनके दर्द को समझते हुए 3 तलाक के ऊपर कानून लेके और हमारे मुस्लिम बहनों को एक राहत देने का काम किया। मैं पूरे प्रदेश के अल्पसंख्यक बहनों की तरफ से खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे इस जो पहल थी, हम लोग की जो जरूरत थी हमारी मुस्लिम बहनों की, उस जरूरत को पूरा किया। और जो ट्रिपल तलाक से पीड़ित जो हमारी बहनें हैं उनको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिले, अभी ये पहला एक पड़ाव है मैं इसको कहूँगा, उनको छत और हेल्थ केयर देने के बाद हम उनको स्किल डेवलपमेंट से भी जोड़ेंगे और उनको आर्थिक रूप से भी उनको फाइनेंशियल रूप से भी हम मजबूत करके उनको समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का काम हम करेंगे।
5: विपक्ष कह रहा है कि ये सब कागजी वादे हैं, असल में तो मुख्यमंत्री और सरकार एक समुदाय विशेष के पीछे पड़ी हुई है।
6: देखिए यकीनी तौर पे विपक्ष वो इसलिए घबराया हुआ है कि हमने पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए काम किया। हमने माइनॉरिटीज को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा। आज अगर 81 करोड़ लोगों को हर महीने राशन निःशुल्क मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो उसमें बड़ी संख्या में माइनॉरिटीज की आबादी है। आज अगर 11 करोड़ से अधिक शौचालय बने हैं पूरे देश भर में, उसमें बड़ी संख्या में हिस्सेदारी माइनॉरिटीज पिछड़े पसमानदा मुसलमानों की है। आज अगर 10.5 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस कनेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश भर में हुआ है, तो उसमें बड़ा पार्टिसिपेशन मुस्लिम महिलाओं का है, मुस्लिम समाज का है। आज अगर 2 करोड़ से अधिक हमारे नौजवानों को स्किल से रोजगार से जोड़ने का काम हुआ है, तो उसमें बड़ी संख्या में पार्टिसिपेशन माइनॉरिटीज का है। तो हम माइनॉरिटीज के विकास को एजेंडे के साथ आगे ले जा रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे ले जा रहे हैं।
5: आप सुन रहे थे दानिश आजाद अंसारी को, यूपी सरकार के मंत्री हैं, इनका डिपार्टमेंट है, इनिशिएटिव है, काफी दिनों से मशक्कत चल रही थी और आखिरकार एक निर्णय है जिससे तमाम महिलाओं के हित में काम होगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: तो देखिए दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी राज के अंदर 3 तलाक पीड़ितों की अच्छी खासी तादाद है और करीब 7,000 तो ऐसे मामले हैं जिसमें पीड़ितों ने मुकदमा दर्ज करा रखा है और ऐसे ना जाने और कितने मामले हैं जो अभी तक प्रशासन की नजर से दूर हैं। सरकार का यह मानना है कि ऐसी तमाम पीड़ित महिलाओं को न्याय देने और मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सरकारी योजनाओं का सहारा बहुत जरूरी है और इसके तहत जो सरकारी निर्देश यूपी के महिला और बाल कल्याण विभाग को जारी किया गया है उसके मुताबिक 3 तलाक और एसिड अटैक पीड़ितों को सरकारी मदद दी जाएगी। जिन 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के पास अपना स्थायी मकान नहीं है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर दिया जाएगा। इन महिलाओं और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़कर 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। चिन्हित की गई पात्र पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलने तक 6,000 रुपए सालाना की वित्तीय पेंशन मदद भी मिलेगी। सरकार की यह कोशिश है कि चुनाव से पहले ऐसी महिलाओं का डेटा बेस तैयार कर लिया जाए और उन्हें मदद मिलने लगे, लेकिन विपक्ष सरकार की इस पहल को सिर्फ चुनावी शगुफा बताती है।
7: आपको फिक्र है महिलाओं की, आप फिक्र करिए कि सूबे की 54% महिलाएं कुपोषित हैं। आप मकान दे देंगे, मकान तो जो निराश्रित महिलाएं हैं जिनके पास जो बेवा हैं, मकान तो उनको मिलना ही चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी, जिस तरह की भाषा आपकी महिलाओं के बारे में, मुस्लिम महिलाओं के बारे में, उससे कुछ भी कोई बात छिपी नहीं हुई है। और पूरे सूबे में, पूरे देश में सबसे ज्यादा एसिड से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनकी तादाद उत्तर प्रदेश में है।
0: विपक्ष की आवाज है, हालांकि योगी सरकार इस फैसले पर बहुत तेजी और गंभीरता से आगे बढ़ रही है और ऐसी तमाम 3 तलाक और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं का डेटा बेस पूरा तैयार किया जा रहा है, जिसमें योगी सरकार के महिला कल्याण विभाग ने डेटाबेस को सत्यापित करने और पारदर्शी बनाने के लिए 2 तरह से पंजीकरण की व्यवस्था की है, जिसमें 3 तलाक पीड़ित महिला को अपने जिले के विकास भवन में जिला प्रोबेशन अधिकारी के दफ्तर में बने तलाक पीड़ित विभाग में फॉर्म भरना है, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी या राशन कार्ड के साथ 3 तलाक पर दर्ज FIR या कोर्ट केस के दस्तावेज, बैंक पासबुक, निवास और आय प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी होगा। अब इसके बाद जिला प्रशासन, थाने के रिकॉर्ड और आशा कार्यकर्ताओं के जरिए पीड़ितों की पहचान पुष्ट की जाएगी। अब इस योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलता है जो उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हों, तलाक के बिद्दत के खिलाफ या भरण पोषण का मुकदमा कर चुकी हों, आर्थिक रूप से कमजोर हों और अपना पक्का मकान जिन पर नहीं हो। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ओमान के पास एक और टैंकर पर हमला हुआ है। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, ओमान के पास एक और टैंकर पर हमला हुआ है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमटी जलवीर नाम के टैंकर पर हमले की खबर है और हमले के बाद टैंकर में आग लग गई। तस्वीरें भी आपके सामने। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रणय, एमटी जलवीर नाम के टैंकर पर हमले की खबर है?
8: बिल्कुल हिमांशु, ये खबर आ रही है एमटी जलवीर, जिसका नाम आपने बताया है, शिनाक पोर्ट है ओमान का, और उसके करीब ये हमला हुआ है। हालांकि यदि आप भौगोलिक रूप से शिनाक पोर्ट की स्थिति देखें तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद करीब है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बैंड जैसे ही खत्म होने वाला होता है उसी जगह पर ये शिनाक का पोर्ट है और वहां पर ये हमला हुआ है। अभी ये जानकारी स्पष्ट नहीं है कि ये हमला कहां से हुआ, लेकिन ईरान का जो जस्क का पोर्ट है, बंदर जस्क, वो इसके ठीक अपोजिट है शिनाक पोर्ट के, और उस इलाके के अंदर एमटी जलवीर के ऊपर ये हमले की खबर आ रही है। और अगर आप देखें तो बीते 3 दिनों के दौरान ये तीसरी घटना है। पहले एमटी मेरीवैक्स के ऊपर, जो कि पलाऊ के झंडे वाला जहाज था, हालांकि वो शेडो फ्लीट का हिस्सा बताया जा रहा है, जो अमेरिकी नेवल ब्लॉकेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, उस पर हमला हुआ। उसमें 24 भारतीय जो सी फेयरर थे वो मौजूद थे, उसको ओमान की सेना ने रेस्क्यू किया वहां से। उसके बाद चेलाबेलो ये भी जहाज था पलाऊ का ही, उसके ऊपर भी हमला हुआ, जिसके अंदर 2 लोगों के मारे जाने की खबर कन्फर्म हो चुकी है। उसमें भी 24 सी फेयरर थे और एक शख्स जो है वो मिसिंग बताया जा रहा है। अभी तक 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। और तीसरी घटना है जिसके अंदर एमटी जगदीप के ऊपर हमला हुआ है। अब ये हमला कहाँ हुआ, कैसे हुआ, एग्जैक्टली किस तरीके से इसको टारगेट किया गया है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जो
0: बिल्कुल भारतीय दूतावास भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी सीजन नजदीक आते ही जात धर्म वाले मुद्दे बार बार सामने आने लगे। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ व्यापक अभियान चला रही योगी सरकार में अब नया फरमान अस्पतालों को लेकर आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोक भवन से आदेश जारी हुआ है कि राज्य के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एंटी कन्वर्जन सेल बनाया जाएगा। यूपी के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति और राज्य के गवर्नर के आदेश पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने राज्य के सभी संबंधित संस्थानों को तुरंत प्रभाव से एंटी कन्वर्जन सेल बनाकर रिपोर्ट करने को कहा है। ये सेल कैंपस में चल रही किसी भी तरह की संदिग्ध एंटी कन्वर्जन एक्टिविटीज पर नजर रखेगी, रिपोर्ट करेगी, एक्शन लेगी।
9: लखनऊ के केजीएमयू में अवैध धर्मांतरण का रैकेट, लखनऊ की पीजीआई में धर्मांतरण का आरोप, कानपुर के जीएसवीए मेडिकल कॉलेज में जांच, गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जांच, बस्ती मेडिकल कॉलेज में जांच, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर रमीजुद्दीन का सिंडिकेट, पीजीआई में कर्मचारी की बेटी लापता और शामली में धर्मांतरण के चंगुल में दवा कारोबारी का बेटा। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और चिकित्सा सेवा से जुड़े संस्थानों में अवैध धर्मांतरण से लेकर लव जिहाद तक के इतने मामले आ रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश के लोक भवन ने इसकी रोकथाम और निगरानी के लिए बड़ा फैसला लिया है? यूपी की गवर्नर और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के निर्देशानुसार ओएसडी सुधीर एम बोबडे ने सूचना जारी की, जिसके बाद यूपी में सभी मेडिकल कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की नोडल संस्था अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुल सचिव ने तत्काल प्रभाव से अनुपालन आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि सभी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों को अपने परिसर में तुरंत धर्मांतरण रोकथाम सेल का गठन करना होगा और विश्वविद्यालय को इसकी रिपोर्ट सौंपनी होगी। ये सेल हॉस्टल्स, कैंपस के छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मचारियों के बीच संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगा और सेल की ओर से कैंपस में विशेष अभियान चलाकर सभी हितधारकों को उनके कानूनी अधिकारों, नियमों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना अनिवार्य होगा। धर्मांतरण के दबाव या किसी भी संदिग्ध तत्व से जुड़ी शिकायत मिलने पर कॉलेज प्रशासन को बिना देरी किए नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।
4: अवैध धर्मांतर के सिंडिकेट के खुलासे के बाद वहां पर कई संदिग्ध मुस्लिम डॉक्टरों की जो सूची है वो नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एसटीएफ को सौंपी थी, जिसके बाद कई सरकारी संस्थानों में जो संदिग्ध मुस्लिम डॉक्टर हैं उनके रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। एसटीएफ पूरी तरीके से संस्थान में उन संदिग्ध मुस्लिम डॉक्टरों के दस्तावेज और रिकॉर्ड खंगाल कर उनकी जांच कर रही है।
9: इस सूची में बस्ती मेडिकल कॉलेज, कानपुर मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज समेत कई संस्थानों के डॉक्टरों के नाम और नंबर शामिल हैं। आरोप है कि ये डॉक्टर अलग अलग जगहों पर धर्मांतरण गतिविधियों में शामिल रहे हैं। एसटीएफ को कई ऐसी संदिग्ध चैट्स भी सौंपी गई हैं, जिसमें अवैध धर्मांतरण की कोशिश की आशंका है। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही योगी सरकार ने चुनाव से पहले इस मामले में और सख्ती कर दी है, क्योंकि यूपी में धर्मांतरण विरोधी कानून के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि यूपी एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत अब तक कुल 835 अधिक आधिकारिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 1682 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें ज्यादातर मामले बहला फुसला कर, शादी का झांसा देकर और फर्जी पहचान के साथ दोस्ती करके प्रेम जाल में फंसाने के आरोप हैं, जिसमें पीड़ित लड़कियों या उनके परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में एक तरफ सरकार लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए एंटी कन्वर्जन सेल का गठन करा रही है, लेकिन इन्हीं अस्पतालों में करप्शन का कैंसर किस कदर फैल चुका है कि उसके रोकथाम का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। तीन तस्वीरें। लखनऊ के केजीएमयू में पहले कैंसर मरीजों के इलाज के नाम पर हुए करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आ चुका है। इसके बाद हार्ट के मरीजों को पांच पांच स्टेंट लगाने के खुलासे की जांच अभी चल ही रही है कि अब नेत्र विभाग में अनियमितता का मामला सामने आया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर वो आपको बता दें, ये पता चला है कि केजीएमयू में नेत्र विभागों में मरीजों को अस्पताल में व्यवस्था होने के बावजूद दुकानों से लेंस और दवाई लेने के पर्चे लिखे जाने के आरोप सामने आए। मरीजों की शिकायत के बाद अस्पताल प्रशासन ने 5 सदस्यों की टीम से जांच कराई है। जांच समिति ने अस्पताल के अफसरों कर्मचारियों से पूछताछ की है और अब जवाबदेही तय की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 9 साल के कामकाज का रिपोर्ट देते हुए नौकरी और रोजगार पर बड़ा दावा करती रही है, ये रिपोर्ट में रहा है। और अब बड़ी खबर है कि यूपी में बहुत जल्द 60,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बड़ी खबर आई है कि यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत जल्द ये प्रक्रिया शुरू करने वाला है, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में खाली करीब 60,000 पदों पर भर्ती होंगी। अब इसमें शहरी इलाकों के स्कूलों में 11,508 और गांव के इलाकों में 48,000 से अधिक खाली पद हैं। पहले परिषद ने शहरी इलाकों की रिक्तियों की सूची चयन आयोग को भेजी है और जल्द ही गांव वाले इलाकों की सूची भी भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में सीएम योगी अपने हर मंच से युवाओं को नौकरी रोजगार में निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया का दावा करते हैं और पिछले दिनों पुलिस भर्ती में सफल परीक्षा लेने के बाद अब यूपी में बड़े पैमाने पर सरकारी भर्तियों की तैयारी की गई है। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
12: Big color, bigger savings. Sherwin-Williams Super Sale is here. Get 40% off paints and stains June 5th through the 11th with prices starting at $30.89. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
10: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
13: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
14: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
15: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
16: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
15: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
17: You're listening to MSNBC.
15: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love anytime you want. Try it now and thank us later.
18: संसद से सड़क तक मोदी सरकार को घेरने वाली सायुनी घोष।
19: हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही।
18: प्रधानमंत्री मोदी के कट्टर विरोधी शत्रुघ्न सिन्हा।
20: मोदी जी ने ये सौगात दिया, उत्तर प्रदेश को ये दिया, महाराष्ट्र को ये दिया, फलाने स्टेट को ये दिया। अरे वो नहीं देते हैं, वो हमारा ही पैसा है, हमारे लोगों का पैसा है।
18: और यूसुफ पठान, कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे ये नेता उन बागियों में शामिल हैं जिन्होंने काकोली घोष दस्तेदार की अगुवाई में अलग गुट बनाया है। खबर है कि टीएमसी के बागी सांसद बीजेपी या एनडीए में शामिल नहीं होंगे बल्कि सदन में अलग गुट के रूप में रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस के 19 बागी लोकसभा सांसदों की जो लिस्ट आई है उसमें कई चौंकाने वाले नाम हैं। लेकिन सायोनी घोष भी ममता से बगावत करेंगी, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सुष्मिता देव की असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात की तस्वीरें आईं। दोनों असम से हैं। ये भी तय लग रहा है कि इस्तीफे से खाली सीट पर उपचुनाव में बीजेपी सुष्मिता को उम्मीदवार बनाएगी।
21: सच्चाई तो ये है कि मेरी राजनीति बंगाल में नहीं है, मेरी राजनीति असम में है और मुझे असम में ही राजनीति करना है।
18: टीएमसी के पास लोकसभा में कुल 28 सांसद हैं। 19 से 20 सांसदों की बगावत के बाद उनके खेमे में अब सिर्फ 9 सांसद ही शेष बचे हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 80 विधायकों में टीएमसी के 58 विधायकों ने अलग गुट बनाया था। इसकी अगुवाई ऋतव्रत बनर्जी कर रहे हैं। पार्टी पूरी तरह से टूट के कगार पर है। सवाल ये कि अब ममता बनर्जी क्या करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: This is the sound of Jack buzz-cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
1: Oh, ouch.
0: However you make money work, we can work with that.
2: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health.
4: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: Such.
5: अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ राम कथा से 2027 की सियासी महाभारत का संदेश सुनाते हैं। जिस अयोध्या का राम मंदिर बनवाकर भी 24 में जाति में वोट बंटने से अयोध्या से जुड़ी लोकसभा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, वहां राम के नाम पर अस्त्र शस्त्र सत्ता और विपक्ष में चलने लगा। पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, लिखा राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज किया। जब लखनऊ में बीजेपी विधायक की तरफ से कराई जाती रामकथा में मुख्यमंत्री पहुंचे तो नया सियासी संदेश सुनाई दिया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं निगेटिव ताकतें रावण काल की तरह सिर उठाएंगी तो उजाड़ करेंगी। क्या योगी का निशाना विपक्ष है, जहां पर वो खर दूषण मारीच ताड़का तक की बात करके एक ऐसी रामकथा का जिक्र करते हैं जिसमें चाचा मामा का नाम आते ही तंजनुमा हंसी आती है। इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं, जब दावा हो रहा है कि हिंदू लड़कियों ही नहीं हिंदू लड़के तक को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, तब मुख्यमंत्री योगी लव जिहाद के खिलाफ श्री राम से सीख लेने को कहते हैं। लव जिहाद ही नहीं बल्कि त्रेता युग में खर दूषण मारीच के जरिए कलयुग में लैंड जिहाद तक का जिक्र योगी आदित्यनाथ करते हैं।

ईरान अमेरिका के बीच युद्ध विराम की उड़ी धज्जियां। साउथ ईरान समेत कई इलाकों में स्ट्राइक। मिडल ईस्ट के यूएस बेसिस पर आरजीसी का हमला। फाइटर जेट्स तबाह करने का दावा। तृणमूल कांग्रेस से बगावत की सुनामी। राज्यसभा से एक और सांसद का इस्तीफा। लोकसभा में 20 बागी सांसदों का स्पीकर को खत। पार्टी पर जताया दावा। सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका। आज अर्जी पर सुनवाई से इंकार। कल तक करना होगा इंतजार। सिंघवी की दलील नाकाम। कांग्रेस की कल प्रदर्शन की तैयारी।

नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट से खबर आ रही है, ओमान के पास एक और तेल टैंकर पर हमला हुआ है। ओमान के पास भारतीय शिप जलवीर पर अटैक के बाद टैंकर में आग लग गई है। यह हमला ओमान के शिनास बंदरगाह के पास हुआ है और सामने आई तस्वीरों में समुद्र के बीच इस शिप को जलते हुए देखा जा सकता है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित अधिकारी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए। एमटी जलवीर जहाज, ये बताया जा रहा है ये भारतीय जहाज है। एमटी सेटाबेला के बाद एमटी जलवीर पर अटैक हुआ है और उठती हुई आग और धुएं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अटैक कितना भीषण रहा होगा। ओमान के पास ये टैंकर पर हमला हुआ है। और वक्त हो गया है नॉनस्टॉप 100 का।

भारत तक खाड़ी युद्ध की आग। ओमान में एक और बात है, जहाज अमेरिकी हमले की चपेट में, 3 दिन में तीसरा हमला। होर्मुज के करीब तेल टैंकर हमले में 3 हिंदुस्तानियों की गई जान। भारत ने अमेरिका से कड़ा विरोध जताया, जहाज हमले पर पारदर्शी जांच की मांग। भारत ने कहा इस तरह के हमले समुद्री सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर मोदी सरकार, नीति आयोग की बड़ी बैठक पर बड़ा मंथन जारी। मुख्यमंत्रियों के साथ एक्शन प्लान पर विस्तार से विचार, 2047 के विकसित भारत के रोडमैप पर मंथन। विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखी गई है। बैठक की थीम जो 4 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है। बैठक में देश भर के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल। मीटिंग में मानव विकास के राष्ट्रीय विजन को राज्य स्तरीय योजनाओं के साथ जोड़ने पर जोर। सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका, आज अर्जी पर सुनवाई से इनकार, कल तक करना होगा इंतजार। सिंघवी की दलील नाकाम। टीएमसी सांसद प्रकाश सिंह बराइक ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा, सभापति को सौंपा त्याग पत्र। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका, सूत्रों से खबर, 19 बागी लोकसभा सांसदों की सूची आई सामने। बागी सांसदों की सूची में शत्रुघ्न सिन्हा, सयानी घोष और यूसुफ पठान के नाम शामिल। खड़गे पर सामाजिक कार्यकर्ता का आरोप, कहा चुनावी दस्तावेज में ट्रस्ट की कुछ संपत्तियों की जानकारी छिपाई गई। यूपी में बीएसपी की भाईचारा कमेटी की बैठकों का दौर शुरू, दलित ओबीसी वोट बैंक को एकजुट करने पर पार्टी का फोकस। यूपी चुनाव से पहले एसपी कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर नया फॉर्मूला, जीत की गारंटी के आधार पर तय होंगे टिकट, मजबूत उम्मीदवार और जातीय समीकरण के आधार पर बटेंगी सीटें। यूपी मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण रोकथाम सेल बनेगा, गवर्नर के निर्देश पर सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में विशेष निगरानी सेल गठित करने का आदेश। केजीएमयू नेत्र विभाग जांच के घेरे में, मरीजों को बाहर से लेंस और दवाएं लिखने के आरोप में शासन स्तर पर रिपोर्ट की जांच। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती मामले में परीक्षा संपन्न, 75 जिलों में 1183 केंद्रों पर 3 दिन चली परीक्षा, 12 एफआईआर दर्ज, 9 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। यूपी में 60,000 शिक्षकों की भर्ती की तैयारी, खाली पदों का ब्यौरा आयोग को भेजा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पदों पर होगी भर्ती। फिरोजाबाद में दुष्कर्म के आरोपी मौलाना से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली, हुआ गिरफ्तार, तमंचा कारतूस बरामद। फिरोजाबाद में शराब के ठेके पर महिलाओं का हंगामा, लाठी डंडों से की तोड़फोड़, सड़क पर फेंकी शराब, आबकारी विभाग बोला दुकान नियमों के तहत जांच जारी। बुलंदशहर के होटल में युवती की संदिग्ध हालत में मौत, युवक के साथ कमरे में जहरीला पदार्थ खाने की आशंका, युवक अस्पताल में भर्ती। दयारा बुग्याल ट्रक से लापता एमबीए की छात्रा बबीता पांडे की तलाश युद्ध स्तर पर, बबीता की तलाश में 120 जवान, 3 ड्रोन तैनात, गोई से 200 मीटर नीचे मिली अंतिम लोकेशन। बागेश्वर के पिंडारी ट्रक पर लापता पर्यटक की तलाश जारी, घटनास्थल पुलिस द्वारा रिक्रिएशन कर साक्ष्य जानने की कोशिश। मालवीय नगर अग्निकांड में एक और घायल ने तोड़ा दम, मृतकों का आंकड़ा हुआ 23। बिहार के टेंडर घोटाले में बड़ा एक्शन, 3 बड़े अफसर गिरफ्तार, ईडी की छापेमारी में मिले थे करोड़ों। मुजफ्फराबाद के पास पाकिस्तानी सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, सवार सभी लोग मारे गए। इंदौर में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान टीम को बाहर करने पर हुआ विवाद, 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज। गुरुग्राम में मामूली सड़क विवाद को लेकर निजी बस चालक और कैंटर चला रहे सिख ड्राइवर के बीच मारपीट, घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा। जानकारी के अनुसार एक कैंटर निजी बस के बीच हल्की टक्कर थी, टक्कर के कारण निजी बस का साइड शीशा टूट गया, उसके बाद कार सुनने के बाद विवाद हुआ। झांसी रेलवे की बड़ी लापरवाही, गड़मों के पास घंटों ट्रेनें रुकी, भीषण गर्मी से पैदल निकले यात्री, वीडियो आया सामने। यूपी के झांसी में कुत्ते काटने की शिकायत, पड़ोसी ने युवक को जमकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के सराय जुलैना रेड लाइट पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक हेड कांस्टेबल की तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, सीसीटीवी में आरोपी वाहन की पहचान हुई। मधेपुरा में एक हॉस्टल में 6 साल की छात्र की हत्या का खुलासा, अवैध संबंध करास खुलने पर मासूम की गई जान। फिरोजाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी मौलाना पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली लगने के बाद दबोचा गया। रुड़की में छतों से ताबड़तोड़ फायरिंग और पथराव का वीडियो वायरल, आरोपियों की पहचान में जुट गई है पुलिस। वलसाड में डिलीवरी बॉय की ऊंचाई से गिरने से मौत, सोशल मीडिया पोस्ट और मोबाइल की जांच में जुट गई है पुलिस। फिरोजाबाद शराब ठेके में महिलाओं का हंगामा, तोड़फोड़ कर सड़क पर फेंकी गई शराब, आबकारी विभाग ने बताया राजनीति से प्रेरित। अकोला में यूरिया के लिए रात भर लाइन में खड़े किसानों की मदद को आगे आया दुकानदार, नाश्ता और पानी कराया उपलब्ध। गाजियाबाद के MMG अस्पताल में चाकू लेकर घुसी महिला, इमरजेंसी मची अफरा तफरी, वीडियो वायरल। गोरखपुर में मल्टी लेवल पार्क के निर्माण के दौरान चला बड़ा हादसा, रेलवे स्टेशन पर पलटी क्रेन। गोंडा में एसयूवी और बाइक की टक्कर में 4 की मौत, 2 के घायल होने की सूचना।
सुल्तानपुर में छेड़खानी के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़, पैर में लगी गोली, तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। मेरठ में खुली जीप में युवकों का खतरनाक स्टंट करना पड़ा भारी, वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस ने दो युवकों को पकड़ा। कानपुर देहात में नदी किनारे मिला संदिग्ध मोर्टार, मचार कम, ग्रामीणों को मिला विस्फोटक, इलाका सील, जांच के लिए बम निरोधक दस्ता, फोरेंसिक टीम बुलाई गई। बांदा बिजली संकट से ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, 25 दिन में अंधेरे में 350 ज्यादा घर, डीएम ऑफिस पहुंचे ग्रामीण, डीएम ने बिजली अफसरों को लगाई फटकार। सहारनपुर की छतों पर चमकी सोलर क्रांति, 10,000 से ज्यादा घरों को रोज 34 मेगावाट बिजली उत्पादन, बढ़ रही है ऊर्जा आत्मनिर्भरता। खगड़िया में बिजली की चपेट में आने से पिता बेटे समेत 5 की मौत, 3 घायल। जमालपुर बॉर्डर पर बड़ा तनाव, 60 साल के व्यक्ति नो मैन्स लैंड में फंसा, बीएसएफ बीजीबी फ्लैग मीटिंग बेनतीजा। जमुई में कोचिंग जारी छात्रा को मिनी ट्रक ने कुचला, मौत से बवाल, पुलिस पब्लिक में पथराव, इलाके में तनाव। बलौदा बाजार में अवैध रेत खनन के विरोध पर बवाल, धरने पर बैठे ग्रामीणों से पुलिस मारपीट का वीडियो वायरल। जैकलीन फर्नांडिस मामले सुप्रीम कोर्ट जज ने खुद को किया अलग, 24 जून को नई बेंच करेगी सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, नोएडा गाजियाबाद में छाए काले बादल, चल रही है धूल भरी आंधी। दिल्ली एनसीआर में 12 जून को बारिश के साथ ओलावृष्टि, 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। दिल्ली एनसीआर को जल्द मिलेगी गर्मी से राहत, मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्री मानसून गतिविधियां तेज। अंबाला में आंधी के साथ जोरदार बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। देहरादून में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, तापमान में गिरावट। बद्रीनाथ की जयकारों से गूंज था उत्तराखंड, बद्रीनाथ यात्रा में रिकॉर्ड 10 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार। पिछले साल 25 जून को पार हुआ था 10 लाख दर्शन का आंकड़ा, 10 जून तक ही 10 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के किए दर्शन। भक्तों की भीड़ के साथ यात्रा मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार, श्रद्धालुओं को सुविधा और सुलभ दर्शन कराने में जुटा है प्रशासन। खराब मौसम के बीच भी कम नहीं हुआ भक्तों का जोश, बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु, मानसून के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासन तैयार। देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, अब तक 33 लाख श्रद्धालुओं ने किए केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन। आज फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का होगा आगाज, अमेरिका कनाडा और मेक्सिको की मेजबानी में 69 दिन चलेगी प्रतियोगिता, 3 देश कर रहे हैं संयुक्त मेजबानी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में होंगे कुल 104 मैच, ग्रुप स्टेज में होंगे 72 मुकाबले। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार खिताब के लिए 32 की जगह भिड़ेंगी 48 टीमें, 20 जुलाई को अमेरिका में न्यूजर्सी में खेला जाएगा विश्व कप फाइनल। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का, मेक्सिको टोरंटो और लॉस एंजलिस में होगी ओपनिंग सेरेमनी। भारत में दिख रहा है फुटबॉल विश्व कप का फीवर, केरल में गलियों सड़कों से घर तक दिख रहा है फुटबॉल का क्रेज। नोएडा एयरपोर्ट से उड़ाने शुरू होने में बस कुछ दिन बाकी, एयरपोर्ट ने इंडिगो के साथ सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया, अंतिम ऑपरेशनल रेडीनेस एक्टिवेशन और ट्रांजिशन ट्रायल। ट्रायल में विमान के उड़ने लैंड करने से दोबारा उड़ान भरने तक की हर प्रक्रिया का किया गया परीक्षण, व्यवस्था तकनीकी प्रणाली एजेंसियों के समन्वय की जांच। परीक्षण में विजुअल डॉकिंग, गाइडेंस सिस्टम, पैसेंजर बोर्डिंग, ब्रिज, ग्राउंड पावर यूनिट, बैगेज हैंडलिंग सिस्टम और कार्गो संचालन जैसी सुविधाओं की जांच। विमान में केटरिंग, ग्राउंड हैंडलिंग, ईंधन भरने से जुड़ी प्रक्रियाओं का परीक्षण, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, रिक्वायर्ड नेविगेशन परफॉर्मेंस अप्रोच प्रक्रिया की जांच। नोएडा हवाई अड्डे से 15 जून से शुरू होंगी कमर्शियल उड़ानें। अमेरिका ने ईरान पर फिर से शुरू किए हमले, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा सचिव पीट हैक्सेथ की चेतावनी के बाद कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी हमलों की ईरानी समाचार एजेंसियों ने पुष्टि की, एजेंसी ने बताया ईरान के किश द्वीप और बंदर अब्बास पे धमाकों की आवाज सुनी गई। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद ईरान के सिरिक और मिनाव क्षेत्रों में बड़े विस्फोट की खबरें आई सामने। हमले के तुरंत बाद देश के कई हिस्सों में जवाबी कार्रवाई के लिए एंटी एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम को तुरंत एक्टिव कर दिया गया। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरू मद को बंद करने की घोषणा की, कमान ने कहा जो भी जहाज वहां से गुजरने की कोशिश करेगा उस पर गोली चलाई जाएगी। अमेरिकी ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी, कहा ईरान ने बातचीत में देरी की अब कीमत चुकानी होगी। हमले के बाद ईरान का जबरदस्त पलटवार, जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला, इसके पहले अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया था। ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, इस्माइल बघाई ने कहा देश की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटेगी सेना, अमेरिका पर बार बार युद्ध विराम उल्लंघन का लगाया आरोप। ईयू के नए प्रतिबंध पर रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाकरोवा का बयान, नए प्रतिबंध में कामयाब नहीं होगा यूरोपीय संघ, रूस देगा कड़ा जवाब। रूस के चेबोकसारी में सैन्य प्लांट पर यूक्रेन का बड़ा हमला, दूदू कर जली इमारत, तेल ठिकाने के बाद सैन्य प्लांट पर हमला। रूस की राजधानी मॉस्को में कार में बम धमाका, कार में लगी आग, एक व्यक्ति की मौत, रूसी अधिकारियों ने विस्फोट मामले की जांच शुरू की। लेबनान में इसराइल का भीषण हमला, होमीन अल फोका में था धुएं का गुबार।
लेबनान सीरिया में इजरायली हमले पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का बयान, कहा इजरायल के हमले तुर्की के लिए भी खतरा, वैश्विक समुदाय तुरंत रोके इजरायल की आक्रामकता। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में अंधाधुंध फायरिंग, 12 की मौत, 9 घायल, 10 से ज्यादा संदिग्ध, हमलावरों की गाड़ी से उतरकर नागरिकों पर फायरिंग। इंडोनेशिया में ईंधन की कीमतों में 32% का इजाफा, गैर सब्सिडी वाले ईंधन में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी। फिल्म काला हिरण का फर्स्ट लुक जारी, कल सिनेमाघरों में होगी लॉन्च। आ जाएगा फिल्म वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर, मुंबई में ग्रैंड इवेंट में लॉन्च किया जाएगा ट्रेलर, अक्षय कुमार समेत मूवी की पूरी स्टार कास्ट रहेगी मौजूद। कल रिलीज होगी अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 का ट्रेलर जारी, पोस्टर जारी करके दी गई जानकारी, 10 जुलाई को आ रही है फिल्म। कल रिलीज होगी फिल्म मैं वापस आऊंगा, फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह और वेदांग रैना है। फिल्म भारत वाग्य विधाता 12 जून 2026 को सिनेमाघर में होगी रिलीज, दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फिल्म।

कल रिलीज होगी फिल्म मैं वापस आऊंगा। फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह और वेदांग रैना है। फिल्म भारत वाग विदाता 12 जून 2026 को सिनेमाघर में होगी रिलीज। दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फिल्म।

0: ममता बनर्जी की टीएमसी में भगदड़ सी मच गई है। एक के बाद एक सांसदों का इस्तीफा आ रहा है। लोकसभा सांसद में गुटबाजी, राज्यसभा के सांसदों की ओर से इस्तीफे दिए जा रहे हैं। आज भी एक सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। 8 मई से यह सिलसिला शुरू हुआ। पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा छोड़ी, टीएमसी छोड़ी, उसके बाद कल सुष्मिता देव ने टीएमसी और राज्यसभा को अलविदा कहा। आज प्रकाश चिक का नंबर है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अभिषेक पर निशाना साधा है। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है ममता बनर्जी को, कहा है या तो वफादारों को चुन ले या फिर अभिषेक बनर्जी को।
1: At a time when the Trinamool Congress is facing its biggest crisis, one of the person who has been seen as a crisis manager in the party is veteran Trinamool Congress MP and advocate Kollan Bondhopadhyay. He joins us now on India Today. Sir, a very important case came up for hearing before the Calcutta High Court on the CID notice to Abhishek Banerjee, your party's National General Secretary, but you did not appear on that case.
2: No, this case, what has happened, challenging the summons, we filed the criminal division on behalf of Abhishek Banerjee. The matter came up on Friday. Whole day I waited in court, 6 hours. Matter did not take enough. Did not. Then did I mentioned the matter. And the matter was directed to appear on Wednesday. In the meantime, you know, on Tuesday evening that the search had been taken place in the Kamak Street and the ex-chief minister's office. I went to the spot also, and I said to the CID officer, why you have brought these two civic witnesses who are the BJP supporters? Right? Now, tomorrow, yesterday morning, I mentioned the matter before Justice Kaushik Chandra. The matter is extremely urgent. The search has been conducted, not only my residence, also the CM's residence. And really very difficult situation we are. Justice Chandra has been pleased to direct that the matter would appear today. Then around 12:30 in the morning, some one lawyer came and said that there is a writ petition has been filed challenging the search. And Mr. Kishore Dutt will appear. I said, why did you not say to me? Because this search is now subject matter of there also. Why you are doing these things? At least from one place these matters should be done. Whom I would like, you do it. And I am not interested, I have to do it. And I will not appear in this matter then. Do not treat me as a dustbin. Tell me, inform me within 1 hour whether I have to do it or not. Nothing has been informed. In the night, I read the entire...
0: तो कल्याण बनर्जी को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर असंतोष पार्टी के साथ, और जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी का रवैया रहा है उसको लेकर काफी ज्यादा नाराजगी में दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है, या तो आप अपने भतीजे को चुन लीजिए ममता बनर्जी, या फिर मेरे जैसे वफादारों को, मुझे डस्टबिन की तरह मत इस्तेमाल करिए। ये तमाम बातें यहां पर कल्याण बनर्जी करते हुए। इंद्रजीत कुंडू मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। इंद्रजीत, अगला नंबर कल्याण बनर्जी का है या फिर वफादारी वो दिखाते रहेंगे?
1: देखिए, उन्होंने तो अल्टीमेटम दे दिया ममता बनर्जी को कि अगर उनको पार्टी रखना है फिर अभिषेक बनर्जी अपना भतीजे को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अभिषेक बनर्जी है और इस तरह का बर्ताव वो करते रहेंगे जहां पे वो अपमानित फील कर रहे हैं, तब वो पार्टी के साथ जुड़े नहीं रह सकते। वो कह रहे हैं कि अभी भी पार्टी के सबसे बुरे वक्त पे वो पार्टी के साथ है, लेकिन अगर इस तरह का बर्ताव उनको मिलता रहा तो वो पार्टी के साथ नहीं रह सकते। उन्होंने सीधा सीधा अल्टीमेटम ममता बनर्जी को दे दिया है। आज तक के साथ खास बातचीत में उन्होंने सीधा ये कह दिया है कि अब ममता बनर्जी को चूज करना पड़ेगा, क्या वो पार्टी रखना चाहती है या अपनी परिवार और भतीजे के साथ रहना चाहती है, नहीं तो तृणमूल कांग्रेस में जो फूट है, जो दरार है इस वक्त की सबसे

0: बड़ी जो सवाल इस वक्त है कि क्या तृणमूल कांग्रेस रहेगी, और अगर रहेगी तो ममता बनर्जी का जो लॉयलिस्ट जो करीबी है वो अभिषेक बनर्जी को नहीं मानना चाहते। कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस में जो ऑर्गेनाइजेशनल हेरफेर हुआ था उसमें फिर से अभिषेक बनर्जी को नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, और इस वक्त अभिषेक बनर्जी नई दिल्ली में है। कोलकाता हाईकोर्ट में कह दिया है कि 6 बजे तक उनको सीआईडी के सामने आना है। इसी केस पे अभिषेक बनर्जी के लिए लड़ रहे थे कल्याण बनर्जी, जो एक सीनियर एडवोकेट भी है, लेकिन उनको काफी ठेस पहुंचा है, चोट पहुंची है उनको, ये कहते हुए क्योंकि कल रात तक जब उस केस को प्रिपेयर कर रहे थे तब उनके पास 12 बजे के पास ये खबर आया कि उनको नहीं किसी और को ये केस लड़ना है, और वो इसलिए कह रहे हैं कि जब मैं पार्टी के बुरे वक्त पे मैं लड़ रहा हूं तो मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं है, मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, अभिषेक बनर्जी मुझे ट्रस्ट नहीं करते, उनका कोई भरोसा मेरे ऊपर नहीं है, तो मैं क्यों काम करूं। तो इसीलिए वो अभिषेक बनर्जी का ये केस छोड़ दिया है, और उन्होंने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है ममता बनर्जी को कि वो अभिषेक बनर्जी को हटाए, नहीं तो वो पार्टी में नहीं रह सकते।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: To kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
5: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
8: After multiple assassination attempts, they can't even get...
9: They're reliable.
10: Always when I need them.
7: To live sports action.
11: One-hand jam by LeBron on the break.
12: That's another three, Steph Curry.
7: And your favorite music.
13: Well, the dawn begins to crack.
7: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
14: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: इन एसोसिएशन विद
5: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
4: हिंट, बड़े आराम से
5: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: विमल बोलो जुबा केसरी।
5: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
6: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
7: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
8: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
5: To kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
6: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, yeah! And working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Nora Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
10: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
11: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
12: In association with
13: Samakool Cooler, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। Samakool Cooler, life बनाए wonderful।
14: Hint, बड़े आराम से।
15: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans।
16: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
17: Vimal, बोलो जुबां केसरी।
18: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
19: सीज फायर के बाद उम्मीद थी कि हालात संभलेंगे, लेकिन अमेरिका ने अपने हेलीकॉप्टर को टारगेट बनाए जाने के बाद ईरान पर फिर से हमला बोला है। सीज फायर के बाद जारी लड़ाई का आज दूसरा दिन है। अमेरिकी फौज ने ईरान के बंदर अब्बास, केशम, हिंगम, कंगन, गुरगान बंदरगाह, सिरी, मिनाब और असलूह एह पर भी भारी बमबारी की है। ईरान की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक केशम और हिंगम में मिसाइल ताके गए हैं। कंगन और गोरेगन बंदरगाह पर भी कई धमाके सुने गए हैं। IRNA की माने तो बंदर अब्बास में लगातार दूसरे दिन अमेरिका ने हमला किया है। आज वहां एयरपोर्ट और एयरबेस को निशाना बनाया गया है। धमाके मिनाब शहर में भी सुने गए हैं। यह वही शहर है जहां सीज फायर से पहले हुई लड़ाई में एक धमाके में 165 से ज्यादा स्कूली बच्चों की मौत हुई थी। बीती रात ट्रंप का बयान आया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फाइटर जेट लगातार ईरान के आसमान के ऊपर मौजूद हैं। बमबारी की पूरी तैयारी है।
2: But we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you
20: miss if in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid presidents, I have to say that.
21: ट्रंप के इस बयान के चंद घंटे बाद ही ईरान में धमाके पर धमाके होने लगे। आज तक पे हो।
22: क्या पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है पीओजेके? पीओजेके में उठी बगावत की आवाज, क्या बदल रहा है कश्मीर का समीकरण? पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर, जिसे पाकिस्तान दुनिया के सामने कश्मीर के मुद्दे के तौर पर पेश करता है, आज वही इलाका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन है, सरकार और सेना के खिलाफ नारे और लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या पीओजेके अब पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है? क्या वहाँ की जनता का गुस्सा सिर्फ महंगाई तक सीमित है या इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक असंतोष उभर रहा है? भारत का आधिकारिक रुख रहा है कि पीओजेके भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बकायदा पीओजेके के लिए सीटें आरक्षित है। बार बार संसद में भी पीओजेके के लिए हुंकार उठी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 हटाने के लिए आए प्रस्ताव पर बोलते हुए संसद में साफ किया था कि पीओजेके हमारा हिस्सा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई मौकों पर कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर भारत का रुख साफ है। उन्होंने पिछले साल मई में कहा था कि पूरा कश्मीर एक दिन भारत का होगा। भारत का आधिकारिक रुख रहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। वहीं पाकिस्तान पीओजेके पर अपना दावा करता है, लेकिन अब पीओजेके के अंदर से उठती आवाजें पाकिस्तान के लिए नई परेशानी बन गई है। रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि ये संदेश है कि जिस इलाके को वो अपने नियंत्रण में बताता है, वहीं लोग अब सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का इतिहास भी विवादों से भरा रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायतें पुरानी, राजनीतिक अधिकारों की कमी, आर्थिक असमानता और संसाधनों पर नियंत्रण। ऐसे वक्त में जुलाई में होने वाले चुनाव भी अहम हो जाते हैं, क्योंकि चुनावी मैदान में उतरने से पहले सड़क पर जनता का मूड सामने आ रहा है। पीओजेके में उठी आवाजें सिर्फ इस्लामाबाद तक नहीं पहुंच रही, ये सवाल अब पूरी दुनिया सुन रही है। क्या पाकिस्तान जिस कश्मीर की बात करता है, वहीं से उसके खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है? और क्या सच में वो दिन करीब है जब कश्मीर का समीकरण फिर बदलेगा? शिवानी शर्मा, दिल्ली आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

टीएमसी में टूट के बीच कल्याण बैनर्जी ने दिखाया बगावती तेवर। अभिषेक बैनर्जी को बताया घमंडी। ममता को अल्टीमेटम देकर कहा भतीजे को चुने या वफादार नेताओं को। टीएमसी में बगावत की सुनामी। राज्यसभा से एक और सांसद का इस्तीफा। लोकसभा में 20 बागी सांसदों का स्पीकर को खत। पार्टी पर जताया दावा। सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका। आज अर्जी पर सुनवाई से इनकार। कल तक करना होगा इंतजार। सिंघवी की दलील नाकाम। कांग्रेस की कल प्रदर्शन की तैयारी। भारत तक खाड़ी युद्ध के आगमन में एक और भारतीय जहाज अमेरिकी हमले की चपेट में। 3 दिन में तीसरा हमला। होर्मुज के करीब तेल टैंकर हमले में 3 हिंदुस्तानियों की मौत। ईरान अमेरिका के बीच युद्ध विराम की उड़ी धज्जियां। साउथ ईरान समेत कई इलाकों में स्ट्राइक। मिडल ईस्ट के यूएस बेसिस पर आईजीसी का हमला।

नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। जंग पार्ट टू शुरू हो चुकी है। अमेरिका ईरान के बीच फिर से युद्ध तेज हो गया और आज दूसरे दिन भी वार पलटवार का सिलसिला जारी है। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान पर बमबारी की तो ईरान ने खाड़ी देशों के अमेरिकी बेस को धुआं धुआं कर दिया। ईरान ने अमेरिका लड़ाकू विमान को तबाह करने का दावा किया। ईरान का दावा है कि जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमले में अमेरिका के F-35, F-15, F-16 फाइटर जेट के ठिकाने नष्ट किए गए हैं। ईरान ने अल अज़राक एयरबेस और कंट्रोल सेंटर पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। ईरान ने इसे कराज, नजराबाद और पिशवा के पास यूएस के हमलों का जवाब बताया। ईरान का यूएस फाइटर जेट्स को जवाब, F-35, F-15, F-16 जेट्स के ठिकानों को नष्ट करने का दावा ईरान की ओर से किया जा रहा है। उनका कहना है कि हमने ये पलटवार में कार्रवाई की है। अल अज़राक एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। तो ये तीन तस्वीरें जिसमें ईरान का मिसाइल ड्रोन अटैक 18 अमेरिकी बेस पर किया गया है, इन्हीं को टारगेट बनाया गया है। वहीं अमेरिका की भी भारी बमबारी जारी है। दक्षिणी ईरान में तबाही मचाने की पूरी तैयारी अमेरिका कर रहा है। वहीं होर्मुज़ बंद करने का ईरान ने दावा किया है। उनका कहना है कि कोई भी जहाज यहां से गुजरने नहीं देंगे, अगर ऐसा हुआ तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। वहीं हेलीकॉप्टर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर बदले की कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन अब ईरान ने भी मोर्चा खोल दिया है। मिडल ईस्ट का पूरा इलाका बारूद के ढेर में तब्दील हो गया है। ईरान ने उन देशों को निशाना बनाना शुरू किया जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। मिसाइल, ड्रोन, जवाबी हमलों से खाड़ी का आसमान गूंज गया है।

अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने भी मोर्चा खोल दिया है। ईरान ने मिडल ईस्ट के उन तमाम देशों पर मिसाइल ड्रोन की बारिश की जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। ईरान का पलटवार सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहा। जॉर्डन, बहरीन, कुवैत एक के बाद एक कई जगहों पर हमलों की खबरें सामने आई। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रह गई है, इसकी आंच पूरे मिडल ईस्ट में फैलती जा रही है। ईरान का दावा है कि उसने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को तबाह कर दिया। इस हमले में अमेरिका के F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट के ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। ईरान के मुताबिक अल अजराक एयरबेस और कंट्रोल सेंटर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। ईरान ने इसे करज, नजराबाद, पिशवा के पास हुए अमेरिकी हमलों का जवाब बताया। F-35, F-15 और F-16 ये अमेरिका के सबसे अहम लड़ाकू विमान माने जाते हैं। अगर ईरान का दावा सही साबित हुआ तो यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके बाद ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने का दावा किया। ईरानी सेना के मुताबिक ड्रोन हमलों के जरिए बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट को टारगेट किया गया। ईरान का दावा है कि हमले में पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और बड़े रडार सिस्टम्स को टारगेट किया गया है। तेहरान ने इसे दक्षिणी ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों का जवाब बताया है।

0: बहरीन में हमले के बाद कई जगहों पर धमाकों की आवाज भी सुनाई देने की खबर आई। बहरीन सरकार ने अलर्ट जारी किया, लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया और कई इलाकों में सायरन बजते रहे। इसके बाद कुवैत में भी बड़ी खबरें सामने आई हैं। ईरान की तरफ से कुवैत पर हमले की बात सामने आई। हमले के बाद कुवैत में कई जगह धमाकों की आवाज सुनाई दी गई। कुवैत में अलर्ट जारी कर दिया गया। कुवैती सेना के मुताबिक उसका एयर डिफेंस सिस्टम लगातार हवाई खतरों को इंटरसेप्ट कर रहा है।
1: दोनों तरफ से एक दूसरे पर बमबारी की जा रही है, स्ट्राइक्स की जा रही हैं, अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और दोनों ही पक्ष ये कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम नुकसान कहां और कैसे पहुंचाया जा सकता है। यदि खास तौर पर यदि आप देखें कि ईरान की कोशिश है कि अमेरिका के जितने भी सैन्य ठिकाने इलाके के अंदर है और जॉर्डन के गया जो टारगेटिंग है वो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। इसलिए अहमियत रखता है कि अगर आप देखें तो पिछला जो कॉन्फ्लिक्ट था 40 दिनों तक जो लड़ाई चली उसके अंदर भी एक ही बार जॉर्डन को निशाना बनाया गया था, लेकिन बीते 36 घंटों के अंदर दो बार जो है वो जॉर्डन के इस जो मुवाफक सॉल्टी एयरबेस और साथ ही अरब जो बेस है उसको निशाना बनाया गया।
0: यानी अब जंग का नया मोर्चा खुल गया है। ईरान सीधे उन जगहों पर दबाव बना रहा है जहां अमेरिका की मौजूदगी है और अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा। सबसे बड़ा खतरा अब हॉर्मूज को लेकर है, क्योंकि अगर ये टकराव और बड़ा तो सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं दुनिया की ऊर्जा सप्लाई भी इसकी चपेट में आ सकती है। तेल के जहाज, गैस की सप्लाई और ग्लोबल बाजार सबकी नजरें अब खाड़ी के इस युद्ध पर है। कहां तो शांति की बातें होने लगी थी, डील पर मोहर लगने की बातें कहीं जाने लगी थी और कहां अब जंग के बादल फिर से छाने लगे हैं। बम का धमाका, बारूद का ब्लास्ट, आग और धुआं। सवाल ये है कि क्या फिर ये डील की बात होगी, फिर से समझौते की फाइल खुलेगी या फिर से टॉक टेबल सजेगा।

0: सुमित चौधरी, प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
1: अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, इतने भीषण हमले के बीच इस बात की आशंका कम ही लग रही है कि अब समझौते की फाइल खुलेगी?
2: न्याय, समझौता तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है, जहां एक तरफ ईरान के लिए, वहीं दूसरी तरफ उससे ज्यादा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव होने वाले हैं नवंबर के महीने में, और उनकी पॉपुलरिटी जिस अंदाज से इस युद्ध को लेकर अमेरिका में कम हो रही है, उसके चलते उन्हें कोई ना कोई डील जो है ईरान के साथ करनी पड़ेगी। क्योंकि जब वो राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने आश्वासन दिया था अमेरिका की जनता को कि वो अमेरिका को किसी भी युद्ध में लिप्त नहीं करेंगे, लेकिन उनको अनुमान था कि 6 हफ्ते में ये युद्ध खत्म होगा। अब 12 महीने 14 महीने से भी ज्यादा दिन हो गए हैं, तो उस बीच अब जो है कहीं ना कहीं ये जो इस वक्त हमले हो रहे हैं ईरान पर और उसका पलटवार ईरान कर रहा है, ये दरअसल एक दूसरे की ताकत को परखने की कोशिश है और साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से खासतौर से ईरान पर दबाव डालने की कोशिश, क्योंकि बातचीत के लिए हर पैंतरा जो है अमेरिका ने ईरान को झुकाने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन ईरान है कि जो झुकता नहीं है। तो इस बीच लग रहा है कि अभी भी जो है ईरान के झुकने के कम संकेत हैं, तो उस बीच लग रहा है कि शायद आज रात में जब दिन शुरू होगा अमेरिका में, कोई नया बयान जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामने आ सकता है जो परिस्थितियों को बदल देगा।
1: ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर इस जंग को लेकर आपको बता दें, अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया। करज में यह हमला हुआ है, धमाकों की आवाजें वहां सुनी गई है, कई धमाके एक साथ हुए हैं जो वीडियो में कैप्चर हुए हैं, धमाकों की आवाज भी इन वीडियो में साफ तौर पर सुनी जा सकती है।

0: तो एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर के गिरने से शुरू हुआ तनाव अब सीधे जंग की आग में तब्दील हो चुका है। पहले धमकी, फिर बदले की हुंकार और उसके बाद ईरान पर अमेरिकी हमलों की ऐसी बारिश हुई कि खाड़ी का पूरा इलाका थर्रा उठा।
1: कल हॉर्मुज के आसपास हमलों की बौछार हुई और आज अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के कई इलाकों को निशाने पर ले लिया। मैप से समझिए कि आखिर अमेरिका ने ईरान के किन किन हिस्सों को टारगेट किया है और क्यों ये हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं माने जा रहे हैं। ईरान के दक्षिणी हिस्से में खाड़ी के किनारे बसे ये इलाके इस वक्त दुनिया की नजर में है। कल अमेरिकी हमलों में ईरान के कई रणनीतिक ठिकाने निशाने पर आए। इनमें शामिल रहे बंदर अब्बास, ईरान का सबसे अहम नौसैनिक और रणनीतिक इलाका, केशम और हेंगम द्वीप जो हॉर्मुज के बेहद करीब है, कंगन और असुगे जहां ऊर्जा से जुड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इसके अलावा गोरगान बंदरगाह, सिरिक और मिनाब भी हमले की जद में आए। यानी अमेरिका ने सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि ईरान के उस पूरे समुद्री कॉरिडोर को निशाना बनाया जो हॉर्मुज की सुरक्षा और तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम है। और आज अमेरिका ने हमला और आगे बढ़ा दिया। दक्षिणी ईरान के बाद अब राजधानी तेहरान के नजदीकी इलाके करज में भी धमाके की खबर आई। हमले के बाद करज के कई इलाकों में धमाके की आवाज सुनी गई। यानी संदेश साफ है, अमेरिका अब सिर्फ सीमा वाले इलाकों तक सीमित नहीं रहना चाहता। कल ही राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका अपने लोगों और अपने हितों की सुरक्षा के लिए जवाब देगा।
2: That bomb was lodged in the helicopter. It didn't explode. It was on fire, but it didn't explode. Those two guys, they knew how to fly, but they got very lucky. And then we had the unmanned boat going very, very fast at speeds that you wouldn't want to go.
1: इसके बाद अमेरिकी युद्ध मंत्री ने भी कड़ा बयान देते हुए कहा कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
3: CENTCOM, Central Command, will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be. Because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it. So, as President Trump said, they've been tap, tap, tapping. You can see when someone's trying to tap, tap, tap on a deal. Instead, they're going to have tap, tap, tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America. And that's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: ईरान और अमेरिका के बीच ये टकराव सिर्फ बयानबाजी की लड़ाई नहीं है। दोनों तरफ से बम बारूद चल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका का दावा है कि वो ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है कि जवाबी कार्रवाई होगी।
4: अमेरिका के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स पर गिराए जाने के बाद से ही लगातार परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल गई। अब डील और नेगोशिएशंस पीछे छूट गई हैं और अब ये कोशिश की जा रही है कि जवाब अब डील और नेगोशिएशंस के हिसाब से नहीं बल्कि अब बम और बारूद से दिया जाए।
1: सबसे बड़ा सवाल अब हॉर्मुज को लेकर है, क्योंकि यही वो समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ा, अगर जहाजों की आवाजाही रुकी, तो असर सिर्फ ईरान और अमेरिका पर नहीं पड़ेगा, इसकी लहर पूरी दुनिया के बाजारों तक जाएगी। तेल और महंगा होगा, सप्लाई पर दबाव बढ़ेगा और महंगाई का नया संकट खड़ा हो सकता है। सुमित चौधरी और प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक देरो।
0: इस बीच मिडल ईस्ट में 5 अमेरिकी बेसिस पर ईरान ने हमला किया है। बड़ी खबर आ रही है, मिडल ईस्ट के 5 मिलिट्री बेसिस पर ईरान का यह हमला हुआ है। अशरफ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, जाहिर तौर पर महंगाई का एक बहुत बड़ा झटका पूरे विश्व को लग सकता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि इस महंगाई से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और अब से कुछ देर पहले आप ही कह रहे थे कि चुनाव अमेरिका में होने वाले हैं, ऐसे में उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है और इस तरह के बयानों से तो और भी ज्यादा होगी।
5: बिल्कुल निहाल, लेकिन अब दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अपना व्यवहार कुछ ऐसा स्थापित किया है जहां पर वो कब क्या बात बोलेंगे, अब कई लोगों को इससे फर्क भी नहीं पड़ता है। और शायद ईरान में भी इनमें से एक देश है जो उनकी बातों को, उनकी धमकियों को गंभीरता से नहीं लेता है। जाहिर है कि मैंने जैसे आपको कहा अभी थोड़ी देर पहले कि आज शाम को कुछ और बयान आ जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो परिस्थितियां बदलता है, लेकिन ईरान की तरफ से अब ये माना जा रहा है कि जो स्टॉक मार्केट्स है उनको जो है मैनिपुलेट करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह के बयान, कभी कभी नरमी, कभी गर्मी, कभी धमकी, कभी सलाह की बात, ये सामने आती है। लेकिन हकीकत ये है कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है 28 फरवरी से, पूरी दुनिया में स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद हो जाने से तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं, और साथ ही साथ जो है संकट है कमी का, न सिर्फ एनर्जी का बल्कि साथ ही साथ जो दूसरी चीजें, खासतौर से यूरिया की अगर बात करें, तो अभी तो फिलहाल जो है एक दूसरे की ताकत को परखने की कोशिश की जा रही है, जहां पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। जो भी ईरान ने साफ किया है कि अगर उन पर हमला होता है वो उसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे, उन्होंने उसका दायरा बढ़ाया, अब उन्होंने जो है जॉर्डन को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है, और इस बीच जो है कहीं ना कहीं दबाव दोनों तरफ है। लेकिन एक बात तो साफ है कि ईरान जो है कुछ महीनों या कुछ दिनों तक झेल सकता है इस तरह के हमले या इस तरह की परिस्थिति, क्योंकि वो पहले ही बहुत बुरी तरह से अमेरिका और इजराइल के हमलों से बहुत कमजोर हो चुका है, सैन्य तौर पर नहीं लेकिन आर्थिक तौर पर। लेकिन अमेरिका के लिए इस युद्ध से निकलना मजबूरी है अमेरिकी राष्ट्रपति।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हॉर्मुज जहां जहाजों की आवाजाही एक तरह से बंद हो चुकी है, ताजा अमेरिकी हमलों के बाद से ईरान ने ऐलान भी कर दिया है किसी भी जहाज को गुजरने नहीं देंगे, तो अमेरिका भी उसे चेतावनी दे रहा है। ऐसे में तेल संकट और गहराने की आशंका बढ़ गई है। तो हॉर्मुज बंद होने से तेल का संकट लगातार गहराता जा रहा है, हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि उन्हें बढ़ती महंगाई से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो अभी भी जो पहले जहां जिन कंट्रीज में तेल का निर्यात होता था वहां पर कर रहे हैं बढ़े हुए दामों के साथ। तो कहां तो बातचीत की टेबल सज रही थी, कहां युद्ध विराम की उम्मीद जग रही थी, और कहां अब हॉर्मुज खोलने की बात हो रही थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन हॉर्मुज समुद्री रूट एक बार फिर से युद्ध के साए में उसे बंद कर दिया गया है।

वही हॉर्मुज जहां से दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है, जहां एक दिन की रुकावट भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। उस रूट पर फिर से ताला लग गया, फिर से दुनिया के ऊर्जा की सांस थम गई, फिर से यहां के समंदर में उबाल आ गया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीदों के बीच अचानक फिर से टकराव बढ़ गया। हमलों और जवाबी हमलों के बीच ईरान ने फिर चेतावनी दी है कि हॉर्मुज के रास्ते जहाजों की आवाजाही खतरे से खाली नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के नक्शे पर सिर्फ एक सकरा समुद्री रास्ता नहीं है, ये वो रास्ता है जहां से खाड़ी देशों का तेल दुनिया तक पहुंचता है। ईरान एक तरफ, ओमान दूसरी तरफ और बीच में करीब 40 किलोमीटर चौड़ा यह समुद्री रास्ता, लेकिन इसकी अहमियत इसकी चौड़ाई से कहीं ज्यादा है, क्योंकि रोजाना लाखों बैरल कच्चा तेल और भारी मात्रा में LNG इसी रास्ते से गुजरती है।

0: पिछले टकराव के दौरान भी यही हुआ था। जहाजों की आवाजाही बेहद सीमित हो गई थी, कई तेल टैंकर रुक गए थे, बीमा कंपनियों ने जोखिम बढ़ा दिया था। नतीजा, दुनिया भर में तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ा। हॉर्मुज बंद होने का मतलब सिर्फ खाड़ी क्षेत्र की समस्या नहीं है, इसका असर एशिया से लेकर यूरोप तक पहुंचता है, क्योंकि भारत, चीन और जापान जैसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों की सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ सकता है। अमेरिका की तरफ से लगातार कहा गया है कि वो समुद्री रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अमेरिकी सेना ने पहले भी दावा किया था कि उसके ऑपरेशन की वजह से कई वाणिज्यिक जहाज सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज से गुजर पाए, लेकिन ईरान का रुख बिल्कुल अलग है। तेहरान साफ संकेत दे रहा है कि अगर सैन्य दबाव जारी रहा तो हॉर्मुज को दबाव बनाने के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की नहीं है, असली लड़ाई उस रास्ते की है जिससे दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था चलती है। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ ईरान की चेतावनी, और बीच में फंसा है दुनिया का तेल बाजार। और अगर ये संकट लंबा चला तो असर सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी गर्मी दुनिया के हर उस देश तक पहुंचेगी जहां पेट्रोल, गैस और महंगाई की चिंता है। सुमित चौधरी और प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
1: इस खास पेशकश मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
5: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
6: Ugh, I have had no luck lately. Wait, lady luck?
7: Britsky, I got you. I've had so much luck on SpinQuest.com. They have all of my favorite games, slot games, live blackjack, craps, and bubble craps. You can even get a $30 coin pack for just $10.
6: $10 for 30? I'm headed over to SpinQuest.com right now.
8: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
9: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
11: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts,

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health.
1: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at CMEFCU.org.
2: Terms apply. Minimum floor rates, 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
3: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
4: Jack, come home. It's supper time.
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
5: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
3: Jack FM, playing what we want.
0: Such.
6: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
8: 10 जून ये इतिहास के पन्नों में दर्ज एक नए कीर्तिमान की तारीख है लगातार सबसे लंबे समय तक जनता के वोट के दम पर मिली जीत से प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड अब नरेंद्र मोदी के नाम है इस मौके पर पीएम मोदी को सम्मानित किया गया मौका था एनडीए के शक्ति प्रदर्शन का भारत मंडपम में हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की सराहना करते हुए एक अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला
9: कांग्रेस ने देश को लाचारगी बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था
8: प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक विकास की रफ्तार धीमी रही जबकि एनडीए ने नई सोच और फैसलों के जरिए तेज विकास को संभव बनाया
9: सवाल ये है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है
8: एनडीए की बैठक में सरकार के 12 साल का जश्न मनाया गया और शुभेंदु अधिकारी ने खुद अपने हाथों से पीएम मोदी को झालमुरी खिलाई मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और अभी उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है उन्होंने लगातार 4,399 दिन पूरे कर निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू का 4,398 दिनों का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है ब्यूरो रिपोर्ट आज तक

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

0: बताया घमंडी, ममता को अल्टीमेटम देकर कहा भतीजे को चुने या वफादार नेताओं को। तृणमूल कांग्रेस में बगावत की सुनामी, राज्यसभा से एक और सांसद का इस्तीफा, लोकसभा में 20 बागी सांसदों का स्पीकर को खत, पार्टी पर जताया दावा। सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका, आज अर्जी पर सुनवाई से इनकार, कल तक करना होगा इंतजार, सिंघवी की दलील नाकाम, कांग्रेस की कल प्रदर्शन की तैयारी। भारत तक खड़ी युद्ध की आग, ओमान में एक और भारतीय जहाज अमेरिकी हमले की चपेट में, 3 दिन में तीसरा हमला, हॉर्मुज में करीब तेल टैंकर हमले में 3 हिंदुस्तानियों की मौत। ईरान अमेरिका के बीच युद्ध विराम की उड़ी धज्जियां, ईरान साउथ ईरान समेत कई इलाकों में एयर स्ट्राइक, मिडिल ईस्ट के यूएस बेसों पर IRGC का हमला, फाइटर जेट्स तबाह करने का दावा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित, और जैसा आपको पता है कि दोपहर 2 बजते हैं तो न्यूज रूम लाइव से हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तो न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं आज वो कौन सी खबरें हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल की, तृणमूल कांग्रेस की, वहां जो बगावत है, तकरार है, वो कितना लंबा जाएगी और ममता बनर्जी कैसे उससे पार पाएंगी, इस बारे में हम आपको बात करेंगे। और दूसरी जो बड़ी खबर होगी वो हम आपको बता देते हैं कि एनडीए की तैयारी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अखिलेश यादव भी तैयार हैं और अब तो कांग्रेस की तरफ से भी बयान आ गया है, तो 2027 के लिए क्या एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा, ये दूसरी खबर में बात करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश आपको लिए जाएंगे, मीनाक्षी नटराजन, चोर का झटका जोर से लगा है, सुप्रीम कोर्ट गए थे वहां पर, अभी राहत तो नहीं मिली, आज सुनवाई से इनकार कर दिया, A to Z डिटेल आपको बताएंगे। और ठीक 2:30 बजे हम आपको बताने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में जो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं उसका असर बाकी देशों पर क्या पड़ेगा, भारत पर क्या पड़ेगा, ये सारी खबरें अब से कुछ देर बाद हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है क्योंकि एक के बाद एक बहुत से नेता हैं ममता बनर्जी से पाला तोड़ते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, और ऐसे में परेशानी TMC की बढ़ती जा रही है। TMC में अभिषेक के खिलाफ कल्याण की बगावत, कल्याण बनर्जी की बात यहां पर की जा रही है और उनकी बगावत देखने को मिली है। TMC में अभिषेक के खिलाफ कल्याण बनर्जी की बगावत और उनका बहुत स्पष्ट कहना है कि आप देख लीजिए कि कौन आपका खास है, कौन आपका विरोधी है। ममता को अल्टीमेटम देकर कह रहे हैं कि भतीजे को चुने या वफादार नेताओं को। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं, अभिषेक को घमंडी बताया जा रहा है कल्याण बनर्जी की तरफ से, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रुक करते हैं हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत बताइए, जो बगावत थी वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है ममता बनर्जी से कि ये देखिए अभिषेक घमंडी हो गए हैं, किसको चुनना चाहती हैं आप सुन लीजिए।
2: बिल्कुल, सीधा सीधा अल्टीमेटम कल्याण बैनर्जी ने दे दिया है। यह आपको याद रखना पड़ेगा, कल्याण बैनर्जी को कुछ दिन पहले ही लोकसभा में चीफ व्हिप बनाया गया था, ममता बनर्जी ने बनाया है, और वही कारण है कि पार्टी में बगावत होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि काकुली घोष दस्तेदार को हटा के कल्याण बैनर्जी को चीफ व्हिप बनाया गया, इसीलिए काकुली घोष दस्तेदार बागी हो गई और उन्होंने रेबल कैंप में वहां पे अब वो चली गई है और वहां पे 20 सांसद इस वक्त है। लेकिन अब कल्याण बैनर्जी जो ममता बनर्जी के साथ है वो ये कह रही है कि अब ममता बनर्जी को ये चुनना पड़ेगा क्या वो अपना पार्टी बचाना चाहती है या अपना परिवार। अभिषेक बनर्जी को वो रखना चाहती है क्योंकि अभिषेक बनर्जी जिस रुख जिस रवैये के साथ पार्टी चला रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे वो अपमानित फील करते हैं, क्योंकि आज हाईकोर्ट में जो केस हुआ था CID का केस, वो अभिषेक बनर्जी के लिए कल्याण बनर्जी खुद लड़ रहे थे, लेकिन अब उनको ये कहा गया है कि वो इस केस में ना लड़े और कोई दूसरा लॉयर को रखा गया है, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा अपमानित फील करते हैं। अभिषेक बनर्जी एरोगेंट है और उसके साथ साथ अभिषेक बनर्जी उनको ट्रस्ट नहीं करते, और जिसे ट्रस्ट नहीं करते उसके साथ काम करना बिल्कुल नामुमकिन है। ये अल्टीमेटम ममता बनर्जी को कल्याण बनर्जी ने दे दिया है ये कहते हुए कि या वो अपना पार्टी बचाए या तो अपना परिवार रखे और भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ रहे।
0: अच्छा इंद्रजीत, एक बात बताइए, देखिए आप पश्चिम बंगाल की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, जब से ये बगावत का दौर शुरू हुआ है तब से आप हर खबर पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जब कल्याण बनर्जी ऐसा कह रहे हैं तो कल्याण बनर्जी अब आगे क्या कदम उठा सकते हैं, क्या उनके मन में चल रहा होगा, क्या आप भाप पाए?
2: फ्रीम ओड़खू, देखिए इस वक्त कल्याण बनर्जी साफ उनका जो रुख है वो साफ कर दिया है, वो कह रहे हैं अभी के लिए इस वक्त मैं तृणमूल कांग्रेस में हूं, मैं ममता बनर्जी के साथ हूं और पार्टी के बुरे वक्त में मैं ममता बनर्जी को अपना समर्थन दे रहा हूं, लेकिन अगर पार्टी इस रवैये से चलता रहा और अभिषेक बनर्जी सब लोगों को अपना नौकर समझते रहे, नौकरशाही अगर चलेगी तृणमूल कांग्रेस में तो उनके लिए पार्टी में कंटिन्यू करना मुश्किल है, वो नहीं कर सकते, और यही कारण है कि उन्होंने ये अल्टीमेटम, ये चेतावनी ममता बनर्जी पार्टी सुप्रीमो को दे दिया है,
0: दे दी है, और आगे बहुत कुछ अभी होगा, शुरुआत ये कही जा सकती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन ये बात सही है, सत्य है कि टीएमसी में जो बगावत है वो रुक नहीं रही है और एक एक कर सब ममता दीदी को टाटा बाय बाय कह रहे हैं। अब आप लोकसभा की बात कर लीजिए, 28 में से बताया जा रहा है कि 20 सांसद अलग हो चुके हैं, अब राज्यसभा की बात करें तो अभी तक तो 3 की बात है और एक आध दो और बढ़ सकते हैं, हालात टीएमसी के लिए बहुत बिगड़ते जा रहे हैं।
3: आमी खुशी एकटा कारणे
4: क्या ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकल चुकी है? क्या टीएमसी में सिर्फ ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ही बचेंगे? क्या बंगाल चुनाव हारने के बाद टीएमसी का भी वही होगा जो महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना का हुआ है? पश्चिम बंगाल की सियासत की मुख्य विपक्षी पार्टी टीएमसी में भूचाल मचा है, हर गुजरते दिन के साथ सांसद विधायक पाला बदल रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं, जो कभी आज्ञाकारी भरोसेमंद थे अब वो बगावत पर उतर आए हैं। सयानी घोष, प्रतिमा मंडल, माला रॉय, मिताली बाग, टीएमसी के बागियों में ये नाम भी जोड़ लीजिए, इन सांसदों ने टीएमसी के बागी गुट से हाथ मिला लिया है। ममता बनर्जी की टीएमसी में इस समय भगदड़ मची है, सांसदों में भगदड़, विधायकों में अफरा तफरी, कोलकाता से दिल्ली तक भागम भाग मची है। बुधवार को जब बीजेपी एनडीए के नेता मोदी के 12 साल का जश्न मना रहे थे तो उसी दौरान ममता बनर्जी के 4 सांसद बीजेपी नेताओं से मिल रहे थे। जादवपुर की सांसद सयानी घोष, जयनगर की प्रतिमा मंडल, कोलकाता दक्षिण की माला रॉय और आरामबाग की सांसद मिताली बाग बागी खेमे में शामिल हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर बैठक हुई जिसमें बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। करीब 1 घंटे तक चारों सांसदों और बीजेपी नेताओं की बैठक चलती रही। बागी गुट का दावा है कि 19 से 20 सांसद उनके संपर्क में हैं। टीएमसी के बागी लोकसभा में अलग गुट बनाना चाहते हैं। अभी लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। अगर ये बागी कामयाब हुए तो लोकसभा में टीएमसी नेता का पद भी उन्हें मिल जाएगा। बागियों में शत्रुघ्न सिन्हा और देव अधिकारी को लेकर भी चर्चाएं थी, लेकिन टीएमसी सूत्र कह रहे हैं कि ये दोनों दीदी के साथ हैं। लोकसभा में टीएमसी सांसद अलग गुट बनाने की कोशिश में है तो वहीं राज्यसभा से भी टीएमसी को झटके पर झटका लग रहा है। पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दिया और अब सुष्मिता देव ने भी पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी है। सुष्मिता देव के पाला बदलने के पीछे असम के सीएम हिमंता बिस्वा की भूमिका अहम मानी जा रही है।
5: मैं इतनी बड़ी लीडर नहीं हूं कि मैं ममता दीदी पे कमेंट करूं, ठीक है? आज मैंने उनको छोड़ा है, कल मैं किसी और पार्टी में जा भी सकती हूं, पर मेरे से तो बहुत ज्यादा तजुर्बा उनको अनुभव।
6: और अभिषेक बनर्जी का कैसा लीडरशिप आपको लगता है?
5: कि अभिषेक बनर्जी पे कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। मैं आपको ये जरूर कह रही हूं कि ये मेरा राजनीतिक और व्यक्तिगत निर्णय है और मैं मानती हूं कि अगर डेवलपमेंट की राजनीति मुझे आसाम में करनी है तो रास्ता यही है।
4: जो ममता बनर्जी मां माटी मानुष की राजनीति करने का दम भरती थी, उनकी पार्टी एक करारी हार में बिखरती जा रही है। पार्टी से बगावत करने वाले सांसद अपने ही नेता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। टीएमसी में आए इस तूफान को शांत करने की कोशिश ममता बनर्जी कर जरूर रही है, लेकिन सफलता कितनी मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के कद्दावर नेता, वो बगावती हो चले हैं, साथ ही अभिषेक बनर्जी को घमंडी बता रहे हैं और ममता बनर्जी को अल्टीमेटम दे रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू ने, वो आपको सुनवाते हैं।
7: He's such an arrogant person. And all the time this is insulting. This is not possible for me to appear in this matter. I said I will not appear.
8: So this is also mistrust. You are not just an advocate, you are also a senior member within the party.
7: This is humiliating.
9: Does he not trust you?
7: No. He never trusted me.
9: Never
7: trusted me.
9: But you are
7: right from 2022, you know what 2022, what I said about him. You know that.
8: Kolanda, you are on the front line.
7: Under compulsion, he was working. I was working with him. But he never trusted me. And he will never trust me.
9: But you are fighting.
7: I am fighting for Mamata Banerjee. I am not fighting for anybody. I am fighting for Mamata Banerjee and fighting for the people of the state of West Bengal and the party cadre.
9: No, but who
7: is he? Such an arrogant person.
9: One must
7: understand that for Abhishek Banerjee, the party has been destroyed today. We have lost it.
8: Everybody is saying this.
7: Everybody is saying, I have not said. I am in the back days of the party. I was with the Mamata Di. I said, again I am saying, I am with Mamata Di. But Mamata Di has to choose whether Abhishek Banerjee, she will keep or she will keep me.
8: That's an ultimatum.
7: Yes. I leave it to her. Her wisdom. I leave it to her wisdom.
8: So this is a dharam sankat for Didi.
7: Yes, I leave it to her wisdom. Whatever she will do, that's all right. If she says, no, without Abhishek Banerjee, party cannot run, I have to take my other decision.
8: Because she has chosen Abhishek Banerjee right now. He is still the national.
7: That's all right. That today I am saying this.
0: हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज, उन्होंने बात की कीर्ति आजाद से, जो इन सभी बागियों को भगोड़ा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जब तक पार्टी में थे तब तक तो सब बढ़िया था, बिंदास था, लेकिन अब इनको भ्रष्टाचार याद आ रहा है।
10: अब एक लिस्ट आई है, 19 लोगों का नाम है और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नाम भी उसमें शामिल है।
11: आरोप तो नहीं लगाए? आरोप कैसे, कौन से आरोप?
10: रिबेल,
11: आप ये तो रिबेल कहां से हो गए? भगोड़े हैं। रिबेल कहां से हो गए? ये तो भगोड़े हैं। रिबेल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए। ये तो हमारे सिंबल पे लड़े थे, तो रिबेल कहां से हो गए? ये तो भगोड़े हैं। हमारे सिंबल पे लड़े तो ये आरोप ना आरोप लगाए हैं, जो सच्चाई है उसको रखा है। आरोप क्या होते हैं? आरोप तो होते हैं जिनको सिद्ध करना होता है। इसमें क्या सिद्ध करना? क्या सिद्ध करना? जिस सिंबल पर तुम लड़े, तुम रहे, चुनाव के 30 दिन नहीं हुए और तुम्हें भ्रष्टाचार देखने लग गया। अगर भ्रष्टाचार तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रहा था तो तुमने रोका, और भ्रष्टाचार वाली बात थी तो काकुली दस्तीदार जो बात कर रही है भ्रष्टाचार की, वो तो 5 लाख रुपए खुद कैमरा पे लेती ही पकड़ी गई। और भ्रष्टाचार छोड़कर, तथाकथित भ्रष्टाचार को छोड़कर, तुम साफ बीजेपी में जा रहे हो, क्लीन बीजेपी, जिस बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी तुम्हारा चीफ बना हुआ है। उधार का सिंदूर जो अमित शाह ने बीजेपी के मांग में भरा है, वो भी तो 5 लाख रुपए लेता पकड़ा गया। आपके आज तक में दिखाया था भाई, सुबह से शाम तक दिखा रहे थे, सीबीआई लगा दी।
0: देखिए, बयानबाजी कुछ भी हो, लेकिन यह भी सच्चाई है कि इस्तीफे की झड़ी इस वक्त लग गई। और यह भी बड़ी खबर आपको बता दें कि एक और राज्यसभा सांसद का इस्तीफा हो गया है, और यह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका है। सबसे पहले आप देखिए सुखेंदु शेखर रॉय, उसके बाद सुष्मिता देव, और अब तीसरे प्रकाश चिकबराई इस्तीफा दे चुके हैं। राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबराई का इस्तीफा हो चुका है। आज प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद टीएमसी के राज्यसभा में अब सिर्फ 10 सांसद रह जाएंगे, और ये 10 सांसद भी कब तक रहेंगे ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि हर दिन एक विकेट गिरता जा रहा है। टीएमसी को टाटा बाय बाय, ममता बनर्जी से दूरी बनाते हुए राज्यसभा सांसद नजर आ रहे हैं। 28 लोकसभा में थे, वहां 20 का दावा किया जा रहा है जो बागी हो चुके हैं, और अब 13 राज्यसभा सांसदों में से 3 राज्यसभा सांसद ममता बनर्जी को अलविदा कह चुके हैं। अब ये तस्वीरें आप देखिए, सुखेंदु शेखर रॉय 8 जून को इस्तीफा देते हैं, उसके बाद नंबर आता है सुष्मिता देव का, कल ही इस्तीफा दिया, फिर हिमंता बिस्व शर्मा से मुलाकात करने जाती हैं, और फिर आज प्रकाश चिकबराई, वो आज इस्तीफा देते हैं। हो सकता है कि आज ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं, ये भी हो सकता है कि कल जब आप देखें तो आप 4 या 5 तस्वीरें देखें, कुछ चेहरे और जुड़ जाएं, कुछ तस्वीरें और जुड़ जाएं, कुछ नाम और शामिल हो जाएं। और प्रकाश चिकबराई जिन्होंने आज टीएमसी को अलविदा कह दिया, उनकी तरफ से क्या कहा गया, इसके पीछे की वजह क्या बताई गई, वो सुनिए जरा।
12: इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं प्रकाश बरेक। आपको बता दें कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के एमपी के तौर पर जो इस्तीफा दे दिया है। प्रकाश जी, आज आपके जीवन में बहुत बड़ा दिन है, आपने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दिया, काफी लंबे समय से आप टीएमसी के साथ थे, क्या कारण रहा, क्या मन में क्या बात आई कि आपने इस्तीफा दिया?
13: देखिए, असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया, ये हम लोग के पक्ष में नहीं आया। साथ ही इस मैंडेट को देखते हुए मैं भी अपना पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि मेरा भी कंस्टिट्यूएंसी में उस तरह रिजल्ट नहीं हुआ। अभी गणतांत्रिक देश का गणतंत्रता जिसको चाहती है वो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है।
12: प्रकाश जी, कैसा काम आपको लग रहा है अभी जब से बीजेपी सरकार आई है, वो कैसा काम कर रही है बंगाल में?
13: अच्छा कर रहा है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, अच्छा काम कर रहा है।
12: आपको लग रहा है कि अब तक केंद्र की तरफ से वो समर्थन जो जरूरत थी वो नहीं हो पाया?
13: असुविधा तो था अभी, लेकिन असुविधा नहीं है। अभी कोलैबोरेशन हम लोग को स्टेट एवं केंद्र दोनों को मिलकर काम करना है, डेवलपमेंट का काम करना है। देखिए, मैं जो इलाका से बिलोंग करता हूँ, एकदम बॉर्डर इलाका है, साम लगवा इलाका है, नियरेस्ट भूटान इलाका है, वहां पे जिस तरह का काम शुरू हुआ, अगर वहां एम्स हो, वहां मेडिकल कॉलेज हो जो प्रस्ताव आ रहा है, हसीमारा में एयरपोर्ट हो जो प्रस्ताव आ रहा है, रोड से लेके जो 100 दिन का काम, पीएचई का काम, ये सब ऑलरेडी ग्राम पंचायत इलाका से काम शुरू हो गया।
0: तो ये तो सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन अब इस पर बयानबाजी भी आ रही है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी का भी बयान सामने आ गया और शिवसेना यूबीटी के नेताओं का भी बयान सामने आया। अरविंद सावंत की बात की जा रही है।
14: अरे, ये सारे जो नाम आप जिक्र रहे हैं तो पहले से ही जहां अवसर मिलते हैं वहां दौड़ते हैं। किसी एक बड़े कांग्रेस नेता की बेटी होने के चलते हर जगह जान पहचान तो थी, और बस उसको इस्तेमाल करते हुए कभी कांग्रेस पार्टी की एमपी, कांग्रेस पार्टी की महिला प्रधान, राष्ट्रीय महिला प्रधान, कभी टीएमसी, अभी टीएमसी से बीजेपी। तो ये अवसरवादियों के बारे में क्या कहें, मैं कहीं भी जा सकते।
15: सभी समदुखी है, शिवसेना भी समदुखी है। वही तो किया ना, जो शिवसेना के साथ किया वही टीएमसी के साथ कर रहे, तो जो पैटर्न उन्होंने महाराष्ट्र में किया वही पैटर्न हुआ है। नई बात कौन सी, उनका धंधा ही है ये भैया, बीजेपी का ये धंधा है, बस कुछ भी करो सत्ता पे बैठना है। एथिक्स नाम की जो बात होती है ना, कहीं नहीं है एकदम।
0: अब देखिए, लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है कि आखिर वजह क्या है जो बारी बारी सब बिछड़ते जा रहे हैं, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो, सब जा रहे हैं। संगठन में कमजोरी या कोई और वजह, भ्रष्टाचार जैसा कि अब आरोप लग रहे हैं, तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि बगावत के पीछे की वजह है क्या?
16: बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी में जो तूफान आया है वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, कोलकाता में बागी विधायकों का भी अपना गुट बन गया है और विधायकों में बगावत का झंडा उठाया है ऋतव्रत बनर्जी ने। सबसे पहले ऋतव्रत ने ही टीएमसी में रहते हुए ममता और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका और फिर देखते ही देखते दिल्ली तक बात पहुंच गई। लेकिन सवाल ये है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी के विधायक और सांसद बगावत करने लगे? क्या बंगाल में टीएमसी हारी इसलिए ये भगदड़ मची है, या फिर वजह कुछ और है?
17: दो साल में क्या ऐसा बदल गया कि आपको लगा कि पार्टी से अलग होना चाहिए, एक अलग गुट बनाना चाहिए?
18: देखिए, दो साल नहीं, काकुली घोष दस्तीदार 40 साल से है, मैं 17 साल से हूँ। जो लोग अभी इस बार पहली बार जीत कर आए हैं एक साल के लिए, दो साल के लिए, उसके लिए एक दो साल होगा, हम लोग के लिए इतना दिन, तो इतना दिन में तो कोई ना कोई अगर आप बोलेंगे जब जीते थे तब क्यों नहीं बोले थे, अभी हारने के बाद क्यों, जीतने के बाद भी बोले थे, बोलने की कोशिश किए थे, वहाँ पे सिस्टम नहीं है बोलने का, बोलने से सब रोकते हैं जो नहीं बोलना है नहीं बोलना है, तो और अगर बोले भी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलते, आप 7 दिन 10 दिन इंतजार करो कुछ नहीं।
16: ये शताब्दी रॉय है, ममता बनर्जी के विश्वास पात्र सांसदों में से एक। शताब्दी कहती है कि बगावत का ये बम एक दिन में नहीं बना, पार्टी के अंदर असंतोष तो बहुत पहले से था, उसकी अभिव्यक्ति अब हुई है। मतलब टीएमसी में बगावत का बारूद एक दिन में इकट्ठा नहीं हुआ। बागी नेताओं का आरोप है
4: कि पार्टी नेतृत्व जमीनी कार्यकर्ताओं और नेताओं से कट गया है। भ्रष्टाचार और संगठनात्मक समस्याओं से जुड़ी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। ममता बनर्जी की सादगीपूर्ण राजनीति दिखावा है, पार्टी के अंदर बोलने नहीं दिया जाता था।
19: लगभग 20 सांसदों के एक असंतुष्ट गुट के उभरने की खबरें बताती हैं कि नाराजगी अब सिर्फ कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक व्यापक रूप ले चुकी है। बीजेपी की चुनावी बढ़त और पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच कुछ विधायक और सांसद अपनी राजनीतिक रणनीति पर पुनर्विचार कर रहे हैं और दल बदल की इन कोशिशों को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद हवा दे रहे हैं।
4: एक तरफ बागी सांसद है, दूसरी तरफ विधायक। बागी विधायकों का दावा है कि उनके पास 60 से अधिक विधायकों का समर्थन है। जैसे ही विधानसभा सत्र शुरू होगा, हम अपनी शक्ति दिखाएंगे। बंगाल टीएमसी के पास 80 विधायक हैं और अगर इनमें से 60 विधायक बागी गुट में चले गए तो ममता के हाथ से पार्टी का नेतृत्व भी निकल जाएगा।
20: मैं एक ही बात कहूंगा, जहां तक हमारे आंकड़ा का सवाल है, वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। जो आंकड़ा हम लोग प्रेजेंट किए थे 2/3 से ज्यादा, काफी सारे ज्यादा, वो जो आंकड़ा है, जब आप लोग से मिलेंगे विधानसभा का अधिवेशन जो होगा, वो आंकड़ा ऊपर जाएगा और आगे जाएगा। एब्सोल्युटली, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ड्रॉपिंग। इनफैक्ट आई वोंट नेम, लेट्स वेट एंड वॉच।
0: मध्य प्रदेश की बात की जाएगी, मीनाक्षी नटराजन की बात की जाएगी, उनके नामांकन रद्द हो जाता है, उसके बाद कांग्रेस का डेलीगेशन प्रदर्शन करता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जब बात आती है तो तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया जाता है। कल इस मामले की सुनवाई होगी, अपडेट क्या है इस मामले में आपको बताते हैं।
4: मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार का पर्चा रद्द हुआ, आरोप ये कि हलफनामे में जानकारी छुपाई गई। इसी तरह की गड़बड़ी झारखंड में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के पर्चे में थी, लेकिन झारखंड में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को संशोधन का समय मिल जाता है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो जाता है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज करने की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक आ गई है। चुनाव आयोग से जब तुरंत राहत नहीं मिली तो मीनाक्षी नटराजन के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अर्जी दाखिल की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से भी कांग्रेस को राहत नहीं मिली। मीनाक्षी नटराजन की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि एक गैर सूचीबद्ध मामला है जिसे तत्काल सुनना आवश्यक है, इसमें देरी नहीं की जा सकती। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी मेंशनिंग कल सुनी जाएगी। जवाब में सिंघवी ने कहा कि ये मामला कल तक इंतजार नहीं कर सकता, ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का केस है, अगर आज नहीं सुना गया तो चुनाव आयोग परिणाम घोषित कर देगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो चुनाव से संबंधित विवाद है। इस पर सिंघवी ने कहा कि मामले को भले ही कल सूचीबद्ध कर दें, लेकिन तब तक परिणाम घोषित न करने का निर्देश तो दें।
20: कल तक
0: और यहाँ पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
22: Ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. From big renovations to simple refreshes, your home's next chapter starts at CME. Visit CME. FCU.org to apply today and get your plans underway. Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
23: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
24: Oh, ouch.
23: However you make money work, we can work with that.
25: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
26: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
0: Savari.
2: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
5: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू,
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
10: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
11: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
9: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
12: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
10: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
9: जहां खबर वहां खबरदार।
13: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Tune In is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
4: EU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
5: EU सोच बदलो और बैंक भी।
6: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
7: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
8: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
6: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
9: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
7: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
6: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
10: In association with
11: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: Monte Carlo, it's the way you make me feel।
6: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल।
13: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी?
6: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल।
13: CBSE के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
6: छात्रों को दिया मंच।
13: उज्मा हमारे साथ कोटा से, और अदिति मुंगेर से हैं, और तानिया कोटा से हैं, और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
14: मैम ये देखिए, इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
15: IIT मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
6: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर।
13: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक, और अब सरकार की तरफ से CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
6: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।
16: NDA के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। और बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट, यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया, जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: सभी नेतागण, मित्रों, आज हम एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं जो आने में एक साल, दो साल, तीन साल नहीं, कई दशक लग जाते हैं। 62 वर्षों का एक रिकॉर्ड आज हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा है। सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल रहा है। अगला रिकॉर्ड और इस रिकॉर्ड के बीच में भी एक अंतर है। वो रिकॉर्ड उस समय में सृजित किया गया जब चुनाव आजादी के आंदोलन की परछाई में होते थे, कोई स्पर्धात्मक पॉलिटिक्स नहीं थी, ना विकास की कोई ज्यादा महेच्छा, इच्छा, आकांक्षा थी। आज पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के समय में इतने लंबे समय तक इस देश का नेतृत्व बार बार चुनकर करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेकर। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने इस देश को लंबे कालखंड तक नेतृत्व देकर विकास के हर पैमाने में आगे बढ़ा है। इतना ही नहीं, आपका ये कालखंड देश के इतिहास में स्थिरता के, राजनीतिक स्थिरता के कालखंड के रूप में जाना जाएगा। आपका ये कालखंड नीतियों की सृजन और इसके स्थिर इंप्लीमेंटेशन के रूप में जाना जाएगा। आपका ये कालखंड मजबूत रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति को इंट्रोड्यूस करने वाले कालखंड के रूप में जाना जाएगा। और आपका ये कालखंड देश के सम्मान के साथ कोई समझौता न करने वाली रक्षा नीति के निर्माण के रूप में भी जाना जाएगा। मित्रों, 62 वर्ष में देश ने 13 प्रधानमंत्री, अनेक गठबंधन की सरकारें, अनेक दलों की सरकारें देखी हैं। राजनीतिक अस्थिरता का एक लंबा कालखंड भी देश ने भोगा है। मोदी जी का एक कालखंड स्थिरता, निरंतरता और निर्णायक नेतृत्व का एक स्वर्णिम अध्याय लिखने वाले कालखंड के रूप में आगे जाना जाएगा। कई लोग मोदी जी को संकट समय के नेता के रूप में जानते हैं। मैं गुजरात से आता हूं, लंबे समय से मोदी जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। जब वो प्रधानमंत्री बने तब गुजरात एक गहरे संकट में था। एक सदी का सबसे भयंकर भूकंप के त्रासदी से गुजरात गुजरा हुआ था। उस वक्त मोदी जी ने फ्रंट से लीड करते हुए हमारे गुजरात को भूकंप की परछाई से बाहर निकालकर विकसित गुजरात बनाने का काम किया। आज देश भर के गुजरात भूकंप के पहले भी हुए भूकंप के क्षेत्र को देखेंगे तो कहीं कहीं भूकंप की परछाई जरूर देख पाएगी। मेरा आप सबसे निवेदन है, निमंत्रण भी है कि आप जरूर कच्छ जाइए। परिवर्तन कैसे होता है, कच्छ आज उसका उदाहरण बना है। मैं देश के गृह मंत्री के रूप में काम करता था, तब कोरोना का वैश्विक संकट आया। पूरी दुनिया चिंता करती थी कि भारत कोरोना के संकट को कैसे निपटेगा, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने एक सामूहिक नेतृत्व का अनुभव कराते हुए, नेतृत्व वो खुद कर रहे थे मगर न केवल केंद्र सरकार के सारे विभाग, सारी राज्य सरकारें और 130 करोड़ की जनता को साथ में लेकर इतने बड़े संकट से इस देश को बाहर निकालने का काम किया। उन्हीं का नेतृत्व था जिसने सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाले देशों में भारत को स्थान दिलाया। और जो पूरी दुनिया चिंता करती थी कोरोना जब शुरू हुआ कि भारत कैसे इस संकट से निपटेगा, जब संकट समाप्त हुआ तो मॉडल क्राइसिस मैनेजमेंट के रूप में आज विश्व भर के लोग कोरोना की भारत के खिलाफ की लड़ाई को स्टडी करने के लिए आ जा रहे हैं। डोकलाम की घटना हो, रशिया यूक्रेन का युद्ध हो या अमेरिका ईरान का तत्कालीन युद्ध हो, विश्व को झंझोर देने वाली ये सारी घटनाओं के बीच में स्थिर भाव से मौन रहकर भारत के हितों की चिंता करकर हमारे हितों को सर्वोपरि रखते हुए दुनिया जब पूरी संकट में होती है तब भारत ने अपने विकास की गति को बढ़ाया है और आपने एक प्रकार से सहमति की राजनीति को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी की विशेषता यह नहीं है कि केवल उन्होंने लंबे समय तक शासन किया, उनकी विशेषता यह है कि इतने लंबे शासन के कालखंड में कई राज्यों के चुनाव एनडीए परिवार के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के रूप में और 3 आम चुनाव लगातार जनादेश प्राप्त कर जनता का विश्वास भी जीतने का काम किया है। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो 25 वर्ष की ये नेतृत्व की यात्रा, लगातार जनता द्वारा चुनी गई सरकारों का नेतृत्व करने का ये स्वर्णिम कालखंड एक साच अर्थ में नरेंद्र मोदी जी की लोकतांत्रिक स्वीकृति की यात्रा है जिसने भारत को कई मीलों हर क्षेत्र में आगे पहुंचाने का काम किया है। मोदी जी, आपने इस देश के सार्वजनिक जीवन में कई मॉरल लैंडमार्क रचित करने का काम किया है। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने और संसद की सीढ़ियों पर मत्था टेक कर संसद को लोकतंत्र के एक सबसे बड़ी पंचायत के भवन को सेवा के मंदिर के रूप में परिचय कर हमारी संविधान की स्पिरिट का बहुत लंबे अरसे के बाद दुनिया को परिचय कराया। आपने लाल किले से प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक बनाकर आने वाली कई पीढ़ियों में सत्या का उद्देश्य क्या होता है इसके मायने समझाने का और मार्गदर्शन करने का काम किया है। संविधान को एडमिनिस्ट्रेशन का धर्म ग्रंथ कर सरकार चलाने का धर्म ग्रंथ के रूप में परिचय कराकर आपने संविधान का सम्मान बढ़ाया है और आपके शासन काल में गुरु नानक देव जी के सेवा के संदेश को चरितार्थ करने का भी काम किया है। समर्थ रामदास ने एक कल्पना रखी थी शासन की, उपभोग शून्य स्वामी। आपने उपभोग शून्य स्वामी की कल्पना को चरितार्थ कर हमेशा राष्ट्रप्रथम के भाव को आगे बढ़ाया है। सादगी, संपर्क की विशेषता, दृढ़ता, दूरदर्शिता, अथाह परिश्रम और राष्ट्रप्रथम का भाव, ये हमेशा के लिए आपको पूरे भारत के नेताओं में एक अलग भांति का, अलग पंक्ति का नेतृत्व के रूप में प्रस्थापित करेगा, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनकर भारत की चुनौतियों को समझा और चुनौतियों के सामने के लिए निश्चित ठोस रणनीति बनाने का काम किया। भ्रष्टाचार, पॉलिसी पैरालिसिस, कमजोर निर्णय क्षमता वाला नेतृत्व और फ्रेजाइल फाइव वाला अर्थतंत्र, ये बोझ के साथ, ये बैकग्राउंड के साथ आपने सत्ता संभाली और आज ये सारे सूत्र युवा पीढ़ी के लिए इतिहास बनकर आपने रख दिए हैं। भारत आज 1 से 5 के अर्थतंत्र में भी पहुंचा है, सबसे ज्यादा दूरदर्शिता के साथ पॉलिसी बनाने वाला तंत्र भी बना है और भ्रष्टाचार को कोई दूरबीन लेकर आपके शासन में न ढूंढ पाए इस प्रकार का पारदर्शी शासन भी आपने दिया है। 2022 में जब आजादी के 75 साल हुए, मैं गृह मंत्री के रूप में काम करता था, मोदी जी ने एक बैठक बुलाई और उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए देश की सरकार की तैयारियों के लिए बैठक थी। उसके बाद कोरोना भी आया, मगर मित्रों मैं जरूर कहना चाहता हूं, जिस विजन के साथ उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव बनाया मनाया। इसके कारण हमारी सभी सिद्धियों को दुनिया के सामने रखने का भी काम हुआ, युवा पीढ़ी को आजादी के संग्राम से परिचय कराने का भी काम हुआ, भारतीय भाषाएं और भारतीय संस्कृति और कई गुमनाम आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों को फिर से एक बार पुनर्जीवित करने का भी काम हुआ। परंतु अमृत काल की संकल्पना ने पूरा दृश्य बदल कर रख दिया। उन्होंने 75 साल के समारोह के वक्त कहा था कि आज से भारत का अमृत काल शुरू हो रहा है और 75 साल से लेकर भारत की आजादी की सती तक के काल को अमृत काल के रूप में उन्होंने व्याख्यायित किया। और देखते देखते देखते 15 अगस्त 2047 के विकसित और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को, विचार को प्रधानमंत्री के विचार से बदलकर 140 करोड़ जनता का संकल्प बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, जब मैं युवा था और देश के सामने की समस्या को सोचता था तो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे देश की जनता की सामूहिक लघुता ग्रंथि की, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हम कर सकते हैं, हम दुनिया का नेतृत्व कई क्षेत्रों में कर सकते हैं, हमारा भूतकाल भी भव्य था, भविष्य स्वर्णिम है। ये आत्मविश्वास का अभाव देश की जनता में दिखाई देता था। आपके 2047 के विकसित भारत के संकल्प ने हमारी सामूहिक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को समाप्त करकर एक आत्मविश्वासी 140 करोड़ नागरिकों का एक देश बनाने का काम किया। मुझे बरोबर याद है आपने समारोह में कहा था कि 140 करोड़ लोग अलग अलग दिशा में अगर कदम उठाते हैं तो एक ही कदम आगे बढ़ते हैं, परंतु एक लक्ष्य के सामने एक दिशा में 140 करोड़ लोग एक कदम उठाते हैं तो देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। यही हमें विकसित भारत के तक पहुंचाएगा। आपने जो विजन 2047 का दिया है इसको भारत का युवा भी स्वीकार कर रहा है, आत्मविश्वासी, समृद्ध, सुरक्षित, शिक्षित और विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत का रोड मैप आपने देश के सामने रखा है। आपने एनडीए को एक राजनीतिक गठबंधन से ऊपर उठकर देश की चिंता करने वाले राजनेताओं का और संवेदनशील राजनीतिक दलों का समूह बनाया। आज एनडीए 22 सरकारों के साथ, राज्य सरकारों के साथ, 292 संसद सभ्यों के साथ, 144 राज्यसभा के संसद सभ्यों के साथ, 2315 विधायकों के साथ और 222 से अधिक विधान परिषद के सदस्यों के साथ देश के 80% भूभाग और 76% आबादी पर शासन कर रहा है। वो ये आपके 12 साल के यशस्वी कार्यकाल का ही परिणाम है। आपने एनडीए को गठबंधन की राजनीति को अस्थिरता नहीं पर समान लक्ष्य वाले भारत को समर्पित राजनीतिक दलों का समूह बनाने का काम किया है। आपके संवेदनशील नेतृत्व ने इस देश में 12 साल के छोटे कालखंड के अंदर 25 करोड़ लोगों को घर, घर में बिजली, शौचालय, पेयजल की सुविधाएं, बैंक अकाउंट, हर व्यक्ति को 5 किलो प्रतिमाह मुफ्त राशन, 5 लाख तक के इलाज की सुविधाएं, गैस का कनेक्शन और 3 करोड़ लोगों को आपने पहली बार बिजली पहुंचाने का काम किया है। आज 3 करोड़ लखपति दीदी आपकी इस संवेदनशीलता को अनुभव कर रही है और एक मुस्त होकर मैंने कई चुनाव अभियानों में गरीबों को कहते हुए सुना है कि भारत में गरीबों के प्रति संवेदनशीलता रखने वाला ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं आया है। इतने बड़े जन कल्याण के कामों के साथ जो कहते थे कि जन कल्याण के लिए बजट का हिस्सा कितना होना चाहिए, इसकी डिबेट होनी चाहिए। मैं आज इस सभी लोगों को कहना चाहता हूं, हर एक प्रकार की बुनियादी सुविधाएं 80 करोड़ लोगों को देने के बाद आपके नेतृत्व में भारत सब बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है, वो हम सब एनडीए के साथियों के लिए गौरव का विषय है। मित्रों, आज आकांक्षी जिले नरेंद्र मोदी शासन का मॉडल का परिचायक है। जो जिले कई राज्यों को बीमारू राज्य बनाने में जिम्मेदार थे, आज वो जिलों में देश के एक नंबर के जिले के साथ स्पर्धा करने का हौसला भी है, इच्छा भी है और आकांक्षा भी है। मेरा आप सबसे आग्रह कि हर सप्ताह, हर माह आप ये आकांक्षी जिलों की तालिका को देखिएगा तो मालूम पड़ेगा कि कितनी स्पीड से तालिकाओं में बदलाव आता है। हर जिला सबसे अच्छा जिला बनने की स्पर्धा का अनुभव किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने लोकप्रिय लोकतंत्र को भी पुनर्भाषित करने का काम किया है। एक जमाने में हमारे देश के लोकतंत्र को 40 साल के कालखंड के बाद हम देखते थे तो हमारी राजनीति वंशवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण से पीड़ित थी। ये तीनों नासूरों ने 4 दशक तक हमारे लोकतंत्र को पंगु बनाने का काम किया था। आपके एक दशक के कार्यकाल ने जातिवाद, वंशवाद और तुष्टिकरण से हमारी राजनीति को मुक्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को इंट्रोड्यूस करने का काम किया है। और मैं मानता हूं हमारे लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ा बूस्टर डोज है। जनता जाति, धर्म और परिवारवादी पार्टियों से मुक्त होकर आज विकास की आकांक्षी बनी है, आपका ही नेतृत्व का परिणाम है। कई सारे ऐसे देश की सामने समस्याएं थी जो आपने हंसते हंसते आम सहमति से समाप्त कर दिया और किसी को मालूम भी नहीं पड़ा कितनी सरल समस्या थी। धारा 370 और 35 से हटाना, ट्रिपल तलाक को समाप्त कर देना, वर्षों से यहां पर जो नागरिक शरणार्थी बनकर आए थे उनको भारतीय नागरिक की पहचान देना, सीएए करना, 160 साल पुराने अंग्रेजों के भारतीय न्याय संहिता के कानूनों को समाप्त कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को इंट्रोड्यूस करना, नक्सल मुक्त भारत की संकल्पना अपने आप में जब आप लक्ष्य देते थे तो ध्रुजा देती थी कि कैसे हो सकता है। 5 दशक पुराना नक्सलवाद देखते देखते देखते इस समय के अंदर समाप्त हो गया और वो पूरा क्षेत्र आज विकास के दायरे में आगे बढ़ा है। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर, ये तीनों ने कई देशों की रक्षा नीति को नया आकार देने का काम किया है। और इसके साथ साथ सहकारिता मंत्रालय की रचना, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग का मंत्रालय बनाने की रचना, 50% लाभकारी मूल्य वाली एमएसपी और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत विकास, इसने आपको किसानों के प्रिय नेता बनाया है। मैं हमेशा जब इनफॉर्मली युवाओं के साथ बात करता हूं तब हमेशा आपको व्यवहारु अर्थशास्त्री के रूप में उल्लेखित करता हूं। मैं आज एनडीए के सभी नेताओं के बीच में भी कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ना केवल अर्थशास्त्र को जानते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र का व्यवहारिक स्वरूप पूरी दुनिया के सामने रखने का काम किया है। जीएसटी की कल्पना कभी संभव नहीं लगती थी, आपके दृढ़ निश्चय और सबको साथ लेने की कला के कारण ही आज जीएसटी लागू हो पाया है। भारत फ्रेजाइल 5 में से आज पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में आया है। बैंकिंग सुधार एक स्वप्न जैसे लगते थे परंतु आज बैंकों का विलय और एनपीए संकट को निपटने की रणनीति के कारण आज हमारी बैंकें सारी प्रॉफिटेबल भी है और एनपीए का स्तर पूरे विश्व में सबसे कम शायद हमारे यहाँ है। जेम ट्रिनिटी, रिकॉर्ड एफडीआई निवेश के लिए पीएलआई योजनाएं और नारी शक्ति वंदन अधिनियम से मातृशक्ति का सम्मान और नीति निर्माण में मातृशक्ति को स्थान। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में एनडीए ने जो संकल्प किया है 33% आरक्षण का, वो भी आपके नेतृत्व में ही समाप्त होगा। न केवल नीति निर्माण में मातृशक्ति को भागीदार बनाया है, न केवल ढेर सारी शौचालय से लेकर पीने के पानी से लेकर राशन से लेकर बच्चों की टीकाकरण तक की महिलाओं की समस्या को आपने समाप्त किया, हमारी मातृशक्ति को सेना, पुलिस, वैज्ञानिक अनुसंधान, स्टार्टअप, ड्रोन और खेल जैसे क्षेत्र में समानता का अधिकार भी आपने दिया है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
4: Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India.
5: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning. One heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
7: Tune in's how to. A brief look at all

0: This is the sound of Jack buzz-cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
1: Oh, ouch.
0: However you make money work, we can work with that.
2: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
5: प्रतिमा जी, इसमें किस बात की कितनी सच्चाई है कि आप भी बागी गुट में शामिल हो गई हैं? एक खबर आई कि कल एक मीटिंग हुई भूपेंद्र यादव के घर में, जहां शुभेंदु अधिकारी भी थे, वहां आप भी मौजूद थी, इस तरह की खबरें आई थी।
6: देखिए आप, मेरा कलकत्ता का जो घर है, आप वहीं पे बैठे हैं और मैं आपके मीडिया से तरफ से मैं ये मेरा जयनगर लोकसभा का जितना सारा जनता है, मैं उसको ये बोलना चाहती हूँ, 4 तारीख 4 जून मेरा एस्टिमेट कमेटी का मीटिंग था दिल्ली में। मैं 3 तारीख रात को दिल्ली पहुंची, 4 तारीख 11 बजे मेरा कमेटी का मीटिंग था और 4:10 बजे एयर इंडिया का फ्लाइट से मैं कलकत्ता आ गई। उसके बाद मैंने दिल्ली नहीं गई हूँ, मैं अभी तक मेरा घर जो है बालीगंज स्टेशन रोड में वहीं पे हूँ। और जो दल बनाया है हमारा कोलिग ने, साथी ने, मैं उसमें साइन भी नहीं किया और दिल्ली में गए भी नहीं।
5: तो आपको क्या बुलावा आया था, आपको फोन आया था उसमें शामिल होने के लिए?
6: हाँ, फोन तो आया था मेरे कोलिग से, नहीं दूसरे साइड से आया था,
5: बीजेपी।
6: मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि जिन्होंने फोन किया है वो भी सम्मान मुझे दिया है, तो इसका नाम मैं नहीं बताना चाहती हूँ। मैं फोन मुझे मिलता ही रहता है उनसे, वो बार बार बोलते हैं दिल्ली आने के लिए, लेकिन मैंने दिल्ली नहीं गई हूँ।
5: तो आप अभी ममता दीदी के साथ ही हैं?
6: देखिए, जो हमारा प्रतीक है घासेर उपरे जोड़ा फूल, वही प्रतीक से मैं 3 बार जीती हूँ। जनता ने मुझे आशीष दिया है, इस बार भी बहुत मैंडेट मुझे मिला, 4,70,000 से वोट से भी मुझे मिला और मैं जीत के आई हूँ। तो जनता ने मुझे आशीष दिया 5 साल के लिए, तो मैं 29 तक उनका एमपी हूँ, उनके काम करूंगी। तो मैं जनता को अपमानित नहीं करना चाहती हूँ। जनता ने तो मुझे नहीं बोला आप जाओ छोड़ के दूसरे साइड में, तो मैंने जनता को सम्मान देके उनका अपमानित नहीं करना चाहती हूँ। मैं 29 तक ही उनके साथ हूँ, तो घासेर उपरे जोड़ा फूल जो प्रतीक से मैं जीती हूँ वही सही।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

टीएमसी में टूट के बीच कल्याण बैनर्जी ने दिखाए बगावती तेवर, अभिषेक बैनर्जी को बताया घमंडी, ममता को अल्टीमेटम देकर कहा भतीजे को चुने या वफादार नेताओं को। तृणमूल कांग्रेस में बगावत की सुनामी, राज्यसभा से एक और सांसद का इस्तीफा, लोकसभा में 20 बागी विधायक सांसदों का स्पीकर को खत, पार्टी पर जताया दावा। सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका, आज अर्जी पर सुनवाई से इंकार, कल तक करना होगा इंतजार, सिंघवी की दलील नाकाम, कांग्रेस की कल प्रदर्शन की तैयारी। भारत अखाड़ी युद्ध की आग, ओमान में एक और भारतीय जहाज अमेरिकी हमले की चपेट में आया, 3 दिन में तीसरा हमला, हॉर्मुज के करीब तेल टैंकर हमले में 3 हिंदुस्तानियों की मौत। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम की उड़ी धज्जियां, साउथ ईरान समेत कई इलाकों में एयर स्ट्राइक्स, मिडल ईस्ट में यूएस बेसों पर भी आईआरजीसी का हमला, फाइटर जेट तबाह करने का भी दावा किया।

0: नमस्कार, 3 बजे की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 100 शहर 100 खबरों के साथ। भारत अखाड़ी युद्ध की आग, ओमान में एक और भारतीय जहाज अमेरिकी हमले की चपेट में आया। 3 दिन में तीसरा हमला, हॉर्मुज के करीब तेल टैंकर हमले में 3 हिंदुस्तानियों की मौत। भारत ने अमेरिका से कड़ा विरोध जताया, जहाज हमले पर पारदर्शी जांच की मांग की गई है। भारत ने कहा है कि इस तरह के हमले समुद्री सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर मोदी सरकार नीति आयोग की बैठक में बड़ा मंथन किया गया। मुख्यमंत्रियों के साथ एक्शन प्लान पर विस्तार से हुई विचार। 2047 में विकसित भारत को रोड मैप पर भी मंथन किया गया। विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखी गई बैठक की थीम, जो 4 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित होगी। बैठक में देशभर में मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और केंद्रीय मंत्रियों और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों भी हुए शामिल। मीटिंग में मानव विकास की राष्ट्रीय विजन को भी राज्य स्तरीय योजनाओं के साथ जोड़ने पर जोर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका दिया है। आज अर्जी पर सुनवाई से इंकार कर दिया, कल तक करना होगा इंतजार। सिंघी की दलील नाकामयाब हुई। टीएमसी सांसद प्रकाश चिकबाराइक ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा, सभापति को सौंपा अपना त्याग पत्र। टीएमसी में टूट के बीच कल्याण बैनर्जी ने दिखाया अपने बगावती तेवर, अभिषेक बैनर्जी को बताया घमंडी। ममता को अल्टीमेटम देकर कल्याण बैनर्जी ने कहा कि भतीजे को चुने या फिर वफादार नेताओं को। खड़गे पर सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप, कहा कि चुनावी दस्तावेजों में ट्रस्ट की कुछ संपत्तियों की जानकारी छिपाई गई है। यूपी में बीएसपी की भाईचारा कमेटी की बैठक का दौर शुरू हुआ। दलित ओबीसी वोट बैंक को एकजुट करने की पार्टी का फोकस है। पीडीए के जवाब में संगठनात्मक रिपोर्ट तैयार कर रही है भाजपा। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर नया फार्मूला। जीत की गारंटी के आधार पर तय होंगे टिकट। मजबूत उम्मीदवार और जाति समीकरण के आधार पर बांटेंगी टिकटें। यूपी मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण रोकथाम सेल बनाया गया। गवर्नर के आदेश पर सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में विशेष निगरानी सेल गठित करने का आदेश दिया गया है। केजीएमयू में नेत्र विभाग में जांच के घेरे में, मरीजों को बाहर से लेंस और दवाएं लिखने के आरोपों में शासन स्तर पर रिपोर्ट की जांच की गई है, कार्रवाई की संभावना है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न की गई है। 75 जिलों में 1183 केंद्रों पर 3 दिन चली है परीक्षा, खत्म हो गई है। 12 FIR भी दर्ज की गई है, 9 फर्जी अभ्यर्थी भी गिरफ्तार किए गए। यूपी में 60,000 शिक्षकों की भर्ती की तैयारी है। खाली पदों का ब्यौरा आयोग को भेजा जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पदों पर होगी भर्ती। फिरोजाबाद में दुष्कर्म के आरोप में मौलाना ने पुलिस की मुठभेड़ है। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी है गोली, हुआ गिरफ्तार। तमंचा कारतूस बरामद किए गए, ट्रॉमा सेंटर में चल रहा इलाज। फिरोजाबाद में शराब ठेके पर महिलाओं का हंगामा, लाठी डंडों की ताबड़तोड़। सड़कों पर फेंकी शराब, आबकारी विभाग बोला दुकान नियमों के तहत जांच जारी है। बुलंदशहर के होटल में युवती की संदिग्ध मौत, युवक के साथ कमरे में जहरीली पदार्थ खाने की आशंका। युवक अस्पताल में भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटे। यूपी चुनाव में पहले एनडीए में सीट बंटवारे की कवायद तेज कर दी गई है। एनडीए सहयोगियों के साथ जल्द शुरू होगी सीट शेयरिंग पर चर्चा। गठबंधन दलों की मांग के बाद बीजेपी नेतृत्व ने दिए हैं जल्द बातचीत के संकेत। इटावा में बिहड़ वाले सैयद बाबा की मजार पर चला बुलडोजर। 3 महीने की सुनवाई के बाद मजार ध्वस्त कर दी गई। वन विभाग प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई की गई है। वाराणसी के दल मंडी बाजार में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। अतिक्रमण हटाने के लिए चला ध्वस्तीकरण अभियान। बाजार क्षेत्र में हटाया गया अवैध निर्माण। प्रयागराज में बाढ़ आपदा के निपटने के लिए तैयारी है। एसडीआरएफ ने और जल पुलिस ने किया रेस्क्यू प्रदर्शन। श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटने का बनाया गया परिदृश्य। मौके पर दिया गया CPR। झांसी में पुलिस चौकी समेत 11 दुकानों में भीषण आग। बुझाने के दौरान होमगार्ड झुलसा, अस्पताल में भर्ती कराया गया। दौर में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान टीम को बाहर करने का हुआ विवाद। 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। खिलाड़ियों के बीच मारपीट की घटना में भी हड़कंप मच गया है। गुरुग्राम में मामूली सड़क विवाद को लेकर निजी बस चालक और कंटेनर चला रहे ड्राइवर के बीच मारपीट हुई है। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। जानकारी के अनुसार एक कंटेनर और निजी बस के बीच हल्की टक्कर हो गई थी। टक्कर के कारण निजी बस का साइड शीशा टूट गया, जिसके बाद कहासुनी के बाद विवाद शुरू हो गया। नासिक रेलवे की बड़ी लापरवाही, गढ़माऊ के पास खंठो रुकी रही ट्रेन, भीषण गर्मी के में यात्री पैदल निकले, वीडियो हुआ सामने। यूपी के झांसी में कुत्तों के काटने की शिकायत पर पड़ोसियों ने युवक को जमकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के सरायजुलेना रेड लाइट पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक रेड हेड कांस्टेबल को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, सीसीटीवी में आरोपी वाहन की पहचान भी की गई। मधेपुरा में एक हॉस्टल में 6 साल के छात्र की हत्या का खुलासा हुआ, अवैध संबंध का राज खुलने पर ली गई है मासूम की जान। फिरोजाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी मौलाना पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, पैर में लोग गोली लगने के बाद दबोचा गया है। रुड़की की छतों पर ताबड़तोड़ फायरिंग और पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है, आरोपियों की पहचान में जुटी है पुलिस। वलसाड में डिलीवरी बॉय की ऊंचाई से गिरने से हुई मौत, सोशल मीडिया पर पोस्ट और मोबाइल की जांच में जुटी है पुलिस। फिरोजाबाद शराब ठेके पर महिलाओं का हंगामा, तोड़फोड़ कर सड़क पर फेंकी है शराब, आबकारी विभाग ने बताया राजनीति से प्रेरित मामला। अकोला में यूरिया के लिए रात भर लाइन में खड़े रहे किसान, किसानों की मदद को आ गया है दुकानदार, नाश्ता और पानी कराया गया उपलब्ध। गाजियाबाद के MMG अस्पताल में चाकू लेकर घुसी महिला, इमरजेंसी में मची अफरा तफरी, वीडियो हुआ वायरल। गोरखपुर में मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण के दौरान टला पड़ा हादसा, रेलवे स्टेशन पर पलटी क्रेन, चालक और ऑपरेटर सुरक्षित। गोंडा में SUV और बाइक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, 2 के घायल होने की सूचना भी मिली है। सुतारपुर में छेड़खानी के आरोपी में पुलिस और की मुठभेड़ हुई, पैर में लगी गोली, तमंचा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की गई है। मेरठ में खुली जीप में युवकों की खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो हुआ वायरल, हापुड़ रोड पर चलती जीप में लटक कर रहे थे करतब। कानपुर देहात में नदी किनारे मिला संदिग्ध मोर्टार, मचा हड़कंप, ग्रामीणों को मिला विस्फोटक, इलाका सील कर दिया गया, जांच के लिए बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक टीम मौके पर बुलाई गई। बांदा में बिजली संकट से ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, 25 दिनों में अंधेरे में 350 से ज्यादा घर, DM ऑफिस और पहुंचे ग्रामीण, DM ने बिजली अफसरों को लगाई फटकार। सहारनपुर की छतों पर चमकती सोलर क्रांति, 10,000 से ज्यादा घरों में रोज 34 MW बिजली उत्पादन, बढ़ रही है ऊर्जा आत्मनिर्भरता। खगड़िया में बिजली की चपेट में आने से पिता बेटे समेत 5 की मौत, 3 लोग घायल। जमालपुर बॉर्डर पर बड़ा तनाव, 60 साल का व्यक्ति नो मेस लैंड में फंसा, BSF और DGB फ्लैग मीटिंग में बेनतीजा रही। जमुई में कोचिंग जा रही छात्रा को मिनी ट्रक ने कुचला, मौत के बाद बवाल, पुलिस पब्लिक में पथराव और इलाके में तनाव भी जारी। बलौदा बाजार में अवैध रेत खनन के विरोध में बवाल, धरने पर बैठे ग्रामीणों ने पुलिस मारपीट का वीडियो वायरल किया, SP से शिकायत भी की है। जैकलिन फर्नांडिस मामले में सुप्रीम कोर्ट जज ने खुद को किया अलग, 24 जून को नई बेंच करेगी सुनवाई। दिल्ली NCR में 12 जून को बारिश के साथ ओलावृष्टि गिरने की संभावना है, 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। दिल्ली NCR को जल्द मिलेगी चलती गर्मी से राहत, मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्री मानसून गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। अंबाला में आंधी के बाद हुई जोरदार बारिश, गर्मी से लोगों को मिल रही है राहत। देहरादून में जोरदार बारिश, तापमान में आई गिरावट। बद्रीनाथ के जयकारों से गूंज उठा उत्तराखंड, बद्रीनाथ यात्रा के रिकॉर्ड, 10 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार किया। पिछले साल 25 जून को पार हुआ था 10 लाख दर्शन का आंकड़ा, इस बार 10 जून तक ही 10 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। भक्तों की भीड़ के साथ ही यात्रा मार्ग पर भी वाहनों की लंबी कतार देखी गई, श्रद्धालुओं को सुविधा और सुलभ दर्शन कराने की में जुटा है प्रशासन। खराब मौसम के बीच भी कम नहीं हो रहे भक्तों का जोश, बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु, मानसून के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है प्रशासन। देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, अब तक करीब 35.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए हैं दर्शन, केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 12 लाख लोगों ने दर्शन किए। आज फीफा फुटबॉल विश्व कप का होगा आगाज, अमेरिका कनाडा मेक्सिको की मेजबानी में 39 दिन तक चलेगी ये प्रतियोगिता, पहली बार 3 देश कर रहे हैं संयुक्त मेजबानी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में होंगे कुल 104 मैच, ग्रुप स्टेज में होंगे 72 मुकाबले। फीफा वर्ल्ड कप में इतिहास में पहली बार खिताब में 32 की जगह भिड़ेंगी 48 टीमें। 20 जुलाई को अमेरिका के न्यू जर्सी में खेला जाएगा विश्व कप फाइनल। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में लगेगा इंटरटेनमेंट का भी तड़का। मैक्सिको, टोरंटो और लॉस एंजलिस में होगी ओपनिंग सेरेमनी। कई मशहूर सितारे दिखाएंगे जलवा। भारत में भी दिख रहा है फुटबॉल विश्व कप का फीवर। केरला में गलियों में, सड़कों पर, घरों पर दिख रहा है फुटबॉल का क्रेज। चहेते खिलाड़ियों की तस्वीरों से पटे हैं गलाके। नोएडा एयरपोर्ट से उड़ाने शुरू होने के बस कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। एयरपोर्ट में इंडिगो के साथ सफलतापूर्वक किया गया अंतरिम ऑपरेशन रेडीनेस एक्टिवेशन और ट्रांजिशन ट्रायल। ट्रायल में विभाग के उड़ने लैंड करने के लिए दोबारा उड़ान भरने तक की हर प्रक्रिया का परीक्षण किया है। व्यवस्था, तकनीकी प्रणाली, एजेंसी के समन्वय की जांच भी की गई है। परीक्षण में विजुअल डॉकिंग और गाइडेड सिस्टम्स और पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, ग्राउंड वर्क, सभी सिस्टम्स और कार्गो संचालन जैसी सुविधाओं की भी की गई है जांच। विमान में कैटरिंग, ग्राउंड हैंडलिंग और ईंधन भरने से जुड़ी प्रक्रियाओं का भी किया गया परीक्षण और इसके साथ ही लगातार अप्रोच प्रक्रिया में भी जांच की गई है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर से 15 जून से शुरू होने वाली है कमर्शियल उड़ानें। एयरपोर्ट पर पहले चरण में बनाया गया एक रनवे और एक यात्री टर्मिनल। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले का शुरू किए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा सचिव पीट हेक्सेट की चेतावनी के बाद कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी हमलों की ईरानी समाचार एजेंसी ने भी की है पुष्टि। एजेंसी ने बताया कि ईरान के क्रिश द्वीप और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज सुनाई गई है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक्स में तुरंत बाद ईरान के सरीक और मिनाब क्षेत्रों में बड़े विस्फोट की खबरें भी सामने आई हैं। हमले के तुरंत बाद देश के कई हिस्सों में जवाबी कार्रवाई के लिए एंटी एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम्स को तुरंत एक्टिव कर दिया गया। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की घोषणा की है। कमान ने कहा है कि जो भी जहाज वहां से गुजरेंगे उनकी कोशिश करेगा उस पर गोलीबारी की जाएगी। अमेरिकी ठिकानों पर हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। कहा है कि ईरान ने बातचीत में की है देरी, अब कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का जबरदस्त पलटवार। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर किए हैं हमले। इससे पहले अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी ठिकानों को बनाया था निशाना। ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। इस्माइल बगई ने कहा है कि देश की रक्षा के लिए पिछले नहीं हटेगी सेना। अमेरिका पर बार बार युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप भी लगाया। यूरोपियन यूनियन ने नए प्रतिबंधों पर रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जैकरोवर का बयान। नए प्रतिबंधों में कामयाब नहीं होगा यूरोपियन संघ, रूस देगा कड़ा जवाब। रूस के चेबोक्सारी में सैन्य प्लांट पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। धू धू कर चली इमारत। तेल ठिकानों के बाद सैन्य प्लांट पर भी हमले किए गए। रूस की राजधानी मॉस्को में कार में बम धमाका हुआ है। कार में लगी भीषण आग, एक व्यक्ति की मौत हो गई। रूसी अधिकारियों ने विस्फोट मामले की जांच शुरू कर दी है। लेबनान में इजराइल का भीषण हमला हुआ है। होमीन अल्फोका में उठ रहा है धुएं का गुब्बार। सीज फायर के बावजूद लेबनान पर हमले जारी रखे हैं इजराइल ने। लेबनान, सीरिया के इजराइल के हमलों में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि इजराइल के हमले तुर्की के लिए भी खतरा है। वैश्विक समुदाय तुरंत रोकने इजराइल की आक्रामकता। अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में अंधाधुन फायरिंग, 12 लोगों की मौत हो गई है, 9 लोग घायल है। 10 से ज्यादा संदिग्ध हमलावरों की गाड़ी से उतारकर नागरिकों पर फायरिंग की गई। इंडोनेशिया में ईरान जंग का भी असर दिखा। पेट्रोल की कीमतों में 32% की बढ़ोतरी हुई है। गैर सब्सिडी वाले ईंधन के दाम 30% बढ़ने की बात कही गई है। फिल्म काला हिरन का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया। कल सिनेमाघरों में फिल्म होगी रिलीज। आज आएगा फिल्म वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर। मुंबई में ग्रैंड इवेंट में लॉन्च किया जाएगा ट्रेलर। अक्षय कुमार समेत मूवी के पूरी स्टार कास्ट इसमें मौजूद रहेगी। कल रिलीज होगी अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 का ट्रेलर। पोस्टर जारी कर दी गई है जानकारी। 10 जुलाई को फिल्म होगी रिलीज। कल रिलीज होगी फिल्म मैं वापस आऊंगा। फिल्म में दलजीत दोसांझ, नशरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शर्वरी का अहम रोल है। फिल्म भारत भाग्य विधाता 12 जून को 2026 को सिनेमा घरों में होगी रिलीज। दिल्ली में टैक्स फ्री की गई है फिल्म।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से

0: खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग के आगाज को लेकर। अमेरिका ईरान के बीच फिर से युद्ध तेज हो गया। आज दूसरे दिन भी वार पलटवार चला। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के कई इलाकों में बमबारी की है तो ईरान ने भी खाड़ी देशों में अमेरिकी बेसिस पर धुआंधार अटैक किए हैं। आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिका लड़ाकू विमानों को तबाह करने का भी दावा किया है। ईरान का दावा है कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमले में अमेरिका को के F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट के ठिकानों को नष्ट किया है, नुकसान पहुंचा है। ईरान ने अल अजराक एयर बेस और कंट्रोल सेंटर पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का भी दावा किया है। ईरान ने इसे कराज और नजर आबाद और पिशवा के पास यूएस के हमलों का जवाब बताया है। और आपको बता दें कि पिछले 24 से 48 घंटों में दूसरा मौका है जब अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध बहुत ज्यादा भीषण होता जा रहा है। आपको बता दें कि दो दिन पहले जब अमेरिका का 5वां हेलीकॉप्टर अटैक हुआ था, उसके बाद अमेरिका ने उसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया और उसी के बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की। उसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया और ये अब चीजें लगातार जारी है। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर भारी बमबारी की है। और मिडल ईस्ट जंग को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी सेना ने बयान जारी कर जॉर्डन, कुवैत और बहरीन के 5 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इसमें जॉर्डन का मुवाफ अल सॉल्टी एयर बेस और कुवैत का अहमद अल जाबेर एयर बेस शामिल है। इसके अलावा अली अल सालेम एयर बेस भी शामिल है। साथ ही बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट के मुख्यालय को भी लगातार टारगेट किया गया है। यानी बातचीत की संभावना अब दूर दूर तक नहीं दिख रही, सिर्फ और सिर्फ भीषण युद्ध की संभावना ही प्रबल होती जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
4: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
5: To right field, and it will leave.
4: From the first pitch of the season to the stretch run.
5: And that's the ball game.
4: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
6: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
7: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
8: AU सोच बदलो और बैंक भी।
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: इन एसोसिएशन विद
1: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
0: हिंट, बड़े आराम से
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
0: विमल, बोलो जुबा केसरी।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: संसद से सड़क तक मोदी सरकार को घेरने वाली सायुनी घोष।
4: हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए, तो आप बोलेंगे देशद्रोही।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कट्टर विरोधी शत्रुघ्न सिन्हा।
5: मोदी जी ने ये सौगात दिया, उत्तर प्रदेश को ये दिया, महाराष्ट्र को ये दिया, फलाने स्टेट को ये दिया। अरे वो नहीं देते हैं, वो हमारा ही पैसा है, हमारे लोगों का पैसा है।
3: और यूसुफ पठान। कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे ये नेता उन बागियों में शामिल हैं जिन्होंने काकोली घोष दस्तेदार की अगुवाई में अलग गुट बनाया है। खबर है कि टीएमसी के बागी सांसद बीजेपी या एनडीए में शामिल नहीं होंगे, बल्कि सदन में अलग गुट के रूप में रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस के 19 बागी लोकसभा सांसदों की जो लिस्ट आई है उसमें कई चौंकाने वाले नाम हैं। लेकिन सायुनी घोष भी ममता से बगावत करेंगी, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सुष्मिता देव की असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात की तस्वीरें आई। दोनों असम से हैं। ये भी तय लग रहा है कि इस्तीफे से खाली सीट पर उपचुनाव में बीजेपी सुष्मिता को उम्मीदवार बनाएगी।
6: सच्चाई तो ये है कि मेरी राजनीति बंगाल में नहीं है, मेरी राजनीति आसाम में है और मुझे आसाम में ही राजनीति करना है।
3: टीएमसी के पास लोकसभा में कुल 28 सांसद हैं। 19 से 20 सांसदों की बगावत के बाद उनके खेमे में अब सिर्फ 9 सांसद ही शेष बचे हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 80 विधायकों में टीएमसी के 58 विधायकों ने अलग गुट बनाया था। इसकी अगुवाई ऋतव्रत बनर्जी कर रहे हैं। पार्टी पूरी तरह से टूट के कगार पर है। सवाल ये कि अब ममता बनर्जी क्या करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: टीएमसी में टूट के बीच कल्याण बनर्जी ने दिखाए बगावती तेवर। अभिषेक बनर्जी को बताया घमंडी। ममता को अल्टीमेटम देकर कहा भतीजे को चुने या वफादार नेताओं। तृणमूल में बगावत की सुनामी। राज्यसभा से एक और सांसद का इस्तीफा। लोकसभा में 20 बागी सांसदों का स्पीकर को पत्र, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा बोले मैं ममता के साथ। सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका। आज याचिका पर सुनवाई से इनकार, कल तक करना होगा इंतजार। सिंघवी की दलील नाकाम, कांग्रेस की कल प्रदर्शन की तैयारी। और भारत तक खाड़ी युद्ध की आग। ओमान में अमेरिकी हमले की चपेट में एक और भारतीय जहाज। 3 दिन में तीसरे हमले में 3 भारतीयों की मौत। ईरान अमेरिका के बीच युद्ध विराम की उड़ी धज्जियां। साउथ ईरान समेत कई इलाकों में एयर स्ट्राइक। मिडिल ईस्ट के यूएस बेसिस पर IRGC का हमला। फाइटर जेट तबाह करने का दावा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद भारत।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। असरदार खबरों में आपका स्वागत। आज सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल की, जहां ममता बनर्जी की टीएमसी में भगदड़ मच गई। एक के बाद एक सांसदों के इस्तीफे हो रहे हैं। लोकसभा सांसदों में गुटबाजी। राज्यसभा के सांसदों की ओर से इस्तीफे दिए जा रहे हैं। आज भी एक सांसद ने इस्तीफा दे दिया। 8 मई से शुरू हुआ सिलसिला। पहले सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा छोड़ी और टीएमसी छोड़ी। उसके बाद कल सुष्मिता देव और टीएमसी और राज्यसभा को अलविदा कह दिया। आज प्रकाश बारिक ने इस्तीफा दे दिया। प्रकाश बारिक के इस्तीफे के बाद टीएमसी के राज्यसभा में अब सिर्फ 10 सांसद रह जाएंगे, और ये 10 सांसद भी कब तक रहेंगे, ये एक सवाल बना हुआ है। टीएमसी लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने भी अब बगावत का बिगुल फूंक दिया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी के कारण पूरी पार्टी बिखर गई है। अभिषेक बहुत घमंडी और असभ्य व्यक्ति हैं, बड़ों की इज्जत नहीं करते। कल्याण बनर्जी से सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया। अभिषेक के विरुद्ध उन्होंने कहा अभिषेक बनर्जी के चक्कर में पार्टी खत्म हो रही है, और यह सीधा हमला ममता बनर्जी पर है, क्योंकि पार्टी की सर्वेसर्वा तो ममता ही है।
2: He's such an arrogant person, and all the time this is insulting. This is not possible for me to appear in this matter. I said I will not appear.
3: So this is also mistrust. You are not just an advocate. You are also a senior member within the party.
2: This is humiliating. Does he not trust you? No. He never trusted me.
3: Never
2: trusted me. But you are right from 2022. You know what 2022? What I said about him. You know that.
3: Kolanda, you are on the front line.
2: Under compulsion, he was working. I was working with him. But he never trusted me. And he will never trust me.
3: But you are fighting.
2: I am fighting for Mamata Banerjee. I am not fighting for anybody. I am fighting for Mamata Banerjee and fighting for the people of the state of West Bengal and the party cadre. Who is he? Such an arrogant person. One must understand that for Abhishek Banerjee, the party has been destroyed today. We have lost it.
3: Everybody is saying this.
2: Everybody is saying, I have not said. I am in the back days of the party. I was with the Mamata Di. I said, again I am saying, I am with Mamata Di. But Mamata Di has to choose whether Abhishek Banerjee, she will keep or she will keep me.
3: That's an ultimatum.
2: Yes. I leave it to her. Her wisdom. I leave it to her wisdom.
3: So this is a dharam sankat for Didi.
2: Yes, I leave it to her wisdom. Whatever she will do, that's all right. If she says no, without Abhishek Banerjee, party cannot run, I have to take my other decision.
3: Because she has chosen Abhishek Banerjee right now. He's still the national.
2: That's all right. That today I am saying this.
0: Ya to Abhishek Banerjee ya main, aur ye tay karna hai Mamata ko. Mamata jisse kahengi wo rahega, main to nahi rahunga. Ye Kalyan Banerjee ne kaha. ममता बैनर्जी की टीएमसी में बगावत की आवाज बुलंद है। जो कभी ममता के खास सिपाह सालार हुआ करते थे, आज वो ममता को और उनकी पार्टी टीएमसी को छोड़कर जा रहे हैं या फिर पार्टी में रहकर ही अलग गुट बनाने में लगे हुए हैं। टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसद हैं। सूत्रों की खबर यह है कि 19 से 20 सांसदों ने अपना अलग गुट बना लिया है। ममता बैनर्जी की बेहद विशेष खास सयानी घोष भी बाकी गुट में शामिल हो गई।
4: आमी खुशी एकटा कारणे
5: क्या ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकल चुकी है? क्या टीएमसी में सिर्फ ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ही बचेंगे? क्या बंगाल चुनाव हारने के बाद टीएमसी का भी वही होगा जो महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना का हुआ है? पश्चिम बंगाल की सियासत की मुख्य विपक्षी पार्टी टीएमसी में भूचाल मचा है। हर गुजरते दिन के साथ सांसद विधायक पाला बदल रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं। जो कभी आज्ञाकारी भरोसेमंद थे, अब वो बगावत पर उतर आए हैं। सयानी घोष, प्रतिमा मंडल, माला रॉय, मिताली बाग, टीएमसी के बागियों में ये नाम भी जोड़ लीजिए। इन सांसदों ने टीएमसी के बागी गुट से हाथ मिला लिया है। ममता बनर्जी की टीएमसी में इस समय भगदड़ मची है। सांसदों में भगदड़, विधायकों में अफरा तफरी, कोलकाता से दिल्ली तक भागम भाग मची है। बुधवार को जब बीजेपी एनडीए के नेता मोदी के 12 साल का जश्न मना रहे थे, तो उसी दौरान ममता बनर्जी के 4 सांसद बीजेपी नेताओं से मिल रहे थे। जादवपुर की सांसद सयानी घोष, जयनगर की प्रतिमा मंडल, कोलकाता दक्षिण की माला रॉय और आरामबाग की सांसद मिताली बाग बागी खेमे में शामिल हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर बैठक हुई, जिसमें बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। करीब 1 घंटे तक चारों सांसदों और बीजेपी नेताओं की बैठक चलती रही। बागी गुट का दावा है कि 19 से 20 सांसद उनके संपर्क में हैं। टीएमसी के बागी लोकसभा में अलग गुट बनाना चाहते हैं। अभी लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। अगर ये बागी कामयाब हुए तो लोकसभा में टीएमसी नेता का पद भी उन्हें मिल जाएगा। बागियों में शत्रुघ्न सिन्हा और देव अधिकारी को लेकर भी चर्चाएं थी, लेकिन टीएमसी सूत्र कह रहे हैं कि ये दोनों दीदी के साथ हैं। लोकसभा में टीएमसी सांसद अलग गुट बनाने की कोशिश में है, तो वहीं राज्यसभा से भी टीएमसी को झटके पर झटका लग रहा है। पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दिया और अब सुष्मिता देव ने भी पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी है। सुष्मिता देव के पाला बदलने के पीछे असम के सीएम हिमंता बिस्वा की भूमिका अहम मानी जा रही है।
6: मैं इतनी बड़ी लीडर नहीं हूं कि मैं ममता दीदी पे कमेंट करूं, ठीक है? आज मैंने उनको छोड़ा है, कल मैं किसी और पार्टी में जा भी सकती हूं, पर मेरे से तो बहुत ज्यादा तजुर्बा उनको अनुभव।
7: और अभिषेक बनर्जी का कैसा लीडरशिप आपको लगता है?
6: कि अभिषेक बनर्जी पे कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। इट इज वेरी सिंपल। मैं आपको ये जरूर कह रही हूं कि ये मेरा राजनीतिक और व्यक्तिगत निर्णय है, और मैं मानती हूं कि अगर डेवलपमेंट की राजनीति मुझे आसाम में करनी है तो रास्ता यही है।
5: जो ममता बनर्जी मां माटी मानुष की राजनीति करने का दम भरती थी, उनकी पार्टी एक करारी हार में बिखरती जा रही है। पार्टी से बगावत करने वाले सांसद अपने ही नेता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। टीएमसी में आए इस तूफान को शांत करने की कोशिश ममता बनर्जी कर जरूर रही है, लेकिन सफलता कितनी मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद बागियों को भगोड़ा कह रहे हैं। कीर्ति आजाद बागियों पर प्रश्न उठा रहे हैं कि जब तक पार्टी के साथ थे तब तक सब ठीक ठाक था, चुनाव बीतते ही इन्हें भ्रष्टाचार याद आ रहा है।
8: अब एक लिस्ट आई है, 19 लोगों का नाम है और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नाम भी उसमें शामिल है।
9: आरोप तो नहीं लगाए? आरोप कैसे, कौन से आरोप?
8: रिबल
9: आप ये तो रिबल कहां से हो गए? भगोड़े हैं। रिबल कहां से हो गए? ये तो भगोड़े हैं। रिबल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए। ये तो हमारे सिंबल पे लड़े थे, तो रिबल कहां से हो गए? ये तो भगोड़े हैं। हमारे सिंपल पर लड़े तो ये आरोप ना आरोप लगाए हैं, जो सच्चाई है उसको रखा है। आरोप क्या होते हैं? आरोप तो होते हैं जिनको सिद्ध करना होता है। इसमें क्या सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना? जिस सिंपल पर तुम लड़े, तुम रहे, चुनाव के 30 दिन नहीं हुए और तुम्हें भ्रष्टाचार देखने लग गया। अगर भ्रष्टाचार तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रहा था तो तुमने रोका, और भ्रष्टाचार वाली बात थी तो काकुली दस्तीदार जो बात कर रही है भ्रष्टाचार की, वो तो 5 लाख रुपए खुद कैमरा में लेती पकड़ी गई। और भ्रष्टाचार छोड़कर, तथाकथित भ्रष्टाचार को छोड़कर, तुम साफ बीजेपी में जा रहे हो, क्लीन बीजेपी, जिस बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी तुम्हारा चीफ बना हुआ है, वो धार का सिंदूर जो अमित शाह ने बीजेपी के मांग में भरा है, वो भी तो 5 लाख रुपए लेता पकड़ा गया। आपके आज तक में दिखाया था भाई, सुबह से शाम तक दिखा रहे थे, सीबीआई लगा दी।
0: क्या अचानक से टीएमसी में बगावत हो गई है, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है या बात है जो ममता बनर्जी समझ नहीं पाई? टीएमसी के बाकियों का कहना है कि पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार है, संगठन में जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी है और ऐसे बहुत सारे कारण हैं। ये कोई एक दिन का गुस्सा बिल्कुल नहीं है।

0: बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी में जो तूफान आया है वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। कोलकाता में बागी विधायकों का भी अपना गुट बन गया है और विधायकों में बगावत का झंडा उठाया है ऋतव्रत बनर्जी ने। सबसे पहले ऋतव्रत ने ही टीएमसी में रहते हुए ममता और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका और फिर देखते ही देखते दिल्ली तक बात पहुंच गई। लेकिन सवाल ये है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी के विधायक और सांसद बगावत करने लगे? क्या बंगाल में टीएमसी हारी इसलिए ये भगदड़ मची है या फिर वजह कुछ और है?
1: दो साल में क्या ऐसा बदल गया कि आपको लगा कि पार्टी से अलग होना चाहिए, एक अलग गुट बनाना चाहिए?
2: देखिए, दो साल नहीं, काकुली घोष दोस्तीदार 40 साल से है, मैं 17 साल से हूँ। जो लोग अभी इस बार पहली बार जीत कर आए हैं, एक साल के लिए, दो साल के लिए, उसके लिए एक दो साल होगा, हम लोग के लिए इतना दिन, तो इतना दिन में तो कोई ना कोई अगर आप बोलेंगे जब जीते थे तब क्यों नहीं बोले थे, अभी हारने के बाद क्यों? जीतने के बाद भी बोले थे, बोलने की कोशिश किए थे, वहाँ पे सिस्टम नहीं है बोलने का, बोलने से सब रोकते हैं, जो नहीं बोलना है नहीं बोलना है, तो और अगर बोले भी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलते, आप 7 दिन 10 दिन इंतजार करो, कुछ नहीं।
0: ये शताब्दी रॉय है, ममता बनर्जी के विश्वास पात्र सांसदों में से एक। शताब्दी कहती है कि बगावत का ये बम एक दिन में नहीं बना, पार्टी के अंदर असंतोष तो बहुत पहले से था, उसकी अभिव्यक्ति अब हुई है। मतलब टीएमसी में बगावत का बारूद एक दिन में इकट्ठा नहीं हुआ। बागी नेताओं का आरोप है कि पार्टी नेतृत्व जमीनी कार्यकर्ताओं और नेताओं से कट गया है, भ्रष्टाचार और संगठनात्मक समस्याओं से जुड़ी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। ममता बनर्जी की सादगीपूर्ण राजनीति दिखावा है, पार्टी के अंदर बोलने नहीं दिया जाता था।
3: लगभग 20 सांसदों के एक असंतुष्ट गुट के उभरने की खबरें बताती हैं कि नाराजगी अब सिर्फ कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है बल्कि ये एक व्यापक रूप ले चुकी है। बीजेपी की चुनावी बढ़त और पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच कुछ विधायक और सांसद अपनी राजनीतिक रणनीति पर पुनर्विचार कर रहे हैं और दल बदल की इन कोशिशों को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद हवा दे रहे हैं।
0: एक तरफ बागी सांसद है, दूसरी तरफ विधायक। बागी विधायकों का दावा है कि उनके पास 60 से अधिक विधायकों का समर्थन है। जैसे ही विधानसभा सत्र शुरू होगा हम अपनी शक्ति दिखाएंगे। बंगाल टीएमसी के पास 80 विधायक हैं और अगर इनमें से 60 विधायक बागी गुट में चले गए तो ममता के हाथ से पार्टी का नेतृत्व भी निकल जाएगा।
4: मैं एक ही बात कहूंगा, जहां तक हमारे आंकड़ा का सवाल है वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। जो आंकड़ा हम लोग प्रेजेंट किए थे 2/3 से ज्यादा, काफी सारे ज्यादा, वो जो आंकड़ा है जब आप लोग से मिलेंगे विधानसभा का अधिवेशन जब होगा वो आंकड़ा ऊपर जाएगा और आगे जाएगा। एब्सोल्युटली देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ड्रॉपिंग, इनफैक्ट आई वोंट नेम, लेट्स वेट एंड वॉच एज द थिंग प्रोग्रेसेस, यू विल सी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द एमएलएस, आई वोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर्स, other elected representatives, I won't go into that, but as far as the MLAs are concerned, I am pretty confident, we are pretty confident, the numbers will go on increasing.
0: अब ममता बनर्जी के सामने एक नहीं कई चुनौतियां, बागियों से निपटना, पार्टी की खोई हुई जमीन वापस हासिल करना और अपने भतीजे अभिषेक को अपनी जगह पर सेट करना। लेकिन जिस तरह से बीजेपी बागियों को समर्थन दे रही है उससे ममता बनर्जी के लिए इन चुनौतियों से निपटना आसान नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।
5: और अब एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने अपनी कमर कस ली है। दिल्ली में यूपी के एनडीए दलों के साथ एक बड़ी बैठक हो रही है जिसमें बीजेपी के महासचिव सुनील बंसल इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। निषाद पार्टी के संजय निषाद, प्रवीण निषाद, SBSP के ओम प्रकाश और राजभर इस बैठक में शामिल है। ये बैठक दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में हो रही है और यहाँ से आगे की रणनीति, सीट समीकरण पर मंथन शुरू होगा। बड़ी खबर इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति से आ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, एनडीए और इंडिया गठबंधन ने भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मुलाकात हुई जिसमें माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने गठबंधन का प्लान दे दिया और अब कांग्रेस का जवाब भी आ गया। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत है और पार्टी अकेले सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। 8 जून की बैठक के बाद अखिलेश यादव ने राहुल, सोनिया और 24 दलों के सामने कहा था कि यूपी में समाजवादी पार्टी का संगठन अधिक मजबूत है और कांग्रेस को जमीनी सच्चाई समझकर सिर्फ जीतने वाली सीटें मांगनी चाहिए।
6: कांग्रेस की कितनी तैयारी है?
7: 400 दिनों पर पूरी मजबूती के साथ हमने सभी अपनी तैयारी की है। संगठन बूथ स्तर पर जीतने की क्या रणनीति हो सकती है उस पर हम काम कर रहे हैं।
6: कांग्रेस की कितनी तैयारी है?
7: 400 दिनों पर पूरी मजबूती के साथ हमने सभी अपनी तैयारी की है। संगठन बूथ स्तर पर जीतने की क्या रणनीति हो सकती है उस पर हम काम कर रहे हैं।
5: उत्तर प्रदेश में चुनावी सीजन नजदीक आते ही जात धर्म वाले मुद्दे बार बार सामने आने लगे। यूपी में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ व्यापक अभियान चला रही योगी सरकार ने अब नया आदेश अस्पतालों को लेकर दिया है। उत्तर प्रदेश के लोक भवन से आदेश जारी हुआ है कि राज्य के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एंटी कन्वर्शन सेल बनाया जाएगा। यूपी के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति और राज्य के गवर्नर के आदेश पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने राज्य के सभी संबद्ध संस्थानों को तुरंत प्रभाव से एंटी कन्वर्शन सेल बनाकर अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। ये सेल कैंपस में चल रही किसी भी तरह की संदिग्ध एंटी कन्वर्शन एक्टिविटी गतिविधि पर नजर रखेगा और तुरंत कार्रवाई करेगा।
8: लखनऊ के KGMU में अवैध धर्मांतरण का रैकेट, लखनऊ की PGI में धर्मांतरण का आरोप, कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में जांच, गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज में जांच, बस्ती मेडिकल कॉलेज में जांच, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर रमीजुद्दीन का सिंडिकेट, PGI में कर्मचारी की बेटी लापता और शामली में धर्मांतरण के चंगुल में दवा कारोबारी का बेटा। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और चिकित्सा सेवा से जुड़े संस्थानों में अवैध धर्मांतरण से लेकर लव जिहाद तक के इतने मामले आ रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश के लोक भवन ने इसकी रोकथाम और निगरानी के लिए बड़ा फैसला लिया है। यूपी की गवर्नर और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के निर्देशानुसार OSD सुधीर M. बोबडे ने सूचना जारी की, जिसके बाद यूपी में सभी मेडिकल कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की नोडल संस्था अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुल सचिव ने तत्काल प्रभाव से अनुपालन आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि सभी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों को अपने परिसर में तुरंत धर्मांतरण रोकथाम सेल का गठन करना होगा और विश्वविद्यालय को इसकी रिपोर्ट सौंपनी होगी। ये सेल हॉस्टल्स, कैंपस के छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मचारियों के बीच संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगा और सेल की ओर से कैंपस में विशेष अभियान चलाकर सभी हितधारकों को उनके कानूनी अधिकारों, नियमों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना अनिवार्य होगा। धर्मांतरण के दबाव या किसी भी संदिग्ध तत्व से जुड़ी शिकायत मिलने पर कॉलेज प्रशासन को बिना देरी किए नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।
9: अवैध धर्मांतरण के सिंडिकेट के खुलासे के बाद वहां पर कई संदिग्ध मुस्लिम डॉक्टरों की जो सूची है वो नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने SCF को सौंपी थी, जिसके बाद कई सरकारी संस्थानों में जो संदिग्ध मुस्लिम डॉक्टर हैं उनके रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। SCF पूरी तरीके से संस्थान में उन संदिग्ध मुस्लिम डॉक्टरों के दस्तावेज और रिकॉर्ड खंगाल कर उनकी जांच कर रही है।
8: इस सूची में बस्ती मेडिकल कॉलेज, कानपुर मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज समेत कई संस्थानों के डॉक्टरों के नाम और नंबर शामिल हैं। आरोप है कि ये डॉक्टर अलग अलग जगहों पर धर्मांतरण गतिविधियों में शामिल रहे हैं। SDF को कई ऐसी संदिग्ध चैट्स भी सौंपी गई हैं, जिसमें अवैध धर्मांतरण की कोशिश की आशंका है। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही योगी सरकार ने चुनाव से पहले इस मामले में और सख्ती कर दी है, क्योंकि यूपी में धर्मांतरण विरोधी कानून के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि यूपी एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत अब तक कुल 835 अधिक आधिकारिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 1682 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें ज्यादातर मामले बहला फुसला कर, शादी का झांसा देकर और फर्जी पहचान के साथ दोस्ती करके प्रेम जाल में फंसाने के आरोप हैं, जिसमें पीड़ित लड़कियों या उनके परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: और अब खबर, राज्यसभा चुनाव और कांग्रेस की हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द होने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कांग्रेस ने कल रात भर याचिका तैयार की। सुबह करीब 2 बजे के आसपास अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में याचिका दायर कर दी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
8: मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार का पर्चा रद्द हुआ। आरोप ये कि हलफनामे में जानकारी छुपाई गई। इसी तरह की गड़बड़ी झारखंड में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के पर्चे में थी, लेकिन झारखंड में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को संशोधन का समय मिल जाता है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो जाता है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज करने की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक आ गई है। चुनाव आयोग से जब तुरंत राहत नहीं मिली तो मीनाक्षी नटराजन के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अर्जी दाखिल की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से भी कांग्रेस को राहत नहीं मिली। मीनाक्षी नटराजन की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि एक गैर सूचीबद्ध मामला है जिसे तत्काल सुनना आवश्यक है, इसमें देरी नहीं की जा सकती। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी मेंशनिंग कल सुनी जाएगी। जवाब में सिंघवी ने कहा कि ये मामला कल तक इंतजार नहीं कर सकता, ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का केस है, अगर आज नहीं सुना गया तो चुनाव आयोग परिणाम घोषित कर देगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो चुनाव से संबंधित विवाद है। इस पर सिंघवी ने कहा कि मामले को भले ही कल सूचीबद्ध कर दें, लेकिन तब तक परिणाम घोषित न करने का निर्देश तो दें।
10: कल तक सुनवाई होने से उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव होने दिया जाए, रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही चुनाव होने दिया जाए, लेकिन उसका रिजल्ट रोक कर रखा जाए अदालत के अगले आदेश तक। अदालत इस मामले में सुनवाई करे और सुनवाई के बाद जो भी आदेश होगा उसकी परिपालना की जाए। यानी अदालत अगर मीनाक्षी नटराजन के कृत्य को अगर ये मानती है कि वो उचित नहीं था तो उनको रिजल्ट से बाहर कर दिया जाए, लेकिन अभी चुनाव नहीं कराने से चुनाव में उन्हें हिस्सा नहीं लेने देना उनके अधिकारों का हनन है।
8: कांग्रेस का तर्क है कि जो केस रजिस्टर्ड ही नहीं है उसके आधार पर नामांकन कैसे रद्द कर सकते हैं। नामांकन रद्द होने से नाराज कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली से भोपाल तक विरोध प्रदर्शन किया।
11: शुक्रवार को भोपाल में बड़े आंदोलन की धमकी भी दी है। आरोप बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाया कि सब मिले हुए हैं।
12: राजधानी भोपाल में इकट्ठा हुए हैं और इस उपवास के जरिए मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द हुआ है, न केवल उसका विरोध जता रहे हैं बल्कि साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने राजनीति से प्रेरित होकर के मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को जानबूझ करके रद्द किया है।
5: इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.
15: Starting a business? Put it in the right hands with LegalZoom. Because the last thing you'd want to do is let it fall into the wrong hands. With easy-to-use tech and 25 years of experience, LegalZoom offers personalized support to help ensure your business is formed accurately and complies with state regulations. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
16: Need better internet?

0: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena, ESPN Radio.
1: How they looked after game one.
2: I mean, they were frustrated.
0: The Daily.
3: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
0: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
4: আমি খুশি একটা কারণে
5: क्या ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकल चुकी है? क्या टीएमसी में सिर्फ ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ही बचेंगे? क्या बंगाल चुनाव हारने के बाद टीएमसी का भी वही होगा जो महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना का हुआ है? पश्चिम बंगाल की सियासत की मुख्य विपक्षी पार्टी टीएमसी में भूचाल मचा है। हर गुजरते दिन के साथ सांसद विधायक पाला बदल रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं। जो कभी आज्ञाकारी भरोसेमंद थे, अब वो बगावत पर उतर आए हैं। सयानी घोष, प्रतिमा मंडल, माला रॉय, मिताली बाग, टीएमसी के बागियों में ये नाम भी जोड़ लीजिए। इन सांसदों ने टीएमसी के बागी गुट से हाथ मिला लिया है। ममता बनर्जी की टीएमसी में इस समय भगदड़ मची है। सांसदों में भगदड़, विधायकों में अफरा तफरी, कोलकाता से दिल्ली तक भागम भाग मची है। बुधवार को जब बीजेपी एनडीए के नेता मोदी के 12 साल का जश्न मना रहे थे, तो उसी दौरान ममता बनर्जी के 4 सांसद बीजेपी नेताओं से मिल रहे थे। जादवपुर की सांसद सयानी घोष, जयनगर की प्रतिमा मंडल, कोलकाता दक्षिण की माला रॉय और आरामबाग की सांसद मिताली बाग बागी खेमे में शामिल हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर बैठक हुई, जिसमें बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। करीब 1 घंटे तक चारों सांसदों और बीजेपी नेताओं की बैठक चलती रही। बागी गुट का दावा है कि 19 से 20 सांसद उनके संपर्क में हैं। टीएमसी के बागी लोकसभा में अलग गुट बनाना चाहते हैं। अभी लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। अगर ये बागी कामयाब हुए तो लोकसभा में टीएमसी नेता का पद भी उन्हें मिल जाएगा। बागियों में शत्रुघ्न सिन्हा और देव अधिकारी को लेकर भी चर्चाएं थी, लेकिन टीएमसी सूत्र कह रहे हैं कि ये दोनों दीदी के साथ हैं। लोकसभा में टीएमसी सांसद अलग गुट बनाने की कोशिश में है, तो वहीं राज्यसभा से भी टीएमसी को झटके पर झटका लग रहा है। पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दिया और अब सुष्मिता देव ने भी पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी है। सुष्मिता देव के पाला बदलने के पीछे असम के सीएम हिमंता बिस्वा की भूमिका अहम मानी जा रही है। जो ममता बनर्जी मां माटी मानुष की राजनीति करने का दम भरती थी, उनकी पार्टी एक करारी हार में बिखरती जा रही है। पार्टी से बगावत करने वाले सांसद अपने ही नेता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। टीएमसी में आए इस तूफान को शांत करने की कोशिश ममता बनर्जी कर जरूर रही हैं, लेकिन सफलता कितनी मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।

कल्याण बैनर्जी ने दिखाए बगावती तेवर, अभिषेक बैनर्जी को बताया घमंडी, ममता को अल्टीमेटम देकर कहा भतीजों को चुन ले या वफादार नेताओं को।

हाँ बोले मैं ममता बैनर्जी के साथ। राज्यसभा

अर्जी पर सुनवाई आज इनकार, कल तक का इंतजार, सिंघवी की दलील नाकाम, कांग्रेस की कल प्रदर्शन की तैयारी। ओमान में अमेरिकी हमले की चपेट में एक और भारतीय जहाज, तीन दिन के तीसरे हमले में तीन हिंदुस्तानियों की मौत, अमेरिकी अधिकारियों को विदेश मंत्रालय ने किया समन।

0: ईरान अमेरिका में आर पार, दूसरे दिन जंग जोरदार। अमेरिकी टॉप हॉक चले ईरान के शहर दहले, चुप नहीं बैठा ईरान, मिसाइल ड्रोन से घमासान। कुवैत बहरीन से जॉर्डन तक ईरान का पलटवार। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल प्रहार। ट्रंप की धमकी, डील नहीं तो ईरान में तबाही। मध्य पूर्व में भड़की लड़ाई, ट्रंप बोले पसंद है महंगाई। ईरान ने ठप किया हॉर्मुज, भड़के महायुद्ध के शोले।
1: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। लगातार दूसरी रात अमेरिका की सेना ने ईरान के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले किए। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब चेतावनी दे दी है कि अगर कोई शांति समझौता नहीं हुआ तो हमले और तेज हो जाएंगे। इसके जवाब में ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले किसी भी जहाज को अब निशाना बनाने की धमकी दे दी है। अमेरिका की सेना की सेंट्रल कमांड ने बताया कि तेहरान में आधी रात के बाद कुछ देर के बाद ये हमले शुरू हुए और ये हमले लगभग 4 घंटे चले। कमांड ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इन हमलों में ईरान भर में मौजूद सैन्य निगरानी क्षमताएं, संचार प्रणालियां और वायु रक्षा ठिकाने शामिल थे जिन्हें ध्वस्त किया गया। सेंटकॉम ने कहा कि ये हमले ईरान की बिना वजह और लगातार जारी आक्रामकता के जवाब में दिए गए हैं। सेंटकॉम ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ टोमहॉक क्रूज मिसाइल दागी हैं। अमेरिकी मरीन कोर, वायुसेना और नौसेना ने उन ईरान के ठिकानों पर सटीक हमले किए जिनसे अमेरिका की सेना और हॉर्मुज से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल जहाजों को बड़ा खतरा था।
2: But we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because
1: तो अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान आपने सुना कि बीती रात जबरदस्त पिटाई की या ठुकाई की ईरान की, लेकिन ये हमले जारी रहेंगे अगर ईरान की तरफ से समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होते, क्योंकि अमेरिका का मानना यह है कि अमेरिका ईरान अमेरिका को बरगला रहा है। अमेरिका की ओर से किए गए हमलों के बाद ईरान की मीडिया ने खबर दी है कि देश के दक्षिणी हिस्से में यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास बड़े धमाके हुए हैं। यह वही इलाका है जहां अमेरिका की सेना ने मंगलवार को एयर डिफेंस रेडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया था। ईरान के सूत्रों ने वहां के मीडिया को बताया कि केशम आइलैंड, खरगन और सिरिक में दुश्मन के प्रोजेक्टाइल यानी मिसाइल और रॉकेट से नए हमले हुए हैं। यह हमले एक दूसरे पर लगातार हो रहे सिलसिले में सबसे ताजा घटना है। इन हमलों ने उस नाजुक युद्ध विराम को और ज्यादा कमजोर कर दिया है जिसे अप्रैल की शुरुआत में ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल के युद्ध को रोकने के लिए बाकायदा घोषित किया गया था। हमलों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के एक रिपोर्टर को बताया कि उन्होंने सीधे ईरान के अधिकारियों से बातचीत कर ली थी जिन्होंने उनसे देश पर हमले रोकने के लिए कहा था और उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा जल्द हो जाएगा, लेकिन इसके बाद ईरान के सरकारी मीडिया ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया कि ईरान के किसी भी अधिकारी की बात सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह माना कि ट्रंप लगातार झूठ फैला रहे हैं और ईरान के साथ युद्ध से बचने का बहाना बना रहे हैं क्योंकि ईरान इस युद्ध में झुकेगा नहीं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और यह खबर ओमान से आ रही है। ओमान के शिनास बंदरगाह के पास कमर्शियल ऑयल टैंकर एमटी जलवीर पर भीषण हमला हुआ है। हमले का शिकार हुए इस तीसरे टैंकर पर 20 भारतीय नाविक सवार हैं, 20 भारतीय सेलर हैं इस पर। धमाके के बाद जहाज का जो इंजन रूम है और चिमनी दोनों में, जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, भीषण आग लगी हुई है। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि यह घातक हमला अमेरिका की तरफ से हुआ या ईरान की तरफ से, क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और ओमान के तटीय इलाके में पिछले 72 घंटों से भीषण बमबारी और गोलीबारी अमेरिका और ईरान के बीच हो रही है। 72 घंटों के भीतर भारत के क्रू वाले जहाजों पर यह तीसरा बड़ा हमला है। कल ही एक टैंकर अमेरिका की ओर से दागी गई मिसाइल का शिकार हो गया था, जिस पर सवार 3 भारतीय नाविकों की मौत की आधिकारिक पुष्टि अब कर दी गई है। मस्कट में मौजूद भारतीय दूतावास ने बयान जारी कर कहा कि वो ओमान के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और हालात पर बेहद करीबी नजर है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल सभी भारतीय, जो 20 भारतीय इस दूसरे जहाज पर हैं, उनको सुरक्षित बताया जा रहा है। भारतीय क्रू वाले जहाजों पर लगातार हो रहे हमले पर भारत के विदेश मंत्रालय का एक बयान भी सामने आया है। क्या है यह बयान, हम आपको वो भी सुनवाते हैं।
3: We've seen that there have been several incidents involving Indian seafarers in West Asia in the last few days. We attach high importance to the welfare and well-being of our seafarers community. We need not re-emphasize this point. Yesterday we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which unfortunately we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest. The continuing incidents.
1: और ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में मध्य पूर्व में 5 सैनिक के ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के इस्लामिक सेना यानी IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया कि उसने जॉर्डन में, जो वहां पर मुवाफक अल सॉल्टी एयरबेस है, उस पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया। कुवैत के अहमद अल जबेर एयरबेस और अली अल सलेम एयरबेस दोनों पर न केवल ड्रोन से बल्कि मिसाइलों से हमला किया गया। ईरान ने बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट, 5वीं समुद्री बेड़े के मुख्यालय और शेख ईसा एयरबेस पर भी हमला किया। IRGC का दावा यह है कि उसने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर बड़ी संख्या में अमेरिकी फाइटर जेट्स को नष्ट भी कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। ईरान की IRGC का दावा है कि उसने 12 बैलिस्टिक मिसाइल से जॉर्डन में, जो अल अजराक एयरबेस है, उस पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों को और विमानों की रक्षा में या उसको रिफ्यूल करने के लिए जो विमान है उनको भी निशाना बनाया। हमले की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ईरान की मिसाइलों को नष्ट करते दिखा तो रहा है, लेकिन ईरान का दावा बिल्कुल अलग है। उसने कहा कि अमेरिका के कई जहाज और हैंगर दोनों नष्ट हुए हैं। अब प्रश्न यहां ये उठता है कि दरअसल अमेरिका और ईरान के इस युद्ध में, जिसका आज दूसरा दिन है, ईरान बार बार अमेरिका को तो टारगेट कर रहा है, 3 देशों पर खासतौर पर हमले क्यों हो रहे हैं? जॉर्डन, कुवैत और बहरीन। आखिर क्यों ईरान इस बार बाकी अरब देशों पर वार नहीं कर रहा है? और मैं आपको ये मानचित्र पर दिखाना चाहता हूं, इसके पीछे ईरान की कितनी सोची समझी एक सैन्य रणनीति है, एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी के तहत यह हो रहा है। दरअसल ईरान का जो टारगेट नंबर 1 है, सबसे पहले और सबसे बड़ा हमला जो हुआ वो बहरीन पर हुआ। ईरान ने इस छोटे से द्वीप देश को पहले बड़े हमले के लिए क्यों चुना? इसकी वजह यह है कि अमेरिका की नौसेना का जो 5वां बड़ा नाविक बेड़ा है या 5th फ्लीट है, उसका हेडक्वार्टर्स बहरीन में है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट का मुख्यालय है। आसान भाषा में समझे तो पूरे फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ के इलाके में अमेरिका के जितने भी जंगी जहाज हैं, पनडुब्बियां हैं, समुद्री ऑपरेशन होते हैं, उसका जो कंट्रोल रूम है, उसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वो बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स पर है। ईरान ये जानता है कि अगर अमेरिका को समंदर के रास्ते से उस पर हमला करना है तो बहरीन से ही इसके आदेश आएंगे या इसकी इसका कोऑर्डिनेशन होगा, तो इसीलिए सबसे पहले उसने बहरीन को टारगेट किया। दूसरे दिन भी ईरान ने बहरीन पर हमला किया और अमेरिका की जो समुद्री रीढ़ है उस पर चोट की। यह ईरान का एक बेहद प्रमुख रणनीतिक और एक तरह से कहा जाए तो प्रतीकात्मक सिंबॉलिक, स्ट्रेटेजिक और सिंबॉलिक दोनों वार है। अब चलिए हम आपको दूसरे टारगेट के बारे में बताते हैं, यानी टारगेट नंबर टू, कुवैत। कुवैत को निशाना बनाकर ईरान ने अमेरिका के हवाई पंख काटने की रणनीति को अपनाया है। कुवैत में अमेरिका का अली अल सलेम एयरबेस है, बहुत महत्वपूर्ण एयरबेस है ये। इसके अलावा कई और अमेरिकी सैन्य सुविधाएं भी, उनका आरएनआर यानी रेस्ट और रिक्यूपरेशन का सेंटर भी कुवैत में है। अगर अमेरिका ईरान के भीतर घुसकर बमबारी करता है तो उसके ज्यादातर लड़ाकू विमान कुवैत से ही उड़ान भरते हैं। कुवैत सबसे मुफीद एयर स्ट्राइक्स के लिए लॉन्च पैड है और इसीलिए ईरान ने कुवैत पर हमला करके अमेरिका को सीधा संदेश दिया कि अगर तुम्हारी धरती से, यानी ये संदेश कुवैत को भी है और अमेरिका को भी है, कि अगर इस इलाके से ईरान पर हमला हुआ और लड़ाकू विमानों से हमला हुआ तो फिर कुवैत की धरती को राख में तब्दील कर दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक टारगेट, जॉर्डन। जंग के दूसरे दिन ईरान ने जॉर्डन पर अपनी सबसे लंबी दूरी तक वार करने वाली मिसाइल, यानी लॉन्ग रेंज मिसाइल, इसका इस्तेमाल किया। और क्यों? क्योंकि जॉर्डन इज़राइल का एक तरह से देखा जाए तो न केवल पड़ोसी है बल्कि भौगोलिक बॉडीगार्ड भी है। जॉर्डन के अजराक एयरबेस में न केवल अमेरिका के सैनिक तैनात हैं बल्कि वहां अमेरिका का जो सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, थर्ड टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस शील्ड, वो थर्ड सिस्टम वो जॉर्डन में तैनात है। और जॉर्डन की लोकेशन ऐसी कि ईरान से इसराइल पर अगर हमला करना है तो वो हर मिसाइल जॉर्डन की हवाई सीमा को पार करते हुए जाएगी और इसीलिए जो थर्ड सिस्टम है वो वहीं पर इनकमिंग मिसाइल यानी इसराइल की तरफ आ रहे खतरे को ध्वस्त कर सकता है। जॉर्डन पर अमेरिकी सिस्टम की मदद से ईरान की मिसाइलों को रास्ते में ही ध्वस्त कर दिया जाता है, यानी जॉर्डन इसराइल और अमेरिका दोनों के लिए वो सुरक्षा कवच है जिसे तोड़े बिना इसराइल का ईरान कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए ईरान ने इस समय अपनी सबसे घातक और लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल जॉर्डन में इस सुरक्षा कवच को भेदने में या ध्वस्त करने में प्रयास किया। ईरान असल में जॉर्डन, कुवैत या बहरीन के नागरिकों को निशाना नहीं बना रहा है, वो मिडल ईस्ट में फैले अमेरिका के उस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो आमूलचूल सुरक्षा अमेरिका और इसराइल की दर्जन भर से ज्यादा मिलिट्री बेसिस से होती है, उस मिलिट्री नेटवर्क को जड़ से उखाड़ देना चाहता है, नेस्तनाबूद करना चाहता है, ध्वस्त करना चाहता है, ताकि ईरान चारों तरफ से जो घिरा हुआ है वो एक रास्ता निकाल सके। यही है ईरान का वो 3-point गेम प्लान, जिसकी वजह से जंग के दूसरे दिन तीन देशों पर, पड़ोसी देशों पर बारूद बरस रहा है। एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है, ईरान ने एक और बड़ा इस समय दावा किया है। उसने दावा किया कि जॉर्डन में उसने अमेरिका के तीन सबसे आधुनिक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को मिसाइल से उड़ाने का बड़ा दावा किया है। ईरान ने बताया कि जैसे ही यह कंफर्म हो गया कि अमेरिकी फाइटर जेट्स इस बेस पर हैं, तो उसने अपनी सॉलिड फ्यूल मिसाइल दागी और उन्हें निशाना बनाया। इसके अलावा उसने हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया बेस से ही अमेरिकी जासूसी विमान P-8, ये लॉन्ग रेंज मैरिटाइम रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट है, इस P-8 को ट्रैक किया। उसने दावा किया कि अमेरिका के बेहद महंगे मिलिट्री साजो सामान इन हमलों में ध्वस्त हुए हैं और अब अमेरिकी अधिकारी जो हैं इस बड़े नुकसान को छिपाने में जुटे हुए हैं। और यह आपको दिखाता है कि ईरान झुका नहीं है, ईरान लगातार पलटवार कर रहा है और बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति के तहत तेज पलटवार कर रहा है। अच्छा, इस परिस्थिति में किसी भी देश का नेता ये नहीं कह सकता कि अगर जनता की जेब जल रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो उसे वो इन्फ्लेशन पसंद है। ये नहीं कह सकता कि महंगाई उसे पसंद है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर हैं, तो ये कहना भी संभव है। महंगाई ने अब अमेरिका में आम नागरिकों की कमर तोड़ दी है। आंकड़े समय डरा रहे हैं, लोग परेशान हैं, ईंधन का दाम बढ़ रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फरमा रहे हैं कि मुझे तो महंगाई पसंद है। और क्या यह नहीं दिखाता कि यह सत्ता के नशे में चूर एक बड़े नेता आम जनता के जले पर किस तरह से नमक इस समय छिड़क रहा है?
2: You know what I really love? I love the inflation.
4: ट्रंप की ओर से छेड़े गए ईरान युद्ध ने अमेरिकी लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। मई महीने में अमेरिका की महंगाई दर 4.2% पर पहुंच गई। अप्रैल 2023 के बाद से आम अमेरिकी सबसे भयंकर महंगाई की मार झेल रहे हैं। घर का बजट बिगड़ चुका है, मिड टर्म चुनाव सिर पर हैं और जनता त्राही त्राही कर रही है। ऐसे में जब एक रिपोर्टर ने राष्ट्रपति से पूछा कि क्या वो इस महंगाई से चिंतित हैं, तो ट्रंप का जवाब सुनकर अर्थशास्त्रियों से लेकर आम जनता तक का सिर चकरा गया।
5: Mr. President, about the latest inflation number which came out this morning, could that be a
2: no? I love it. The numbers were great. You know what I really love? I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now, something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now. We took out the other night 22 ships. Late at night with no lights, because they don't have any radar, because we blasted the crap out of it. We took out, that's why oil's $85 a barrel.
4: ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने 2024 में अपने चुनाव प्रचार के दौरान महंगाई को परास्त कर लोगों को राहत देने का वादा किया था।
6: We will end inflation and make America affordable again. We're going to get the prices down. We have to get them down. It's too much. Groceries, cars, how everything. We're going to get the prices down.
7: But prices will come down. You just watch. They'll come down and they'll come down fast. Not only with insurance, with everything.
6: Oh, tomorrow I will end inflation. We will cut your taxes. End inflation.
4: और अब ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे महंगाई पसंद है। चुनाव में इसी महंगाई को खत्म करने का ढिंढोरा पीटने वाले ट्रंप अब इसके मुरीद हो गए हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए ट्रंप अब सारा ठीकरा ईरान युद्ध पर फोड़ रहे हैं और अपनी वाहवाही लूटने के लिए वो हॉलीवुड के किसी बी ग्रेड फिल्म जैसी कहानी सुना रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि उनकी सेना ने सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर होर्मुज जलडमरू मध्य से 100 मिलियन बैरल तेल निकाल लिया है। लेकिन ट्रंप का ये मास्टर स्ट्रोक असल में कितना बड़ा मजाक है, जरा इसका गणित समझिए। युद्ध से पहले इस रास्ते से हर रोज 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता था। यानी ट्रंप का ये 100 मिलियन बैरल का महान रेस्क्यू ऑपरेशन दुनिया के सिर्फ 5 दिन की तेल की आपूर्ति के बराबर है, बस 5 दिन। और इस 5 दिन के जुगाड़ पर ट्रंप ऐसे इतरा रहे हैं जैसे उन्होंने पूरी दुनिया का आर्थिक संकट सुलझा दिया हो। ट्रंप के इस अहंकार और बेतुकेपन ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक ब्रह्मास्त्र दे दिया। डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने तुरंत कहा, आपके प्रति ट्रंप की बेरुखी की कोई सीमा नहीं है। हद तो तब हो गई जब खुद ट्रंप के अपने मंत्री को उनका बचाव करने में पसीने छूट गए। सुनिए, जब अमेरिकी संसद की कमेटी ने ट्रंप का महंगाई पसंद है वाला ऑडियो प्ले किया तो ट्रंप के ऊर्जा मंत्री की कैसी हालत हुई?
8: I don't think we've heard this.
9: I love the inflation.
10: Honestly, did you know that the United States was taking millions of gallons of oil from Iran?
8: I'm unaware.
10: So do you think that the president is lying based on the audio that you just heard? And I will send it to you in case you say you didn't hear it.
8: Oh, no, I do not think the president's lying. I think the president's talking casually about our efforts to stop the flow of Iranian
10: oil. And
8: we're
10: stopping those tankers. Do you think that war is casual? Do you think that it is appropriate to talk casually about war?
8: He treats this war deadly serious, and he has worked tirelessly on this war.
10: Mr. Secretary, you just said that he was speaking casually about this. He speaks
8: 20 hours a day. He speaks 20 hours a day in different styles for different audiences.
10: He is the president of the United States of America. He is the commander of chief who is responsible for 13 service members who have died and hundreds more who are injured. So
4: ट्रंप के मंत्री ने यह कबूल किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति 20 घंटे में इधर उधर की बातें करते हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनके गुप्त मिशन से तेल $90 से नीचे आ गया, जबकि बुधवार को कच्चे तेल के दाम गिरने की बजाय 4% उछल कर $92 प्रति बैरल पर बंद हुए। एक तरफ बाजार ने जहां ट्रंप के झूठ का गुब्बारा फोड़ दिया, वहीं उनके मंत्री ने संसदीय समिति के सामने ये कबूल कर दिया कि ट्रंप दिन भर फेंकते रहते हैं। आज तक ब्यूरो।
1: और अमेरिका के राष्ट्रपति का यह कहना कि उन्हें इन्फ्लेशन पसंद है, इसे लेकर अमेरिका में खासी नाराजगी है। इस खबर पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand.
12: From New Mexico's high desert, Vara Winery and Distillery creates sparkling wines that have earned their place at any table. Shop our award-winning collections at varawines.com. That's varawines.com.
13: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
9: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.
15: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
16: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
17: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos, hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in. For unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.

0: The action never stops, and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first, welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
1: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल,
2: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी?
1: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल,
2: सीबीएसई के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
1: छात्रों को दिया मंच,
2: उज्मा हमारे साथ कोटा से और अदिति मुंगेर से हैं और तानिया कोटा से हैं और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
3: मैम ये देखिए, इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
4: आईआईटी मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
1: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर,
2: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक, और अब सरकार की तरफ से सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
1: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: महिलाओं को बनाने में दशकों लगे, उन्हें कमजोर करने की कोशिश। आज देश में बेरोजगारी, परीक्षा घोटाले जैसी गंभीर चुनौतियां। राज्यसभा चुनाव में गुजरात से बीजेपी के चारों उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत। एमपी में भी 3 सीट पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने बाजी मारी। राजस्थान की 2 पर बीजेपी, 1 की जीत पर कांग्रेस विजयी। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा में पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। यूपीएसटीएफ के शिकंजे में मुख्य सरगना, जांच और पूछताछ जारी। ओमान में अमेरिकी हमले की चपेट में एक और भारतीय जहाज। 3 दिन के तीसरे हमले में 3 भारतीयों की मौत। यूएस अधिकारियों को विदेश मंत्रालय ने किया समन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद भारत की।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में इस वक्त क्या ताजा तस्वीर है, क्योंकि जो तस्वीर आ रही है वो इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। रावलाकोट की सड़कें, वहां पर इस समय जो हो रहा है वो केवल एक विरोध या प्रदर्शन नहीं है, वो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ एक खुला संग्राम है। जैसे जैसे रात ढल रही थी, आवाम का गुस्सा वहां भड़क रहा था। आज भी हजारों हजार लोग पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की सड़कों पर है। एक तरफ बंदूकें तो दूसरी तरफ कश्मीरी लोग पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में। बंदूक की नोक पर कश्मीर के इस हिस्से पर कब्जा करने वाले पाकिस्तान को अब पाकिस्तान की औकात दिखाई दे रही है। इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की फौज और सरकार पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर की जनता से अब तक का सबसे उग्र, सबसे तेज चुनौती का सामना वो कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि रावलाकोट से जो विद्रोह की चिंगारी उठी, उसकी गूंज पूरे पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर ही नहीं, पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। देखिए हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट।

सुनिए इन नारों को, ये नारे किसी आम प्रदर्शन के नहीं हैं, ये सीधे सीधे उस अवैध कब्जे को चुनौती हैं, जिसे पाकिस्तान दशकों से दुनिया के सामने अपना बताता आया है। पीओजेके का रावलकोट रविवार की पूरी रात गोलियों, आंसू गैस के गोलों और सेना के बूटों की आवाज से नहीं बल्कि आवाम की दहाड़ से गूंजता रहा। कई जिलों से आए हजारों लोग रात भर सड़कों पर डटे रहे, बच्चे बूढ़े जवान, सबका एक ही संकल्प है, अब हुक्मरानों की तानाशाही नहीं चलेगी। यह गुस्सा अचानक नहीं भड़का है, ये लावा है जो अब फट चुका है। 7 और 8 जून को रावलकोट ने वो खूनी मंजर देखा जिसने आवाम के सब्र का बांध तोड़ दिया। प्रतिबंधित ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के आह्वान पर जब जनता आर्थिक तंगी, कमर तोड़ महंगाई और अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरी तो पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उन पर सीधे गोलियां बरसाई। कई बेगुनाह नागरिक मारे गए, दर्जनों घायल हुए, लेकिन फौज के इस जुल्म ने आदमी घी का काम किया। अब रावलकोट की सड़कों पर सीधे पाकिस्तानी सेना की वर्दी को ललकारा जा रहा है।

रक्षा विशेषज्ञों की माने तो पीओजेके के इतिहास में ये अब तक का सबसे हिंसक और सबसे संगठित आंदोलन बन चुका है। पहले लोग सिर्फ आटे और बिजली के बिलों पर रोते थे, लेकिन इस बार बात आर पार की लड़ाई पर आ गई है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि जब तक उनके शहीदों को इंसाफ नहीं मिलता, जब तक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के अत्याचारों की स्वतंत्र जांच नहीं होती, तब तक ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। ये आंदोलन अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बस से बाहर हो चुका है। रावलकोट के इस महा आंदोलन ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के उस खोखले प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाकर रख दी है, जिसमें वो कश्मीरियों का हमदर्द बनने का ढोंग करता है। मंच से स्थानीय नेताओं ने सीधे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और वैश्विक समुदाय से अपील की है कि वो पीओजेके में हो रहे इस नरसंहार और जुल्म का संज्ञान। पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है, एक तरफ बंगाली है, दूसरी तरफ वो आवाम खड़ी है जिसे उसने अब तक गुलाम समझ रखा था।

0: ये नारा अपने आप में उस पूरी कहानी को बयान कर रहा है। पाकिस्तान ने बंदूक के दम पर जिस जमीन को हथियार था, आज उसी जमीन के मालिक खड़े होकर कह रहे हैं कि कब्जा नामंजूर है। रावलकोट की सड़कों पर उमड़ा ये जंग सैलाब इस्लामाबाद के लिए आखिरी चेतावनी है। जब आवाम ठान लेती है तो बड़ी से बड़ी तानाशाही हुकूमतें भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। पीओजेके में लगी ये आग अब बुझने वाली नहीं है, क्योंकि इस बार आसिम मुनीर की फौज के सामने सिर पर कफन बांधे आवाम खड़ी है। आज तक ब्यूरो।
1: 1947 से दुनिया के अलग अलग मंच पर जाकर भारतीय कश्मीर में दमन का झूठा रोना रोने वाला पाकिस्तान, उसका असली खूनी चेहरा इस समय दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। अच्छा, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हक मांगती पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की जनता को आज पाकिस्तान ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। हम आपको अब दिखाते हैं कि कैसे पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में जो प्रदर्शन हो रहा है, पाकिस्तान की सेना ने उनको आतंकी बता दिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फौज के दमन के कारण आवाम के सब्र का बांध टूटा तो मुजफ्फराबाद से लेकर इस्लामाबाद तक की कुर्सियां हिलने लगी। आवाम की सबसे बड़ी आवाज जो है वो JAAC, जो वहां पर वकीलों की, टीचरों की, उसमें कोई राजनीतिक नेता नहीं है, सब सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं, उन पर एंटी टेरर एक्ट के तहत बैन लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। दमनकारी नीति ऐसी कि लोकतांत्रिक अधिकारों के दफ्तर वहां सील कर दिए गए। हक मांगने वाले स्थानीय लोगों पर 1-1 करोड़ का भारी इनाम रख दिया गया है। अब दुनिया नहीं पूछेगी कि एक कैसी हुकूमत है जहां सिर्फ आटा, सस्ती बिजली, स्कूल और कॉलेज मांगने पर, अस्पताल मांगने पर आवाम पर सीधे राजद्रोह के केस लगा दिए जाते हैं। यह है पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की असलियत। और इस पूरे फसाद की जड़ क्या है? 12 आरक्षित सीटें जिनके जरिए पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में वर्षों से गंदी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान की ISI कर रही है। पाकिस्तान की सोची समझी साजिश यह है कि बाहरियों के दम पर स्थानीय कश्मीरियों को सेना के बूटों के तले दबा कर रखा जाए। लेकिन जब आवाम ने इस धांधली को नामंजूर कहा तो हक मांगने पर रावलकोट में अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गईं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 27 लोग मारे गए हैं, दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 50 से ज्यादा अभी भी लापता है। यह कत्लेआम पाकिस्तान की सेना ने किया है। जी हां, यह है आसिम मुनीर की असलियत। पीड़ितों को इंसाफ देने के बजाय दंगाई और उपद्रवी कहकर आखिर पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर यानी पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की आवाम को आतंकवादी बताकर पाकिस्तान की सेना उन पर गोलियां चला रही है। पाकिस्तान की इस तानाशाही के आगे कश्मीरी तो नहीं झुक रहे। आवाम ने दो टूक कह दिया है कि जब तक उनके सिर से आतंकी होने का कलंक नहीं हटता, उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। और सच है, पाकिस्तान कल तक कश्मीरियों का जो झूठा रहनुमा बना घूमता था, अपने आप को एम्बेसडर ऑफ कश्मीर कहता था, अब वही एम्बेसडर कातिल बन गया है, मर्डरर बन गया है। और अब बात करते हैं भारत की सुरक्षा, सामरिक सुरक्षा से जुड़े एक बड़े इंटरव्यू की और विवाद की। अंडमान निकोबार की बात करते हैं जहां भारत सरकार लगभग 72,000 करोड़ रुपए का ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट परियोजना उसे लागू करने जा रही है। इसके तहत गलाथिया बे में एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, साथ ही नागरिक और सैनिक दोनों के इस्तेमाल के लिए एक एयरपोर्ट, पावर प्लांट और एक नया टाउनशिप बसाने का प्लान बनाया गया है। इसका उद्देश्य मलाका स्ट्रेट के पास जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भारत की, उसका फायदा उठाकर भारत को एक इंटरनेशनल शिपिंग और ट्रांसशिपमेंट हब बनाकर चीन के प्रभाव को इस पूरे क्षेत्र में कम करने की रणनीति है। लेकिन नेता विपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इसे बिगेस्ट स्कैम कह दिया, भारत के पर्यावरण संपत्ति की सबसे बड़ी चोरी बताया है, साथ ही रक्षा और विकास के नाम पर एक बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस में सांसद और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि वहां से आदिवासी विस्थापित हो जाएंगे। इन तमाम आरोपों का जवाब अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल और भारतीय सेना नौसेना के पूर्व अध्यक्ष एडमिरल डीके जोशी ने दिया। मैंने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की और मेरा पहला सवाल यही था, जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। तो सुनिए, जब एक बिजनेसमैन को, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया तो उस पर उनका क्या उत्तर था, सुनिए।
2: इफ समवन कैन आइडेंटिफाई इवन बिफोर अ टेंडर और एन आरएफपी हैज बीन इश्यूड एज टू हु इज गोइंग टू बी इट्स बेनिफिशियरी, आई थिंक दैट फॉल्स इन द गैम्बिट ऑफ द नेशन वॉन्ट्स टू नो। Then they have to come up and say how have they arrived at this formulation. Even the tender hasn't been floated, the RFP hasn't been floated. And to the earlier part of your question, multi-modal enterprises of this nature, you can't segregate that this is only strategic, this is only commercial. It is the sum total of what the territory is going to be delivering to you and how it impacts on your comprehensive national park. That provides an answer. You cannot segregate it silo-wise.
1: पूर्व नौसेना अध्यक्ष ही नहीं, अंडमान निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ रह चुके हैं एडमिरल जोशी, और उनका कहना है कि भारत की पूर्ण शक्ति, केवल आप सामरिक शक्ति या आर्थिक शक्ति की बात नहीं कर सकते, पूर्ण शक्ति का प्रतीक होगा ये ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। अच्छा, ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई और 500-500 वर्ष पुराने पेड़, 70-70 फुट ऊंचे पेड़, उनको तबाह कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। एडमिरल जोशी ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा दो टूक कि अंडमान निकोबार में 94% से अधिक वन क्षेत्र है, जितने पेड़ खराब होंगे या कटेंगे उससे ज्यादा लगाए जाएंगे। इस परियोजना से महज 1.8 यानी 2% से भी कम वन क्षेत्र प्रभावित होगा। उन्होंने कहा वन क्षेत्र बढ़ाना उन राज्यों में जरूरी है जहां 10% क्षेत्र से कम उतना भी जंगल नहीं है। सुनिए।
2: स्पेसिफिकली टू द नंबर ऑफ ट्रीज इन अंडमान एंड निकोबार वी हैव 94% फॉरेस्ट कवर, द रिचेस्ट इन द कंट्री ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज। For the GNI project, of that, just about 1.8% is being considered for diversion. So that means it will still leave you with 92.something%, still the highest in the country. And the number of trees that are being felled, firstly, to the extent possible, the Forest Department has identified only the degraded ones. But they are more than compensated through compensatory afforestation, but in degraded forest areas. So in actual fact, there is the tree cover is not being denuded at all. Forestation in a landscape which already has 92% forest cover, the compensatory afforestation has to be done in forest deficient areas. And within our country, there are states which are less than 10% forest cover.
1: अच्छा, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि अंडमान में सरकार की इस बड़ी परियोजना के कारण, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के कारण, आदिवासी विस्थापित हो जाएंगे, ऐसा अखबारों में लिखित भी आया। एडमिरल जोशी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा इस परियोजना से एक भी आदिवासी विस्थापित नहीं होगा। सुनिए।
2: Inside the parliament and outside, not one tribal is going to be dislocated. Not one.
3: In this entire project?
2: In this entire project. This has been clarified repeatedly. But the canards that are being spread, the misinformation, disinformation campaigns that have been launched.
1: आरोप ये कि देश के विकास को रोकने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसा हो रहा है जैसा पहले सरदार सरोवर परियोजना में भी हुआ था, ऐसा एडमिरल डीके जोशी का कहना है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। वैसे भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बेहद तनावपूर्ण खबर आ रही है। मेघालय के साथ साउथ वेस्ट गारो हिल्स जिले में सीमा पर अचानक हालात बिगड़ गए हैं। दोनों देशों की सुरक्षा बल इस समय आमने सामने हैं। आखिर ये पूरा मामला है क्या? एक बांग्लादेशी घुसपैठिए से जुड़ा यह मामला है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी भारत की सीमा सुरक्षा बल ने उसे पकड़ा तो सही, लेकिन अब इस बांग्लादेशी को लेकर दोनों ही सरहदों पर भारी बवाल है। आखिर क्या है यह पूरा बवाल? दोनों देशों की सुरक्षा बल क्यों इस समय हाई अलर्ट पर है? देखिए आज तक की एक ग्राउंड रिपोर्ट।
4: भारत बांग्लादेश सीमा का ये नंदरचर सेक्टर है जो मेघालय के महेंद्रगंज के पास स्थित है। यहाँ सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे एक संदिग्ध शख्स को दबोच लिया। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान इस शख्स ने खुद कबूला कि वो बांग्लादेश का नागरिक है। इसके बाद बीएसएफ ने तय नियमों के तहत उसे वापस बांग्लादेश की सीमा में धकेलने यानी पुश बैक करने की कार्रवाई की, लेकिन असली विवाद इसके बाद शुरू हुआ। जैसे ही वो शख्स सीमा पार गया, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी और वहां के स्थानीय नागरिकों ने उसे अपना नागरिक मानने से साफ इनकार कर दिया और उसे हिरासत में लेने से मना कर दिया। बांग्लादेश के इस अड़ियल रोक का नतीजा यह हुआ है कि वो शख्स अब कटीरी बाढ़ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच नो मैंस लैंड में फंसा हुआ है। इस
1: खबर पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: Tune In's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.

वही हॉर्मुज जहां से दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है, जहां एक दिन की रुकावट भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। उस रूट पर फिर से ताला लग गया, फिर से दुनिया के ऊर्जा की सांस थम गई, फिर से यहां के समंदर में उबाल आ गया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीदों के बीच अचानक फिर से टकराव बढ़ गया। हमलों और जवाबी हमलों के बीच ईरान ने फिर चेतावनी दी है कि हॉर्मुज के रास्ते जहाजों की आवाजाही खतरे से खाली नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के नक्शे पर सिर्फ एक सकरा समुद्री रास्ता नहीं है, ये वो रास्ता है जहां से खाड़ी देशों का तेल दुनिया तक पहुंचता है। ईरान एक तरफ, ओमान दूसरी तरफ और बीच में करीब 40 किलोमीटर चौड़ा यह समुद्री रास्ता, लेकिन इसकी अहमियत इसकी चौड़ाई से कहीं ज्यादा है, क्योंकि रोजाना लाखों बैरल कच्चा तेल और भारी मात्रा में LNG इसी रास्ते से गुजरती है।

पिछले टकराव के दौरान भी यही हुआ था। जहाजों की आवाजाही बेहद सीमित हो गई थी, कई तेल टैंकर रुक गए थे, बीमा कंपनियों ने जोखिम बढ़ा दिया था। नतीजा, दुनिया भर में तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ा। हॉर्मुज बंद होने का मतलब सिर्फ खाड़ी क्षेत्र की समस्या नहीं है, इसका असर एशिया से लेकर यूरोप तक पहुंचता है, क्योंकि भारत, चीन और जापान जैसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों की सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ सकता है। अमेरिका की तरफ से लगातार कहा गया है कि वो समुद्री रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अमेरिकी सेना ने पहले भी दावा किया था कि उसके ऑपरेशन की वजह से कई वाणिज्यिक जहाज सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज से गुजर पाए, लेकिन ईरान का रुख बिल्कुल अलग है। तेहरान साफ संकेत दे रहा है कि अगर सैन्य दबाव जारी रहा तो हॉर्मुज को दबाव बनाने के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की नहीं है, असली लड़ाई उस रास्ते की है जिससे दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था चलती है। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ ईरान की चेतावनी, और बीच में फंसा है दुनिया का तेल बाजार। और अगर ये संकट लंबा चला तो असर सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी गर्मी दुनिया के हर उस देश तक पहुंचेगी जहां पेट्रोल, गैस और महंगाई की चिंता है। सुमित चौधरी और प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया
2: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search today's Global Hits to start listening now.
3: कल हॉर्मुज के आसपास हमलों की बौछार हुई और आज अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के कई इलाकों को निशाने पर ले लिया। मैप से समझिए कि आखिर अमेरिका ने ईरान के किन किन हिस्सों को टारगेट किया है और क्यों ये हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं माने जा रहे। ईरान के दक्षिणी हिस्से में खाड़ी के किनारे बसे ये इलाके इस वक्त दुनिया की नजर में है। कल अमेरिकी हमलों में ईरान के कई रणनीतिक ठिकाने निशाने पर आए, इनमें शामिल रहे बंदर अब्बास, ईरान का सबसे अहम नौसैनिक और रणनीतिक इलाका, केशम और हेंगम द्वीप जो हॉर्मुज के बेहद करीब है, कंगन और असलुगे जहां ऊर्जा से जुड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इसके अलावा गोरगान बंदरगाह, सिरिक और मिनाब भी हमले की जद में आए। यानी अमेरिका ने सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि ईरान के उस पूरे समुद्री कॉरिडोर को निशाना बनाया जो हॉर्मुज की सुरक्षा और तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम है। और आज अमेरिका ने हमला और आगे बढ़ा दिया। दक्षिणी ईरान के बाद अब राजधानी तेहरान के नजदीकी इलाके करज में भी धमाके की खबर आई। हमले के बाद करज के कई इलाकों में धमाके की आवाज सुनी गई। यानी संदेश साफ है, अमेरिका अब सिर्फ सीमा वाले इलाकों तक सीमित नहीं रहना चाहता। कल ही राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका अपने लोगों और अपने हितों की सुरक्षा के लिए जवाब देगा। इसके बाद अमेरिकी युद्ध मंत्री ने भी कड़ा बयान देते हुए कहा कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान और अमेरिका के बीच ये टकराव सिर्फ बयानबाजी की लड़ाई नहीं है, दोनों तरफ से बम बारूद चल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका का दावा है कि वो ईरान की सैनिक क्षमता को कमजोर कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है कि जवाबी कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा सवाल अब हॉर्मुज को लेकर है, क्योंकि यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यहां तनाव बढ़ा, अगर जहाजों की आवाजाही रुकी, तो असर सिर्फ ईरान और अमेरिका पर नहीं पड़ेगा, इसकी लहर पूरी दुनिया के बाजारों तक जाएगी। तेल और महंगा होगा, सप्लाई पर दबाव बढ़ेगा और महंगाई का नया संकट खड़ा हो सकता है। सुमित चौधरी और प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक के रोड।
4: अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ राम कथा से 2027 की सियासी महाभारत का संदेश सुनाते हैं। जिस अयोध्या का राम मंदिर बनवाकर भी 24 में जाति में वोट बटने से अयोध्या से जुड़ी लोकसभा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, वहां राम के नाम पर अस्त्र शस्त्र सत्ता और विपक्ष में चलने लगा। पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, लिखा राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज किया। जब लखनऊ में बीजेपी विधायक की तरफ से कराई जाती राम कथा में मुख्यमंत्री पहुंचे, तो नया सियासी संदेश सुनाई दिया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं, निगेटिव

0: मुख्य सरगना जांच और पूछताछ जारी। ओमान में अमेरिकी हमले की चपेट में एक और भारतीय जहाज, तीन दिन के में तीसरे हमले में तीन भारतीयों की मौत, यूएस अधिकारियों को विदेश मंत्रालय ने किया समन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल बंगाल में टीएमसी के दरकते किले और तिनका तिनका बिखरते तृणमूल को लेकर है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ ममता अकेली पड़ती जा रही है। आज कल्याण बैनर्जी जैसे नेता ने भी कह दिया कि अब या तो पार्टी रहेगी या ममता के भतीजे अभिषेक। इस बीच राज्यसभा से एक और टीएमसी सांसद ने इस्तीफा दे दिया। 28 में से 20 लोकसभा सांसद और 80 में से 64 विधायक पहले ही नाराज चल रहे हैं, जमीन पर पार्टी कार्यकर्ता छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे में ममता बैनर्जी की पार्टी का क्या कांग्रेस में विलय हो सकता है? हालांकि दो दिनों में दो बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से मर्जर की खबर से इनकार किया गया है, लेकिन ममता की सोनिया से और राहुल गांधी की अभिषेक बैनर्जी से हुई मुलाकात के बाद यह हवा एक बार फिर तेजी से चल रही है। उधर महाराष्ट्र में भी शरद पवार की पार्टी के नेता कांग्रेस में विलय की आवाजें उठाते सुनाई दे रहे हैं। आज ही सुप्रिया सुले से पूछा गया था, उन्होंने साफ तौर पर मना भी नहीं किया। और उधर बंगाल में कांग्रेस कह रही है कि ममता ने ही कांग्रेस को यहां खत्म किया और सोनिया गांधी की मदद से ही ममता की पार्टी और हुकूमत इतनी फली फूली थी। तो राहुल गांधी को जो पीएम बनाने में मदद करेगा उसका पार्टी में स्वागत होगा। तो आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस से ही निकले छोटे छोटे दल अब कांग्रेस में विलय करेंगे या फिर कांग्रेस का हाथ थामेंगे। खासकर बंगाल और महाराष्ट्र की दो बड़ी पार्टियों का क्या होगा? ममता बनर्जी के साथ जैसे पार्टी खिसक रही है, क्या कांग्रेस में विलय सुरक्षित विकल्प हो सकता है? ऐसी तमाम संभावनाओं, विकल्पों और सवालों पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।
1: ममता दीदी बड़ी मझधार में फंसी है। घर यानी पार्टी में आग लगी है, बाहर टीएमसी पर सिर्फ अंडे बरस रहे हैं। इस मुसीबत की घड़ी में एक मदद का हाथ उनकी ओर बढ़ा तो मुसीबत में मोहब्बत की दुकान में मर्जर तक बात पहुंच गई। ममता बनर्जी के पास पार्टी बचाने का रास्ता हर गुजरते घंटे के साथ बंद होता दिख रहा है। अब तो कल्याण बनर्जी तक ने अल्टीमेटम दे दिया, कहा अभिषेक नहीं चुनाव हराया, अभिषेक नहीं पार्टी का नाश किया, अब ममता या तो पार्टी चुन ले या भतीजा।
2: ममता दी हैज टू चूज वेदर अभिषेक बनर्जी ही सी विल कीप और सी विल कीप मी। वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट इफ फॉर हिज फॉर अभिषेक बनर्जी द पार्टी हैज बीन डिस्ट्रॉयड टुडे, वी हैव लॉस्ट इट।
1: हालत ये कि ममता के 28 में से 19 लोकसभा सांसद बगावत की चिट्ठी साइन कर चुके, 13 में से 3 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके, पार्टी के 80 में से 64 विधायक स्पीकर को अलग चिट्ठी दे चुके, 7 में से 4 मेयर चले गए, 130 से अधिक पार्षद विदा हो गए, कई नगर पालिकाएं भंग हो गई। ममता अपनी पार्टी की सभी समितियां पहले ही भंग कर चुकी है। ममता के पास पार्टी के नाम पर फिलहाल पुख्ता तौर पर वो खुद बची हैं और बचे हैं अभिषेक। ऐसे में ममता के दिल्ली दौरे पर जो सोनिया गांधी के साथ केमिस्ट्री दिखी और जिस तरह ममता अभिषेक ने सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकातें की और उसके ठीक एक दिन बाद जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने देश भर से अपने पार्टी महासचिवों, पार्टी प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की आपातकालीन बैठक बुलाई है, उससे कांग्रेस टीएमसी में मर्जर वाली खबर और उड़ चली।
3: कांग्रेस के साथ एक साथ काम करना जरूरी है।
4: टीएमसी क्योंकि कांग्रेस से ही निकली है तो वापस उसको आ जाना चाहिए, आपका क्या मानना है इसको?
5: टीएमसी पार्टी कांग्रेस को खत्म किया बंगाल में, मैं ये जानते हैं सर। बंगाल में अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर है सर टीएमसी के चलते, टीएमसी को तो कांग्रेस पार्टी मदद से ही मुख्यमंत्री बनाई थी। ये सोनिया गांधी मुख्यमंत्री बनाने के लिए सबसे ज्यादा मदद तो इन महिला को, ममता बनर्जी को दी थी। चुनाव जीतने के बाद, सत्ता पे आने के बाद सारे भूल गए, तो कोई मैं क्या कर सकते।
1: दरअसल टीएमसी और कांग्रेस के मर्जर की जो हवा चली उसका पश्चिमी विक्षोभ महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जिसमें कभी पवार ने कांग्रेस के साथ दलों के एकजुट होने की बात कही थी, वही सपना

0: बार बार आकार लेता दिखता है। और जब संजय राउत ने एनसीपी को कांग्रेस में मर्ज कर जाने की बात कही तो सुप्रिया सुले ने इनकार नहीं किया। सुप्रिया कांग्रेस की ओर से विलय प्रस्ताव वाले सवाल पर भी मना नहीं करती।
1: अगर बारिश आई तो मैं छाता लूंगी कि रेनकोट, अभी मैंने तय नहीं किया है।
0: सुप्रिया सुले को बारिश का इंतजार है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ दो टुकड़े हो चुकी पार्टियों में एकजुटता की चर्चा महाराष्ट्र में सबसे जोर पर, क्योंकि वहां दो दलों के चार टुकड़े। पिछले दिनों उद्धव के नेता अंबादास दानवे और शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार दिल खोलकर मिले तो ऐसी हवा फिर चली कि कहीं शिवसेना में नई खिचड़ी तो नहीं पक रही। महाराष्ट्र की सियासत में मर्जर की कहानी कैसा मोड़ लेगी ये कहना भी जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस टीएमसी के एक साथ मिलकर गठबंधन में काम करने का फैसला तकरीबन तय है। मर्जर की पुष्टि कोई नहीं कर रहा।
2: पॉलिटिक्स है आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, संभावनामय शिल्प है, तो कल कुछ भी हो सकता है।
3: भी संविधान में और गांधी जी जो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, जो देश के ताना बाना को समझते हैं, अगर वो हमारे साथ आएंगे तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी उसको स्वीकार करती है, कहीं इसमें इब्बट की बातें नहीं है।
0: हालांकि कांग्रेस ने अब आधिकारिक रूप से मना कर दिया है कि टीएमसी कांग्रेस में कोई मर्ज नहीं होने वाला।
4: टीएमसी और कांग्रेस का मर्जर हो सकता है, क्या इस तरीके का कोई ऑफर कांग्रेस की तरफ से दिया गया है या क्या टीएमसी ने इस तरीके की कोई रिक्वेस्ट की है?
5: हाउ कैन वी आंसर फॉर दिस? कल इसका पूरा खंडन किया गया है, बार बार ये सवाल मत पूछो।
0: कांग्रेस भले मना करे, लेकिन दिल्ली से बंगाल तक के हालात बताते हैं कि अब बंगाल में कांग्रेस और ममता बिना एक दूसरे का हाथ थामे चल नहीं सकते। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
6: चुनाव हारने के बाद खंड खंड होती टीएमसी के देखने के बाद कई बार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब ममता बनर्जी के सामने कोई और रास्ता रह गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि हम मना कर चुके हैं, कोई मर्जर की बात नहीं होगी, लेकिन राजनीति है कि हर बातें होती रहेगी। चर्चा हम करेंगे, हमारे साथ के शर्मा जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉली शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही चर्चा में शामिल हो रही है। संजय सरकार पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उनसे भी पूछेंगे कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी आखिरकार इस तरीके से क्यों सोच रही है। अमित जमई समाजवादी पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल होंगे और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या पार्टी में हो रही टूट को देखते हुए ममता कांग्रेस में टीएमसी विलय करेगी, क्योंकि इस बात की चर्चा अब लगातार होती जा रही है कि ममता बनर्जी के सामने विकल्प क्या बचे। दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस से निकले दलों की घर वापसी पर गंभीरता से विचार हो रहा है। और तीसरा अहम सवाल कि क्या टीएमसी में अभिषेक के खिलाफ बढ़ती नाराजगी पर ममता लगाम लगा पाएंगी, क्योंकि अब कल्याण बनर्जी ने भी ये झंडा उठा लिया है कि अभिषेक बनर्जी या पार्टी, दोनों में से एक ममता बनर्जी को चुनना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी खबर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने स्पीकर की ओर से ऋतव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष बनाने के फैसले पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है। अदालत में अगली सुनवाई 16 जून को होगी, लेकिन इससे पहले सुनवाई में कल्याण बनर्जी ने नेता विपक्ष के चयन की पारंपरिक प्रक्रिया का हवाला देते हुए शोभन देव चटर्जी को अजीब ठहराने की कोशिश की थी। हमारे साथ में अनुपम मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं। 11 तारीख को आखिरकार ये सुनवाई होनी थी, हुआ क्या? देखिए, रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन स्पीकर ने जो ऑर्डर दिया है वो क्या दिया है वो समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक वो ऑर्डर बाहर नहीं आया है क्या? अदालत में जो स्पीकर का ऑर्डर है, कैसे चयन किया गया उसके बारे में कुछ?
7: जी देखिए साहिल, शोभन देव चट्टोपाध्याय जिसको शुरुआत में टीएमसी की ओर से असेंबली में नेता विपक्ष नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया था, उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिस तरीके से स्पीकर ने ऋतुव्रत बंदोपाध्याय को लीडर ऑफ अपोजिशन करार दे दिया और उनको चाबी सौंप दी, उसके खिलाफ ये मामला था। मामले की आज सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान स्टे मांगा गया था, लेकिन स्टे नहीं दिया गया है। स्पीकर का जो ऑर्डर था उस पर कोई स्टे नहीं दिया गया है। हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है और अगली सुनवाई 16 तारीख को होगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी तक इस मामले में जो शुभमदेव चट्टोपाध्याय की ओर से यह मामला दाखिल किया गया था, इसमें अदालत ने अभी तक कुछ हस्तक्षेप या करने या कुछ और करने जैसी बात नहीं कही है। और 16 तारीख को जब सुनवाई होगी तब समझ में आएगा कि शुभमदेव चट्टोपाध्याय का जो दलील है उस पर हाईकोर्ट का क्या रुख है, क्या अख्तियार है।
6: एक और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, क्योंकि कल 19 सांसदों की एक सूची जारी कर दी गई थी। वो सूची बीजेपी के सूत्रों के हवाले से आई थी, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम था। लेकिन अब शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने जब वो मुश्किल में थे तब उनके साथ में ममता बनर्जी खड़ी रही और आज की स्थिति में वो ममता बनर्जी के साथ ही खड़े हैं। इस संकट की स्थिति में वो ममता का हाथ नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ में खड़े रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा दो बार आसनसोल से वहां पर जीत चुके हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि वो ममता बनर्जी के साथ ही रहेंगे, तृणमूल कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। अनुपम मिश्रा, 19 सांसदों की सूची जारी कर दी गई है, लेकिन अब शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं मैं तो उनके साथ में हूं ही नहीं, मैं तो ममता बनर्जी के साथ में हूं। क्या ये सूची सही मानकर चले हम? अनुपम
7: जी, देखिए मैं इस वक्त अगर इस सूची पर बात करें तो ममता के पास जो लोग हैं उनकी भी सूची के बारे में बात कर लेनी चाहिए, तो ताकि स्पष्ट कुछ बातें स्पष्ट हो जाएं। अगर हम इसको दूसरे नजरिए से, दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, अभिषेक बैनर्जी, कल्याण बैनर्जी, दोला सेन, इसके अलावा रचना बैनर्जी किस तरफ है अभी तक क्लैरिटी नहीं है, शायनी घोष क्या उधर गई हैं पूरी तरह से क्लैरिटी इसमें नहीं आ पाई है, प्रतिमा मंडल ये आठवां नंबर है, उन्होंने साफ कह दिया है कि कल जैसी बात आई थी कि उन्होंने मुलाकात की है भूपेंद्र यादव से, वो उन्होंने साफ कर दिया है कि वो नहीं थी। दीपक अधिकारी यानी देव, जो अभिनेता भी रह चुके हैं, अभिनेता हैं, बड़े अभिनेता हैं, वो 9 लोग, तो 9 से 10 लोग तो अभी तक जो है क्लैरिटी नहीं है कि किस तरफ हैं, ममता की तरफ ही होने का अभी तक चांस ज्यादा है, दूसरे ओर होने का चांस नहीं है। तो 28 सांसद फिलहाल अभी अगर देखा जाए तो टीएमसी के पास है, उनमें से अगर 9 सांसदों को हटा दिया जाए तो भी यह संख्या 17-18 के पास ही जा रही है। तो ऐसे में अभी तक क्लैरिटी इस पर नहीं आई है कि 19 या 20 लोग,
6: इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि जिन सांसदों के नाम कल लिए गए थे उसमें सयोनी घोष और उसके साथ साथ शत्रुघ्न सिन्हा के नाम जब लिए गए तब सबको, सभी लोग अचरज में पड़ गए थे कि ये नाम कैसे हो सकते हैं, और आज की स्थिति में सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा जो आगे आकर कह रहे हैं कि मैं उन सांसदों में शामिल नहीं हूं। सयोनी घोष की तरफ से अब तक इस बारे में कोई बयान नहीं आया हुआ है। हमारे साथ काकोली घोष इस वक्त जुड़ रही है, उन्हीं से पूछते हैं क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा तो यहां पर कुछ अलग दावा कर रहे हैं। आप कह रही है कि 19 सांसद आपके साथ में, तो क्या स्पीकर को आपने चिट्ठी सौंप दी है? अलग गुट आप कैसे बनाएंगी?
8: ये तो 3-4 दिन पिछले का बात है जब हमने चिट्ठी स्पीकर साहब को दिया, और हमारे साथ 19 नहीं 20 है, 20 लोगों हैं,
6: 20 लोग आपके साथ में हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको पता है काकोली जी, कि उसमें साफ कहा गया है कि आप अलग गुट नहीं बना सकती, और ऐसे में अलग गुट का मौका नहीं मिलेगा तो आपको दावा करना पड़ेगा कि असली टीएमसी आप ही है। और दूसरी तरफ मर्जर का कोई प्लान है क्या? अगर स्पीकर मंजूर करते हैं तो क्या एनडीए के साथ आप जाएंगे या विपक्ष में रहेंगे?
8: मैंने हमने लिख दिया कि हम एनडीए के साथ जाएंगे। ये तो आप फिर से पूछ रहे 10 दिन बाद के हमने लिखा कि नहीं, हमने लिख दिया हम एनडीए के साथ जाएंगे। और अगर हम असली टीएमसी है कि नकली टीएमसी है ये तो चर्चा में जब आएंगे, जब हमें बुलाएंगे, हम बातचीत करेंगे तभी पता चलेगा। अभी तो हम लोग लिख दिया कि हम ये जो नहीं है, और जो ये मतदाताओं को जो अभी चुनाव में अली में जो चुनाव हुआ उसमें जो मतदाताओं ने अपना इच्छा प्रकाश किया, जो मत किया, वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और आईपैक और तृणमूल कांग्रेस जो भी चलाते थे चुनाव की प्रक्रिया सबके खिलाफ क्या है। तो अगर जनता ने इसके खिलाफ है तो हमको भी जनता के साथ रहना है।
6: लेकिन ऋतव्रत बनर्जी जो कह रहे हैं वो भी तो बागी गुट के नेता, और वो कह रहे हैं कि वो तो विपक्ष में बने रहेंगे तृणमूल कांग्रेस में। आप दोनों साथ में हैं या अलग अलग है? क्योंकि आप तो कह रही है एनडीए के साथ रहेंगे, ऋतव्रत कह रहे हैं कि वो तो विपक्ष में रहेंगे, तो क्या आप दोनों का एक दूसरे से कोई संपर्क है?
8: उनके उनके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, वो असेंबली में है, मैं पार्लियामेंट में हूँ, और मैं जब चालू किया था तब मैं खुद अकेले इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन अभी और 19 मेरे साथ आ गए और हम सब मिलकर काम करेंगे बंगाल के लिए।
6: लेकिन ममता बनर्जी को चुनना होगा ये कह रहे हैं कल्याण बनर्जी की, अभिषेक या पार्टी, क्योंकि आप कल्याण बनर्जी भी आपकी आवाज में बात कर रहे हैं, तो क्या वो आपके साथ जुड़ सकते हैं? क्योंकि पहली बार वो इस तरीके से ममता बनर्जी के फैसले के खिलाफ खड़े हो रहे हैं।
8: उनके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को चिट्ठी दिया मिसोजिनी और हैरेसमेंट के, तो आपको लगता है कि मैं उनके साथ जाऊंगी? आप सोच समझ के बात कीजिए ना, उनके खिलाफ मेरा जितना भी गुस्सा है, नाराजगी है, कंप्लेन है, उनके खिलाफ है।
6: नहीं, लेकिन लेकिन सवाल तो यह भी उठता है ना कि चुनाव तक तो आप सब लोग साथ में थे, तब तो कोई किसी के साथ गिले शिकवे नहीं थे। जैसे ही चुनाव में ममता बनर्जी हार गई, रतब्रत और आप सब लोग अचानक खड़े हो गए कि हम तो उनके खिलाफ है, हमें यह मंजूर नहीं है।
8: नहीं, डिबाकल मत बोलिए, मैं आपको प्रश्न पहले से उत्तर पहले बोल देती हूँ। ये डिबाकल से कोई मतलब नहीं है। हमारे ये चल रहा था 2-3 साल से नाराजगी, लेकिन हमने सोचा क्योंकि 40 साल मैं पार्टी में हूँ, पार्टी बनाने में मेरा मदद रही, तो मेरा ये नाराजगी पहले से था, लेकिन चुनाव से पहले इसको जताने के लिए, चुनाव के फल खराब हो सकता है और पार्टी को नुकसान हो सकता है, इसीलिए हम चुप बैठे थे। तो अभी जब जनता
6: ने कह दिया जाएंगे तो मंत्री पद भी मिल सकता
8: होना चाहिए, मत दे दिया, हम जनता के साथ है।
6: नहीं, लेकिन अगर आप एनडीए के साथ जाएंगी तो मंत्री पद वगैरह भी तो मिल सकता है ना आपको?
8: कुछ ऑफर नहीं है, कुछ ऑफर नहीं है, कुछ ऑफर नहीं है।
6: नहीं, लेकिन कंफ्यूजन तो है यहां पर। देखिए, ऋतव्रत बैनर्जी कह रहे हैं विपक्ष में रहेंगे, आप कह रही है एनडीए के साथ जाएंगी, कौन असली टीएमसी है? क्या चुनाव आयोग को आप लिख रही है? क्योंकि आज की तारीख में क्या असली टीएमसी खत्म हो गई है? क्या हो क्या रहा है? तो चलिए, काकोली घोष यहां पर जो बागी सांसदों की नेता है वो हमसे बात कर रही थी, और उनका यह कहना है कि ऋतव्रत बैनर्जी के गुट से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो तो एनडीए के साथ जाना चाहती है। दूसरी तरफ ऋतव्रत बैनर्जी कह रहे हैं हम तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, वहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस। ये पूरा एक कंफ्यूजन इस वक्त इस स्थिति में पूरी तरीके से बना हुआ है, और यही बात है कि चुनाव आयोग के कोर्ट में आखिरकार यह फैसला जा सकता है, क्योंकि यह तय करना होगा कि आखिरकार असली टीएमसी कौन है आज की स्थिति में। यह सबसे बड़ी बात इस पूरे बातचीत को लेकर उभर कर आ रही है। संजय सरकार, क्या आपको लगता है कि असली टीएमसी कौन होगी, उसकी लड़ाई अब शुरू हो जाएगी? क्योंकि 3-3 गुट तो यहां पर साफ नजर आ रहे हैं, कौन असली टीएमसी रहेगा, कांग्रेस में कौन जाएगा, बाहर कौन रहेगा, ये तो बात की बात है।
9: देखिए, दो चीज तो आपको सामने पूरा क्लियर हो चुके हैं, एक काकुली घोष दोस्तीदार और दो ऋतव्रत बनर्जी। दोनों तरफ से आपको जो बात लगा कैसे लग रहा है? दोनों कंफ्यूजिंग मैटर है। काकुली घोष दोस्तीदार चाह रहे हम डायरेक्ट एंट्री लें एनडीए में, और ये बोल रहे हैं हम मुख्य विपक्ष का पार्टी बंगाल में रहेंगे। तो पार्टी किसको साथ जाएंगे, पार्टी के पास किसका सिंबल रहेंगे, कैसे रहेंगे, नहीं रहेंगे, सब आपको उससे क्लियर होगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, कुछ भी हो जाए, ममता एक सिंबल है, ममता एक दल है, ममता एक नेत्री है, और ममता को आज भी जनता खड़ा है। जब तक ममता रहेगी तब तक ममता को जनता बिल्कुल रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी ऐसे भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम ऐसे कोई नेता इसको डिनाई नहीं कर सकते, ममता बनर्जी आज भी मार्स लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये लोग को अभी से मालूम पड़ गया, अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर शामिल नहीं हो जाता है तो अगले चुनाव जो आएंगे इसमें हम लोग जमानत जब्त हो जाएंगे, हम ना घर का रहेंगे, ना घाट का रहेंगे, ना कहीं रहेंगे। तीन लोग को मालूम पड़ गया। ऋतव्रत तो भी आज के तारीख में शुभेंदु अधिकारी को साथ में एक सौदा कर लिया, सौदा करके वो चल रहे हैं, इसको भी पार्टी ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं है। हकीकत बताता हूं, क्यों सितब्बत होता है, खुद ही दो दो पार्टी से एक्सपेल हुआ है, एक कम्युनिस्ट को समाने में का हुआ है, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य है, एक मतलब ल्यूट पर्सन को पार्टी में दाखिल किया है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य थे टीएमसी के लिए, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य थे अभिषेक
6: शर्मा जी,
9: अभिषेक इसको अगर शामिल
6: डॉली शर्मा जी के पास जाने से पहले केके शर्मा जी आपसे एक बात जाननी होगी कि आखिरकार असली टीएमसी आप किसके साथ रहेंगे? क्योंकि देखिए, असेंबली में तो कह रहे हैं कि हम तो खिलाफ है आपकी सरकार के, वही बागी गुट दूसरा एक कह रहा है कि हम तो एनडीए के साथ जाएंगे। बड़ा मुश्किल फैसला होगा, और कानून कुछ और ही कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से मैनेज।
10: साहिल भाई, ये हमारे निर्णय का कोई विषय ही नहीं, आप गलत क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे। इसमें हमारा क्या निर्णय है? जिनको निर्णय करना
6: है, बताओ आपका क्या निर्णय होगा,
10: गुट बना रहे हैं उनसे आप पूछिए।
6: दोनों सदनों में स्पीकर तो भारतीय जनता पार्टी के ही है, लोकसभा में भी आप ही के स्पीकर है और असेंबली में भी आप ही के स्पीकर है, इसीलिए मैंने पूछा कि फैसला तो आप ही को करना है ना आखिरकार।
10: ऐसा है साहिल जी, ये नहीं, साहिल जी ये भविष्य के प्रश्न अभी आप मुझसे कर रहे हैं, जब ये गुट बनाकर जाएंगे स्पीकर के सामने तो स्पीकर अपना निर्णय दे देंगे। ये क्या है उस समय, ये हमारा विषय नहीं है सर, आप गलत फहमी में। हम तो दूर खड़े होके इनके बीच के आपसी लड़ाई को देख रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि जो एक समय पे बंगाल की शेरनी पता नहीं क्या क्या नवाजे जाती थी, आज वो राजनीतिक शरण मांगने के लिए किस किस दरवाजे में घूम रही है, क्योंकि ये उनको शेरनी से जो ये स्थिति लाई है ये बंगाल की जनता ने लाई है। और अभी मैं एक प्रश्न सुन रहा था कि वो तो मॉस लीडर है, फलाना है। सर दो दो बार विधानसभा चुनाव हार गई है ममता बनर्जी, काहे का मॉस लीडर भैया
11: बोल दीजिए,
10: अपना विधानसभा नहीं जीत पा रही है जो महिला। 2022 में विधानसभा हारी, भवानीपुर से इस बार अपना चुनाव हार गई, अपना बूथ हार गई, वो इतनी बड़ी मॉस लीडर। 22 में
11: किसी खाब में भी चुनाव हार जाएंगे।
10: साहिल जी मैं बीच में नहीं बोलता,
3: ठीक है
10: साहिल जी मैं बीच में नहीं
3: बोलता, चर्चा अलग से होगी।
10: साहिल जी
3: कौन मॉस लीडर है कौन मॉस लीडर नहीं है इसकी चर्चा अलग से होगी, लेकिन लेकिन शर्मा जी आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद डॉली जी के पास चले जाना, क्योंकि आपने सारे लोगों के दरवाजे कांग्रेस की तरफ खुलते हुए नजर आ रहे हैं, इसके लिए डॉली जी के पास भी मुझे जाना है। के शर्मा जी आपकी बात खत्म करिए,
10: जवाब तो देने दीजिए, चर्चा भटक जाएगी। हाँ जी बोलिए, ऐसे कैसे डिबेट करा रहे हैं,
3: बोलिए शर्मा जी।
10: नहीं नहीं मुझे करने तो दीजिए उस पे, मैं तो इस बात पे कह रहा हूं।
3: अरे बोला मैंने आपको, बोलिए
10: गाते हैं मास लीडर भाई, भवानीपुर विधानसभा हार गई, विधानसभा हार गई, इसके 2022 में विधानसभा हार गई, लोकसभा लड़ती नहीं है वो, तो काय का मास लीडर है भाई, हम तो ये कह रहे हैं। दूसरी बात, आज वो क्या कर रही हैं, उनके पार्टी में क्या हो रहा है, जो कुछ उन्होंने अलग गुट बनाया, उन्होंने अपना क्लेम किया, स्पीकर ने फैसला दिया विधानसभा में, अब लोकसभा में जो स्थिति होगी, राज्यसभा में जो स्थिति होगी, वो अपना पत्र लेके जाएंगे, स्पीकर जो है उसका निर्णय करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें हमारा कोई विषय नहीं। हम तो आज इतना है कि दिल बहलाने को ख्याल गाली
3: तो बीजेपी दूर से मजे देख रही
10: है। अभी आप बहुत सारे बातें कर रहे हैं,
3: ये पार्टी विलय हो जाएगी,
10: ये लोग
3: विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर है, लोकसभा के भीतर भी भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर है, और दोनों जगह पर स्पीकर को यह तय करना है कि असली तृणमूल कांग्रेस पार्टी कौन है। तो विधानसभा के भीतर वो विपक्ष में है और लोकसभा के भीतर वो एनडीए के साथ जाना चाहते हैं, जो बागी गुट है वो। डॉली शर्मा जी आपके दरवाजे पर भी कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस दस्तक लगा रही है कहा जा रहा है। अभी तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये सब बातें बेतुकी है, लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से खास करके दिग्विजय सिंह कई बार ये कह चुके हैं कि अब हो गया, अब कांग्रेस पार्टी से बिछड़े जो सारे गुट है उन सबको कांग्रेस के साथ आ जाना चाहिए, तभी बीजेपी के सामने हम खड़े हो पाएंगे। तो इस बात में कितना जोर है, कितना दम है इस बात में?
12: देखिए साहिल जी, मजबूती से पूरे देश में अगर किसी भी मुद्दे पर आज भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई खड़ा होकर निडर और निर्भीक तरीके से लड़ रहा है तो वो एक ही नेता राहुल गांधी है और कांग्रेस पार्टी है। हमारे लाखों लाखों युवक NSUI के और युवक कांग्रेस के आज नीट पेपर लीक पर CBSE पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और देश के युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। रही बात पार्टी तोड़ने फोड़ने की, पार्टी तोड़ना, घर तोड़ना, परिवार तोड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना काम है। महाराष्ट्र में आपने देखा, बिहार में पिछली बार इन्होंने क्या किया वो आपने देखा, जगह जगह कहीं सिंबल छीनते हैं, कहीं गलत देश के तंत्रों का इस्तेमाल करके किसी पर ED लगाएंगे, किसी पर CBI लगाएंगे, एन केन प्रकारेण जिस भी तरह से हो, चाहे विधायकों को रिजॉर्ट में बिठाना हो, कोरोना के चलते भी सरकारें तोड़नी हो, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना काम है और अभी भी ये इसी चीज में लगे हुए हैं। किस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई पार्टियां, किस तरीके से उन पार्टियों को खत्म किया जाए, सिंबल छीन कर दूसरी पार्टियां बना दी जाए, गुट क्रिएट कर दिए जाए, क्षेत्रीय पार्टी को कमजोर कर दिया जाए, बस भारतीय जनता पार्टी उसी में लगी हुई है, क्योंकि इनका देश की।
3: डॉली शर्मा जी आपके ऑडियो में थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत है, जरा ऑडियो ठीक करवा लीजिएगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत है, हमारी टीम आपसे बात करेगी, लेकिन तब तक के शर्मा जी आप जवाब दे दीजिएगा और उसके बाद में संजय सरकार के पास भी चलूंगा। के शर्मा जी,
10: देखिए शायद डॉली शर्मा नई नई कांग्रेस में आई है, इनको कांग्रेस का इतिहास ही नहीं पता है। 70 साल में कांग्रेस ने 90 से ज्यादा बार धारा 356 लगा के चुनी हुई सरकारों को गिराया। अपना मुंह देख के आइए आईना में, थोड़ा क्या किया है भारत के लोकतंत्र के साथ आप लोगों ने, 90 बार से ज्यादा धारा 356 लगाकर, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो बिल्कुल स्पष्ट सारे देशवासियों को याद होगा जब 92 में बाबरी कांड के बाद हुआ, ऐसे न जाने कितनी सरकारें आपने गिराई। तो दूसरे को ज्ञान देने जा रही हैं, हमने किसी को नहीं तोड़ा है, ये आपके पाप हैं, आप ही भोगेंगी, ये पार्टियां आपको तोड़ के निकली हैं, आपकी जमीन पर खड़ी हैं और आप ही को मुंह दिखाती रही हैं, तो इसलिए आप हम पर हमको मत घसी, अपना इतिहास ये टूट के जाना, ये मजबूरी, ये एक मजबूती से खड़े, क्या मजबूती से खड़े, चार राज्यों में आपकी सरकार, अब आपके वहां पर और वहां पर आप हालात भी देख अपने के अंदर से आगे आप क्या क्या कर रहे हैं वहां पर, और आप हमको ज्ञान दे रहे हैं।
6: संजय सरकार 356 का इस्तेमाल नहीं किया के शर्मा जी, लेकिन आज की स्थिति में 356 की जरूरत ही नहीं है। कई लोग आरोप लगा दे कि बीजेपी 356 का इस्तेमाल किए बिना ही सरकार बदल देती है, इसके लिए गिराने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये भी आरोप लगाया जाता है। संजय सरकार जी जवाब दीजिए, उसके बाद अमित जमई के पास चलूंगा।
9: देखिए मैं एक चीज आपको बताने चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ का माहिर और बहुत बड़ा कलाकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर दीदी अगर 200 के ऊपर सीट भी लेके आते तो सरकार नहीं बना पाते थे, लेकिन आज के शर्मा जी को बोलता ममता बनर्जी हारे नहीं हराया गया है, अगर यही इलेक्शन कमिश्नर अगर ये सेंट्रल फोर्स मेरे हाथ में रहेंगे ना, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बोल बोल के रास्ते में दर खड़ा करके हरा देंगे, ये भी आप सुन लीजिए, जिस दिन चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्स मेरे हम लोग को हाथ में रहेंगे, उतना चुनाव हम लोग दावा को साथ कर रहा हूँ, आज जीत की आज मशीनरी मैकेनिज्म से हराया जाता है, आज बताइए ना, अगर इतना आपको सोहेल जी बड़े पत्रकार है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सोहेल जी, आप बताइए अगर 4 तारीख को दिन में 4 तारीख आपको सेकेंड में 2 तारीख को दिन में अगर 2 तारीख को दिन में अगर आप इतना सच्चा है चुनाव आयोग को बोलिए ना, 1 से 2 दोपहर में 1 बजे से लेकर 8 बजे तक उसको सीसीटीवी दिखाने के लिए एक विधानसभा के लिए 232-235 बूथ होता है, 12-1 बजे
6: वो तो छोड़िए, पहले संजय सरकार जी बताइएगा,
9: 12 बजे तक काउंटिंग, जरा
6: एक मिनट,
9: रात 12 बजे तक,
6: जरा एक मिनट, मुख्य मुद्दे पर आते हैं,
9: खत्म हो जाता है,
6: जरा एक मिनट, संजय सरकार जी चुनाव हो गया, चुनाव के नतीजे आ गए, अगर आपको दिक्कत है सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, ठीक है, तो वो सारी बातें हो गई, अब आज की बात करें, आज की स्थिति में कल्याण, संजय सरकार जी सुन लीजिए ना, आप सवाल भी सुन लीजिए ना, थोड़ी देर पहले कल्याण बनर्जी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ममता बनर्जी को चुनना चाहिए, कि वो अभिषेक बनर्जी को चुनेगी या पार्टी को चुनेगी, रख लीजिए काकुली दस्तीदार और ऋतव्रत बनर्जी को थोड़ा दरकिनार कर लेते हैं हम, लेकिन अब तो कल्याण बनर्जी भी पूछ रहे हैं, क्या जवाब देंगे आप, पार्टी के पास ऑप्शन क्या रह गया है, इसीलिए तो ये बातें हो रही है ना कि क्या कांग्रेस में मर्जर हो जाएगा,
9: एक खबर मेरे पास भी नहीं है कांग्रेस को मार्जर हो रहे कि नहीं है, आपको बस शायद खबर है, आप बोल रहे हैं मेरे पास जैसे कुछ खबर नहीं है, अंदरूनी मामला हम आपको बता सकते नहीं है, लेकिन एक चीज बताता, अगर अभिषेक के ऊपर कोई नाराजी तो पहले बताना चाहिए था, अभी चुनाव हारने के बाद में नाराजी जगा रहे क्यों, और दूसरे नंबर बात है अगर जिस दिन मेरे चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्स हम लोग को हाथ में रहेंगे, अमित शाह नरेंद्र मोदी जितना चुनाव लड़ेंगे उतना चुनाव हराएंगे, आप लिख के रख दीजिए आज की तारीख में, वो भी होने वाला है, वो भी होने वाला है, मैं आपको हकीकत बता, चुनाव आयोग
6: तो चुनाव हारने के बाद ही निकल के आती है,
9: को मालूम पड़ गया चुनाव आयोग भारतीय जनता 1 बजे से लेके तमाम एजेंट को हम लोग को तमाम एजेंट को सेंट्रल फोर्स ने पीट पीट के निकाल दिया था, अगर इस चुनाव आयोग के इतना बड़ा हिम्मत
6: है, यहाँ पर बैठे हुए हैं 8 बजे तक नाराजगी सरकार जाने के बाद चुनाव हारने के बाद ही निकल कर आती है पार्टी के भीतर, सही है ना ब्रिजमोहन जी, उसके बाद ही निकल कर आती है, जब तक सरकार रहती है तब तक कोई नाराजगी नहीं रहती है, सरकार नहीं होती है उसके बाद नाराजगी निकल कर आती है, यही होता है ना, शरद पवार भी यही फेस कर चुके हैं जो ममता बनर्जी आज फेस कर रही है,
13: मैं सोचता हूँ शायद इससे ज्यादा कहीं ज्यादा जरूरी ये होता है कि जो जनता से किए गए वायदे हैं उनको पूरा करने का जब मौका आता है तो उस समय फैसले लेने पड़ते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी नेतृत्व ने अजीत दादा पवार के की लीडरशिप में यही फैसला उसी समय लिया था, हम लोगों को पूरा विश्वास था कि देश में वो महाराष्ट्र की जनता के साथ जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने वायदे किए हैं यदि उनको हमें पूरा करना है
6: तो मैं कह रहा हूं
13: नरेंद्र मोदी जी के साथ जाना,
6: इनकार ही नहीं कर रहा हूं, बार डिबेट तो यही होती है कि चुनाव हारने के बाद अचानक लगने लगता है कि हमें तो एनडीए के साथ जाना चाहिए, सरकार चली जा गई उसके बाद आपको लगने लगा कि हमें तो विकास के राह पर चलना चाहिए, यही होता है ना ब्रिजमोहन जी? संजय सरकार को आप बता दीजिएगा यही होता है, आप महाराष्ट्र में दिखा देख देख देख चुके हैं पहले ही हम लोग।
13: साहिल भाई हम लोगों के साथ ऐसा नहीं था, वहां तो हम लोग जीते हुए थे और जीतने के बाद हम लोगों ने ये फैसला लिया था।
6: सरकार चली गई थी ना, लेकिन
13: बदली हुई है,
6: नेता विपक्ष थे ना अजित पवार?
13: हाँ नेता विपक्ष थे, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन उसी समय यह फैसला हुआ कि क्यों ना महाराष्ट्र की जनता के साथ किए गए वादों को पूरा करने के लिए हम लोग को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल की स्थिति बिल्कुल इससे अलग है, यहाँ तो आदरणीय ममता जी के खिलाफ पूरी तौर से बगावत हो गई है। आप देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी पे आज आरोप अपन लगा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो किसी नेता ने नहीं कहा कि आप टीएमसी को तोड़िए, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी इतनी मेजोरिटी में बीजेपी जीती है कि उनको जरूरत ही नहीं है। ये तो खुद आपस में लोगों में झगड़े हो रहे हैं, खुद आपस में एक दूसरे पे जूते चला रहे हैं, तो ये तो इन लोगों का इंटरनल मामला है। वो के भाई ने बिल्कुल ठीक बोला कि हम लोग तो दूर से
6: इंटरनल मामला तो है, लेकिन अभी देखिए आपके मामले में एक बात क्लियर थी कि आप अकेले गुट बाहर निकले थे, यहाँ पर दो दो गुट अलग अलग निकले हैं और इतना कंफ्यूजन फैल गया है कि वो बीजेपी के साथ में है कि खिलाफ है, यही समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि विधानसभा में तो कह रहे हैं कि हम खिलाफ है, संसद में तो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ में है, और वहां पर के शर्मा कह रहे हैं हम तो फिलहाल दूर से देख रहे हैं, उनमें आपस में झगड़ा चल रहा है, हम तो मजे ले रहे हैं।
13: ये स्थिति आज की
6: चल रही है। और आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाने से पहले अमित जमे जी आपसे जरा एक छोटी प्रतिक्रिया मुझे इस बारे में लेनी है, क्योंकि शिवसेना यूबीटी संजय राउत उस दिन कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तभी बीजेपी से लड़ पाएंगे, वरना रीजनल पार्टियां एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद ऐसी ही टूटती रहेगी। महाराष्ट्र में दो बड़ी पार्टियां टूट गई और तृणमूल कांग्रेस के साथ भी आज की स्थिति में यही हो रहा है, अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में
14: साहिल भाई हिस्टोरिकली जो लोग भारत की जो रीजनल पार्टियों के बारे में जानते हैं, जो ये समझते हैं कि भारत में हमेशा रीजनल पार्टियां हमारी जो ग्रेट सेकुलर डेमोक्रेसी है उसका सेफ्टी वॉल्व रही है, हमेशा उन्होंने जब भी तानाशाही का समय आया, चाहे वो कांग्रेस के जमाने का समय था या आज नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के लेड तानाशाही का समय है या UPA 1 UPA 2 में देश में जितनी भी डेवलपमेंट बड़े डिसीजन हुए वो हमेशा क्षेत्रीय दलों के सहयोग से उनके प्रेशर में दबाव में भारत के 80% लोगों के हक में फैसले होते रहे। अब नरेंद्र मोदी जी का देखिए जो नेचर है, अमित शाह जी का जो नेचर है वो बहुत ही ऑटोक्रेटिक, बहुत ही एरोगेंस, उन्हें लगता है कि लोकसभा में और भारत की संसद में हमारे पास नंबर नहीं होने की वजह से जो बड़े बड़े फैसले भारत के संविधान के विरुद्ध लेने हैं, भारत की डेमोक्रेसी के विरुद्ध लेने हैं, तो वो नंबर्स हम कैसे ले आएंगे, कहां से मिलेंगे? तो आप देखिए आम आदमी पार्टी का एक MMMP नहीं तोड़ा गया, थोक में आम आदमी पार्टी का MP तोड़ा गया, NCP थोक में तोड़ी गई, शिवसेना थोक में तोड़ी गई, जदयू नीतीश जी की पूरी पार्टी को अमित शाह जी निगल गए, कच्चा चबा गए उस पार्टी को, TMC को इस चुनाव में अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता मैं सुन रहा था 2024 में 46% वोट चेयर था TMC का हमारे पश्चिम बंगाल में, तो 46% वाली जो पार्टी है उसको आप कह रहे हैं कि वो तो क्रांतिकारी नहीं है, क्रांतिकारी तो अमित शाह जी है, जो शासन प्रशासन सबसे डरा हुआ लोकतंत्र में जो आदमी है वो अमित शाह है, वो हमारे देश की लोकतंत्र को निकलना चाहते हैं, उसके लिए नंबर चाहिए। अब TMC ने ममता दीदी की गलती ये है क्षेत्रीय दलों की कि ये लोग हमेशा युवाओं पे, क्रिकेटर्स पे, फिल्म से आए हुए महिलाओं पे जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता रहा उनके सम्मान के लिए हमेशा इनको, क्योंकि जनाधार बहुत बड़ा रहा TMC का, इनको संसद में भेजते रहे, ये जीतते रहे जनता की ताकत पे। आज जब ममता दीदी
6: नॉन पॉलिटिकल लोगों को भेजते रहे और उसका खामियाजा भुगत रहे, लेकिन अमित जमे जी ये जो आपका दावा है ना, ये जो आपका दावा है ना कि इनको भेजते रहे, लेकिन वो भी ठीक नहीं है ना। देखिए बगावत की किसने है, काकोली घोष दस्तेदार ने बगावत की है, 40 साल से ममता बनर्जी के साथ में थी, ऋतव्रत बनर्जी बगावत कर रहे हैं जो CPM से तृणमूल कांग्रेस में आए,
14: मैं आपसे
6: शताब्दी रॉय वहां पर काकोली घोष के साथ वहां पर,
14: मैं कह रहा हूं बंगाल हमेशा भारत की सेक्युलर डेमोक्रेसी के पक्ष में खड़ा हुआ आजादी से लेकर, अगर काकोली घोष के ब्लड में सेक्युलरिज्म था तो वो कहती कि वो कांग्रेस पे जा रही है, वो लेफ्ट पे जा रही है, लेकिन वो एनडीए बीजेपी जो हत्यारे हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव के, जिन्होंने अपहरण किया है।
6: के शर्मा जी इसका जवाब देंगे। इस बीच आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से उनसे प्रतिक्रिया, उसके बाद शर्मा जी आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। फायरवॉल की बात यहाँ पर अमित गमई कर रहे थे। रीजनल पार्टियां, रीजनल पार्टियां
10: नहीं, मैं बता रहा,
6: ठीक है, रीजनल पार्टियां आशुतोष ये कह रहे हैं, अमित गमई कह रहे थे फायरवॉल की तरह, अगर कोई भी नेशनल पार्टी सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती है तो उनके बीच में फायरवॉल की तरह काम करेगी। शर्मा जी आपके पास में आऊंगा, एक बार आशुतोष जी से प्रतिक्रिया लेके आपके पास आ जाऊंगा मैं, ठीक है। अब वो फायरवॉल धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो क्या आज की स्थिति में भले ही कांग्रेस पार्टी इसका कह रही है कि खारिज करिए इस खबरों को, लेकिन क्या एनसीपी एसपी या टीएमसी जैसी पार्टियों के पास कोई और चारा नहीं बचा है बजाय इसके कि कांग्रेस में वो विलय कर दे, उनके साथ में मर्ज कर दे और उसके बाद बीजेपी के सामने खड़ी हो जाए?
15: देखिए साहिल, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस का बिखराव हुआ, और उसके दोनों कारण है, पार्टी के अंदरूनी राजनीति भी कारण है और जिस तरीके से उनके ऊपर लगातार उनके सांसदों विधायकों के ऊपर प्रेशर, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन आज की तारीख में ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी से अकेले क्षेत्रीय पार्टियां नहीं लड़ सकती। ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूं, बल्कि पिछले एक महीने से लगातार कह भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ सकती। पहले यह मिथ बनाया गया था कांग्रेस नहीं लड़ पाती, आज की तारीख में इनके विपक्ष के तमाम सूरमा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, अपनी विधानसभा की सीट हारे हैं, ममता बनर्जी लगातार दूसरी बार अपनी विधानसभा की सीट हारी हैं, इस एमके स्टालिन तमिलनाडु के इतने बड़े नेता अपनी विधानसभा की सीट हारे हैं, इस बात की क्या गारंटी?
6: राहुल गांधी भी अमेठी से हार गए थे पिछली बार 2019 में, अमेठी से राहुल गांधी भी हार गए थे।
15: बिल्कुल, मैं और लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं कि जब पार्टियां छोटी होती हैं तो उन पार्टियों को तोड़ना सबसे आसान काम होता है। आज कांग्रेस पार्टी के पास 99 सांसद है, उनमें से अगर भारतीय जनता पार्टी को तोड़ना होगा तो कम से कम उनको 70 विधायक संसद सांसद चाहिए। इसलिए अगर क्षेत्रीय पार्टियां अगर जीवित रहना चाहती हैं 2029 तक, तो चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आपकी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी हो, इन सबको ये सोचना पड़ेगा कि क्या अकेले अकेले भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं या सबको एक साथ मिलकर कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे,
6: समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया है,
15: इसलिए मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो पूरी पृष्ठभूमि रही है वो समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोग रहे हैं, वो हमेशा कांग्रेस के विरोध में राजनीति करके सामने खड़े हुए हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन वाईएसआर रेड्डी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस की पार्टी और शरद पवार की एनसीपी की पार्टी, ये तीनों कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां हैं और एनसीपी का ब्रजमोहन जी यहां बैठे हुए हैं, लेकिन एनसीपी का ये हालत नहीं होती अगर एनसीपी कांग्रेस के साथ अलग नहीं हुई होती। आज शरद पवार जो चाणक्य माने जाते हैं, कहां है महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर? तो ममता बनर्जी कहां है? कहां जगनमोहन रेड्डी? तो सबको एक साथ आना पड़ेगा,
6: ठीक है शर्मा,
15: मर्ज करेंगे तो बचेंगे,
6: ठीक है, मर्ज करेंगे तो बचेंगे। संजय सरकार आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले के शर्मा आपको जवाब देना चाहिए।
10: नहीं, अमित जमाई अभी कह रहे थे ये हिंदुओं के हत्यारे हमें समझा रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी है, हिंदुओं की हत्यारी रही है, ये मुलायम सिंह ने ही हिंदुओं का आज ये दूसरे जगह प्रयोग कर रहे हैं। अब मैं दूसरा, हाँ बता रहा हूँ साहब, हाँ बता रहा हूँ, वो तो जनता, बंगाल के जनता ने हराया साहब, आप उनको हत्यारे बोल रहे हैं, शर्म करो, जनादेश का समर्थन सम्मान करना सीखो अमित जमाई, लेकिन आश्चर्य है आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप गालियां बकने वाले लोग हो। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, अभी एक अच्छा विमर्श प्रारंभ किया इन्होंने, क्षेत्रीय पार्टी अमित साहिल जी मैं विमर्श पे आता हूँ, जो मुझे पता है जब तर्क नहीं होते, कुतर्क करना होता है तो गाली गलौजी आती है सर, ये मुझे आपकी
6: आप
10: समझ
6: मुद्दे पर चलिए।
10: मैं साहिल जी एक विषय पर आता हूँ, अभी बड़ा अच्छा विमर्श आया कि क्षेत्रीय पार्टी नहीं लड़ सकती। क्षेत्रीय पार्टी क्या, क्षेत्रीय पार्टी किस आधार पे बनी? ये क्षेत्रवाद भाषावाद को जन्म देने वाले तो कांग्रेस है, ये तो सच है, इन्हीं ने बांटा इस देश को, और ये क्षेत्रीय पार्टियां किस विचार को लेकर बनी और कहां पहुंची हैं? आज क्षेत्रीय पार्टियों के हालात सिर्फ ये है, एक जाति और एक धर्म, सपा क्षेत्रीय पार्टी है, MY समीकरण, RJD क्षेत्रीय पार्टी है, MY समीकरण, ममता बनर्जी क्षेत्रीय पार्टी है, केवल मुस्लिम तुष्टिकरण, स्टालिन क्षेत्रीय पार्टी,
6: ऋषभवंश श्रीवास्तव की पार्टी को क्या कहेंगे आप?
10: की राजनीति,
6: के शर्मा जी,
10: तो इनका विमर्श,
6: के शर्मा जी,
10: ऋषभवंश
6: श्रीवास्तव की पार्टी को क्या कहेंगे? वो भी क्षेत्रीय पार्टी,
10: धर्म पर टिक गया
6: के शर्मा जी,
16: नहीं लड़ सकती।
6: अमित जमे जी एक मिनट,
16: क्योंकि आप
6: ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी की पार्टी को आप क्या कहेंगे, वो भी क्षेत्रीय पार्टी है।
14: क्षेत्रीय पार्टी
6: एकनाथ शिंदे की पार्टी को आप क्या कहेंगे, वो भी क्षेत्रीय पार्टी है।
14: और उनसे आपको समर्थन,
6: जनता दल यूनाइटेड को आप क्या कहेंगे, वो भी क्षेत्रीय पार्टी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आप क्या कहेंगे, वो भी क्षेत्रीय पार्टी। अमित जमे जी एक मिनट, अमित जमे जी एक मिनट, अमित जमे जी एक मिनट,
16: मैं आ रहा हूँ सर।
14: पार्टी जातिवादी पार्टी है।
16: हाँ मैं बता रहा हूँ सर, वही क्षेत्रीय पार्टियां, वही क्षेत्रीय पार्टी सफल हुई हैं जिन्होंने सर्वसमावेशी विकास को तरहीज दी है। जो खुल के मुसलमानों की तुष्टिकरण की बात करते हैं, जो खुल के एक जाति की बात करते हैं, वो आज जो है सिकुड़ के रह गए और वो हमसे नहीं जीत सकते। ये है, यही सच्चाई है
6: आशुतोष।
16: आज केवल आशुतोष, केवल मुसलमान, केवल मुसलमान,
6: देखिए ठीक है शर्मा जी, ठीक है।
16: तो आज जो केवल एक धर्म की,
15: देखिए मैं मुझे मुझे मुझे इसमें मुझे इसमें मुझे इसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके की क्षेत्रीय पार्टियों के लिए उसकी स्पेस में जगह नहीं है। आप चिराग पासवान का उदाहरण देख लीजिए, रामविलास पासवान के बाद किस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी को दो फाड़ किया गया, किस तरीके से चिराग पासवान का इस्तेमाल जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने के लिए किया गया। और आज की तारीख में एनसीपी, मैंने मैंने आपके बारे में नहीं बोला
16: कर रहे हैं
15: शर्मा जी, मैं आपसे मुंह नहीं लगना चाहता हूँ।
16: ये बेवकूफी
15: शर्मा जी, मैं आपसे मुंह नहीं लगना चाहता हूँ। आप शांत रहे, शांत रहे।
6: आज की स्थिति में बात करिए, मेरा समय खत्म हो रहा है, लेकिन आज की स्थिति में
15: शांत रहे।
6: सबसे बड़ा मुद्दा एक बार फिर इस बात को लेकर उभर पर आ गया है, जो दिग्विजय सिंह एक वक्त कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो कांग्रेस से अलग हुए धड़े एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो जाए, लेकिन इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां भी है। क्या इसी के वजह से ममता बनर्जी फिलहाल ये फैसला नहीं ले पा रही, या शरद पवार ये फैसला नहीं ले पा रहे, इस पर भी ध्यान रखना होगा। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
4: इन एसोसिएशन विद
5: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
4: हिंट, बड़े आराम से
5: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: विमल बोलो जुबां केसरी।
6: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
7: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
8: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
9: मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार का पर्चा रद्द हुआ। आरोप ये कि हलफनामे में जानकारी छुपाई गई। इसी तरह की गड़बड़ी झारखंड में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के पर्चे में थी, लेकिन झारखंड में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को संशोधन का समय मिल जाता है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो जाता है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज करने की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक आ गई है।
10: चुनाव आयोग से जब तुरंत राहत नहीं मिली, तो मीनाक्षी नटराजन के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अर्जी दाखिल की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से भी कांग्रेस को राहत नहीं मिली। मीनाक्षी नटराजन की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि एक गैर सूचीबद्ध मामला है जिसे तत्काल सुनना आवश्यक है, इसमें देरी नहीं की जा सकती। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी मेंशनिंग कल सुनी जाएगी। जवाब में सिंघवी ने कहा कि ये मामला कल तक इंतजार नहीं कर सकता, ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का केस है, अगर आज नहीं सुना गया तो चुनाव आयोग परिणाम घोषित कर देगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो चुनाव से संबंधित विवाद है। इस पर सिंघवी ने कहा कि मामले को भले ही कल सूचीबद्ध कर दें, लेकिन तब तक परिणाम घोषित न करने का निर्देश तो दें।
9: कांग्रेस का तर्क है कि जो केस रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसके आधार पर नामांकन कैसे रद्द कर सकते हैं। नामांकन रद्द होने से नाराज कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली से भोपाल तक विरोध प्रदर्शन किया।
10: शुक्रवार को भोपाल में बड़े आंदोलन की धमकी भी दी है। आरोप बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाया कि सब मिले हुए हैं।
9: कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज होने से बीजेपी ने एमपी की सभी 3 राज्यसभा सीटें जीत ली हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे धांधली कहकर विरोध कर रही है।
11: संविधान की लज्जा उड़ाई जा रही है। हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी पेपर दे रही है नामांकन का, 6:30 बजे कहते हैं आपका नामांकन कैंसिल। क्यों कैंसिल? कि आपको फना साल में एक नोटिस आया था, उस पे कोई FIR नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई सजा नहीं, लेकिन नामांकन रद्द कर दिया क्योंकि वह कांग्रेस की प्रत्याशी थी।
9: कांग्रेस पार्टी अब सड़क पर है, निशाने पर बीजेपी और चुनाव आयोग है। आरोप सीधा है कि एक देश में एक ही तरह के मामले के लिए 2 कानून कैसे हो सकते हैं। झारखंड में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को समय देकर पर्चा ठीक करवाया जा सकता है, तो फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार को समय क्यों नहीं दिया गया। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
12: एक तरफ तो KGMU में जो कैंसर पेशेंट को इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो एक इंजेक्शन उनको ना देकर कहीं ना कहीं उसका हेराफेरी की गई। साथ ही साथ कई मरीज ऐसे भी हैं जिनको इंजेक्शन लगाया नहीं गया जबकि उनके नाम पर इंजेक्शन रिलीज कर लिया गया। ये हालात हैं कैंसर पेशेंट्स के जो केजीएमयू में आते हैं जिसकी एक वृद्ध जांच चल रही है। इससे परे दूसरी जगह जो हार्ट के पेशेंट हैं उसमें स्टेंट डालने के लिए एक ही शख्स को एक ही मरीज को पांच पांच स्टेंट डाल दिए गए।
13: लोगों की जानकारी में आया है कि कुछ आयुष्मान के मरीजों में पांच स्टेंट का प्रश्न उठ रहा है। देखिए कुछ विशेष परिस्थितियों में पांच स्टेंट भी लगते हैं कुछ समय के भीतर, लेकिन उसकी जांच करना जरूरी है क्योंकि
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
16: durable pipes fittings and tanks a complete range of sanitary solutions
17: Akajay the number one Korean skincare brand now in India

0: ममता दीदी बड़ी मझधार में फंसी, घर यानी पार्टी में आग लगी है, बाहर टीएमसी पर सिर्फ अंडे बरस रहे। इस मुसीबत की घड़ी में एक मदद का हाथ उनकी ओर बढ़ा तो मुसीबत में मोहब्बत की दुकान में मर्जर तक बात पहुंच गई। ममता बनर्जी के पास पार्टी बचाने का रास्ता हर गुजरते घंटे के साथ बंद होता दिख रहा है। अब तो कल्याण बनर्जी तक ने अल्टीमेटम दे दिया, कहा अभिषेक नहीं चुनाव हराया, अभिषेक नहीं पार्टी का नाश किया, अब ममता या तो पार्टी चुन ले या भतीजा। हालत ये कि ममता के 28 में से 19 लोकसभा सांसद बगावत की चिट्ठी साइन कर चुके, 13 में से 3 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके, पार्टी के 80 में से 64 विधायक स्पीकर को अलग चिट्ठी दे चुके, 7 में से 4 मेयर चले गए, 130 से अधिक पार्षद विदा हो गए, कई नगर पालिकाएं भंग हो गयी। ममता अपनी पार्टी की सभी समितियां पहले ही भंग कर चुकी है। ममता के पास पार्टी के नाम पर फिलहाल पुख्ता तौर पर वो खुद बची हैं और बचे हैं अभिषेक। ऐसे में ममता के दिल्ली दौरे पर जो सोनिया गांधी के साथ केमिस्ट्री दिखी और जिस तरह ममता अभिषेक ने सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकातें की और उसके ठीक एक दिन बाद जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने देश भर से अपने पार्टी महासचिवों, पार्टी प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की आपातकालीन बैठक बुलाई है, उससे कांग्रेस टीएमसी में मर्जर वाली खबर और उड़ चली। दरअसल टीएमसी और कांग्रेस के मर्जर की जो हवा चली उसका पश्चिमी विक्षोभ महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जिसमें कभी पवार ने कांग्रेस के साथ दलों के एकजुट होने की बात कही थी, वही सपना बार बार आकार लेता दिखता है। और जब संजय राउत ने एनसीपी को कांग्रेस में मर्ज कर जाने की बात कही तो सुप्रिया सुले ने इनकार नहीं किया। सुप्रिया कांग्रेस की ओर से विलय प्रस्ताव वाले सवाल पर भी मना नहीं करती।
1: अगर बारिश आई तो मैं छाता लूंगी कि रेनकोट, अभी मैंने तय नहीं किया।
0: सुप्रिया सुले को बारिश का इंतजार है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ दो टुकड़े हो चुकी पार्टियों में एकजुटता की चर्चा महाराष्ट्र में सबसे जोर पर, क्योंकि वहां दो दलों के चार टुकड़े। पिछले दिनों उद्धव के नेता अंबादास दानवे और शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार दिल खोल कर मिले तो ऐसी हवा फिर चली कि कहीं शिवसेना में नई खिचड़ी तो नहीं पक रही। महाराष्ट्र की सियासत में मर्जर की कहानी कैसा मोड़ लेगी ये कहना भी जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस टीएमसी के एक साथ मिलकर गठबंधन में काम करने का फैसला तकरीबन तय है, मर्जर की पुष्टि कोई नहीं कर रहा। हालांकि कांग्रेस ने अब आधिकारिक रूप से मना कर दिया है कि टीएमसी कांग्रेस में कोई मर्ज नहीं होने वाला। कांग्रेस भले मना करे लेकिन दिल्ली से बंगाल तक के हालात बताते हैं कि अब बंगाल में कांग्रेस और ममता बिना एक दूसरे का हाथ थामे चल नहीं सकते। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
2: सुनिए इन नारों को, ये नारे किसी आम प्रदर्शन के नहीं है, ये सीधे सीधे उस अवैध कब्जे को चुनौती है जिसे पाकिस्तान दशकों से दुनिया के सामने अपना बताता आया है। पीओजेके का रावलकोट रविवार की पूरी रात गोलियों, आंसू गैस के गोलों और सेना के बूटों की आवाज से नहीं बल्कि आवाम की दहाड़ से गूंजता रहा। कई जिलों से आए हजारों लोग रात भर सड़कों पर डटे रहे, बच्चे बूढ़े जवान सबका एक ही संकल्प है, अब हुक्मरानों की तानाशाही नहीं चलेगी। यह गुस्सा अचानक नहीं भड़का है, ये लावा है जो अब फट चुका है। 7 और 8 जून को रावलकोट ने वो खूनी मंजर देखा जिसने आवाम के सब्र का बांध तोड़ दिया। प्रतिबंधित ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के आह्वान पर जब जनता आर्थिक तंगी, कमर तोड़ महंगाई और अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरी तो पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उन पर सीधे गोलियां बरसाई, कई बेगुनाह नागरिक मारे गए, दर्जनों घायल हुए। लेकिन फौज के इस जुल्म ने आदमी घी का काम किया, अब रावलकोट की सड़कों पर सीधे पाकिस्तानी सेना की वर्दी को ललकारा जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो पीओजेके के इतिहास में ये अब तक का सबसे हिंसक और सबसे संगठित आंदोलन बन चुका है। पहले लोग सिर्फ आटे और बिजली के बिलों पर रोते थे, लेकिन इस बार बात आर पार की लड़ाई पर आ गई है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि जब तक उनके शहीदों को इंसाफ नहीं मिलता, जब तक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के अत्याचारों की स्वतंत्र जांच नहीं होती, तब तक ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। ये आंदोलन अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बस से बाहर हो चुका है। रावलकोट के इस महा आंदोलन ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के उस खोखले प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाकर रख दी है जिसमें वो कश्मीरियों का हमदर्द बनने का ढोंग करता है। मंच से स्थानीय नेताओं ने सीधे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और वैश्विक समुदाय से अपील की है कि वो पीओजेके में हो रहे इस नरसंहार और जुल्म का संज्ञान। पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है, एक तरफ कंगाली है दूसरी तरफ वो आवाम खड़ी है जिसे उसने अब तक गुलाम समझ रखा था।

ये नारा अपने आप में उस पूरी कहानी को बयान कर रहा है। पाकिस्तान ने बंदूक के दम पर जिस जमीन को हथियाया था, आज उसी जमीन के मालिक खड़े होकर कह रहे हैं कि कब्जा नामंजूर है। रावलकोट की सड़कों पर उमड़ा ये जन सैलाब इस्लामाबाद के लिए आखिरी चेतावनी है। जब आवाम ठान लेती है तो बड़ी से बड़ी तानाशाही हुकूमतें भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। पीओजेके में लगी ये आग अब बुझने वाली नहीं है, क्योंकि इस बार आसिम मुनीर की फौज के सामने सिर पर कफन बांधे आवाम खड़ी है। आज तक ब्यूरो।

0: एक बात तो साफ है कि टीएमसी की लड़ाई अब अदालत में और चुनाव आयोग के सामने भी जाएगी, उस पर नजर बनाए रखेंगे। लेकिन फिलहाल दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, आप देखते रहिए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: टीएमसी बागी गुट की नेता काकुली घोष का एनडीए के साथ होने का दावा। कहा 20 सांसद हमारे साथ, कल्याण बैनर्जी के भी बगावती तेवर, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा बोले मैं ममता के साथ। कांग्रेस पार्टी की बैठक में राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। कहा बेरोजगारी और महंगाई से पूरा समाज त्रस्त, बोले मोदी ने मरवा दिया, खड़गे ने भी गिनाई खामियां। सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका, अब कल होगी अर्जी पर सुनवाई। एमपी की तीनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा। बिहार एमएलसी चुनाव में सभी 10 उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत। जेडीयू के 4 प्रत्याशियों में निशांत कुमार भी जीते। बीजेपी के 4, एलजेपी और आरजेडी में एक एक नाम भी शामिल। ओमान में अमेरिकी हमले की चपेट में एक और भारतीय जहाज। 3 दिन के तीसरे हमले में 3 भारतीयों की मौत। यूएस अधिकारियों को विदेश मंत्रालय ने किया समन।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
2: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। टीएमसी में हर दिन बगावत का नया चैप्टर खुल रहा है। अब कल्याण बैनर्जी ने ममता बैनर्जी को अल्टीमेटम दे दिया, या तो ममता उन्हें चुने या फिर अभिषेक बैनर्जी को। कल्याण बैनर्जी उन नेताओं में है जो टीएमसी में मची भगदड़ के बीच जोर शोर से ममता बैनर्जी का बचाव करते नजर आ रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अभिषेक पर जोरदार प्रहार किया। सवाल है कि क्या वाकई ममता बैनर्जी को भनक नहीं थी कि उनके साथ उठने बैठने वाले पार्टी के सांसद विधायक क्या सोचते हैं। हालांकि आज ममता बैनर्जी के लिए राहत की बात यह है कि बागियों में गिने जा रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता के साथ बने रहने का बयान दिया है। इस बीच राज्यसभा से टीएमसी के एक और सांसद प्रकाश चिक बराइक ने भी आज इस्तीफा दिया। सवाल है कि ममता के पास अब विकल्प क्या है। अटकलें कांग्रेस में टीएमसी के विलय की भी थी, हालांकि कांग्रेस ने इससे इनकार किया है। क्या ममता बैनर्जी अपने ही लोगों की बगावत का सियासी झटका झेल सकेंगी? हल्ला बोल में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, द ग्रेट बगावत ड्रामा। हमारे साथ जुड़ेंगे सांसद टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा लाइव और पूर्व सांसद टीएमसी की सुष्मिता देव भी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट।
1: Everybody. One must understand that if for his for Abhishek Banerjee the party has been destroyed today. We have lost it.
2: Everybody is saying this.
1: Everybody is saying. I have not said. I am in the back days of the party. I was with the Mamata di. I said again. I am saying. I am with Mamata di. But Mamata di has to choose whether Abhishek Banerjee she will keep or she will keep me.
2: That's an ultimatum.
1: Yes. This is. I leave it to her.
0: बस तारीख बदली है और तेवर बदल गया। इन्हीं कल्याण बैनर्जी ने 9 जून को तंज किया था कि टीएमसी से बगावत कर रहे लोग ममता बैनर्जी की साड़ी की तारीफ करते थे।
1: Whenever they made the didi was so beautiful, didi your sari so nice.
0: लेकिन आज अभिषेक बैनर्जी को घमंडी बताकर कोर्ट में उनका केस लड़ने से इनकार कर ममता को खुद में और अभिषेक में किसी एक को चुन लेने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। ममता को कल्याण बैनर्जी की ये गुगली ऐसे वक्त पर आई है जब राजनीतिक गलियारों में इन अटकलों को हवा मिली कि सोनिया गांधी ने ममता बैनर्जी को ये ऑफर दिया कि वो तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय कर दें। 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया और ममता गले मिली थी। 9 जून को सोनिया से मिलने ममता 10 जनपद गई। 10 जून को 10 जनपद पर ही अभिषेक बैनर्जी से राहुल गांधी की मुलाकात हुई। वैसे तो आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने विलय की अटकलों को खारिज किया है, लेकिन ममता के करीबी नेता खुलकर कुछ नहीं कह रहे।
3: कांग्रेस के साथ एक साथ काम करना जरूरी है, इतना मैं बोल सकता हूँ। वो मर्ज होगा कि अलायंस होगा, ये बाद में दिखा जाएगा।
4: हाउ कैन वी आंसर फॉर दिस रूमर्स ब्रदर? These are totally rumors. Yesterday, our communication secretary has already stated that these are baseless things. Of course, Mamata Banerjee ji and Abhishek Banerjee ji went and met Honorable Madam and Rahul Gandhi ji. Routine discussion. That is an extension of India Alliance discussion because everybody want to strengthen India Alliance. Everybody want to strengthen the fight against this anti-democratic government.
0: इस बीच तृणमूल के भगदड़ करने वाले नामों में राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बराइक भी शामिल हो गए। उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपा। सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव के बाद इस्तीफा देने वाले वो राज्यसभा के तीसरे तृणमूल सांसद हैं।
5: प्रकाश जी, कैसा काम आपको लग रहा है अभी जब से बीजेपी सरकार आई है, वो कैसा काम कर रही है बंगाल में?
6: अच्छा कर रहा है।
0: लोकसभा के सांसद शत्रुघ्न ने कहा कि ममता मेरे मुश्किल समय में साथ रही है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, लेकिन उन्होंने खेल भावना के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के 12 साल पूरे होने की बधाई भी दी है। आज तक ब्यूरो। तो टीएमसी सांसदों को लेकर जो अटकलें तमाम लगाई जा रही है, उस पर बेहद खास मेहमान

0: शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्हें शॉटगन भी कहा जाता है, आसनसोल से सांसद भी हैं, टीएमसी के सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शत्रुघ्न जी आज तक पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक की चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है, वाकई सही मायनों में बहुत ही तेज चैनल है
0: जी
1: आज तक। कल जो धूम मची और जो धूम मचाई आपने, जो चर्चा की आपने, उसकी वजह से आज पूरे चारों तरफ फिर से एक नई ऊर्जा, एक नई क्रांति, एक नई लहर पैदा हो गई है।
0: जी शत्रुघ्न जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आप किस तरफ हैं, क्योंकि कल ये दावा किया गया कि 19 नाम सामने आए हैं और उन 19 नामों में आपका भी नाम है जो एक बागी और अलग संसदीय गुट बनाना चाहते हैं टीएमसी में। क्या आप उस गुट में
1: देखिए
0: हैं या आप ममता दी के साथ? जी
1: देखिए, मैं अपनी स्पष्ट वादिता के लिए और अपने खुले स्वभाव के लिए मशहूर हूं या बदनाम हूं। जहां तक बागियों का सवाल है, मुझे तो खुद ही कुछ लोग बागी समझते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। लेकिन जहां तथा कथित बागियों के बीच हमारा नाम गया है, वो तमाम अपने ही लोग हैं, अपने ही दोस्त लोग हैं, अपनी विचार से वो लोग गए वहां पे, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मेरा नाम उसमें शामिल नहीं है, मैंने कोई दस्तखत नहीं किया है, कोई सिग्नेचर नहीं है, मैंने ना हामी भरी है और ना ही, टू बी वेरी फेयर उनके लिए मैं सच कहूंगा, उनमें से किसी ने मुझे कॉन्टेक्ट भी नहीं किया है। हो सकता है कुछ लोग टेकन फॉर ग्रांटेड समझ के आगे बढ़ गए हों, लेकिन किसी ने हमें कॉन्टेक्ट नहीं किया है। और जिन लोगों ने कांटेक्ट किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रगण हो, चाहे अन्य पार्टी के, अन्य जगह के, मैं उनका भी आभारी हूं। उन्होंने बहुत अच्छे मन से, बहुत मेरा भला ही सोच के उन्होंने कहा होगा, निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया अपनी ओर। लेकिन मैं इस मुसीबत की घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने, जो हमारी नेत्री हैं या नेता हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया था, आज उनकी इस मुसीबत की घड़ी में मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैंने 3 लाइन व्हिप अपनी अपनी तरफ से इशू कर दिया है, और वो ये है कि मैं ममता जी के साथ हूं, मैं ममता जी के साथ था, और मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है रास्ता बदलने की या किसी और दिशा में जाने की।
0: लेकिन आपने खुद ही कहा कि बीजेपी के भी कुछ नेता थे, अन्य पार्टियों के थे, तो क्या आप शत्रुघ्न जी उनका नाम लेना चाहेंगे कि कौन आपका बीजेपी में घर वापसी कराने के लिए इतना एक्साइटेड था, आतुर था?
1: नहीं नहीं वो लोग भी अच्छे लोग हैं, मित्रगण हैं। देखिए, मैं तो अपने आप को सर्वदल प्रिय मानता हूँ, हर पार्टी में मेरे दोस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो मेरा पालन लालन पालन हुआ है, पालन पोषण हुआ है। मैं उस पार्टी में तो नाना जी महान नायक और महान भारत रत्न नाना जी देशमुख मुझे लेकर गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत के भूतपूर्व अभूतपूर्व प्रधानमंत्री या हमारे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, अल्टीमेट गुरु एंड लीडर आडवाणी जी के साथ मिलाया था। तब मैं भारतीय जनता पार्टी में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया था, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी में ही लालन पालन हुआ है, ट्रेनिंग हुई है, आगे बढ़ा हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर भी एक बार नहीं दो दो बार बना भारतीय जनता पार्टी में। तो मैं दिल से तो व्यक्तिगत तौर पर उनका बहुत आभारी भी हूँ, उनके लिए बहुत प्रेम भी है, बहुत आदर भी है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं कोई निजी किसी पे हमला नहीं करता हूँ, किसी का नाम लेके कुछ नहीं बोलता हूँ। तो आज की भी इस घड़ी में जब अंजना ओम कश्यप हमसे पूछ रही हैं, तो मैं अपने मित्रों का जो भारतीय जनता पार्टी में है या जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया आने को कहा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि अंतोगत्वा हैं तो हमारे ही लोग। वो हमारा अपना मानना है कि किसी भी पार्टी में हो, आपका विरोध हो लेकिन मतभेद ना हो, मतभेद हो तो मन भेद ना हो, ये मैं हमेशा मानता हूं।
0: मेरा प्रश्न आपसे ये है कि लगभग अन्य लोग, आज तो कल्याण बैनर्जी जी भी, जो कल तक बड़े गुस्सा थे बागी सांसदों से, वो भी कह रहे हैं कि अभिषेक जी का जो हाई हेडेड एटीट्यूड है वो उनको पसंद नहीं है। आपको क्या वजह लगती है? अभिषेक बैनर्जी को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उन्हीं को लेकर ज्यादातर, एक तो विधायक ही ऋतुव्रत बैनर्जी के साथ साठ अलग हो गए और उन्हीं के नाम पर अब ये लोग भी नाराजगी दिखा रहे हैं सांसद, आपका क्या कहना है इस पर?
1: कल्याण बनर्जी बहुत बुद्धिमान, बहुत लर्नर, इंटेलेक्चुअल पार एक्सेलेंस है, बहुत बढ़िया आदमी है वो। अब उनकी अपनी क्या अपनी क्या वजह है जिसकी वजह से वो अभिषेक बैनर्जी से जिनके बारे में उन्होंने कहा है, लेकिन याद रखिए उन्होंने अभिषेक बैनर्जी के बारे में कहा है, उन्होंने कहा है कि वो ममता जी के साथ हैं और ममता जी के विजडम पे उनको पूरा विश्वास है, जैसा ममता जी कहेंगी वैसा वो करेंगे। यानी हमारे चंद सबसे काबिल पार्लियामेंटेरियन जो है देश में, उनमें से यकीनन एक हमारे कल्याण बैनर्जी हैं, इसमें दो राय नहीं है। अब उनके अपने कारण होंगे, हो सकता है प्रोफेशनल कारण हो सकता है एज ए लॉयर गए हों, वहां पे उनको वो मान सम्मान ना मिला हो या वो बात ना हुई हो, इसलिए वो शायद नाराज हुए हों। न किसी पार्टी में रहते हैं, दो चार बर्तन तो आपस में ढनढनाते ही हैं, और इसका मतलब ये नहीं, जब बर्तन ढनढनाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं या पार्टी से अलग हो रहे हैं।
0: और काकुली घोष पर आपका क्या कहना है शत्रुघ्न जी, क्योंकि वो तो 40 साल से 85 के साल से वो कह रही हैं कि मैं ममता दी के साथ थी, वो उस पूरे गुट को लीड कर रही हैं और कह रही हैं एनडीए का समर्थन करेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए मैं काकुली घोष जी को बहुत अच्छी तरह तो नहीं जानता हूं, मैं तो खुद ही पार्टी में नया हूं, दो ही टर्म तो इलेक्शन जीत कर आया हूं, वहां पे रिकॉर्ड मार्जिन से आया, इसमें आसनसोल की जनता और बंगाल के लोगों का बहुत प्यार मान सम्मान मिला है, नेतृत्व रहा है ममता जी का, जोड़ा फूल पर जीत के आया हूँ, जोड़ा फूल सिंबल पे जीत के आया हूँ। तो मेरा उन लोगों से यही कहना होगा कि जो लोग अभी, मेरा हम्बल निवेदन है, सजेशन है कि जो लोग जोड़ा फूल पर जीत कर आए हैं, वो अगर जोड़ा फूल छोड़कर जाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि वो अपने को रिजाइन करें, इस्तीफा दें और फिर जिस पार्टी में जाना है उस पार्टी में अगर आके चुनाव लड़े, जीत के जाए, उनका बिल्कुल स्वागत होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो अपनी अपनी विचारधारा पे अपने अपने विचार से चलते हैं। और जहां तक सवाल है उनका, अब अभिषेक बैनर्जी का,
0: जी
1: अभिषेक बैनर्जी को भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मेरे नेता सिर्फ और सिर्फ ममता बैनर्जी रही हैं, सिर्फ, और मैं और किसी को ऐसे नहीं जानता हूं, तो मेरा कोई खास अनुभव नहीं है। मेरी जो भी डायरेक्ट बातचीत होती थी या निर्देश आदेश होता था वो ममता जी की तरफ से होता था, और आज भी ममता जी जो कहेंगी, ममता जी जब तक पार्टी में हूं मैं ममता जी की बात सुनूंगा, और मैं और किसी को नहीं जानता हूं और ना ही किसी को उस रूप में मैं मानता हूं।
0: शत्रुघ्न जी, इसीलिए कहते हैं कि आप बेबाकी से जब बोलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बाकी नाम भी, मतलब कल भी जब लिस्ट आई तो बड़े हैरान करने वाले नाम हैं, यूसुफ पठान, सायोनी घोष, आप भी उतने ही हैरान हुए?
1: हुए, जरूर हुए, लेकिन जब मैं पहले यूसुफ पठान, तो वाकई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही बढ़िया काबिल आदमी है, बहुत शरीफ डिसेंट है, जेंटलमैन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है, इससे ज्यादा मैं इस वक्त क्या कहूं कि हो सकता है कुछ लोग जो हैं किसी डर की वजह से या डराने की वजह से या किसी भय के लोभ में, भय में या प्रलोभन में गए हों या अपनी मजबूरी की वजह से गए हों, कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि वहां पे सारे लोग अभी एमएलए भी हमारे नहीं है, हम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या ऐसा होगा कि हमें मुख्यमंत्री जो हैं, जो भी नए मुख्यमंत्री आए हैं वो हमें मदद देंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे, बहुत सारी बातें हुई होंगी, लेकिन मैं इसमें, इस बीच में नहीं पढ़ना चाहता हूं कि सब लोग बालिग हैं, व्यस्क हैं, अपना अपना सोच के, अपना भला सोच के गए होंगे। मैं तो सिर्फ जैसा मैंने कहा, हम्बल निवेदन ही कर सकता हूं कि अभी भी वक्त है, सोचो, किसी को पार्टी को तोड़ना हो, किसी पार्टी को छोड़ना हो, और खासकर ममता जी के नेतृत्व, जिनके जोड़ा फूल पर सब जीत कर रहा, और ममता जी जो कल तक सब दीदी दीदी दीदी कर रहे थे, कुछ हमारे ऐसे सांसद जिनका आप नाम लिया, वो तो ममता जी का इतना असर था कि नकल करती थी ममता जी की चलने में, बोलने में, बातचीत अच्छे लोग हैं, अब ये लोग करते, अचानक क्या हुआ, ताज्जुब तो जरूर हूं, लेकिन हो सकता है जितने नाम आप कह रही हैं उतने नाम अभी तक सिग्नेचर दिखाए नहीं गए हैं, स्पीकर को जो लेटर भेजा गया वो बताया नहीं गया है, तो हो सकता है अभी संख्या उनकी पूरी ना हुई हो, संख्या हो सकता पूरी ना भी हो, लेकिन अगर संख्या पूरी होती भी है तो सन्नू की, मैं तो अपने साथ हूँ, ममता जी के साथ हूँ, ममता जी के साथ था और ममता जी के साथ रहूंगा, जो जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई है आसनसोल की जनता के प्रति, बंगाल के लोगों के प्रति और देश के प्रति, वो मैं बखूबी निभाने की भरपूर यथाशक्ति यथाभक्ति कोशिश करूंगा।
0: जी शत्रुघ्न जी, अब दो सवाल टीएमसी के भविष्य को लेकर, क्योंकि कल से बीते दिन से ये अटकलें बहुत हवा पकड़ने लगी कि ममता बनर्जी सोनिया जी से दो बार मिली हैं, राहुल गांधी मिले हैं अभिषेक बनर्जी से, तो पार्टी का टीएमसी का कांग्रेस में विलय करने के पर चर्चा हो रही है। इन अटकलों पर आप क्या कहेंगे और एक सांसद के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं?
1: अच्छा है, मैं समझता हूँ जिस तरह जो मिलते हैं विपक्षी दल आपस में मिलते हैं और खासकर जितने ममता जी कद्दावर हैं और नेशनल यूथ आइकॉन राहुल गांधी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, अगर ये लोग साथ साथ आते हैं तो मैं समझता हूँ सिर्फ बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अच्छा होगा।
0: तो शत्रुघ्न जी, अब बात चूंकि आपने कही है तो अब जरा भविष्य की बात करते हैं। टीएमसी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। सबसे पहले 59-60 विधायकों का अलग हो जाना, ऋतव्रत बनर्जी को एलओपी बना लेना, तो ये समस्या तो है। और यहां पर अब सांसद भी, अगर इनमें से कई सांसद हैं, क्योंकि आपके अलावा किसी ने अभी तक 19 वाली लिस्ट में सामने आकर उससे इनकार नहीं किया है, आपको नहीं लगता है कि टीएमसी के लिए और ममता बनर्जी के लिए शायद वो अपने पूरे करियर के सबसे चैलेंजिंग दौर से गुजर रही है? टीएमसी के अस्तित्व को आप कैसे देखते हैं?
1: यकीनन मैं देख रहा हूं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ममता जी जो हैं जमीन से जुड़ी हुई नेता या नेत्री हैं, शी इज अ स्ट्रीट फाइटर। उन्होंने आज तक जो कुछ हासिल किया है वो विरासत में हासिल नहीं किया है, खुद पार्टी का और काडर का निर्माण किया है उनके अपनी टीम के साथ मिलकर, और कहां से कहां आके पूरा 35 साल की सत्ता को उखाड़ फेंक कर किस तरह बंगाल में आई, शासन किया, और अभी भी जो चुनाव में जो हुआ है, मैं उस पर अब चूंकि ये टॉपिक वो नहीं है बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसमें चुनाव में भी कैसे हुआ है 40-45% वोट जो आया है इनको, वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन शायद और आता अगर और कुछ नहीं होता डिस्क्रिपेंसीज का मामला, या फिर उसका मामला नहीं हुआ होता जिस तरह से वोट SIR का मामला था, काफी लाखों लाख वोट हटा दिए गए, तो अब उन पे बात करने का फिलहाल ये विषय नहीं है, नहीं कहूंगा, लेकिन कहना ये चाह रहा हूं कि ममता जी बहुत ही बोल्ड है, एक उनके अंदर स्ट्रगल करने की क्षमता है, उन्होंने बार बार प्रूफ किया है और अभी फिर प्रूफ कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि व्हेन गोइंग गेट टफ टफ गेट गोइंग, मुसीबतों को वही पार कर सकता है जिसके अंदर मुसीबतों को झेलने की क्षमता होती है, शक्ति होती है, और मैं समझता हूं ममता जी एक लौती महिला नेता या नेत्री देश में है जिनके अंदर स्ट्रगल करके अचीव करने की जबरदस्त क्षमता है, आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे और पता चल जाएगा। मुझे लगता है अभी भी कई लोग जो हैं सेकंड थॉट दे रहे हैं, जैसा कि हमारे अपने कीर्ति आजाद ने जो कहा है, चाहे कल्याण बनर्जी ने जो कहा है, ऐसा दिखता है कि मामला पहले से उलझ नहीं रहा बल्कि सुलझने की राह पे है, क्योंकि बहुत बहुत सारे पेंच हैं अभी इसमें। बंगाल की बात करें तो वहां कोर्ट का भी पेंच है, स्पीकर के फैसले पे भी पेंच है, यहाँ पे तो अभी स्पीकर तक पहुंचा ही नहीं है, पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, क्या पहुंचा है, क्या लिखा गया है, क्या भेजा गया है, ये अभी तक तो सब क्लियर नहीं है, इन बातों को क्लियर हो जाने दीजिए। मुझे लगता है अभी पुनरुत्थान पुनर्जागृति अभी का वक्त आ गया है, और ममता जी और उनकी टीम जो है इस बात को अच्छी तरह साबित कर देंगे।
0: आपकी नजर में कांग्रेस के साथ विलय करना एक सही फैसला होगा? आपकी सोच क्या है
1: कॉकरोच के बारे में?
0: कांग्रेस के साथ
1: कॉकरोच तो युवा शक्ति,
0: मैं पूछ रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी के साथ विलय का फैसला अगर होता है तो आपकी निजी सोच में वो फैसला सही होगा क्या?
1: नहीं, मैं विलय की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं विलय की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ और मुझे उसकी उतनी जानकारी भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि कांग्रेस का और खासकर ममता जी का दोनों का एक साथ मिलकर आगे बढ़ना और समाज को देश को आगे बढ़ाना, ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा, ऑपोजिशन के लिए बहुत अच्छा होगा, जैसा मैंने कहा डेमोक्रेसी और बंगाल के लिए और देश के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा।
0: चलते चलते इस इंटरव्यू में किसको खामोश करना चाहेंगे आप, उन लोगों को जिन्होंने आपका नाम डाल दिया?
1: नहीं नहीं, सब अपने लोग हैं, सब हमारे दोस्त हैं
0: जी,
1: अपनी अच्छी नीयत से ही किया होगा, चाहे जिन लोगों ने मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के हों, जिस पार्टी के हों, मुझको मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, प्यार करते हैं वो लोग, इसलिए मेरा भला सोच के ही किया होगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं मेरी भलाई इसी में है कि मैं इस मुसीबत की घड़ी में, जैसा ममता जी ने मेरा साथ दिया था जब मैं 19 का चुनाव हारा था या हराया गया था, उसके बाद कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था, अकेली ममता बनर्जी हैं जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और मुझे उन्होंने आसनसोल में जाने का निर्देश दिया, इंसिस्ट किया कि मैं चुनाव लड़ूं आसनसोल जहां मैं पहली बार गया, और आप लोगों की नजरों में आपने माना भी, बहुत लोगों ने कि वो कहावत को चरितार्थ किया कि ही केम ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड, वहां जाके पहली बार भी रिकॉर्ड मतों से जीता, दूसरी बार भी काफी अच्छे मतों से जीत हुई वहां पे। तो मैं इस मामले में ममता जी का साथ दूंगा, उन्होंने हमारा साथ दिया था इस दुख की घड़ी में, इस ममता की, ये ममतामयी माँ को, ममतामयी दीदी को इस वक्त मुसीबत की घड़ी में मैं साथ नहीं छोड़ सकता हूँ, और इसीलिए मैं उनके साथ हूँ बगैर किसी की शिकायत किए हुए, बगैर किसी के खिलाफ कुछ बोले हुए।
0: क्या बात है, इसीलिए आप अनूठे माने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शत्रुघ्न सिन्हा जी आज तक पर आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद सर।
1: सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू अंजना, थैंक यू।
0: तो टीएमसी के कई नेता बागी हुए हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए सुष्मिता देव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। सुष्मिता जी, मेरा पहला प्रश्न यही होगा, अब ये कहा जा रहा है कि बिछड़े सभी बारी बारी, तो आपने भी ममता बनर्जी का साथ ऐसे वक्त पर छोड़ा है, वजह क्या थी?
2: आपको ये पता है कि मैं ही एक सांसद हूँ जिसकी राजनीति असम से जुड़ी हुई है और बंगाल के राजनीति में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, सच्चाई यही है। तो मेरी परिस्थिति थोड़ी सी अलग थी। देखिए, हार जीत से किसी को डर नहीं है, अगर कोई इलेक्शन जीतता है तो कोई हारता है, पर 4 तारीख के बाद जो माहौल तैयार हुआ पार्टी के अंदर या जो परिस्थिति मुझे देखने को मिला फील्ड में, मैं एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में भी थी, मुझे मेरी जितनी मतलब कॉमन और पॉलिटिकल सेंस है, मुझे लगा कि शायद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आसाम में इतना फोकस नहीं कर पाएगी इस परिस्थिति में। तो ऐसी परिस्थिति में एक और रेलेवेंट चीज ये है कि आसाम की राजनीति में आसाम का जो रिजल्ट आया विधानसभा का, उससे ये स्पष्ट हो गया था कि अगर आसाम में काम करना है एंड स्पेशली डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, तो मुझे लगा कि यही सही वक्त है राज्यसभा सीट छोड़ने का, क्योंकि पार्टी छोड़ने के बाद सीट में बैठे रहना भी एक अजीब फीलिंग है। तो मैंने छोड़ने के बाद माननीय मुख्यमंत्री असम के डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी, उनसे बात की और अच्छा लगा, और बस दैट्स द स्टोरी टिल नाउ, अब तक यही कहानी है।
0: तो वापस संसद का रास्ता कैसे तय होगा?
2: ये सच है, ये एक चुनौती है मेरे सामने। हाँ। जरूर है, पर देखिए अगर मैं रह भी जाती राज्यसभा में, मेरा टेन्योर 2030 तक था, और आप जानते हैं अंजना जी, सबका जो प्रोफाइल है, राजनीतिक प्रोफाइल है, आई एम अ फुल टाइम पॉलिटिशियन, आई एम अ करियर पॉलिटिशियन। मैंने अपने जीवन में मतलब वकालत छोड़ने के बाद सिर्फ राजनीति ही की है, तो मेरा लक्ष्य सिर्फ 2030 तक नहीं है, मैं चाहूंगी कि जब तक स्वस्थ हूँ दैट आई शुड कंटिन्यू टू डू पॉलिटिक्स। सो एक लॉन्ग टर्म मेजर है, और कभी कभी लॉन्ग टर्म मेजर के लिए शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस करना जरूरी हो जाता है, तो यही मेरी सोच है।
0: तो बीजेपी में अब लॉन्ग टर्म करियर होगा आपका?
2: सी फैक्ट इज, जब मैं मुख्यमंत्री जी से मिली डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा, ये तय है कि ये बात भी हुई, अगर मैं आपको बोलूं कि ये बात नहीं हुई आप मेरा विश्वास भी नहीं करेंगे। सो आई सेड कि अगर असम में काम करना है सर, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव बात की, पर आप समझ सकती हैं कि ये एक पार्टी का डिसीजन है, इसलिए मैं इस वक्त अगर टेलीविजन में हाँ या ना का जवाब नहीं दे पा रही हूँ।
0: तो पर उन्होंने कुछ प्रॉमिस नहीं किया आपको?
2: ही सेड कि मैं तो आपको यू नो 10-15 साल से जानता हूँ, और पहले भी बातचीत हुई थी हमारी, पर तब मैं कांग्रेस में थी तो मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर ही वॉज पॉजिटिव. बट आपको पता है एक पार्टी में कुछ चैनल्स होते हैं, कुछ हायरार्की और प्रोसीजर प्रोटोकॉल होते हैं. तो आई एम ऑप्टिमिस्टिक, आई एम ऑप्टिमिस्टिक, आई डोंट थिंक दैट इट शुड बी अ प्रॉब्लम.
0: ममता बनर्जी और टीएमसी के बारे में देखिए, मुझे पता है कि आप चाहेंगी, क्योंकि आपकी पुरानी वो नेता है, उनके खिलाफ आप नहीं बोलना चाहेंगी खुलकर. आपने कल भी इससे इनकार कर दिया कि मैं उनके बारे में क्यों बोलूं. लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि ममता बनर्जी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है? 60 एमएलए ऋतव्रत बनर्जी को अपना एलओपी बना लेते हैं, विधायक अलग हो जाते हैं. यहां पर सांसदों को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा जी को छोड़कर बाकी 19 जो नाम दिए गए थे उनमें किसी ने इनकार नहीं किया है. सायोनी घोष जैसी, वो आपकी दोस्त भी है काफी, तो वो भी अब अलग हो रही है टीएमसी से, मतलब अलग गुट बनाना चाहते हैं, अलग संसदीय गुट बनाना चाहते हैं, पार्लियामेंट्री ब्लॉक. क्या ये सबसे चैलेंजिंग टाइम नहीं है? क्या वजह है इतने सांसद इतने विधायक क्यों जा रहे हैं छोड़ के?
2: यूरो मैं आपको अगर सच बोलूं तो ये मैं भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि इतनी ताकतवर एक पार्टी, देखिए 80 एमएलए जीत के आए हैं, 80 भी कम नहीं होता एक ऑपोजिशन के लिए, तो इतनी जल्दी ये कैसे बिखर गया, ये एक आत्मचिंतन का विषय है मुझे लगता है. और मतलब इस तरह से रोज कोई ना कोई. और एक एक इंटरेस्टिंग बात है कि मैं रिजाइन कर रही थी, बाकियों को राज्यसभा में जो रिजाइन किए आज उनको नहीं पता था, आज वो करेंगे मुझे नहीं पता था. तो द क्वेश्चन इज, ये जो सीरीज ऑफ रेजिग्नेशन हो रहा है, मेरा एनालिसिस है, मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ. देखिए मैं पहले कांग्रेस में थी, फिर कांग्रेस से मैं तृणमूल में गई, ठीक है. सो मैंने पार्टी चेंज किया है पहले, तो मेरा जो अनुभव है, एक ये डिसीजन तभी लिया जाता है अगर किसी के अंदर डर है कि इधर रह के मेरा राजनीतिक भविष्य शायद उज्जवल नहीं होगा. जब तक ये सोच किसी एमपी या एमएलए के दिमाग में ना आए, वो पार्टी नहीं बदलता. ना बंगाल में फील्ड में जो हो रहा है, जो हमें दिख रहा है, जैसे स्लोगनियरिंग हुआ है अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ है, इन सब चीजों को देखने के बाद मुझे जो लगता है, ये मेरा गेस है, ये लोग सोच रहे हैं कि कि क्या होगा भविष्य में, इससे तो अभी डिसीशन लो. और एक ये मैंने सुनी हुई बात है कि बहुत लोग कहते हैं बंगाल में दीदी अच्छी है, पर टीएमसी का हमें पता नहीं. पर सो दिस इज अ वेरी इट्स अ वेरी कंफ्यूज स्टेट. सो शायद अपने भविष्य को ही सामने रखकर ये लोग ये निर्णय दे रहे हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू कंटिन्यू इन पॉलिटिक्स एंड दे आर वरिड अबाउट देयर फ्यूचर.
0: ठीक है, आगे क्या होता है इस पर नजर रहेगी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुष्मिता जी.
2: थैंक यू अंजना.
0: थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए आज तक पर बात.
2: थैंक यू, थैंक यू.
0: और अब हमने अपने मेहमानों को आज की चर्चा के लिए बड़ा इंतजार कराया. अजय आलोक जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए, मानव जायसवाल प्रवक्ता टीएमसी के, ऋजु दत्ता पूर्व प्रवक्ता टीएमसी के. सबसे पहले आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि मानव जायसवाल जी आप तो अब आप लोगों को समझना है. तो मानव जायसवाल जी ऐसे टीएमसी नेता हैं जो अभी भी ममता दीदी के साथ टिके हुए हैं. ऋजु दत्ता जी को अब अभिषेक बनर्जी से लेकर तमाम खामियां दिख रही हैं. लेकिन मानव जी, इतने सारे सांसद, इतने सारे विधायक, मतलब अगर आप कल्याण बनर्जी, आप सोचिए किसने कल्पना की थी. कल्याण बनर्जी कल तक उनको गद्दार कह रहे थे, लेकिन अभिषेक बनर्जी का टेम्परमेंट आज उनको भी ये बोलने पर मजबूर कर देता है कि ममता दीदी को चूज करना पड़ेगा, या तो भतीजा या मैं. कुछ तो इसका इलाज खोजिएगा ना.
3: देखिए, पहले तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार है अंजना जी आपके माध्यम से. और कल्याण बनर्जी के ऊपर मैं टिप्पणी देने के काबिल नहीं हूं. और उनकी जो केमिस्ट्री दीदी के साथ है, अभिषेक बनर्जी जी के साथ है, और उनकी जो केमिस्ट्री हमारे पार्टी के साथ, उनका जो सोच रहा है वो अद्वितीय है. कठिन समय में भी वो साथ हैं और लड़ रहे हैं, और जुझारू तरीके से लड़ रहे हैं, ये दिख रहा. और जहां तक बात है जो ममता बनर्जी के साथ है या टीएमसी ममता बनर्जी वाली है, तो ये बात सिद्ध है और प्रसिद्ध है कि ममा माटी मानुष की जो ममता बनर्जी है वही टीएमसी है, और टीएमसी ही ममता बनर्जी. चाहे लोग जितने भी रिबेल ग्रुप हो, चाहे जो भी हो, उनका जो सोच रहा है, उन्होंने ममता बनर्जी को ही अपना नेता माना. बहरहाल जो भी चल रहा है, जहां तक की सांसद की बात है, आपको भी पता है अंजना जी, दिल्ली में जो राजनीतिक गतिविधियां होती है, वो उनका फेर बदल मिनट और क्षण क्षण क्षण भर में हो. अगर सच में रेबल्स के पास जो हमारे सांसद हैं उनके पास आंकड़ा होता 20 या 19, या साइन किया हुआ आंकड़ा होता, लोग रेडी होते, तो अमित शाह जी आज हाथ उठा के सबके साथ गले मिल रहे हो। और उसी तरीके से हमारे जो स्पीकर ओम बिरला जी है, वो सारी छुट्टियों को छोड़ के रात को 12 बजे घंटा बजा देते कि भाई देखो ये हो गया, ये होने वाला नहीं है। आज भी टीएमसी के कुछ एक लोग हैं, कुछ एक जो हमारे नेता है, वो आज भी दीदी के साथ है, और बहुत लोगों ने खुलकर बोला। आपने शत्रुघ्न सिन्हा जी का की बात करी, उनकी इंटरव्यू दिखाई, मैं बहुत बहुत नमन है उनको। और जिस तरीके से उन्होंने इस अपने सोच को पूरे लाजिम तरीके से बताया है लोगों को, ये बहुत ही रेयर और रेयरेस्ट थिंग है आज के डेट में। लेकिन हाँ, वर्तमान में जो देख रहा है कि जो भाजपा जिस तरीके से उतारू है, जिस तरीके से भाजपा इतनी डेस्परेट हो चुकी है कि भाई उनको सबका सबको चाहिए। आज आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, उस मैंडेट के साथ साथ अब अवहेलना कर रहे हैं मैंडेट की।
0: ठीक,
3: आपको टीएमसी के भी जिनके खिलाफ आप लड़ रहे थे, जिनके खिलाफ आप गाली गलौज कर रहे थे, संदीपन शाह जैसे लोगों के बीच में प्रियंका तिब्रवाल उनके घर तक पहुंच जाती है, उनको नोटिस मिल जाता है, ये सब चीज हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि
0: अजय आलोक जी, ठीक है अजय आलोक जी, एक दो तीन कड़ियां ऐसे जुड़ रही हैं कि काकुली घोष दस्तीदार, पहले सुना देते हैं आपको, जल्दी से एक बार सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, अजय जी को खास तौर पर सुनाइएगा। वो कह रही है कि हम एनडीए का साथ देंगे, सुनिए।
4: नहीं, हाँ, हमने लिख दिया कि हम एनडीए के साथ जाएंगे, ये तो आप फिर से पूछ रहे 10 दिन बाद के हमने लिखा कि नहीं, हमने लिख दिया हम एनडीए के साथ जाएंगे। और अगर हम असली टीएमसी है कि नकली टीएमसी है, ये तो चर्चा में जब आएंगे, जब हमें बुलाएंगे, हम बातचीत करेंगे, तभी पता चलेगा। अभी तो हम लोग लिख दिया कि हम ये जो गैरकानूनी काम के साथ नहीं है, और जो ये मतदाताओं को जो अभी चुनाव में अली में जो चुनाव हुआ उसमें जो मतदाताओं ने अपना इच्छा प्रकाश किया, जो मत किया, वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और आईपैक और तृणमूल कांग्रेस जो भी चलाते थे चुनाव की प्रक्रिया, सबके खिलाफ क्या है। तो अगर जनता ने इसके खिलाफ,
0: हाँ, अजय आलोक जी वो कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ हैं, और अगर वो एनडीए के साथ इन सांसदों को लेकर आ रही है तो उसमें सायोनी घोष भी है। मतलब आप लोग तो लगातार उनके खिलाफ इतना कैंपेन वैम्पेन चलाते रहे, लेकिन अब अगर सब आएंगे, सब स्वीकार्य है ना आपको?
5: होई वही जो राम रची राखा, काय करे तर्क बढ़ावे साखा, होगा वही जो प्रभु राम की इच्छा है। तर्क वितर्क हम लोग बेकार कर रहे हैं, होना तो वही है। अंजना ओम कश्यप के 10 मिलियन फैन है, अचानक 10 मिलियन के बाद 10.1 मिलियन खड़ा हुआ है, 1 लाख और खड़े हुए कि हम भी अंजना के फैन हैं, तो क्या कहिएगा? नहीं, मेरे मैं फैन मत बनो। कोई एनडीए को समर्थन करने की बात कह रहा है तो मैं क्या कहूं कि नहीं, हमको समर्थन मत दो, हमने ले लिया क्या बीजेपी में, हमने एनडीए का पार्ट बना लिया। अभी तो देखिए क्या क्या हो रहा है। मजेदार बात तो ये देखिए, कित कित कित कित कित कित कित कित, मानव याद है, कित कित कित कित, ये किया था ना पूर्व राष्ट्रपति,
3: खेलते नहीं थे क्या आप? खेलते थे
5: इसी कल्याण बनर्जी,
3: आप खेलते थे क्या?
5: और आज अभिषेक बनर्जी को कुछ कुछ
3: राष्ट्रपति के लिए
5: कर रहे हैं, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है। आपने टेस्ट ऑफ मेडिसिन मिल रहा है कि नहीं? अभिषेक बनर्जी का लोकसभा का डायलॉग याद है कि नहीं? हमारी तरफ देखते हुए कहा था, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम खराब हो गया है। अब क्या आंधी तूफान आ गया?
3: तो 2024 तो हो गया था ना,
5: कैसा
3: मौसम था? हेलो भाई,
5: मां माटी मानुष ममता नेता, दो दो विधानसभा लगातार हार गई ममता, दो दो विधानसभा लगातार हार गई, अपने भवानीपुर घर में हार गई, और वो भी नेता, जन नेता, जिस कांग्रेस को लात मार के गई थी, गाली दे के गई थी, जिस 24 में कांग्रेस के लिए बोला था कि 40 सीट भी नहीं आएगी, उनके दरवाजे पे भीख मांग नहीं है। हकीकत ये होता है, जब
3: अहंकार काउंसिलर से लेकर
5: काउंसिलर से लेके एमपी तक छोड़ के जा रहे हैं, हमारे तो 77 थे, उसमें से भी 10 आप ले गए, तो क्या फर्क पड़ा? ये होती है विचारधारा की ताकत मानव जी, ये होती है विचारधारा की ताकत, ये होती है विचारधारा की ताकत जो हमारे पास है, आपके पास नहीं है। ये कर्म है आपके जो फूट के आ रहे हैं, ये हमारे कुछ नहीं किया हुआ है। 207 थे हम, ऑलरेडी 208, कोई जरूरत नहीं हमें विधानसभा में या कहीं भी, लेकिन वो लोग रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी बताया सुष्मिता ने,
0: ठीक है रिजु जी,
5: जब अपने फ्यूचर की इनसिक्योरिटी होती है कि हाँ, यहाँ पर हम डाइट नहीं रहेंगे, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, अब बंगाल का इतिहास रहा है।
0: अब मान
5: गए सत्ता से, वाम खत्म हो गई बंगाल से, कांग्रेस गई सत्ता से, कांग्रेस खत्म हो गई बंगाल से, अब टीएमसी गई है, टीएमसी भी कभी खत्म होना तय है, तो क्यों आपके पास कोई रहेगा? और दूसरा, अहंकार, मां बुआ भतीजे का अद्भुत अहंकार, जिस तरह से लाठी से चलाया बंगाल को उसी तरह से लाठी से हाँका पार्टी को, और इसीलिए आज फिर एयरपोर्ट पर धक्का मुक्की हो गई।
0: ठीक है रिजू जी, रिजू जी देखिएगा
5: ममता जी, कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये जाके ससुराल रहेंगे बैंकॉक में।
0: रिजू जी जल्दी से एक कमेंट आपसे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, अब इसको मानव जी ज्यादा इस पर मानवता के तहत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कल्याण बैनर्जी, अब भाई कल्याण बैनर्जी जैसे नेता को किसका डर है आज भाई? उनका तो सीधा गुस्सा अभिषेक बैनर्जी से है, वो कह रहे हैं भाई मैं इतने सालों से मैं वकील हूं, 40 साल से हूं, ये हूं वो हूं, मुझे हटा के किसी जूनियर को ले आया है, वो बहुत गुस्से में, वो कह रहे हैं कि दीदी हैज टू चूज। ऐसा ही अन्य लोगों का भी गुस्सा है, लेकिन सवाल है कि इस सारा गुस्सा अब क्यों निकल रहा है? ऐसा थोड़ी है कि पहले मतभेद नहीं हुए होंगे, या अभिषेक बैनर्जी का गुस्सा या उनका एटीट्यूड पहले नहीं दिखा होगा?
6: देखिए अंजना जी, बीमारी का इलाज तभी हो सकता है जब आप ये स्वीकार ले कि आपके आपको बीमारी हुई है। जब तक आप ये मानेंगे नहीं कि अभिषेक बैनर्जी जी के वजह से ये पार्टी खत्म हो गई है, तब तक तो इसका कोई इलाज हो नहीं सकता। आज जो बातें मैंने 9 मई को कही थी, आज वही बातें ऋतुव्रत बंदोपाध्याय कह रहे हैं, वही बातें कल्याण बैनर्जी कह रहे हैं, वही बातें, तो एक आदमी सही है और बाकी सारे सांसद, सारे विधायक, सारे पार्टी के लीडर्स गलत है, ये कैसे हो सकता है? मैं ये मानता हूं कि ममता बैनर्जी जी ही तृणमूल कांग्रेस है, और जब तक ममता बैनर्जी खड़ी है तृणमूल कांग्रेस जिंदा है, पर अगर तृणमूल कांग्रेस का जितना भी बचा कुछ अस्तित्व है उसको अगर बचाना है तो अपने भतीजे को छांटना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, बट अगर आप धृतराष्ट्र बन के अपने आंखों पर पट्टी बांध ले तो ये कुछ नहीं हो सकता। आप ये तो मानना पड़ेगा कि अभिषेक बैनर्जी जी से बहुत बड़ी नेत्री है ममता बैनर्जी, कोई मतलब लेवल ही नहीं होता। पर आप देखिए 2021 के बाद जब पार्टी का कमान चला गया था अभिषेक जी के हाथ में, आप देखिए गाय तस्करी ईडी किसका नाम आया? अभिषेक बैनर्जी जी का। ममता बैनर्जी जी का तो नाम नहीं आया कहीं पे, कल्याण बैनर्जी का भी नहीं आया। बालू तस्करी, गाय कोयला तस्करी, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, अभी सीआईडी का नोटिस, कॉरपोरेशन का अवैध निर्माण का नोटिस, अपने विधायकों का साइन फर्जी करने का नोटिस, किसका आ रहा है, कौन है? और सब एक ही चीज, वो रिजु जत्ता जैसा एक छोटा कार्यकर्ता हो जो राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा हो या सांसद या विधायक हो, वो तो यही बोल रहे हैं कि जब से वो पार्टी संभाल रहे हैं, जब से ममता दीदी ने पार्टी उनको दिया है, तब से उन्होंने अन्याय किया है, अत्याचार किया है, अपमान किया है, और जो हिटलरी शासन चलाया है उसके वजह से पहले भय का माहौल था। आप अंदर बोलोगे तो पार्टी से निकाल दिया जाओगे, बाहर बोलोगे तो आपके ऊपर पुलिस केस कर दिया जाएगा, आपके परिवार के ऊपर पुलिस केस होगा। भय खत्म हो गया, सब लोग ओपन बाहर आ रहे हैं। पर बात यहां पर मुद्दा एक ही है, अगर तृणमूल कांग्रेस को जीवित रहना है, वो कांग्रेस का हाथ पकड़ के हो या अपने दम पे हो, तो युवराज को छांटना पड़ेगा, युवराज को काट के निकाल देना पड़ेगा। ये कैंसर को पनपने देंगे तो ऑलरेडी फोर्थ स्टेज में आ गया है, इसके बाद तो देहांत ही एकमात्र रास्ता है, और उसके बाद ओम शांति हो जाएगा पार्टी का, और कोई रास्ता नहीं है इसमें। एवरीबडी इज सेइंग द सेम थिंग, मैं तो अकेला नहीं बोल रहा हूं।
0: और ये सच है कि सबसे पहले रिजु दत्ता ने ही बोला था, और अब देखिए इतने विधायक, इतने सांसद सब वही बात कह रहे हैं। रिजु जी पर कौन सा मामला चल रहा है बताइए?
3: अरे अजय पाल सिंह भूल गई, अजय पाल सिंह, और किस तरीके से इन्होंने बोला था, कौन सी स्क्रिप्ट इन्होंने पढ़ी थी और किसकी स्क्रिप्ट पढ़ी थी। ऐसे धूर्त लोगों से बात करना और उनकी बातों को तवज्जो देना जो हिपोक्रेसी की परिकाष्ठा हो, जहां मौका मिले वहीं झुक जाए। अरे ये तो 4 तारीख के पहले पीछे पीछे घूम रहे थे अभिषेक बैनर्जी के, डेबरा का टिकट चाहिए था इनको, इनको इनको तकलीफ हो गई और फिर पार्टी हार गई, उनका चेहरा मुकुट सामने आ गया। और सबसे बड़ी बात है, इनका सबसे बड़ा चयन होता कि भाई इनके लिए भाजपा जिसको ये प्लस माइनस नाइनस कर रहे थे, आज उन्हीं को फॉर्मिडेबल फोर्स बता रहे, तो इनकी बात ना करें। और जहां तक बात है एक्सक्यूज और वर्तमान में उस इशू में, दोनों में फर्क है। आपके लिए एक्सक्यूज है अभिषेक बैनर्जी, अभिषेक बैनर्जी ने 2021 का इलेक्शन जिताया, 24 आवर्स पॉलिटिशियन है। 2024 में जिस तरीके से 400 पार का नारा था, अभिषेक बैनर्जी ने वो बाधा बन के वो नारा को खत्म करा। और 2026 का जो इलेक्शन है ये हिस्ट्री में दर्ज होगा, जिस तरीके से ताम धन भेद जो चाहिए था वो लोगों की, पहली बार इतिहास में भारत में हुआ है जहां 29-30 लाख लोगों के नाम काटे गए, जो ट्राइब्यूनल के जो जज है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये सारे चीज बंगाल ने देखा है, बंगाल की मातृशक्ति जो है वो आज भी ममता बनर्जी के साथ अडिग है, और 40, 50, 80, 100 एमएलए एमपी से टीएमसी परिवार नहीं है। टीएमसी परिवार किसी प्रवक्ता से भी नहीं है, टीएमसी परिवार किसी ऐसे नेता से भी नहीं है, टीएमसी परिवार है ममता बनर्जी से, और टीएमसी परिवार है 2,61,00,000 लोगों ने जिन्होंने वोट दिया और ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करने का प्रण लिया। वर्तमान में जितने कार्यकर्ता हैं, अब नेता छोड़ दीजिए,
6: मैं जवाब देता हूं। मैं मानव जी का ये बात से सहमत हूं कि 2 करोड़ या 2.5 करोड़ लोग जिन्होंने दिया है वो ममता बनर्जी का परिवार है, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस है, तो भतीजे को निकालो यार, बात खत्म हो गई। और रहा बात अजय पाल सिंह का, बात ये कह रहे थे तो वो बातें, अगर आपका आर्काइव बहुत स्ट्रांग है, अभी जो एक और राज्यसभा के सांसद है तृणमूल कांग्रेस के, राजीव कुमार जी, वो दिख नहीं रहे हैं, वो बात उन्होंने सुबह को की थी चुनाव आयोग के सीढ़ियों पे बैठ के, और ये स्क्रिप्ट तृणमूल कांग्रेस का था, तृणमूल कांग्रेस के हेडक्वार्टर में रिकॉर्ड किया गया था और तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से छोड़ा गया था, रिजु दत्ता के पर्सनल प्रोफाइल से नहीं। और मानव जी को इतना पता चलना पड़ जाए, ये जो बोला कि मेरे को डेबरा का टिकट चाहिए था, और मेरे को डेबरा का टिकट आईपैक के प्रतीक जैन और अभिषेक बनर्जी जी ने कंफर्म किया था, और फिर दत्ता से 50,00,000 रुपए मांग लिए ये लोगों ने, तो ये तो था तृणमूल कांग्रेस, और इसीलिए तो 215 से 80। बात ये है ना कि आपको समझना पड़ेगा कि क्यों पार्टी 215 से 80 में आई। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये लोग हार गए, तो इनका तो कुछ नहीं हो सकता, ओम शांति ही हो सकता है।
0: लेकिन इन सबके बीच अजय आलोक जी, पार्टी सारा का सारा दोष आपकी पार्टी पर आता है कि भाई वो विपक्ष को किसी राज्य में मजबूत रहना ही नहीं देना चाहते।
7: अब क्या कीजिएगा, सबकी आदत हो गई, हर चीज का ठीकरा बीजेपी पे फोड़ दो। भतीजे ने पार्टी बर्बाद कर दी, टीएमसी बर्बाद हो गई, ठीकरा हम पे फूट गया। एक पेंगुइन करके एक ने पार्टी तोड़ दी वहां महाराष्ट्र में, उसका भी ठीकरा हम पे फूट गया। कांग्रेस पार्टी सिमटते सिमटते, सब युवराजों के कारण हो रहा है, कांग्रेस पार्टी सिमटते सिमटते 3-4 राज्य में रह गई, उसका भी ठीकरा बीजेपी पे फोड़ दो। मानसिक रूप से इतने व्यथित हो गए हैं कि फॉर्म तक भरना नहीं आता है, फॉर्म जो लोकल एब्सोल्यूट फॉर्म भरना जिसको कहते हैं, उसमें जानकारियां छुपाते हैं, चुनाव आयोग उम्मीदवारी रद्द कर देता है, कहते हैं बीजेपी दोषी। भाई आपकी गलती है, आपकी विपत्ति है, हमारी संपत्ति तो अपने आप बन जाएगी, आपको ये बेसिक काम नहीं आते साहब।
0: ठीक है, अभी देखते हैं अल्टीमेटली, अभी दस्तखत के साथ पूरी लिस्ट तो सामने आई नहीं, अभी स्पीकर का फैसला भी इन बागी सांसदों पर होना है ममता बनर्जी के लिए, क्या वाकई ये बड़ा झटका बनता है या फिर बाजी पलटती है। अब तक तो शत्रुघ्न सिन्हा उस गुट से अलग होने का दावा आज तक पर कर चुके हैं। बहरहाल आज रात 9 बजे हम आपको दिखाएंगे ब्लैक एंड व्हाइट में कैसे ट्रंप को मतलब सिर्फ कमाई से है, चाहे दुनिया मरे महंगाई से। इसके बाद आपको बताएंगे कि ममता के खास लोगों की सिर्फ कुर्सी से वफादारी थी, क्योंकि दीदी हारी तो सब निकल रहे हैं बारी बारी। इसके बाद दिखाएंगे कि फीफा वर्ल्ड कप के आगे सब फीका क्यों है, और आखिर में खबर इटावा से, जहां शाम तक जो इमारत मजार थी, सुबह वहां एक बगिया गुलजार थी। देखते रहिए।

0: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
1: You're listening to CNBC.
2: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
3: Keep it on smooth jazz.
4: This is Roots Reggae.
5: Exclusively on TuneIn.
6: This is classic hip-hop.
7: Exclusively on TuneIn.
0: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
8: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
9: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स
8: सिंह जैसी
10: शक्ति मुझ में।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
11: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
12: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
13: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
11: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
14: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
12: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
11: जहां खबर वहां खबरदार।
15: इन एसोसिएशन विद
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
16: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
11: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल।
17: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी।
11: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल।
17: CBSE के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
11: छात्रों को दिया मंच।
17: उज्मा हमारे साथ कोटा से, और अदिति मुंगेर से हैं, और तानिया कोटा से हैं, और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
18: नहीं, देखिए इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
19: IIT मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
11: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर।
17: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक, और अब सरकार की तरफ से CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
11: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।
17: शत्रुघ्न जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आप किस तरफ हैं, क्योंकि कल ये दावा किया गया कि 19 नाम सामने आए हैं और उन 19 नामों में आपका भी नाम है जो एक बागी और अलग संसदीय गुट बनाना चाहते हैं TMC में। क्या आप उस गुट में हैं या आप ममता दी के साथ? जी
20: देखिए, मैं अपनी स्पष्ट वादिता के लिए और अपने खुले स्वभाव के लिए मशहूर हूं या बदनाम हूं। जहां तक बागियों का सवाल है, मुझे तो खुद ही कुछ लोग बागी समझते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। लेकिन जहां तथाकथित बागियों के बीच हमारा नाम गया है, वो तमाम अपने ही लोग हैं, अपने ही दोस्त लोग हैं, अपनी विचार से वो लोग गए वहां पे, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मेरा नाम उसमें शामिल नहीं है, मैंने कोई दस्तखत नहीं किया है, कोई सिग्नेचर नहीं है, मैंने ना हामी भरी है और ना ही, टू बी वेरी फेयर उनके लिए मैं सच कहूंगा, उनमें से किसी ने मुझे कॉन्टेक्ट भी नहीं किया है। हो सकता है कुछ लोग टेकन फॉर ग्रांटेड समझ के आगे बढ़ गए हों, लेकिन किसी ने हमें कांटेक्ट नहीं किया है। और जिन लोगों ने कांटेक्ट किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रगण हों, चाहे अन्य पार्टी के, अन्य जगह के, मैं उनका भी आभारी हूं। उन्होंने बहुत अच्छे मन से, बहुत मेरा भलाई सोच के उन्होंने कहा होगा, निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया अपनी ओर, लेकिन मैं इस मुसीबत की घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने, जो हमारी नेत्री हैं या नेता हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया था, आज उनकी इस मुसीबत की घड़ी में मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैंने 3 लाइन व्हिप अपनी तरफ से इशू कर दिया है और वो ये है कि मैं ममता जी के साथ हूं, मैं ममता जी के साथ था और मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है रास्ता बदलने की या किसी और दिशा में जाने की।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Such an arrogant person. Everybody one must understand that if for his for Abhishek Banerjee, the party has been destroyed today. We have lost it.
3: Everybody is saying this.
2: Everybody is saying. I have not said. I am in the back days of the party. I was with the Mamata Di. I said again. I am saying. I am with Mamata Di. But Mamata Di has to choose whether Abhishek Banerjee she will keep or she will keep me.
3: That's an ultimatum.
2: Yes. This is I leave it to her.
4: बस तारीख बदली है और तेवर बदल गया। इन्हीं कल्याण बैनर्जी ने 9 जून को तंज किया था कि टीएमसी से बगावत कर रहे लोग ममता बैनर्जी की साड़ी की तारीफ करते थे।
5: Whenever they made this, Didi was so beautiful. Didi, your sari is so nice.
4: लेकिन आज अभिषेक बैनर्जी को घमंडी बताकर कोर्ट में उनका केस लड़ने से इनकार कर ममता को खुद में और अभिषेक में किसी एक को चुन लेने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। ममता को कल्याण बैनर्जी की ये गुगली ऐसे वक्त पर आई है जब राजनीतिक गलियारों में इन अटकलों को हवा मिली कि सोनिया गांधी ने ममता बैनर्जी को ये ऑफर दिया कि वो तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय कर दे। 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया और ममता गले मिली थी। 9 जून को सोनिया से मिलने ममता 10 जनपद गई। 10 जून को 10 जनपद पर ही अभिषेक बैनर्जी से राहुल गांधी की मुलाकात हुई। वैसे तो आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने विलय की अटकलों को खारिज किया है, लेकिन ममता के करीबी नेता खुलकर कुछ नहीं कह रहे।
6: कांग्रेस के साथ एक साथ काम करना जरूरी है, इतना मैं बोल सकता हूँ। वो मर्ज होगा कि अलायंस होगा, ये बाद में दिखा जाएगा।
7: These are totally rumors. Yesterday, our communication secretary has already stated that these are baseless things. Of course, Mamata Banerjee ji and Abhishek Banerjee ji when they met Honorable Madam and Rahul Gandhi ji, routine discussion. That is an extension of India Alliance discussion because everybody want to strengthen India Alliance. Everybody want to strengthen the fight against this anti-democratic government.
4: इस बीच तृणमूल के भगदड़ करने वाले नामों में राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबराइक भी शामिल हो गए। उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपा। सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव के बाद इस्तीफा देने वाले वो राज्यसभा के तीसरे तृणमूल सांसद हैं।
8: प्रकाश जी, कैसा काम आपको लग रहा है अभी जब से बीजेपी सरकार आई है, वो कैसा काम कर रही है बंगाल में?
9: अच्छा कर रहा
4: है। बागियों की लिस्ट में लोकसभा के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर सस्पेंस है। एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न ने कहा कि ममता मेरे मुश्किल समय में साथ रही है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, लेकिन उन्होंने खेल भावना के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के 12 साल पूरे होने की बधाई भी दी है। आज तक ब्यूरो।

0: बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी में जो तूफान आया है वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, कोलकाता में बागी विधायकों का भी अपना गुट बन गया है और विधायकों में बगावत का झंडा उठाया है ऋतव्रत बनर्जी ने। सबसे पहले ऋतव्रत ने ही टीएमसी में रहते हुए ममता और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका और फिर देखते ही देखते दिल्ली तक बात पहुंच गई। लेकिन सवाल ये है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी के विधायक और सांसद बगावत करने लगे? क्या बंगाल में टीएमसी हारी इसलिए ये भगदड़ मची है या फिर वजह कुछ और है?
1: दो साल में क्या ऐसा बदल गया कि आपको लगा कि पार्टी से अलग होना चाहिए, एक अलग गुट बनाना चाहिए?
2: देखिए, दो साल नहीं, काकुली घोष रिश्तेदार 40 साल से है, मैं 17 साल से हूँ। जो लोग अभी इस बार पहली बार जीत कर आए हैं, एक साल के लिए, दो साल के लिए, उसके लिए एक दो साल होगा, हम लोग के लिए इतना दिन, तो इतना दिन में तो कोई ना कोई अगर आप बोलेंगे जब जीते थे तब क्यों नहीं बोले थे, अभी हारने के बाद क्यों? जीतने के बाद भी बोले थे, बोलने की कोशिश किए थे, वहाँ पे सिस्टम नहीं है बोलने का, बोलने से सब रोकते हैं जो नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, तो और अगर बोले भी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलते, आप 7 दिन 10 दिन इंतजार करो, कुछ नहीं।
0: ये शताब्दी रॉय है, ममता बनर्जी के विश्वास पात्र सांसदों में से एक। शताब्दी कहती है कि बगावत का ये बम एक दिन में नहीं बना, पार्टी के अंदर असंतोष तो बहुत पहले से था, उसकी अभिव्यक्ति अब हुई है। मतलब टीएमसी में बगावत का बारूद एक दिन में इकट्ठा नहीं हुआ। बागी नेताओं का आरोप है कि पार्टी नेतृत्व जमीनी कार्यकर्ताओं और नेताओं से कट गया है, भ्रष्टाचार और संगठनात्मक समस्याओं से जुड़ी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। ममता बनर्जी की सादगीपूर्ण राजनीति दिखावा है, पार्टी के अंदर बोलने नहीं दिया जाता था। एक तरफ बागी सांसद है, दूसरी तरफ विधायक। बागी विधायकों का दावा है कि उनके पास 60 से अधिक विधायकों का समर्थन है, जैसे ही विधानसभा सत्र शुरू होगा हम अपनी शक्ति दिखाएंगे। बंगाल टीएमसी के पास 80 विधायक हैं और अगर इनमें से 60 विधायक बागी गुट में चले गए तो ममता के हाथ से पार्टी का नेतृत्व भी निकल जाएगा। अब ममता बनर्जी के सामने एक नहीं कई चुनौतियां, बागियों से निपटना, पार्टी की खोई हुई जमीन वापस हासिल करना और अपने भतीजे अभिषेक को अपनी जगह पर सेट करना। लेकिन जिस तरह से बीजेपी बागियों को समर्थन दे रही है उससे ममता बनर्जी के लिए इन चुनौतियों से निपटना आसान नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।

0: पश्चिम बंगाल में टीएमसी में भारी बगावत, विधायकों के बाद सांसदों की बारी। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस। हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, अब देखिए 7 तक नेहा के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। शाम के साथ बजने वाले आज तक इस खास शो में अगले आधे घंटे में दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शामिल होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। टीएमसी बागी गुट के नेता काकुली घोष का एनडीए के साथ होने का दावा, कहा 20 सांसद हमारे पक्ष में, लेकिन आज तक से बोले शत्रुघ्न सिन्हा, मैं ममता दीदी के साथ। कांग्रेस की बैठक में राहुल

0: सविता देव ने इस्तीफा दिया था और आज टीएमसी राज्यसभा के सांसद प्रकाश चेक बाराइट ने भी इस्तीफा दे दिया।
1: देखिए असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया, ये हम लोग के पक्ष में नहीं आया। साथ ही इस मैंडेट को देखते हुए मैं भी अपना पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि मेरा भी कंस्टिट्यूंसी में उस तरह रिजल्ट नहीं हुआ। अभी गणतांत्रिक देश का गणवदत्ता जिसको चाहती है वो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है।
0: तीन दिन में टीएमसी के तीन राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन इन बागियों में सयानी घोष, प्रतिमा मंडल, माला रॉय, मिताली बाग का नाम भी जोड़ लीजिए। कल टीएमसी के चार सांसद बीजेपी नेताओं से मिले। जादवपुर के सांसद सयोनी घोष, जयनगर की प्रतिमा मंडल, कोलकाता दक्षिण के मॉल रॉय और आरामबाग के सांसद मिताली बाग बागी खेमे में शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक हुई जिसमें बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। करीब एक घंटे तक चारों सांसदों और बीजेपी नेताओं की बैठक चलती रही। बागी गुट का दावा है कि 19 से 20 सांसद उनके संपर्क में हैं। टीएमसी के बागी लोकसभा में अलग गुट बनाना चाहते हैं। अभी लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। अगर ये बागी कामयाब हुए तो लोकसभा में टीएमसी नेता का पद भी इन्हें मिल जाएगा। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: तो टीएमसी के बागी नेताओं पर टीएमसी के ही सांसद कीर्ति आजाद भड़क गए। वो ममता बनर्जी के विरोध में खड़े नेताओं को बागी ना कहकर भगौड़ा कह रहे हैं।
3: रिबेल कहां से हो गए? भगौड़े हैं। रिबेल कहां से हो गए? ये तो भगौड़े हैं। रिबेल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए। ये तो हमारे सिंबल पे लड़े थे, तो रिबेल कहां से हो गए? ये तो भगौड़े हैं। हमारे सिंबल पे लड़े तो ये आरोप ना आरोप लगाए हैं, जो सच्चाई है उसको रखा है। आरोप क्या होते हैं? आरोप तो होते हैं जिनको सिद्ध करना होता है। इसमें क्या सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना? जिस सिंबल पर तुम लड़े, तुम रहे, चुनाव के 30 दिन नहीं हुए और तुम्हें भ्रष्टाचार देखने लग गया। अगर भ्रष्टाचार तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा था तो तुमने रोका, और भ्रष्टाचार वाली बात थी तो काकुली दस्तीदार जो बात कर रही है भ्रष्टाचार की, वो तो 5 लाख रुपए खुद कैमरा में लेती पकड़ी गई।
2: टीएमसी से लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने भी अब बगावत का बिगुल बजा दिया है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी की वजह से पूरी पार्टी बिखर गई है। अभिषेक बहुत घमंडी असभ्य व्यक्ति हैं, बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं। कल्याण बनर्जी से सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया है उन्होंने अभिषेक के खिलाफ। आज तक से कहा कि अभिषेक बनर्जी के चक्कर में पार्टी को खत्म किया जा रहा है और ये सीधा हमला है ममता बनर्जी पर, क्योंकि पार्टी की सर्वे सर्वा ममता ही है।
4: He's such an arrogant merchant, and all the time this is insulting. This is not possible for me to appear in this matter. I said I will not appear.
5: So this is also mistrust. You are not just an advocate. You are also a senior member within the party.
4: This is humiliating. This is humiliating.
5: Does he not trust you?
4: No. He never trusted me.
5: Never
4: trusted me.
5: But you are
4: right from 2022. You know what 2022? What I said about him. You know that.
5: Kolanda, you are on the front line.
4: Under compulsion, he was working. I was working with him. But he never trusted me. And he will never trust me.
5: But you are fighting.
4: I am fighting for Mamata Banerjee. I am not fighting for anybody. I am fighting for Mamata Banerjee and fighting for the people of the state of West Bengal and the party cadre.
5: No, but
4: who is he? Such an arrogant person.
5: One must
4: understand that for Abhishek Banerjee, the party has been destroyed today. We have lost it.
5: Everybody is saying this.
4: Everybody is saying, I have not said. I am in the back days of the party. I was with the Mamata Di. I said, again I am saying, I am with Mamata Di. But Mamata Di has to choose whether Abhishek Banerjee, she will keep or she will keep me.
5: That's an ultimatum.
4: Yes. This is, I leave it to her.
5: This is a reality.
4: Her wisdom. I leave it to her wisdom.
5: So this is a dharam sankat for Didi. Yes,
4: I leave it to her wisdom. Whatever she will do, that's all right. If she says no, without Abhishek Banerjee, party cannot run, I have to take my other decision.
5: Because she has chosen Abhishek Banerjee right now. He's still the national.
4: That's all right. That today I am saying this.
2: टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के साथ एक बार फिर धक्का मुक्की हुई है। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो सैकड़ों का सैलाब उनकी ओर बढ़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर लोग अभिषेक बनर्जी की ओर बढ़े और बताया जा रहा है कि यहीं पर उनके साथ धक्का मुक्की की गई। इससे पहले

0: भी एक घटना हुई थी जिसमें अभिषेक बैनर्जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उन पर अंडे फेंके गए थे। उसके बाद से जहां भी वो जा रहे हैं इसी तरह के बर्ताव का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के फलता में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को हाफ पैंट में घुमाया गया। जहांगीर खान इस विधानसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार रहे। इन्हीं गलियों में जहांगीर खान की तूती बोलती थी, लेकिन आज इन्हीं गलियों में जहांगीर खान को हाफ पैंट में घुमाया गया। पिछले दिनों बंगाल पुलिस ने जहांगीर को गिरफ्तार किया और अब जहांगीर खान को फलता इलाके में पुलिस ने इस तरह से परेड कराई। वहीं बिहार विधान परिषद चुनाव में सभी 10 उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है। कई उम्मीदवारों ने 11 जून को बिहार विधानमंडल जाकर जीत का सर्टिफिकेट लिया। कुल 10 सीटों के लिए 10 उम्मीदवार थे, इसीलिए वोटिंग की नौबत नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के सभी 4 उम्मीदवार को जीत हासिल हो गई है। बिहार विधान परिषद चुनाव में एनडीए के पास अपने 8 उम्मीदवारों के लिए पूरे वोट थे, जबकि नीतीश कुमार की खाली सीट पर भी जीत तय थी। इस तरह से बीजेपी के सभी उम्मीदवार निर्विरोध विधान पार्षद निर्वाचित हो गए हैं। देखिए इन 4 के नाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मैं उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। 20 साल में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने विकास का काम किया, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, बिजली सड़क हो, सब तरफ हमने काम किया। हमारा बिहार कई मामलों में देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण बना, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, जल जीवन हरियाली हो, जीविका हो, शराबबंदी हो, हम विकास का काम जारी रखेंगे।
0: वहीं मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद सियासत तेज है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और पार्टी के उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, महेश केवट और तरुण चुग को रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने का मामला अब तक राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे जहां पर 27 के चुनाव से पहले हलचल तेज है। बीएसपी बैठक पर बैठक कर रही है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ समीकरण बिठाने का जतन तलाश रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि वो सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और इन सब के बीच बीजेपी ने चुनाव से पहले नौकरी वाला दांव चल दिया है।
2: उत्तर प्रदेश में जितना मौसम का पारा चढ़ा है उससे ज्यादा सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, क्योंकि 27 के समर के लिए सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। एक हलचल बीएसपी में है। समाजवादी पार्टी के पीडीए के जवाब में बीएसपी की भाईचारा कमेटी ओबीसी और दलित की बड़ी बैठक की गई, जिसमें हर जिले के ओबीसी और दलित नेता मौजूद रहे। ऐसा इसलिए ताकि वोट बैंक न टूटे और पीडीए से बचा रहे। एक और हलचल समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जब सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से बातचीत शुरू होगी तब सबसे पहले कांग्रेस से किन जिलों में उन्हें चुनाव लड़ने में दिलचस्पी है ये पूछा जाएगा। एसपी को लगता है कि बड़ा उद्देश्य बीजेपी को यूपी में हराना है, फिर सीट पर चाहे कोई उम्मीदवार लड़े, बशर्ते वो उम्मीदवार जाति समीकरण को साध रहा हो और जिताऊ हो। हालांकि सूत्रों से खबर है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 80 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि उसकी 403 सीटों पर पूरी तैयारी है।
3: कांग्रेस की कितनी तैयारी है?
4: 400 दिनों पर पूरी मजबूती के साथ हमने सभी अपनी तैयारी की है। संगठन बूथ स्तर पर जीतने की क्या रणनीति हो सकती है उस पर हम काम कर रहे हैं।
2: तीसरी हलचल बीजेपी में है। माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठक होगी, मगर उसके पहले योगी सरकार ने नौकरी वाला बड़ा दाम चल दिया है। 2026 में 1.5 लाख से ज्यादा नई भर्तियों की तैयारी है। इसके साथ यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग 60,000 शिक्षकों की भर्ती करेगा। मतलब कह सकते हैं कि यूपी में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अगली खबर हरियाणा के हांसी से, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक शूटर ने एक जिम संचालक को गोलियों से भून दिया। गोलीबारी करके दोनों हमलावर फरार हो गए।
5: जिम संचालक लड़के लड़कियों को रैंप पर वार्म अप करा रहा है, तभी एक बाइक पीछे से आकर रुकती है। बाइक के पीछे बैठे शख्स के सिर पर सफेद टोपी, पीठ पर नीला बैग और चेहरे पर काला मास्क है। वो पिस्टल निकालता है और फिर एक एक कर जिम संचालक को गोलियों से छलनी कर देता है। 5 सेकंड में ताबड़तोड़ 10 गोलियां दागी जाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहां वार्म अप कर रहे लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। वहीं दोनों बाइक सवार वहां से फरार हो जाते हैं।
0: भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में इस वक्त एक बेहद तनावपूर्ण स्थिति है। मेघालय के साउथ वेस्ट गारो हिल्स जिले में सीमा पर अचानक हालात बिगड़ गए और दोनों देशों के सुरक्षा बल आमने सामने आ गए। मामला एक बांग्लादेशी घुसपैठी से जुड़ा हुआ है।
2: भारत बांग्लादेश सीमा का ये नंदर चर्च सेक्टर है जो मेघालय के महेंद्रगंज के पास स्थित है। यहाँ सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे एक संदिग्ध शख्स को दबोच लिया। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान इस शख्स ने खुद कबूला कि वो बांग्लादेश का नागरिक है। इसके बाद BSF ने तय नियमों के तहत उसे वापस बांग्लादेश की सीमा में धकेलने यानी पुश बैक करने की कार्रवाई की, लेकिन असली विवाद इसके बाद शुरू हुआ। जैसे ही वो शख्स सीमा पार गया, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी BGB और वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने उसे अपना नागरिक मानने से साफ इनकार कर दिया और उसे हिरासत में लेने से मना कर दिया। बांग्लादेश के इस अड़ियल रोक का नतीजा यह हुआ है कि वो शख्स अब कटीरी बाढ़ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच नो मैंस लैंड में फंसा हुआ है। इस अजीबोगरीब गतिरोध की वजह से सीमा पर जबरदस्त तनाव फैल गया है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें सीमा के आसपास भारी हलचल और तनाव साफ देखा जा सकता है। हालांकि अभी तक ना तो BSF और न ही BGB की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है, लेकिन दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां इस संवेदनशील स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: इधर ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के लोहार ली टोल प्लाजा पर कल जबरदस्त हंगामा हुआ। यहां दबंगों ने हूटर बजाते बूम बैरियर तोड़कर एक दर्जन गाड़ियां निकाली। बिना टोल टैक्स दिए गाड़ियों को निकालने से रोकने पर बूम बैरियर दोबारा लगाने पर आरोपियों ने टोल कर्मचारियों के साथ हाथापाई की, मारपीट भी की। बीच बचाव करने आए टोल कर्मी लोकमान सिंह पर ईंट पत्थरों से हमला कर उसे लहूलुहान कर गए। पुलिस ने टोल प्लाजा की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां 24 नॉर्थ परगना में एक स्कूल में 2.25 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। इसके अलावा शराब की बोतलें और कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली।

0: 500 की नोटों की गड्डियां, 200 के नोटों का बंडल और 100-100 रुपए के नोटों का गट्ठर, ये करोड़ों के कैश पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के कांचरापाड़ा में बने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिले हैं। एक करोड़ 77 लाख रुपए के साथ इस स्कूल में शराब की बोतलें और कॉन्डोम के पैकेट भी मिले हैं। स्कूल में एक बेडरूम जैसा सेमी फर्निश्ड कमरा भी है। सवाल ये है कि इतना पैसा स्कूल में आया कहाँ से?
1: एडमिशन टाकाटा अकाउंटेंट माने भर्ती टाका गुलो अप्रैल मास थेके स्टूडेंट जे भर्ती हय सेई टाका गुलो जमा करेछिलो। एकटा उनार उचित छिलो माने एकदिन पर दुदिन अंतर बैंके पाठानो, उनी बैंके पाठायनी। আডাটা পুরো অ্যাকাউন্ট সেকশনের পাটে, আর আমি প্রিন্সিপাল হিসেবে শুধুমাত্র আমার একাডেমিক পাটের আমার দায়িত্ব ছিল, এই পাটাইনি সে ব্যাপারে আমার কোনো নলেজ ছিল না।
0: मतलब स्कूल के मुखिया को ही नहीं मालूम कि स्कूल के भीतर अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए प्रिंसिपल साहब ने ये बताया कि बेडरूम इसलिए है ताकि बच्चे बीमार हो तो आराम कर सके। प्रिंसिपल की सफाई किसी के गले नहीं उतर रही है, लेकिन बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है।
2: তৃণমূল একটা অভিশাপ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 15 বছরের একটা অভিশাপ। স্কুল থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হচ্ছে, একটা বেডরুম পাওয়া যাচ্ছে এবং সেখানে আরো কিছু পাওয়া যাচ্ছে, আমার বলতে এখানে রুচিতে বাজছে, এই তো অবস্থা।
0: इस पूरे मामले में पुलिस ने स्कूल के कैशियर अभिजीत नाथ और अविक नाथ के साथ ही असिस्टेंट अकाउंटेंट सायन घोष को हिरासत में ले लिया है। अब जानने की कोशिश हो रही है कितना कैश आया कहां से और स्कूल में चल क्या रहा था। दीपक देवनाथ, नॉर्थ 24 परगना, आज तक।
3: और बात शेयर बाजार की, घरेलू शेयर बाजार आज कमजोरी के साथ बंद हुआ। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 151 अंक फिसल कर 73,833 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 53 अंकों की गिरावट के साथ ये 23,161 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में सुस्ती के बीच रुपए पर भी दबाव रहा। डॉलर के मुकाबले रुपया 50 पैसे कमजोर होकर 95.75 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। सराफा बाजार में आज गिरावट का रुख रहा। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,364 रुपए घटकर 1,44,732 रुपए पर आ गई है, जबकि चांदी प्रति किलो 682 रुपए की गिरावट के साथ 2,32,591 रुपए के स्तर पर बंद हुई है। बात पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी POJK की करेंगे, जहां पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वो इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। रावलकोट की सड़कों पर इस समय जो कुछ हो रहा है वो महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक खुला विद्रोह है।
4: सुनिए इन नारों को, ये नारे किसी आम प्रदर्शन के नहीं हैं, ये सीधे सीधे उस अवैध कब्जे को चुनौती हैं, जिसे पाकिस्तान दशकों से दुनिया के सामने अपना बताता आया है। POK का रावलकोट रविवार को पूरी रात गोलियों, आंसू गैस के गोलों और सेना के बूटों की आवाज से नहीं बल्कि आवाम की दहाड़ से गूंजता रहा। कई जिलों से आए हजारों लोग रात भर सड़कों पर डटे रहे। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबका एक ही संकल्प है, अब हुक्मरानों की तानाशाही नहीं चलेगी। ये गुस्सा अचानक नहीं भड़का है, ये लावा है जो अब फट चुका है। 7 और 8 जून को रावलकोट ने वो खूनी मंजर देखा जिसने आवाम के सब्र का बांध तोड़ दिया। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो POK के इतिहास में ये अब तक का सबसे हिंसक और सबसे संगठित आंदोलन बन चुका है। पहले लोग सिर्फ आटे और बिजली के बिलों पर रोते थे, लेकिन इस बार बात आर पार की लड़ाई पर आ गई है। रावलकोट के इस महा आंदोलन ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के उस खोखले प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं।
3: और बात फुटबॉल के सबसे बड़े इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। पहले दिन 2 मुकाबले खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच मेक्सिको सिटी स्टेडियम में खेला जाएगा।
0: चार साल का इंतजार, करोड़ों धड़कनों की बेचैनी और अरबों आंखों का सपना, बस कुछ घंटों में शुरू होने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ, फीफा वर्ल्ड कप 2026। एक ऐसा टूर्नामेंट जिसके लिए दुनिया रुक जाती है, जिसके लिए रातें जाग कर काटी जाती हैं और जिसके एक एक गोल पर दुनिया झूम उठती है। इस बार रोमांच इसलिए भी दोगुना है क्योंकि माना जा रहा है कि फुटबॉल के दो सबसे बड़े महानायक लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो आखिरी बार विश्व कप के मंच पर दिखाई देंगे।
5: मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका, ये तीन ऐसे देश हैं जहां पर करीब करीब 16 वेन्यूज के ऊपर में, 16 शहरों के ऊपर में ये मुकाबले खेले जाएंगे। 48 टीमें हैं इस बार। सबसे बड़ी बात यही है, अभी तक 32 टीमें हुआ करती थी लेकिन इस बार फीफा ने 48 टीमों का मौका दिया है।
0: इस वक्त दुनिया के हर कोने में फुटबॉल की धुन सुनाई दे रही है, कहीं मेसी के पोस्टर है तो कहीं रोनाल्डो के नाम की गूंज है। आज टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच मैक्सिको सिटी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दिन का दूसरा मैच साउथ कोरिया और चेक रिपब्लिक के बीच ग्वाडलाहारा स्टेडियम में होगा। ये मुकाबला 12 जून को सुबह 7:30 बजे खेला जाएगा। पहले दिन खेलने वाली चारों टीमें ग्रुप ए में मौजूद है। तो तैयार हो जाइए नींद से लंबी रातों के लिए, दिल की धड़कनें बढ़ाने वाले गोलों के लिए, आंसुओं, उम्मीदों और जश्न के उन पलों के लिए। आज तक ब्यूरो।
3: तो ये थी खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद भारत।
7: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
10: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
7: Where the software engineer meets the cool UI/UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
8: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
9: Ye pillar kabhi nahi tootega. Roongta Steel TMT se bana.
10: Roongta nahi, to ghar strong nahi. Roongta Steel TMT bar, ekdam solid.
11: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
12: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
11: सिंह जैसी
13: शक्ति मुझ में।
14: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
15: इन एसोसिएशन विद
16: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
15: हिंट, बड़े आराम से
16: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
15: विमल बोलो जुबा केसरी।
17: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
18: भाव भगवान है, सुनने में बड़ा अच्छा लगा, लाइन पॉपुलर हो गई। भाई भगवान ही भगवान है, भगवान के बाद शेयर बाजार में भाव प्रधान।
19: ऐसा कौन सा क्रैश था जिसने आपको भी एक बार इमोशनली हिट किया था?
18: Y2K की तेजी में लगा था कि मेरे ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं है, मेरे सारे गोल्स पूरे हो गए। जब बादलों के ऊपर सर पहुंच जाता है तभी लट पड़ता है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड ओनली अंटिल इट एंड्स और इट बेंड्स। देखिए, बांगड़ू जवान बुल मार्केट में कमाएगा और बूढ़े हार्ड जो है ना बेयर मार्केट में कमाएगा।
20: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
6: Lion Desert King Dates, ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेसर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
7: लाइन डेसर्ट किंग डेट्स,
6: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
8: आमी खुशी एकटा कारणे
9: क्या ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकल चुकी है? क्या टीएमसी में सिर्फ ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ही बचेंगे? क्या बंगाल चुनाव हारने के बाद टीएमसी का भी वही होगा जो महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना का हुआ है? पश्चिम बंगाल की सियासत की मुख्य विपक्षी पार्टी टीएमसी में भूचाल मचा है। हर गुजरते दिन के साथ सांसद विधायक पाला बदल रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं। जो कभी आज्ञाकारी भरोसेमंद थे, अब वो बगावत पर उतर आए हैं। सयानी घोष, प्रतिमा मंडल, माला रॉय, मिताली बाग, टीएमसी के बागियों में ये नाम भी जोड़ लीजिए। इन सांसदों ने टीएमसी के बागी गुट से हाथ मिला लिया है। ममता बनर्जी की टीएमसी में इस समय भगदड़ मची है। सांसदों में भगदड़, विधायकों में अफरा तफरी, कोलकाता से दिल्ली तक भागम भाग मची है। बुधवार को जब बीजेपी एनडीए के नेता मोदी के 12 साल का जश्न मना रहे थे, तो उसी दौरान ममता बनर्जी के 4 सांसद बीजेपी नेताओं से मिल रहे थे। जादवपुर की सांसद सयानी घोष, जयनगर की प्रतिमा मंडल, कोलकाता दक्षिण की माला रॉय और आरामबाग की सांसद मिताली बाग बागी खेमे में शामिल हो गयी है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर बैठक हुई, जिसमें बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। करीब एक घंटे तक चारों सांसदों और बीजेपी नेताओं की बैठक चलती रही। बागी गुट का दावा है कि 19 से 20 सांसद उनके संपर्क में हैं। टीएमसी के बागी लोकसभा में अलग गुट बनाना चाहते हैं। अभी लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। अगर ये बागी कामयाब हुए तो लोकसभा में टीएमसी नेता का पद भी उन्हें मिल जाएगा। बागियों में शत्रुघ्न सिन्हा और देव अधिकारी को लेकर भी चर्चाएं थी, लेकिन टीएमसी सूत्र कह रहे हैं कि ये दोनों दीदी के साथ हैं। लोकसभा में टीएमसी सांसद अलग गुट बनाने की कोशिश में है, तो वहीं राज्यसभा से भी टीएमसी को झटके पर झटका लग रहा है। पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दिया और अब सुष्मिता देव ने भी पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी है। सुष्मिता देव के पाला बदलने के पीछे असम के सीएम हिमंता बिस्वा की भूमिका अहम मानी जा रही है। जो ममता बनर्जी मां माटी मानुष की राजनीति करने का दम भरती थी, उनकी पार्टी एक करारी हार में बिखरती जा रही है। पार्टी से बगावत करने वाले सांसद अपने ही नेता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। टीएमसी में आए इस तूफान को शांत करने की कोशिश ममता बनर्जी कर जरूर रही हैं, लेकिन सफलता कितनी मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: तो टीएमसी सांसदों को लेकर जो अटकलें तमाम लगाई जा रही हैं, उस पर बेहद खास मेहमान शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्हें शॉटगन भी कहा जाता है, आसनसोल से सांसद भी हैं, टीएमसी के सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शत्रुघ्न जी आज तक पर।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक की चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है, वाकई सही मायनों में बहुत ही तेज चैनल है आज तक। कल जो धूम मची और जो धूम मचाई आपने, जो चर्चा की आपने, उसकी वजह से आज पूरे चारों तरफ फिर से एक नई ऊर्जा, एक नई क्रांति, एक नई लहर पैदा हो गई है।
2: जी शत्रुघ्न जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आप किस तरफ हैं, क्योंकि कल ये दावा किया गया कि 19 नाम सामने आए हैं और उन 19 नामों में आपका भी नाम है, जो एक बागी और अलग संसदीय गुट बनाना चाहते हैं टीएमसी में। क्या आप उस गुट में हैं या आप ममता दी के साथ हैं? जी
3: देखिए, मैं अपनी स्पष्ट बाधिता के लिए और अपने खुले स्वभाव के लिए मशहूर हूं या बदनाम हूं। जहां तक बागियों का सवाल है, मुझे तो खुद ही कुछ लोग बागी समझते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। लेकिन जहां तथा कथित बागियों के बीच हमारा नाम गया है, वो तमाम अपने ही लोग हैं, अपने ही दोस्त लोग हैं, अपनी विचार से वो लोग गए वहां पे, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मेरा नाम उसमें शामिल नहीं है, मैंने कोई दस्तखत नहीं किया है, कोई सिग्नेचर नहीं है, मैंने ना हामी भरी है और ना ही, टू बी वेरी फेयर उनके लिए मैं सच कहूंगा, उनमें से किसी ने मुझे कॉन्टेक्ट भी नहीं किया है। हो सकता है कुछ लोग टेकन फॉर ग्रांटेड समझ के आगे बढ़ गए हों, लेकिन किसी ने हमें कॉन्टेक्ट नहीं किया है। और जिन लोगों ने कॉन्टेक्ट किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रगण हों, चाहे अन्य पार्टी के, अन्य जगह के, मैं उनका भी आभारी हूं। उन्होंने बहुत अच्छे मन से, बहुत मेरा भलाई सोच के उन्होंने कहा होगा, निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया अपनी ओर। लेकिन मैं इस मुसीबत की घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने, जो हमारी नेत्री हैं या नेता हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया था, आज उनकी इस मुसीबत की घड़ी में मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैंने 3 लाइन व्हिप अपनी तरफ से इशू कर दिया है, और वो ये है कि मैं ममता जी के साथ हूं, मैं ममता जी के साथ था, और मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है रास्ता बदलने की या किसी और दिशा में जाने की।
2: लेकिन आपने खुद ही कहा कि बीजेपी के भी कुछ नेता थे, अन्य पार्टियों के थे, तो क्या आप शत्रुघ्न जी उनका नाम लेना चाहेंगे कि कौन आपका बीजेपी में घर वापसी कराने के लिए इतना एक्साइटेड था, आतुर था?
3: नहीं नहीं, वो लोग भी अच्छे लोग हैं, मित्रगण हैं। देखिए, मैं तो अपने आप को सर्वदल प्रिय मानता हूँ, हर पार्टी में मेरे दोस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो मेरा पालन लालन पालन हुआ है, पालन पोषण हुआ है। मैं उस पार्टी में तो नाना जी महान नायक और महान भारत रत्न नाना जी देशमुख मुझे लेकर गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत के भूतपूर्व और भूतपूर्व प्रधानमंत्री, या हमारे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, अल्टीमेट गुरु एंड लीडर आडवाणी जी के साथ मिलाया था। तब मैं भारतीय जनता पार्टी में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया था, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी में ही लालन पालन हुआ है, ट्रेनिंग हुई है, आगे बढ़ा हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर भी एक बार नहीं, दो दो बार बना भारतीय जनता पार्टी में। तो मैं दिल से तो व्यक्तिगत तौर पर उनका बहुत आभारी भी हूँ, उनके लिए बहुत प्रेम भी है, बहुत आदर भी है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं कोई निजी किसी पे हमला नहीं करता हूँ, किसी का नाम लेके कुछ नहीं बोलता हूँ। तो आज की भी इस घड़ी में जब अंजना ओम कश्यप हमसे पूछ रही हैं, तो मैं अपने मित्रों का, जो भारतीय जनता पार्टी में हैं या जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया आने को कहा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि अंतोगत्वा हैं तो हमारे ही लोग हो। हमारा अपना मानना है कि किसी भी पार्टी में हो, आपका विरोध हो लेकिन मतभेद ना हो, मतभेद हो तो मन भेद ना हो, ये मैं हमेशा मानता हूं।
2: मेरा प्रश्न आपसे ये है कि लगभग अन्य लोग, आज तो कल्याण बैनर्जी जी भी जो कल तक बड़े गुस्सा थे बागी सांसदों से, वो भी कह रहे हैं कि अभिषेक जी का जो हाई हेडेड एटीट्यूड है वो उनको पसंद नहीं है। आपको क्या वजह लगती है, अभिषेक बैनर्जी को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उन्हीं को लेकर ज्यादातर, एक तो विधायक ही ऋतव्रत बैनर्जी के साथ साठ अलग हो गए और उन्हीं के नाम पर अब ये लोग भी नाराजगी दिखा रहे हैं सांसद, आपका क्या कहना है इस पर?
3: कल्याण बनर्जी बहुत बुद्धिमान, बहुत लर्ने, इंटेलेक्चुअल पार एक्सेलेंस है, बहुत बढ़िया आदमी है वो। अब उनकी अपनी क्या कार अपना क्या अपनी क्या वजह है जिसकी वजह से वो अभिषेक बैनर्जी से जिनके बारे में उन्होंने कहा है, लेकिन याद रखिए उन्होंने अभिषेक बैनर्जी के बारे में कहा है, उन्होंने कहा है कि वो ममता जी के साथ हैं और ममता जी के विजडम पे उनको पूरा विश्वास है, जैसा ममता जी कहेंगी वैसा वो करेंगे। अने हमारे चंद सबसे काबिल पार्लियामेंटेरियंस जो है देश में, उनमें से यकीनन एक हमारे कल्याण बैनर्जी हैं, इसमें दो राय नहीं है। अब उनके अपने कारण होंगे, हो सकता है प्रोफेशनल कारण हो सकता है एज ए लॉयर गए हो, वहां पे उनको वो मान सम्मान ना मिला हो, वो बात ना हुई हो, इसलिए वो शायद नाराज हुए हो। न किसी पार्टी में रहते हैं, दो चार बर्तन तो आपस में ढंढनाते ही हैं, और इसका मतलब ये नहीं, जब बर्तन ढंढनाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं या पार्टी से अलग हो रहे हैं।
2: और काकुली घोष पर आपका क्या कहना है शत्रुघ्न जी, क्योंकि वो तो 40 साल से 85 के साल से वो कह रहे हैं कि मैं ममता दी के साथ थी, वो उस पूरे गुट को लीड कर रही है और कह रही है एनडीए का समर्थन करेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं?
3: देखिए मैं काकुली घोष जी को बहुत अच्छी तरह तो नहीं जानता हूँ, मैं तो खुद ही पार्टी में नया हूँ, दो ही टर्म तो इलेक्शन जीत कर आया हूँ, वहां पे रिकॉर्ड मार्जिन से आया, इसमें आसनसोल की जनता और बंगाल के लोगों का बहुत प्यार मान सम्मान मिला है, नेतृत्व रहा है ममता जी का, जोड़ा फूल पर जीत के आया हूँ, जोड़ा फूल सिंबल पे जीत के आया हूँ। तो मेरा उन लोगों से ही कहना होगा कि जो लोग अभी, मेरा हम्बल निवेदन है, सजेशन है कि जो लोग जोड़ा फूल पर जीत कर आए हैं वो अगर जोड़ा फूल छोड़कर जाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि वो अपने को रिजाइन करें, इस्तीफा दें और फिर जिस पार्टी में जाना है उस पार्टी में अगर आके चुनाव लड़े, जीत कर जाए, उनका बिल्कुल स्वागत होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो अपनी अपनी विचारधारा पे अपने अपने विचार से चलते हैं। और जहां तक सवाल है उनका, अब अभिषेक बैनर्जी का
2: जी,
3: अभिषेक बैनर्जी को भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मेरे नेता सिर्फ और सिर्फ ममता बैनर्जी रही हैं, सिर्फ, और मैं और किसी को ऐसे नहीं जानता हूं, तो मेरा कोई खास अनुभव नहीं है। मेरी जो भी डायरेक्ट बातचीत होती थी या निर्देश आदेश होता था वो ममता जी की तरफ से होता था, और आज भी ममता जी जो कहेंगी, ममता जी जब तक पार्टी में हूं मैं ममता जी की बात सुनूंगा, और मैं और किसी को नहीं जानता हूं और ना ही किसी को उस रूप में मैं मानता हूं।
2: शत्रुघ्न जी इसीलिए कहते हैं कि आप बेबाकी से जब बोलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बाकी नाम भी, मतलब कल भी जब लिस्ट आई तो बड़े हैरान करने वाले नाम है, यूसुफ पठान, सायोनी घोष, आप भी उतने ही हैरान हुए?
3: हुए, जरूर हुए, लेकिन जब मैं पहले यूसुफ पठान तो वाकई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही बढ़िया काबिल आदमी है, बहुत शरीफ डिसेंट है, जेंटलमैन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है, इससे ज्यादा मैं इस वक्त क्या कहूं कि हो सकता है कुछ लोग जो हैं किसी डर की वजह से या डराने की वजह से या किसी भय के लोभ में, भय में या प्रलोभन में गए हों या अपनी मजबूरी की वजह से गए हों, कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि वहां पे सारे लोग अभी एमएलए भी हमारे नहीं है, हम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या ऐसा होगा कि हमें मुख्यमंत्री जो हैं, जो भी नए मुख्यमंत्री आए हैं वो हमें मदद देंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे, बहुत सारी बातें हुई होंगी, लेकिन मैं इसमें इस बीच में नहीं पढ़ना चाहता हूं कि सब लोग बालिग हैं, व्यस्क हैं, अपना अपना सोच के, अपना भला सोच के गए होंगे। मैं तो सिर्फ जैसा मैंने कहा हम्बल निवेदन ही कर सकता हूं कि अभी भी वक्त है, सोचो, किसी को पार्टी को तोड़ना हो, किसी पार्टी को छोड़ना हो, और खासकर ममता जी के नेतृत्व जिनके जोड़ा फूल पर सब जीत कर रहा, और ममता जी जो कल तक सब दीदी दीदी दीदी कर रहे थे, कुछ हमारे ऐसे सांसद जिनका आप नाम लिया, वो तो ममता जी का इतना असर था कि नकल करती थी ममता जी की चलने में, बोलने में, बात अच्छे लोग हैं, अब ये लोग कहते हैं अचानक क्या हुआ, ताज्जुब तो जरूर हो, लेकिन हो सकता है जितने नाम आप कह रही हैं उतने नाम अभी तक सिग्नेचर दिखाए नहीं गए हैं, स्पीकर को जो लेटर भेजा गया वो बताया नहीं गया है, तो हो सकता है अभी संख्या उनकी पूरी ना हुई हो, संख्या हो सकता पूरी ना भी हो, लेकिन अगर संख्या पूरी होती भी है तो सानू की, मैं तो अपने साथ हूँ, ममता जी के साथ हूँ, ममता जी के साथ था और ममता जी के साथ रहूंगा, जो जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई है आसनसोल की जनता के प्रति, बंगाल के लोगों के प्रति और देश के प्रति, वो मैं बखूबी निभाने की भरपूर यथाशक्ति यथाभक्ति कोशिश करूंगा।
2: जी शत्रुघ्न जी, अब दो सवाल टीएमसी के भविष्य को लेकर, क्योंकि कल से बीते दिन से ये अटकलें बहुत हवा पकड़ने लगी कि ममता बनर्जी सोनिया जी से दो बार मिली है, राहुल गांधी मिले हैं अभिषेक बनर्जी से, तो पार्टी का टीएमसी का कांग्रेस में विलय करने के पर चर्चा हो रही है, इन अटकलों पर आप क्या कहेंगे और एक सांसद के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं?
3: अच्छा है, मैं समझता हूँ जिस तरह जो मिलते हैं विपक्षी दल आपस में मिलते हैं और खासकर जितने ममता जी कद्दावर हैं और नेशनल यूथ आइकॉन राहुल गांधी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, अगर ये लोग साथ आते हैं तो मैं समझता हूँ सिर्फ बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अच्छा होगा।
2: तो शत्रुघ्न जी, अब बात चूंकि आपने कही है तो अब जरा भविष्य की बात करते हैं। टीएमसी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। सबसे पहले 59-60 विधायकों का अलग हो जाना, ऋतव्रत बनर्जी को एलओपी बना लेना, तो ये समस्या तो है। और यहां पर अब सांसद भी, अगर इनमें से कई सांसद हैं, क्योंकि आपके अलावा किसी ने अभी तक 19 वाली लिस्ट में सामने आकर उससे इनकार नहीं किया है, आपको नहीं लगता है कि टीएमसी के लिए और ममता बनर्जी के लिए शायद वो अपने पूरे करियर के सबसे चैलेंजिंग दौर से गुजर रही है? टीएमसी के अस्तित्व को आप कैसे देखते हैं?
3: यकीनन मैं देख रहा हूं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ममता जी जो हैं जमीन से जुड़ी हुई नेता या नेत्री हैं, शी इज अ स्ट्रीट फाइटर, उन्होंने आज तक जो कुछ हासिल किया है वो विरासत में हासिल नहीं किया है, खुद पार्टी का और काडर का निर्माण किया है उनके अपनी टीम के साथ मिलकर, और कहां से कहां आके पूरा 35 साल की सत्ता को उखाड़ फेंक कर किस तरह बंगाल में आई, शासन किया, और अभी भी जो चुनाव में जो हुआ है, मैं उस पर अब चूंकि ये टॉपिक वो नहीं है बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसमें चुनाव में भी कैसे हुआ है 40-45% वोट जो आया है इनको, वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन शायद और आता अगर और कुछ नहीं होता, डिस्क्रिपेंसीज का मामला या फिर उसका मामला नहीं हुआ होता जिस तरह से वोट SIR का मामला था, काफी लाखों लाख वोट हटा दिए गए, तो अब उन पे बात करने का फिलहाल ये विषय नहीं है, नहीं कहूंगा, लेकिन कहना ये चाह रहा हूं कि ममता जी बहुत ही बोल्ड है, एक उनके अंदर स्ट्रगल करने की क्षमता है, उन्होंने बार बार प्रूफ किया है और अभी फिर प्रूफ कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि व्हेन गोइंग गेट टफ टफ गेट गोइंग, मुसीबतों को वही पार कर सकता है जिसके अंदर मुसीबतों को झेलने की क्षमता होती है, शक्ति होती है, और मैं समझता हूं ममता जी एक लौती महिला नेता या नेत्री देश में है जिनके अंदर स्ट्रगल करके अचीव करने की जबरदस्त क्षमता है, आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे और पता चल जाएगा, मुझे लगता है अभी भी कई लोग जो हैं सेकंड थॉट दे रहे हैं, जैसा कि हमारे अपने कीर्ति आजाद ने जो कहा है, चाहे कल्याण बनर्जी ने जो कहा है, ऐसा दिखता है कि मामला पहले से उलझ नहीं रहा बल्कि सुलझने की राह पे है, क्योंकि बहुत सारे पेंच हैं अभी इसमें, बंगाल की बात करें तो वहां कोर्ट का भी पेंच है, स्पीकर के फैसले पे भी पेंच है, यहाँ पे तो अभी स्पीकर तक पहुंचा ही नहीं है, पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, क्या पहुंचा है, क्या लिखा गया है, क्या भेजा गया है, ये अभी तक तो सब क्लियर नहीं, इन बातों को क्लियर हो जाने दीजिए, मुझे लगता है अभी पुनरुत्थान पुनर्जागृति अभी का वक्त आ गया है, और ममता जी और उनकी टीम जो है इस बात को अच्छी तरह साबित कर देंगे।
2: आपकी नजर में कांग्रेस के साथ विलय करना एक सही फैसला होगा? आपकी सोच क्या है
3: कॉकरोच के बारे में?
2: कांग्रेस के साथ
3: कॉकरोच तो युवा शक्ति,
2: मैं पूछ रही हूं कि कांग्रेस पार्टी के साथ विलय का फैसला अगर होता है तो आपकी निजी सोच में वो फैसला सही होगा क्या?
3: नहीं, मैं विलय की बात तो नहीं कर रहा हूं, मैं विलय की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं और मुझे उसकी उतनी जानकारी भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि कांग्रेस का और खासकर ममता जी का दोनों का एक साथ मिलकर आगे बढ़ना और समाज को देश को आगे बढ़ाना ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा, ऑपोजिशन के लिए बहुत अच्छा होगा, जैसा मैंने कहा डेमोक्रेसी और बंगाल के लिए और देश के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा।
2: चलते चलते इस इंटरव्यू में किसको खामोश करना चाहेंगे आप, उन लोगों को जिन्होंने आपका नाम डाल दिया?
3: नहीं नहीं सब अपने लोग हैं, सब हमारे दोस्त हैं
2: जी।
3: अपनी अच्छी नीयत से ही किया होगा, चाहे जिन लोगों ने मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के हों जिस पार्टी के हों, मुझको मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, प्यार करते हैं वो लोग, इसलिए मेरा भला सोच के ही किया होगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ मेरी भलाई इसी में है कि मैं इस मुसीबत की घड़ी में जैसा ममता जी ने मेरा साथ दिया था जब मैं 19 का चुनाव हारा था या हराया गया था, उसके बाद कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था, अकेली ममता बनर्जी हैं जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और मुझे उन्होंने आसनसोल में जाने का निर्देश दिया, इंसिस्ट किया कि मैं चुनाव लड़ूं आसनसोल जहां मैं पहली बार गया और आप लोगों की नजरों में आपने माना भी बहुत लोगों ने कि वो कहावत को चरितार्थ किया कि ही केम ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड, वहां जाके पहली बार भी रिकॉर्ड मतों से जीता, दूसरी बार भी काफी अच्छे मतों से जीत हुई वहां पे। तो मैं इस मामले में ममता जी का साथ दूंगा, उन्होंने हमारा साथ दिया था इस दुख की घड़ी में, इस ममता की ये ममतामयी माँ को ममतामयी दीदी को इस वक्त मुसीबत की घड़ी में मैं साथ नहीं छोड़ सकता हूं और इसीलिए मैं उनके साथ हूं बगैर किसी की शिकायत किए हुए, बगैर किसी के खिलाफ कुछ बोले हुए।
2: क्या बात है, इसीलिए आप अनूठे माने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शत्रुघ्न सिन्हा जी आज तक पर आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत धन्यवाद सर।
3: सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू अंजना, थैंक यू।
4: प्लानिंग फॉर योर फैमिलीज फ्यूचर, पुट इट इन द राइट हैंड्स विद LegalZoom. It's too important to let it fall into the wrong hands. LegalZoom is the simple, affordable online solution for estate planning. If you need a will or trust, LegalZoom guides you through every step to ensure your loved ones and assets are protected. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
5: No ticket, no line, just showtime. Qello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
6: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: भारत बांग्लादेश सीमा का ये नंदर चर सेक्टर है जो मेघालय के महेंद्रगंज के पास स्थित है। यहाँ सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे एक संदिग्ध शख्स को दबोच लिया। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान इस शख्स ने खुद कबूला कि वो बांग्लादेश का नागरिक है। इसके बाद BSF ने तय नियमों के तहत उसे वापस बांग्लादेश की सीमा में धकेलने यानी पुशबैक करने की कार्रवाई की, लेकिन असली विवाद इसके बाद शुरू हुआ। जैसे ही वो शख्स सीमा पार गया, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी BGB और वहां के स्थानीय नागरिकों ने उसे अपना नागरिक मानने से साफ इनकार कर दिया और उसे हिरासत में लेने से मना कर दिया। बांग्लादेश के इस अड़ियल रोक का नतीजा यह हुआ है कि वो शख्स अब कटीरी बाढ़ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच नो मैंस लैंड में फंसा हुआ है। इस अजीबोगरीब गतिरोध की वजह से सीमा पर जबरदस्त तनाव फैल गया है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें सीमा के आसपास भारी हलचल और तनाव साफ देखा जा सकता है। हालांकि अभी तक ना तो BSF और न ही BGB की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है, लेकिन दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां इस संवेदनशील स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब दोनों देश अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच फ्लैग मीटिंग के जरिए इस तनाव को कम किया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।
10: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कमर्शियल उड़ानों के लिए तैयार है। इन दिनों हवाई अड्डे के कमर्शियल ऑपरेशंस रेडीनेस का ट्रायल चल रहा है। इंडिगो एयरलाइंस के विमान इस ट्रायल में शामिल हुए। ऑपरेशनल रेडीनेस, एक्टिवेशन एंड ट्रांजिशन, टर्न अराउंड ट्रायल का सफल परीक्षण किया गया। इस ट्रायल के दौरान विमान के उतरने से लेकर दोबारा उड़ान भरने तक की सभी प्रक्रियाओं का वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान विजुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम, पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, ग्राउंड पावर यूनिट, बैगेज हैंडलिंग सिस्टम और कार्गो संचालन जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं की जांच की गई। इसके अलावा विमान में कैटरिंग, ग्राउंड हैंडलिंग और ईंधन भरने से जुड़ी प्रक्रियाओं का भी परीक्षण किया गया। एयरपोर्ट प्रशासन ने इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और रिक्वायर्ड नेविगेशन परफॉर्मेंस का भी दोबारा सत्यापन किया ताकि उड़ान संचालन पूरी तरह सुरक्षित और सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। एयरपोर्ट के अधिकारियों का दावा है कि सभी ट्रायल सफल रहे। 15 जून से एयरपोर्ट पर नियमित कमर्शियल उड़ान सेवाएं शुरू की जाएंगी। आज तक ब्यूरो।
11: एक तरफ तो केजीएमयू में जो कैंसर पेशेंट को इंजेक्शन दिए जाते हैं वो एक इंजेक्शन उनको ना देकर कहीं ना कहीं उसका हेराफेरी की गई। साथ ही साथ कई मरीज ऐसे भी हैं जिनको इंजेक्शन लगाया नहीं गया जबकि उनके नाम पर इंजेक्शन रिलीज कर लिया गया। ये हालात हैं कैंसर पेशेंट्स के जो केजीएमयू में आते हैं जिसकी एक वृद्ध जांच चल रही है। इससे परे दूसरी जगह जो हार्ट के पेशेंट हैं उसमें स्टेंट डालने के लिए एक ही मरीज को 5-5 स्टेंट डाल दिए गए।
12: लोगों की जानकारी में आया है कि कुछ आयुष्मान के मरीजों में 5 स्टेंट का प्रश्न उठ रहा है। देखिए कुछ विशेष परिस्थितियों में 5 स्टेंट भी लगते हैं कुछ समय के भीतर, लेकिन उसकी जांच करना जरूरी है क्योंकि आयुष्मान में 3 स्टेंट से ज्यादा का पैकेज अलाउड नहीं है। तो अगर विशेष परिस्थितियों में कोई चीज करनी होती है तो उसकी एक प्रक्रिया है जो नहीं की गई है। तो ये तो क्लियर है कि 5 स्टेंट जो लगाए गए हैं उनमें वृहद जांच की जरूरत है। जैसे पहला बिंदु यह है कि 5 स्टेंट लगे कि नहीं। अगर 5 स्टेंट लगे हैं तो फिर उनके इंडिकेशंस पूछे जाएंगे, वो एक दूसरा विषय होगा। दूसरा जो जिसकी बात की शंका ज्यादा है कि 5 लगे ही नहीं होंगे, 2 लगे हैं और 5 को दिखा दिया गया है 5 लगे हुए हैं और जो 3 स्टेंट एक्स्ट्रा HRS से आए उसको लोगों ने गायब कर दिया। अगर ऐसा है जिसकी संभावना है तो ये देखना है कि केवल आयुष्मान के लोग मिले हुए थे या विभाग का जो है जो टेक्निकल और फार्मास्यूटिकल स्टाफ था वो मिला था।

0: ममता दीदी बड़ी मझधार में फंसी, घर यानी पार्टी में आग लगी है, बाहर टीएमसी पर सिर्फ अंडे बरस रहे। इस मुसीबत की घड़ी में एक मदद का हाथ उनकी ओर बढ़ा तो मुसीबत में मोहब्बत की दुकान में मर्जर तक बात पहुंच गई। ममता बनर्जी के पास पार्टी बचाने का रास्ता हर गुजरते घंटे के साथ बंद होता दिख रहा है। अब तो कल्याण बनर्जी तक ने अल्टीमेटम दे दिया, कहा अभिषेक नहीं चुनाव हराया, अभिषेक नहीं पार्टी का नाश किया, अब ममता या तो पार्टी चुन ले या भतीजा। हालत ये कि ममता के 28 में से 19 लोकसभा सांसद बगावत की चिट्ठी साइन कर चुके, 13 में से 3 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके, पार्टी के 80 में से 64 विधायक स्पीकर को अलग चिट्ठी दे चुके, 7 में से 4 मेयर चले गए, 130 से अधिक पार्षद विदा हो गए, कई नगर पालिकाएं भंग हो गयी। ममता अपनी पार्टी की सभी समितियां पहले ही भंग कर चुकी है। ममता के पास पार्टी के नाम पर फिलहाल पुख्ता तौर पर वो खुद बची है और बचे हैं अभिषेक। ऐसे में ममता के दिल्ली दौरे पर जो सोनिया गांधी के साथ केमिस्ट्री दिखी और जिस तरह ममता अभिषेक ने सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकातें की और उसके ठीक एक दिन बाद जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने देश भर से अपने पार्टी महासचिवों, पार्टी प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की आपातकालीन बैठक बुलाई है, उससे कांग्रेस टीएमसी में मर्जर वाली खबर और उड़ चली। दरअसल टीएमसी और कांग्रेस के मर्जर की जो हवा चली उसका पश्चिमी विक्षोभ महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जिसमें कभी पवार ने कांग्रेस के साथ दलों के एकजुट होने की बात कही थी, वही सपना बार बार आकार लेता दिखता है। और जब संजय राउत ने एनसीपी को कांग्रेस में मर्ज कर जाने की बात कही तो सुप्रिया सुले ने इनकार नहीं किया। सुप्रिया कांग्रेस की ओर से विलय प्रस्ताव वाले सवाल पर भी मना नहीं करती।
1: अगर बारिश आई तो मैं छाता लूंगी कि रेनकोट, अभी मैंने तय नहीं किया।
0: सुप्रिया सुले को बारिश का इंतजार है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ दो टुकड़े हो चुकी पार्टियों में एकजुटता की चर्चा महाराष्ट्र में सबसे जोर पर, क्योंकि वहां दो दलों के चार टुकड़े। पिछले दिनों उद्धव के नेता अंबादास दानवे और शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार दिल खोल कर मिले तो ऐसी हवा फिर चली कि कहीं शिवसेना में नई खिचड़ी तो नहीं पक रही। महाराष्ट्र की सियासत में मर्जर की कहानी कैसा मोड़ लेगी ये कहना भी जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस टीएमसी के एक साथ मिलकर गठबंधन में काम करने का फैसला तकरीबन तय है, मर्जर की पुष्टि कोई नहीं कर रहा। हालांकि कांग्रेस ने अब आधिकारिक रूप से मना कर दिया है कि टीएमसी कांग्रेस में कोई मर्ज नहीं होने वाला। कांग्रेस भले मना करे, लेकिन दिल्ली से बंगाल तक के हालात बताते हैं कि अब बंगाल में कांग्रेस और ममता बिना एक दूसरे का हाथ थामे चल नहीं सकते। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
2: अब एक लिस्ट आई है, 19 लोगों का नाम है और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नाम भी उसमें शामिल है।
3: आरोप तो नहीं लगाए? आरोप कैसे, कौन से आरोप?
2: रिबल
3: आप, ये तो रिबल कहां से हो गए, भगोड़े हैं। रिबल कहां से हो गए, ये तो भगोड़े हैं। रिबल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए, ये तो हमारे सिंबल पे लड़े थे, तो रिबल कहां से हो गए, ये तो भगोड़े हैं। हमारे सिंबल पे लड़े तो ये आरोप ना आरोप लगाए हैं, जो सच्चाई है उसको रखा है। आरोप क्या होते हैं? आरोप तो होते हैं जिनको सिद्ध करना होता है। इसमें क्या सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना? जिस सिंबल पर तुम लड़े, तुम रहे, चुनाव के 30 दिन नहीं हुए और तुम्हें भ्रष्टाचार देखने लग गया। अगर भ्रष्टाचार तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रहा था तो तुमने रोका, और भ्रष्टाचार वाली बात थी तो काकुली दस्तीदार जो बात कर रही है भ्रष्टाचार की, वो तो 5 लाख रुपए खुद कैमरा में लेती पकड़ी गई। और भ्रष्टाचार छोड़कर, तथाकथित भ्रष्टाचार को छोड़कर, तुम साफ बीजेपी में जा रहे हो, क्लीन बीजेपी, जिस बीजेपी में सुवेंदु अधिकारी तुम्हारा चीफ बना हुआ है, वो धार का सिंदूर जो अमित शाह ने बीजेपी के मांग में भरा है, वो भी तो 5 लाख रुपए लेता पकड़ा गया। आपके आज तक में दिखाया था भाई, सुबह से शाम तक दिखा रहे थे, सीबीआई लगा दी।

0: खेल शुरू हो गया था सर।
1: खेला ऐसा चला कि दिल्ली आकर पार्टी बचाने के लिए ममता बनर्जी को गले सोनिया गांधी के लगना पड़ा। खेला ऐसा चला कि जो कहते थे
2: अमर हृदय माझे काबा नयने मदीना,
1: लेकिन अब हृदय माझे कोई और, नैने कोई और हो चला है। ऐसा खेला जहां ममता के साथ साय की तरह चलने की बात करने वाली सायोनी घोष का रंग रूप भी बदल गया, मानो इशारा हो कि खेला लंबा चलेगा।
0: खेला हो रहा, शुरू हुआ ना खेल, तो बहुत सा खेल है सर, चूकित कितनी खेल है।
3: कुछ करने वालों से कह दो चिन्ह,
1: वाजपेयी जी होते तो कल्याण बनर्जी को कहते कित कित का खेल, दूसरों के घर बुरा होता है, औरों के घर टूट का जो सपना वो
4: नहीं, घर में सदा खराब हो।
1: तभी तो जो कल्याण बनर्जी कित कित करके मजाक बीजेपी के 400 पार के नारे का लगाते थे, अब उनकी पार्टी में ही कित कित कर विधायक सांसद बढ़ते चले जा रहे हैं।
0: कित कित कित कित कित कित कित कित कित कित कित कित कित कित कित कित
1: कितना हुआ का आंकड़ा तो ममता बनर्जी भी नहीं लगा पा रही। जहां आज साथ है उनको कहने वाले, कल तक बागी बन जा रहे हैं।
0: आइदर इन मन की बात और इन दिल की बात, मोदी जी का गारंटी है।
5: ममता के जो करीब हैं, वही एक एक करके बगावत कर रहे हैं। आज उनके सबसे करीबी सांसद कल्याण बनर्जी की भी नाराजगी सामने आ गई। जब कल्याण बनर्जी कहने लगे कि ममता बनर्जी को मुझ में या अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी में एक को चुनना होगा, कल्याण बनर्जी का ये अल्टीमेटम क्या उनके भी बाकी होने का सबूत है? क्योंकि कल्याण चाहते तो नाराजगी की बात सीधे ममता से करते, लेकिन वो सीधे मीडिया के सामने आए।
1: देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने वाले दिन नरेंद्र मोदी को जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने झालमुरी परोसी। मोदी की झालमुरी से सियासी झाल ममता बनर्जी को चुनाव नतीजों के एक महीने बाद तक लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी को समझ नहीं आ रहा कि उनकी पार्टी में कितने कटप्पा हैं, जिसे अपना समझते हैं वही बागी निकलता है। ममता बनर्जी ने काकोली घोष को चीफ व्हिप पद से हटाकर कल्याण बनर्जी को कुर्सी दी। आज हालत ये, काकोली घोष की अगुवाई में 19 सांसद बगावत करके एनडीए को समर्थन की चिट्ठी दे चुके हैं और कल्याण बनर्जी कहते हैं ममता दीदी ये न चोलबे, भतीजे या कल्याण में एक को चुनना होगा।
0: वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट इफ फॉर हिज For Abhishek Banerjee, the party has been destroyed today. We have lost it.
6: Everybody is saying this.
0: Everybody is saying, I have not said. I am in the back days of the party. I was with the Mamata Di. I said, again I am saying, I am with Mamata Di. But Mamata Di has to choose whether Abhishek Banerjee, she will keep or she will keep me.
6: That's an ultimatum.
0: Yes. This is, I leave it to her. Her wisdom. I leave it to her wisdom.
6: So this is a dharam sankat for Didi.
0: She has I leave it to her wisdom. Whatever she will do, that's all right. If she says no, without Abhishek Banerjee, party cannot run, I have to take my other decision.
6: Because she has chosen Abhishek Banerjee right now. He is still the national.
0: That's all right. That today I am saying this.
1: दूसरा फैसला लेने की बात का क्या मतलब? क्या कल्याण बनर्जी भी ममता बनर्जी का साथ छोड़कर 9-2-11 होना चाहते हैं? क्योंकि कहां तो अभिषेक बनर्जी पर अंडा और पत्थर फेंके जाने के मामले में 31 मई को सड़क पर प्रदर्शन करने खुद कल्याण बनर्जी उतरे और खून का एक एक कतरा पार्टी के लिए बहाने की बात करने लगे। कहते थे कि मेरे पास माँ माटी मानुष है, और अब कहने लगे हैं ऐसे चल नहीं पाएगा।
7: तेरा साथ पैसा है, तेरा साथ गहना है, तेरा साथ बंगलो है, तेरा साथ नरेंद्र मोदी है, तेरा साथ अमित शाह है, तेरा साथ चीफ मिनिस्टर है, तेरा साथ ईडी है, तेरा साथ सीबीआई है, तेरा साथ पूरा भारतवर्ष का पावर है, और मेरा साथ माँ माटी मानुष है, माँ मेरा पार्टी है, मेरा साथ पार्टी है, मेरा साथ वर्कर है, मेरा साथ पश्चिम बंगला का पब्लिक है। आप गई है अच्छा से।
0: I leave it to her wisdom. Whatever she will do, that's all right. If she says no, without Abhishek Banerjee, party cannot run, I have to take my other decision.
6: Because she has chosen Abhishek Banerjee right now. He is still the national.
0: That's all right. That

0: टुडे आई एम सेइंग दिस।
1: इस वक्त कल्याण बनर्जी ममता के सबसे करीबी रहे, लेकिन फिर काहे या तो अभिषेक या मैं की बात ममता के सामने करने लगे। इसकी वजह अभिषेक बनर्जी का घमंड और दूसरों से बदसलूकी वाला व्यवहार बताया जाता है। अभिषेक बनर्जी पर विधानसभा में टीएमसी का नेता विपक्ष चुनने के लिए भेजी गई चिट्ठी में फर्जी दस्तखत का केस चल रहा है, जिसमें सीआईडी के सामने अभिषेक को पेश होने का आदेश हाईकोर्ट को देना पड़ा। इसी मामले में कल्याण बनर्जी हत्थे से उखड़ गए हैं, क्योंकि बिना उन्हें बताए वकील बदल दिया गया और आरोप अपमान लगाने का भी है।
0: He's such an arrogant person, and all the time this is insulting. This is not possible for me to appear in this matter. I said I will not appear.
2: So this is also mistrust. You are not just an advocate. You are also a senior member within the party.
0: This is humiliating. Does he not trust you? No. He never trusts me.
1: भरोसे के ही संकट को संभालने के लिए ममता बनर्जी दिल्ली तक दौड़ी, लेकिन लगता है कि कित कित कित करके कल्याण बनर्जी अब कित कित कित करके कटप्पा बनने जा रहे हैं।
3: अब तक टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष ने दावा किया था कि 20 लोकसभा सांसद अलग गुट बना चुके हैं, जिसमें आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम रहा। लेकिन अब वो कहते हैं कि ममता का मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ूंगा। हालांकि जानकार कहते हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या।
4: लम्हे लम्हे की सियासत पर नजर रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। इतने नादा भी नहीं हम कि भटक कर रह जाएं, कोई मंजिल ना सही राह गुजर रखते हैं। मार ही डाले जो बेमौत, ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। इस कदर हमसे तगाफुल भी ना बरतो साहेब, डोंट पुश मी अगेंस्ट द वॉल। इस कदर हमसे तगाफुल भी ना बरतो साहेब, हम भी कुछ अपनी दुआओं में असर रखते हैं।
1: लम्हे लम्हे की सियासत पर नजर रखने वाले शत्रुघ्न सिन्हा की राजनीति पर ही इस वक्त सबकी नजर लगी है। क्या शत्रुघ्न सिन्हा भी ममता बनर्जी से बगावत करेंगे? बंगाल के आसनसोल से टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी क्या बागियों की राह पर चलेंगे?
5: अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। लेकिन जहां तथा कथित बागियों के बीच हमारा नाम गया है, वो तमाम अपने ही लोग हैं, अपने ही दोस्त लोग हैं, अपने विचार से वो लोग गए वहां पे, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मेरा नाम उसमें शामिल नहीं है, मैंने कोई दस्तखत नहीं किया है, कोई सिग्नेचर नहीं है, मैंने ना हामी भरी है और ना ही, टू बी वेरी फेयर उनके लिए मैं सच कहूंगा, उनमें से किसी ने मुझे कॉन्टेक्ट भी नहीं किया है। हो सकता है कुछ लोग टेकन फॉर ग्रांटेड समझ के आगे बढ़ गए हों, लेकिन किसी ने हमें कॉन्टेक्ट नहीं किया।
1: पहले खबर आई कि शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी उस लिस्ट में है, जिसे काकोली घोष ने कुल 19 सांसदों के दस्तखत के साथ लोकसभा स्पीकर को सौंपा है, जिस चिट्ठी में लिखा है कि वो एनडीए को समर्थन देते हैं। लेकिन अब शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि मुश्किल समय में ममता जी मेरे साथ खड़ी थी और आज उनके मुश्किल दौर में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता।
5: मैं इस मुसीबत की घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने, जो हमारी नेत्री हैं या नेता हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया था, आज उनकी इस मुसीबत की घड़ी में मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैंने 3 लाइन व्हिप अपनी तरफ से इशू कर दिया है और वो ये है कि मैं ममता जी के साथ हूं, मैं ममता जी के साथ था और मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है रास्ता बदलने की या किसी और दिशा में जाने की।
1: तो क्या शत्रुघ्न सिन्हा को बागी कहने वालों को वो खुद खामोश करते हैं? क्या शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी की तरफ जाने या ममता से बगावत का रास्ता बंद कर देते हैं? जानकार कहते हैं फिलहाल नहीं, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा की सोशल मीडिया पोस्ट में इसका जवाब छिपा है, जहां पर वो पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि मैं हमारे मित्र और समाज एवं राष्ट्र के मार्गदर्शक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 12वें कार्यकाल पर बधाई देता हूं। शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा कि संभवतः यह अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है, उनके दीर्घ स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना करता हूं। जय हिंद।
5: मैं दिल से तो व्यक्तिगत तौर पे उनका बहुत आभारी भी हूँ, उनके लिए बहुत प्रेम भी है, बहुत आदर भी है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं कोई निजी किसी पे हमला नहीं करता हूँ, किसी का नाम लेके कुछ नहीं बोलता हूँ। तो आज की भी इस घड़ी में जब अंजना ओम कश्यप हमसे पूछ रही है, तो मैं अपने मित्रों का जो भारतीय जनता पार्टी में है या जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया आने को कहा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि अंतोगत्वा है तो हमारे ही लोग वो। हमारा अपना मानना है कि किसी भी पार्टी में हो, आपका विरोध हो लेकिन मतभेद ना हो, मतभेद हो तो मन भेद ना हो, ये मैं हमेशा मानता हूँ।
1: एक तरफ ममता को अपने मुश्किल वक्त का साथी बताते और दूसरी तरफ पीएम मोदी को मित्र और समाज राष्ट्र का मार्गदर्शक बताने वाले शत्रुघ्न सिन्हा। राजनीति के जानकार कहते हैं कि ऐसे लक्षण ज्यादातर पलटने से पहले वाले नेताओं में देखे जाते रहे हैं।
3: टीएमसी में बागी सांसदों का जब नाम आता है तो दो नाम ऐसे हैं जिनको सुनकर बहुत से लोग चौंक गए। एक नाम यूसुफ पठान का, दूसरा नाम सायोनी घोष का। दोनों ने अब तक अपनी बगावत पर खुलकर कुछ नहीं बोला है, पर सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो वजह क्या है कि महीने भर पहले दीदी के नाम का जप करने वाले दीदी के खिलाफ बागी बन गए।

0: ममता बनर्जी के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलने वाली। जादवपुर से पहली बार सांसद बनी सयानी घोष, 5 साल में पलट जाएंगी, अंदाजा बहुत लोग नहीं लगा पाए। जो वादा वो याद कराती थी उसे याद करिए।
1: एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ, यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा?
0: सयोनी घोष से अब सब पूछना चाहते हैं, क्या हुआ तेरा वादा जो ममता बनर्जी से किया था, वो हमला जो बीजेपी पर करती रही।
2: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दीदी ओ दीदी कहकर ममता जी का संबोधन किया था, बंगाल की माँ बहनों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, और इस बार आपने ए दीदी बोल के ममता जी को पुकारा है, इसका भी करारा जवाब आपको फौत में को जरूर मिलेगा। आप शायद भूल जाते हैं कि ये जो दीदी शब्द है ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक भावना है, ये एक इमोशन है। और ममता बनर्जी आप जैसे मैसिक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो बंगाल के लोगों के घर की बेटी है, और बंगाल में अक्सर बेटियों को माँ कहकर भी बुलाया जाता है।
0: पता नहीं पुराना कितना बयान खुद सायोनी अपना सुन पाती होंगी। जिन दीदी को भावना और माँ तक बोला उन्हीं दीदी के खिलाफ बगावत सायोनी कर चुकी, और अब एयरपोर्ट पर सायोनी घोष बिना कुछ बोले बिना कुछ जवाब दिए चली जाती। सायोनी घोष से लेकर यूसुफ पठान तक की अपनी ही पार्टी को दी गई गुगली पर शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं वो चौंक गए।
3: बड़े हैरान करने वाले नाम है यूसुफ पठान, सायोनी घोष, आप भी उतने ही हैरान हुए?
4: हुए, जरूर हुए। लेकिन जब मैं पहले यूसुफ पठान तो वाकई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही बढ़िया काबिल आदमी है, बहुत शरीफ डिसेंट है, जेंटलमैन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है। तो इससे ज्यादा मैं इस वक्त क्या कहूं कि हो सकता है कुछ लोग जो हैं किसी डर की वजह से या डराने की वजह से या किसी भय के लोभ में, भय में या प्रलोभन में गए हों या अपनी मजबूरी की वजह से गए हों, कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि वहां पे सारे लोग अभी एमएलए भी हमारे नहीं हैं, हम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या ऐसा होगा कि हमें मुख्यमंत्री जो हैं, जो भी नए मुख्यमंत्री आए हैं वो हमें मदद देंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे, बहुत सारी बातें हुई होंगी।
5: पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा रहा, इसीलिए बंगाल पुलिस 4 मई के बाद अपराधियों और आरोपियों की हवाई चप्पल और हाफ पैंट में परेड निकालते हुए देखी गई है। फालता में टीएमसी नेता जहांगीर खान की भी ऐसी ही परेड पुलिस ने निकाली है। कभी अभिषेक बैनर्जी के दाएं हाथ बताए जाने वाले जहांगीर खान की हाफ पैंट में परेड अपने आप में एक संदेश देती है।
0: फालता की जिन गलियों में कभी जहांगीर खान का खौफ पसरा रहता था, उन्हीं गलियों में शुभेंदु राज के भीतर उसे हाफ पैंट पहनाकर घुमाया गया है। खुद को पुष्पा कहने वाले जहांगीर खान की ये केवल परेड नहीं निकाली जा रही, बल्कि फालता के लोगों के दिलों से वो बचा खुचा खौफ भी बाहर किया जा रहा है, जिसका पूरा हिसाब करने का वायदा शुभेंदु अधिकारी ने किया था।
6: आपने निश्चिंत राखुन, আমি সব পেয়ে গেছি, সব পেয়ে গেছি, সবকা সাথ সবকা বিকাশ ভি হোগা, সবকা হিসাব ভি হোগা।
0: ফালতা কি জো সড়কে জাহাঙ্গীর কি মৌজুদগি সে কহতে হ্যায় সুনসান হো জায়া করতি থি। फालता की उन्हीं सड़कों पर अभिषेक बनर्जी के पुष्पा की यह चुप्पी उस खौफ का अंत है जिसने लोगों को वर्षों तक वोट डालने से भी रोका।
7: क्या लगता है कि इतने दिनों से उनका डर यहाँ पे था?
8: हाँ, उसके लिए डर के लिए सब बाहर निकल नहीं सकता है कि ऐसा किया था। और अभी रनिंग सीएम जो है वो तो आके हम लोग का रोड शो किया है, जो सब अपना से वोट दो, कोई डर नहीं करेगा। भय आउट भर सही।
0: इसी भय को निकालने के लिए फालता की सड़क पर जहांगीर खान की परेड निकाली जाती है। कुछ चुपचाप पुलिस वाले का हाथ पकड़कर गलियों में घूमता देखता। बड़ी बात यह कि अदालत में पेशी के दौरान जहांगीर खान पैंट पहने दिखा था, लेकिन जब फालता में उसकी परेड निकलती है तो हाफ पैंट में आ जाता है। जहांगीर खान से पहले टीएमसी के कई नेताओं और अपराधियों को बंगाल पुलिस इसी तरह घुमा चुकी। लेकिन जहांगीर खान का ये रूप अपने आप में अहम है क्योंकि चुनाव के दौरान वो खुलेआम पुलिस को धमका रहा था। जहांगीर खान पलता ही नहीं, डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर टीएमसी का बड़ा नेता रहा जिसे पलता से जीत और ममता सरकार बनने का इतना भरोसा था कि वो खुलेआम इलेक्ट्रिक शमशान विरोधियों के अंतिम संस्कार के लिए मांगने लगा।
9: এখানে জাহাঙ্গীর আমাকে আস্তে আস্তে বলেছে, দাদা সব দিয়েছো, একটা বৈদ্যুতিক চুল্লি করে দিতে হবে। আমি ভাবলাম 4 তারিখ ফল বেরোনোর পর কিছু লোক তো হার্ট অ্যাটাক করবে, তাদের সৎকারটাও ভালো করে করা আমাদের উচিত।
0: লেকিন 4 মই কো বাজি পলটতি হ্যায় তো জাহাঙ্গীর খান কে সুর নরম হতে গয়ে আর উসনে পালতা বিধানসভা সিট সে খুদ কো অলগ করনে মে পহলে আপনি ভালাই সমঝি।
6: আর কোথায় গেলেন তথাকথিত পুষ্পা নাকি নাম, ও ডাকাতটা কোথায়, ও ডাকাতটা কোথায় দেখা যাচ্ছে।
0: ফলতা মে বিজেপি কি জিত কে বাদ জাহাঙ্গীর খান আন্ডারগ্রাউন্ড হো গিয়া আর ফির অচানক উসকি নেপাল বর্ডার সে গিরফতারি হুই। পতা চলা ও ভাগনে কি ফিরাক মে থা, লেকিন খুদ কো পুষ্পা কহনে ওয়ালে জাহাঙ্গীর খান কি ইস নই তসবীর নে উসকে রহে সহে খৌফ কো খতম কর দিয়া হ্যায়। পশ্চিম বঙ্গাল মে তৃণমূল কংগ্রেস কো জনতা নে পহলে চুনাও মে হারায়া আর আব উসকে নেতা নিশানে পর। পশ্চিম বঙ্গাল কে পূর্বী মিদনাপুর মে টিএমসি কে প্রধান কো উঠক বৈঠক করা কে ভ্রষ্টাচার কে লিয়ে মাফি মঙ্গওয়াই গয়ি। দুর্গাপুর মে গ্রেফতার টিএমসি নেতা সুকুমার দত্তা পর অন্ডে ফেঁকে যাতে। टीएमसी के इस नेता पर करोड़ों की उगाही और आतंक फैलाने का आरोप। उत्तर 24 परगना की यह तस्वीर देखी जिसमें टीएमसी नेता नौशाद आलम पर भी अंडे फेंके गए। जनता का यह गुस्सा उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसमें दावा है डर और भ्रष्टाचार चरम पर रहा, जिसके सबूत चारों तरफ बिखरे हैं। उत्तर 24 परगना में जहां टीएमसी नेता पर अंडे फेंके जाते हैं उससे कुछ ही दूरी पर एक स्कूल से 1,77,00,000 रुपए कैश बरामद होता है। बीजेपी का कहना है कि स्कूल से इतना बड़ा कैश मिलना टीएमसी राज में हो रहे भ्रष्टाचार की मिसाल है। बंगाल में 4 मई के बाद से लगातार टीएमसी के नेता निशाने पर हैं। एक तरफ जनता अपना हिसाब बराबर कर रही है, वहीं पुलिस जहांगीर खान जैसे नेताओं को इस तरह घुमाकर उनके खौफ को खत्म करने में जुटी है।
5: टीएमसी इतनी जल्दी बिखर जाएगी इस बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। इसी तरह विपक्ष ने साल 2024 में ये नहीं सोचा था कि मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के करीब पहुंच जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत और तमिलनाडु में डीएमके से कांग्रेस की कथित धोखेबाजी मानसून सत्र में विपक्ष को बहुत भारी पड़ सकती है।
6: 24 के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए। विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो चिल्लाते रहो।
0: 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को खबरदार करते हुए ये तब कहा जब कांग्रेस और उसके समर्थक नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सूर्यास्त के दावे तक करने लगे थे।
10: आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है और आप देखना, मेरे अंदाजे से मेरा असेसमेंट है 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।
0: तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को याद दिलाया था कि विपक्ष को जनता ने जिताया नहीं बल्कि हराया है।
6: आप सबको शोले फिल्म की मौसी जी याद होगी,
11: मणिपुर चलो तीसरी बार तो हारे हैं पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं पर मौसी मॉरल विक्ट्री तो है ना।
0: 2024 के चुनाव परिणामों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा क्या वो 2026 में सच हो रहा? दो साल बाद न सिर्फ मोदी एक विजेता के रूप में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं वहीं देश को कांग्रेस के कुचक्र से निकालने का दावा भी करते हैं।
11: एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है।
0: 2024 के नतीजों के बाद इतनी जल्दी विपक्ष की ताकत बिखर जाएगी इसकी कल्पना ममता बनर्जी जैसे कद्दावर नेता ने भी नहीं की होगी जिनकी पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखरी पड़ी जिसका असर मानसून सत्र में ताकतवर मोदी सरकार के रूप में दिख सकता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 353 सीटें जीती थी जो मोदी राज में एनडीए का 3 चुनावों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 2024 में एनडीए 292 सीटों पर आ जाती है लेकिन टीएमसी में बगावत करने वाले 19 सांसदों के समर्थन के बाद एनडीए का आंकड़ा लोकसभा में 311 पहुंच जाता है। अप्रैल में जब संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय 528 सांसद लोकसभा में मौजूद थे और 2/3 बहुमत का आंकड़ा 352 था, सरकार को 298 वोट मिले, विधेयक के खिलाफ 230 वोट डाले गए यानी 54 वोटों से वो विधेयक गिर गया। अब सरकार ने संतर को काफी हद तक पाट लिया है। अगर मुद्दों के आधार पर डीएमके के 22 सांसदों का भी समर्थन मिलता है तो एनडीए की ताकत 333 तक हो सकती है। सरकार की नजरें शिवसेना यूबीटी के 9 सांसदों पर भी है, अगर इनमें टूट होती है तो 6 और सांसदों का समर्थन हासिल हो सकता है। इस तरह एनडीए की ताकत बढ़कर 339 तक पहुंच सकती है। बड़ी बात यह कि अप्रैल में संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय एनडीए को 298 सांसदों का समर्थन मिला था, अगर वो 5 वोट भी जोड़े तो एनडीए की संख्या 344 पहुंच जाती है। तो सरकार को उम्मीद है कि अन्य छोटे दल और निर्दलियों के दम पर 2/3 का बहुमत छुआ जा सकता है। यानी 2 साल पहले 240 पर बीजेपी के अटकने को मोदी की हार समझने वाले विपक्ष को नरेंद्र मोदी खबरदार करते हुए जो कुछ कहते हैं वो बात सही निकलती है।
11: कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है, तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है।
0: मोदी के ये कहने के 2 साल बाद लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी विपक्ष मोदी सरकार को 2/3 बहुमत के करीब पहुंचने से रोकता नहीं नजर आ रहा। इसकी वजह टीएमसी के 13 सांसद हैं, जिनमें से सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिदबराई राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अगर ये बीजेपी में उपचुनाव के बाद राज्यसभा में आते हैं तो एनडीए का आंकड़ा 149 से 152 पहुंच सकता है। वहीं अगर टीएमसी के कुछ और सांसद टूटते हैं, डीएमके के 8 सांसद भी सशर्त समर्थन देते हैं
12: एनडीए राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत के आंकड़े 164 के लक्ष्य को आसानी से पा सकता है। मतलब संसद में संख्या बल के हिसाब से विपक्ष के लिए एनडीए को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मतलब मोदी के करिश्मे के खात्मे की भविष्यवाणी करने वालों को मुंह की खानी पड़ सकती है।
13: मुझे एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था, तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है।
5: तो 2 साल में बाजी पलटती दिख रही है। कांग्रेस के साथ जो विपक्षी सांसद सोचते थे कि मोदी सरकार कमजोर हो गई है, वही विपक्ष आज साल 2024 के बाद सबसे कमजोर हालत में दिख रहा है। साल 2024 के बाद अब तक देश के 11 राज्यों में चुनाव हुआ है। 2 साल पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन 11 राज्य में 497 विधानसभा सीटों पर आगे थी, जो अब बढ़कर 664 हो चुकी है, यानी 167 विधानसभा सीट के फायदे में बीजेपी है। इसी दौरान कांग्रेस की स्थिति इसके ठीक उलट रही, वो 353 सीटों से घटकर 171 सीटों पर आ गई, जिससे उसे 182 सीटों का नुकसान हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी को फिर से रोकने के लिए विपक्ष रणनीति बदलेगा? क्या कांग्रेस से टूटकर बने दल आज के हालात में वापस कांग्रेस में विलय करने की सोचेंगे ताकि उनकी सियासी जमीन बच सके?
12: ममता दीदी बड़ी मझधार में फंसी है। घर यानी पार्टी में आग लगी है, बाहर टीएमसी पर सिर्फ अंडे बरस रहे हैं। इस मुसीबत की घड़ी में एक मदद का हाथ उनकी ओर बढ़ा तो मुसीबत में मोहब्बत की दुकान में मर्जर तक बात पहुंच गई। हालत ये कि ममता के 28 में से 19 लोकसभा सांसद बगावत की चिट्ठी साइन कर चुके, 13 में से 3 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके, पार्टी के 80 में से 64 विधायक स्पीकर को अलग चिट्ठी दे चुके, 7 में से 4 मेयर चले गए, 130 से अधिक पार्षद विदा हो गए, कई नगर पालिकाएं भंग हो गई। ममता अपनी पार्टी की सभी समितियां पहले ही भंग कर चुकी है। ममता के पास पार्टी के नाम पर फिलहाल पुख्ता तौर पर वो खुद बची हैं और बचे हैं अभिषेक। ऐसे में ममता के दिल्ली दौरे पर जो सोनिया गांधी के साथ केमिस्ट्री दिखी और जिस तरह ममता अभिषेक ने सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकातें की और उसके ठीक एक दिन बाद जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने देश भर से अपने पार्टी महासचिवों, पार्टी प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की आपातकालीन बैठक बुलाई है, उससे कांग्रेस टीएमसी में मर्जर वाली खबर और उड़ चली।
14: कांग्रेस के साथ एक साथ काम करना जरूरी है।
15: टीएमसी क्योंकि कांग्रेस से ही निकली है तो वापस उसको आ जाना चाहिए, आपका क्या मानना है इसको?
16: टीएमसी पार्टी कांग्रेस को खत्म किया बंगाल में, मैं ये जानते हैं सर। बंगाल में अगर कांग्रेस पार्टी कमजोरी है सर टीएमसी के चलते, टीएमसी को तो कांग्रेस पार्टी मदद से ही मुख्यमंत्री बनाई थी। ये सोनिया गांधी मुख्यमंत्री बनाने के लिए सबसे ज्यादा मदद तो इन महिला को ममता बनर्जी को दी थी। चुनाव जीतने के बाद, सत्ता पे आने के बाद सारे भूल गए, तो कोई मैं क्या कर सकते।
12: दरअसल टीएमसी और कांग्रेस के मर्जर की जो हवा चली उसका पश्चिमी विक्षोभ महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जिसमें कभी पवार ने कांग्रेस के साथ दलों के एकजुट होने की बात कही थी, वही सपना बार बार आकार लेता दिखता है। और जब संजय राउत ने एनसीपी को कांग्रेस में मर्ज कर जाने की बात कही तो सुप्रिया सुले ने इनकार नहीं किया। सुप्रिया कांग्रेस की ओर से विलय प्रस्ताव वाले सवाल पर भी मना नहीं करती।
17: अगर बारिश आई तो मैं छाता लूंगी कि रेनकोट, अभी मैंने तय नहीं किया है।
12: सुप्रिया सुले को बारिश का इंतजार है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ दो टुकड़े हो चुकी पार्टियों में एकजुटता की चर्चा महाराष्ट्र में सबसे जोर पर, क्योंकि वहां।
5: और अब वो खबर जो भारत समेत पूरी दुनिया को चिंता में डालती है। डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले ईरान पर जोरदार हमले की चेतावनी दी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते इस तनाव का असर अब तेल और गैस की किल्लत से आगे बढ़कर भारतीयों की जान की फिक्र में बदल सकता है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर पिछले 3 दिन में हमला किया है, उसने भारत को चिंता से भर दिया। बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। कहा कि आज रात ईरान पर सबसे घातक हमला करेंगे। ट्रंप ने कहा कि उनकी प्राथमिकता खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की होगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी योजना ईरान के तेल और गैस भंडार पर पूरी तरह से कब्जा करने की है।
12: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिण में होते ये धमाके भारत के लिए चिंता की बात क्यों है? सवाल है कि ईरान की तरफ से गिराया गया अपाचे हेलीकॉप्टर क्यों हजारों भारतीय नाविकों की जान आफत में डाल सकता है?
18: But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers, and attacking them very hard.
19: You're resuming bombing?
18: Well, we are. Based on the helicopter, I guess we have the right to do that, you know. But...
12: अमेरिका और ईरान के बीच होती जंग की वजह से अब तक भारत को तेल और गैस की टेंशन रही, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में फंसे हजारों भारतीय नाविक जंग की आग से झुलस सकते हैं। हफ्ते के पहले 4 दिनों में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों पर अब तक अमेरिका की तरफ से हमला हो चुका है। पहला हमला 8 जून को मैरीवैक्स नाम के जहाज पर होता है, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटबेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिनमें 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला अब जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गिनी बिसाऊ के झंडे वाले इस जहाज पर ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। अमेरिका का कहना है कि जहाज के क्रू ने उसका निर्देश नहीं माना, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर 2 हेलफायर मिसाइल दागी। अमेरिकी नौसेना ने बुधवार को 24 भारतीय नागरिकों को ले जा रहे ऑयल टैंकर सेटवेलो पर भीषण हमला किया, इसमें 3 भारतीयों की जान गई है। मरने वालों में 23 साल के नाविक आदित्य शर्मा भी हैं। हमले के बाद भारत में अमेरिका की हरकतों को लेकर गुस्सा है।
20: कल शाम को मुझे कंपनी से फोन आया था, शिपिंग कंपनी से, कि ऐसे सिर्फ शिप हिट हुआ है यूएस नेवी की मिसाइल से, तो जो 3 क्रू मिसिंग है उनमें मेरा बेटा भी है। हमारा एक ही बेटा था, वो मेरे परिवार में मेरे मदर है, ब्रदर है, ब्रदर की फैमिली है
21: जी।
20: मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है वो एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी करे, ताकि किसी भी प्रेशर में, चाहे वो कमर्शियल प्रेशर हो या पॉलिटिकल प्रेशर हो, किसी भी शिप को उस तरफ जाने से रोका जाए, ताकि जो क्रू मेंबर होते हैं उनकी लाइफ पे कोई रिस्क ना आए।
12: अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान को कमजोर करने और अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसी के चलते वो जहाजों को निशाना बना रहा है, जिसकी चपेट में भारतीय नाविक भी आ रहे हैं। इसने अमेरिका को लेकर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अमेरिका बिना चेतावनी दिए हमले कर रहा है।
22: आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हर जहाज के पास ऑलमोस्ट डिटेल होती है। जहां तक नेवल शिप की बात करूं मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। उसके बाद भी उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चॉपर से या स्पीड बोट से या उनकी जो क्रूजिंग बोट है उस बोट से उस जहाज को बोर्ड कर सकते थे। अगर उस जहाज के ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो उसको डिटेन करना उनके पास एक पर्याय था, लेकिन जिस तरह से दोनों जहाज को हिट किया गया है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी।
12: 3 दिन में 3 भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हमला करने से भारत और अमेरिका के संबंधों और क्वाड सहयोग पर सवाल खड़े किए गए हैं। तीसरे जहाज पर हमले के बाद भारत ने अमेरिकी राजदूत को तलब करके अपना विरोध जताया है।
23: We have seen that there have
1: have been several incidents involving Indian seafarers in West Asia in the last few days. We attach high importance to the welfare and well-being of our seafarers community. We need not re-emphasize this point. Yesterday, we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which, unfortunately, we lost 3 Indian nationals. We had summoned the U.S. CDA here to register a strong protest.
0: अमेरिका का कहना है कि ये तीनों जहाज ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सवाल है कि AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से जब क्रू मेंबर्स की जानकारी पहले ही मिल जाती है, तब अमेरिका की तरफ से जलवीर जहाज पर हमले का क्या मतलब है?
2: सर, प्लीज शेयर द कोऑर्डिनेट्स।
0: डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंग जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, इसीलिए उनकी तरफ से एक बार फिर ईरान पर जोरदार हमले की चेतावनी दी गई है। खार्क द्वीप पर कब्जा करने का प्लान बनाया गया है, लेकिन ट्रंप का यह कदम न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद 18,000 भारतीय नाविकों की जान खतरे में डालेगा, बल्कि खाड़ी देशों में रहने वाले 80 लाख भारतीयों की जान पर भी संकट बनकर छा जाएगा।
5: अमेरिका और ईरान युद्ध में नए बदलाव भी दिख रहे हैं। बड़ी खबर है कि तनाव कम करने की कोशिशों के तहत यूएई और ईरान के बीच आमने सामने मुलाकात हुई। देखा गया है कि ईरान की तरफ लगातार यूएई को निशाना बनाया गया, लेकिन अब दोनों देशों के बीच तनाव कम करने को लेकर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। और अब जनता के हक की खबर पर खबरदार। अगर आपको 50 से 100 फीट नीचे खाई में उतरकर पानी रोज लाना पड़े, रोज पानी के लिए 2 घंटे इंतजार करना पड़े, तो क्या आप कर पाएंगे? आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के धार जिले की खबर देखेंगे तो समझेंगे जनता को पानी तक के लिए कैसे जान जोखिम में डालनी पड़ती है।
0: मध्य प्रदेश का जिला धार, गांव का नाम उटावा, कागज पर विकास की पाइपलाइन बहुत पहले यहां बिछ चुकी है, लेकिन जनता तक क्या उसकी पहुंच अब भी बहुत दूर है। इतनी दूर कि इन तक विकास की उसी पाइप से पानी पहुंचाने के लिए खबरदार करने आज तक पहुंचा है। आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह इस वक्त सीधे उस जगह आपको ले चल रहे हैं जहां जनता की याद नेताओं को केवल 5 साल में एक बार आती है।
21: 50 फीट नीचे वो महिलाएं आपको दिख जाएंगी पानी के कनस्तर ली हुई। वो जो आप देख रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कितना कठिन होता होगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके से पानी के छोटे छोटे पोखर यहाँ बने हुए हैं। आप देखिए, ये गहरी खाई है, कोई बरसाती नदी है, जिसकी गहराई में ये जो छोटे छोटे पोखर बने हुए हैं, इसी में से ये लोग पानी भरते हैं। और इसी पोखर में से एक ये पोखर है जहाँ पे फिलहाल ये गांव की महिलाएं मौजूद हैं। हम इनके रोजाना के संघर्ष को दिखाने के लिए खुद भी इस नीचे खाई में उतरेंगे, इस 50 फीट गहरी खाई में हम भी उतरेंगे अभी नीचे। और 50 फीट हम ऑलरेडी पहले ही नीचे उतर चुके हैं काफी ऊंचाई से, और हम यहां से नीचे उतरकर दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो हम आपको दिखा रहे हैं वो ये महिलाएं, वो इस गांव के लोग, उटावा गांव के लोग रोज इसी संघर्ष से गुजरते हैं।
0: रवीश पाल सिंह धार जिले के इस गांव में 100 फीट तक कुल नीचे आकर आपको दिखाते हैं किस तरह पानी को पाने के लिए रोज यहां महिलाएं जंग लड़ती हैं, क्योंकि यहां कोई नल नहीं लगा। यहां चट्टानों से रिस कर पानी पहुंचता है। वो पानी चट्टानों के बीच घंटे दो घंटे में इस गड्ढे में भर जाता है, तब जाकर आम आदमी अपने जीवन को चलाने के लिए पानी पाता है।
21: आपने कई बार सुना होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन उसे अगर तस्वीर के रूप में देखना हो तो आपको धार जिले के सरदारपुर आना पड़ेगा। और यहाँ उटावा गांव में ग्रामीण जो है वो बूंद बूंद से ही अपने घरों के लिए पानी भरते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटी सी पानी की एक जो लकीर आपको दिख रही होगी, बेहद महीन सी एक धार है। ये पानी की धार इतने धीरे धीरे धीरे जमीन के अंदर से निकलती है और वो जाकर के इस पोखर में भरती है। ये जो आप देख रहे हैं पोखर, इसमें ये पानी आकर के भरता है। बताते हैं कि तकरीबन 2 घंटे का समय लगता है इस पोखर को भरने में, और वही पानी जब धीरे धीरे आकर के इस पोखर में भर जाता है, तब जो महिलाएं हैं और इस इलाके के रहने वाले लोग हैं, वो इसी पानी को इस तरीके के बर्तनों में भरते हैं, और फिर उसके बाद वो इस पानी को पीने के लिए और बाकी कामों में इस्तेमाल लाते हैं।
0: दो घंटे बाद एक परिवार को अगर पानी भरने का मौका मिल पाता है तब तक दूसरे लोग यहाँ नीचे इंतजार करते दिखते हैं, क्योंकि इनके गांव में पाइपलाइन पहुंची पर गर्मी में उसी पाइप में पानी नहीं पहुंच पाता।
21: कितना समय लगता है इसमें और ये पानी कहाँ से आ रहा? फिर
3: एक दोपहर हो जाता है, पानी भरते भरते लाइन लगती है, एक दोपहर तक 12 बजे तक हम जाते हैं खाना खाते हैं पानी भर के, और माल ढोर के लिए जाता है। बारिश के टाइम में हवा चलती है, पेड़ गिर जाता है। एक मेरी जेठानी इधर गिर के पेड़ गिरा तो वो शांत हो गई, और भी सारा पेड़ है गिर जाता है तो हमारा क्या नुकसान होता है। हम इधर से भरते भरते दोपहर आ जाती है, कब हम खेती का काम करते हैं, कब माल पानी को पानी पिलाता है।
21: सुबह आप कितने बजे आ जाते हो?
3: यहाँ तो हम 6-7 बजे से आते हैं सुबह से।
21: हाँ, सुबह 6-7 बजे से?
3: 5 बजे से भी आता है।
21: अच्छा,
3: 5 बजे 4 बजे।
21: ये सब भरने में कितना समय लगता है? सब भर के वापस कब जाते हो गाँव?
3: 12-11 बज जाती है
21: दोपहर के।
3: हाँ, 6 घंटे
21: कम से कम
3: 4 मोहल्ले का पानी भरते है इधर। हाँ, तो भरते भरते में कम से कम 11 बज जाती है।
21: वो जो गांव में पाइप है
3: वो तो बंद है, 2 साल से बंद है, वो नहीं चल रहा। हमारे उधर तो पानी नहीं आता है, हम तो सिर पे उठा के ले जाते हैं, किलोमीटर दूर ले जाते हैं।
0: जिस जगह से ये पानी निकलता है उसे देखे मध्य प्रदेश के जल मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, विधायकों से लेकर सांसद तक, जितने भी नेता है वो सब देखे और बताएं क्या वो भी घंटों इंतजार करके ऐसा पानी खुद लेना चाहेंगे।
21: उटावा गांव के संघर्ष की कहानी बयां करती ये सबसे डरावनी तस्वीर है। मैं तकरीबन जमीन से, यानी वो पोखर जहां से ये महिलाएं पानी भरती है उसे तकरीबन 30 फीट ऊपर खड़ा हूं, और इससे 20 फीट और ऊपर इन महिलाओं को जाना है, और महिलाएं छोटे बच्चे इसी तरीके से रोजाना यहां से पानी भर के अपने गांव तक जाते हैं। जो छोटा सा पोखर है जहां से जमीन से पानी धीरे धीरे करके रिस करके 2 घंटे में उस पोखर को भरता है, और फिर उस पोखर से ये पूरा गांव पानी भर के एक साथ इसी तरीके से ये खाई पर चढ़ के अपने गांव पहुंचता है।
0: बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक यूं ही अब भी पानी ले जाते हैं। इन्हीं में 70 साल की बुजुर्ग महिला दिखती है, सोचिए क्या हालत होती होगी खाई से पानी इनको निकालने में। धार जिला मुख्यालय से केवल 60 किलोमीटर दूर के गांव में पानी का विकास इतना दूर हो जाता है अंदाजा नहीं था। रिस रिस कर पानी पाती जनता का गुनहगार आखिर कौन है?
4: डबल इंजन की सरकार में जनता को हर घर जल, हर घर नल के सपने दिखाए गए, बस जनता की प्यास बुझाने को पानी फरार है, योजना में भारी भ्रष्टाचार की बहार है।
7: नलकूप में अभी जलस्तर कम हो गया, हमने उसमें पंचायत के माध्यम से पाइप बढ़ाकर योजना को चालू किया है, परंतु पर्याप्त पानी वर्तमान में प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके अलावा इसी वर्ष माह अप्रैल में नवीन नलकूप का खनन पुनः किया गया, परंतु उसमें भी जल आवक क्षमता कम है।
0: सरकारी फाइलों में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी अगर चट्टानों से रिस कराते पानी को पीने के लिए जनता मजबूर होती है तो जरूरी है सरकार सोचे यहां कैसे दूसरे इंतजाम करके पानी तो पहुंचाया जा सके। रवीश पाल सिंह, धार, आज तक।
5: खबरदार में वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
23: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
2: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
1: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
3: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
2: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
3: ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
4: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स, ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लायन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
8: लायन डेजर्ट किंग डेट्स,
7: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
9: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
10: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
9: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
11: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
12: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
13: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
11: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
14: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
12: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
11: जहां खबर वहां खबरदार।
15: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: characters.
1: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
2: Lee looks for someone, finds the right someone. Curry knocks it down. Tatum lines up the three and nails it.
1: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
3: Because people who all watch games, they hear the voice.
1: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: Where the software engineer meets the cool UI/UX designer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
6: Such an arrogant person. One must understand that for Abhishek Banerjee, the party has been destroyed today. We have lost it.
7: Everybody is saying this.
6: Everybody is saying. I have not said. I am in the back days of the party. I was with the Mamata Di. I said again. I am saying. I am with Mamata Di. But Mamata Di has to choose whether Abhishek Banerjee she will keep or she will keep me.
7: That's an ultimatum.
6: Yes. This is. I leave it to her.
8: बस तारीख बदली है और तेवर बदल गया। इन्हीं कल्याण बैनर्जी ने 9 जून को तंज किया था कि टीएमसी से बगावत कर रहे लोग ममता बैनर्जी की साड़ी की तारीफ करते थे।
6: Whenever they made this, Didi was so beautiful. Didi, your saree is so nice.
8: लेकिन आज अभिषेक बैनर्जी को घमंडी बताकर कोर्ट में उनका केस लड़ने से इनकार कर ममता को खुद में और अभिषेक में किसी एक को चुन लेने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। ममता को कल्याण बैनर्जी की ये गुगली ऐसे वक्त पर आई है जब राजनीतिक गलियारों में इन अटकलों को हवा मिली कि सोनिया गांधी ने ममता बैनर्जी को ये ऑफर दिया कि वो तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय कर दें। 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया और ममता गले मिली थी। 9 जून को सोनिया से मिलने ममता 10 जनपद गई। 10 जून को 10 जनपद पर ही अभिषेक बैनर्जी से राहुल गांधी की मुलाकात हुई। वैसे तो आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने विलय की अटकलों को खारिज किया है, लेकिन ममता के करीबी नेता खुलकर कुछ नहीं कह रहे।
9: कांग्रेस के साथ एक साथ काम करना जरूरी है, इतना मैं बोल सकता हूँ। वो मर्ज होगा कि अलायंस होगा, ये बाद में देखा जाएगा।
10: हाउ कैन वी आंसर फॉर दिस रूमर्स ब्रदर? These are totally rumors. Yesterday, our communication secretary has already stated that these are baseless things. Of course, Mamata Banerjee ji and Abhishek Banerjee ji went and met Honorable Madam and Rahul Gandhi ji. Routine discussion. That is an extension of India Alliance discussion because everybody want to strengthen India Alliance. Everybody want to strengthen the fight against this anti-democratic government.
8: इस बीच तृणमूल के भगदड़ करने वाले नामों में राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबराइक भी शामिल हो गए। उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपा। सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव के बाद इस्तीफा देने वाले वो राज्यसभा के तीसरे तृणमूल सांसद हैं।
11: प्रकाश जी, कैसा काम आपको लग रहा है अभी जब से बीजेपी सरकार आई है, वो कैसा काम कर रही है बंगाल में?
12: अच्छा कर रहा
8: है। बागियों की लिस्ट में लोकसभा के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर सस्पेंस है। एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न ने कहा कि ममता मेरे मुश्किल समय में साथ रही है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, लेकिन उन्होंने खेल भावना के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के 12 साल पूरे होने की बधाई भी दी है। आज तक ब्यूरो।
13: प्रधानमंत्री जी के पास हिंदू के अलावा मुस्लिम के अलावा कोई एजेंडा नहीं रहता। कब आप मुझे बता दीजिए किस जगह हिंदू ग्रोथ रेट इस्तेमाल हुआ? ग्रोथ रेट तो देश का होता है, और प्रधानमंत्री जी 2014 से 2004 से और 2014 को उठाएं, विश्व ने जब महाआर्थिक मंदी 2008 में देखने का काम किया तो मनमोहन सिंह जी उस आर्थिक मंदी के भंवर से देश को निकाल कर ले गए। प्रधानमंत्री जी को $58 के ऊपर देश मिला था, प्रधानमंत्री जी देश को 100 रुपए डॉलर के ऊपर लेकर के चले गए। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के अंदर कितना विदेशी निवेश, मोटा मोटी आंकड़ा $28 बिलियन का निवेश जो था, 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश था वो देश से चला गया। और लगभग 2021 तक 2783 कंपनी अपना कारोबार बंद कर चुकी थी। ये तो आपकी ग्रोथ रेट है।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अमेरिका ईरान युद्ध के पीछे मानवाधिकार और परमाणु हथियार सिर्फ एक बहाना थे, असली मकसद कुछ और है। इसका जवाब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर खुलेआम धमकी दी है कि आज रात अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने वाला है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिख दिया है कि वेनेजुएला की तरह ही अमेरिका बहुत जल्द ईरान के लाइफलाइन कहे जाने वाले खार्क द्वीप और उसके तमाम तेल ठिकानों को तहस नहस कर उनके गैस और तेल व्यापार पर कब्जा कर लेगा। इस एक बयान ने युद्ध के पीछे ट्रंप के 38 साल पुराने उस मंसूबे को जग जाहिर कर दिया है जिसे कूटनीति में शिफ्टिंग गोल पोस्ट यानी बार बार बहाने बदलना कहते हैं। ट्रंप जिस खार्क द्वीप को मटियामेट करने का सपना देख रहे हैं, वहां से ईरान का 90% कच्चा तेल एक्सपोर्ट होता है। वो एक ऑयल डिपो की तरह है। लेकिन ईरान भी शांत नहीं है। दावा है कि ईरान ने जॉर्डन के एयरबेस पर मिसाइल दागकर अमेरिका के 3 सबसे आधुनिक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को खाक कर दिया है। आज आपको बताएंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के इसी तेल के पीछे क्यों पड़े हैं, खार्क द्वीप का पूरा गणित क्या है और इस भीषण बमबारी की ग्राउंड रियलिटी आज क्या है। और इसके बाद आपको दुनिया के सबसे बड़े खेल महाकुंभ यानी फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बताएंगे जिसका आगाज आज रात से होने जा रहा है। इस बार नॉकआउट का रोमांच डबल होगा, प्राइज मनी के रिकॉर्ड टूटेंगे, टिकटों की कीमत आसमान छू रही है। आपको बताएंगे कि कैसे इस बार का ये महामुकाबला इतिहास का सबसे बड़ा सबसे अनोखा वर्ल्ड कप क्यों बनने जा रहा है। और आखिर में आपको इटावा में प्रशासन का ऑपरेशन क्लीन दिखाएंगे जहां एक रात में सब कुछ बदल गया।

आपके लिए हार्ड टुनाइट, विल बी हिटिंग हार्ड टुनाइट। टेकिंग खारगा आइलैंड, खारगा आइलैंड हमने आपको दिखाया था ना, ये ईरान का ऑयल डिपो है, यहीं से लगभग 90% जो तेल है ईरान का वो निकलता है। उस खारगा आइलैंड को इन्होंने हिट किया है, कहा है कि उसको हम लेना चाहते हैं, वी विल बी टेकिंग खारगा आइलैंड, हम खारगा आइलैंड पर कब्जा करेंगे। हिंदी में जल्दी से आपको पढ़कर सुना देती हूं, लेकिन इसी के आगे एक और लाइन दिलचस्प है, वी विल अज्यूम टोटल कंट्रोल ऑफ देयर ऑयल एंड गैस मार्केट्स, उनके तेल और गैस के सारे मार्केट पर, कारोबार पर हम कब्जा करने वाले हैं। अमेरिका आज रात, डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं हिंदी में, अमेरिका आज रात ईरान पर जबरदस्त हमले करेगा, आने वाले समय में हम खार द्वीप और तेल से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने वेनेजुएला के मामले में किया है, जो अमेरिका और वेनेजुएला दोनों के लिए बहुत बढ़िया साबित हो रहा है। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है वो एक तरह से साफ दिखाता है कि उनकी इस वक्त नीयत क्या है। तो जो बड़ी बातें हैं वो हमने आपको समझा दी, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वो करने वाले क्या हैं। पहली बात यह है कि इस युद्ध में अमेरिका का पहला और आखिरी मकसद यही है, वो ईरान के तेल, वो ईरान के गैस भंडार को हथियाना चाहता है। कूटनीतिक दुनिया में एक शब्द का काफी इस्तेमाल होता है जिसे शिफ्टिंग गोल पोस्ट कहते हैं। इसका मतलब होता है अपने फैसलों के पीछे की वजह को बार बार बदलना, लोगों को गुमराह करना। जब अमेरिका और ईरान का ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था तब पूरी दुनिया में ये कहा गया कि अमेरिका की नजर ईरान के कच्चे तेल पर है और बाकी अमेरिका का ईरान से कोई विवाद है ही नहीं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इन दावों को खारिज किया। कभी उन्होंने कहा कि वो रिजीम चेंज चाहते हैं, कि कट्टर लोगों के हाथ में ईरान का शासन है, हम उसको बदलना चाहते हैं, वो ईरान के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, सबसे पहले यही दुनिया को बताया गया। कभी कहा कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना चाहते हैं, कभी कहा कि ईरान की मिसाइल क्षमता पूरी दुनिया के लिए खतरा है, कभी कहा ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन दुनिया की शांति को खत्म कर सकते हैं और इसलिए ईरान के खिलाफ युद्ध जरूरी है। लेकिन कहते हैं ना कि जो बात दिल और दिमाग में बैठी होती है वो जुबां पर आ जाती है, तो इस युद्ध के पूरे 3 महीने बाद राष्ट्रपति ट्रंप के दिल की बात उनकी जुबां पर आ चुकी है और उन्होंने कहा है कि वो ईरान का कच्चा तेल लेना चाहते हैं। और ये वही बात है जिसमें उन्होंने 30 मार्च को फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में शब्दशः ये कहा था कि अगर उन्हें विकल्प मिले तो वो ईरान का तेल लेना पसंद करेंगे। ये बयान बताता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये सब कुछ सिर्फ ईरान का कच्चा तेल हासिल करने के लिए किया है और यही बात तो ईरान भी कह रहा है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतल्ला खामेनेई ने अपनी मौत से सिर्फ 11 दिन पहले 17 फरवरी को एक कार्यक्रम में यह कहा था कि अमेरिका की नजर ईरान के कच्चे तेल पर है और अब यह बात पूरी तरह साबित हो रही है। पूरी दुनिया में जिन 5 देशों के पास कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है उनमें वेनेजुएला और सऊदी अरब के बाद ईरान तीसरे स्थान पर है। ईरान के पास 208 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है जबकि अमेरिका इसमें 6ठे स्थान पर है और उसके पास 81 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है। अब अमेरिका ने इसी साल जनवरी महीने में वेनेजुएला पर हमला कराया जिसके पास 303 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है। पूरी दुनिया को यही लगा कि वेनेजुएला में अमेरिका का जैकपॉट लग गया है, लेकिन हकीकत यह थी कि अगर ईरान का कच्चा तेल ना हो तो वेनेजुएला का भी कच्चा तेल किसी काम का नहीं है। वेनेजुएला का कच्चा तेल भारी है, गाढ़ा है, जिसके कारण उसे हर बार रिफाइन करना पड़ता है और रिफाइन करने के लिए ईरान के कम गाढ़े तेल की जरूरत होती है। जब वेनेजुएला में पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार थी तब वो हर दिन 4 लाख ईरानी कच्चे तेल को खरीदते थे और इसे वेनेजुएला के कच्चे तेल में मिलाकर उसे रिफाइन करते थे। अब जब अमेरिका की एंट्री वेनेजुएला में हुई तो उसे समझ आ गया कि वेनेजुएला के कच्चे तेल को निकालना और उसे रिफाइन करना आसान काम नहीं है और इसके लिए ईरान के कच्चे तेल की ज्यादा आवश्यकता है और हो सकता है कि इसी वजह से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ये युद्ध शुरू किया और ये सोचा हो कि जैसे निकोलस मादुरो के हटते ही वेनेजुएला अमेरिका के कब्जे में चला गया वैसे ही ईरान का कच्चा तेल भी उन्हें मिल जाएगा। और यही बात राष्ट्रपति ट्रंप आज भी कह रहे हैं। ईरान के कच्चे तेल की एक और खासियत यह है कि यह कम गाढ़ा होता है, इसमें ज्यादा शुद्धियां नहीं होती और इसी वजह से ईरान में कच्चे तेल को निकालने का खर्च सबसे कम है। इंडेक्स बॉक्स के मुताबिक अमेरिका में एक बैरल यानी 159 लीटर कच्चे तेल को निकालने का खर्च $50 के आसपास है। नॉर्वे में आप देख ही रहे हैं $60 है, चाइना

0: में $45, ब्राजील में $40, कनाडा में $30, वेनेजुएला में $30. तो $30 और अमेरिका का देखिए $50, और फिर आ जाइए रूस और ईरान, जहां पर सिर्फ $20 खर्च होता है प्रति बैरल, और इराक में उससे भी कम है $10, और सऊदी अरब में तो उससे भी कम $4 है। तो कुल मिलाकर ईरान में एक बैरल कच्चे तेल को निकालने का खर्च आपके सामने है स्क्रीन पर, बहुत कम पड़ता है। कच्चा तेल निकाला जा सकता है कम कीमत पर, और यह उसके लिए सबसे बड़ी कमाई का साधन है। कच्चे तेल को बेचना भी आसान होता है, और यही कारण है कि अमेरिका ईरान के कच्चे तेल के मोह को छोड़ नहीं पाता। वेनेजुएला का मिल गया, लेकिन अभी उससे मन नहीं भरा है, ईरान के तेल पर नजर है। इस बयान से दूसरी बात यह पता चलती है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने खार्ग द्वीप पर अमेरिकी कब्जे का सपना अभी छोड़ा नहीं है। पर्शियन गल्फ में खार्ग आइलैंड इस जगह पर मौजूद है, जहां से ईरान की तटीय सीमा लगभग 25 किलोमीटर दूर है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इसकी दूरी 483 किलोमीटर है। यह द्वीप ईरान से पूरी तरह कटा है, जिसकी वजह से इसे काफी संवेदनशील माना जाता है, और इस द्वीप पर अमेरिका द्वारा कब्जा करने का सीधा मतलब है ईरान की आर्थिक नस दबा देना। यह द्वीप सिर्फ 22 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला है, 8 किलोमीटर लंबा है, 4.5 किलोमीटर चौड़ा। क्षेत्रफल के लिहाज से यह दुनिया के सबसे छोटे द्वीप में से एक है, लेकिन ईरान के लिए यह उसका सब कुछ है। ईरान अपना 90% कच्चा तेल इसी द्वीप से निर्यात करता है। इस द्वीप पर ईरान ने इस तरह के जमीन के अंदर बड़े बड़े टैंकर्स बनाए हैं, जहां कच्चे तेल को जमा करके रखा जाता है। ईरान खुद कहता है कि खार्ग आइलैंड पर एक बार में 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल स्टोर करके रखा जा सकता है। अब अगर अमेरिका ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया तो ईरान आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा, वो इस द्वीप के बिना अपना कच्चा तेल बेच नहीं पाएगा। इसका कारण यह है कि ईरान के ज्यादातर समुद्री तट काफी उथले हैं, जहां तेल के बड़े टैंकर्स का पहुंचना मुश्किल होता है, और यही वजह है कि अगर ईरान किसी भी रूप में खार्ग आइलैंड पर अपना नियंत्रण खो देता है तो कच्चा तेल दुनिया में बेचना मुश्किल हो जाएगा, और एक ऑयल डिपो जो उसका सबसे बड़ा 90% तेल वाला ऑयल डिपो है, वो उसके हाथ से निकल जाएगा। हालांकि ये इतना भी आसान नहीं होगा, अगर आसान होता तो मार्च में ही राष्ट्रपति ट्रंप खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की बात कर रहे थे, कर लेते, लेकिन उनके समुद्री जहाज अब भी ओमान से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इसके अलावा ये भी सोचिए कि अगर ईरान ने अमेरिका से युद्ध लड़ने की तैयारी की है तो उसने खार्ग आइलैंड को बचाने की योजना जरूर बनाई होगी। आज की तारीख में इस द्वीप पर लगभग 10,000 लोगों की आबादी रहती है। माना जाता है कि इनमें से ज्यादातर लोग IRGC के जवान हैं। इसके अलावा IRGC ने यहां एक एयर स्ट्रिप भी बना रखी है, और ईरान खुलकर कहता है कि अगर उसके इस द्वीप पर हमला हुआ तो वो पर्शियन गल्फ के बाकी सभी द्वीप को निशाना बनाएगा, और ऐसी स्थिति में आंख के बदले आंख की तरह द्वीप के बदले द्वीप की जंग शुरू हो जाएगी। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो इसमें आपको पर्शियन गल्फ में तेल और गैस के कई भंडार नजर आएंगे, जो आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहे हैं। इनकी संख्या हजारों में है। ये सारे तेल और गैस के भंडार ईरान के निशाने पर आ जाएंगे, और ये लड़ाई इसके बाद काफी भयानक रूप ले लेगी। खार्ग आइलैंड को ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता है, लेकिन इस आइलैंड की किस्मत को बहुत सारे लोग चमत्कार से भी जोड़कर देखते हैं। साल 1980 में जब इराक और ईरान का युद्ध शुरू हुआ था, तब सद्दाम हुसैन की वायुसेना ने इस खार्ग आइलैंड पर 50 से ज्यादा बॉम्ब गिराए थे, लेकिन उन हमलों में भी इस द्वीप से ईरान के कच्चे तेल का निर्यात बंद नहीं हुआ था। इसके अलावा साल 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जब तेहरान में अमरीकी दूतावास के 66 लोगों को बंधक बनाया गया, तब भी तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने योजना बनाई थी कि वो ईरान के इस खार्ग आइलैंड पर कब्जा करेंगे, बदले में अपने बंधकों को ईरान से छुड़ा लेंगे, लेकिन ये योजना भी लागू नहीं हो पाई। और अब राष्ट्रपति ट्रंप भी शायद इसी खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने के बारे में सोच रहे हैं, और ये राष्ट्रपति ट्रंप का 38 साल पुराना सपना भी है। साल 1988 में द गार्डियन को दिए एक इंटरव्यू में, तब उनकी उम्र बहुत कम थी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो अगर जिमी कार्टर की जगह होते तो खार्ग आइलैंड में अपनी सेना भेजकर उस पर कब्जा कर लेते। और आज आप देखिए कि जब राष्ट्रपति ट्रंप खुद इस युद्ध में फंसे हैं, तब वो ऐसा ही करने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि आपको तेहरान टाइम्स का ये फ्रंट पेज याद होगा, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की बात कही थी, ये तेहरान टाइम्स का ये मार्च के आसपास की बात है। पहले पेज पर यह लिखा गया था कि वेलकम टू हेल, यानी नरक में आपका स्वागत है। तो कुल मिलाकर ये साफ साफ कहा गया कि अगर आप खार्ग में आएंगे तो तेहरान टाइम्स के जरिए ये बताया गया कि आपका नर्क में स्वागत है। इस सब के बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर गहरी चिंता जताई है। उनका यह कहना है कि जिस तरह से अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, ये संकट और बढ़ेगा, इसके नतीजे इस इलाके से कहीं आगे तक जाएंगे। और ये हम सब जानते हैं, पूरे विश्व में तेल गैस का संकट, महंगाई, महामारी, ये सब संकेत साफ दिख रहे हैं। अब अमेरिका और ईरान रुकने को तैयार नहीं, ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर अपने हमलों को जारी रखा है। तो न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक कल आधी रात अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने दक्षिणी ईरान, तेहरान, हॉर्मूज के पास बंदर अब्बास पर कई हवाई हमले किए हैं। इनमें भी तेहरान के पास कई धमाके होने की आवाज सुनी गई। बंदर अब्बास पर भी अमेरिका की तरफ से खतरनाक बॉम्ब्स को दागा गया। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक उसने ईरान के सैन्य ठिकानों, निगरानी केंद्रों, रडार साइट्स को नष्ट किया और ये हमले आत्मरक्षा में किए गए। यानी अमेरिका का कहना है कि इन सैन्य ठिकानों से उनकी सेना ठिकानों को और ठिकानों को खतरा था, जिसके कारण सेल्फ डिफेंस में दूसरे दिन भी उसने ईरान पर ये एयर स्ट्राइक्स जारी रखे। देखिए, अब इन हमलों के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने यह कहा है कि अमेरिका ने ईरान को समझौता करने का पूरा मौका दिया था, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया और अब अमेरिका पूरी ताकत से उसे जवाब दे रहा है। सुनिए पीट हेक्सेथ को।
1: We will be hitting Iran hard and we will be because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do and they haven't been willing to do it. So as President Trump said, they've been tap, tap, tapping. You can see when someone's trying to tap, tap, tap on a deal. Instead, they're going to have tap, tap, tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America. And that's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
0: राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये धमकी दी है कि अगर ईरान के साथ शांति समझौता नहीं हुआ तो उस पर और भी बड़े हमले किए जाएंगे। सुनिए।
2: But we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along.
0: अल जजीरा का दावा है कि ईरान के दक्षिणी हिस्से में कई धमाकों की आवाज सुनी गई और यह हॉर्मूज के पास का वही इलाका है जहां एक दिन पहले भी अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने हमले करने का दावा किया था। इस सब के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को यह बताया है कि उन्होंने खुद ईरानी अधिकारियों से बात की थी और यह ईरानी अधिकारी चाहते थे कि अमेरिका अपने हमलों को रोक दे, इस तनाव को कम करने की कोशिश करे। लेकिन ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और ईरान के किसी भी अधिकारी ने अमेरिका से कोई बात ही नहीं की है। ईरान का एक और बड़ा दावा यह है कि उसने जॉर्डन में अमेरिका के 3 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को अपनी मिसाइल से नष्ट कर दिया है। ईरान के मुताबिक जिस वक्त ये तीनों लड़ाकू विमान जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर लैंड हुए थे तभी उसने अपनी सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स को दागा जिन्हें जॉर्डन का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया। और दावा है कि इस हमले में अमेरिका के 3 F-35 लड़ाकू विमान नष्ट हो गए और ये कोई मामूली लड़ाकू विमान नहीं है, ये 5वीं पीढ़ी का सबसे आधुनिक फाइटर जेट माना जाता है जिसकी कीमत $120 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 1,148 करोड़ रुपए है। और इसका मतलब यह हुआ कि अगर वाकई में ये 3 विमान नष्ट हुए हैं तो उससे अमेरिका को लगभग 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा। देखिए,

अब पिछले 48 घंटों में अमेरिका ने ईरान पर दो बार एयर स्ट्राइक्स की, लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान ने दोनों बार पलटवार के दौरान सऊदी अरब और यूएई को निशाना नहीं बनाया है। आज इसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि आज भी ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, बहरीन इन पर हमला किया। ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस बार ये तीनों देश ईरान के निशाने पर क्यों है, जबकि पिछली बार सबसे ज्यादा हमले यूएई पर हुए थे। ईरान का पहला निशाना बन रहा है बहरीन, जहां से ईरान की तटीय सीमा 768 किलोमीटर दूर है। ईरान लगभग 17 लाख की आबादी वाले बहरीन पर इसलिए हमले कर रहा है क्योंकि बहरीन में अमेरिका की फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर्स है। इस हेडक्वार्टर को मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में अमेरिका की आंख और कान माना जाता है, क्योंकि कोई भी लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल, समुद्री जहाज, बोट, पनडुब्बी कोई हमला करती है या उनकी तरफ से कोई गतिविधि भी की जाती है तो उन्हें गाइड इसी हेडक्वार्टर से किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कल आधी रात अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने ईरान पर हवाई हमले किए तो इन्हें गाइड बहरीन के इसी फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर से किया गया, जिसकी वजह से ईरान इसे अब निशाना बना रहा है, सीधा टारगेट कर रहा है, नष्ट करना चाहता है। बहरीन के बाद ईरान का दूसरा निशाना कुवैत, जहां से ईरान की तटीय सीमा है 686 किलोमीटर। मिडिल ईस्ट में कुवैत को अमेरिकी वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, क्योंकि यहां अमेरिका का अली अल सलेम एयरबेस है। जब अमेरिका ईरान पर हवाई हमले करने के लिए अपने लड़ाकू विमान को भेजता है तो वो इसी एयरबेस से उड़ान भरते हैं, जहां से ईरान के हवाई क्षेत्र में घुसे बिना हमला करना, हमला करके वापस लौटना आसान होता है। और यही कारण है कि अभी ईरान कुवैत को निशाना बना रहा है। ईरान कुवैत को निशाना बनाकर यही बताना चाहता है कि अगर उसकी धरती से अमेरिकी लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और ईरान का तीसरा बड़ा टारगेट जॉर्डन, जो इसराइल का पड़ोसी देश है, अब ईरान जॉर्डन पर इसे लगातार मिसाइलें दाग रहा है, क्योंकि जॉर्डन के अजराक एयरबेस पर न सिर्फ अमेरिकी सैनिक तैनात है बल्कि वहां अमेरिका का सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाट भी मौजूद है। इसके अलावा जॉर्डन की लोकेशन ऐसी है कि ईरान से इसराइल की तरफ जाने वाली हर मिसाइल को जॉर्डन के आसमान से गुजरकर जाना पड़ता है, और जॉर्डन अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से ईरान की मिसाइलों को बीच में ही मार गिराता है। यानी जॉर्डन इसराइल और अमेरिका का वो सुरक्षा कवच है जिसे तोड़े बिना ईरान इसराइल का ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और इसीलिए ईरान अपनी सबसे घातक, सबसे लंबी दूरी की मिसाइलों से जॉर्डन के इस कवच को भेदने में जुट गया है। देखिए,

0: यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यह युद्ध अब तेल से पानी पर केंद्रित हो सकता है। इसका कारण यह है कि एक दिन पहले अमेरिका ने सिरिक शहर के दो बड़े वाटर टैंक्स पर हमला किया। ईरान का दावा है कि इन वाटर टैंक से 20,000 की आबादी वाले कोहिस्ता शहर को पानी मिलता था और आसपास के 10 गांवों की जल आपूर्ति भी इन्हीं पर निर्भर थी। ईरान का दावा है कि अमेरिका के हमले में इन जलाशयों के नष्ट होने से उसे $8,30,000 यानी $7,95,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। और नुकसान से भी बड़ी बात यह है कि जब ईरान में सूखे का संकट है, वहां भू जल स्तर लगातार घट रहा है, तब ये हमले किए गए हैं। इससे आशंका भी बढ़ गई है कि क्या अपने वाटर टैंक्स का बदला लेने के लिए अमेरिका खाड़ी देशों के डीसलाइनेशन वाटर प्लांट को निशाना बना सकता है। अब आप खाड़ी के इन देशों को यहां नक्शे पर देखेंगे तो इन देशों के पास पानी के प्राकृतिक स्रोत नहीं है। जैसे ईरान में नदियां हैं, वैसे इन देशों में नदियां नहीं है और इसी वजह से ये सारे देश समुद्र के खारे पानी पर निर्भर करते हैं। ये डीसलाइनेशन प्लांट्स यानी खारा पानी साफ करने वाले जो प्लांट्स हैं, जो समुद्र का पानी पीने लायक बनाते हैं, समुद्र के पानी को मशीनों से साफ किया जाता है, उनमें से नमक खनिज सब हटाकर पीने लायक बनाया जाता है। कतर अपनी जरूरत का 99% पानी समुद्र से निकालता है, कुवैत 90%, ओमान 86%, यूएई 80%, सऊदी अरब अपनी जरूरत का 70% पानी समुद्र से निकालता है। अगर ईरान अपने वाटर टैंक्स का बदला लेने के लिए इन डीसलाइनेशन प्लांट्स को निशाना बनाता है, उससे यह युद्ध खतरनाक हो जाएगा और यही कारण है कि अभी अमेरिका के हमलों को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। एक दिन पहले हमने आपको बताया था कि ईरान युद्ध से अमेरिका खूब मालामाल हो रहा है, उसका तेल निर्यात अप्रैल महीने में 4,65,00,000 बैरल बढ़ गया है। लेकिन आज ही एक नई रिपोर्ट ये आई है कि जब कच्चे तेल के निर्यात से अमेरिका की आमदनी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, तब अमेरिका में महंगाई 3 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर है। इन आंकड़ों के बाद सबको उम्मीद थी कि राष्ट्रपति ट्रंप चिंता जताएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इससे खुश है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ ऐसा कहा जिससे सबके होश उड़ गए। उन्होंने कहा, आई लव इन्फ्लेशन, महंगाई पसंद है, महंगाई बढ़ने से चिंतित नहीं। सुनिए।
1: Mr. President, about the latest inflation number which came out this morning, could that be a...
2: No, I love it. The numbers were great. You know what I really love? I love the inflation. The oil would go to $250 a barrel. It's at 85. And, which is pretty amazing.
0: अब ईरान युद्ध के दो पहलू हैं। इससे अमेरिकी सरकार को खूब मुनाफा हो रहा है, वो खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं वहां पर उनको महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। सरकार खूब मुनाफा कर रही है लेकिन लोगों के लिए मुश्किल आ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लग रहा है कि वो ऐसा करके जब उनसे सवाल पूछ रहा है वो आई लव इन्फ्लेशन कह रहे हैं, तो वो पूरे इशू को डिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं। इससे पहले चुनावी रैलियों में उन्होंने महंगाई को नियंत्रण में करने की बात कही थी। देखिए,
3: We will end inflation and make America affordable again. We're going to get the prices down. We have to get them down. It's too much. Groceries, cars, how everything. We're going to get the prices down.
4: But prices will come down. You just watch. They'll come down and they'll come down fast, not only with insurance, with everything.
3: Oh, tomorrow I will end inflation. We will cut your taxes, end inflation.
0: अब ये देखिए कि जब हॉर्मूज बंद है तो अमेरिका ने तेल से भरे जहाजों को निकाला कैसे। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कच्चे तेल को निकालने के लिए चाइनीज फॉर्मूला अपनाया है, यानी जिस तरीके को लेकर वो चाइना को ईरानी तेल लेने पर चेतावनी दिया करता था, आज ईरान को चकमा देने के लिए उसी तरीके से खुद तेल निकाल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि अमेरिका अब कच्चे तेल को एक जहाज से दूसरे जहाज में ट्रांसफर करके ईरान को चकमा दे रहा है। तो इंडिया टुडे ऑसेंट की ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से जो पता चला है, खाड़ी देशों के कच्चा तेल का जहाज फारस की खाड़ी से होकर ओमान के समुद्री क्षेत्र में जाता है। ओमान के समुद्री क्षेत्र में ईरान की कोई दखलअंदाजी नहीं, ओमान के ही समुद्री क्षेत्र में रहते हुए चोरी छिपे ओमान के सोहार पोर्ट पर पहुंचता है। यहां से कच्चे तेल को दूसरे जहाज में ट्रांसफर किया जाता है, फिर दूसरा जहाज अपनी मंजिल की ओर रवाना होता है। हालांकि इस काम में जोखिम है, लेकिन जहाज जब ओमान के समुद्री क्षेत्र से रहता है तो इस दौरान अमेरिकी सेना उसको सुरक्षा देती है। पिछले 3 हफ्ते से अमेरिकी सेना ओमान के समुद्री क्षेत्र होकर जाने वाले सभी जहाजों को पूरी तरह सुरक्षा दे रही है, इसीलिए यह क्षेत्र कच्चे तेल की आवाजाही या ट्रांसफर के लिए सुरक्षित माना जाता है। सैटेलाइट तस्वीरों में भी ये दिखता है। ओमान के सोहार पोर्ट से करीब 6 किलोमीटर दूर ओमान की खाड़ी में दो दो के जोड़े में जहाज नजर आ रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि एक साथ करीब 8 जहाज हैं जो दो दो के जोड़े में हैं। इसी तरह से एक जहाज से दूसरे जहाज में कच्चा तेल ट्रांसफर होता है। पिछले कई दिनों से इसी तरह की व्यवस्था चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी दावा कर चुके हैं कि एक सीक्रेट मिशन के जरिए 200 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को अभी तक सुरक्षित निकाला जा चुका है। दावा है कि अमेरिकी सेना ने करीब 957 करोड़ बैरल कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सुरक्षित निकाला। इस व्यवस्था के तहत जिन जहाजों को अमेरिकी सेना मदद दे रही है उनको अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद करना पड़ता है। फिर पूरा जो रास्ता है पूरे रास्ते में अमेरिका के युद्धपोत और अपाचे हेलीकॉप्टर्स निगरानी करते हैं। हालांकि इस तरीके से केवल कच्चे तेल की ही आवाजाही होती है क्योंकि एलएनजी एलपीजी या अन्य सामान का ट्रांसफर करना मुश्किल है। और इसीलिए राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि अमेरिकी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 100 मिलियन बैरल कच्चा तेल निकालने में मदद की है। लेकिन इसका सच यह है कि इस युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर दिन 20 मिलियन कच्चा तेल गुजरता था, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज से 100 मिलियन कच्चा तेल जो बैरल कच्चा तेल है निकालने में मदद भी की है तो यह कच्चा तेल सिर्फ 5 दिनों के बराबर है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप बहुत चालाकी से इस बात को छिपा लेते हैं, कहते हैं कि अमेरिका तो विश्व कल्याण के लिए काम कर रहा है। सुनिए।
5: Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran, until right now. We took out the other night 22 ships late at night with no lights because they don't have any radar because we blasted the crap out of it. We took out, that's why oil's $85 a barrel.
0: राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि उनकी नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन सच यह है कि हॉर्मुज इस युद्ध से पहले खुला ही हुआ था लेकिन यह बंद अमेरिका के कारण हुआ। और आज भी जब यह युद्ध दूसरे दिन जारी रहा तब ईरान ने ऐलान कर दिया है कि उसने हॉर्मुज को सभी देशों के जहाजों के लिए बंद कर दिया है।
6: همانها که فرار را برقرار ترجیح می دهند
7: امریکا کے ایران پر حملوں کی وجہ سے ہرمز کو سبھی دیشوں کے جہازوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے
6: سپر انسانی خود قرار می دهند
0: ایک طرف یہ یدھ ہے تو دوسری طرف ہرمز میں لگاتار تیسرے ایسے جہاز پر حملہ جن پر بھارتی ناوک سوار تھے ان میں پہلے جہاز پر پلاؤ کا جھنڈا لگا تھا 24 بھارتی ناوک سوار تھے جنہیں سرکشت بچا لیا گیا और यह हमला अमेरिका ने किया था। इसके बाद दूसरा जहाज पलाऊ का झंडा था, इस पर 24 भारतीय नाविक सवार थे जिन पर हमला हुआ और कुल 3 भारतीय नाविक इस हमले में मारे गए और यह हमला भी अमेरिका ने कराया था। और आज तीसरे जहाज को अमेरिका ने निशाना बनाया जिसका नाम MT जलवीर है और इसमें 20 भारतीय नाविक सवार थे जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका लगातार भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर हमले कर रहा है। हमारे 3 नाविकों की जान चली गई और इसके लिए भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिका के सीडीए जेसन मीक्स को तलब किया और उनके समक्ष इस मुद्दे को उठाया है।

0: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि कैसे सब्सिडी के राजनीतिक मॉडल ने बोलिविया जैसे देश को बर्बाद करके रख दिया है। ब्राजील के पड़ोसी देश बोलिविया में इस वक्त दंगे हो रहे हैं। पूरा देश 40 साल के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि 14 सालों के उच्चतम स्तर पर इस वक्त वहां की परेशानियां हैं। बोलिविया का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो रहा है। इस आर्थिक संकट के कारण सरकार ने कई चीजों पर सब्सिडी को हटा दिया है या खत्म कर दिया है, जिससे लोग बुरी तरह भड़के हुए हैं। आज ये खबर दिखाने के पीछे हमारा मकसद यही है कि हम आपको बताएं कि सब्सिडी एक वक्त पर तो आपको सत्ता में ला सकती है, लेकिन यही सब्सिडी लंबे वक्त तक जब लोगों के लिए आदत बन जाए तो वो एक पूरे देश को कैसे बर्बाद कर सकती है। लोगों का कहना है कि जब पिछले कई सालों से पेट्रोल डीजल दूसरी चीजों पर उन्हें सब्सिडी मिल रही थी तो अब इसे वापस क्यों लिया गया और क्यों उनको इतनी कीमतें देनी पड़ रही हैं। इस असंतोष और नाराजगी के कारण पिछले कई दिनों से बोलिविया में दंगों की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही और इन तस्वीरों को देखकर दुनिया में ये बहस छिड़ी है कि क्या सब्सिडी किसी देश को इस तरह से जला भी सकती है। बोलिविया के लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका इस तरह से पूरा देश चल सकता है। कारण यह था कि बोलिविया के पास गैस का बहुत बड़ा भंडार था, इतना बड़ा भंडार कि वो स्पेन फ्रांस जितना अमीर बन सकता था। जब बोलिविया में लिथियम के बड़े बड़े भंडार मिले तो हर किसी ने यही सोचा कि उनकी किस्मत बदलने वाली है और यह भी हो भी सकता था। आज भी दुनिया में सबसे बड़ा 2,30,00,000 टन लिथियम का भंडार बोलिविया के पास है और ये वही लिथियम है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज के लिए जरूरी होता है। इतना बड़ा गैस भंडार होने के कारण बोलिविया के पास बहुत बड़ा मौका था कि वो इसकी मदद से अमीर बन सकता था, लेकिन वहां के नेताओं ने चुनाव में इसका लाभ लेने के लिए सब्सिडी मॉडल की शुरुआत की। बोलिविया अपनी जरूरत का 60% पेट्रोल और 95% डीजल आयात करता था जो आम जनता को महंगा पड़ता था। वहां के नेताओं ने सोचा कि अगर वो गैस से होने वाली आमदनी को पेट्रोल डीजल की सब्सिडी पर खर्च करेंगे तो इससे पेट्रोल डीजल भी सस्ता हो जाएगा, आम जनता भी खुश होकर वोट देगी। उस वक्त इस सब्सिडी मॉडल पर काफी बहस हुई और ये कहा गया कि बोलिविया को अपने गैस से होने वाली कमाई सब्सिडी पर ना खर्च करके आम जनता के विकास दूसरे क्षेत्रों में इसका खर्च करना चाहिए। पर बोलिविया की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए किसी ने नहीं समझा कि यह कितना बड़ा खतरा है। लेकिन लेफ्ट की सरकारों के 20 सालों के शासन में सब्सिडी मॉडल पर जोर हुआ। प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर लोगों को भारी भरकम सब्सिडी मिली। इससे 1 लीटर पेट्रोल के दाम $0.54 पर फिक्स हो गए। कीमत कितनी? $0.54। जब तक गैस के निर्यात से बोलिविया को अच्छी कमाई हो रही थी तब उसे इस सब्सिडी मॉडल से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे ही गैस का निर्यात घटा, बोलिविया का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हुआ तो वहां लोगों को सब्सिडी देना भारी पड़ गया। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह हो गई कि गैस के निर्यात से उसकी कमाई $6 बिलियन से कम होकर $1.6 बिलियन रह गई, जबकि पेट्रोल डीजल के आयात पर उसका खर्च $3 बिलियन तक पहुंच गया। ऐसी स्थिति में आम जनता को सब्सिडी देना मुमकिन नहीं था और इसीलिए जब पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी खत्म की गई और इससे वहां महंगाई का विस्फोट हुआ तो लोग सड़कों पर उतरकर विरोध करने लगे। लोगों की दलील यह है कि उनका गैस के निर्यात से कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो बस वो सब्सिडी चाहिए जो 20 सालों से उनको मिल रही थी। जबकि सरकार का कहना है कि अगर उसने सब्सिडी को जारी रखा तो बोलिविया अपनी जरूरत का कच्चा तेल खरीद तक नहीं पाएगा। 2014 से बोलिविया के पास $15 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था, सिर्फ अब बचा है $425 मिलियन। और इस संकट ने बोलिविया को कैसे जलाया है वो पूरी दुनिया देख रही है। इस खबर से 2 सबक हैं। पहला, सब्सिडी मॉडल खराब नहीं होता, लेकिन अगर सिर्फ राजनीति के लिए, लोगों के वोट के लिए इस्तेमाल हो तो खतरनाक बन सकता है। दूसरा, आर्थिक संकट में सब्सिडी का बोझ किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। प्लान बी हर देश के पास होना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं बात दिल्ली की, जहां सिंगर गुरु रंधावा के जिम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। गुरु रंधावा का ये जिम पश्चिम बिहार में है। ये वारदात सुबह करीब 5 बजे के आसपास हुई। दावा है कि मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने सुबह जिम पर 7 राउंड फायर किए और फिर फरार हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है और सिंगर गुरु रंधावा को धमकी दी गई है। हालांकि इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त जिम में लोग नहीं थे। वारदात के बारे में सुबह तब पता चला जब जिम का केयरटेकर वहां पहुंचा, उसने ही पुलिस को जानकारी दी। इस हमले के बाद पुलिस ने हमलावरों की पहचान के लिए जिम और उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। इस हमले को लेकर जो सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है उसमें लिखा गया है कि गुरु रंधावा के जिम 24 आवर्स फिटनेस पर जो फायरिंग हुई वो लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर अनिल पंडित ने करवाई है। अनिल पंडित, इस पोस्ट में धमकी दी गई है कि फायरिंग इसलिए की गई क्योंकि गुरु रंधावा और सलमान की दोस्ती थी। गुरु रंधावा फिटनेस इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। वो अलग अलग तरह के जिम्स की फ्रेंचाइजी से जुड़े हैं। 24 आवर्स फिटनेस के को फाउंडर है। पुलिस का कहना है कि लॉरेंस गैंग द्वारा इस जिम पर फायरिंग की एक वजह रंगदारी मांगना भी हो सकता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि सलमान से करीबी की बात कहकर लॉरेंस गैंग ने कई सेलिब्रिटीज को टारगेट किया है। लॉरेंस गैंग ने सभी सेलिब्रिटीज को सलमान से दूरी बनाने की धमकियां दी। जिन लोगों को लॉरेंस गैंग की ओर से धमकियां मिली है उनमें पहला नाम कॉमेडियन कपिल शर्मा का है। कनाडा में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर 3 बार फायरिंग हुई। पहली बार फायरिंग में आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का नाम आया। उसके बाद 2 बार लॉरेंस गैंग के शूटर्स के कैफे पर फायरिंग की ऐसी खबर आई। इन दोनों वारदात में कपिल शर्मा को सलमान से करीबी ना रखने की चेतावनी तरीके तरीके से दी गई। इससे पहले साल 2024 में रैप बादशाह के रेस्टोरेंट पर बार पर बम धमाका किया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में बादशाह के सिविल बार लॉन्च पर कम तीव्रता का बॉम्ब फेंका गया था। जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने, गोल्डी बराड गैंग ने ली और इन सभी मामलों में सोशल मीडिया के जरिए जिम्मेदारी की बात सामने आई। और अब आपको उत्तर प्रदेश के इटावा से एक खबर दिखाते हैं, जहां बुधवार की शाम तक एक पक्की आलिशान इमारत खड़ी थी। चमचमाता गुंबद था, आगे चौड़ा चबूतरा, बीहड़ वाले सैयद बाबा का जलवा। मजार की दीवार पर लिखा था कि यहां शेर भी अपनी पूंछ से झाड़ू लगाता है। लेकिन गुरुवार की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, ये मजार वहां से गायब। गुंबद गायब, चबूतरा गायब, और तो और वहां का सारा मलबा भी गायब। यहां सिर्फ कमर तक ऊंचे हरे भरे पेड़ लहलहा रहे थे। इलाके के लोग सुबह सुबह आंखें मलते रह गए। कुछ दिन पहले तक यहां पर सजदा होता था, वहां आज पर्यावरण संरक्षण चल रहा है। लोग हैरान है, परेशान है कि 12 घंटे के भीतर ऐसा कौन सा दिव्य प्रयोग हुआ कि पक्के कंस्ट्रक्शन को सीधे जंगल निकल गया। ये मजार आसमान में कैसे लुप्त हो गई, जमीन में समा गई। धार्मिक मॉडल था जिसकी एक्सपायरी डेट अचानक कैसे आ गई। हमारे देश में सरकारी जमीन पर मजार, मंदिर, धार्मिक ढांचे का प्रकट होना कोई नई बात नहीं है। ये एक स्थापित बिजनेस और लैंड मॉडल है। पहले एक सुनसान सरकारी या वन विभाग की जमीन चुनी जाती है, वहां पर पहले चादर डाली जाती है या फिर कोई मूर्ति रख देता है, फिर वहां पक्का चबूतरा बन जाता है, फिर कभी मजार, कभी मंदिर, अवैध किला तक खड़ा हो जाता है। इटावा शहर से 1.5 किलोमीटर दूर इस फिशर वन क्षेत्र की 3,000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर यही मॉडल सालों से भरपूर रहा था। हर साल फरवरी में उर्स होता था, 5,000 से 7,000 लोग आते थे, कवालियां होती थी। एक चीज नहीं थी, जमीन के कागजात। जमीन के कागजात थे ही नहीं। इस मजार के केयरटेकर फजल इलाही का दावा था कि यह मजार 800 साल पुरानी है। जब जनवरी में मामला सीएल मुख्यमंत्री पोर्टल पर पहुंचा तो वन विभाग ने कहा कि जमीन के कागजात लाओ। 3 महीने तक कोर्ट कचहरी और सुनवाई चली। मजार के पैरोकार मजार की उम्र तो 800 साल बताते रहे लेकिन 8 महीने पुराना भी कोई सरकारी कागज नहीं दिखा पाए। नतीजा, कोर्ट ने मजार को अवैध और अतिक्रमण घोषित कर दिया। आया बुधवार की शाम 6 बजे का वो क्लाइमैक्स, इस रिपोर्ट में देखिए।
1: ये वही जगह है जहां पर मजार बनी हुई थी और अब यहां पर वृक्ष लगे हुए हैं। वृक्षारोपण कराया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे पौधे लगा दिए गए हैं और यहां ध्वस्तीकरण के बाद इसके अवशेष भी हटा लिए गए हैं। अब महत्वपूर्ण बात है कि जिला प्रशासन ने यह पूरी तरह से गोपनीय करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। हालांकि यहाँ पर जो पक्षकार था उनका दावा रहा कि ये सैकड़ों वर्ष पुरानी मजार, लेकिन दस्तावेज न दिखाने के उपलक्ष्य में जिसकी 3 महीने सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया गया था। और अब यहाँ पर इस जगह पर आपको दिखाएं, पूरी तरह से यहाँ अवशेष भी हटाए गए, हालांकि जो वन विभाग के कर्मचारी हैं, अफसर हैं, वो भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इस जगह को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सीमेंटेड, ये सीमेंट की ईंट पत्थर गिट्टी प्लास्टर की हुई रंगी पुती हुई अवशेष अभी भी बाकी है। और जिला प्रशासन का यह गोपनीय तरीके से किया गया ध्वस्तीकरण का जो कार्रवाई है वह बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से किया गया और यहाँ मीडिया को भी दूर रखा गया।
0: खैर आगे बढ़ते हैं, आज से फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, ये दुनिया का सबसे पसंद किए जाने वाला खेल और यही वजह है कि सबसे ज्यादा देशों की टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं। आज फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला मैच मेक्सिको साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाए जो भारतीय समय के हिसाब से आज रात 12:30 बजे शुरू होगा। तो आज के बाद विश्व भर में जितने भी फुटबॉल लवर्स हैं उनके लिए काम शुरू हो चुका है, चाहे रात में जागना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन मैच तो देखना है। इस शानदार और जोशीले खेल का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है, इसलिए आज हम आपको वर्ल्ड कप से जुड़ी वो बातें बताएंगे जो इस बार इसे बहुत खास बना रही है। इस बार का फीफा मेंस वर्ल्ड कप कई मायनों में बिल्कुल अलग है। इस बार सबसे ज्यादा टीमें वर्ल्ड कप खेलने वाली हैं, जो एक नया रिकॉर्ड होगा। पिछले 7 फीफा वर्ल्ड कप में यानी साल 1998 से 2022 तक 32 टीमों ने ही इस महामुकाबले में हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार 48 देशों की टीमें वर्ल्ड कप खेलने वाली हैं, यानी 48 देशों के 1,248 फुटबॉल प्लेयर्स आपको इस बार नजर आएंगे। इस वर्ल्ड कप की 48 टीमों के बीच फुल 104 कुल मैचेस होंगे, जो पिछले 7 वर्ल्ड कप के हुए कुल मुकाबलों से कहीं ज्यादा है। पिछले 32 टीमों वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में 64 मैच टीम्स के बीच खेले गए थे। 20 जुलाई तक चलने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैच 3 देशों अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में इस बार आयोजित हो रहे हैं और यह भी एक नया रिकॉर्ड है। और हर बार हर देश में जहां जहां ये मैचेस होंगे वहां पर एक ओपनिंग सेरेमनी भव्य होगा। फुटबॉल के 96 साल के इतिहास में पहली बार है जब 3 देश मिलकर वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हो। आमतौर पर एक ही देश में सारे मैचेस आयोजित किए जाते रहे हैं। केवल साल 2002 में जापान और कोरिया ने 7 मिलकर फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया था। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ज्यादा टीम्स का मतलब है ज्यादा मुकाबले, ज्यादा मुकाबलों का मतलब है ज्यादा रोमांच। इस बार वर्ल्ड कप में शामिल 48 टीमों को 12 ग्रुप्स में बांटा गया है। हर ग्रुप में 4 टीम्स हैं जिन्हें ग्रुप स्टेज में 3-3 मैच खेलने को मिलेंगे। ग्रुप स्टेज के बाद 32 टीम नॉकआउट स्टेज में पहुंचेंगी, जिसमें हर ग्रुप की टॉप 2 टीम्स को यानी 24 टीमों को सीधे नॉकआउट स्टेज में एंट्री मिलेगी। जबकि ग्रुप में अगर आप देखें तो तीसरे नंबर पर रहने वाली 12 टीमों में से 8 बेस्ट टीम्स को नॉकआउट स्टेज का पास मिलेगा। नॉकआउट स्टेज में पहले राउंड ऑफ 32 में पहुंची 32 टीमों के बीच मैच खेले जाएंगे। मैच जीतकर पहुंची 16 टीमों के बीच फिर राउंड ऑफ 16 के नॉकआउट मुकाबले होंगे। राउंड ऑफ 16 के बाद 8 टीम, जिसके बाद क्वार्टर फाइनल में एंट्री मिलेगी और इसके बाद वर्ल्ड कप की बेस्ट 4 टीम्स के बीच सेमीफाइनल मैच होंगे, जिनमें 2 विजेताओं के बीच भारतीय समय के अनुसार 19 जुलाई की रात 12:30 बजे फाइनल मैच खेला जाएगा। इस बार का फुटबॉल वर्ल्ड कप केवल टीम्स और खिलाड़ियों की संख्या में नहीं बल्कि प्राइज मनी को लेकर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार फीफा मेंस वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली 48 टीमों के बीच 6,272 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे, जो पिछले वर्ल्ड कप की तुलना में 50% ज्यादा है। साल 2022 के वर्ल्ड कप में 32 टीम्स में 4,213 करोड़ रुपए बांटे गए थे। अगर हम क्रिकेट से इसकी तुलना करें तो आईसीसी वर्ल्ड कप में मिलने वाली रकम ऊंट मुंह में जीरे जैसी लगेगी। इसी साल खेले गए T20 मेंस वर्ल्ड कप में 22 टीमों के बीच करीब 108 करोड़ रुपए बांटे गए थे, जबकि 2023 में हुए वनडे वर्ल्ड कप की 10 टीमों में 96 करोड़। आपको बता दें कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप विजेता टीम को 478 करोड़ रुपए प्राइज मनी के तौर पर मिलने वाले हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप के आयोजन में मिलने वाला यह पैसा दर्शकों की जेब से भी होकर गुजरेगा। फुटबॉल मुकाबलों में स्टेडियम की टिकट की कीमतें आसमान छू रही हैं। न्यूयॉर्क में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल के टिकट की कीमत जानते हैं 7,25,000 रुपए। इस बार फाइनल मैच के टिकट की कीमत पिछली बार की तुलना में 4 गुना है। कतर में हुए पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल का टिकट करीब 1.5 लाख रुपए का था। वैसे आपको बता दें कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के टिकट की कीमत 40,000 से 50,000 के करीब होती है, लेकिन रीसेल में कई बार ये 2 से 3 लाख तक भी पहुंच जाती है। सच यह है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप दुनिया के लिए सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि फैंस के लिए त्योहार है। यही कारण है कि इसकी व्यूअरशिप रिकॉर्ड तोड़ होती है। कतर में हुआ पिछला वर्ल्ड कप फाइनल अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच था, इसे जानते हैं कितने लोगों ने देखा? 150 करोड़ लोगों ने देखा था। करीब 89,000 दर्शक तो स्टेडियम में मौजूद थे। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो दर्शकों के लिहाज से सबसे बड़ा वर्ल्ड कप फाइनल 2011 का था, भारत और श्रीलंका के बीच। इस मैच को 56 करोड़ लोगों ने देखा था। भारत ने इस मैच में जीत दर्ज की थी। हालांकि दर्शकों के लिहाज से सबसे बड़ा मैच साल 2019 में खेला गया भारत पाकिस्तान मैच था, जिसे 100 करोड़ लोगों ने देखा। यह सबसे ज्यादा देखने वाला क्रिकेट मैच है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। हर 4 साल में होने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप हर बार और बड़ा बनता जाता है। माना जा रहा है कि व्यूअरशिप के मामले में इस बार भी पिछले सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included.
2: Oh, yeah.
1: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
3: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
4: I have no idea how this election is going to play out,
3: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
5: Cricket mein har khiladi ka alag role hota hai. Koi wicketkeeper, koi fielder, koi bowler, to koi batsman hota hai. और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम. जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप.
6: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन.
7: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं.
8: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है.
7: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी.
9: आगे आगे,
10: अरे उधर
9: उधर
10: गया. करेक्ट करेक्ट,
11: मिल गया. आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
12: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा. अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार. देश के हीरो की पहली पसंद.
13: कोई ऐसा कूलर दिखा. पूरी फैमिली बोले वाह.
14: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
13: ज्यादा बड़ी ना है.
14: छोटे ऑन कर दे.
15: ऑन कर दे. ऑन कर दे.
13: पैक कर दे समर कूल.
14: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
4: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
5: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
6: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
5: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
7: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
8: In association with
9: Samakul Cooler, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। Samakul Cooler, लाइफ बनाए वंडरफुल।
8: Hint, बड़े आराम से
9: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans। Sharda University, the world comes together at Sharda University, where are you?
1: Vimal, बोलो जुबां केसरी।
10: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कमर्शियल उड़ानों के लिए तैयार है। इन दिनों हवाई अड्डे के कमर्शियल ऑपरेशंस रेडीनेस का ट्रायल चल रहा है। इंडिगो एयरलाइंस के विमान इस ट्रायल में शामिल हुए। ऑपरेशनल रेडीनेस, एक्टिवेशन एंड ट्रांजिशन, टर्न अराउंड ट्रायल का सफल परीक्षण किया गया। इस ट्रायल के दौरान विमान के उतरने से लेकर दोबारा उड़ान भरने तक की सभी प्रक्रियाओं का वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान विजुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम, पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, ग्राउंड पावर यूनिट, बैगेज हैंडलिंग सिस्टम और कार्गो संचालन जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं की जांच की गई। इसके अलावा विमान में कैटरिंग, ग्राउंड हैंडलिंग और ईंधन भरने से जुड़ी प्रक्रियाओं का भी परीक्षण किया गया। एयरपोर्ट प्रशासन ने इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और रिक्वायर्ड नेविगेशन परफॉर्मेंस का भी दोबारा सत्यापन किया, ताकि उड़ान संचालन पूरी तरह सुरक्षित और सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। एयरपोर्ट के अधिकारियों का दावा है कि सभी ट्रायल सफल रहे। 15 जून से एयरपोर्ट पर नियमित कमर्शियल उड़ान सेवाएं शुरू की जाएंगी। आज तक जीरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo. Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: आगे आगे
4: अरे उधर
3: उधर किधर
4: करेक्ट करेक्ट
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: कोई ऐसा कूलर दिखा, पूरी फैमिली बोले वाह।
7: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
6: ज्यादा बड़ी ना है,
7: छोटे ऑन कर दे,
8: ऑन कर दे, ऑन कर दे,
6: पैक कर दे समर कूल।
7: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।

0: ममता दीदी बड़ी मझधार में फंसी, घर यानी पार्टी में आग लगी है, बाहर टीएमसी पर सिर्फ अंडे बरस रहे। इस मुसीबत की घड़ी में एक मदद का हाथ उनकी ओर बढ़ा तो मुसीबत में मोहब्बत की दुकान में मर्जर तक बात पहुंच गई। ममता बनर्जी के पास पार्टी बचाने का रास्ता हर गुजरते घंटे के साथ बंद होता दिख रहा है। अब तो कल्याण बनर्जी तक ने अल्टीमेटम दे दिया, कहा अभिषेक नहीं चुनाव हराया, अभिषेक नहीं पार्टी का नाश किया, अब ममता या तो पार्टी चुन ले या भतीजा। हालत ये कि ममता के 28 में से 19 लोकसभा सांसद बगावत की चिट्ठी साइन कर चुके, 13 में से 3 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके, पार्टी के 80 में से 64 विधायक स्पीकर को अलग चिट्ठी दे चुके, 7 में से 4 मेयर चले गए, 130 से अधिक पार्षद विदा हो गए, कई नगर पालिकाएं भंग हो गयी। ममता अपनी पार्टी की सभी समितियां पहले ही भंग कर चुकी है। ममता के पास पार्टी के नाम पर फिलहाल पुख्ता तौर पर वो खुद बची हैं और बचे हैं अभिषेक। ऐसे में ममता के दिल्ली दौरे पर जो सोनिया गांधी के साथ केमिस्ट्री दिखी और जिस तरह ममता अभिषेक ने सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकातें की और उसके ठीक एक दिन बाद जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने देश भर से अपने पार्टी महासचिवों, पार्टी प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की आपातकालीन बैठक बुलाई है, उससे कांग्रेस टीएमसी में मर्जर वाली खबर और उड़ चली। दरअसल टीएमसी और कांग्रेस के मर्जर की जो हवा चली उसका पश्चिमी विक्षोभ महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जिसमें कभी पवार ने कांग्रेस के साथ दलों के एकजुट होने की बात कही थी, वही सपना बार बार आकार लेता दिखता है। और जब संजय राउत ने एनसीपी को कांग्रेस में मर्ज कर जाने की बात कही तो सुप्रिया सुले ने इनकार नहीं किया। सुप्रिया कांग्रेस की ओर से विलय प्रस्ताव वाले सवाल पर भी मना नहीं करती।
1: अगर बारिश आई तो मैं छाता लूंगी कि रेनकोट, अभी मैंने तय नहीं किया है।
0: सुप्रिया सुले को बारिश का इंतजार है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ दो टुकड़े हो चुकी पार्टियों में एकजुटता की चर्चा महाराष्ट्र में सबसे जोर पर, क्योंकि वहां दो दलों के 4 टुकड़े। पिछले दिनों उद्धव के नेता अंबादास दानवे और शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार दिल खोल कर मिले तो ऐसी हवा फिर चली कि कहीं शिवसेना में नई खिचड़ी तो नहीं पक रही। महाराष्ट्र की सियासत में मर्जर की कहानी कैसा मोड़ लेगी ये कहना भी जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस टीएमसी के एक साथ मिलकर गठबंधन में काम करने का फैसला तकरीबन तय है, मर्जर की पुष्टि कोई नहीं कर रहा। हालांकि कांग्रेस ने अब आधिकारिक रूप से मना कर दिया है कि टीएमसी कांग्रेस में कोई मर्ज नहीं होने वाला। कांग्रेस भले मना करे, लेकिन दिल्ली से बंगाल तक के हालात बताते हैं कि अब बंगाल में कांग्रेस और ममता बिना एक दूसरे का हाथ थामे चल नहीं सकते। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।

0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और याद रहे, किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत चौका देती है। नमस्कार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

आयोग की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा। पीएम मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और शिकायतों के तेजी से समाधान पर दिया जोर। 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। कांग्रेस की बैठक में राहुल का केंद्र पर हमला, बोले सरकार की नीति से पूरा समाज त्रस्त। मोदी ने मरवा दिया, खड़गे ने भी गिनाई खामियां।

0: के बागी गुट की नेता काकुली घेश का एनडीए के साथ होने का दावा, कहा 20 सांसद हमारे पक्ष में, लेकिन आज तक से बोले शत्रुघ्न सिन्हा, मैं ममता के साथ। आज रात ईरान पर भीषण हमले की ट्रंप की धमकी, कहा जल्दी खार्ग द्वीप पर करेंगे कब्जा, तेल गैस पर होगा हमारा नियंत्रण। और रात 12:30 बजे से दुनिया के फुटबॉल महाकुंभ का आगाज, फीफा वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में मेक्सिको दक्षिण अफ्रीका की भिड़ंत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक, पर आप देख रहे हैं दस्तक। लेकिन इस समय सबसे बड़ी खबर आ रही है ईरान और अमेरिका के युद्ध को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज की रात ईरान पर सबसे बड़े हमले की धमकी दे दी है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि आज की रात ईरान पर अमेरिकी सेना का विनाशकारी जबरदस्त प्रहार

0: नंबर 3, ईरान पर विध्वंसक हमले की धमकी से पहले ट्रंप ने दावा किया था कि उनके आदेश पर सेना ने ईरान के अलग अलग ठिकानों पर 49 टॉमहॉक मिसाइलें दागी थी। जिस वक्त हमला हुआ वो सिचुएशन रूम में मौजूद थे और सैन्य कार्रवाई की निगरानी कर रहे थे। खबर नंबर 4, बीती रात अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ दूसरे राउंड का हमला किया था। हमलों को लेकर सेंटकॉम की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। इन हमलों में ईरानी सैन्य निगरानी क्षमताओं, संचार प्रणालियों और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। खबर नंबर 5, अमेरिकी सेना की तरफ से लड़ाकू विमानों ने ईरान के अलग अलग शहरों में बमबारी की। ईरान के शहर कराच में हवाई हमले हुए। तेहरान में इस्लामिक आजाद विश्वविद्यालय के करीब जोरदार धमाका हुआ। ईरान के सिरिक में धमाकों की आवाज सुनी गई, जबकि बंदर अब्बास पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने बमबारी की। अमेरिकी हमलों से हुए नुकसान को लेकर अभी तक ईरान की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। खबर नंबर 6, कुवैत का कहना है कि बीते 48 घंटों में ईरान के 24 ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया। इन हमलों में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं जॉर्डन ने भी ईरान के सभी मिसाइल हमलों को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम करने का दावा किया है। जॉर्डन की सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि गुरुवार को ईरान से दागी गई 20 मिसाइलों को रोक कर मार गिराया गया। खबर नंबर 7, अमेरिकी हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने भी भीषण हमला किया। IRGC का दावा है कि ईरान ने दो अलग अलग चरणों में जवाबी कार्रवाई की। कुवैत में अली अल सलेम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों के साथ साथ बहरीन में शेख ईसा हवाई अड्डे पर अमेरिकी सेना से जुड़े 18 अहम सैन्य अड्डों पर हमला किया और भारी तबाही मचाई। खबर नंबर 8, ईरान का दावा है कि बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर बड़ा ड्रोन हमला किया। जवाबी हमलों में अमेरिकी पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े संचार एंटेना और रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। ईरान की माने तो जॉर्डन के अल अजराक हवाई अड्डे पर अमेरिकी F-35, F-15 और F-16 लड़ाकू विमानों के हैंगर पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हमले में अमेरिका के कई लड़ाकू विमान पूरी तरह तबाह हो गए। खबर नंबर 9, अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया है। बीते 48 घंटे से हॉर्मुज में तेल टैंकरों और जहाजों की आवाजाही पूरी तरह बंद है। IRGC ने हॉर्मुज को लेकर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि हॉर्मुज के पास जाना दुश्मन की मदद करने के बराबर होगा। अगर कोई जहाज आया तो उस पर सीधा हमला किया जाएगा। ईरान सेना के ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मुसावी ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हॉर्मुज की सुरक्षा को खतरा पहुंचाना जारी रखा तो पूरे इलाके को नर्क में बदल देंगे। खबर नंबर 10, ईरान ने अमेरिका के ताजा हमलों की कड़ी आलोचना की है। उसका कहना है कि इन हमलों की वजह से 8 अप्रैल से लागू युद्ध विराम का कोई मतलब नहीं रह गया है। ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अपने ऊपर होने वाले हमलों का जवाब देने के लिए जरूरी कदम उठाएगा और अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान सेना ने भी ऐलान किया है कि अमेरिका की तरफ से होने वाले किसी भी हमले का जवाब पहले से ज्यादा आक्रामक तरीके से देंगे।
1: और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर अभी ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने बयान दिया है कि कोई भी गलत और जल्दबाजी का लिया हुआ निर्णय फैसला स्थिति को और खराब कर देगा, इसलिए किसी भी निर्णय को लेने से पहले हमें 10 बार सोचना होगा, गलत निर्णय नहीं लेना होगा, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय हमें नहीं लेना होगा और आप एक अलग ईरान देखेंगे अगर हम सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो। स्थिति बिगड़ सकती है गलत फैसले से, लंबे समय तक स्थिति बिगड़ सकती है, हमें नुकसान हो सकता है, ऊर्जा क्षेत्र बाजारों पर इसका असर पड़ सकता है, इसलिए हम जो भी फैसला लें, ईरान को उन्होंने कहा है, ईरान के नेताओं को कहा है, ईरान के शासन को कहा है कि कोई भी फैसला लेने से पहले हमें 10 बार सोचना होगा, हम गलत फैसला नहीं ले सकते हैं। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का ये बयान है। सुमित चौधरी, अशरफ वानी, प्रणय उपाध्याय, हमारे तीनों संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ट्रंप की आज की रात ईरान पर बड़े हमले की धमकी, इसका सुमित मतलब क्या है? रोहित भी वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
2: देखिए इसका मतलब बिल्कुल

0: साफ है कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये बात जान चुके हैं कि ईरान उनकी सुनने वाला नहीं है। और शायद ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने हर पैतरे को आजमा लिया या फिर हर तरीके से कोशिश कर ली कि वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल सके ईरान पर। लगातार ये कोशिश की गई कि कई बार अटैक किया जाए लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं। अभी भी मौजूदा हालात में हमने देखा कि जब ये सारी बातें की गई थी भली गालिबाफ की तरफ से कहा गया स्पीकर की तरफ से कि देखिए कोई ऐसी परिस्थिति या फिर ऐसी सिचुएशन बनानी पड़ेगी जहां पर ज्यादा नुकसान ना हो सभी को, लेकिन यह भी तय है कि ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। ईरान अपनी प्री कंडीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं और शायद यही सबसे बड़ी दिक्कत अमेरिका के सामने भी आ रही है कि अमेरिका जानता है
1: ठीक
0: कि ईरान ऐसा इस समय एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट कर चुका है जिससे ना सिर्फ अमेरिका बल्कि मिडल ईस्ट के तमाम देश झुकने
1: ठीक
0: को तैयार है उसके सामने।
1: ठीक है। रोहित, क्या मतलब है ट्रंप की इस धमकी का?
2: देखिए सर, इसका एक सिंपल सा जो है, अगर हम इसे देखें तो हमें समझना चाहिए कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो हमने कल भी कहा था कि वो तरीके से एक अपनी प्रेशर टैक्टिक के अलावा भी अब एक एक्शन दिखा रहे हैं, काइनेटिक एक्शन दिखा रहे हैं कि किस तरह से अगर अब भी ईरान नहीं लेता है उनकी बात को, सीरियसली नहीं लेता है, तो वो आगे के जो प्लान बी सी और डी थे जिसमें पहले बात कही गई थी, खर्ग आइलैंड जो उसे ले लिया जाएगा और जो ब्रिजेस हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक किया जाएगा, तो आई थिंक कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी भी अगर ईरान अपने चीजों में इस नेगोशिएशन को लेकर मानता नहीं है, अगर नहीं समझता है कि भी उसे नेगोशिएट करना है अमेरिकन टर्म्स पे, जिस तरह की बातें उन्होंने कही है ईरान को लेकर कि ईरान अगर ये कह दे कि अमेरिका सुप्रीम पावर है, सुपर पावर, हम सरेंडर करते हैं, अगर इस तरह की चीजें वो नहीं करता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जिसमें बहुत ही हम कह सकते हैं खतरनाक ऑप्शंस हैं, जो खुद कह रहे हैं कि पीने के लिए पानी शायद ना बच पाए वहां पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा और पावर प्लांट्स डैमेज हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि ईरान को कि वो अब फाइनली समझे कि उनका जो पेशेंस है वो खत्म हो चुका है और वो चाहते हैं कि ईरान जो भी डील है जिसपे पिछले कुछ 7 हफ्तों से 8 हफ्तों से बातचीत हो रही है, निगोशिएशन चल रही है, उसे ईरान मान ले, और अगर वो नहीं मानता है तो अमेरिका जो है और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अपना मन बना चुके हैं कि अब ये अटैक्स जो है, जो फ्रेश अटैक्स है, ये शायद अब नहीं रुकेंगे।
1: ठीक है रोहित, अशरफ वानी भी हमारे साथ हैं, लेकिन दो विशेष मेहमान, प्रमेत मकोड़े, प्रेसिडेंट ग्लोबल सिटीजन फोरम यूएस, और हमारे साथ एमएच सूरतवाला जी, ईरान एंड वेस्ट एशिया अफेयर्स एक्सपर्ट, लेक्चरर, अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी ईरान। प्रमीत जी, आप न सिर्फ इस ग्लोबल सिटीजन्स फोरम के अध्यक्ष हैं बल्कि आप भारतीयों के व्यापार को लेकर भी चिंतित रहते हैं, उन सब का आप भला चाहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रमीत जी, आपको लगता है कि नुकसान हो रहा है?
3: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, इट्स ऑलवेज अ प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ योर शो। और सबसे पहले तो मैं अमेरिका की तरफ से और सभी अमेरिकन भारतीयों की तरफ से खेद और शोक प्रकट करना चाहता हूँ कि देर आर फ्यू इंडियन सेलर्स हु डाइड इन द रिसेंट अटैक, तो उसके लिए हमारी तरफ से बड़ी सिंसियर कंडोलेंसेस, और इस तरह की घटनाएं ना हो और उसका इन्वेस्टिगेशन हो और पूर्ण रूप से कॉम्पनसेशन उनके परिवार को और भारतीयों को मिले, इसकी हमारे आपके चैनल के माध्यम से और हमारी यही डिमांड यहाँ पर भी रहेगी। और लेकिन आपका जो प्रश्न है, निश्चित रूप से इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, बट देखिए इसकी पृष्ठभूमि भी आपको समझनी होगी भाई, कि कई सालों से ये चल रहा है कि डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल, व्हेन यू आर द नंबर वन मिलिट्री, व्हेन यू आर द सुपर पावर इन मल्टीपल सेंस, आप यू आर इकोनॉमिक पावर हाउस, मिलिट्री पावर हाउस, नॉलेज पावर हाउस, इनोवेशन पावर हाउस, तब आपके और आपके मित्रों को, दैट इज अमेरिका और अमेरिका के जो स्ट्रांग अलाइज और मित्रों के लिए, अगर डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, और अक्टूबर 2023 में जो इन्होंने एक नरसंहार किया, उसके बावजूद अगर हिजबुल्ला, हमास और इन जैसी प्रॉक्सी ताकतों को हम कमजोर न करें, तो फिर $1.1 trillion की मिलिट्री का क्या उपयोग है? ये एक यहाँ पर एक सामान्य सोच है, और निश्चित रूप से उसकी वजह से पूरी दुनिया पे जो एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बना हुआ है, उसका भी एक परिणाम अमेरिका भी भुगत रहा है। देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अमेरिकन प्रेसिडेंट आल्सो टू गेट इट रिजॉल्व सून और गेट इट कंप्लीटेड सून, और इसीलिए ही इज ट्राइंग टू मेक इट फास्ट। और उनकी, ट्रम्प साहब की जो स्टाइल है वो आपने कई महीनों से भी देखी होगी कि ही यूजेस द मैक्सिमम प्रेशर, देन ही गोज टू द निगोशिएशन टेबल, देन ही ट्राइज टू निगोशिएट ऑन अमेरिकाज टर्म, और अगर अमेरिकाज टर्म पे निगोशिएशन नहीं होता है सो ही इंक्रीजेस द प्रेशर एंड ट्राइज टू निगोशिएट अगेन। वही वो काम अभी कर रहे हैं। आईआरजीसी की जो एक लाइफलाइन है, बेसिकली ऑयल के टैंकर के थ्रू ऑयल बेचिए और जो ऑयल का पैसा आएगा उसको हमास, हुती हिजबुल्ला और अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए वो काफी खर्चा करते हैं तो अमेरिका इन द वॉर सिचुएशन विल नेवर लाइक टू डू दैट इसीलिए अमेरिका अपना जो ब्लॉकेड है उसको और मजबूती से अभी एक तरह से एस्टेब्लिश करके रखेगा और प्रेशर भी बढ़ाएगा और प्रेशर अब उनकी जैसे पेशेंस खत्म होते जा रहा है अमेरिका का एंड वी आर सीइंग दैट अमेरिका इन एक्शन वंस अगेन होपफुली अमेरिकन मिलिट्री शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबली और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ही ध्वस्त करे और सिविलियन एटमोसफियर.
1: प्रवीण मकोड़े हमारे साथ हैं. सैयद अली रिजवी एक और मेहमान जुड़ चुके हैं लेकिन उससे पहले हम आपको आइए दिखाते हैं कि क्यों आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात है. जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि आज रात अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेगा. ट्रंप की इस चेतावनी से दुनिया भर में एक बार फिर से हलचल मच गई. तो आइए हम आपको दिखाएं आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है और इसके जवाब में ईरान की तैयारी क्या है. ईरान डर क्यों नहीं रहा.

0: ईरान के लिए ट्रंप की अब तक की सबसे बड़ी धमकी। ट्रंप की चेतावनी ईरान के लिए आज कयामत की रात। ट्रंप बोले ईरान के खाद द्वीप और तेल गैस ठिकानों पर करेंगे कब्जा। अमेरिका की चेतावनी बहुत भारी, क्या है ईरान की तैयारी? अब क्या करेंगे मुज्तबा खामिनई? ट्रंप की धमकी का जवाब क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी ने ईरान को दहला दिया है तो दुनिया को हिला दिया है। दो दिन से ईरान पर लगातार हमलों के बाद अब आज की रात डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने की चेतावनी दी है। जी हां, ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका आज रात ईरान पर बड़ा हमला करेगा। ईरान की ज्यादातर सैन्य ताकत पहले ही कमजोर हो चुकी है। आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर खार्ट आइलैंड और दूसरे अहम तेल गैस ठिकानों पर कब्जा करेगा। आपको बता दें कि खार्ट आइलैंड को ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है और अब जिस तरह से एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाचे पर हमले का बहाना लेकर अमेरिका ने फिर से ईरान पर चढ़ाई की है, इससे ये साबित होता है कि अमेरिका ईरान के साथ डील में देरी करके बड़े युद्ध की तैयारियों में जुटा था। सवाल ये भी है कि क्या 8 अप्रैल के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ युद्ध विराम का दिखावा किया और ईरान पर फिर से हमलों की तैयारी में जुट गया। पहले तो 9 जून की रात अमेरिका ने ईरान के 5 शहरों में तबाही मचा कर रख दी। अमेरिका ने ईरानी सीमा में कदम रखे बिना सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही स्टैंड ऑफ हथियारों से अचूक वार किया। इस हमले में ईरान के रडार सिस्टम, एयर डिफेंस मिसाइल बैटरियों और शाहिद ड्रोन के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों को नेस्त नाबूद कर दिया गया।
1: We'll see what happens, but we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today. In case you miss it, in case you don't turn on your television set, and we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers.
0: लेकिन ईरान भी अमेरिका के इन हमलों के सामने कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि उसने भी पलटवार में मिडल ईस्ट में 21 अमेरिकी बेस को टारगेट किया। जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में जैसे तबाही मचा कर रख दी। अमेरिका को भी अंदाजा नहीं था कि ईरान का पलटवार इतना घातक होगा। बीती रात अमेरिका ने ईरान पर फिर से नए हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने कहा कि हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, सैन्य निगरानी नेटवर्क और कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट किया गया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में टॉमहॉक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। ईरानी मीडिया ने केशम द्वीप, बंदर अब्बास, मीनाम और सिरिक समेत कई इलाकों में धमाकों की पुष्टि की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान परमाणु समझौते पर बातचीत में जरूरत से ज्यादा देरी कर रहा है, इसलिए दबाव बढ़ाना जरूरी हो गया है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका को डर है कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए हैं? क्या इसीलिए अमेरिका आर पार की लड़ाई पर उतर आया है? हालांकि ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वो अब तक इसराइल को तबाह कर चुका होता।
1: You can't have a nuclear weapon. His was a path to a nuclear weapon. They were developing during his administration nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, they'd be no Israel, there'd be no Middle East, and they would have absolutely shot at us. So we'll see what happens. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today.
0: बकौल ट्रंप, अगर ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है तो फिर क्यों अमेरिका इतना डरा हुआ है? क्यों फिर से ईरान पर हमले शुरू हो गए हैं? लेकिन ट्रंप की एक के बाद एक धमकियों के बावजूद ईरान डरना और झुकना तो दूर, अमेरिकी हमलों के जवाब में तगड़ा पलटवार भी कर रहा है और मिडल ईस्ट में अमेरिका के 18 मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया। IRGC ने दावा किया कि उसने जॉर्डन के मुवाफक अल सॉल्टी एयर बेस पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया है। वहीं कुवैत में अहमद अल जाबेर एयरबेस और अली अल सालेम एयरबेस को भी मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी पांचवें बेड़े के मुख्यालय और शेख ईसा एयरबेस पर भी हमला किया है। IRGC के मुताबिक जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर बड़ी संख्या में अमेरिकी फाइटर जेट्स को नष्ट कर दिया गया। ईरान के IRGC का कहना है कि उसने 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से जॉर्डन में अल अजराक एयरबेस पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया। इस हमले की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को नष्ट करते दिख रहे हैं। अब ईरान और अमेरिका युद्ध भीषण रूप ले रहा है। ऐसे में रूस और चीन ने तुरंत इस युद्ध को रोकने की अपील की है, लेकिन ट्रंप की धमकियां जिस तरह से आ रही हैं, ये युद्ध फिलहाल रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: रोहित शर्मा, अशरफ वानी, प्रमित माकोड़े, सूरतवाला जी और सैयद अली अदनान रिजवी जी हमारे साथ हैं। रिजवी जी, जिस तरह से ट्रंप ये कह रहे हैं कि कयामत की रात आज की होगी, ईरान किसी भी तरह की बातचीत क्यों नहीं करता है, पीस डील क्यों नहीं करता है, नहीं डरने का रीजन क्या है? रिजवी साहब
3: जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद जी। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो ट्रंप की धमकियां हैं, ये गीदड़ भभकियों के अलावा कुछ नहीं है। हमने देखा है पिछले 40 दिन के जंग में हर दिन के बयान को उन्होंने बदला है। और जहां तक बात है कि ईरान क्यों नहीं बात करना चाह रहा है, आपका जो सवाल है, तो आप देखिए कि ईरान नेगोशिएशन टेबल पर था, ईरान बातचीत ही कर रहा था। उसके ऊपर दो दो मरतबा, एक बार नहीं दो बार, उसके ऊपर बातचीत के दौरान उस पर हमला होता है और यहां तक कि आयतुल्लाह खामनेई को शहीद किया जाता है। तो ईरान है कि जो बात कर रहा है, लेकिन हमला जो है वो अमेरिका की तरफ से हो रहा है। और इसी के साथ साथ जो सीज़फ़ायर कबूल किया है 40 दिन के बाद, तो ईरान ने ही कबूल किया है। इस 60 दिन के दौरान न जाने कितनी मर्तबा अमेरिका ने सीज़फ़ायर का उल्लंघन किया, चाहे वो लबनान में इसराइल की तरफ से हो, चाहे कहीं और भी हो। तो खुलासा यह है कि ये जो है अमेरिका की धोखेबाजियां हैं जो उसने जो है हर जगह पर मचा रखी है। आखिरी बात जो आपने कही कि क्यों नहीं डर रहा है, उसका साफ सा और आसान जवाब है, ईरान के पास करबला है। इमाम हुसैन का दर्स है कि हमें झुकना नहीं है, हमें कोई डराने आएगा, धमकी से हमसे बात करने आएगा, हम झुकेंगे नहीं। और अब जो है, जो अभी बात कही जा रही थी कि जो डेथ टू अमेरिका है, अमेरिका मुर्दाबाद है, ये अब क्यों जरूरी हो गया है, इसके बारे में हमने बात बारह बात की है कि इसका मतलब क्या है। वो अमेरिका की अब जो अपने दोस्तों का भी ख्याल नहीं रख रहा है, एक नहीं दो नहीं तीन तीन हिंदुस्तानी शिप पर हमला करके हमारे तीन हिंदुस्तानियों को शहीद किया है, मारा है, इससे बड़ी
2: आतंकवादी
3: जी जी
2: उन शिप्स पे तो ईरान की तरफ से हमला हुआ है ना।
3: ये मेरे ख्याल से शायद आप तक रिपोर्ट नहीं पहुंची कि अभी जो कल जो हमला हुआ है 10 तारीख को, ये अमेरिका ने हमला किया और अमेरिका ने इसको एक्सेप्ट किया है और शहीद जो किया है वो ईरान तीन लोगों को। ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई, ओमान ने 21 लोगों को बचाया है। तो ये जो अमेरिका की तरफ से एक झूठ जो है,
2: ठीक है, हम सभी मेहमानों से बातचीत जारी रखेंगे। ईरान पर आज की रात कयामत की रात है, क्योंकि ट्रंप ने सबसे बड़े हमले करने की आज धमकी दी। होते हैं हाजिर, आप देखते रहिए 10 तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
2: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाई टेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
3: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
2: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
4: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
5: AU सोच बदलो और बैंक भी।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
10: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
11: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
9: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
12: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
10: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
9: जहां खबर वहां खबरदार।
13: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
9: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल।
15: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी।
9: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल।
15: CBSE के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
9: छात्रों को दिया मंच।
15: उज्मा हमारे साथ कोटा से और अदिति मुंगेर से हैं और तानिया कोटा से हैं और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
16: मैम ये देखिए, इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
17: IIT मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
9: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर।
15: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक, और अब सरकार की तरफ से CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
9: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।
18: सीज फायर के बाद उम्मीद थी कि हालात संभलेंगे, लेकिन अमेरिका ने अपने हेलीकॉप्टर को टारगेट बनाए जाने के बाद ईरान पर फिर से हमला बोला है। सीज फायर के बाद जारी लड़ाई का आज दूसरा दिन है। अमेरिकी फौज ने ईरान के बंदर अब्बास, केशम, हिंगम, कंगन, गुरगान बंदरगाह, सिरी, मिनाब और असलूह एह पर भी भारी बमबारी की है। ईरान की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक केशम और हिंगम में मिसाइल टांगे गए हैं। कंगन और गोरेगन बंदरगाह पर भी कई धमाके सुने गए हैं। IRNA की माने तो बंदर अब्बास में लगातार दूसरे दिन अमेरिका ने हमला किया है। आज वहां एयरपोर्ट और एयरबेस को निशाना बनाया गया है। धमाके मिनाब शहर में भी सुने गए हैं। यह वही शहर है जहां सीज फायर से पहले हुई लड़ाई में एक धमाके में 165 से ज्यादा स्कूली बच्चों की मौत हुई थी। बीती रात ट्रंप का बयान आया, उन्होंने कहा कि अमेरिकी फाइटर जेट लगातार ईरान के आसमान के ऊपर मौजूद हैं, बमबारी की पूरी तैयारी है।
19: But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today. In case you miss, if in case you don't turn on your television set, and we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid precedents. I have to say that.
18: Trump ke is bayan ke chand ghante baad hi Iran mein dhamake par dhamake hone lage. Aaj tak bureau.

वही हॉर्मुज जहां से दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है, जहां एक दिन की रुकावट भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। उस रूट पर फिर से ताला लग गया, फिर से दुनिया की ऊर्जा की सांस थम गई, फिर से यहां के समंदर में उबाल आ गया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीदों के बीच अचानक फिर से टकराव बढ़ गया। हमलों और जवाबी हमलों के बीच ईरान ने फिर चेतावनी दी है कि हॉर्मुज के रास्ते जहाजों की आवाजाही खतरे से खाली नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के नक्शे पर सिर्फ एक सकरा समुद्री रास्ता नहीं है, ये वो रास्ता है जहां से खाड़ी देशों का तेल दुनिया तक पहुंचता है। ईरान एक तरफ, ओमान दूसरी तरफ और बीच में करीब 40 किलोमीटर चौड़ा यह समुद्री रास्ता। लेकिन इसकी अहमियत इसकी चौड़ाई से कहीं ज्यादा है, क्योंकि रोजाना लाखों बैरल कच्चा तेल और भारी मात्रा में LNG इसी रास्ते से गुजरती है।

पिछले टकराव के दौरान भी यही हुआ था। जहाजों की आवाजाही बेहद सीमित हो गई थी, कई तेल टैंकर रुक गए थे, बीमा कंपनियों ने जोखिम बढ़ा दिया था। नतीजा, दुनिया भर में तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ा। हॉर्मुज बंद होने का मतलब सिर्फ खाड़ी क्षेत्र की समस्या नहीं है, इसका असर एशिया से लेकर यूरोप तक पहुंचता है, क्योंकि भारत, चीन और जापान जैसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों की सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ सकता है। अमेरिका की तरफ से लगातार कहा गया है कि वो समुद्री रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अमेरिकी सेना ने पहले भी दावा किया था कि उसके ऑपरेशन की वजह से कई वाणिज्यिक जहाज सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज से गुजर पाए, लेकिन ईरान का रुख बिल्कुल अलग है। तेहरान साफ संकेत दे रहा है कि अगर सैन्य दबाव जारी रहा तो हॉर्मुज को दबाव बनाने के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की नहीं है, असली लड़ाई उस रास्ते की है जिससे दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था चलती है। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ ईरान की चेतावनी, और बीच में फंसा है दुनिया का तेल बाजार। और अगर ये संकट लंबा चला तो असर सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी गर्मी दुनिया के हर उस देश तक पहुंचेगी जहां पेट्रोल, गैस और महंगाई की चिंता है। सुमित चौधरी और प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका। सबसे बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, अमेरिका ईरान युद्ध की, और सभी मेहमान हमारे साथ हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, उनसे बात जारी रखें। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद पूरी दुनिया की नजरें अगले कुछ घंटों पर टिकी हुई हैं। सवाल यही कि ट्रंप के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? क्या यह हमला इतना बड़ा, इतना भयानक होगा कि महायुद्ध में बदल जाएगा? क्या यह हमला पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा? क्योंकि ट्रंप की धमकी का पलटवार करते हुए ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने सरेंडर करने की बात और बड़ी शर्त रख दी है। ईरान ने कहा है कि सरेंडर करेंगे ट्रंप।
4: डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की सबसे बड़ी धमकी। हमला हुआ तो विनाशकारी होंगे परिणाम। खाड़ी में अमेरिकी अड्डे का सर्वनाश होगा। खाड़ी में इलॉन मस्क के दफ्तर होंगे निशाना। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सहयोगी टारगेट। ईरान का दावा, ट्रंप को करना पड़ेगा सरेंडर। अमेरिकी हमलों का जवाब देते हुए बीते 48 घंटों में ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की। दावा यही है कि ईरानी हमलों ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भारी तबाही मचाई है। ये सिर्फ ट्रेलर है। अगर अमेरिका ने कोई नई हिमाकत की तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की तबाही का तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी के बाद ईरान के सांसद इब्राहिम रिजाई ने दावा करते हुए बड़ी भविष्यवाणी की है। इस लड़ाई में निसंदेह अमेरिका को ही आत्मसमर्पण करना होगा। अब ट्रंप के पास दो ही रास्ते हैं, या तो उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा या उन्हें हार माननी होगी। यही नहीं, ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी उद्योगपति इलॉन मस्क की कंपनी से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की धमकी दी है। ईरानी सेना ने कहा है कि इजराइल, कतर, जॉर्डन, यूएई और ओमान में मौजूद स्टारलिंक ग्राउंड स्टेशन, साथ ही स्पेसएक्स से जुड़े प्रतिष्ठान जिसमें अल्फा धाबी और मुबाडाला शामिल हैं, ये ईरान की टॉप हिट लिस्ट पर हैं। ईरान के एक वरिष्ठ सांसद ने भी ट्रंप को सीधी धमकी दी है। अगला युद्ध इस इलाके से बाहर भी फैलेगा। ट्रंप को ये समझना होगा कि कोई भी नया हमला इस इलाके तक अब सीमित नहीं रहेगा। हम लड़ने से नहीं डरते, देखते हैं क्या होता है। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी नए हमले को लेकर चेतावनी दी है। ईरानी लोग पहाड़ों की तरह अडिग और दृढ़ खड़े हैं और उन्होंने ईरान के मूल सिद्धांतों की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प लिया है। हमारे लोगों को ट्रंप या इस तरह के भ्रष्ट लोगों से मिलने वाली धमकियों का कोई डर नहीं है। ईरानी राष्ट्र अपने धर्म और मातृभूमि के लिए आत्म बलिदान में ही गरिमा और मुक्ति का सच्चा अर्थ देखते हैं। अमेरिका और उसके दुष्ट राष्ट्रपति को ये समझना चाहिए कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में रणनीतिक समीकरण और सुरक्षा व्यवस्थाएं कभी भी पूर्व स्थिति में वापस नहीं आएंगी। ईश्वर की कृपा से ईरान पश्चिम एशिया क्षेत्र में अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील ठोक देगा। किसी भी दुश्मन के आक्रमण का करारा और विनाशकारी जवाब देने के लिए हमारे लोगों और सशस्त्र बलों के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के उस दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने ईरानी सेना के टॉप कमांडरों के साथ पीस डील को लेकर बातचीत की बात कही थी। IRGC ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ पीस डील को लेकर कोई बातचीत नहीं चल रही है, न तो पीस डील फाइनल होने के एकदम करीब है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका के साथ किसी पीस डील का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ट्रंप भरोसे के काबिल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के वित्त मंत्री बेसेंट ने दावा किया है कि ईरान अगर मिडल ईस्ट में अमेरिकी सहयोगियों पर हमला करता है तो नुकसान की भरपाई ईरानी खातों से की जाएगी। मतलब साफ है कि ईरान किसी भी कीमत पर हथियार डालने को तैयार नहीं है। ईरान की नीति और नियत यही है कि अमेरिका के खिलाफ आखिरी दम तक युद्ध लड़ेंगे। आज तक ब्यूरो।
3: अमेरिका ईरान के बीच स्थिति बेहद भयावह है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यह धमकी कि आज की रात हम बहुत भीषण हमला ईरान पर करेंगे। प्रमित माकोड़े हमारे साथ इस वक्त हैं, प्रणय उपाध्याय और अशफ वानी हमारे दो संवाददाता। लेकिन बड़ी खबर इस समय आ गई है और उसके बाद हम बात करते हैं यूरोपीय कमीशन के उपाध्यक्ष का एक बड़ा बयान इस समय आ गया है और अमेरिका ईरान युद्ध के मद्देनजर ये कहा गया है कि ताज़ा स्थिति पर ईरानी विदेश मंत्री से हमने बात की है, हम पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं, फिर से युद्ध पूरे क्षेत्र के लिए बहुत भारी पड़ेगा ये कहा है, खाड़ी देशों पर हमले बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतलब अगर अशरफ यूरोपीय कमीशन की तरफ से इस तरह का बयान आता है तो क्या ट्रंप पर कोई दबाव इस समय होगा या वाकई आज की रात ईरान पर होगा भीषण हमला?
1: सही, अगर यूरोपीय देशों की किसी भी बयान को देखा जाए तो उसका कोई असर नहीं है, ना ही डोनाल्ड ट्रंप पर और ना ही ईरान पर। हाँ भरने में जो उनकी आदत रही है, कभी अमेरिका के पीछे चलते हैं, कभी यूक्रेन के पीछे चलते हैं, तो उनकी कोई वहां पर कोई भूमिका भी नहीं है और कोई असर भी उनके बयान का नहीं है। हाँ, अगर असर है तो वो सिर्फ मात्र दो बयानों में है, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जाता है और जो आईआरसी की तरफ से कहा जाता है। और उन दो में से अगर वजन किसी के बयान में होता है वो आईआरसी, वो साबित हुआ है 28 फरवरी के बाद उन्होंने जो कहा उस पर खड़े उतरे और उसी तरह की कार्रवाई की जिस तरह की कार्रवाई की उन्होंने धमकी दी, ये डे वन से उनकी बात सामने आई है। लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए तो पिछली बार भी कई बार मैंने आपको जो है ऐसी बातें कही जो बिल्कुल बाकियों के एनालिसिस से हटके ही, इसीलिए मैं आज अपनी व्यक्तिगत राय यही कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये धमकी भरी है, आज कोई भयानक रात होने वाली नहीं है। जितना हमला करना था अमेरिका को, दो हमले कर चुका है, उसकी जवाबी कार्रवाई ईरान ने की है। ये प्रेशर टैक्ट था कि अब किसी तरह से ईरान नहीं मानता है, लेकिन अब शायद डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के जो भी एडवाइजर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनको ये साफ हो गया है कि ईरान जो है वो कोई भी दबाव में आने वाला नहीं है, उनके साथ नरमी से आगे आना पड़ेगा और कोई डील करनी पड़ेगी।
3: बिल्कुल अशरफ। प्रणय उपाध्याय हमारी संवाददाता। प्रणय, ट्रंप की इस तरह की धमकी क्या ये ईरान के उस रवैये के बाद है जब ईरान ये कहता है कि आप हमारी बात मानो और हम आपकी कुछ शर्तें मानेंगे, क्या अब ट्रंप को यह लगने लगा है प्रणय कि हमले के अलावा कोई रास्ता बातचीत का नहीं बचा है?
5: देखिए, ये साफ नजर आ चुका है अब कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक एस्केलेशन ट्रैप में फंस चुके हैं, एक ऐसी स्थिति में फंस चुके हैं ना तो जहां पर हथियारों से कोई समाधान निकल पा रहा है, ना ही बातचीत की मेज पर कोई रास्ता निकल पा रहा है। और अब उनकी जो छटपटाहट है, घबराहट है, या कह लीजिए उनकी परेशानी चिंता भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि वो हमेशा कहते रहे कि वो अमेरिका के अंदर कोई नई लड़ाई नहीं शुरू करना चाहते हैं, वो एक लंबे संघर्ष में अमेरिका को नहीं उलझाना चाहते हैं। लेकिन महज 17 दिन बाद सईद ये लड़ाई करीब करीब 4 महीने का वक्त पूरा कर लेगी, यानी ये लड़ाई कितनी लंबी खींच चुकी है और इसमें और लंबा खींचने की आशंका अब बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ईरान से कुछ ही, ईरान से बिल्कुल सटा हुआ है इराक, जहां पर अमेरिका ऐसे ही दाखिल हुआ था एक छोटे ऑपरेशन के लिए, एक स्विफ्ट ऑपरेशन के लिए, और 10 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी भी इराक के अंदर अमेरिका की फौजें उलझी हुई हैं और वहां से पूरी तरह से विड्रॉल नहीं हो पाया है। लड़ाइयां शुरू करना आसान होता है, लड़ाइयों को खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 4 जुलाई से पहले, यानी अमेरिका की जो 250वीं वर्षगांठ है उससे पहले इसको खत्म करना चाहते हैं, और ये बात ईरान भी जानता है, और इसीलिए ये उलझाव जो है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ा रहा है और ये उसी दबाव का नतीजा है।
3: ठीक है प्रणय, अशरफ आपसे तो हम बात करेंगे, लेकिन प्रमित जी अमेरिका में ट्रंप के इस रवैये को लेकर और ईरान के साथ इस युद्ध को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया है आम लोगों में और वहां की बिजनेस कम्युनिटी में?
6: देखिए, एक बड़ी समस्या तो पूरी विश्व भर में है, इंडिया में भी है और अमेरिका में भी, दैट इज द राइज ऑफ इन्फ्लेशन। आज जो 4 महीने पहले जो गैस स्टेशन, जो यहाँ इंडिया में पेट्रोल पंप कहते हैं, यहाँ जो गैस स्टेशन में वो पर
7: जी
6: गैलन गैस वॉज $2.5, अब वो ऑलमोस्ट $4.5, $5, यानी कुछ अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट्स हैं। तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि जब गैस की प्राइसेस बढ़ती है तो आपके ग्रोसरी प्राइसेस से लेके तमाम शॉपिंग मॉल में जब भी आप खरीदी करने जाते हैं तो यू आर क्लियरली सीइंग दैट हिट। और उसकी वजह
7: जी
6: से
7: जी
6: ट्रम्प से लेकर सभी डेमोक्रेटिक पार्टी ने काफी दबाव बनाया हुआ है, एंड रिपब्लिकन सेनेटर्स एंड कांग्रेसमैन आर ऑल्सो पुटिंग द सेम प्रेशर दैट दिस इज गोइंग टू बी वेरी टफ ड्यूरिंग द मिड टर्म इलेक्शन। नवंबर के फर्स्ट वीक में हमारे मिड टर्म इलेक्शन है और ये जल्द से जल्द इसको खत्म करना चाहेंगे। लॉन्ग टर्म वॉर तो किसी प्रकार का नहीं करेंगे। मुझे मेरी रीडिंग तो यही कहती है अभी कि ये इट इज नॉट गोइंग टू बी अ फुल स्केल वॉर, इट इज गोइंग टू बी अ कंट्रोल्ड एस्केलेशन, जिससे कि प्रेशर बना रहे और निगोशिएशन टेबल पर
7: जी
6: आज आईआरजीसी को झुकना पड़े। प्रॉब्लम यह है कि ट्रंप की, इनको ये क्लियर नहीं है कि अभी कौन हु इज कंट्रोलिंग दी निगोशिएशन निगोशिएशन ऑन ईरान साइड। एक वहां की पॉलिटिकल
7: जी
6: एस्टेब्लिशमेंट कुछ अलग बात कहती है, वहां की आईआरजीसी अलग बात कहती है, वहां की डिप्लोमेटिक जो चैनल से अलग कहते हैं। तो मुश्किल अमेरिका के अभी वो है कि हु इज हैविंग दी रियल कंट्रोलिंग हैंड ऑन देयर साइड, और आईआरजीसी बार बार ये
7: ठीक
6: दिखाता है कि कंट्रोल किसके पास में है। तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, बट फिर भी मैं कहूंगा कि फुल स्केल वॉर होता है नहीं दिखता है, पर कंट्रोल्ड एस्केलेशन जरूर होगा।
7: ठीक है प्रणय, अशरफ और प्रवीत जी दोनों ये बोलते हैं कि बहुत वो जो कयामत की रात और भीषण हमला ये सब नहीं होगा, आपकी क्या राय है?
5: देखिए मैं भी ये मानता हूं, मैं अशरफ से इस बात को लेकर सहमत हूं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक दबाव का आवरण जरूर बनाते हैं, लेकिन वो जो जो कार्रवाई है उसके अंदर वो एक कैलिब्रेशन रखना चाहते हैं, और इसीलिए इस एस्केलेशन मैट्रिक्स में यदि आप देखें, यानी एक कदम के बाद दूसरे में कितना ज्यादा होगा, वो उनके बयानों के अंदर आपको जरूर लगता है कि हम ईरान की सभ्यता मिटा देंगे और हम ऑब्लिटरेट कर देंगे, लेकिन ये शब्द बड़े बड़े लगते हैं। जमीन के ऊपर जो ऑपरेशन है उसके अंदर एक कैलिब्रेशन देखने को मिल रहा है, वो एक स्ट्रैटेजी के तहत ईरान के रडार स्टेशंस को, ईरान के सर्वेलेंस स्टेशंस को, उनको टारगेट कर रहे हैं, यानी एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी यहां पर नजर आती है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के अंदर तो ऐसा लगता है कि सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ईरान तो गिड़गिड़ा कर उनके कदमों में गिर ही चुका है उनके बयानों में, लेकिन अभी तक कोई नतीजा फिर भी नहीं निकला है, और इसीलिए लोगों को यह लग रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ हैं वो कुछ और रहा है, तो ये कंफ्यूजन क्यों है और कैसे है?
7: अशरफ, प्रणय, प्रमीत जी, प्रमीत मकोड़े जी, बहुत धन्यवाद आज तक पर आप आए, आपने समय निकाला, अपनी राय रखी, बहुत धन्यवाद आप तीनों का। और आइए अब हम आपको दिखाएं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी के बाद सारी दुनिया के सामने उनका असली चेहरा आ गया है। ट्रंप ने जिस तरह से ईरान के खार द्वीप पर कब्जे का ऐलान किया उससे अमेरिका का लालच और लालची स्वभाव ट्रंप का साफ नजर आ गया। ट्रंप के इस बयान से यह भी साफ हो गया कि ट्रंप का उद्देश्य दुनिया को ईरान के न्यूक्लियर खतरे से बचाना कभी था ही नहीं, बल्कि अमेरिका की नजर ईरान के तेल और गैस के भंडारों पर और बाजारों पर थी, और उन बाजारों पर कब्जा करके अपना राज चलाने की मंशा ट्रंप की थी।

0: ट्रंप के दिमाग में क्या है, आज खुलासा हो गया। ट्रंप ने ईरान के साथ डील क्यों नहीं की, राज खुल गया। अमेरिका के टारगेट पर ईरान परमाणु प्रोग्राम नहीं, तेल और गैस है। ट्रंप का मकसद सिर्फ और सिर्फ खाद द्वीप पर कब्जा करना है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट करते हुए एक और बड़ा ऐलान कर दिया। ट्रंप ने पहली बार अपना इरादा साफ करते हुए कहा है कि वो खाद आइलैंड पर कब्जा करने वाले हैं। ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ वही होने वाला है जो वेनेजुएला के साथ हो चुका है। जंग के इतने वक्त बाद दुनिया के सामने कहीं न कहीं ट्रंप का असली चेहरा आ चुका है। बात दुनिया को ईरान के न्यूक्लियर बम से बचाने की नहीं थी, असलियत में ट्रंप का लालच ईरान का तेल था। आपको बता दें कि खार्क आइलैंड फारस की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा टापू जरूर है, लेकिन ये पूरे ईरान की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी लाइफलाइन है। ईरान अपने कुल कच्चे तेल का लगभग 90% हिस्सा अकेले इसी द्वीप पर बने विशालकाय टर्मिनल के जरिए पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। गहरे पानी के आसपास होने के कारण यहां दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर आकर सीधे खड़े हो सकते हैं, जिससे ईरान के लिए कच्चे तेल की सप्लाई और कमाई का रास्ता 2400 घंटे खुला रहता है। अगर कभी भी इस द्वीप पर हमला होता है या कोई बाहरी ताकत इस पर कब्जा कर लेती है तो ईरान का तेल बाजार पूरी तरह ठप हो जाएगा, उसकी तिजोरी खाली हो जाएगी और ईरान जीते जी आर्थिक रूप से पूरी तरह कंगाल होने की कगार पर पहुंच जाएगा। ट्रंप कह रहे हैं कि आने वाले कुछ ही समय में अमेरिका ईरान के खाड़ द्वीप और उनके दूसरे तेल से जुड़े बुनियादी ढांचों पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा, जिसके बाद ईरान के तेल और गैस बाजारों पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल होगा, ठीक वैसे ही जैसे वो वेनेजुएला के मामले में कर चुके हैं। जंग की शुरुआत से ही वॉशिंगटन दुनिया को ये समझाता आया था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी मानवता के लिए खतरा है और उसे रोकना जरूरी है, लेकिन ट्रंप के इस बयान ने साबित कर दिया है कि वो सब सिर्फ एक मुखौटा था। असल खेल तो हमेशा से तेल के बाजारों पर कब्जा करने और अपनी मर्जी से तेल की कीमतें तय करने का था। ट्रंप के इस खुले लालच ने ये साफ कर दिया है कि एक सुपर पावर देश अपनी आर्थिक सनक और संसाधनों की भूख के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसके लिए एक पूरे देश को मलबे के ढेर पे ही क्यों ना तब्दील करना पड़े। आज तक ब्यूरो।
1: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोप्टस।
4: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
5: You use AI every day, but what if you built what it runs on? WGU's online software engineering degree helps you turn your coding skills into a future-shaping career. Learn more at WGU.edu.
6: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
7: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू,
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: Such an arrogant person. Everybody one must understand that if for his for Abhishek Banerjee, the party has been destroyed today. We have lost it.
6: Everybody is saying this.
5: Everybody is saying. I have not said. I am in the back days of the party. I was with the Mamata Di. I said again. I am saying. I am with Mamata Di. But Mamata Di has to choose whether Abhishek Banerjee she will keep or she will keep me.
6: That's an ultimatum.
5: Yes. This is I leave it to her.
7: बस तारीख बदली है और तेवर बदल गया। इन्हीं कल्याण बैनर्जी ने 9 जून को तंज किया था कि टीएमसी से बगावत कर रहे लोग ममता बैनर्जी की साड़ी की तारीफ करते थे।
8: Whenever they made the didi was so beautiful, didi your sari is so nice.
7: लेकिन आज अभिषेक बैनर्जी को घमंडी बताकर कोर्ट में उनका केस लड़ने से इनकार कर ममता को खुद में और अभिषेक में किसी एक को चुन लेने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। ममता को कल्याण बैनर्जी की ये गुगली ऐसे वक्त पर आई है जब राजनीतिक गलियारों में इन अटकलों को हवा मिली कि सोनिया गांधी ने ममता बैनर्जी को ये ऑफर दिया कि वो तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय कर दे। 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया और ममता गले मिली थी। 9 जून को सोनिया से मिलने ममता 10 जनपद गई। 10 जून को 10 जनपद पर ही अभिषेक बैनर्जी से राहुल गांधी की मुलाकात हुई। वैसे तो आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने विलय की अटकलों को खारिज किया है, लेकिन ममता के करीबी नेता खुलकर कुछ नहीं कह रहे।
9: कांग्रेस के साथ एक साथ काम करना जरूरी है, इतना मैं बोल सकता हूँ। वो मर्ज होगा कि अलायंस होगा, ये बाद में दिखा जाएगा।
10: These are totally rumors. Yesterday, our communication secretary has already stated that these are baseless things. Of course, Mamata Banerjee ji and Abhishek Banerjee ji when they met Honorable Madam and Rahul Gandhi ji, routine discussion. That is an extension of India Alliance discussion because everybody want to strengthen India Alliance. Everybody want to strengthen the fight against this anti-democratic government.
7: इस बीच तृणमूल के भगदड़ करने वाले नामों में राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबराइक भी शामिल हो गए। उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपा। सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव के बाद इस्तीफा देने वाले वो राज्यसभा के तीसरे तृणमूल सांसद हैं।
11: प्रकाश जी, कैसा काम आपको लग रहा है अभी जब से बीजेपी सरकार आई है, वो कैसा काम कर रही है बंगाल में?
12: अच्छा कर रहा।
7: बागियों की लिस्ट में लोकसभा के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर सस्पेंस है। एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न ने कहा कि ममता मेरे मुश्किल समय में साथ रही है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। लेकिन उन्होंने खेल भावना के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के 12 साल पूरे होने की बधाई भी दी है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included.
1: Oh, yeah.
0: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
3: Shatrughan ji, mera pehla prashn aapse yahi hai. कि आप किस तरफ हैं, क्योंकि कल ये दावा किया गया कि 19 नाम सामने आए हैं और उन 19 नामों में आपका भी नाम है जो एक बागी और अलग संसदीय गुट बनाना चाहते हैं टीएमसी में. क्या आप उस गुट में हैं या आप ममता दी के साथ? जी
4: देखिए, मैं अपनी स्पष्ट वादिता के लिए और अपने खुले स्वभाव के लिए मशहूर हूं या बदनाम हूं, जहां तक बागियों का सवाल है, मुझे तो खुद ही कुछ लोग बागी समझते हैं. और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं. लेकिन जहां तथा कथित बागियों के बीच हमारा नाम गया है, वो तमाम अपने ही लोग हैं, अपने ही दोस्त लोग हैं, अपनी विचार से वो लोग गए वहां पे, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है. लेकिन मेरा नाम उसमें शामिल नहीं है. मैंने कोई दस्तखत नहीं किया है, कोई सिग्नेचर नहीं है, मैंने ना हामी भरी है और ना ही, टू बी वेरी फेयर, उनके लिए मैं सच कहूंगा, उनमें से किसी ने मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया है. हो सकता है कुछ लोग टेकन फॉर ग्रांटेड समझ के आगे बढ़ गए हों, लेकिन किसी ने हमें कांटेक्ट नहीं किया है. और जिन लोगों ने कांटेक्ट किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रगण हों, चाहे अन्य पार्टी के, अन्य जगह के, मैं उनका भी आभारी हूं. उन्होंने बहुत अच्छे मन से, बहुत मेरा भलाई सोच के उन्होंने कहा होगा, निमंत्रण लिया, आमंत्रित किया अपनी ओर. लेकिन मैं इस मुसीबत की घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने, जो हमारी नेत्री हैं या नेता हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया था, आज उनकी इस मुसीबत की घड़ी में मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता हूं. मैंने 3 लाइन व्हिप अपनी तरफ से इशू कर दिया है और वो ये है कि मैं ममता जी के साथ हूं, मैं ममता जी के साथ था और मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ रहूंगा. फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है रास्ता बदलने की या किसी और दिशा में जाने की.
5: अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाते हैं. योगी आदित्यनाथ राम कथा से 2027 की सियासी महाभारत का संदेश सुनाते हैं. जिस अयोध्या का राम मंदिर बनवाकर भी 24 में जाति में वोट बंटने से अयोध्या से जुड़ी लोकसभा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, वहां राम के नाम पर अस्त्र शस्त्र सत्ता और विपक्ष में चलने लगा. पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, लिखा राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई. राम मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज किया. जब लखनऊ में बीजेपी विधायक की तरफ से कराई जाती राम कथा में मुख्यमंत्री पहुंचे तो नया सियासी संदेश सुनाई दिया. योगी आदित्यनाथ कहते हैं निगेटिव ताकतें रावण काल की तरह से उठाएंगी तो उजाड़ करेंगी. क्या योगी का निशाना विपक्ष है, जहां पर वो खर दूषण मारीच ताड़का तक की बात करके एक ऐसी राम कथा का जिक्र करते हैं जिसमें चाचा मामा का नाम आते ही तंजनुमा हंसी आती है. इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं, जब दावा हो रहा है कि हिंदू लड़कियों ही नहीं हिंदू लड़के तक को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, तब मुख्यमंत्री योगी लव जिहाद के खिलाफ श्री राम से सीख लेने को कहते हैं. लव जिहाद ही नहीं बल्कि त्रेता युग में खरभूषण मारीच के जरिए कलयुग में लैंड जिहाद तक का जिक्र योगी आदित्यनाथ करते हैं।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

उसे अदालत में पेश किया जाता है 34 साल पुराने एक मुकदमे के सिलसिले में। सचमुच कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। आदमी मर जाता है पर केस नहीं मरता।

0: की नाम है अपने के?
1: जी तया।
2: कानून का हाथ बहुत लंबा है, व्यक्ति मर जाता है, केस नहीं मरता।
3: सचमुच कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आदमी मर जाता है पर केस नहीं। पर कानून के उसी लंबे हाथ को कब्र में पांव लटकाए इस बुजुर्ग तक पहुंचने में इतना वक्त लग गया कि अब खुद कानून को लगता है कि इसे सजा देना शायद खुद कानून को सजा देना है, लिहाजा इसे पकड़ा, कोर्ट तक लाए, सजा सुनाई, जेल भेजा और फिर छोड़ दिया। कानून के लंबे हाथ को फिलहाल किनारे रखते हैं, आदमी मर जाता है पर केस नहीं। ये लाइन इस बुजुर्ग के जरिए एक सवाल बनकर उछल रहा है, एक ऐसा सवाल जो सिस्टम के लिए है, कोर्ट और इंसाफ के लिए है। कानून के ऐसे लंबे हाथ का क्या फायदा जो किसी के गिरेबान तक तब और उस उम्र में पहुंचे जब ना उसे अपना केस याद हो न जुर्म और यहां तक कि अपना नाम पता। कानून के ऐसे लंबे हाथ का क्या फायदा जो किसी को तब सजा दे जब वो खुद मौत का इंतजार कर रहा हो। कानून के ऐसे लंबे हाथ का क्या फायदा जो उस मुलजिम या मुजरिम को खुद उसके पैरों पर बिना किसी सहारे चलाकर कोर्ट की दहलीज तक ला सके। कानून के ऐसे लंबे हाथ का क्या फायदा जो तब सजा दे जब सजा पाने वाले को इस बात का एहसास ही ना हो कि पुलिस क्या होती है, अदालत क्या, या जेल और घर में क्या फर्क होता है। पर सचमुच कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आदमी मर जाता है पर केस नहीं। कंकाल में तब्दील हो चुके इस बुजुर्ग का नाम दीप राय है। उम्र बताना जरूरी है क्योंकि दीप राय की इसी उम्र से आपको कानून के लंबे हाथ की असलियत समझ में आएगी। दीप राय इस वक्त 85 साल के हैं। अब दीप राय की कहानी सुनाऊं उससे पहले इनकी चंद तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। वो इसलिए क्योंकि इन तस्वीरों को देखते ही आप भी कह उठेंगे सचमुच कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बिहार के वैशाली जिले में मौजूद यह हाजीपुर की एक अदालत है। रोजाना की तरह अदालत में भीड़ थी पर तभी लोगों की नजर एक ऐसी तस्वीर पर पड़ती है कि वो उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाते। दो लोग दीप राय को सहारा देकर कोर्ट के अंदर ला रहे हैं पर दीप राय शायद 5 कदम भी एक बार में नहीं चल पा रहे, थक कर बैठ जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर सहारा मिलता है, फिर कुछ कदम चल पड़ते हैं। दीप राय के आगे आगे 2-3 पुलिस वाले चल रहे हैं, यानी कायदे से इस वक्त दीप राय पुलिस कस्टडी में अदालत में पेश किए जा रहे हैं। कायदे से होना तो ये चाहिए कि इन्हीं पुलिस वालों को दीप राय को शिकंजे में लेकर कोर्ट तक ले जाना चाहिए पर क्या कीजिएगा, पुलिस वालों को भी लगा कि जो शख्स पूरी तरह खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, जो कमर तक झुककर चल रहा है, उसे पकड़कर 100-200 कदम भी कैसे ले जाया जाए। इसीलिए पुलिस वाले आगे आगे चल दिए और दीप राय के रिश्तेदार खुद ही उन्हें पकड़कर पुलिस वालों का काम करने लगे। उम्र का बोझ इतना कि जब दीप राय थक कर बैठते हैं तो घुटने में उनका सिर आ जाता है। खैर, किसी तरह बड़ी मशक्कत के बाद दीप राय अब कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। जाहिर है कोर्ट रूम की तस्वीरें होती नहीं क्योंकि अंदर कैमरा जाता नहीं, तो अब अंदर की कहानी वैसे ही सुना देता हूँ। असल में दीप राय पर हत्या की कोशिश का एक मुकदमा चल रहा है। इल्जाम है कि उन्होंने अपने 8 साथियों के साथ मिलकर अपने पड़ोसी के घर के बाहर शीशे बिछाए और फिर गोलियां चलाई। पर आपको एक बात तो बताना भूल ही गया, ये सब कुछ 34 साल पहले हुआ था। साल था 1992।

0: बेशक कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पर इतने लंबे भी नहीं कि बुढ़ापे में आने वाली मौत को डंडा दिखाकर रोक ले। अब 92 का मामला था, 34 लंबे साल हो चुके थे, तो हुआ ये कि 9 आरोपियों में से 4 मर गए, पर जाहिर है केस थोड़ी मरेगा, तो केस चलता रहा और उन्हीं में से एक ये दीप राय भी थे।
1: ये 1992 का मामला है, रावणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत। एक अदालत राय और अपनी पत्नी के साथ बैठे थे, उनको जानकारी मिली कि उनके घर के जाने वाले रास्ते में ये अभियुक्तों द्वारा शीशा का टुकड़ा बिछाया जा रहा है। इसकी जानकारी मिलते हुए आके विरोध किया, इतना ही बात को लेकर अभियुक्तों ने उन पर गोली चला दी, गोली से वो जख्मी हुए। अनुसंधान हुआ, आरोप पत्र समर्पित किया गया, कुल 9 अभियुक्त थे। ट्रायल के दौरान 4 लोगों का डेथ हो गया, 5 का ट्रायल चला।
0: तो कोर्ट रूम के अंदर 34 साल बाद वकील दलील सब कुछ हुआ, फिर अदालत ने अपना फैसला सुनाया। 51 की उम्र में आरोपी बने दीप राय को 34 साल बाद 85 की उम्र में दोषी करार दिया गया। उनके साथ के बाकी 4 लोगों को भी अदालत ने दोषी माना, सभी को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। अब जाहिर है सजा काटने के लिए जेल ही जाना था।
2: तो जजमेंट होना और जस्टिस होना दोनों दो चीज है, तो आज जजमेंट भी हुआ और जस्टिस भी हुआ 35 साल के बाद, और इससे समाज में एक जो है मैसेज जाएगा कि लोग जो है ये समझ लें कि कानून से हम कभी बच नहीं सकते।
3: जिनको गोली लगी थी वो जीवित हैं या फिर वो भी नहीं?
2: गोली लगी थी अभी, चूंकि इधर उनसे कोई संबंध नहीं, मतलब संपर्क नहीं हो सका है, जिस कारण चूंकि वो बहुत पहले गवाही दे चुके थे, और ये मामला जो है कभी कोई पेटिशन पड़ता था, कोई मर गया उसका एक्सपंज हुआ, तो मुदाले अपना हर तरह का जो है अपना दाव आजमा रहे थे, कभी कुछ पेटिशन दे के जिस तरह से डिले हो, लेकिन अंतिम में जो है न्यायालय ने जो उन लोगों को दोषी पाया।
0: अदालत ने जैसे ही दीप राय को गुनहगार ठहराया, कोर्ट रूम से दीप राय फिर सहारे के सहारे वापस बाहर आए। दीप राय के केस का फैसला आते ही अब मीडिया दीप राय के सामने थी, माइक उनके मुंह पर था और दीप राय कुछ इस अंदाज में मीडिया के सामने बैठे थे। तभी एक सवाल गूंजा, क्या हुआ आज, जज साहब क्या फैसला सुनाए, कोई जानकारी है, कोई जानकारी मिला है?
4: क्या हुआ फैसला? क्या हुआ आज जज साहब, क्या फैसला सुनाए है? जानकारी है? कोई जानकारी मिला है?
0: जाहिर है दीप राय कुछ समझते बूझते तभी तो जवाब देते, मीडिया वाले भी समझ गए तो सब निकल लिए। इसके बाद अब कोर्ट से इसी आलम में उन्हें इस जेल तक पहुंचाया जाता है। खबर तो ये भी है कि खुद जेल स्टाफ ने जब दीप राय की शक्ल में अपने नए कैदी को पहली बार देखा तो वो भी हैरान कम परेशान ज्यादा नजर आए। हैरान इसलिए थे कि इसने इस उम्र में क्या कर डाला, और परेशान ये सोचकर कि इसकी देखभाल कैसे करेंगे। पर शायद दीप राय और उनके बुढ़ापे को देखकर खुद कोर्ट को लगा कि जो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है, जो सहारे के बिना चल नहीं सकता, जिसके मुंह तक कोई निवाला न पहुंचाए तो खा नहीं सकता, ऐसे में जेल में वो रहेगा कैसे। लिहाजा अदालत ने दीप राय की सजा 10 साल की बजाय 3 साल कर दिया। कानून में 3 साल की सजा का एक अलग मजा है। 3 साल की सजा पाने वाला कोई भी मुजरिम आसानी से जमानत पर बाहर आ सकता है, लिहाजा दीप राय को 3 साल की सजा देकर अदालत ने एक साथ 2 काम किया, जेल वालों की परेशानी दूर कर दी और जमानत पर दीप राय को बाहर निकाल कर आखिरी घड़ी में उसकी देखभाल के लिए उसे उसके परिवार को सौंप दिया।
2: जो दीपा राय है उनकी उम्र आज की तिथि में 85 वर्ष थी, तो न्यायालय ने उनकी उम्र और बीमारी को देखते हुए, चूंकि वो चलने फिरने से मजबूर थे, न्यायालय में भी जो आज उनको प्रस्तुत किया गया जेल हाजत से लाकर तो उठा करके लाया गया था, तो न्यायालय उनकी स्थिति को देखते हुए न्यायालय ने उनको 3 वर्ष की सजा दी है।
0: ये हाजीपुर की वही जेल है, ये मोटरसाइकिल उसी जेल से बाहर आ रही है। हालांकि बाइक पर 3 लोगों का बैठना ट्रैफिक नियम का उल्लंघन है, लेकिन यहाँ एक मजबूरी है क्योंकि जेल से घर तक की दूरी काफी दूर है, लिहाजा एक रिश्तेदार बाइक चला रहा है, बीच में दीप राय बैठे हैं और पीछे दूसरा रिश्तेदार उन्हें पकड़ कर बैठा है। जेल से दीप राय अब अपने घर आ चुके हैं, चारपाई पर लेटे हैं। परिवार के लोग उनकी सेवा में लगे हैं। शायद इस वक्त उन्हें खाना खिलाया जा रहा है। एक रिश्तेदार उन्हें खाना खिला रहा है, बाकी दो लोटा पकड़े सामने खड़े हैं। 85 साल पहले दीप राय जब पैदा हुए होंगे, तब शायद उन्होंने उस वक्त वायरल या वायरल बुखार तक के बारे में नहीं सुना होगा। अब उम्र के इस पड़ाव पर मीडिया उन्हीं दीप राय से उनके वायरल होने की बात पूछ रही है। सचमुच ये वाली अजीब बातचीत है।
5: क्या नाम है आपका?
6: और यकोब
5: है?
6: यकोब
5: ना, एक बार खाली कह दहु।
6: जस्ट कुछ कही हो।
5: जैसे एक बार कहू तो फिर कभी कहेला ना हो, तो हमरा ई बता।
6: हां,
5: ये अंतिम बार पूछ रहलियो हो। तोरा घरे पोता दाकी लतियो आयल हतियो तोरा हाल चाल लेवेला। अखनी तू पूरा देश में वायरल होए लख, अभी तोरा से हाल चाल लेवेला आलियो हो। की नाम है अपने के?
6: दीप राय।
5: कहाँ थे आप कल्हे?
6: जेल में।
5: जेल में क्यों डाल दिया था आपको?
6: सरकार डाले थे आपको।
5: सरकार डाला था? तो सरकार, आपने कोई घटना किया था कि सरकार आपको जेल में डाल दिया? कोई आप नहीं थे
6: ना।
5: बाबा, आप कोई घटना में नहीं ना थे
6: ना।
5: तो फिर आपको क्यों डाल दिया? आपने जज साहब को कहा नहीं?
6: आपकी कहें
5: उनको, कहते आप कि हाँ हम कोई अथी में नहीं है, हम के अथी मारपीट में नहीं थे, हमको कहला जेल भेज रहे हैं।
6: जज सुना?
5: जज नहीं सुना था? जज नहीं सुनता है? कहे नहीं सुनता है जज? आपका वकील था?
6: जाकर बतियाइएगा।
5: केकरा से?
6: जज।
5: जज से हम कहला बतियाएंगे? हम तो आपके पास आए हैं, आपका बात सुनने आए हैं।
6: हमारा बात करते
5: हैं। चलो ठीक है, आप सेहत के सेहत ठीक हो, मन मिजाज खुश हो, घर आ गया तो ठीक लगई छो, घर परिवार के बीच में आ गए तो ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है। अच्छा, कुछ खाना उना खाए थे कल? कुछ खाना उना खलू रह कल है?
0: अब दीप राय के बाद मीडिया का रुख उस घर की तरफ था, जिस घर के लोगों पर 34 साल पहले दीप राय और उनके साथी या रिश्तेदारों ने गोलियां चलाई थी। उनसे भी पूछा गया कि कोर्ट के इस फैसले पर वो क्या कहते हैं, क्या उन्हें कानून के लंबे हाथ ने इंसाफ दिलाया।
7: 34 साल के लंबे इंतजार के बाद में आखिरकार आप लोगों को कोर्ट ने न्याय दे ही दिया, चार लोगों को जेल भेज दिया गया। लेकिन सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार 34 साल पहले 1992 में क्या हुआ था।
6: सवेरे सवेरे शीशा बिछाने आए घर के बगल में, दूरा पर आ गए। वही
7: क्यों शीशा बिछा रहे थे?
6: अपना बदमाशी से और क्या,
7: मतलब वो दिखाना चाहते थे कि
6: हाँ हम बदमाश हैं, रंगदार हैं और क्या, इनको घर से ना निकले दें, निकले तो शीशा पर अपना जाए।
7: क्या हुआ था फिर उसके बाद?
6: उसके बाद लोग कहें शीशा क्यों बिछाता है, इस पर कहा जब मारो गोली, गोली चलाएं, चार अदालत रहा है, शंभू रहा है, उदेश रहा है, राम उदेश, राम सखी देवी, चार गो के लगा।
7: उसके बाद क्या हुआ?
6: उसको बाद यहाँ गया, थाना गया, थाना यहाँ डॉक्टर के भेजे।
7: आप लोग कोर्ट का जो फैसला आया उससे संतुष्ट है?
6: अब जज साहब जो कहीं,
7: आपको लगता नहीं है कि ये जो कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया वो पहले आना चाहिए था? आरोपी जो थे उस समय उनको सजा मिलती तो अलग बात रहती, 34 साल बाद चीज़ें बदल गई।
6: अब सरकार का जो कानून या नियम है वही ना होगा, हम लोग के हाथ में है।
0: तीन गोली खाने वाले राम सिंह को क्या इंसाफ मिला? 34 साल पहले गोली चलाने वाले दीप राय के साथ क्या उसी कानून ने इंसाफ किया? कायदे से इस केस में पीड़ित और अभियुक्त दोनों के साथ नाइंसाफी हुई, पर फिर भी कहने सुनने में अच्छा लगता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। भले ही आदमी मर जाए, केस नहीं मरता। विकास कुमार, वैशाली, आज तक। कत्ल के एक मुजरिम को अदालत उम्र कैद की सजा सुनाती है, मगर वो सजा के बीच ही पेरोल पर जेल से भाग जाता है। इसके बाद पूरे 12 साल बीत जाते हैं, वो पुलिस के हाथ नहीं लगता। हालांकि इस दौरान वो छुपता नहीं है, बल्कि मुंबई में बड़े बड़े सितारों के साथ फिल्मों की शूटिंग कर रहा होता है। ...2018 में एक फिल्म आई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। बड़े बजट की इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसे बड़े सितारे थे। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाई, पर जब ये फिल्म बनी तब खुद इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और यहां तक कि अमिताभ बच्चन और आमिर खान तक को ये पता नहीं था कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में सचमुच का एक ठग काम कर रहा है। इस फिल्म के चार साल बाद रणवीर सिंह और बोमन ईरानी स्टारर एक और फिल्म जयेश भाई जोरदार आई। 2022 में आई इस फिल्म में भी वो ठग काम कर रहा था, पर किसी को उसके बारे में जरा भी भनक नहीं लगी। 2025 में एक और फिल्म आई मेट्रो इन दिनों। आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान और पंकज त्रिपाठी जैसे स्टार के साथ बनी इस फिल्म के गाने काफी मशहूर हुए। डायरेक्टर अनुराग बासु की इस फिल्म में भी वो ठग काम कर रहा था, पर क्या मजाक जो कोई उसकी असलियत जान पाता। उसी साल यानी 2025 में साउथ के दिग्गज सुपरस्टार मोहनलाल की एक फिल्म आई L2 एम्पुराना। इस फिल्म में भी वो ठग मौजूद था, पर कोई उसकी असलियत पहचान नहीं पाया। यकीन मानिए, नटवरलाल जिंदा होता तो खुद उसका फैन हो जाता। फिल्मी पर्दे और वेब सीरीज के जरिए इस अदाकार को देश भर में करोड़ों लोगों ने देखा होगा, पर इन करोड़ों निगाहों से गुजरने के बावजूद गुरुवार 21 मई से पहले खुद अहमदाबाद पुलिस की नजरें कभी इसे पहचान नहीं पाई। इस ठग अदाकार की तारीफ तो बहुत हो गई, अब तारुफ भी करा देते हैं। इनका पहला नाम है हेमंत नगीन दास पुरुषोत्तम दास मोदी। इनका दूसरा और छोटा नाम है हेमंत मोदी। तीसरा नाम है स्पंदन मोदी और इनका फिल्मी नाम है ट्विंकल दबे। इतने नामों वाला ये शख्स, इतने फिल्मी चेहरों वाला ये शख्स जानते हैं है कौन? एक कातिल जिसे कत्ल के इल्जाम में 18 साल पहले उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन सजा पूरी करने से पहले ही वो जेल से ऐसा भागा कि अहमदाबाद पुलिस उसे ढूंढ ही नहीं पाई। और कमाल ये कि वो छुपा भी नहीं, बल्कि फिल्मी पर्दों और टीवी के पर्दों पर बार बार अपना चेहरा अलग अलग किरदारों में दिखाता रहा, पर कोई उसे पहचान ही नहीं पाया।
8: कल अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक हेमंत नगीदास मोदी करके 12 साल से पैरल जब आरोपी को अहमदाबाद से पकड़ डाला है। उसमें रियलिटी ये है कि वो 2005 में अहमदाबाद के मर्डर के केस में उसे सजा हुई थी। उसके बाद वो 2014 तक जेल में थे, बाद में वहां से पैरल जंप हुआ। पैरल जंप के बाद 12 साल से वो वांटेड था।
0: तो डीसीपी साहब से इस ठग की जिंदगी की झलकियां तो आपने सुन ली, अब चलिए पूरी फिल्म दिखाता हूँ। बात 2005 की है, तब हेमंत मोदी अहमदाबाद में रहा करता था, कॉलेज में पढ़ रहा था, जर्नलिस्ट बनना चाहता था। कुछ दिक्कतें आई तो वकील बनने की सोची, पर इत्तेफाक से इसी दौरान नरेंद्र उर्फ नानो यशवंत कामले नाम के एक शख्स से झगड़ा हो गया। इस झगड़े के दौरान हेमंत मोदी, उसके भाई सचिन मोदी और 5 दूसरे लोगों ने नरेंद्र का कत्ल कर दिया। बाद में 7 पकड़े गए। 27 अगस्त 2008 को अहमदाबाद की एक अदालत ने नरेंद्र कामले के कत्ल के इल्जाम में हेमंत समेत सभी 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। इन सभी को अहमदाबाद के ही साबरमती जेल भेज दिया गया। बाद में वहां से इनको मेहसाणा जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। सजा सुनाए जाने के बाद हेमंत मोदी कैदी नंबर 311-46 बन गया। जेल गए हुए अब सभी आरोपी को 9 साल हो चुके थे। 9 साल जेल में रहने के बाद 25 जुलाई 2014 को गुजरात हाई कोर्ट ने हेमंत मोदी को 30 दिनों की पेरोल पर रिहा कर दिया। बस यहीं से हेमंत की असली कहानी शुरू होती है। 24 अगस्त 2014 को पेरोल खत्म होते ही हेमंत को वापस जेल लौटना था, लेकिन वो जेल लौटा ही नहीं। उसकी तलाश के बाद अहमदाबाद पुलिस ने हेमंत को जेल जंपर करार देते हुए उसे भगौड़ा घोषित कर दिया। अब हेमंत की तलाश शुरू हुई, लेकिन वो पुलिस को मिला ही नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और पुलिस भी उसे भुलाती गई। हेमंत को जेल से पेरोल पर भागे अब 12 साल हो चुके थे। 2026 आ चुका था। तभी 21 मई 2026 यानी गुरुवार के दिन अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को एक मुखबिर से एक खबर मिलती है। खबर ये कि पिछले 12 साल से फरार उम्र कैद की सजा पाया एक कैदी अहमदाबाद में एक घर में छुपा है। मुखबिर की खबर पर पुलिस ने उस घर में दबिश दी और घर में मौजूद एक शख्स को हिरासत में ले लिया। शुरुआती पूछताछ और उसकी पुरानी तस्वीरों से उसके नए हुलिये का जब मिलान किया गया तो सारी सच्चाई सामने आ गई। हिरासत में लिया गया शख्स कोई और नहीं, 12 साल पहले जेल से भागा उम्र कैद की सजा पाने वाला हेमंत मोदी था, जिसका अब नया नाम था ट्विंकल दवे।
8: ट्विंकल दवे करके उसने अपना नाम रखा था। उसके बाद उसने मुंबई में और अहमदाबाद में अलग अलग सीरियल और फिल्मों में काम किया था।
0: जेल से भागने के बाद हेमंत ने अपना पूरा हुलिया बदल लिया था ताकि कोई उसे पहचान न पाए। धीरे धीरे उसे फिल्में मिलने लगी और फिल्मों के साथ साथ अब वो वेब सीरीज में भी काम करने लगा।
8: उस आरोपी ने अपनी 12 साल की जो वांटेड रहा तब तक फिल्म इंडस्ट्रीज में खुद का अलग अलग रोल निभाया है। वैसे भी सोशल मीडिया पे बहुत खुद के रोल किया है, वेब सीरीज पे भी उसी की बहुत सी सीरीज रिलीज हुई है। इस दौरान हमें अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को कल बातमी मिली कि ये वांटेड आरोपी अहमदाबाद में आया हुआ है, तो कल हमारी ब्रांच ने उसे अहमदाबाद से पकड़ पाया।
0: अब चूंकि 12 साल बीत चुके थे, नाम हुलिया शक्ल सब कुछ बदल चुका था, लिहाजा हेमंत को लगा कि अब पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाएगी। इसी के बाद वो कुछ दिन पहले अहमदाबाद आए, लेकिन अहमदाबाद में जहाँ वो रुका वहाँ एक शख्स उसे देख कर पहचान गया और उसी ने पुलिस को खबर दी। यानी कायदे से अगर वो गुमनाम शख्स उसे नहीं पहचानता तो पुलिस कभी इस ठग ऑफ हिंदुस्तान को पकड़ ही नहीं पाती। इस कहानी का एक दूसरा पहलू यह है कि हेमंत के भाई समेत बाकी जिन 6 लोगों को उम्र कैद की सजा मिली थी, वो सभी अपनी अपनी सजा पूरी कर अब एक आजाद जिंदगी जी रहे, लेकिन हेमंत को अब अपनी बाकी की सजा काटने के लिए वापस जेल जाना होगा। क्या पता इतनी फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर चुके हेमंत मोदी पर अब कोई फिल्म बन जाए। अतुल तिवारी, अहमदाबाद आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर...
10: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more. With Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
11: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

अपना प्लान, अब आज रात नहीं करेंगे ईरान पर हमला का, दोनों देश डील के बेहद करीब, लेकिन तब तक जारी रहेगी नौसैनिक नाकेबंदी। नीति आयोग की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा, प्रधानमंत्री मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और शिकायतों के तेजी से समाधान पर दिया जोर, 28 राज्यों के सीएम हुए शामिल। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा सरकार की नीति से पूरा समाज त्रस्त, बोले मोदी ने मरवा दिया, खड़गे ने भी गिनाई खामियां। और टीएमसी बागी गुट की नेता काकोली घोष का एनडीए के साथ होने का दावा, कहा 20 सांसद हमारे पक्ष में, लेकिन आज तक से बोले शत्रुघ्न सिन्हा, मैं ममता के साथ। रात 12:30 बजे से दुनिया के फुटबॉल महाकुंभ का आगाज, फीफा वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका में भिड़ंत।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। सुनेत्रा पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने आज 27वां स्थापना दिवस मनाया है और इस मौके पर सुनेत्रा पवार ने पार्टी के अंदर चल रही खींचतान पर कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि सम्मान सभी का है, लेकिन गुटबाजी और किसी भी नेता की जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एनसीपी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि अजीत दादा की तरह सुनेत्रा ताई के साथ भी हम मजबूती से खड़े रहेंगे। मंच पर भुजबल और तटकरे की मीठी नोकझोंक भी चर्चा का विषय बनी रही।
1: एनसीपी के स्थापना दिवस की ये दो तस्वीरें देखी। 10 जून को शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी शरद गुट ने पार्टी का 27वां स्थापना दिवस मनाया, तो 11 जून को सुनेत्रा पवार की अगुवाई में एनसीपी ने स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया। आज मुंबई के षणमुखानंद हॉल में एनसीपी के 27वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार ने उनके दल के अंदर चल रही अंदरूनी खींचतान के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि अजीत दादा की तरह पार्टी में सम्मान सबको मिलेगा, लेकिन गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
2: क्या आपको लगता है कि आगे की भागदौड़ अब सिर्फ और सिर्फ सुनेत्रा पवार आगे लेके जाएंगी?
3: सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर काम कर रही है, क्योंकि अध्यक्ष के रूप में हमेशा हम देखते हैं कि जो पार्टी के सर्वेष्ठ रहते हैं वही सारे डिसीजंस लेते हैं, उसी तरीके से वहीं डिसीजंस लेती रहेंगी, लेकिन वो डिसीजंस कभी भी इंडिविजुअल नहीं बनाए जाते। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक कोर कमेटी है, पूरा डिस्कशंस होता है और आगे के उसके जो भी डिसीजंस होते हैं वो अध्यक्ष डिक्लेयर करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा, जब तीखा रूप वहीं ने लिया तो उनका एक ही वो था, लक्ष्य था कि हमारे विचारधारा के ऊपर कभी भी अगर कोई भी तरीके का समझौता करने की कोई भी हमारा पदाधिकारी कार्यकर्ता या लोक प्रतिनिधि करेगा तो उनके कान मरोड़े जाएंगे जैसे दादा मरोड़ते थे। उसी तरीके से जब दादा के नेतृत्व के नीचे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो एकजुट होकर काम करती थी, आज हमने देखा वहीनी को भी उन्होंने वही तरीके का भरोसा दिया और वही ऊर्जा हमें लोगों के बीच में। आज का दिन जो था हमारे लिए थोड़ा भावनिक था, क्योंकि दादा के नेतृत्व में रहते हुए जो हम वर्धापन दिन सेलिब्रेट करते थे आज वो नहीं, और उनके गैर मौजूदगी में करते हुए, लेकिन वहीनी के नेतृत्व को सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने अपनाया है।
1: अपने संबोधन में सुनेत्रा पवार ने साफ कर दिया कि पार्टी का कल्याण उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने किसी भी नेता को गैर जरूरी दखलंदाजी के लिए खुली चुनौती भी दी, लेकिन स्थापना दिवस समारोह के दौरान पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं, महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे और मंत्री छगन भुजबल के बीच मजाकिया अंदाज में जुबानी जंग भी दिखी। तटकरे ने मजाक में भुजबल को राजनीतिक कबड्डी से होने वाली थकान के बारे में आगाह किया। वहीं भुजबल ने पलटवार करते हुए कहा कि जो वफादारी कभी अजीत दादा के लिए थी वो पूरी तरह से सुनेत्रा पवार के लिए भी रहेगी।
4: हमारे अनुभवी नेता छगन भुजबल को ही देख लीजिए, जिन्होंने हाल ही में कहा है कि वो कबड्डी खिलाड़ी हैं, शतरंज के खिलाड़ी नहीं।
5: और वो बोले हम शतरंज के खिलाड़ी नहीं हैं।
4: हम सब जानते हैं कि एक चैंपियन कबड्डी खिलाड़ी कैसे खेलता है। वे बहुत कुशलता से विरोधी के पाले में रेड मारते हैं, बोनस पॉइंट हासिल करते हैं और एक ही बार में विरोधी टीम के सभी 7 खिलाड़ियों को आउट कर देते हैं। लेकिन मैं उन्हें एक दोस्ताना सलाह देना चाहता हूं। सबसे बड़े चैंपियन को भी कभी कभी चौंकाया जा सकता है। जब आप पूरी तरह थक चुके हों तो विरोधी टीम का बचा हुआ एक खिलाड़ी भी बाजी पलट सकता है। भुजबल के शानदार राजनीतिक सफर के बारे में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसीलिए मैं उनसे हमारे चतुर और तेज तर्रार कबड्डी चैंपियन से गुजारिश करता हूं कि वो 80 साल की उम्र में भी उसी जबरदस्त जोश के साथ मैदान में उतरें, क्योंकि पार्टी का भविष्य सुरक्षित करने और सुनेत्रा पवार के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए हमें उसी ताकत की जरूरत है। मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है और ये बात हम सभी को याद रखनी चाहिए। मैं शतरंज, कबड्डी या खो खो खेलने की इन सभी बातों को सुन रहा हूं, लेकिन सुनील तटकरे और बाकी सभी लोगों को मेरी सीधी सलाह है, खेल में राजनीति न लाएं और प्लीज राजनीति को खेल न बनाएं। पार्टी सिर्फ एक झंडा, दफ्तर या साइन बोर्ड नहीं है। पार्टी आप, मैं और जमीनी स्तर पर काम करने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं का ये विशाल परिवार है जो एक साथ खड़ा है। हमारा मकसद इस पार्टी को और बड़ा और मजबूत बनाना है। जो अटूट वफादारी और निष्ठा हमने कभी अजीत दादा के प्रति दिखाई थी, वही अब सुनेत्रा ताई के प्रति होनी चाहिए।
5: सुनेत्रा ताई का चरणी वायचा है।
1: दोनों नेता काफी वक्त से एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं।
2: आज एनसीपी अजीत पवार पार्टी के 27वें स्थापना दिन को मुंबई के षणमुखानंद हॉल में मनाया गया। अजीत पवार के मृत्यु पश्चात ये पहला स्थापना दिन था जो डिप्टी सीएम और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार की अगुवाई में यहां पर मनाया गया। आपको बता दें कि फिलहाल इस पार्टी में चल रही अंदरूनी नेतृत्व को लेकर खींचतान के बाद इस पार्टी के समारोह में कई नेताओं के भाषण हुए। खास तौर पर पार्टी के राज्य के प्रमुख सुनील तटकरे और मंत्री छगन भुजबल दोनों के बीच की नोकझोंक इस पार्टी का केंद्र बिंदु रही, क्योंकि हाल ही में जो राज्यसभा सीट पर चुनाव हुआ उसको लेकर छगन भुजबल ने कहा था कि मैं शतरंज का खिलाड़ी नहीं, मैं कबड्डी का खिलाड़ी हूँ। उसी को लेकर सुनील तटकरे ने छगन भुजबल पर निशाना साधा। सुनील तटकरे ने कहा कि कहीं ना कहीं भले ही आप एक अव्वल दर्जा के कबड्डी खिलाड़ी हो और हमेशा बोनस पॉइंट लाते हो, लेकिन जब एक खिलाड़ी थक जाता है तो एक प्रतिस्पर्धी भी उस पर भारी पड़ सकता है, जिसको लेकर छगन भुजबल ने भी अपने ही अंदाज में उन पर अपने भाषण में पलटवार किया। उन्होंने उर्दू में कई सारे शेरो शायरी भी किए, लेकिन ये बताना भी नहीं भूले कि खेल में राजनीति नहीं आनी चाहिए, लेकिन राजनीति का भी खेल कोई नहीं करेगा।
0: और आज राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के नेताओं ने मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर जाकर सरकार के लिए विशेष पूजन किया है। आपको बता दें कि एमएनएस ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहने के साथ महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। उधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी भी मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियों पर तंज कसती नजर आई।

0: मोदी सरकार के 12 साल और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का जश्न बीजेपी पूरे देश में मना रही है। उसके सहयोगी दलों का जोश भी हाई दिख रहा है। बीजेपी नेता मंदिर मंदिर जाकर मोदी सरकार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मुंबई में विपक्ष के कुछ नेता भी मंदिर जाकर सरकार के लिए पूजन करते नजर आए। आज राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के नेता मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे और विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि मोदी सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी का भी रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि इसीलिए हमने बप्पा से प्रार्थना की है कि गणपति बप्पा सरकार को सद्बुद्धि दें।
1: एमएनएस के नेता भी सिद्धिविनायक आज पहुंचे थे, आखिर क्यों पहुंचे थे जानते हैं संदीप देशपांडे जो एमएनएस नेता है, यहाँ पे उनसे बात करते हैं। क्यों गए थे?
2: कसं है कि भारताचे सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांनी एक रेकॉर्ड मोडला की नेहरूजींच्या काळापेक्षा जास्त काळ ते पंतप्रधान राहिले। मला असं वाटतं की फक्त हा एकच रेकॉर्ड त्यांच्या नावावर नाही आहे ना, त्यांच्या नावावर अनेक रेकॉर्ड आहेत। एक महत्त्वाचा रेकॉर्ड आहे की आत्तापर्यंत भारताच्या इतिहासात जेवढी नव्हती तेवढी पेट्रोलची प्राईज आज आहे, पेट्रोल डिझेलची प्राईज आज आहे, हा एक रेकॉर्ड आहे। डॉलरची प्राईज आत्तापर्यंत जेवढी नव्हती सर्वात जास्ती डॉलरची प्राईज झाली, हा एक रेकॉर्ड त्यांच्या नावावर आहे। घरगुती गॅस सिलेंडर आहे त्याची प्राईज सर्वात जास्ती आत्ता वाढली, हा एक रेकॉर्ड त्यांच्या नावावर आहे। महागाईचा दर हा सर्वात जास्ती, हा एक रेकॉर्ड त्यांच्या नावावर आहे। बेरोजगारीचा दर, अनएम्प्लॉयमेंटचा दर हा त्यांच्या नावावर आहे, सर्वात जास्ती आहे।
0: एमएनएस ने मुंबई में मोदी सरकार पर तंज कसते हुए बाकायदा होर्डिंग लगाकर सरकार पर निशाना साधा है।
1: आज जो आपने भगवान के दर पे गए थे, सिद्धिविनायक के दर पे, तो ना आपने क्या मांगा उनके लिए?
2: आम्ही हेच मागितलं की आज जी देशात परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीतनं देश बाहेर होऊ दे, राज्य करताना सुबुद्धी मिळू दे, फक्त सुडबुद्धीने त्यांनी वागू नये।
0: वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी भी पीएम मोदी की 12 साल की उपलब्धियों को लेकर तंज कस रही है।
3: क्या हो गया, रुपया इतना सस्ता हो गया, डॉलर का कुछ भी नहीं यार, डॉलर से रुपया तो गया है, इतनी गिरावट नहीं है, ऊंचाई कितना खाई में जा रहा है, इतना बड़ा खाई में किसी ने जंप नहीं मारी होगी, उतनी इन्होंने जंप मारी है। महंगाई तो सर का आसमान छू रही है, महिला एकदम खुश है, रोज बलात्कार कर रहे, रोज बच्चियों को मार रहे हैं, 12 साल में क्या दिया, बेरोजगार घूम रहा है, किसान है खुशी खुशी अपने गले में फांसी ले रहा है क्योंकि उसको बहुत अच्छा भाव मिल रहा है, 1 रुपए में प्याज मिल रहा है, मालूम है 12 साल में कभी मिला था क्या, इनके राज में 1 रुपए में प्याज मिल रहा है, बोलो क्या किसान करेगा बता, ये इनकी जो उपलब्धि है इसे आप उपलब्धि कहेंगे?
0: इससे पहले दिल्ली में एनडीए कॉन्क्लेव में सीएम फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार भी मौजूद रहे। एनसीपी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार ने अपना स्थापना दिवस मनाने की जगह पीएम मोदी को बधाई देना ज्यादा जरूरी समझा।
4: देश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी और जिन्होंने विक्रम प्रस्थापित किया ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन का प्रस्ताव महाराष्ट्र की ओर से भी हमने अनुमोदन दिया और 12 साल सब अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री थे उनका सबका रिकॉर्ड आदरणीय मोदी जी ने तोड़ा है और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, देश को विकास की ओर ले जाने का काम किया है, देश को आर्थिक महासत्ता बनाने का काम किया है और विकसित भारत 2047 का संकल्प भी उन्होंने किया है और इस देश का विकास यही उनका एजेंडा है।
5: माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मतलब 3,499 दिन पूरे किए है और आज तक देश में जो प्रधानमंत्री हुए उन्होंने इतना कार्यकाल पूरा नहीं किया है, तो पहली बार 12 साल तो पूरे हुए हैं लेकिन 3,499 इतने दिन वो प्रधानमंत्री रहे हैं, तो हमारे सभी एनडीए के लोगों ने उनको हार्दिक बधाई दी है और वो 25 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे, इसी तरह की हार्दिक बधाई उनको दे दी है। तो मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलती है ये पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में है और मैं नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई देता हूँ।
0: जहाँ बीजेपी 12 साल की उपलब्धियां गिनाते नहीं थक रही है, वहीं विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाकर पूछ रहा है कि क्या यही है अच्छे दिन। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।
6: क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अगला टारगेट सिंगर गुरु रंधावा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के राजौरी गार्डन में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 7 राउंड फायरिंग करके दहशत फैला दी है। हमले के बाद गैंगस्टर अमित पंडित की एक पोस्ट भी आई जिसमें हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लेते हुए गुरु रंधावा को अपना टारगेट बताया, जिसकी वजह सलमान खान से उनकी नजदीकियां बताई गई। ये पूरा का पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए।
0: दिल्ली से हरियाणा तक लॉरेंस गैंग की दहशत, गोलियों की तड़तड़ाहट से हिले दो बड़े जिम, सलमान का साथ देने वालों को एक बार फिर लॉरेंस गैंग का खूनी पैगाम, गुरु रंधावा को बिश्नोई गैंग की फायरिंग के साथ चेतावनी, सलमान से दूर रहो वरना अंजाम बुरा होगा। दिल्ली के राजौरी गार्डन के जिम के बाहर नजर आ रहे गोलियों के निशान पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपना दावा किया है। बताया जा रहा है कि जिम के बाहर करीब 7 राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। हालांकि वारदात में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वारदात का पता तब चला जब सुबह करीब 5:15 बजे जिम के केयरटेकर वहां पहुंचे। जिम के शीशे टूटे देख और गोलियों के निशान पाकर उन्होंने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई।
7: इस वक्त मैं उसी जिम के बाहर खड़ा हूं और अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो कल देर रात कोई 2 लोग बाइक पर यहां आते हैं और जिम के बाहर कई राउंड फायरिंग करते हैं, जिसमें अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये जो जिम के शीशे हैं ये चटके हुए दिखाई दे रहे हैं। करीब करीब आधा दर्जन गोलियां जो है यहां चलाई जाती है।
0: इस हमले के बाद गैंगस्टर अमित पंडित की पोस्ट आई। पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली, जिसमें गुरु रंधावा को अपना टारगेट बताया और वजह सलमान खान से नजदीकियां बताई। दिल्ली में जो फायरिंग हुई इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये फायरिंग हमारे छोटे भाई अनिल पंडित, आरडी धालीवाल और हरमन संधू ने ली है। इससे पहले मैंने फोन करके समझाया था परंतु इसके भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये भी सलमान खान के साथ बैठ के बहुत ज्यादा करीबी हो रहा है उसका। इसको बहुत ज्यादा बार समझाया परंतु इसको समझ में ही नहीं आ रहा। इसको भी जल्दी गोलियां पड़ेंगी, कितनी सिक्योरिटी ले ले चाहे देश के किसी भी कोने में चला जाए, छोड़ेंगे नहीं तेरे को भी। जांच के लिए तुरंत फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटना स्थल से खाली कारतूस और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस हमलावरों की पहचान करने के लिए जिम के आसपास और भागने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है।
7: इस वक्त अगर पुलिस तफ्तीश की बात करें तो दिल्ली पुलिस की अलग अलग एजेंसियां अभी ग्राउंड पर है। स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, लोकल डिस्ट्रिक्ट पुलिस, सब लोग यहां ग्राउंड पर मौजूद हैं और इस पूरे घटना की जो है तफ्तीश में लग गए हैं। लेकिन अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि आखिर वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया।
8: असला भी लोड करे टाले जा छड़ अखा नाल करनी तू बस बिल्लो तेरी आके कतल।
6: बीजेपी और शिवसेना बीएमसी में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बड़े घोटाले का आरोप लगा रही हैं। धोखाधड़ी के आरोपों के बीच बीएमसी ने बर्थ सर्टिफिकेट में किए गए करीब 20,000 सुधार रद्द कर दिए हैं। ऐसे हॉस्पिटल्स में लोगों के जन्म प्रमाण पत्र बना दिए गए थे जो असल में हैं ही नहीं। वहीं बीएमसी के डेप्यूटी मेयर संजय घाड़ी ने ऑपरेशन टाइगर की संभावनाओं से इनकार नहीं किया। दरअसल दिल्ली में शिंदे से शिवसेना यूबीटी के कुछ सांसदों ने मुलाकात की थी।
9: बीएमसी में महायुति की सत्ता आने के बाद जैसे ही बांग्लादेशी हॉकर्स पर कार्रवाई शुरू की गई, वैसे ही बर्थ सर्टिफिकेट या फेक बर्थ रिकॉर्ड जो मुंबई में क्रिएट किए जा रहे हैं उस पर भी कार्रवाई शुरू है। इस वक्त मुंबई के डिप्टी मेयर संजय घाड़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बीएमसी ऑफिशियल्स पर कार्रवाई हो रही है, जो रिकॉर्ड्स है उसकी स्क्रूटनी हो रही है, एक एसआईटी भी बनाई गई है। कुछ 19,700 ऐसे बर्थ रिकॉर्ड्स के करेक्शंस है जिसे बीएमसी ने कैंसिल किया।
10: देखिए, 19,734 जो ऐसे बर्थ सर्टिफिकेट है उसके अंदर करेक्शन था और उसके ऊपर डाउट था और उसकी जांच होने के बाद ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, फेक डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट है, ये फाइनलाइज हमारे महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से हुए हैं, तो उनके ऊपर महानगर पालिका की तरफ से एक्शन ली गई है।
9: बड़ा स्कैम या गलत काम चल रहा था बर्थ रिकॉर्ड्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स मुंबई में बनाने का, ऐसा लगता है आपको?
10: जी हाँ, ये तो मैं पहले देवन से इस मीटिंग में हूँ, इसमें 3 हमारे जो MOH है अधिकारी, मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, उनको डिसमिस किया गया हुआ है। कुछ अधिकारियों के ऊपर इंक्वायरी चालू, उनको पोस्ट से निकाला गया हुआ है। ऐसे एक केसेस है कि जो अस्पताल जिसका सर्टिफिकेट दिया गया वो अस्पताल ही मौजूद नहीं है, जो जिस डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया वो डॉक्टर ही मौजूद नहीं है।
9: दिल्ली में चर्चा है, महाराष्ट्र में चर्चा है ऑपरेशन टाइगर की, क्या कुछ ऐसे MPs हैं शिवसेना UPT के जो एकनाथ शिंदे के टच में है और शिवसेना में आ सकते हैं?
10: जी देखिए, अभी फिलहाल हमारे शिवसेना के मुख्य नेता डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब अभी जो 12 साल हुए पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को, तो उनको बधाई देने के लिए आनंद उत्सव मनाने के लिए दिल्ली में गए थे, तो उन्हें वहाँ के UPT के कुछ सांसद उनसे मुलाकात हो गई और चर्चा शुरू हो गई कि अभी ऑपरेशन टाइगर सांसदों का होगा, लेकिन ये तो टोटली डिपेंड है एकनाथ शिंदे साहब और उन सांसदों के ऊपर, जो सांसद जिसकी इच्छा है वो आ सकते हैं। और ऐसे ऑपरेशन ओपनली होते नहीं है, बताए जाते नहीं है, जब भी होते तभी हमें पता चलता है, और शिंदे साहब ऑपरेशन करने में मास्टर है, आपको मालूम है।
9: धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, उप महापौर मुंबई के संजय गाड़ी मुस्तफा शेख के साथ।
10: खाली जताएगा
6: इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: फुटबॉल के सबसे बड़े इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रंगारंग आगाज हो चुका है। पहले दिन दो मुकाबले खेले जाएंगे, कुछ देर बाद टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच मैक्सिको सिटी स्टेडियम में खेला जाएगा।
0: चार साल का इंतजार, करोड़ों धड़कनों की बेचैनी और अरबों आंखों का सपना, बस कुछ घंटों में शुरू होने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप 2026। एक ऐसा टूर्नामेंट जिसके लिए दुनिया रुक जाती है, जिसके लिए रातें जाग कर काटी जाती हैं और जिसके एक एक गोल पर दुनिया झूम उठती है। इस बार रोमांच इसलिए भी दोगुना है क्योंकि माना जा रहा है कि फुटबॉल के दो सबसे बड़े महानायक लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो आखिरी बार विश्व कप के मंच पर दिखाई देंगे।
12: मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका, ये तीन ऐसे देश हैं जहां पर करीब करीब 16 वेन्यूज के ऊपर में, 16 शहरों के ऊपर में ये मुकाबले खेले जाएंगे। 48 टीमें हैं इस बार, सबसे बड़ी बात यही है, अभी तक 32 टीमें हुआ करती थी लेकिन इस बार फीफा ने 48 टीमों का मौका दिया है।
0: इस वक्त दुनिया के हर कोने में फुटबॉल की धुन सुनाई दे रही है, कहीं मेसी के पोस्टर है तो कहीं रोनाल्डो के नाम की गूंज है। आज टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच मैक्सिको सिटी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दिन का दूसरा मैच साउथ कोरिया और चेक रिपब्लिक के बीच ग्वाडलाहारा स्टेडियम में होगा। ये मुकाबला 12 जून को 7:30 बजे खेला जाएगा। पहले दिन खेलने वाली चारों टीमें ग्रुप ए में मौजूद है, तो तैयार हो जाइए नींद से लंबी रातों के लिए, दिल की धड़कनें बढ़ाने वाले गोलों के लिए, आंसुओं, उम्मीदों और जश्न के उन पलों के लिए। आज तक ब्यूरो।
6: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
13: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
14: La Que Buena.
13: ESPN Radio.
15: We know LeBron has to be the best player on the planet to
13: have. The Daily.
16: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
13: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: presented by.
1: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included.
2: Oh, yeah.
1: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
3: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffeehouse Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffeehouse favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffeehouse or ask your device to play Coffeehouse on TuneIn.
4: Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete.
5: पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में जुल्म की इंतहा हो रही है, बेगुनाह लोगों पर गोलियों की बौछार की जा रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। पीओके में लोग काफी वक्त से बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हैं। वहां लोगों ने तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन की तैयारी की। JAAC यानी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले 9 जून को बंद का ऐलान किया गया, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने 5 जून को ही JAAC पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही पूरे POJK में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। अगले ही दिन बड़े पैमाने पर नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसे एक्शन के विरोध में 7 जून से उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए। पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी सेना को इन लोगों पर खुलेआम गोलियां बरसाने को कहा। फायरिंग में 27 लोगों की मौत हो गई। POJK में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ऐसी कार्रवाई को लेकर भारत ने गंभीर चिंता जताई है। साथ ही यूरोप स्थित मानवाधिकार संगठन ECHRD ने भी सवाल उठाए हैं और मांग की है कि इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विशेष बैठक बुलाई जाए। आज तक ब्यूरो।

देश पहले तेहरान पर सबसे बड़े हमले की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा ईरान से डील की जगह और वक्त का जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। सभी पक्षों ने चर्चाओं को अंतिम बिंदुओं को मंजूरी दी है। ईरान ने हॉर्मुज को लेकर बड़ी बात कही, कहा अगले आदेश तक बंद रहेगा हॉर्मुज स्ट्रेट। ईरान ने अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया बड़ा हमला। अमेरिका ने कहा नुकसान की भरपाई ईरान की जब्त संपत्तियों से की जाएगी। ईरान ने अमेरिका से 3 सबसे अत्याधुनिक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को मार गिराने का भी दावा किया। ईरानी सेना ने कहा सॉलिड फ्यूल मिसाइल से बनाया गया था निशाना। घोष का दावा, लोकसभा में 20 बागी सांसदों का स्पीकर को खत, हम एनडीए के साथ हैं। टीएमसी के बागियों पर बरसे टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद, बोले उन्हें बागी नहीं भगोड़ा कहिए। टीएमसी में टूट के बीच कल्याण बनर्जी ने दिखाए बगावती तेवर, अभिषेक बनर्जी को बताया घमंडी। ममता को अल्टीमेटम देकर कल्याण बनर्जी ने कहा भतीजे को चुने या वफादार नेताओं को। तमाम कयासों के बीच शत्रुघ्न सिन्हा का आज तक पर बड़ा बयान, बोले मैं ममता बनर्जी के साथ हूं। टीएमसी के कांग्रेस के विलय पर कीर्ति आजाद का बयान, विलय की खबरों को किया खारिज। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के साथ फिर से हुई धक्का मुक्की, कोलकाता एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों ने बचाकर बाहर निकाला। टीएमसी नेता जहांगीर खान की पैदल परेड, हाफ पेंट में पुलिस पैदल लेकर गई अपने साथ। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक, सोनिया राहुल खड़गे समेत आला नेता इसमें शामिल हुए। बैठक में अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए मंथन किया गया, करीब 3 घंटे तक चली मीटिंग। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा बेरोजगारी और महंगाई से पूरा समाज त्रस्त है। सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका, कल अर्जी पर सुनवाई से इनकार, आज करना होगा इंतजार। एमपी की तीनों ही राज्यसभा सीटों पर बीजेपी की जीत से भड़के राहुल गांधी, कहा चुनाव आयोग की जुगलबंदी से सीट चोरी की गई। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर प्रधानमंत्री मोदी और सभी राज्यों के सीएम चर्चा ने की। बैठक में 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल, डीके शिवकुमार, उमर अब्दुल्ला, ओसक विजय और रेवंत रेड्डी ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात। बिहार में एमएलसी चुनाव के 10 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीते, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी बने एमएलसी। जेडीयू और बीजेपी के कोटे से 4-4 उम्मीदवार जीते एमएलसी का चुनाव, एक आरजेडी और एक एलजेपी का उम्मीदवार भी विजयी। निर्विरोध जीतने के बाद बोले निशांत कुमार, बिहार के विकास के लिए करते रहेंगे काम। दिल्ली में पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा की जिम की फ्रेंचाइजी पर हमला, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है जिम्मेदारी। दिल्ली में जिम पर करीब 7 राउंड फायरिंग की गई, अपराधी फरार हुए। लॉरेंस गिरोह ने जारी किया है ऑडियो, सलमान से नजदीकियों को बताया हमले की वजह। हरियाणा के आंसी में जिस जिम संचालक की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। लॉरेंस गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली, एक्शन लेने पर पुलिस को भी धमकी दी गई। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले सीएम योगी, कहा आपका आत्मीय सानिध्य और यशस्वी मार्गदर्शन विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण हेतु नई ऊर्जा का संचार करता है। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में केंद्र असम और नागालैंड के बीच में एक त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर। ओमान के पास अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत पर असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र को घेरा, कहा प्रधानमंत्री के पास जश्न मनाने का समय है लेकिन अमेरिका की सेना की निंदा करने का वक्त नहीं। भोपाल में विधानसभा के बाहर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, राज्यसभा चुनावों को लेकर विरोध, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा अब यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर पटना में भोजपुरी संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लालू राबड़ी और परिवार के दूसरे लोग मौजूद। 14 जून को जारी होगा नीट के री एग्जाम का एडमिट कार्ड, वेबसाइट पर जाकर अपने परीक्षा का शहर देख सकते हैं। बिहार सरकार ने सरकारी शिक्षकों के प्राइवेट कोचिंग करने पर लगाई है रोक, शिक्षा विभाग ने जारी किए कड़े निर्देश, आदेश का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों पर एक्शन लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा में के नाम कराने पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया, यूपीएसटीएफ ने शिकंजे में मुख्य सरगना को लिया, पूछताछ जारी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में मौसम में बदली है करवट, झमाझम बारिश के साथ जोरदार ठंड। महाराष्ट्र के वासी में जिले में खुदाई के दौरान शिवलिंग की मूर्ति के साथ नंदी की प्रतिमा मिली, देखने के लिए भक्तों का लगा तांता। आज से फुटबॉल की सबसे बड़े इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत, पहले दिन खेले जाएंगे 2 मुकाबले। आज टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा, मैक्सिको सिटी स्टेडियम में मैच। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी, पहले 48 देश ले रहे हैं हिस्सा। धर्मशाला मौजूद भारत की वनडे क्रिकेट टीम 13 जून को सीरीज का पहला मुकाबला होगा। अफगानिस्तान की वनडे टीम भी धर्मशाला में मौजूद है, 3 मैचों की है सीरीज। वडोदरा में पुलिस की कार्रवाई में 20 करोड़ से ज्यादा चमत्कारिक सुलेमानी पत्थर के नाम पर ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़। गाजीपुर

नाबालिग भांजी की हत्या में मामा को फांसी की सजा। 2021 में मामूली से घरेलू विवाद में मामा ने धारदार हथियार से मार डाला था। सुल्तानपुर में जाति विशेष के युवक से अभद्रता, जबरदस्ती लगवाए गए नारे, वीडियो वायरल। जालौर में आवारा सांड का आतंक, पैदल जा रहे दो बुजुर्ग व्यक्तियों को बनाया गया था शिकार। पाली में नाकेबंदी में पुलिस पर तस्करों की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर घायल हुआ, दो की गिरफ्तारी। इंदौर में भी काबू टैंकर का कहर, पटेल ब्रिज पर कई गाड़ियों को मारी गई थी टक्कर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। गुरुदासपुर में कबूतर पकड़ने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, गोलीबारी में एक महिला और पुरुष घायल हुए। पटना में जिम जा रही महिला से हथियार की नोक पर लूटपाट की गई, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेट्रोल पंप परिसर में मामूली से विवाद को लेकर व्यक्ति की निर्मम हत्या, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। राजसमंद में गौरीधाम में फोटोशूट के दौरान गहरे कुंड में समा गया था युवक, ग्रामीण और पुलिस के जवानों ने पहाड़ी लांघ कर निकाला शव। E20 और भविष्य में आने वाली E30 पेट्रोल को लेकर लोगों में बढ़ती दुविधा से 43% लोग टाल सकते हैं नई गाड़ी खरीदने का फैसला। सर्वे के मुताबिक लोगों को माइलेज, इंजन और मेंटेनेंस की चिंता। बैंकिंग को आसान बनाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने धोखाधड़ी के मामलों को भी बढ़ाया है। 84% बैंकर्स के मुताबिक बीते एक साल में फ्रॉड के नुकसान बढ़े हैं, जिससे ग्राहकों को काफी नुकसान। दुनिया के सबसे बड़े उभरते हुए बाजार में इंडेक्स के टॉप 10 और टॉप 100 में अब कोई भारतीय कंपनी नहीं बची। एआई की वजह से वैश्विक निवेश का रुख बदलने से MSCI इंडेक्स में भारतीय कंपनियां गायब। E20 की तरह ही उच्च इथेनॉल ब्लेंड वाले E22, E25, E27 और E30 पेट्रोल पर भी एक्साइज ड्यूटी से मिलेगी छूट। IATA ने यात्रियों से इमरजेंसी में विमान खाली करवाने समय अपना हैंड बैगेज छोड़कर बाहर निकलने की अपील की है। यात्रियों की तेज और सुरक्षित निकासी के लिए बताया इसे जरूरी। मध्य पूर्व में छिड़े युद्ध की वजह से रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बहरीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। बहरीन के नेता का बड़ा बयान, कहा गुरुवार को बहरीन पर ईरान ने दागे 36 ड्रोन्स। रूस के दक्षिणी शहर पर यूक्रेन की सेना का भीषण हमला, रिहायशी इमारतों पर दागे गए ड्रोन्स। नेटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है कि अमेरिकी नेटो संबंधों पर बड़ी बात, बोले अमेरिकी नेटो के प्रति है पूरी तरह प्रतिबद्ध। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने रूस के साथ बातचीत के मुद्दे पर यूरेनियम यूनियन को एक साझा प्रतिनिधि नियुक्त करने की बताई है जरूरत का। कुछ देशों को छोटा समूह पूरे यूरोप को नहीं कर सकता बात। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने दिया है इस्तीफा, अपनी ही सरकार पर लगाए योजनाओं पर खर्च कम करने का आरोप।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अमेरिका ईरान युद्ध के पीछे मानवाधिकार और परमाणु हथियार सिर्फ एक बहाना थे, असली मकसद कुछ और है। इसका जवाब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर खुलेआम धमकी दी है कि आज रात अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने वाला है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिख दिया है कि वेनेजुएला की तरह ही अमेरिका बहुत जल्द ईरान के लाइफलाइन कहे जाने वाले खार्क द्वीप और उसके तमाम तेल ठिकानों को तहस नहस कर उनके गैस और तेल व्यापार पर कब्जा कर लेगा। इस एक बयान ने युद्ध के पीछे ट्रंप के 38 साल पुराने उस मंसूबे को जग जाहिर कर दिया है जिसे कूटनीति में शिफ्टिंग गोल पोस्ट यानी बार बार बहाने बदलना कहते हैं। ट्रंप जिस खार्क द्वीप को मटियामेट करने का सपना देख रहे हैं, वहां से ईरान का 90% कच्चा तेल एक्सपोर्ट होता है। वो एक ऑयल डिपो की तरह है। लेकिन ईरान भी शांत नहीं है। दावा है कि ईरान ने जॉर्डन के एयरबेस पर मिसाइल दागकर अमेरिका के 3 सबसे आधुनिक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को खाक कर दिया है। आज आपको बताएंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के इसी तेल के पीछे क्यों पड़े हैं, खार्क द्वीप का पूरा गणित क्या है और इस भीषण बमबारी की ग्राउंड रियलिटी आज क्या है। और इसके बाद आपको दुनिया के सबसे बड़े खेल महाकुंभ यानी फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बताएंगे जिसका आगाज आज रात से होने जा रहा है। इस बार नॉकआउट का रोमांच डबल होगा, प्राइज मनी के रिकॉर्ड टूटेंगे, टिकटों की कीमत आसमान छू रही है। आपको बताएंगे कि कैसे इस बार का ये महामुकाबला इतिहास का सबसे बड़ा सबसे अनोखा वर्ल्ड कप क्यों बनने जा रहा है। और आखिर में आपको इटावा में प्रशासन का ऑपरेशन क्लीन दिखाएंगे, जहां एक रात में सब कुछ बदल गया। वहां एक जंगल बुधवार की शाम तक पक्की आलिशान इमारत, चमचमाता गुंबद, मजार थी, अगली सुबह सब कुछ गायब और वहां पर जंगल नजर आने लगा। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको बड़ी स्क्रीन पर फुल फ्रेम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो दावा दिखाना चाहते हैं जो उन्होंने ईरान को लेकर किया है। ट्रूथ सोशल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने जो लिखा है जिसमें उन्होंने सीधा यह ऐलान किया है कि अमेरिका हमला करने वाला है। उन्होंने ये कह दिया है कि अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है, इसीलिए हमने आपके लिए ये तमाम वर्ड्स हाईलाइट कर ली है। तो सबसे पहले हम आपको ये पूरा पोस्ट दिखाते हैं। The United States will be hitting Iran. जितना मुमकिन हो zoom in कर लीजिए। तो सबसे ऊपर वो लिखते हैं hitting Iran, whose navy, air force, radar, anti-craft, जो बड़े बड़े शब्द हैं वो very hard tonight. मतलब जिस तरह से वो बार बार कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, उन्होंने ये साफ साफ कहा है। और tonight भी ये शब्द देखिए हमने हाईलाइट किया आपके लिए, hard tonight, we'll be hitting hard tonight. टेकिंग खार्ग आइलैंड, खार्ग आइलैंड हमने आपको दिखाया था ना, ये ईरान का ऑयल डिपो है। यहीं से लगभग 90% जो तेल है ईरान का वो निकलता है। उस खार्ग आइलैंड को इन्होंने हिट किया है, कहा है कि उसको हम लेना चाहते हैं। वी विल बी टेकिंग खार्ग आइलैंड, हम खार्ग आइलैंड पर कब्जा करेंगे। हिंदी में जल्दी से आपको पढ़कर सुना देती हूं, लेकिन इसी के आगे एक और लाइन दिलचस्प है। वी विल अज्यूम टोटल कंट्रोल ऑफ देयर ऑयल एंड गैस मार्केट्स, उनके तेल और गैस के सारे मार्केट पर, कारोबार पर हम कब्जा करने वाले हैं। अमेरिका आज रात, डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं हिंदी में, अमेरिका आज रात ईरान पर जबरदस्त हमले करेगा। आने वाले समय में हम खार्क द्वीप और तेल से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने वेनेजुएला के मामले में किया है, जो अमेरिका और वेनेजुएला दोनों के लिए बहुत बढ़िया साबित हो रहा है। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है वो एक तरह से साफ दिखाता है कि उनकी इस वक्त नीयत क्या है। तो जो बड़ी बातें हैं वो हमने आपको समझा दी, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वो करने वाले क्या हैं। पहली बात यह है कि इस युद्ध में अमेरिका का पहला और आखिरी मकसद यही है, वो ईरान के तेल, वो ईरान के गैस भंडार को हथियाना चाहता है। कूटनीतिक दुनिया में एक शब्द का काफी इस्तेमाल होता है जिसे शिफ्टिंग गोल पोस्ट कहते हैं। इसका मतलब होता है अपने फैसलों के पीछे की वजह को बार बार बदलना, लोगों को गुमराह करना। जब अमेरिका और ईरान का ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था तब पूरी दुनिया में ये कहा गया कि अमेरिका की नजर ईरान के कच्चे तेल पर है और बाकी अमेरिका का ईरान से कोई विवाद है ही नहीं। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इन दावों को खारिज किया। कभी उन्होंने कहा कि वो रिजीम चेंज चाहते हैं, कि कट्टर लोगों के हाथ में ईरान का शासन है, हम उसको बदलना चाहते हैं। वो ईरान के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, सबसे पहले यही दुनिया को बताया गया। कभी कहा कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना चाहते हैं। कभी कहा कि ईरान की मिसाइल क्षमता पूरी दुनिया के लिए खतरा है। कभी कहा ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन दुनिया की शांति को खत्म कर सकते हैं और इसलिए ईरान के खिलाफ युद्ध जरूरी है। लेकिन कहते हैं ना कि जो बात दिल और दिमाग में बैठी होती है वो जुबां पर आ जाती है। तो इस युद्ध के पूरे 3 महीने बाद राष्ट्रपति ट्रंप के दिल की बात उनकी जुबां पर आ चुकी है और उन्होंने कहा है कि वो ईरान का कच्चा तेल लेना चाहते हैं। और ये वही बात है जिसमें उन्होंने 30 मार्च को फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में शब्दशः ये कहा था कि अगर उन्हें विकल्प मिले तो वो ईरान का तेल लेना पसंद करेंगे। ये बयान बताता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये सब कुछ सिर्फ ईरान का कच्चा तेल हासिल करने के लिए किया है और यही बात तो ईरान भी कह रहा है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने अपनी मौत से सिर्फ 11 दिन पहले 17 फरवरी को एक कार्यक्रम में यह कहा था कि अमेरिका की नजर ईरान के कच्चे तेल पर है और अब यह बात पूरी तरह साबित हो रही है। पूरी दुनिया में जिन 5 देशों के पास कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है उनमें वेनेजुएला और सऊदी अरब के बाद ईरान तीसरे स्थान पर है। ईरान के पास 208 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है जबकि अमेरिका इसमें छठे स्थान पर है और उसके पास 81 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है। अब अमेरिका ने इसी साल जनवरी महीने में वेनेजुएला पर हमला कराया जिसके पास 303 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है। पूरी दुनिया को यही लगा कि वेनेजुएला में अमेरिका का जैकपॉट लग गया है, लेकिन हकीकत यह थी कि अगर ईरान का कच्चा तेल ना हो तो वेनेजुएला का भी कच्चा तेल किसी काम का नहीं है। वेनेजुएला का कच्चा तेल भारी है, गाढ़ा है, जिसके कारण उसे हर बार रिफाइन करना पड़ता है और रिफाइन करने के लिए ईरान के कम गाढ़े तेल की जरूरत होती है। जब वेनेजुएला में पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार थी तब वो हर दिन 4 लाख ईरानी कच्चे तेल को खरीदते थे और इसे वेनेजुएला के कच्चे तेल में मिलाकर उसे रिफाइन करते थे। अब जब अमेरिका की एंट्री वेनेजुएला में हुई तो उसे समझ आ गया कि वेनेजुएला के कच्चे तेल को निकालना और उसे रिफाइन करना आसान काम नहीं है और इसके लिए ईरान के कच्चे तेल की ज्यादा आवश्यकता है और हो सकता है कि इसी वजह से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ यह युद्ध शुरू किया और यह सोचा हो कि जैसे निकोलस मादुरो के हटते ही वेनेजुएला अमेरिका के कब्जे में चला गया वैसे ही ईरान का कच्चा तेल भी उन्हें मिल जाएगा। और यही बात राष्ट्रपति ट्रंप आज भी कह रहे हैं। ईरान के कच्चे तेल की एक और खासियत यह है कि यह कम गाढ़ा होता है, इसमें ज्यादा शुद्धियां नहीं होती और इसी वजह से ईरान में कच्चे तेल को निकालने का खर्च सबसे कम है। इंडेक्स बॉक्स के मुताबिक अमेरिका में एक बैरल यानी 159 लीटर कच्चे तेल को निकालने का खर्च $50 के आसपास है। नॉर्वे में आप देख ही रहे हैं $60 है, चाइना में $45, ब्राजील में $40, कनाडा में $30, वेनेजुएला में $30। तो $30 और अमेरिका का देखिए $50 और फिर आ जाइए रूस और ईरान जहां पर सिर्फ $20 खर्च होता है प्रति बैरल और इराक में उससे भी कम है $10 और सऊदी अरब में तो उससे भी कम $4 है। तो कुल मिलाकर ईरान में एक बैरल कच्चे तेल को निकालने का खर्च आपके सामने है स्क्रीन पर, बहुत कम पड़ता है। कच्चा तेल निकाला जा सकता है कम कीमत पर और यह उसके लिए सबसे बड़ी कमाई का साधन है। कच्चे तेल को बेचना भी आसान होता है और यही कारण है कि अमेरिका ईरान के कच्चे तेल के मोह को छोड़ नहीं पाता। वेनेजुएला का मिल गया लेकिन अभी उससे मन नहीं भरा है, ईरान के तेल पर नजर है। इस बयान से दूसरी बात यह पता चलती है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने खार्ग द्वीप पर अमेरिकी कब्जे का सपना अभी छोड़ा नहीं है। पर्शियन गल्फ में खार्ग आइलैंड इस जगह पर मौजूद है जहां से ईरान की तटीय सीमा लगभग 25 किलोमीटर दूर है जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इसकी दूरी 483 किलोमीटर है। यह द्वीप ईरान से पूरी तरह कटा है जिसकी वजह से इसे काफी संवेदनशील माना जाता है और इस द्वीप पर अमेरिका द्वारा कब्जा करने का सीधा मतलब है ईरान की आर्थिक नस दबा देना। यह द्वीप सिर्फ 22 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला है, 8 किलोमीटर लंबा है, 4.5 किलोमीटर चौड़ा। क्षेत्रफल के लिहाज से यह दुनिया के सबसे छोटे द्वीप में से एक है लेकिन ईरान के लिए यह उसका सब कुछ है। ईरान अपना 90% कच्चा तेल इसी द्वीप से निर्यात करता है। इस द्वीप पर ईरान ने इस तरह के जमीन के अंदर बड़े बड़े टैंकर्स बनाए हैं जहां कच्चे तेल को जमा करके रखा जाता है। ईरान खुद कहता है कि खार्ग आइलैंड पर एक बार में 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल स्टोर करके रखा जा सकता है। अब अगर अमेरिका ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया तो ईरान आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा, वो इस द्वीप के बिना अपना कच्चा तेल बेच नहीं पाएगा। इसका कारण यह है कि ईरान के ज्यादातर समुद्री तट काफी उथले हैं, जहां तेल के बड़े टैंकर्स का पहुंचना मुश्किल होता है, और यही वजह है कि अगर ईरान किसी भी रूप में खार्ग आइलैंड पर अपना नियंत्रण खो देता है तो कच्चा तेल दुनिया में बेचना मुश्किल हो जाएगा, और एक ऑयल डिपो जो उसका सबसे बड़ा 90% तेल वाला ऑयल डिपो है वो उसके हाथ से निकल जाएगा। हालांकि ये इतना भी आसान नहीं होगा, अगर आसान होता तो मार्च में ही राष्ट्रपति ट्रंप खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की बात कर रहे थे, कर लेते, लेकिन उनके समुद्री जहाज अब भी ओमान से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इसके अलावा ये भी सोचिए कि अगर ईरान ने अमेरिका से युद्ध लड़ने की तैयारी की है तो उसने खार्ग आइलैंड को बचाने की योजना जरूर बनाई होगी। आज की तारीख में इस द्वीप पर लगभग 10,000 लोगों की आबादी रहती है। माना जाता है कि इनमें से ज्यादातर लोग IRGC के जवान हैं। इसके अलावा IRGC ने यहां एक एयर स्ट्रिप भी बना रखी है, और ईरान खुलकर कहता है कि अगर उसके इस द्वीप पर हमला हुआ तो वो पर्शियन गल्फ के बाकी सभी द्वीप को निशाना बनाएगा, और ऐसी स्थिति में आंख के बदले आंख की तरह द्वीप के बदले द्वीप की जंग शुरू हो जाएगी। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो इसमें आपको पर्शियन गल्फ में तेल और गैस के कई भंडार नजर आएंगे जो आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहे हैं। इनकी संख्या हजारों में है। ये सारे तेल और गैस के भंडार ईरान के निशाने पर आ जाएंगे और ये लड़ाई इसके बाद काफी भयानक रूप ले लेगी। खार्ग आइलैंड को ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता है, लेकिन इस आइलैंड की किस्मत को बहुत सारे लोग चमत्कार से भी जोड़कर देखते हैं। साल 1980 में जब इराक और ईरान का युद्ध शुरू हुआ था तब सद्दाम हुसैन की वायुसेना ने इस खार्ग आइलैंड पर 50 से ज्यादा बॉम्ब गिराए थे, लेकिन उन हमलों में भी इस द्वीप से ईरान के कच्चे तेल का निर्यात बंद नहीं हुआ था। इसके अलावा साल 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जब तेहरान में अमरीकी दूतावास के 66 लोगों को बंधक बनाया गया, तब भी तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने ये योजना बनाई थी कि वो ईरान के इस खार्ग आइलैंड पर कब्जा करेंगे, बदले में अपने बंधकों को ईरान से छुड़ा लेंगे, लेकिन ये योजना भी लागू नहीं हो पाई। और अब राष्ट्रपति ट्रंप भी शायद इसी खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने के बारे में सोच रहे हैं, और ये राष्ट्रपति ट्रंप का 38 साल पुराना सपना भी है। साल 1988 में द गार्डियन को दिए एक इंटरव्यू में, तब उनकी उम्र बहुत कम थी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो अगर जिमी कार्टर की जगह होते तो खार्ग आइलैंड में अपनी सेना भेजकर उस पर कब्जा कर लेते। और आज आप देखिए कि जब राष्ट्रपति ट्रंप खुद इस युद्ध में फंसे हैं तब वो ऐसा ही करने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि आपको तेहरान टाइम्स का ये फ्रंट पेज याद होगा जब राष्ट्रपति ट्रंप ने खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की बात कही थी। ये तेहरान टाइम्स का ये मार्च के आसपास की बात है। पहले पेज पर यह लिखा गया था कि वेलकम टू हेल, यानी नर्क में आपका स्वागत है। तो कुल मिलाकर यह साफ साफ कहा गया कि अगर आप खार्ग में आएंगे तो तेहरान टाइम्स के जरिए यह बताया गया कि आपका नर्क में स्वागत है। इस सब के बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर गहरी चिंता जताई है। उनका यह कहना है कि जिस तरह से अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, ये संकट और बढ़ेगा, इसके नतीजे इस इलाके से कहीं आगे तक जाएंगे, और ये हम सब जानते हैं। पूरे विश्व में तेल गैस का संकट, महंगाई, महामारी, ये सब संकेत साफ दिख रहे हैं। अब अमेरिका और ईरान रुकने को तैयार नहीं है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर अपने हमलों को जारी रखा है। तो न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक कल आधी रात अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने दक्षिणी ईरान, तेहरान, हॉर्मूज के पास बंदर अब्बास पर कई हवाई हमले किए हैं। इनमें भी तेहरान के पास कई धमाके होने की आवाज सुनी गई। बंदर अब्बास पर भी अमेरिका की तरफ से खतरनाक बॉम्ब्स को दागा गया। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक उसने ईरान के सैन्य ठिकानों, निगरानी केंद्रों, रडार साइट्स को नष्ट किया, और ये हमले आत्मरक्षा में किए गए। यानी अमेरिका का कहना है कि इन सैन्य ठिकानों से उनकी सेना ठिकानों को और ठिकानों को खतरा था, जिसके कारण सेल्फ डिफेंस में दूसरे दिन भी उसने ईरान पर ये एयर स्ट्राइक्स जारी रखे। देखिए,
1: Oh,
0: जी। अब इन हमलों के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने यह कहा है कि अमेरिका ने ईरान को समझौता करने का पूरा मौका दिया था, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया और अब अमेरिका पूरी ताकत से उसे जवाब दे रहा है। सुनिए पीट हेक्सेथ को।
1: We will be hitting Iran hard and we will be because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do and they haven't been willing to do it. So as President Trump said, they've been tap, tap, tapping. You can see when someone's trying to tap, tap, tap on a deal. Instead, they're going to have tap, tap, tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America. And that's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
0: राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये धमकी दी है कि अगर ईरान के साथ शांति समझौता नहीं हुआ तो उस पर और भी बड़े हमले किए जाएंगे। सुनिए।
2: But we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along.
0: अल जजीरा का दावा है कि ईरान के दक्षिणी हिस्से में कई धमाकों की आवाज सुनी गई और यह हॉर्मूज के पास का वही इलाका है जहां एक दिन पहले भी अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने हमले करने का दावा किया था। इस सब के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को यह बताया है कि उन्होंने खुद ईरानी अधिकारियों से बात की थी और यह ईरानी अधिकारी चाहते थे कि अमेरिका अपने हमलों को रोक दे, इस तनाव को कम करने की कोशिश करे। लेकिन ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और ईरान के किसी भी अधिकारी ने अमेरिका से कोई बात ही नहीं की है। ईरान का एक और बड़ा दावा यह है कि उसने जॉर्डन में अमेरिका के 3 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को अपनी मिसाइल से नष्ट कर दिया है। ईरान के मुताबिक जिस वक्त ये तीनों लड़ाकू विमान जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर लैंड हुए थे तभी उसने अपनी सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स को दागा जिन्हें जॉर्डन का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया। और दावा है कि इस हमले में अमेरिका के 3 F-35 लड़ाकू विमान नष्ट हो गए और ये कोई मामूली लड़ाकू विमान नहीं है, ये 5वीं पीढ़ी का सबसे आधुनिक फाइटर जेट माना जाता है जिसकी कीमत $120 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 1,148 करोड़ रुपए है। और इसका मतलब यह हुआ कि अगर वाकई में ये 3 विमान नष्ट हुए हैं तो उससे अमेरिका को लगभग 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा। देखिए

अब पिछले 48 घंटों में अमेरिका ने ईरान पर दो बार एयर स्ट्राइक्स की, लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान ने दोनों बार पलटवार के दौरान सऊदी अरब और यूएई को निशाना नहीं बनाया है। आज इसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि आज भी ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, इन पर हमला किया। ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस बार ये तीनों देश ईरान के निशाने पर क्यों है, जबकि पिछली बार सबसे ज्यादा हमले यूएई पर हुए थे। ईरान का पहला निशाना बन रहा है बहरीन, जहां से ईरान की तटीय सीमा 768 किलोमीटर दूर है। ईरान लगभग 17 लाख की आबादी वाले बहरीन पर इसलिए हमले कर रहा है क्योंकि बहरीन में अमेरिका की फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर्स है। इस हेडक्वार्टर को मिडल ईस्ट के क्षेत्र में अमेरिका की आंख और कान माना जाता है, क्योंकि कोई भी लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल, समुद्री जहाज, बोट, पनडुब्बी कोई हमला करती है या उनकी तरफ से कोई गतिविधि भी की जाती है तो उन्हें गाइड इसी हेडक्वार्टर से किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कल आधी रात अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने ईरान पर हवाई हमले किए तो इन्हें गाइड बहरीन के इसी फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर से किया गया, जिसकी वजह से ईरान इसे अब निशाना बना रहा है, सीधा टारगेट कर रहा है, नष्ट करना चाहता है। बहरीन के बाद ईरान का दूसरा निशाना कुवैत, जहां से ईरान की तटीय सीमा है 686 किलोमीटर। मिडल ईस्ट में कुवैत को अमेरिकी वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, क्योंकि यहां अमेरिका का अली अल सलेम एयरबेस है। जब अमेरिका ईरान पर हवाई हमले करने के लिए अपने लड़ाकू विमान को भेजता है तो वो इसी एयरबेस से उड़ान भरते हैं, जहां से ईरान के हवाई क्षेत्र में घुसे बिना हमला करना, हमला करके वापस लौटना आसान होता है। और यही कारण है कि अभी ईरान कुवैत को निशाना बना रहा है। ईरान कुवैत को निशाना बनाकर यही बताना चाहता है कि अगर उसकी धरती से अमेरिकी लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और ईरान का तीसरा बड़ा टारगेट जॉर्डन, जो इजराइल का पड़ोसी देश है, अब ईरान जॉर्डन पर इसलिए लगातार मिसाइलें दाग रहा है क्योंकि जॉर्डन के अजराक एयरबेस पर न सिर्फ अमेरिकी सैनिक तैनात है बल्कि वहां अमेरिका का सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाट भी मौजूद है। इसके अलावा जॉर्डन की लोकेशन ऐसी है कि ईरान से इसराइल की तरफ जाने वाली हर मिसाइल को जॉर्डन के आसमान से गुजरकर जाना पड़ता है, और जॉर्डन अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से ईरान की मिसाइलों को बीच में ही मार गिराता है। यानी जॉर्डन इसराइल और अमेरिका का वो सुरक्षा कवच है जिसे तोड़े बिना ईरान इसराइल का ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और इसीलिए ईरान अपनी सबसे घातक, सबसे लंबी दूरी की मिसाइलों से जॉर्डन के इस कवच को भेदने में जुट गया है। देखिए,

0: यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यह युद्ध अब तेल से पानी पर केंद्रित हो सकता है। इसका कारण यह है कि एक दिन पहले अमेरिका ने सिरिक शहर के दो बड़े वाटर टैंक्स पर हमला किया। ईरान का दावा है कि इन वाटर टैंक्स से 20,000 की आबादी वाले कोहिस्ता शहर को पानी मिलता था और आसपास के 10 गांवों की जल आपूर्ति भी इन्हीं पर निर्भर थी। ईरान का दावा है कि अमेरिका के हमले में इन जलाशयों के नष्ट होने से उसे $8,30,000 यानी 7,95,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। और नुकसान से भी बड़ी बात यह है कि जब ईरान में सूखे का संकट है, वहां भू जल स्तर लगातार घट रहा है, तब ये हमले किए गए हैं। इससे आशंका भी बढ़ गई है कि क्या अपने वाटर टैंक्स का बदला लेने के लिए अमेरिका खाड़ी देशों के डीसलाइनेशन वाटर प्लांट को निशाना बना सकता है। अब आप खाड़ी के इन देशों को यहां नक्शे पर देखेंगे तो इन देशों के पास पानी के प्राकृतिक स्रोत नहीं है। जैसे ईरान में नदियां हैं, वैसे इन देशों में नदियां नहीं है और इसी वजह से ये सारे देश समुद्र के खारे पानी पर निर्भर करते हैं। ये डीसलाइनेशन प्लांट्स यानी खारा पानी साफ करने वाले जो प्लांट्स हैं, जो समुद्र का पानी पीने लायक बनाते हैं, समुद्र के पानी को मशीनों से साफ किया जाता है, उनमें से नमक खनिज सब हटाकर पीने लायक बनाया जाता है। कतर अपनी जरूरत का 99% पानी समुद्र से निकालता है, कुवैत 90%, ओमान 86%, यूएई 80%, सऊदी अरब अपनी जरूरत का 70% पानी समुद्र से निकालता है। अगर ईरान अपने वाटर टैंक्स का बदला लेने के लिए इन डीसलाइनेशन प्लांट्स को निशाना बनाता है, उससे यह युद्ध खतरनाक हो जाएगा। और यही कारण है कि अभी अमेरिका के हमलों को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। एक दिन पहले हमने आपको बताया था कि ईरान युद्ध से अमेरिका खूब मालामाल हो रहा है, उसका तेल निर्यात अप्रैल महीने में 4,65,00,000 बैरल बढ़ गया है। लेकिन आज ही एक नई रिपोर्ट ये आई है कि जब कच्चे तेल के निर्यात से अमेरिका की आमदनी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, तब अमेरिका में महंगाई 3 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर है। इन आंकड़ों के बाद सबको उम्मीद थी कि राष्ट्रपति ट्रंप चिंता जताएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इससे खुश है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ ऐसा कहा जिससे सबके होश उड़ गए। उन्होंने कहा, आई लव इन्फ्लेशन, महंगाई पसंद है, महंगाई बढ़ने से चिंतित नहीं। सुनिए।
1: Mr. President, about the latest inflation number which came out this morning, could that be a
2: no? I love it. The numbers were great. You know what I really love? I love the inflation. The oil would go to $250 a barrel. It's at 85, and which is pretty amazing.
0: अब ईरान युद्ध के दो पहलू हैं। इससे अमेरिकी सरकार को खूब मुनाफा हो रहा है, वो खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं वहां पर उनको महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। सरकार खूब मुनाफा कर रही है लेकिन लोगों के लिए मुश्किल आ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लग रहा है कि वो ऐसा करके जब उनसे सवाल पूछ रहा है वो आई लव इन्फ्लेशन कह रहे हैं, तो वो पूरे इशू को डिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं। इससे पहले चुनावी रैलियों में उन्होंने महंगाई को नियंत्रण में करने की बात कही थी। देखिए,
3: We will end inflation and make America affordable again. We're going to get the prices down. We have to get them down. It's too much. Groceries, cars, how everything. We're going to get the prices down.
4: But prices will come down. You just watch. They'll come down and they'll come down fast, not only with insurance, with everything.
5: Oh, tomorrow I will end inflation. We will cut your taxes, end inflation.
0: अब ये देखिए कि जब हॉर्मूज बंद है तो अमेरिका ने तेल से भरे जहाजों को निकाला कैसे। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कच्चे तेल को निकालने के लिए चाइनीज फॉर्मूला अपनाया है, यानी जिस तरीके को लेकर वो चाइना को ईरानी तेल लेने पर चेतावनी दिया करता था, आज ईरान को चकमा देने के लिए उसी तरीके से खुद तेल निकाल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि अमेरिका अब कच्चे तेल को एक जहाज से दूसरे जहाज में ट्रांसफर करके ईरान को चकमा दे रहा है। तो इंडिया टुडे ऑसेंट की ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से जो पता चला है, खाड़ी देशों के कच्चा तेल का जहाज फारस की खाड़ी से होकर ओमान के समुद्री क्षेत्र में जाता है। ओमान के समुद्री क्षेत्र में ईरान की कोई दखलअंदाजी नहीं, ओमान के ही समुद्री क्षेत्र में रहते हुए चोरी छिपे ओमान के सोहार पोर्ट पर पहुंचता है। यहां से कच्चे तेल को दूसरे जहाज में ट्रांसफर किया जाता है, फिर दूसरा जहाज अपनी मंजिल की ओर रवाना होता है। हालांकि इस काम में जोखिम है, लेकिन जहाज जब ओमान के समुद्री क्षेत्र से रहता है तो इस दौरान अमेरिकी सेना उसको सुरक्षा देती है। पिछले 3 हफ्ते से अमेरिकी सेना ओमान के समुद्री क्षेत्र होकर जाने वाले सभी जहाजों को पूरी तरह सुरक्षा दे रही है, इसीलिए यह क्षेत्र कच्चे तेल की आवाजाही या ट्रांसफर के लिए सुरक्षित माना जाता है। सैटेलाइट तस्वीरों में भी ये दिखता है, ओमान के सोहार पोर्ट से करीब 6 किलोमीटर दूर ओमान की खाड़ी में दो दो के जोड़े में जहाज नजर आ रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि एक साथ करीब 8 जहाज हैं जो दो दो के जोड़े में हैं। इसी तरह से एक जहाज से दूसरे जहाज में कच्चा तेल ट्रांसफर होता है। पिछले कई दिनों से इसी तरह की व्यवस्था चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी दावा कर चुके हैं कि एक सीक्रेट मिशन के जरिए 200 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को अभी तक सुरक्षित निकाला जा चुका है। दावा है कि अमेरिकी सेना ने करीब 957 करोड़ बैरल कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सुरक्षित निकाला। इस व्यवस्था के तहत जिन जहाजों को अमेरिकी सेना मदद दे रही है उनको अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद करना पड़ता है। फिर पूरा जो रास्ता है, पूरे रास्ते में अमेरिका के युद्धपोत और अपाचे हेलीकॉप्टर्स निगरानी करते हैं। हालांकि इस तरीके से केवल कच्चे तेल की ही आवाजाही होती है क्योंकि एलएनजी, एलपीजी या अन्य सामान का ट्रांसफर करना मुश्किल है। और इसीलिए राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि अमेरिकी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 100 मिलियन बैरल कच्चा तेल निकालने में मदद की है। लेकिन इसका सच यह है कि इस युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर दिन 20 मिलियन कच्चा तेल गुजरता था, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज से 100 मिलियन कच्चा तेल, जो बैरल कच्चा तेल है, निकालने में मदद भी की है तो यह कच्चा तेल सिर्फ 5 दिनों के बराबर है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप बहुत चालाकी से इस बात को छिपा लेते हैं, कहते हैं कि अमेरिका तो विश्व कल्याण के लिए काम कर रहा है। सुनिए।
6: Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran, until right now. We took out the other night 22 ships late at night with no lights because they don't have any radar because we blasted the crap out of it. We took out, that's why oil's $85 a barrel.
0: राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि उनकी नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन सच ये है कि हॉर्मुज इस युद्ध से पहले खुला ही हुआ था, लेकिन ये बंद अमेरिका के कारण हुआ। और आज भी जब ये युद्ध दूसरे दिन जारी रहा तब ईरान ने ऐलान कर दिया है कि उसने हॉर्मुज को सभी देशों के जहाजों के लिए बंद कर दिया है।
7: همانها که فرار را برقرار ترجیح می دهند
8: امریکا کے ایران پر حملوں کی وجہ سے ہرمز کو سبھی دیشوں کے جہازوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے
7: سپر انسانی خود قرار می دهند
0: ایک طرف یہ یدھ ہے تو دوسری طرف ہرمز میں لگاتار تیسرے ایسے جہاز پر حملہ جن پر بھارتی ناوک سوار تھے ان میں پہلے جہاز پر پلاؤ کا جھنڈا لگا تھا 24 بھارتی ناوک سوار تھے جنہیں سرکشت بچا لیا گیا और यह हमला अमेरिका ने किया था। इसके बाद दूसरा जहाज पलाऊ का झंडा था, इस पर 24 भारतीय नाविक सवार थे जिन पर हमला हुआ और कुल 3 भारतीय नाविक इस हमले में मारे गए और यह हमला भी अमेरिका ने कराया था। और आज तीसरे जहाज को अमेरिका ने निशाना बनाया जिसका नाम MT जलवीर है और इसमें 20 भारतीय नाविक सवार थे जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका लगातार भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर हमले कर रहा है। हमारे 3 नाविकों की जान चली गई और इसके लिए भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिका के सीडीए जेसन मीक्स को तलब किया और उनके समक्ष इस मुद्दे को उठाया है।

0: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि कैसे सब्सिडी के राजनीतिक मॉडल ने बोलिविया जैसे देश को बर्बाद करके रख दिया है। ब्राजील के पड़ोसी देश बोलिविया में इस वक्त दंगे हो रहे हैं। पूरा देश 40 साल के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि 14 सालों के उच्चतम स्तर पर इस वक्त वहां की परेशानियां हैं। बोलिविया का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो रहा है। इस आर्थिक संकट के कारण सरकार ने कई चीजों पर सब्सिडी को हटा दिया है या खत्म कर दिया है, जिससे लोग बुरी तरह भड़के हुए हैं। आज ये खबर दिखाने के पीछे हमारा मकसद यही है कि हम आपको बताएं कि सब्सिडी एक वक्त पर तो आपको सत्ता में ला सकती है, लेकिन यही सब्सिडी लंबे वक्त तक जब लोगों के लिए आदत बन जाए तो वो एक पूरे देश को कैसे बर्बाद कर सकती है। लोगों का कहना है कि जब पिछले कई सालों से पेट्रोल डीजल दूसरी चीजों पर उन्हें सब्सिडी मिल रही थी तो अब इसे वापस क्यों लिया गया और क्यों उनको इतनी कीमतें देनी पड़ रही हैं। इस असंतोष और नाराजगी के कारण पिछले कई दिनों से बोलिविया में दंगों की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही और इन तस्वीरों को देखकर दुनिया में ये बहस छिड़ी है कि क्या सब्सिडी किसी देश को इस तरह से जला भी सकती है। बोलिविया के लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका इस तरह से पूरा देश जल सकता है। कारण यह था कि बोलिविया के पास गैस का बहुत बड़ा भंडार था, इतना बड़ा भंडार कि वो स्पेन फ्रांस जितना अमीर बन सकता था। जब बोलिविया में लिथियम के बड़े बड़े भंडार मिले तो हर किसी ने यही सोचा कि उनकी किस्मत बदलने वाली है, और यह भी हो भी सकता था। आज भी दुनिया में सबसे बड़ा 2,30,00,000 टन लिथियम का भंडार बोलिविया के पास है, और यह वही लिथियम है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज के लिए जरूरी होता है। इतना बड़ा गैस भंडार होने के कारण बोलिविया के पास बहुत बड़ा मौका था कि वो इसकी मदद से अमीर बन सकता था, लेकिन वहां के नेताओं ने चुनाव में इसका लाभ लेने के लिए सब्सिडी मॉडल की शुरुआत की। बोलिविया अपनी जरूरत का 60% पेट्रोल और 95% डीजल आयात करता था, जो आम जनता को महंगा पड़ता था। वहां के नेताओं ने सोचा कि अगर वो गैस से होने वाली आमदनी को पेट्रोल डीजल की सब्सिडी पर खर्च करेंगे तो इससे पेट्रोल डीजल भी सस्ता हो जाएगा, आम जनता भी खुश होकर वोट देगी। उस वक्त इस सब्सिडी मॉडल पर काफी बहस हुई और ये कहा गया कि बोलिविया को अपने गैस से होने वाली कमाई सब्सिडी पर ना खर्च करके आम जनता के विकास दूसरे क्षेत्रों में इसका खर्च करना चाहिए। पर बोलिविया की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए किसी ने नहीं समझा कि यह कितना बड़ा खतरा है। लेकिन लेफ्ट की सरकारों के 20 सालों के शासन में सब्सिडी मॉडल पर जोर हुआ। प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर लोगों को भारी भरकम सब्सिडी मिली। इससे 1 लीटर पेट्रोल के दाम $0.54 पर फिक्स हो गए। कीमत कितनी? $0.54। जब तक गैस के निर्यात से बोलिविया को अच्छी कमाई हो रही थी तब उसे इस सब्सिडी मॉडल से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे ही गैस का निर्यात घटा, बोलिविया का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हुआ, तो वहां लोगों को सब्सिडी देना भारी पड़ गया। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह हो गई कि गैस के निर्यात से उसकी कमाई $6 बिलियन से कम होकर $1.6 बिलियन रह गई, जबकि पेट्रोल डीजल के आयात पर उसका खर्च $3 बिलियन तक पहुंच गया। ऐसी स्थिति में आम जनता को सब्सिडी देना मुमकिन नहीं था, और इसीलिए जब पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी खत्म की गई और इससे वहां महंगाई का विस्फोट हुआ तो लोग सड़कों पर उतरकर विरोध करने लगे। लोगों की दलील यह है कि उनका गैस के निर्यात से कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो बस वो सब्सिडी चाहिए जो 20 सालों से उनको मिल रही थी। जबकि सरकार का कहना है कि अगर उसने सब्सिडी को जारी रखा तो बोलिविया अपनी जरूरत का कच्चा तेल खरीद तक नहीं पाएगा। 2014 से बोलिविया के पास $15 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था, सिर्फ अब बचा है $425 मिलियन। और इस संकट ने बोलिविया को कैसे जलाया है वो पूरी दुनिया देख रही है। इस खबर से 2 सबक हैं। पहला, सब्सिडी मॉडल खराब नहीं होता, लेकिन अगर सिर्फ राजनीति के लिए, लोगों के वोट के लिए इस्तेमाल हो तो खतरनाक बन सकता है। दूसरा, आर्थिक संकट में सब्सिडी का बोझ किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। प्लान बी हर देश के पास होना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं बात दिल्ली की, जहां सिंगर गुरु रंधावा के जिम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। गुरु रंधावा का ये जिम पश्चिम बिहार में है। ये वारदात सुबह करीब 5 बजे के आसपास हुई। दावा है कि मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने सुबह जिम पर 7 राउंड फायर किए और फिर फरार हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है और सिंगर गुरु रंधावा को धमकी दी गई है। हालांकि इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त जिम में लोग नहीं थे। वारदात के बारे में सुबह तब पता चला जब जिम का केयरटेकर वहां पहुंचा, उसने ही पुलिस को जानकारी दी। इस हमले के बाद पुलिस ने हमलावरों की पहचान के लिए जिम और उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। इस हमले को लेकर जो सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है उसमें लिखा गया है कि गुरु रंधावा के जिम 24 आवर्स फिटनेस पर जो फायरिंग हुई वो लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर अनिल पंडित ने करवाई है। अनिल पंडित, इस पोस्ट में धमकी दी गई है कि फायरिंग इसलिए की गई क्योंकि गुरु रंधावा और सलमान की दोस्ती थी। गुरु रंधावा फिटनेस इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। वो अलग अलग तरह के जिम्स की फ्रेंचाइजी से जुड़े हैं। 24 आवर्स फिटनेस के को फाउंडर है। पुलिस का कहना है कि लॉरेंस गैंग द्वारा इस जिम पर फायरिंग की एक वजह रंगदारी मांगना भी हो सकता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि सलमान से करीबी की बात कहकर लॉरेंस गैंग ने कई सेलिब्रिटीज को टारगेट किया है। लॉरेंस गैंग ने सभी सेलिब्रिटीज को सलमान से दूरी बनाने की धमकियां दी। जिन लोगों को लॉरेंस गैंग की ओर से धमकियां मिली है उनमें पहला नाम कॉमेडियन कपिल शर्मा का है। कनाडा में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर 3 बार फायरिंग हुई। पहली बार फायरिंग में आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का नाम आया। उसके बाद 2 बार लॉरेंस गैंग के शूटर्स के कैफे पर फायरिंग की ऐसी खबर आई। इन दोनों वारदात में कपिल शर्मा को सलमान से करीबी ना रखने की चेतावनी तरीके तरीके से दी गई। इससे पहले साल 2024 में रैप बादशाह के रेस्टोरेंट पर बार पर बम धमाका किया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में बादशाह के सिविल बार लॉन्च पर कम तीव्रता का बॉम्ब फेंका गया था। जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने, गोल्डी बराड़ गैंग ने ली और इन सभी मामलों में सोशल मीडिया के जरिए जिम्मेदारी की बात सामने आई। और अब आपको उत्तर प्रदेश के इटावा से एक खबर दिखाते हैं, जहां बुधवार की शाम तक एक पक्की आलिशान इमारत खड़ी थी। चमचमाता गुंबद था, आगे चौड़ा चबूतरा, बीहड़ वाले सैयद बाबा का जलवा। मजार की दीवार पर लिखा था कि यहां शेर भी अपनी पूंछ से झाड़ू लगाता है। लेकिन गुरुवार की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, ये मजार वहां से गायब। गुंबद गायब, चबूतरा गायब और तो और वहां का सारा मलबा भी गायब। यहां सिर्फ कमर तक ऊंचे हरे भरे पेड़ लहलहा रहे थे। इलाके के लोग सुबह सुबह आंखें मलते रह गए। कुछ दिन पहले तक यहां पर सजदा होता था, वहां आज पर्यावरण संरक्षण चल रहा है। लोग हैरान है, परेशान है कि 12 घंटे के भीतर ऐसा कौन सा दिव्य प्रयोग हुआ कि पक्के कंस्ट्रक्शन को सीधे जंगल निकल गया। ये मजार आसमान में कैसे लुप्त हो गई, जमीन में समा गई। धार्मिक मॉडल था जिसकी एक्सपायरी डेट अचानक कैसे आ गई। हमारे देश में सरकारी जमीन पर मजार, मंदिर, धार्मिक ढांचे का प्रकट होना कोई नई बात नहीं है। ये एक स्थापित बिजनेस और लैंड मॉडल है। पहले एक सुनसान सरकारी या वन विभाग की जमीन चुनी जाती है, वहां पर पहले चादर डाली जाती है या फिर कोई मूर्ति रख देता है, फिर वहां पक्का चबूतरा बन जाता है, फिर कभी मजार, कभी मंदिर, अवैध किला तक खड़ा हो जाता है। इटावा शहर से 1.5 किलोमीटर दूर इस फिशर वन क्षेत्र की 3,000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर यही मॉडल सालों से भरपूर रहा था। हर साल फरवरी में उर्स होता था, 5 से 7 हजार लोग आते थे, कवालियां होती थी। एक चीज नहीं थी, जमीन के कागजात। जमीन के कागजात थे ही नहीं। इस मजार के केयरटेकर फजल इलाही का दावा था कि यह मजार 800 साल पुरानी है। जब जनवरी में मामला सीएल मुख्यमंत्री पोर्टल पर पहुंचा तो वन विभाग ने कहा कि जमीन के कागजात लाओ। 3 महीने तक कोर्ट कचहरी और सुनवाई चली। मजार के पैरोकार मजार की उम्र तो 800 साल बताते रहे लेकिन 8 महीने पुराना भी कोई सरकारी कागज नहीं दिखा पाए। नतीजा, कोर्ट ने मजार को अवैध और अतिक्रमण घोषित कर दिया। आया बुधवार की शाम 6 बजे का वो क्लाइमैक्स, इस रिपोर्ट में देखिए।
1: ये वही जगह है जहां पर मजार बनी हुई थी और अब यहां पर वृक्ष लगे हुए हैं। वृक्षारोपण कराया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे पौधे लगा दिए गए हैं और यहां ध्वस्तीकरण के बाद इसके अवशेष भी हटा लिए गए हैं। अब महत्वपूर्ण बात है कि जिला प्रशासन ने यह पूरी तरह से गोपनीय करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। हालांकि यहाँ पर जो पक्षकार था उनका दावा रहा कि ये सैकड़ों वर्ष पुरानी मजार, लेकिन दस्तावेज न दिखाने के उपलक्ष्य में इसकी 3 महीने सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया गया था। और अब यहाँ पर इस जगह पर आपको दिखाएं, पूरी तरह से यहाँ अवशेष भी हटाए गए, हालांकि जो वन विभाग के कर्मचारी हैं, अफसर हैं, वो भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इस जगह को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सीमेंटेड, ये सीमेंट की ईंट पत्थर गिट्टी प्लास्टर की हुई रंगी पुती हुई अवशेष अभी भी बाकी है। और जिला प्रशासन का यह गोपनीय तरीके से किया गया ध्वस्तीकरण का जो कार्रवाई है वह बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से किया गया और यहाँ मीडिया को भी दूर रखा गया।
0: खैर, आगे बढ़ते हैं। आज से फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, ये दुनिया का सबसे पसंद किए जाने वाला खेल और यही वजह है कि सबसे ज्यादा देशों की टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं। आज फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला मैच मेक्सिको साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाए जो भारतीय समय के हिसाब से आज रात 12:30 बजे शुरू होगा। तो आज के बाद विश्व भर में जितने भी फुटबॉल लवर्स हैं उनके लिए काम शुरू हो चुका है। चाहे रात में जागना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन मैच तो देखना है। इस शानदार और जोशीले खेल का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है, इसलिए आज हम आपको वर्ल्ड कप से जुड़ी वो बातें बताएंगे जो इस बार इसे बहुत खास बना रही है। इस बार का फीफा मेंस वर्ल्ड कप कई मायनों में बिल्कुल अलग है। इस बार सबसे ज्यादा टीमें वर्ल्ड कप खेलने वाली हैं, जो एक नया रिकॉर्ड होगा। पिछले 7 फीफा वर्ल्ड कप में यानी साल 1998 से 2022 तक 32 टीमों ने ही इस महामुकाबले में हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार 48 देशों की टीमें वर्ल्ड कप खेलने वाली हैं। यानी 48 देशों के 1,248 फुटबॉल प्लेयर्स आपको इस बार नजर आएंगे। इस वर्ल्ड कप की 48 टीमों के बीच फुल 104 कुल मैचेस होंगे, जो पिछले 7 वर्ल्ड कप के हुए कुल मुकाबलों से कहीं ज्यादा है। पिछले 32 टीमों वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में 64 मैच टीम्स के बीच खेले गए थे। 20 जुलाई तक चलने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैच 3 देशों अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में इस बार आयोजित हो रहे हैं और यह भी एक नया रिकॉर्ड है। और हर बार हर देश में जहां जहां ये मैचेस होंगे वहां पर एक ओपनिंग सेरेमनी भव्य होगा। फुटबॉल के 96 साल के इतिहास में पहली बार है जब 3 देश मिलकर वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हो। आमतौर पर एक ही देश में सारे मैचेस आयोजित किए जाते रहे हैं। केवल साल 2002 में जापान और कोरिया ने 7 मिलकर फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया था। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ज्यादा टीम्स का मतलब है ज्यादा मुकाबले, ज्यादा मुकाबलों का मतलब है ज्यादा रोमांच। इस बार वर्ल्ड कप में शामिल 48 टीमों को 12 ग्रुप्स में बांटा गया है। हर ग्रुप में 4 टीम्स हैं जिन्हें ग्रुप स्टेज में 3-3 मैच खेलने को मिलेंगे। ग्रुप स्टेज के बाद 32 टीम नॉकआउट स्टेज में पहुंचेंगी, जिसमें हर ग्रुप की टॉप 2 टीम्स को यानी 24 टीमों को सीधे नॉकआउट स्टेज में एंट्री मिलेगी। जबकि ग्रुप में अगर आप देखिए तो तीसरे नंबर पर रहने वाली 12 टीमों में से 8 बेस्ट टीम्स को नॉकआउट स्टेज का पास मिलेगा। नॉकआउट स्टेज में पहले राउंड ऑफ 32 में पहुंची 32 टीमों के बीच मैच खेले जाएंगे। मैच जीतकर पहुंची 16 टीमों के बीच फिर राउंड ऑफ 16 के नॉकआउट मुकाबले होंगे। राउंड ऑफ 16 के बाद 8 टीम, जिसके बाद क्वार्टर फाइनल में एंट्री मिलेगी और इसके बाद वर्ल्ड कप की बेस्ट 4 टीम्स के बीच सेमीफाइनल मैच होंगे, जिनमें 2 विजेताओं के बीच भारतीय समय के अनुसार 19 जुलाई की रात 12:30 बजे फाइनल मैच खेला जाएगा। इस बार का फुटबॉल वर्ल्ड कप केवल टीम्स और खिलाड़ियों की संख्या में नहीं बल्कि प्राइज मनी को लेकर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार फीफा मेंस वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली 48 टीमों के बीच 6,272 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे, जो पिछले वर्ल्ड कप की तुलना में 50% ज्यादा है। साल 2022 के वर्ल्ड कप में 32 टीम्स में 4,213 करोड़ रुपए बांटे गए थे। अगर हम क्रिकेट से इसकी तुलना करें तो आईसीसी वर्ल्ड कप में मिलने वाली रकम ऊंट मुंह में जीरे जैसी लगेगी। इसी साल खेले गए टी20 मेंस वर्ल्ड कप में 22 टीमों के बीच करीब 108 करोड़ रुपए बांटे गए थे, जबकि 2023 में हुए वनडे वर्ल्ड कप की 10 टीमों में 96 करोड़। आपको बता दें कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप विजेता टीम को 478 करोड़ रुपए प्राइज मनी के तौर पर मिलने वाले हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप के आयोजन में मिलने वाला यह पैसा दर्शकों की जेब से भी होकर गुजरेगा। फुटबॉल मुकाबलों में स्टेडियम की टिकट की कीमतें आसमान छू रही हैं। न्यूयॉर्क में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल के टिकट की कीमत जानते हैं 7,25,000 रुपए। इस बार फाइनल मैच के टिकट की कीमत पिछली बार की तुलना में 4 गुना है। कतर में हुए पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल का टिकट करीब 1.5 लाख रुपए का था। वैसे आपको बता दें कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के टिकट की कीमत 40,000 से 50,000 के करीब होती है, लेकिन रीसेल में कई बार ये 2 से 3 लाख तक भी पहुंच जाती है। सच यह है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप दुनिया के लिए सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि फैंस के लिए त्योहार है। यही कारण है कि इसकी व्यूअरशिप रिकॉर्ड तोड़ होती है। कतर में हुआ पिछला वर्ल्ड कप फाइनल अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच था, इसे जानते हैं कितने लोगों ने देखा? 150 करोड़ लोगों ने देखा था, करीब 89,000 दर्शक तो स्टेडियम में मौजूद थे। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो दर्शकों के लिहाज से सबसे बड़ा वर्ल्ड कप फाइनल 2011 का था, भारत और श्रीलंका के बीच। इस मैच को 56 करोड़ लोगों ने देखा था। भारत ने इस मैच में जीत दर्ज की थी। हालांकि दर्शकों के लिहाज से सबसे बड़ा मैच साल 2019 में खेला गया भारत पाकिस्तान मैच था, जिसे 100 करोड़ लोगों ने देखा। यह सबसे ज्यादा देखने वाला क्रिकेट मैच है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। हर 4 साल में होने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप हर बार और बड़ा बनता जाता है। माना जा रहा है कि व्यूअरशिप के मामले में इस बार भी पिछले सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और याद रहे, किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत चौका देती है। नमस्कार।
2: ममता बनर्जी की टीएमसी में बगावत की आवाजें बुलंद हैं। जो कभी ममता बनर्जी के खास सिपह सलार हुआ करते थे, आज वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं या फिर पार्टी में रहकर गुट बनाने में लगे हैं। अब टीएमसी के तीसरे राज्यसभा सांसद ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
3: क्या ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकल चुकी है? क्या टीएमसी में सिर्फ ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ही बचेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक एक करके टीएमसी के पार्षद, विधायक, सांसद पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। कल सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया था और आज टीएमसी राज्यसभा के सांसद प्रकाश चिक बाराइक ने भी इस्तीफा दे दिया।
4: देखिए, असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया, ये हम लोग के पक्ष में नहीं आया। साथ ही इस मैंडेट को देखते हुए मैं भी अपना पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि मेरा भी कंस्टिट्यूएंसी में उस तरह रिजल्ट नहीं हुआ। अभी गणतांत्रिक देश का गणोदयता जिसको चाहती है वो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है।
3: 3 दिन में टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन इन बागियों में सयानी घोष, प्रतिमा मंडल, माला रॉय, मिताली बाग का नाम भी जोड़ लीजिए। कल टीएमसी के 4 सांसद बीजेपी नेताओं से मिले। जादवपुर की सांसद सयोनी घोष, जयनगर की प्रतिमा मंडल, कोलकाता दक्षिण के मॉल रॉय और आरामबाग के सांसद मिताली बाग बागी खेमे में शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक हुई, जिसमें बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। करीब 1 घंटे तक चारों सांसदों और बीजेपी नेताओं की बैठक चलती रही। बागी गुट का दावा है कि 19 से 20 सांसद उनके संपर्क में हैं। टीएमसी के बागी लोकसभा में अलग गुट बनाना चाहते हैं। अभी लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। अगर ये बागी कामयाब हुए तो लोकसभा में टीएमसी नेता का पद भी इन्हें मिल जाएगा। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और इसीलिए बंगाल पुलिस 4 मई के बाद अपराधियों और आरोपियों की हवाई चप्पल और हाफ पेंट में परेड निकालते हुए नजर आई। फालता में टीएमसी नेता जहांगीर खान की भी ऐसी ही परेड पुलिस ने निकाली है।
5: फालता की जिन गलियों में कभी जहांगीर खान का खौफ पसरा रहता था, उन्हीं गलियों में शुभेंदु राज के भीतर उसे हाफ पैंट पहनाकर घुमाया गया है। खुद को पुष्पा कहने वाले जहांगीर खान की ये केवल परेड नहीं निकाली जा रही, बल्कि फालता के लोगों के दिलों से वो बचा खुचा खौफ भी बाहर किया जा रहा है, जिसका पूरा हिसाब करने का वायदा शुभेंदु अधिकारी ने किया था।
6: आप निश्चिंत राखुन, आमी सब पे गेछि, सब पे गेछि, सबका साथ सबका विकास भी होगा, सबका हिसाब भी होगा।
5: फालता की जो सड़कें जहांगीर की मौजूदगी से कहते हैं सुनसान हो जाया करती थी, फालता की उन्हीं सड़कों पर अभिषेक बनर्जी के पुष्पा की ये चुप्पी उस खौफ का अंत है जिसने लोगों को वर्षों तक वोट डालने से भी रोका।
7: क्या लगता है कि इतने दिनों से उनका डर यहाँ पे था?
8: हाँ, उसके लिए डर के लिए सब बाहर निकल नहीं सकता है कि ऐसा किया था। और अभी हम रनिंग सीएम जो है वो तो आके हम लोग का रोड शो किया है, जो सब अपना से वोट दो, कोई डर नहीं करेगा, भय आउट भरसैन।
5: किसी भय को निकालने के लिए फालता की सड़क पर जहांगीर खान की परेड निकाली जाती। कुछ चुपचाप पुलिस वाले का हाथ पकड़कर गलियों में घूमता देखता। बड़ी बात यह कि अदालत ने पेशी के दौरान जहांगीर खान पैंट पहने दिखा था, लेकिन जब फालता में उसकी परेड निकलती है तो हाफ पैंट में आ जाता है। जहांगीर खान से पहले टीएमसी के कई नेताओं और अपराधियों को बंगाल पुलिस इसी तरह घुमा चुकी, लेकिन जहांगीर खान का ये रूप अपने आप में अहम, क्योंकि चुनाव के दौरान वो खुलेआम पुलिस को धमका रहा था। जहांगीर खान फलता ही नहीं, डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर टीएमसी का बड़ा नेता रहा, जिसे फलता से जीत और ममता सरकार बनने का इतना भरोसा था कि वो खुलेआम इलेक्ट्रिक शमशान विरोधियों के अंतिम संस्कार के लिए मांगने लगा।
9: এখানে জাহাঙ্গীর আমাকে আস্তে আস্তে বলেছে, দাদা সব দিয়েছ, একটা বৈদ্যুতিক চুল্লি করে দিতে হবে। আমি ভাবলাম চার তারিখ ফল বেরোনোর পর কিছু লোক তো হার্ট অ্যাটাক করবে, তাদের সৎকারটাও ভালো করে করা আমাদের উচিত।

0: আর কোথায় গেলেন তথাকথিত পুষ্পা না কি নাম, ওই ডাকাতটা কোথায়, ওই ডাকাতটা কোথায়, কোথায় দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে।
1: पलता में बीजेपी की जीत के बाद जहांगीर खान अंडरग्राउंड हो गया और फिर अचानक उसकी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तारी हुई। पता चला वो भागने की फिराक में था, लेकिन खुद को पुष्पा कहने वाले जहांगीर खान की इस नई तस्वीर ने उसके रहे सहे खौफ को खत्म कर दिया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को जनता ने पहले चुनाव में हराया और अब उसके नेता निशाने पर। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी के प्रधान को उठक बैठक करा के भ्रष्टाचार के लिए माफी मंगवाई गई। दुर्गापुर में गिरफ्तार टीएमसी नेता सुकुमार दत्ता पर अंडे फेंके जाते हैं। टीएमसी के इस नेता पर करोड़ों की उगाही और आतंक फैलाने का आरोप। उत्तर 24 परगना की यह तस्वीर देखी जिसमें टीएमसी नेता नौशाद आलम पर भी अंडे फेंके गए। जनता का यह गुस्सा उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसमें दावा है डर और भ्रष्टाचार चरम पर रहा, जिसके सबूत चारों तरफ बिखरे हैं। उत्तर 24 परगना में जहां टीएमसी नेता पर अंडे फेंके जाते हैं, उससे कुछ ही दूरी पर एक स्कूल से 1,77,00,000 रुपए कैश बरामद होता है। बीजेपी का कहना है कि स्कूल से इतना बड़ा कैश मिलना टीएमसी राज में हो रहे भ्रष्टाचार की मिसाल है। बंगाल में 4 मई के बाद से लगातार टीएमसी के नेता निशाने पर हैं। एक तरफ जनता अपना हिसाब बराबर कर रही है, वहीं पुलिस जहांगीर खान जैसे नेताओं को इस तरह घुमाकर उनके खौफ को खत्म करने में जुटी है।
2: टीएमसी इतनी जल्दी बिखर जाएगी इस बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, और इसी तरह विपक्ष ने साल 2024 में ये नहीं सोचा था कि मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के करीब पहुंच जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत और तमिलनाडु में डीएमके से कांग्रेस की कथित धोखेबाजी मानसून सत्र में विपक्ष को बहुत भारी पड़ सकती है।
3: 24 के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है, और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए, विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो चिल्लाते रहो।
1: 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को खबरदार करते हुए ये तब कहा जब कांग्रेस और उसके समर्थक नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सूर्यास्त के दावे तक करने लगे थे।
4: आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इन्फॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है, और आप देखना, मेरे अंदाजे से मेरा असेसमेंट है 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।
1: तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को याद दिलाया था कि विपक्ष को जनता ने जिताया नहीं बल्कि हराया है।
3: आप सबको शोले फिल्म की मौसी जी याद होगी, तीसरी बार तो हारे हैं पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं पर मौसी मॉरल विक्ट्री तो है ना।
1: 2024 के चुनाव परिणामों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, क्या वो 2026 में सच हो रहा? 2 साल बाद न सिर्फ मोदी एक विजेता के रूप में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, वहीं देश को कांग्रेस के कुचक्र से निकालने का दावा भी करते हैं।
3: एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था।

0: कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है।
1: 2024 के नतीजों के बाद इतनी जल्दी विपक्ष की ताकत बिखर जाएगी, इसकी कल्पना ममता बनर्जी जैसी कद्दावर नेता ने भी नहीं की होगी, जिनकी पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखरी पड़ी, जिसका असर मानसून सत्र में ताकतवर मोदी सरकार के रूप में दिख सकता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 353 सीटें जीती थी, जो मोदी राज में एनडीए का 3 चुनावों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 2024 में एनडीए 292 सीटों पर आ जाती है, लेकिन टीएमसी में बगावत करने वाले 19 सांसदों के समर्थन के बाद एनडीए का आंकड़ा लोकसभा में 311 पहुंच जाता है। अप्रैल में जब संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय 528 सांसद लोकसभा में मौजूद थे और 2/3 बहुमत का आंकड़ा 352 था, सरकार को 298 वोट मिले, विधेयक के खिलाफ 230 वोट डाले गए, यानी 54 वोटों से वो विधेयक गिर गया था। अब सरकार ने इस अंतर को काफी हद तक पाट लिया है। अगर मुद्दों के आधार पर डीएमके के 22 सांसदों का भी समर्थन मिलता है तो एनडीए की ताकत 333 तक हो सकती है। सरकार की नजरें शिवसेना यूबीटी के 9 सांसदों पर भी है, अगर इनमें टूट होती है तो 6 और सांसदों का समर्थन हासिल हो सकता है। इस तरह एनडीए की ताकत बढ़कर 339 तक पहुंच सकती है। बड़ी बात यह कि अप्रैल में संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय एनडीए को 298 सांसदों का समर्थन मिला था, अगर वो 5 वोट भी जोड़े तो एनडीए की संख्या 344 पहुंच जाती है। तो सरकार को उम्मीद है कि अन्य छोटे दल और निर्दलियों के दम पर 2/3 का बहुमत छुआ जा सकता है, यानी 2 साल पहले 240 पर बीजेपी के अटकने को मोदी की हार समझने वाले विपक्ष को नरेंद्र मोदी खबरदार करते हुए जो कुछ कहते हैं वो बात सही निकलती है।
2: कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है। तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है।
1: मोदी के ये कहने के 2 साल बाद लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी विपक्ष मोदी सरकार को 2/3 बहुमत के करीब पहुंचते से रोकता नहीं नजर आ रहा। इसकी वजह टीएमसी के 13 सांसद हैं, जिनमें से सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अगर ये बीजेपी में उपचुनाव के बाद राज्यसभा में आते हैं तो एनडीए का आंकड़ा 149 से 152 पहुंच सकता है। वहीं अगर टीएमसी के कुछ और सांसद टूटते हैं, डीएमके के 8 सांसद भी सशर्त समर्थन देते हैं, तो एनडीए राज्यसभा में 2/3 बहुमत के आंकड़े 164 के लक्ष्य को आसानी से पा सकता है। मतलब संसद में संख्या बल के हिसाब से विपक्ष के लिए एनडीए को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मतलब मोदी के करिश्मे के खात्मे की भविष्यवाणी करने वालों को मुंह की खानी पड़ सकती है।
2: मुझे एक किस्सा याद आता है। सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था, तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है।
3: उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव से पहले हलचल तेज हो चुकी है। बीएसपी बैठकें कर रही है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ समीकरण बिठाने का जतन तलाश रही है। कांग्रेस कह रही है कि वो सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और इन सब के बीच बीजेपी ने चुनाव से पहले नौकरी वाला दांव चल दिया है।
4: उत्तर प्रदेश में जितना मौसम का पारा चढ़ा है उससे ज्यादा सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, क्योंकि 27 के समर के लिए सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। एक हलचल बीएसपी में है। समाजवादी पार्टी के पीडीए के जवाब में बीएसपी की भाईचारा कमेटी ओबीसी और दलित की बड़ी बैठक की गई, जिसमें हर जिले के ओबीसी और दलित नेता मौजूद रहे। ऐसा इसलिए ताकि वोट बैंक न टूटे और पीडीए से बचा रहे। एक और हलचल समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जब सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से बातचीत शुरू होगी, तब सबसे पहले कांग्रेस से किन जिलों में उन्हें चुनाव लड़ने में दिलचस्पी है ये पूछा जाएगा। एसपी को लगता है कि बड़ा उद्देश्य बीजेपी को यूपी में हराना है, फिर सीट पर चाहे कोई उम्मीदवार लड़े, बशर्ते वो उम्मीदवार जाति समीकरण को साध रहा हो और जिताऊ हो। हालांकि सूत्रों से खबर है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 80 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि उसकी 403 सीटों पर पूरी तैयारी है।
5: कांग्रेस की कितनी तैयारी है?
6: 400 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ हमने सभी अपनी तैयारी की है। संगठन बूथ स्तर पर जीतने की क्या रणनीति हो सकती है उस पर हम काम कर रहे हैं।
4: तीसरी हलचल बीजेपी में है। माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठक होगी, मगर उसके पहले योगी सरकार ने नौकरी वाला बड़ा दाम चल दिया है। 2026 में 1.5 लाख से ज्यादा नई भर्तियों की तैयारी है। इसके साथ यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग 60,000 शिक्षकों की भर्ती करेगा। मतलब कह सकते हैं कि यूपी में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
3: अब खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां 24 नॉर्थ परगना में एक स्कूल में 2.25 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इसके अलावा शराब की कुछ बॉटल्स थी, आपत्तिजनक चीजें भी कुछ मिली हैं।

0: 5-5 सौ की नोटों की गड्डियां, 200 के नोटों का बंडल और 100-100 रुपए के नोटों का गट्ठर, ये करोड़ों के कैश पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के कांचरापाड़ा में बने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिले हैं। एक करोड़ 77 लाख रुपए के साथ इस स्कूल में शराब की बोतलें और कॉन्डोम के पैकेट भी मिले हैं। स्कूल में एक बेडरूम जैसा सेमी फर्निश्ड कमरा भी है। सवाल ये है कि इतना पैसा स्कूल में आया कहाँ से?
1: एडमिशन टाकाटा अकाउंटेंट माने भर्ती टाका गुलो एप्रिल मास थेके स्टूडेंट जे भर्ती हय सेई टाका गुलो जमा करेछिलो। एकटा ओनार उचित छिलो माने एकदिन पर दुदिन अंतर बैंके पाठानो, উনি ব্যাংকে পাঠায়নি, আডাটা পুরো অ্যাকাউন্ট সেকশনের পাঠে, আর আমি প্রিন্সিপাল হিসেবে শুধুমাত্র আমার একাডেমিক পার্টের আমার দায়িত্ব ছিল, এই পাঠায়নি সে ব্যাপারে আমার কোনো নলেজ ছিল না।
0: मतलब स्कूल के मुखिया को ही नहीं मालूम कि स्कूल के भीतर अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए प्रिंसिपल साहब ने ये बताया कि बेडरूम इसलिए है ताकि बच्चे बीमार हो तो आराम कर सके। प्रिंसिपल की सफाई किसी के गले नहीं उतर रही है, लेकिन बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है।
2: তৃণমূল একটা অভিশাপ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 15 বছরের একটা অভিশাপ। স্কুল থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হচ্ছে, একটা বেডরুম পাওয়া যাচ্ছে এবং সেখানে আরো কিছু পাওয়া যাচ্ছে, আমার বলতে এখানে রুচিতে বাজছে, এই তো অবস্থা।
0: इस पूरे मामले में पुलिस ने स्कूल के कैशियर अभिजीत नाथ और अविक नाथ के साथ ही असिस्टेंट अकाउंटेंट सायन घोष को हिरासत में ले लिया है। अब जानने की कोशिश हो रही है कितना कैश आया कहां से और स्कूल में चल क्या रहा था। दीपक देवनाथ, नॉर्थ 24 परगना, आज तक।
3: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी के पीओके से इस वक्त जो बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। रावलकोट की सड़कों पर इस समय जो हो रहा है वो महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक खुला विद्रोह है।
4: सुनिए इन नारों को, ये नारे किसी आम प्रदर्शन के नहीं हैं, ये सीधे सीधे उस अवैध कब्जे को चुनौती हैं, जिसे पाकिस्तान दशकों से दुनिया के सामने अपना बताता आया है। पीओके का रावलकोट रविवार को पूरी रात गोलियों, आंसू गैस के गोलों और सेना के बूटों की आवाज से नहीं बल्कि आवाम की दहाड़ से गूंजता रहा। कई जिलों से आए हजारों लोग रात भर सड़कों पर डटे रहे। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबका एक ही संकल्प है, अब हुक्मरानों की तानाशाही नहीं चलेगी। ये गुस्सा अचानक नहीं भड़का है, ये लावा है जो अब फट चुका है। 7 और 8 जून को रावलकोट ने वो खूनी मंजर देखा जिसने आवाम के सब्र का बांध तोड़ दिया। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो पीओके के इतिहास में ये अब तक का सबसे हिंसक और सबसे संगठित आंदोलन बन चुका है। पहले लोग सिर्फ आटे और बिजली के बिलों पर रोते थे, लेकिन इस बार बात आर पार की लड़ाई पर आ गई है। रावलकोट के इस महा आंदोलन ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के उस खोखले प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा कर रख दी है जिसमें वो कश्मीरियों का हमदर्द बनने का ढोंग करता है। ये नारा अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देता है, क्योंकि इस बार आसिम मुनीर की फौज के सामने सिर पर कफन बांधे आवाम खड़ी है। आज तक ब्यूरो।
3: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव का असर अब तेल और गैस की किल्लत से आगे बढ़कर भारतीयों की जान की फिक्र में बदल चुका है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर पिछले 3 दिन में हमला किया है उसने भारत को चिंता से भर दिया है।
5: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिण में होते ये धमाके भारत के लिए चिंता की बात क्यों है? सवाल है कि ईरान की तरफ से गिराया गया अपाचे हेलीकॉप्टर क्यों हजारों भारतीय नाविकों की जान आफत में डाल सकता है?
6: But we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We're really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers.
7: attacking them very hard.
8: You're resuming bombing?
7: Based on the helicopter, I guess we have the right to do that, you know.
5: अमेरिका और ईरान के बीच होती जंग की वजह से अब तक भारत को तेल और गैस की टेंशन रही, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में फंसे हजारों भारतीय नाविक जंग की आग से झुलस सकते हैं। हफ्ते के पहले चार दिनों में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू वाले तीन जहाजों पर अब तक अमेरिका की तरफ से हमला हो चुका है। पहला हमला 8 जून को मेरीवैक्स नाम के जहाज पर होता है, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटबेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिनमें 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला अब जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गिनी बिसाउ के झंडे वाले इस जहाज पर ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। अमेरिका का कहना है कि जहाज के क्रू ने उसका निर्देश नहीं माना, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर 2 हेलफायर मिसाइल दागी। अमेरिकी नौसेना ने बुधवार को 24 भारतीय नागरिकों को ले जा रहे ऑयल टैंकर सेटवेलो पर भीषण हमला किया, इसमें 3 भारतीयों की जान गई है। मरने वालों में 23 साल के नाविक आदित्य शर्मा भी हैं। हमले के बाद भारत में अमेरिका की हरकतों को लेकर गुस्सा है।
9: मैम, कल शाम को मुझे कंपनी से फोन आया था, शिपिंग कंपनी से, कि ऐसे से शिप हिट हुआ है यूएस नेवी के मिसाइल से, तो जो 3 क्रू मिसिंग है उनमें मेरा बेटा भी है। हमारा एक ही बेटा था, वो मेरे परिवार में मेरे मदर है, ब्रदर है, ब्रदर की फैमिली है
10: जी।
9: मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है वो एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी करे, ताकि किसी भी प्रेशर में, चाहे वो कमर्शियल प्रेशर हो या पॉलिटिकल प्रेशर हो, किसी भी शिप को उस तरफ जाने से रोका जाए, ताकि जो क्रू मेंबर होते हैं उनकी लाइफ पे कोई रिस्क ना आए।
5: अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान को कमजोर करने और अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, इसी के चलते वो जहाजों को निशाना बना रहा है, जिसकी चपेट में भारतीय नाविक भी आ रहे हैं। इसने अमेरिका को लेकर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अमेरिका बिना चेतावनी दिए हमले कर रहा है।
11: आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हर जहाज के पास ऑलमोस्ट डिटेल होती है। जहां तक नेवल शिप की बात करूं मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। उसके बाद भी उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चॉपर से या स्पीड बोट से या उनकी जो क्रूजिंग बोट है उस बोट से उस जहाज को बोर्ड कर सकते थे। अगर उस जहाज के ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो उसको डिटेन करना उनके पास एक पर्याय था, लेकिन जिस तरह से दोनों जहाज को हिट किया गया है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी।
5: 3 दिन में 3 भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हमला करने से भारत और अमेरिका के संबंधों और क्वाड सहयोग पर सवाल खड़े किए गए हैं। तीसरे जहाज पर हमले के बाद भारत ने अमेरिकी राजदूत को तलब करके अपना विरोध जताया है।
12: We have seen that there have been several incidents involving Indian seafarers in West Asia in the last few days. We attach high importance to the welfare and well-being of our seafarer community. We need not re-emphasize this point. Yesterday we condemned the attack on a ship off the coast of Oman in which unfortunately we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest.
5: अमेरिका का कहना है कि ये तीनों जहाज ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सवाल है कि AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से जब क्रू मेंबर्स की जानकारी पहले ही मिल जाती है, तब अमेरिका की तरफ से जलवीर जहाज पर हमले का क्या मतलब है?
13: सर, प्लीज शेयर द कोऑर्डिनेट्स।
5: डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंग जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, इसीलिए उनकी तरफ से एक बार फिर ईरान पर जोरदार हमले की चेतावनी दी गई है। खार्ग द्वीप पर कब्जा करने का प्लान बनाया गया है, लेकिन ट्रंप का यह कदम न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद 18,000 भारतीय नाविकों की जान खतरे में डालेगा, बल्कि खाड़ी देशों में रहने वाले 80,00,000 भारतीयों की जान पर भी संकट बनकर छा जाएगा।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
8: East of the Pacific, making histories of Asian American art. On view now through August 16th at the Columbus Museum of Art. Featuring more than 60 works of artists of Asian descent, the exhibition explores how migration across the Pacific has shaped American art and culture. Experience the stories, perspectives, and artistic contributions that continue to influence our world. Don't miss East of the Pacific, making histories of Asian American art, now through August 16th. Plan your visit today at columbusmuseum.org.
10: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
14: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
15: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ePaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: अपना प्लान, अब आज रात को नहीं करेंगे ईरान पर हमला, कहा। दोनों देशों के बीच डील बेहद करीब पहुंच चुकी है, तब तक जारी रहेगी नौसैनिक नाकेबंदी। नीति आयोग की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा, प्रधानमंत्री मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और शिकायतों के तेजी के समाधान पर जोर दिया, 28 राज्यों के सीएम हुए शामिल। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा सरकार की नीति से पूरा समाज त्रस्त है, बोले मोदी ने मरवा दिया, खड़गे ने भी गिनाई खामियां। टीएमसी बागी गुट की नेता काकोली घोष का एनडीए के साथ होने का दावा, कहा 20 सांसद हमारे पक्ष में है, लेकिन आज तक से बोले शत्रुघ्न सिन्हा, मैं ममता के साथ। एमपी की तीनों ही राज्यसभा की सीटों पर बीजेपी की जीत से बढ़कर राहुल गांधी का, चुनाव आयोग की जुगलबंदी से सीट चोरी, नियमों के खिलाफ नटराजन की उम्मीदवारी रद्द। ममता बनर्जी की टीएमसी में बगावत की आवाजें बुलंद हैं, जो कभी ममता बनर्जी के खास सिपह सलार हुआ करते थे, आज वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं या फिर पार्टी में रहकर गुट बनाने में लगे हैं। अब टीएमसी के तीसरे राज्यसभा सांसद ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
1: क्या ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकल चुकी है? क्या टीएमसी में सिर्फ ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ही बचेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक एक करके टीएमसी के पार्षद, विधायक, सांसद पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। कल सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया था और आज टीएमसी राज्यसभा के सांसद प्रकाश चिक बाराइक ने भी इस्तीफा दे दिया।
2: देखिए, असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया, ये हम लोग के पक्ष में नहीं आया, साथ ही इस मैंडेट को देखते हुए मैं भी अपना पद से इस्तीफा दिया क्योंकि मेरा भी कंस्टिट्यूएंसी में उस तरह रिजल्ट नहीं हुआ। अभी गणतांत्रिक देश का गणतंत्रता जिसको चाहती है वो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है।
1: तीन दिन में टीएमसी के तीन राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन इन बागियों में सयानी घोष, प्रतिमा मंडल, माला रॉय, मिताली बाग का नाम भी जोड़ लीजिए। कल टीएमसी के चार सांसद बीजेपी नेताओं से मिले, जादवपुर की सांसद सयोनी घोष, जयनगर की प्रतिमा मंडल, कोलकाता दक्षिण के मॉल रॉय और आरामबाग के सांसद मिताली बाग बागी खेमे में शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक हुई जिसमें बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। करीब एक घंटे तक चारों सांसदों और बीजेपी नेताओं की बैठक चलती रही। बागी गुट का दावा है कि 19 से 20 सांसद उनके संपर्क में हैं। टीएमसी के बागी लोकसभा में अलग गुट बनाना चाहते हैं। अभी लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। अगर ये बागी कामयाब हुए तो लोकसभा में टीएमसी नेता का पद भी इन्हें मिल जाएगा। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और इसीलिए बंगाल पुलिस 4 मई के बाद अपराधियों और आरोपियों की हवाई चप्पल और हाफ पेंट में परेड निकालते हुए नजर आई। फालता में टीएमसी नेता जहांगीर खान की भी ऐसी ही परेड पुलिस ने निकाली है।
3: फालता की जिन गलियों में कभी जहांगीर खान का खौफ पसरा रहता था, उन्हीं गलियों में शुभेंदु राज के भीतर उसे हाफ पैंट पहनाकर घुमाया गया है। खुद को पुष्पा कहने वाले जहांगीर खान की ये केवल परेड नहीं निकाली जा रही, बल्कि फालता के लोगों के दिलों से वो बचा खुचा खौफ भी बाहर किया जा रहा है, जिसका पूरा हिसाब करने का वायदा शुभेंदु अधिकारी ने किया था।
4: अपनी निश्चिंतता कौन আমি সব পেয়ে গেছি, সব পেয়ে গেছি, সবকা সাথ সবকা বিকাশ ভি হোগা, সবকা হিসাব ভি হোগা।
3: ফালতা কি জো সড়কে জাহাঙ্গীর কি মৌজুদগি সে কহতে হ্যায় সুনসান হো জায়া করতি থি। ফালতা কি উনি সড়কো পর অভিষেক বনর্জি কে পুষ্পা কি ইয়ে চুপ্পি উস খৌফ কা অন্ত হ্যায় জিসনে লোগো কো বর্ষো তক ভোট ডালনে সে ভি রোকা।
5: क्या लगता है कि इतने दिनों से उनका डर यहाँ पे था?
6: हाँ, उनर उसके लिए डर के लिए सब बाहर निकल नहीं सकता है कि ऐसा किया था। और अभी हम रनिंग सीएम जो है वो तो आके हम लोग का रोड शो किया है, जो सब अपना से वोट दो, कोई डर नहीं करेगा। भय आउट भर सही।
3: इसी भय को निकालने के लिए फालता की सड़क पर जहांगीर खान की परेड निकाली जाती। कुछ चुपचाप पुलिस वाले का हाथ पकड़कर गलियों में घूमता देखता, बड़ी बात यह कि अदालत में पेशी के दौरान जहांगीर खान पैंट पहने दिखा था, लेकिन जब फालसा में उसकी परेड निकलती है तो हाफ पैंट में आ जाता है। जहांगीर खान से पहले टीएमसी के कई नेताओं और अपराधियों को बंगाल पुलिस इसी तरह घुमा चुकी, लेकिन जहांगीर खान का ये रूप अपने आप में अहम है, क्योंकि चुनाव के दौरान वो खुलेआम पुलिस को धमका रहा था। जहांगीर खान फलता ही नहीं, डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर टीएमसी का बड़ा नेता रहा, जिसे फलता से जीत और ममता सरकार बनने का इतना भरोसा था कि वो खुलेआम इलेक्ट्रिक शमशान विरोधियों के अंतिम संस्कार के लिए मांगने लगा।
7: এখানে জাহাঙ্গীর আমাকে আস্তে আস্তে বলেছে, দাদা সব দিয়েছো, একটা বৈদ্যুতিক চুল্লি করে দিতে হবে। আমি ভাবলাম 4 তারিখ ফল বেরোনোর পর কিছু লোক তো হার্ট অ্যাটাক করবে, তাদের সৎকারটাও ভালো করে করা আমাদের উচিত।
3: লেকিন 4 মই কো বাজি পলটতি হ্যায় তো জাহাঙ্গীর খান কে সুর নরম হোতে গয়ে আর উসনে ফালতা বিধানসভা সিট সে খুদ কো অলগ করনে মে পহলে আপনি ভালাই সমঝি।
4: কোথায় গেলেন তথাকথিত পুষ্পা নাকি নাম, ডাকাতটা কোথায়, ও ডাকাতটা কোথায়, কোথায় দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে।
3: ফলতা মে বিজেপি কি জিত কে বাদ জাহাঙ্গীর খান আন্ডারগ্রাউন্ড হো গিয়া আর ফির অচানক উসকি নেপাল বর্ডার সে গিরফতারি হুই। পতা চলা ও ভাগনে কি ফিরাক মে থা, लेकिन खुद को पुष्पा कहने वाले जहांगीर खान की इस नई तस्वीर ने उसके रहे सहे खौफ को खत्म कर दिया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को जनता ने पहले चुनाव में हराया और अब उसके नेता निशाने पर। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी के प्रधान को उठक बैठक करा के भ्रष्टाचार के लिए माफी मंगवाई गई। दुर्गापुर में गिरफ्तार टीएमसी नेता सुकुमार दत्ता पर अंडे फेंके जाते। टीएमसी के इस नेता पर करोड़ों की उगाही और आतंक फैलाने का आरोप। उत्तर 24 परगना की यह तस्वीर देखी, जिसमें टीएमसी नेता नौशाद आलम पर भी अंडे फेंके गए। जनता का यह गुस्सा उस व्यवस्था के खिलाफ है, जिसमें दावा है डर और भ्रष्टाचार चरम पर रहा, जिसके सबूत चारों तरफ बिखरे। उत्तर 24 परगना में जहां टीएमसी नेता पर अंडे फेंके जाते हैं, उससे कुछ ही दूरी पर एक स्कूल से 1,77,00,000 रुपए कैश बरामद होता है। बीजेपी का कहना है कि स्कूल से इतना बड़ा कैश मिलना टीएमसी राज में हो रहे भ्रष्टाचार की मिसाल है। बंगाल में 4 मई के बाद से लगातार टीएमसी के नेता निशाने पर हैं। एक तरफ जनता अपना हिसाब बराबर कर रही है, वहीं पुलिस जहांगीर खान जैसे नेताओं को इस तरह घुमाकर उनके खौफ को खत्म करने में जुटी है।
0: टीएमसी इतनी जल्दी बिखर जाएगी इस बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, और इसी तरह विपक्ष ने साल 2024 में ये नहीं सोचा था कि मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के करीब पहुंच जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत और तमिलनाडु में डीएमके से कांग्रेस की कथित धोखेबाजी मानसून सत्र में विपक्ष को बहुत भारी पड़ सकती है।
4: 24 के चुनाव में इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए, विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो।
3: 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को खबरदार करते हुए ये तब कहा जब कांग्रेस और उसके समर्थक नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सूर्यास्त के दावे तक करने लगे थे।
8: आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इन्फॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है और आप देखना, मेरे अंदाजे से मेरा असेसमेंट है 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।
3: तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को याद दिलाया था कि विपक्ष को जनता ने जिताया नहीं बल्कि हराया है।
4: आप सबको शोले फिल्म की मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं पर मौसी मॉरल विक्ट्री तो है ना।
3: 2024 के चुनाव परिणामों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा क्या वो 2026 में सच हो रहा? दो साल बाद न सिर्फ मोदी एक विजेता के रूप में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं वहीं देश को कांग्रेस के कुचक्र से निकालने का दावा भी करते हैं।
4: एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है।
3: 2024 के नतीजों के बाद इतनी जल्दी विपक्ष की ताकत बिखर जाएगी इसकी कल्पना ममता बनर्जी जैसी कद्दावर नेता ने भी नहीं की होगी जिनकी पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखरी पड़ी जिसका असर मानसून सत्र में ताकतवर मोदी सरकार के रूप में देख सकता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 353 सीटें जीती थी जो मोदी राज में एनडीए का तीन चुनावों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 2024 में एनडीए 292 सीटों पर आ जाती है लेकिन टीएमसी में बगावत करने वाले 19 सांसदों के समर्थन के बाद एनडीए का आंकड़ा लोकसभा में 311 पहुंच जाता है। अप्रैल में जब संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय 528 सांसद लोकसभा में मौजूद थे और दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा 352 था, सरकार को 298 वोट मिले, विधेयक के खिलाफ 230 वोट डाले गए यानी 54 वोटों से वो विधेयक गिर गया। अब सरकार ने संतर को काफी हद तक पाट लिया है। अगर मुद्दों के आधार पर डीएमके के 22 सांसदों का भी समर्थन मिलता है तो एनडीए की ताकत 333 तक हो सकती है। सरकार की नजरें शिवसेना यूबीटी के 9 सांसदों पर भी है, अगर इनमें टूट होती है तो 6 और सांसदों का समर्थन हासिल हो सकता है। इस तरह एनडीए की ताकत बढ़कर 339 तक पहुंच सकती है। बड़ी बात यह कि अप्रैल में संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय एनडीए को 298 सांसदों का समर्थन मिला था, अगर वो 5 वोट भी जोड़े तो एनडीए की संख्या 344 पहुंच जाती है। तो सरकार को उम्मीद है कि अन्य छोटे दल और निर्दलियों के दम पर 2/3 का बहुमत छुआ जा सकता है। यानी 2 साल पहले 240 पर बीजेपी के अटकने को मोदी की हार समझने वाले विपक्ष को नरेंद्र मोदी खबरदार करते हुए जो कुछ कहते हैं वो बात सही निकलती है।
4: कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है, तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है।
3: मोदी के ये कहने के 2 साल बाद लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी विपक्ष मोदी सरकार को 2/3 बहुमत के करीब पहुंचने से रोकता नहीं नजर आ रहा। इसकी वजह टीएमसी के 13 सांसद हैं जिनमें से सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिदबराई राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अगर ये बीजेपी में उपचुनाव के बाद राज्यसभा में आते हैं तो एनडीए का आंकड़ा 149 से 152 पहुंच सकता है। वहीं अगर टीएमसी के कुछ और सांसद टूटते हैं, डीएमके के 8 सांसद भी सशर्त समर्थन देते हैं, तो एनडीए राज्यसभा में 2/3 बहुमत के आंकड़े 164 के लक्ष्य को आसानी से पा सकता है। मतलब संसद में संख्या बल के हिसाब से विपक्ष के लिए एनडीए को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मतलब मोदी के करिश्मे के खात्मे की भविष्यवाणी करने वालों को मुंह की खानी पड़ सकती है।
4: मुझे किस्सा याद आता है 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था, तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है।
0: उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव से पहले हलचल तेज हो चुकी है। बीएसपी बैठकें कर रही है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ समीकरण बिठाने का जतन तलाश रही है। कांग्रेस कह रही है कि वो सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और इन सब के बीच बीजेपी ने चुनाव से पहले नौकरी वाला दांव चल दिया है।
9: उत्तर प्रदेश में जितना मौसम का पारा चढ़ा है उससे ज्यादा सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, क्योंकि 27 के समर के लिए सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। एक हलचल बीएसपी में है। समाजवादी पार्टी के पीडीए के जवाब में बीएसपी की भाईचारा कमेटी ओबीसी और दलित की बड़ी बैठक की गई, जिसमें हर जिले के ओबीसी और दलित नेता मौजूद रहे। ऐसा इसलिए ताकि वोट बैंक न टूटे और पीडीए से बचा रहे। एक और हलचल समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जब सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से बातचीत शुरू होगी, तब सबसे पहले कांग्रेस से किन जिलों में उन्हें चुनाव लड़ने में दिलचस्पी है ये पूछा जाएगा। एसपी को लगता है कि बड़ा उद्देश्य बीजेपी को यूपी में हराना है, फिर सीट पर चाहे कोई उम्मीदवार लड़े, बशर्ते वो उम्मीदवार जाति समीकरण को साध रहा हो और जिताऊ हो। हालांकि सूत्रों से खबर है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 80 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि उसकी 403 सीटों पर पूरी तैयारी है।
10: कांग्रेस की कितनी तैयारी है?
11: 400 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ हमने सभी अपनी तैयारी की है। संगठन बूथ स्तर पर जीतने की क्या रणनीति हो सकती है उस पर हम काम कर रहे हैं।
9: तीसरी हलचल बीजेपी में है। माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठक होगी, मगर उसके पहले योगी सरकार ने नौकरी वाला बड़ा दाम चल दिया है। 2026 में 1.5 लाख से ज्यादा नई भर्तियों की तैयारी है। इसके साथ यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग 60,000 शिक्षकों की भर्ती करेगा। मतलब कह सकते हैं कि यूपी में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां 24 नॉर्थ परगना में एक स्कूल में 2.25 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इसके अलावा शराब की कुछ बॉटल्स थी, आपत्तिजनक चीजें भी कुछ मिली हैं।

0: 500 की नोटों की गड्डियां, 200 के नोटों का बंडल और 100-100 रुपए के नोटों का गट्ठर, ये करोड़ों के कैश पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के कांचरापाड़ा में बने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिले हैं। एक करोड़ 77 लाख रुपए के साथ इस स्कूल में शराब की बोतलें और कॉन्डोम के पैकेट भी मिले हैं। स्कूल में एक बेडरूम जैसा सेमी फर्निश्ड कमरा भी है। सवाल ये है कि इतना पैसा स्कूल में आया कहाँ से?
1: एडमिशन टाकाटा अकाउंटेंट माने ভর্তি টাকাগুলো এপ্রিল মাস থেকে স্টুডেন্ট যে ভর্তি হয় সেই টাকাগুলো জমা করেছিল। একটা ওনার উচিত ছিল মানে একদিন বা দুদিন অন্তর ব্যাংকে পাঠানো, উনি ব্যাংকে পাঠায়নি। আধাটা পুরো অ্যাকাউন্ট সেকশনের পাটে, আর আমি প্রিন্সিপাল হিসেবে শুধুমাত্র আমার একাডেমিক পার্টের আমার দায়িত্ব ছিল, এই পাঠায়নি সে ব্যাপারে আমার কোনো নলেজ ছিল না।
0: मतलब स्कूल के मुखिया को ही नहीं मालूम कि स्कूल के भीतर अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए प्रिंसिपल साहब ने ये बताया कि बेडरूम इसलिए है ताकि बच्चे बीमार हो तो आराम कर सके। प्रिंसिपल की सफाई किसी के गले नहीं उतर रही है, लेकिन बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है।
2: তৃণমূল একটা অভিশাপ, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 15 বছরের একটা অভিশাপ। স্কুল থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হচ্ছে, একটা বেডরুম পাওয়া যাচ্ছে এবং সেখানে আরো কিছু পাওয়া যাচ্ছে, আমার বলতে এখানে রুচিতে বাজছে, এই তো অবস্থা।
0: इस पूरे मामले में पुलिस ने स्कूल के कैशियर अभिजीत नाथ और अविक नाथ के साथ ही असिस्टेंट अकाउंटेंट सायन घोष को हिरासत में ले लिया है। अब जानने की कोशिश हो रही है कितना कैश आया कहां से और स्कूल में चल क्या रहा था। दीपक देवनाथ, नॉर्थ 24 परगना, आज तक।
3: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी के पीओके से इस वक्त जो बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। रावलकोट की सड़कों पर इस समय जो हो रहा है वो महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक खुला विद्रोह है।
4: सुनिए इन नारों को, ये नारे किसी आम प्रदर्शन के नहीं हैं, ये सीधे सीधे उस अवैध कब्जे को चुनौती हैं, जिसे पाकिस्तान दशकों से दुनिया के सामने अपना बताता आया है। पीओके का रावलकोट रविवार को पूरी रात गोलियों, आंसू गैस के गोलों और सेना के बूटों की आवाज से नहीं बल्कि आवाम की दहाड़ से गूंजता रहा। कई जिलों से आए हजारों लोग रात भर सड़कों पर डटे रहे। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबका एक ही संकल्प है, अब हुक्मरानों की तानाशाही नहीं चलेगी। ये गुस्सा अचानक नहीं भड़का है, ये लावा है जो अब फट चुका है। 7 और 8 जून को रावलकोट ने वो खूनी मंजर देखा जिसने आवाम के सब्र का बांध तोड़ दिया। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो पीओके के इतिहास में ये अब तक का सबसे हिंसक और सबसे संगठित आंदोलन बन चुका है। पहले लोग सिर्फ आटे और बिजली के बिलों पर रोते थे, लेकिन इस बार बात आर पार की लड़ाई पर आ गई है। रावलकोट के इस महा आंदोलन ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के उस खोखले प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, जिसमें वो कश्मीरियों का हमदर्द बनने का ढोंग करता है। ये नारा अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देता है, क्योंकि इस बार आसिम मुनीर की फौज के सामने सिर पर कफन बांधे आवाम खड़ी है। आज तक ब्यूरो।
3: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव का असर अब तेल और गैस की किल्लत से आगे बढ़कर भारतीयों की जान की फिक्र में बदल चुका है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर पिछले 3 दिन में हमला किया है उसने भारत को चिंता से भर दिया है।
5: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिण में होते ये धमाके भारत के लिए चिंता की बात क्यों है? सवाल है कि ईरान की तरफ से गिराया गया अपाचे हेलीकॉप्टर क्यों हजारों भारतीय नाविकों की जान आफत में डाल सकता है?
6: But we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers.
7: attacking them very hard.
8: Resuming bombing?
7: Well, we are. Based on the helicopter, I guess we have the right to do that, you know.
5: अमेरिका और ईरान के बीच होती जंग की वजह से अब तक भारत को तेल और गैस की टेंशन रही, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में फंसे हजारों भारतीय नाविक जंग की आग से झुलस सकते हैं। हफ्ते के पहले चार दिनों में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू वाले तीन जहाजों पर अब तक अमेरिका की तरफ से हमला हो चुका है। पहला हमला 8 जून को मेरीवैक्स नाम के जहाज पर होता है, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटबेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिनमें 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला अब जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गिनी बिसाऊ के झंडे वाले इस जहाज पर ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। अमेरिका का कहना है कि जहाज के क्रू ने उसका निर्देश नहीं माना, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर 2 हेलफायर मिसाइल दागी। अमेरिकी नौसेना ने बुधवार को 24 भारतीय नागरिकों को ले जा रहे ऑयल टैंकर सेटवेलो पर भीषण हमला किया, इसमें 3 भारतीयों की जान गई है। मरने वालों में 23 साल के नाविक आदित्य शर्मा भी हैं। हमले के बाद भारत में अमेरिका की हरकतों को लेकर गुस्सा है।
9: कल शाम को मुझे कंपनी से फोन आया था, शिपिंग कंपनी से, कि ऐसे से शिप हिट हुआ है यूएस नेवी की मिसाइल से, तो जो 3 क्रू मिसिंग है उनमें मेरा बेटा भी है। हमारा एक ही बेटा था, वो मेरे परिवार में मेरे मदर है, ब्रदर है, ब्रदर की फैमिली है
3: जी।
9: मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है, वो एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी करे, ताकि किसी भी प्रेशर में, चाहे वो कमर्शियल प्रेशर हो या पॉलिटिकल प्रेशर हो, किसी भी शिप को उस तरफ जाने से रोका जाए, ताकि जो क्रू मेंबर होते हैं उनकी लाइफ पे कोई रिस्क ना आए।
5: अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान को कमजोर करने और अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसी के चलते वो जहाजों को निशाना बना रहा है, जिसकी चपेट में भारतीय नाविक भी आ रहे हैं। इसने अमेरिका को लेकर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अमेरिका बिना चेतावनी दिए हमले कर रहा है।
10: आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हर जहाज के पास ऑलमोस्ट डिटेल होती है। जहां तक नेवल शिप की बात करूं मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। उसके बाद भी उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चॉपर से या स्पीड बोट से या उनकी जो क्रूजिंग बोट है उस बोट से उस जहाज को बोर्ड कर सकते थे। अगर उस जहाज के ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो उसको डिटेन करना उनके पास एक पर्याय था, लेकिन जिस तरह से दोनों जहाज को हिट किया गया है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी।
5: 3 दिन में 3 भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हमला करने से भारत और अमेरिका के संबंधों और क्वाड सहयोग पर सवाल खड़े किए गए हैं। तीसरे जहाज पर हमले के बाद भारत ने अमेरिकी राजदूत को तलब करके अपना विरोध जताया है।
11: We have seen that there have been several incidents involving Indian seafarers in West Asia in the last few days. We attach high importance to the welfare and well-being of our seafarers community. We need not re-emphasize this point. Yesterday we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which unfortunately we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest.
5: अमेरिका का कहना है कि ये तीनों जहाज ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सवाल है कि AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से जब क्रू मेंबर्स की जानकारी पहले ही मिल जाती है, तब अमेरिका की तरफ से जलवीर जहाज पर हमले का क्या मतलब है?
12: Sir, please share the coordinates.
5: डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंग जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, इसीलिए उनकी तरफ से एक बार फिर ईरान पर जोरदार हमले की चेतावनी दी गई है। खार्क द्वीप पर कब्जा करने का प्लान बनाया गया है, लेकिन ट्रंप का यह कदम न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद 18,000 भारतीय नाविकों की जान खतरे में डालेगा, बल्कि खाड़ी देशों में रहने वाले 80,00,000 भारतीयों की जान पर भी संकट बनकर छा जाएगा।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: अपना प्लान, अब आज रात को नहीं करेंगे ईरान पर हमला, कहा। दोनों देशों के बीच डील बेहद करीब पहुंच चुकी है, तब तक जारी रहेगी नौसैनिक नाकेबंदी। नीति आयोग की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा, प्रधानमंत्री मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और शिकायतों के तेजी के समाधान पर जोर दिया, 28 राज्यों के सीएम हुए शामिल। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा सरकार की नीति से पूरा समाज त्रस्त है, बोले मोदी ने मरवा दिया, खड़गे ने भी गिनाई खामियां। टीएमसी बागी गुट की नेता काकोली घोष का एनडीए के साथ होने का दावा, कहा 20 सांसद हमारे पक्ष में है, लेकिन आज तक से बोले शत्रुघ्न सिन्हा, मैं ममता के साथ। एमपी की तीनों ही राज्यसभा की सीटों पर बीजेपी की जीत से बढ़कर राहुल गांधी का, चुनाव आयोग की जुगलबंदी से सीट चोरी, नियमों के खिलाफ नटराजन की उम्मीदवारी रद्द। ममता बनर्जी की टीएमसी में बगावत की आवाजें बुलंद हैं, जो कभी ममता बनर्जी के खास सिपह सलार हुआ करते थे, आज वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं या फिर पार्टी में रहकर गुट बनाने में लगे हैं। अब टीएमसी के तीसरे राज्यसभा सांसद ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
1: क्या ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकल चुकी है? क्या टीएमसी में सिर्फ ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ही बचेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक एक करके टीएमसी के पार्षद, विधायक, सांसद पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। कल सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया था और आज टीएमसी राज्यसभा के सांसद प्रकाश चिक बाराइक ने भी इस्तीफा दे दिया।
2: देखिए, असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया, ये हम लोग के पक्ष में नहीं आया, साथ ही इस मैंडेट को देखते हुए मैं भी अपना पद से इस्तीफा दिया क्योंकि मेरा भी कंस्टिट्यूएंसी में उस तरह रिजल्ट नहीं हुआ। अभी गणतांत्रिक देश का गणतंत्र जिसको चाहती है वो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है।
1: तीन दिन में टीएमसी के तीन राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन इन बागियों में सयानी घोष, प्रतिमा मंडल, माला रॉय, मिताली बाग का नाम भी जोड़ लीजिए। कल टीएमसी के चार सांसद बीजेपी नेताओं से मिले, जादवपुर की सांसद सयोनी घोष, जयनगर की प्रतिमा मंडल, कोलकाता दक्षिण के मॉल रॉय और आरामबाग के सांसद मिताली बाग बागी खेमे में शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक हुई जिसमें बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। करीब एक घंटे तक चारों सांसदों और बीजेपी नेताओं की बैठक चलती रही। बागी गुट का दावा है कि 19 से 20 सांसद उनके संपर्क में हैं। टीएमसी के बागी लोकसभा में अलग गुट बनाना चाहते हैं। अभी लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। अगर ये बागी कामयाब हुए तो लोकसभा में टीएमसी नेता का पद भी इन्हें मिल जाएगा।

0: होगा।
1: फालता की जो सड़कें जहांगीर की मौजूदगी से कहते हैं सुनसान हो जाया करती थी, फालता की उन्हीं सड़कों पर अभिषेक बनर्जी के पुष्पा की चुप्पी उस खौफ का अंत है जिसने लोगों को वर्षों तक वोट डालने से भी रोका।
2: क्या लगता है कि इतने दिनों से उनका डर यहाँ पे था?
3: हाँ, उसके लिए डर के लिए सब बाहर निकल नहीं सकता है कि ऐसा किया था। और अभी हम रनिंग सीएम जो है वो तो आके हम लोग का रोड शो किया है, जो सब अपना से वोट दो, कोई डर नहीं करेगा। भय आउट भर सही।
1: किसी भय को निकालने के लिए फालता की सड़क पर जहांगीर खान की परेड निकाली जाती। वो चुपचाप पुलिस वाले का हाथ पकड़कर गलियों में घूमता देखता। बड़ी बात यह कि अदालत में पेशी के दौरान जहांगीर खान पैंट पहने दिखा था, लेकिन जब फालता में उसकी परेड निकलती है तो हाफ पैंट में आ जाता है। जहांगीर खान से पहले टीएमसी के कई नेताओं और अपराधियों को बंगाल पुलिस इसी तरह घुमा चुकी, लेकिन जहांगीर खान का ये रूप अपने आप में अहम है क्योंकि चुनाव के दौरान वो खुलेआम पुलिस को धमका रहा था। जहांगीर खान फालता ही नहीं, डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर टीएमसी का बड़ा नेता रहा, जिसे फालता से जीत और ममता सरकार बनने का इतना भरोसा था कि वो खुलेआम इलेक्ट्रिक शमशान विरोधियों के अंतिम संस्कार के लिए मांगने लगा।
4: এখানে জাহাঙ্গীর আমাকে আস্তে আস্তে বলেছে, দাদা সব দিয়েছ, একটা বৈদ্যুতিক চুল্লি করে দিতে হবে। আমি ভাবলাম 4 তারিখ ফল বেরোনোর পর কিছু লোক তো হার্ট অ্যাটাক করবে, তাদের সৎকারটাও ভালো করে করা আমাদের উচিত।
1: लेकिन 4 मई को बाजी पलटती है तो जहांगीर खान के सुर नरम होते गए और उसने फालता विधानसभा सीट से खुद को अलग करने में पहले अपनी भलाई समझी।
5: আর কোথায় গেলেন তথাকথিত পুষ্পা নাকি নাম, ও ডাকাতটা কোথায়, ও ডাকাতটা কোথায়, কোথায় দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে।
1: फलता में बीजेपी की जीत के बाद जहांगीर खान अंडरग्राउंड हो गया और फिर अचानक उसकी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तारी हुई। पता चला वो भागने की फिराक में था, लेकिन खुद को पुष्पा कहने वाले जहांगीर खान की इस नई तस्वीर ने उसके रहे सहे खौफ को खत्म कर दिया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को जनता ने पहले चुनाव में हराया और अब उसके नेता निशाने पर। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी के प्रधान को उठक बैठक करा के भ्रष्टाचार के लिए माफी मंगवाई गई। दुर्गापुर में गिरफ्तार टीएमसी नेता सुकुमार दत्ता पर अंडे फेंके जाते। टीएमसी के इस नेता पर करोड़ों की उगाही और आतंक फैलाने का आरोप। उत्तर 24 परगना की यह तस्वीर देखी जिसमें टीएमसी नेता नौशाद आलम पर भी अंडे फेंके गए। जनता का ये गुस्सा उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसमें दावा है डर और भ्रष्टाचार चरम पर रहा, जिसके सबूत चारों तरफ बिखरे हैं। उत्तर 24 परगना में जहां टीएमसी नेता पर अंडे फेंके जाते हैं, उससे कुछ ही दूरी पर एक स्कूल से 1,77,00,000 रुपए कैश बरामद होता है। बीजेपी का कहना है कि स्कूल से इतना बड़ा कैश मिलना टीएमसी राज में हो रहे भ्रष्टाचार की मिसाल है। बंगाल में 4 मई के बाद से लगातार टीएमसी के नेता निशाने पर हैं। एक तरफ जनता अपना हिसाब बराबर कर रही है, वहीं पुलिस जहांगीर खान जैसे नेताओं को इस तरह घुमाकर उनके खौफ को खत्म करने में जुटी है।
6: टीएमसी इतनी जल्दी बिखर जाएगी इस बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, और इसी तरह विपक्ष ने साल 2024 में ये नहीं सोचा था कि मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के करीब पहुंच जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत और तमिलनाडु में डीएमके से कांग्रेस की कथित धोखेबाजी मानसून सत्र में विपक्ष को बहुत भारी पड़ सकती है।
7: 24 के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है, और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए। विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो चिल्ला।

0: बताते रहो।
1: दो साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को खबरदार करते हुए ये तब कहा जब कांग्रेस और उसके समर्थक नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सूर्यास्त के दावे तक करने लगे थे।
2: आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जर्वर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनेमिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, एक साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।
1: तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को याद दिलाया था कि विपक्ष को जनता ने जिताया नहीं बल्कि हराया है।
3: आप सबको शोले फिल्म की मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं पर मौसी, ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं पर मौसी, मॉरल विक्ट्री तो है ना।
1: 2024 के चुनाव परिणामों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, क्या वो 2026 में सच हो रहा? दो साल बाद न सिर्फ मोदी एक विजेता के रूप में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, वहीं देश को कांग्रेस के कुचक्र से निकालने का दावा भी करते हैं।
3: एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है।
1: 2024 के नतीजों के बाद इतनी जल्दी विपक्ष की ताकत बिखर जाएगी, इसकी कल्पना ममता बनर्जी जैसी कद्दावर नेता ने भी नहीं की होगी, जिनकी पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखरी पड़ी, जिसका असर मानसून सत्र में ताकतवर मोदी सरकार के रूप में देख सकता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 353 सीटें जीती थी, जो मोदी राज में एनडीए का 3 चुनावों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 2024 में एनडीए 292 सीटों पर आ जाती है, लेकिन टीएमसी में बगावत करने वाले 19 सांसदों के समर्थन के बाद एनडीए का आंकड़ा लोकसभा में 311 पहुंच जाता है। अप्रैल में जब संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय 528 सांसद लोकसभा में मौजूद थे और 2/3 बहुमत का आंकड़ा 352 था, सरकार को 298 वोट मिले, विधेयक के खिलाफ 230 वोट डाले गए, यानी 54 वोटों से वो विधेयक गिर गया। अब सरकार ने संतर को काफी हद तक पाट लिया है। अगर मुद्दों के आधार पर डीएमके के 22 सांसदों का भी समर्थन मिलता है तो एनडीए की ताकत 333 तक हो सकती है। सरकार की नजरें शिवसेना यूबीटी के 9 सांसदों पर भी है, अगर इनमें टूट होती है तो 6 और सांसदों का समर्थन हासिल हो सकता है। इस तरह एनडीए की ताकत बढ़कर 339 तक पहुंच सकती है। बड़ी बात यह कि अप्रैल में संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय एनडीए को 298 सांसदों का समर्थन मिला था, अगर वो 5 वोट भी जोड़े तो एनडीए की संख्या 344 पहुंच जाती है। तो सरकार को उम्मीद है कि अन्य छोटे दल और निर्दलियों के दम पर 2/3 का बहुमत छुआ जा सकता है। यानी दो साल पहले 240 पर बीजेपी के अटकने को मोदी की हार समझने वाले विपक्ष को नरेंद्र मोदी खबरदार करते हुए जो कुछ कहते हैं वो बात सही निकलती है।
3: कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है, तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है।
1: मोदी की ये कहने के दो साल बाद लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी विपक्ष मोदी सरकार को दो तिहाई बहुमत के करीब पहुंचने से रोकता नहीं नजर आ रहा। इसकी वजह टीएमसी के 13 सांसद हैं, जिनमें से सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिदबराई राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अगर ये बीजेपी में उपचुनाव के बाद राज्यसभा में आते हैं तो एनडीए का आंकड़ा 149 से 152 पहुंच सकता है। वहीं अगर टीएमसी के कुछ और सांसद टूटते हैं, डीएमके के 8 सांसद भी सशर्त समर्थन देते हैं, तो एनडीए राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत के आंकड़े 164 के लक्ष्य को आसानी से पा सकता है। मतलब संसद में संख्या बल के हिसाब से विपक्ष के लिए एनडीए को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मतलब मोदी के करिश्मे के खात्मे की भविष्यवाणी करने वालों को मुंह की खानी पड़ सकती है।
3: मुझे एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था, तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है।
0: उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव से पहले हलचल तेज हो चुकी है। बीएसपी बैठकें कर रही है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ समीकरण बिठाने का जतन तलाश रही है। कांग्रेस कह रही है कि वो सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और इन सब के बीच बीजेपी ने चुनाव से पहले नौकरी वाला दांव चल दिया है।
4: उत्तर प्रदेश में जितना मौसम का पारा चढ़ा है उससे ज्यादा सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, क्योंकि 27 के समर के लिए सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। एक हलचल बीएसपी में है। समाजवादी पार्टी के पीडीए के जवाब में बीएसपी की भाईचारा कमेटी ओबीसी और दलित की बड़ी बैठक की गई, जिसमें हर जिले के ओबीसी और दलित नेता मौजूद रहे। ऐसा इसलिए ताकि वोट बैंक न टूटे और पीडीए से बचा रहे। एक और हलचल समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जब सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से बातचीत शुरू होगी, तब सबसे पहले कांग्रेस से किन जिलों में उन्हें चुनाव लड़ने में दिलचस्पी है ये पूछा जाएगा। एसपी को लगता है कि बड़ा उद्देश्य बीजेपी को यूपी में हराना है, फिर सीट पर चाहे कोई उम्मीदवार लड़े, बशर्ते वो उम्मीदवार जाति समीकरण को साध रहा हो और जिताऊ हो। हालांकि सूत्रों से खबर है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 80 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि उसकी 403 सीटों पर पूरी तैयारी है।
5: कांग्रेस की कितनी तैयारी है?
6: 400 दिनों पर पूरी मजबूती के साथ हमने सभी अपनी तैयारी की है। संगठन बूथ स्तर पर जीतने की क्या रणनीति हो सकती है उस पर हम काम कर रहे हैं।
4: तीसरी हलचल बीजेपी में है। माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठक होगी, मगर उसके पहले योगी सरकार ने नौकरी वाला बड़ा दाम चल दिया है। 2026 में 1.5 लाख से ज्यादा नई भर्तियों की तैयारी है। इसके साथ यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग 60,000 शिक्षकों की भर्ती करेगा। मतलब कह सकते हैं कि यूपी में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां 24 नॉर्थ परगना में एक स्कूल में 2.25 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इसके अलावा शराब की कुछ बॉटल्स थी, आपत्तिजनक चीजें भी कुछ मिली हैं।

0: 500 की नोटों की गड्डियां, 200 के नोटों का बंडल और 100-100 रुपए के नोटों का गट्ठर, ये करोड़ों के कैश पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के कांचरापाड़ा में बने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिले हैं। एक करोड़ 77 लाख रुपए के साथ इस स्कूल में शराब की बोतलें और कॉन्डोम के पैकेट भी मिले हैं। स्कूल में एक बेडरूम जैसा सेमी फर्निश्ड कमरा भी है। सवाल ये है कि इतना पैसा स्कूल में आया कहाँ से?
1: एडमिशन टाकाटा अकाउंटेंट माने भर्ती टाका गुलो एप्रिल मास थेके स्टूडेंट जे भर्ती हय सेई टाका गुलो जमा करेछिलो। एकटा ओनार उचित छिलो माने एकदिन पर दुदिन अंतर ব্যাংকে পাঠানো। উনি ব্যাংকে পাঠায়নি। আড়াটা পুরো অ্যাকাউন্ট সেকশনের পাটে। আর আমি প্রিন্সিপাল হিসেবে শুধুমাত্র আমার একাডেমিক পাটের আমার দায়িত্ব ছিল। এই পাটায়নি সে ব্যাপারে আমার কোনো নলেজ ছিল না।
0: मतलब स्कूल के मुखिया को ही नहीं मालूम कि स्कूल के भीतर अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए प्रिंसिपल साहब ने ये बताया कि बेडरूम इसलिए है ताकि बच्चे बीमार हो तो आराम कर सके। प्रिंसिपल की सफाई किसी के गले नहीं उतर रही है, लेकिन बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है।
2: তৃণমূল একটা অভিশাপ, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 15 বছরের একটা অভিশাপ। স্কুল থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হচ্ছে, একটা বেডরুম পাওয়া যাচ্ছে এবং সেখানে আরো কিছু পাওয়া যাচ্ছে, আমার বলতে এখানে রুচিতে বাজছে।
0: इस पूरे मामले में पुलिस ने स्कूल के कैशियर अभिजीत नाथ और अविक नाथ के साथ ही असिस्टेंट अकाउंटेंट सायन घोष को हिरासत में ले लिया है। अब जानने की कोशिश हो रही है कितना कैश आया कहां से और स्कूल में चल क्या रहा था। दीपक देवनाथ, नॉर्थ 24 परगना, आज तक।
3: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी के पीओके से इस वक्त जो बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। रावलकोट की सड़कों पर इस समय जो हो रहा है वो महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक खुला विद्रोह है।
4: सुनिए इन नारों को। ये नारे किसी आम प्रदर्शन के नहीं हैं, ये सीधे सीधे उस अवैध कब्जे को चुनौती हैं, जिसे पाकिस्तान दशकों से दुनिया के सामने अपना बताता आया है। पीओके का रावलकोट रविवार को पूरी रात गोलियों, आंसू गैस के गोलों और सेना के बूटों की आवाज से नहीं बल्कि आवाम की दहाड़ से गूंजता रहा। कई जिलों से आए हजारों लोग रात भर सड़कों पर डटे रहे। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबका एक ही संकल्प है, अब हुक्मरानों की तानाशाही नहीं चलेगी। ये गुस्सा अचानक नहीं भड़का है, ये लावा है जो अब फट चुका है। 7 और 8 जून को रावलकोट ने वो खूनी मंजर देखा जिसने आवाम के सब्र का बांध तोड़ दिया। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो पीओके के इतिहास में ये अब तक का सबसे हिंसक और सबसे संगठित आंदोलन बन चुका है। पहले लोग सिर्फ आटे और बिजली के बिलों पर रोते थे, लेकिन इस बार बात आर पार की लड़ाई पर आ गई है। रावलकोट के इस महा आंदोलन ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के उस खोखले प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा कर रख दी है जिसमें वो कश्मीरियों का हमदर्द बनने का ढोंग करता है। ये नारा अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देता है, क्योंकि इस बार आसिफ मुनीर की फौज के सामने सिर पर कफन बांधे आवाम खड़ी है। आज तक ब्यूरो।
3: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव का असर अब तेल और गैस की किल्लत से आगे बढ़कर भारतीयों की जान की फिक्र में बदल चुका है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर पिछले 3 दिन में हमला किया है उसने भारत को चिंता से भर दिया है।
5: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के दक्षिण में होते ये धमाके भारत के लिए चिंता की बात क्यों है? सवाल है कि ईरान की तरफ से गिराया गया अपाचे हेलीकॉप्टर क्यों हजारों भारतीय नाविकों की जान आफत में डाल सकता है?
6: But we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers.
7: attacking them very hard.
8: You're resuming bombing?
7: Based on the helicopter, I guess we have the right to do that, you know.
5: अमेरिका और ईरान के बीच होती जंग की वजह से अब तक भारत को तेल और गैस की टेंशन रही, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में फंसे हजारों भारतीय नाविक जंग की आग से झुलस सकते हैं। हफ्ते के पहले चार दिनों में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू वाले तीन जहाजों पर अब तक अमेरिका की तरफ से हमला हो चुका है। पहला हमला 8 जून को मेरीवैक्स नाम के जहाज पर होता है, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटबेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिनमें 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला अब जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गिनी बिसाउ के झंडे वाले इस जहाज पर ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। अमेरिका का कहना है कि जहाज के क्रू ने उसका निर्देश नहीं माना, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर 2 हेलफायर मिसाइल दागी। अमेरिकी नौसेना ने बुधवार को 24 भारतीय नागरिकों को ले जा रहे ऑयल टैंकर सेटवेलो पर भीषण हमला किया, इसमें 3 भारतीयों की जान गई है। मरने वालों में 23 साल के नाविक आदित्य शर्मा भी हैं। हमले के बाद भारत में अमेरिका की हरकतों को लेकर गुस्सा है।
9: मैम, कल शाम को मुझे कंपनी से फोन आया था, शिपिंग कंपनी से, कि ऐसे शिप हिट हुआ है यूएस नेवी के मिसाइल से, तो जो 3 क्रू मिसिंग है उनमें मेरा बेटा भी है। हमारा एक ही बेटा था, वो मेरे परिवार में मेरे मदर है, ब्रदर है, ब्रदर की फैमिली है
10: जी।
9: मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है वो एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी करे, ताकि किसी भी प्रेशर में, चाहे वो कमर्शियल प्रेशर हो या पॉलिटिकल प्रेशर हो, किसी भी शिप को उस तरफ जाने से रोका जाए, ताकि जो क्रू मेंबर होते हैं उनकी लाइफ पे कोई रिस्क ना आए।
5: अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान को कमजोर करने और अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, इसी के चलते वो जहाजों को निशाना बना रहा है, जिसकी चपेट में भारतीय नाविक भी आ रहे हैं। इसने अमेरिका को लेकर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अमेरिका बिना चेतावनी दिए हमले कर रहा है।
11: आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हर जहाज के पास ऑलमोस्ट डिटेल होती है। जहां तक नेवल शिप की बात करूं मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। उसके बाद भी उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चॉपर से या स्पीड बोट से या उनकी जो क्रूजिंग बोट है उस बोट से उस जहाज को बोर्ड कर सकते थे। अगर उस जहाज के ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो उसको डिटेन करना उनके पास एक पर्याय था, लेकिन जिस तरह से दोनों जहाज को हिट किया गया है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी।
5: 3 दिन में 3 भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हमला करने से भारत और अमेरिका के संबंधों और क्वाड सहयोग पर सवाल खड़े किए गए हैं। तीसरे जहाज पर हमले के बाद भारत ने अमेरिकी राजदूत को तलब करके अपना विरोध जताया है।
12: We have seen that there have been several incidents involving Indian seafarers in West Asia in the last few days. We attach high importance to the welfare and well-being of our seafarer community. We need not re-emphasize this point. Yesterday we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which unfortunately we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest.
5: अमेरिका का कहना है कि ये तीनों जहाज ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सवाल है कि AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से जब क्रू मेंबर्स की जानकारी पहले ही मिल जाती है, तब अमेरिका की तरफ से जलवीर जहाज पर हमले का क्या मतलब है?
13: सर, प्लीज शेयर द कोऑर्डिनेट्स।
5: डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंग जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, इसीलिए उनकी तरफ से एक बार फिर ईरान पर जोरदार हमले की चेतावनी दी गई है। खार द्वीप पर कब्जा करने का प्लान बनाया गया है, लेकिन ट्रंप का यह कदम न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद 18,000 भारतीय नाविकों की जान खतरे में डालेगा, बल्कि खाड़ी देशों में रहने वाले 80 लाख भारतीयों की जान पर भी संकट बनकर छा जाएगा।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बदला अपना प्लान, अब आज रात को नहीं करेंगे ईरान पर हमला। कहा दोनों देशों के बीच डील बेहद करीब पहुंच चुकी है, तब तक जारी रहेगी नौसैनिक नाकेबंदी। नीति आयोग की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और शिकायतों के तेजी के समाधान पर जोर दिया। 28 राज्यों के सीएम हुए शामिल। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। कहा सरकार की नीति से पूरा समाज त्रस्त है। बोले मोदी ने मरवा दिया, खड़गे ने भी गिनाई खामियां। टीएमसी बागी गुट की नेता काकोली घोष का एनडीए के साथ होने का दावा। कहा 20 सांसद हमारे पक्ष में है, लेकिन आज तक से बोले शत्रुघ्न सिन्हा, मैं ममता के साथ। एमपी की तीनों ही राज्यसभा की सीटों पर बीजेपी की जीत से बढ़कर राहुल गांधी का चुनाव आयोग की जुगलबंदी से सीट चोरी। नियमों के खिलाफ नटराजन की उम्मीदवारी रद्द। ममता बनर्जी की टीएमसी में बगावत की आवाजें बुलंद हैं। जो कभी ममता बनर्जी के खास सिपह सलार हुआ करते थे, आज वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं या फिर पार्टी में रहकर गुट बनाने में लगे हैं। अब टीएमसी के तीसरे राज्यसभा सांसद ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
1: क्या ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकल चुकी है? क्या टीएमसी में सिर्फ ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ही बचेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक एक करके टीएमसी के पार्षद, विधायक, सांसद पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। कल सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया था और आज टीएमसी राज्यसभा के सांसद प्रकाश चिक बाराइक ने भी इस्तीफा दे दिया।
2: देखिए, असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया, ये हम लोग के पक्ष में नहीं आया। साथ ही इस मैंडेट को देखते हुए मैं भी अपना पद से इस्तीफा दिया क्योंकि मेरा भी कंस्टिट्यूएंसी में उस तरह रिजल्ट नहीं हुआ। अभी गणतांत्रिक देश का गणोदयता जिसको चाहती है वो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है।
1: तीन दिन में टीएमसी के तीन राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन इन बागियों में सयानी घोष, प्रतिमा मंडल, माला रॉय, मिताली बाग का नाम भी जोड़ लीजिए। कल टीएमसी के चार सांसद बीजेपी नेताओं से मिले। जादवपुर की सांसद सयोनी घोष, जयनगर की प्रतिमा मंडल, कोलकाता दक्षिण के मॉल रॉय और आरामबाग के सांसद मिताली बाग बागी खेमे में शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक हुई जिसमें बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। करीब एक घंटे तक चारों सांसदों और बीजेपी नेताओं की बैठक चलती रही। बागी गुट का दावा है कि 19 से 20 सांसद उनके संपर्क में हैं। टीएमसी के बागी लोकसभा में अलग गुट बनाना चाहते हैं। अभी लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। अगर ये बागी कामयाब हुए तो लोकसभा में टीएमसी नेता का पद भी इन्हें मिल जाएगा। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और इसीलिए बंगाल पुलिस 4 मई के बाद अपराधियों और आरोपियों की हवाई चप्पल और हाफ पेंट में परेड निकालते हुए नजर आई। फालता में टीएमसी नेता जहांगीर खान की भी ऐसी ही परेड पुलिस ने निकाली है।
3: फालता की जिन गलियों में कभी जहांगीर खान का खौफ पसरा रहता था, उन्हीं गलियों में शुभेंदु राज के भीतर उसे हाफ पैंट पहनाकर घुमाया गया है। खुद को पुष्पा कहने वाले जहांगीर खान की ये केवल परेड नहीं निकाली जा रही, बल्कि फालता के लोगों के दिलों से वो बचा खुचा खौफ भी बाहर किया जा रहा है, जिसका पूरा हिसाब करने का वायदा शुभेंदु अधिकारी ने किया था।
4: आप निश्चिंत थाकुन, आमी सब पेये गेछि, सब पेये गेछि, सबका साथ सबका विकास भी होगा, सबका हिसाब भी होगा।
3: फालता की जो सड़कें जहांगीर की मौजूदगी से कहते हैं सुनसान हो जाया करती थी, फालता की उन्हीं सड़कों पर अभिषेक बनर्जी के पुष्पा की ये चुप्पी उस खौफ का अंत है जिसने लोगों को वर्षों तक वोट डालने से भी रोका।
5: क्या लगता है कि इतने दिनों से उनका डर यहाँ पे था?
6: हाँ, उसके लिए डर के लिए सब बाहर निकल नहीं सकता है कि ऐसा किया था। और अभी हम रनिंग सीएम जो है वो तो आके हम लोग का रोड शो किया है, जो सब अपना से वोट दो, कोई डर नहीं करेगा। भय आउट भर सही।
3: किसी भय को निकालने के लिए फालता की सड़क पर जहांगीर खान की परेड निकाली जाती है। चुपचाप पुलिस वाले का हाथ पकड़कर गलियों में घूमता देखता, बड़ी बात थी कि अदालत ने पेशी के दौरान जहांगीर खान पैंट पहने दिखा था, लेकिन जब फालतू में उसकी परेड निकलती है तो हाफ पैंट में आ जाता है। जहांगीर खान से पहले टीएमसी के कई नेताओं और अपराधियों को बंगाल पुलिस इसी तरह घुमा चुकी, लेकिन जहांगीर खान का ये रूप अपने आप में अहम है, क्योंकि चुनाव के दौरान वो खुलेआम पुलिस को धमका रहा था। जहांगीर खान फलता ही नहीं, डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर टीएमसी का बड़ा नेता रहा, जिसे फलता से जीत और ममता सरकार बनने का इतना भरोसा था कि वो खुलेआम इलेक्ट्रिक शमशान विरोधियों के अंतिम संस्कार के लिए मांगने लगा।
7: এখানে জাহাঙ্গীর আমাকে আস্তে আস্তে বলেছে, দাদা সব দিয়েছ, একটা বৈদ্যুতিক চুল্লি করে দিতে হবে। আমি ভাবলাম চার তারিখ ফল বেরোনোর পর কিছু লোক তো হার্ট অ্যাটাক করবে, তাদের সৎকারটাও ভালো করে করা আমাদের উচিত।
3: লেকিন 4 মই কো বাজি পলটতি হ্যায় তো জাহাঙ্গীর খান কে সুর নরম হোতে গয়ে আর উসনে ফালতা বিধানসভা সিট সে খুদ কো অলগ করনে মে পহলে আপনি ভালাই সমঝি।
4: কোথায় গেলেন তথাকথিত পুষ্পা নাকি নাম, ডাকাতটা কোথায়, ডাকাতটা কোথায়, কোথায় দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে।
3: ফলতা মে বিজেপি কি জিত কে বাদ জাহাঙ্গীর খান আন্ডারগ্রাউন্ড হো গিয়া আর ফির অচানক উসকি নেপাল বর্ডার সে গিরফতারি হুই। পতা চলা ও ভাগনে কি ফিরাক মে থা, लेकिन खुद को पुष्पा कहने वाले जहांगीर खान की इस नई तस्वीर ने उसके रहे सहे खौफ को खत्म कर दिया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को जनता ने पहले चुनाव में हराया और अब उसके नेता निशाने पर। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी के प्रधान को उठक बैठक करा के भ्रष्टाचार के लिए माफी मंगवाई गई। दुर्गापुर में गिरफ्तार टीएमसी नेता सुकुमार दत्ता पर अंडे फेंके जाते हैं। टीएमसी के इस नेता पर करोड़ों की उगाही और आतंक फैलाने का आरोप। उत्तर 24 परगना की यह तस्वीर देखी जिसमें टीएमसी नेता नौशाद आलम पर भी अंडे फेंके गए। जनता का यह गुस्सा उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसमें दावा है डर और भ्रष्टाचार चरम पर रहा, जिसके सबूत चारों तरफ बिखरे हैं। उत्तर 24 परगना में जहां टीएमसी नेता पर अंडे फेंके जाते हैं, उससे कुछ ही दूरी पर एक स्कूल से 1,77,00,000 रुपए कैश बरामद होता है। बीजेपी का कहना है कि स्कूल से इतना बड़ा कैश मिलना टीएमसी राज में हो रहे भ्रष्टाचार की मिसाल है। बंगाल में 4 मई के बाद से लगातार टीएमसी के नेता निशाने पर हैं। एक तरफ जनता अपना हिसाब बराबर कर रही है, वहीं पुलिस जहांगीर खान जैसे नेताओं को इस तरह घुमाकर उनके खौफ को खत्म करने में जुटी है।
0: टीएमसी इतनी जल्दी बिखर जाएगी इस बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, और इसी तरह विपक्ष ने साल 2024 में ये नहीं सोचा था कि मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के करीब पहुंच जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत और तमिलनाडु में डीएमके से कांग्रेस की कथित धोखेबाजी मानसून सत्र में विपक्ष को बहुत भारी पड़ सकती है।
4: 24 के चुनाव में इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए। विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो।
3: 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को खबरदार करते हुए ये तब कहा जब कांग्रेस और उसके समर्थक नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सूर्यास्त के दावे तक करने लगे थे।
8: आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से मेरा असेसमेंट है 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।
3: तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को याद दिलाया था कि विपक्ष को जनता ने जिताया नहीं, बल्कि हराया है।
4: आप सबको शोले फिल्म की मौसी जी याद होगी, तीसरी बार तो हारे हैं पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं पर मौसी मॉरल विक्ट्री तो है ना।
3: 2024 के चुनाव परिणामों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा क्या वो 2026 में सच हो रहा? दो साल बाद न सिर्फ मोदी एक विजेता के रूप में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, वहीं देश को कांग्रेस के कुचक्र से निकालने का दावा भी करते हैं।
4: एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है।
3: 2024 के नतीजों के बाद इतनी जल्दी विपक्ष की ताकत बिखर जाएगी, इसकी कल्पना ममता बनर्जी जैसी कद्दावर नेता ने भी नहीं की होगी, जिनकी पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखरी पड़ी, जिसका असर मानसून सत्र में ताकतवर मोदी सरकार के रूप में दिख सकता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 353 सीटें जीती थी, जो मोदी राज में एनडीए का 3 चुनावों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 2024 में एनडीए 292 सीटों पर आ जाती है, लेकिन टीएमसी में बगावत करने वाले 19 सांसदों के समर्थन के बाद एनडीए का आंकड़ा लोकसभा में 311 पहुंच जाता है। अप्रैल में जब संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय 528 सांसद लोकसभा में मौजूद थे और 2/3 बहुमत का आंकड़ा 352 था, सरकार को 298 वोट मिले, विधेयक के खिलाफ 230 वोट डाले गए, यानी 54 वोटों से वो विधेयक गिर गया था। अब सरकार ने इस अंतर को काफी हद तक पाट लिया है। अगर मुद्दों के आधार पर डीएमके के 22 सांसदों का भी समर्थन मिलता है तो एनडीए की ताकत 333 तक हो सकती है। सरकार की नजरें शिवसेना यूबीटी के 9 सांसदों पर भी है, अगर इनमें टूट होती है तो 6 और सांसदों का समर्थन हासिल हो सकता है। इस तरह एनडीए की ताकत बढ़कर 339 तक पहुंच सकती है। बड़ी बात यह कि अप्रैल में संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय एनडीए को 298 सांसदों का समर्थन मिला था, अगर वो 5 वोट भी जोड़े तो एनडीए की संख्या 344 पहुंच जाती है। तो सरकार को उम्मीद है कि अन्य छोटे दल और निर्दलियों के दम पर 2/3 का बहुमत छुआ जा सकता है, यानी 2 साल पहले 240 पर बीजेपी के अटकने को मोदी की हार समझने वाले विपक्ष को नरेंद्र मोदी खबरदार करते हुए जो कुछ कहते हैं वो बात सही निकलती है।
4: कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है, तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है।
3: मोदी के ये कहने के 2 साल बाद लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी विपक्ष मोदी सरकार को 2/3 बहुमत के करीब पहुंचने से रोकता नहीं नजर आ रहा। इसकी वजह टीएमसी के 13 सांसद हैं, जिनमें से सुखेंदु शेखर राय सुष्मिता देव और प्रकाश चिदबराई राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अगर ये बीजेपी में उपचुनाव के बाद राज्यसभा में आते हैं तो एनडीए का आंकड़ा 149 से 152 पहुंच सकता है। वहीं अगर टीएमसी के कुछ और सांसद टूटते हैं, डीएमके के 8 सांसद भी सशर्त समर्थन देते हैं, तो एनडीए राज्यसभा में 2/3 बहुमत के आंकड़े 164 के लक्ष्य को आसानी से पा सकता है। मतलब संसद में संख्या बल के हिसाब से विपक्ष के लिए एनडीए को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मतलब मोदी के करिश्मे के खात्मे की भविष्यवाणी करने वालों को मुंह की खानी पड़ सकती है।
4: मुझे एक किस्सा याद आता है, आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था, तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है।
0: उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव से पहले हलचल तेज हो चुकी है। बीएसपी बैठकें कर रही है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ समीकरण बिठाने का जतन तलाश रही है। कांग्रेस कह रही है कि वो सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और इन सब के बीच बीजेपी ने चुनाव से पहले नौकरी वाला दांव चल दिया है।
9: उत्तर प्रदेश में जितना मौसम का पारा चढ़ा है उससे ज्यादा सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, क्योंकि 27 के समर के लिए सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। एक हलचल बीएसपी में है। समाजवादी पार्टी के पीडीए के जवाब में बीएसपी की भाईचारा कमेटी ओबीसी और दलित की बड़ी बैठक की गई, जिसमें हर जिले के ओबीसी और दलित नेता मौजूद रहे। ऐसा इसलिए ताकि वोट बैंक न टूटे और पीडीए से बचा रहे। एक और हलचल समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जब सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से बातचीत शुरू होगी, तब सबसे पहले कांग्रेस से किन जिलों में उन्हें चुनाव लड़ने में दिलचस्पी है ये पूछा जाएगा। एसपी को लगता है कि बड़ा उद्देश्य बीजेपी को यूपी में हराना है, फिर सीट पर चाहे कोई उम्मीदवार लड़े, बशर्ते वो उम्मीदवार जाति समीकरण को साध रहा हो और जिताऊ हो। हालांकि सूत्रों से खबर है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 80 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि उसकी 403 सीटों पर पूरी तैयारी है।
10: कांग्रेस की कितनी तैयारी है?
11: 400 तीनों पर पूरी मजबूती के साथ हमने सभी अपनी तैयारी की है। संगठन बूथ स्तर पर जीतने की क्या रणनीति हो सकती है उस पर हम काम कर रहे हैं।
9: तीसरी हलचल बीजेपी में है। माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठक होगी, मगर उसके पहले योगी सरकार ने नौकरी वाला बड़ा दाम चल दिया है। 2026 में 1.5 लाख से ज्यादा नई भर्तियों की तैयारी है। इसके साथ यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग 60,000 शिक्षकों की भर्ती करेगा। मतलब कह सकते हैं कि यूपी में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां 24 नॉर्थ परगना में एक स्कूल में 2.25 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इसके अलावा शराब की कुछ बॉटल्स थी, आपत्तिजनक चीजें भी कुछ मिली हैं।

0: 500 की नोटों की गड्डियां, 200 के नोटों का बंडल और 100-100 रुपए के नोटों का गट्ठर, ये करोड़ों के कैश पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के कांचरापाड़ा में बने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिले हैं। एक करोड़ 77 लाख रुपए के साथ इस स्कूल में शराब की बोतलें और कॉन्डोम के पैकेट भी मिले हैं। स्कूल में एक बेडरूम जैसा सेमी फर्निश्ड कमरा भी है। सवाल ये है कि इतना पैसा स्कूल में आया कहां से?
1: एडमिशन टाकाटा अकाउंटेंट माने भर्ती टाका गुलो अप्रैल मास থেকে স্টুডেন্ট যে ভর্তি হয় সেই টাকা গুলো জমা করেছিল, একটা ওনার উচিত ছিল মানে একদিন বা দুদিন অন্তর ব্যাংকে পাঠানো, উনি ব্যাংকে পাঠায়নি, আড়াটা পুরো অ্যাকাউন্ট সেকশনের পাটে, আর আমি প্রিন্সিপাল হিসেবে শুধুমাত্র আমার একাডেমিক পার্টের আমার দায়িত্ব ছিল, এই পাটাইনি সে ব্যাপারে আমার কোনো নলেজ ছিল না।
0: मतलब स्कूल के मुखिया को ही नहीं मालूम कि स्कूल के भीतर अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए प्रिंसिपल साहब ने ये बताया कि बेडरूम इसलिए है ताकि बच्चे बीमार हो तो आराम कर सके। प्रिंसिपल की सफाई किसी के गले नहीं उतर रही है, लेकिन बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है।
2: তৃণমূল একটা অভিশাপ, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 15 বছরের একটা অভিশাপ। স্কুল থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হচ্ছে, একটা বেডরুম পাওয়া যাচ্ছে এবং সেখানে আরো কিছু পাওয়া যাচ্ছে, আমার বলতে এখানে রুচিতে বাজছে, এই তো অবস্থা।
0: इस पूरे मामले में पुलिस ने स्कूल के कैशियर अभिजीत नाथ और अविक नाथ के साथ ही असिस्टेंट अकाउंटेंट सायन घोष को हिरासत में ले लिया है। अब जानने की कोशिश हो रही है कितना कैश आया कहां से और स्कूल में चल क्या रहा था। दीपक देवनाथ, नॉर्थ 24 परगना, आज तक।
3: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी के पीओके से इस वक्त जो बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। रावलकोट की सड़कों पर इस समय जो हो रहा है वो महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक खुला विद्रोह है।
4: सुनिए इन नारों को, ये नारे किसी आम प्रदर्शन के नहीं हैं, ये सीधे सीधे उस अवैध कब्जे को चुनौती हैं, जिसे पाकिस्तान दशकों से दुनिया के सामने अपना बताता आया है। पीओके का रावलकोट रविवार को पूरी रात गोलियों, आंसू गैस के गोलों और सेना के बूटों की आवाज से नहीं बल्कि आवाम की दहाड़ से गूंजता रहा। कई जिलों से आए हजारों लोग रात भर सड़कों पर डटे रहे, बच्चे बूढ़े जवान सबका एक ही संकल्प है, अब हुक्मरानों की तानाशाही नहीं चलेगी। ये गुस्सा अचानक नहीं भड़का है, ये लावा है जो अब फट चुका है। 7 और 8 जून को रावलकोट ने वो खूनी मंजर देखा जिसने आवाम के सब्र का बांध तोड़ दिया। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो पीओके के इतिहास में ये अब तक का सबसे हिंसक और सबसे संगठित आंदोलन बन चुका है। पहले लोग सिर्फ आटे और बिजली के बिलों पर रोते थे, लेकिन इस बार बात आर पार की लड़ाई पर आ गई है। रावलकोट के इस महा आंदोलन ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के उस खोखले प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, जिसमें वो कश्मीरियों का हमदर्द बनने का ढोंग करता है। ये नारा अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देता है, क्योंकि इस बार आसिफ मुनीर की फौज के सामने सिर पर कफन बांधे आवाम खड़ी है। आज तक ब्यूरो।
3: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव का असर अब तेल और गैस की किल्लत से आगे बढ़कर भारतीयों की जान की फिक्र में बदल चुका है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर पिछले 3 दिन में हमला किया है उसने भारत को चिंता से भर दिया है।
5: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिण में होते ये धमाके भारत के लिए चिंता की बात क्यों है? सवाल है कि ईरान की तरफ से गिराया गया अपाचे हेलीकॉप्टर क्यों हजारों भारतीय नाविकों की जान आफत में डाल सकता है?
6: But we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers. attacking them very hard.
7: You're resuming bombing?
6: Based on the helicopter, I guess we have the right to do that, you know.
5: अमेरिका और ईरान के बीच होती जंग की वजह से अब तक भारत को तेल और गैस की टेंशन रही, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में फंसे हजारों भारतीय नाविक जंग की आग से झुलस सकते हैं। हफ्ते के पहले चार दिनों में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू वाले तीन जहाजों पर अब तक अमेरिका की तरफ से हमला हो चुका है। पहला हमला 8 जून को मेरीवैक्स नाम के जहाज पर होता है, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटबेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिनमें 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला अब जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गिनी बिसाउ के झंडे वाले इस जहाज पर ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। अमेरिका का कहना है कि जहाज के क्रू ने उसका निर्देश नहीं माना, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर 2 हेलफायर मिसाइल दागी। अमेरिकी नौसेना ने बुधवार को 24 भारतीय नागरिकों को ले जा रहे ऑयल टैंकर सेटवेलो पर भीषण हमला किया, इसमें 3 भारतीयों की जान गई है। मरने वालों में 23 साल के नाविक आदित्य शर्मा भी हैं। हमले के बाद भारत में अमेरिका की हरकतों को लेकर गुस्सा है।
8: मैम, कल शाम को मुझे कंपनी से फोन आया था, शिपिंग कंपनी से, कि ऐसे शिप हिट हुआ है यूएस नेवी के मिसाइल से, तो जो 3 क्रू मिसिंग है उनमें मेरा बेटा भी है। हमारा एक ही बेटा था, वो मेरे परिवार में मेरे मदर है, ब्रदर है, ब्रदर की फैमिली है
3: जी।
8: मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है वो एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी करे, ताकि किसी भी प्रेशर में, चाहे वो कमर्शियल प्रेशर हो या पॉलिटिकल प्रेशर हो, किसी भी शिप को उस तरफ जाने से रोका जाए, ताकि जो क्रू मेंबर होते हैं उनकी लाइफ पे कोई रिस्क ना आए।
5: अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान को कमजोर करने और अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसी के चलते वो जहाजों को निशाना बना रहा है, जिसकी चपेट में भारतीय नाविक भी आ रहे हैं। इसने अमेरिका को लेकर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अमेरिका बिना चेतावनी दिए हमले कर रहा है।
9: आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हर जहाज के पास ऑलमोस्ट डिटेल होती है। जहां तक नेवल शिप की बात करूं मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। उसके बाद भी उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चॉपर से या स्पीड बोट से या उनकी जो क्रूजिंग बोट है उस बोट से उस जहाज को बोर्ड कर सकते थे। अगर उस जहाज के ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो उसको डिटेन करना उनके पास एक पर्याय था, लेकिन जिस तरह से दोनों जहाज को हिट किया गया है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी।
5: 3 दिन में 3 भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हमला करने से भारत और अमेरिका के संबंधों और क्वाड सहयोग पर सवाल खड़े किए गए हैं। तीसरे जहाज पर हमले के बाद भारत ने अमेरिकी राजदूत को तलब करके अपना विरोध जताया है।
10: We have seen that there have been several incidents involving Indian seafarers in West Asia in the last few days. We attach high importance to the welfare and well-being of our seafarer community. We need not re-emphasize this point. Yesterday we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which unfortunately we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest.
5: अमेरिका का कहना है कि ये तीनों जहाज ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सवाल है कि AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से जब क्रू मेंबर्स की जानकारी पहले ही मिल जाती है, तब अमेरिका की तरफ से जलवीर जहाज पर हमले का क्या मतलब है?
11: Sir, please share the coordinates.
5: डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंग जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, इसीलिए उनकी तरफ से एक बार फिर ईरान पर जोरदार हमले की चेतावनी दी गई है। खार्ग द्वीप पर कब्जा करने का प्लान बनाया गया है, लेकिन ट्रंप का यह कदम न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद 18,000 भारतीय नाविकों की जान खतरे में डालेगा, बल्कि खाड़ी देशों में रहने वाले 80,00,000 भारतीयों की जान पर भी संकट बनकर छा जाएगा।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बदला अपना प्लान, अब आज रात को नहीं करेंगे ईरान पर हमला। कहा दोनों देशों के बीच डील बेहद करीब पहुंच चुकी है, तब तक जारी रहेगी नौसैनिक नाकेबंदी। नीति आयोग की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और शिकायतों के तेजी के समाधान पर जोर दिया। 28 राज्यों के सीएम हुए शामिल। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। कहा सरकार की नीति से पूरा समाज त्रस्त है। बोले मोदी ने मरवा दिया, खड़गे ने भी गिनाई खामियां। टीएमसी बागी गुट की नेता काकोली घोष का एनडीए के साथ होने का दावा। कहा 20 सांसद हमारे पक्ष में है, लेकिन आज तक से बोले शत्रुघ्न सिन्हा, मैं ममता के साथ। एमपी की तीनों ही राज्यसभा की सीटों पर बीजेपी की जीत से बढ़कर राहुल गांधी का चुनाव आयोग की जुगलबंदी से सीट चोरी। नियमों के खिलाफ नटराजन की उम्मीदवारी रद्द। ममता बनर्जी की टीएमसी में बगावत की आवाजें बुलंद हैं। जो कभी ममता बनर्जी के खास सिपहसालार हुआ करते थे, आज वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं या फिर पार्टी में रहकर गुट बनाने में लगे हैं। अब टीएमसी के तीसरे राज्यसभा सांसद ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
1: क्या ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकल चुकी है? क्या टीएमसी में सिर्फ ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ही बचेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक एक करके टीएमसी के पार्षद, विधायक, सांसद पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। कल सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया था और आज टीएमसी राज्यसभा के सांसद प्रकाश चिक बाराइक ने भी इस्तीफा दे दिया।
2: देखिए, असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया, ये हम लोग के पक्ष में नहीं आया। साथ ही इस मैंडेट को देखते हुए मैं भी अपना पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि मेरा भी कंस्टिट्यूएंसी में उस तरह रिजल्ट नहीं हुआ। अभी गणतांत्रिक देश का गणतंत्र जिसको चाहती है वो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है।
1: तीन दिन में टीएमसी के तीन राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन इन बागियों में सयानी घोष, प्रतिमा मंडल, माला रॉय, मिताली बाग का नाम भी जोड़ लीजिए। कल टीएमसी के चार सांसद बीजेपी नेताओं से मिले। जादवपुर की सांसद सयोनी घोष, जयनगर की प्रतिमा मंडल, कोलकाता दक्षिण के मॉल रॉय और आरामबाग के सांसद मिताली बाग बागी खेमे में शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक हुई जिसमें बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। करीब एक घंटे तक चारों सांसदों और बीजेपी नेताओं की बैठक चलती रही। बागी गुट का दावा है कि 19 से 20 सांसद उनके संपर्क में हैं। टीएमसी के बागी लोकसभा में अलग गुट बनाना चाहते हैं। अभी लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। अगर ये बागी कामयाब हुए तो लोकसभा में टीएमसी नेता का पद भी इन्हें मिल जाएगा। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और इसीलिए बंगाल पुलिस 4 मई के बाद अपराधियों और आरोपियों की हवाई चप्पल और हाफ पेंट में परेड निकालते हुए नजर आई। फालता में टीएमसी नेता जहांगीर खान की भी ऐसी ही परेड पुलिस ने निकाली है।
3: फालता की जिन गलियों में कभी जहांगीर खान का खौफ पसरा रहता था, उन्हीं गलियों में शुभेंदु राज के भीतर उसे हाफ पैंट पहनाकर घुमाया गया है। खुद को पुष्पा कहने वाले जहांगीर खान की ये केवल परेड नहीं निकाली जा रही, बल्कि फालता के लोगों के दिलों से वो बचा खुचा खौफ भी बाहर

0: আমি সব পেয়ে গেছি, সব পেয়ে গেছি, সবকা সাথ সবকা বিকাশ ভি হোগা, সবকা হিসাব ভি হোগা।
1: ফালতা কি জো সড়কে জাহাঙ্গীর কি মৌজুদগি সে কহতে হ্যাঁ সুনসান হো জায়া করতি থি, ফালতা কি উনহীঁ সড়কো পর অভিষেক বনার্জি কে পুষ্পা কি চুপ্পি উস খৌফ কা অন্ত হ্যায় জিসনে লোগো কো বর্ষো তক ভোট ডালনে সে ভি রোকা।
2: क्या लगता है कि इतने दिनों से उनका डर यहाँ पे था?
3: हाँ, उसके लिए डर के लिए सब बाहर निकल नहीं सकता है कि ऐसा किया था। और अभी हम रनिंग सीएम जो है वो तो आके हम लोग का रोड शो किया है, जो सब अपना से वोट दो, कोई डर नहीं करेगा। भय आउट भर सही।
1: इसी भय को निकालने के लिए फालता की सड़क पर जहांगीर खान की परेड निकाली जाती। कुछ चुपचाप पुलिस वाले का हाथ पकड़कर गलियों में घूमता देखता। बड़ी बात यह कि अदालत में पेशी के दौरान जहांगीर खान पैंट पहने दिखा था, लेकिन जब फालता में उसकी परेड निकलती है तो हाफ पैंट में आ जाता है। जहांगीर खान से पहले टीएमसी के कई नेताओं और अपराधियों को बंगाल पुलिस इसी तरह घुमा चुकी, लेकिन जहांगीर खान का ये रूप अपने आप में अहम है, क्योंकि चुनाव के दौरान वो खुलेआम पुलिस को धमका रहा था।
4: उन्हें निजे के सिंह मने करे सिनेमा हाटी से आमरा पुष्पा छुपे गए।
1: जहांगीर खान फालता ही नहीं, डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर टीएमसी का बड़ा नेता रहा, जिसे फालता से जीत और ममता सरकार बनने का इतना भरोसा था कि वो खुलेआम इलेक्ट्रिक शमशान विरोधियों के अंतिम संस्कार के लिए मांगने लगा।
5: এখানে জাহাঙ্গীর আমাকে আস্তে আস্তে বলেছে, দাদা সব দিয়েছো, একটা বৈদ্যুতিক চুল্লি করে দিতে হবে। আমি ভাবলাম চার তারিখ ফল বেরোনোর পর কিছু লোক তো হার্ট অ্যাটাক করবে, তাদের সৎকারটাও ভালো করে করা আমাদের উচিত।
1: লেকিন 4 মই কো বাজি পলটতি তো জাহাঙ্গীর খান কে সুর নরম হতে গে, আর উসনে ফালতা বিধানসভা সিট সে খুদ কো অলগ করনে মে পহলে আপনি ভালাই সমঝি।
0: আর কোথায় গেলেন তথাকথিত পুষ্পা নাকি নাম, ডাকাতটা কোথায়, ডাকাতটা কোথায়, কোথায় দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে।
1: ফালতা মে বিজেপি কি জিত কে বাদ জাহাঙ্গীর খান আন্ডারগ্রাউন্ড হো গিয়া, আর ফির অচানক উসকি নেপাল বর্ডার সে গিরফতারি হুই। পতা চলা ও ভাগনে কি ফিরাক মে থা, লেকিন খুদ কো পুষ্পা কহনে ওয়ালে জাহাঙ্গীর খান কি ইস নয়ী তসবীর নে উসকে রহে সহে খৌফ কো খতম কর দিয়া হ্যায়। পশ্চিম বঙ্গাল মে তৃণমূল কংগ্রেস কো জনতা নে পহলে চুনাও মে হারায়া, আর আব উসকে নেতা নিশানে পর। পশ্চিম বঙ্গাল কে পূর্বী মিদনাপুর মে টিএমসি কে প্রধান কো উঠক বৈঠক করা কে ভ্রষ্টাচার কে লিয়ে মাফি মঙ্গওয়াই গয়ী। দুর্গাপুর মে গিরফতার টিএমসি নেতা সুকুমার দত্তা পর অন্ডে ফেঁকে যাতে। टीएमसी के इस नेता पर करोड़ों की उगाही और आतंक फैलाने का आरोप। उत्तर 24 परगना की यह तस्वीर देखी, जिसमें टीएमसी नेता नौशाद आलम पर भी अंडे फेंके गए। जनता का यह गुस्सा उस व्यवस्था के खिलाफ है, जिसमें दावा है डर और भ्रष्टाचार चरम पर रहा, जिसके सबूत चारों तरफ बिखरे हैं। उत्तर 24 परगना में जहां टीएमसी नेता पर अंडे फेंके जाते हैं, उससे कुछ ही दूरी पर एक स्कूल से 1,77,00,000 रुपए कैश बरामद होता है। बीजेपी का कहना है कि स्कूल से इतना बड़ा कैश मिलना टीएमसी राज में हो रहे भ्रष्टाचार की मिसाल है। बंगाल में 4 मई के बाद से लगातार टीएमसी के नेता निशाने पर हैं। एक तरफ जनता अपना हिसाब बराबर कर रही है, वहीं पुलिस जहांगीर खान जैसे नेताओं को इस तरह घुमाकर उनके खौफ को खत्म करने में जुटी है।
6: टीएमसी इतनी जल्दी बिखर जाएगी इस बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, और इसी तरह विपक्ष ने साल 2024 में ये नहीं सोचा था कि मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के करीब पहुंच जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत और तमिलनाडु में डीएमके से कांग्रेस की कथित धोखेबाजी मानसून सत्र में विपक्ष को बहुत भारी पड़ सकती है।
7: 24 के चुनाव में इस देश की जनता ने जनादेश दिया है, और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए।

0: विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो।
1: दो साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को खबरदार करते हुए ये तब कहा जब कांग्रेस और उसके समर्थक नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सूर्यास्त के दावे तक करने लगे थे।
2: आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनेमिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से मेरा असेसमेंट है, एक साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।
1: तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को याद दिलाया था कि विपक्ष को जनता ने जिताया नहीं बल्कि हराया है।
0: आप सबको शोले फिल्म की मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं पर मौसी, ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं पर मौसी, मॉरल विक्ट्री तो है ना।
1: 2024 के चुनाव परिणामों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, क्या वो 2026 में सच हो रहा? दो साल बाद न सिर्फ मोदी एक विजेता के रूप में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, वहीं देश को कांग्रेस के कुचक्र से निकालने का दावा भी करते हैं।
0: एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है।
1: 2024 के नतीजों के बाद इतनी जल्दी विपक्ष की ताकत बिखर जाएगी, इसकी कल्पना ममता बनर्जी जैसी कद्दावर नेता ने भी नहीं की होगी, जिनकी पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखरी पड़ी, जिसका असर मानसून सत्र में ताकतवर मोदी सरकार के रूप में दिख सकता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 353 सीटें जीती थी, जो मोदी राज में एनडीए का 3 चुनावों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 2024 में एनडीए 292 सीटों पर आ जाती है, लेकिन टीएमसी में बगावत करने वाले 19 सांसदों के समर्थन के बाद एनडीए का आंकड़ा लोकसभा में 311 पहुंच जाता है। अप्रैल में जब संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय 528 सांसद लोकसभा में मौजूद थे और 2/3 बहुमत का आंकड़ा 352 था, सरकार को 298 वोट मिले, विधेयक के खिलाफ 230 वोट डाले गए, यानी 54 वोटों से वो विधेयक गिर गया। अब सरकार ने संतर को काफी हद तक पाट लिया है। अगर मुद्दों के आधार पर डीएमके के 22 सांसदों का भी समर्थन मिलता है तो एनडीए की ताकत 333 तक हो सकती है। सरकार की नजरें शिवसेना यूबीटी के 9 सांसदों पर भी है, अगर इनमें टूट होती है तो 6 और सांसदों का समर्थन हासिल हो सकता है। इस तरह एनडीए की ताकत बढ़कर 339 तक पहुंच सकती है। बड़ी बात यह कि अप्रैल में संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय एनडीए को 298 सांसदों का समर्थन मिला था, अगर वो 5 वोट भी जोड़े तो एनडीए की संख्या 344 पहुंच जाती है। तो सरकार को उम्मीद है कि अन्य छोटे दल और निर्दलियों के दम पर 2/3 का बहुमत छुआ जा सकता है। यानी दो साल पहले 240 पर बीजेपी के अटकने को मोदी की हार समझने वाले विपक्ष को नरेंद्र मोदी खबरदार करते हुए जो कुछ कहते हैं वो बात सही निकलती है।
0: कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है, तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है।
3: अच्छा होता, कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है।
1: मोदी के ये कहने के दो साल बाद लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी विपक्ष मोदी सरकार को दो तिहाई बहुमत के करीब पहुंचते से रोकता नहीं नजर आ रहा। इसकी वजह टीएमसी के 13 सांसद हैं, जिनमें से सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अगर ये बीजेपी में उपचुनाव के बाद राज्यसभा में आते हैं तो एनडीए का आंकड़ा 149 से 152 पहुंच सकता है। वहीं अगर टीएमसी के कुछ और सांसद टूटते हैं, डीएमके के 8 सांसद भी सशर्त समर्थन देते हैं, तो एनडीए राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत के आंकड़े 164 के लक्ष्य को आसानी से पा सकता है। मतलब संसद में संख्या बल के हिसाब से विपक्ष के लिए एनडीए को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मतलब मोदी के करिश्मे के खात्मे की भविष्यवाणी करने वालों को मुंह की खानी पड़ सकती है।
3: मुझे एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था, तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है।
4: उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव से पहले हलचल तेज हो चुकी है। बीएसपी बैठकें कर रही है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ समीकरण बिठाने का जतन तलाश रही है। कांग्रेस कह रही है कि वो सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और इन सब के बीच बीजेपी ने चुनाव से पहले नौकरी वाला दांव चल दिया है।
5: उत्तर प्रदेश में जितना मौसम का पारा चढ़ा है उससे ज्यादा सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, क्योंकि 27 के समर के लिए सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। एक हलचल बीएसपी में है। समाजवादी पार्टी के पीडीए के जवाब में बीएसपी की भाईचारा कमेटी ओबीसी और दलित की बड़ी बैठक की गई, जिसमें हर जिले के ओबीसी और दलित नेता मौजूद रहे। ऐसा इसलिए ताकि वोट बैंक न टूटे और पीडीए से बचा रहे। एक और हलचल समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जब सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से बातचीत शुरू होगी, तब सबसे पहले कांग्रेस से किन जिलों में उन्हें चुनाव लड़ने में दिलचस्पी है ये पूछा जाएगा। एसपी को लगता है कि बड़ा उद्देश्य बीजेपी को यूपी में हराना है, फिर सीट पर चाहे कोई उम्मीदवार लड़े, बशर्ते वो उम्मीदवार जाति समीकरण को साध रहा हो और जिताऊ हो। हालांकि सूत्रों से खबर है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 80 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि उसकी 403 सीटों पर पूरी तैयारी है।
6: कांग्रेस की कितनी तैयारी है?
7: 400 दिनों पर पूरी मजबूती के साथ हमने सभी अपनी तैयारी की है। संगठन बूथ स्तर पर जीतने की क्या रणनीति हो सकती है, उस पर हम काम कर रहे हैं।
5: तीसरी हलचल बीजेपी में है। माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठक होगी, मगर उसके पहले योगी सरकार ने नौकरी वाला बड़ा दाम चल दिया है। 2026 में 1.5 लाख से ज्यादा नई भर्तियों की तैयारी है। इसके साथ यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग 60,000 शिक्षकों की भर्ती करेगा। मतलब कह सकते हैं कि यूपी में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां 24 नॉर्थ परगना में एक स्कूल में पौने 2 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इसके अलावा शराब की कुछ बॉटल्स थी, आपत्तिजनक चीजें भी कुछ मिली हैं।

0: 500 की नोटों की गड्डियां, 200 के नोटों का बंडल और 100-100 रुपए के नोटों का गट्ठर, ये करोड़ों के कैश पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के कांचरापाड़ा में बने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिले हैं। एक करोड़ 77 लाख रुपए के साथ इस स्कूल में शराब की बोतलें और कॉन्डोम के पैकेट भी मिले हैं। स्कूल में एक बेडरूम जैसा सेमी फर्निश्ड कमरा भी है। सवाल ये है कि इतना पैसा स्कूल में आया कहाँ से?
1: एडमिशन टाकाटा अकाउंटेंट माने भर्ती टाका गुलो एप्रिल मास थेके स्टूडेंट जे भर्ती होय सेई टाका गुलो जमा करेछिलो। एकटा ओनार उचित छिलो माने एकदिन पर दुदिन अंतर बैंके पाठानो। উনি ব্যাংকে পাঠায়নি, আডাটা পুরো অ্যাকাউন্ট সেকশনের পাঠে, আর আমি প্রিন্সিপাল হিসেবে শুধুমাত্র আমার একাডেমিক পার্টের আমার দায়িত্ব ছিল, এই পাঠায়নি সে ব্যাপারে আমার কোনো নলেজ ছিল না।
0: মতলব স্কুল কে মুখিয়া কোই নাই মালুম কি স্কুল কে ভিতর অনৈতিক গতিবিধিয়া চল রহি হ্যায়। জিম্মেদারি সে পল্লা ঝাড়তে হুয়ে প্রিন্সিপাল সাহেব নে ইয়ে বাতায়া কি বেডরুম ইসলিয়ে হ্যায় তাকি বচ্চে বিমার হো তো আরাম কর সকে। প্রিন্সিপাল কি সফাই কিসি কে গলে নাই উতর রহি হ্যায়, লেকিন বিজেপি ইসে মুদ্দা বনা রহি হ্যায়।
2: তৃণমূল একটা অভিশাপ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 15 বছরের একটা অভিশাপ। স্কুল থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হচ্ছে, একটা বেডরুম পাওয়া যাচ্ছে এবং সেখানে আরো কিছু পাওয়া যাচ্ছে, আমার বলতে এখানে রুচিতে বাজছে, এই তো অবস্থা।
0: এই পুরো মামলে মে পুলিশ নে স্কুল কে ক্যাশিয়ার অভিজিত নাথ আর অভিক নাথ কে সাথে অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টেন্ট সায়ন ঘোষ কো হিরাসত মে লে লিয়া হ্যায়। আব জাননে কি কোশিশ হো রহি হ্যায় কিতনা ক্যাশ আয়া কাহাঁ সে আর স্কুল মে চল ক্যা রাহা থা। দীপক দেবনাথ, নর্থ 24 পরগনা, আজ তক।
3: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी के पीओके से इस वक्त जो बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। रावलकोट की सड़कों पर इस समय जो हो रहा है वो महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक खुला विद्रोह है।
4: सुनिए इन नारों को, ये नारे किसी आम प्रदर्शन के नहीं हैं, ये सीधे सीधे उस अवैध कब्जे को चुनौती हैं, जिसे पाकिस्तान दशकों से दुनिया के सामने अपना बताता आया है। पीओके का रावलकोट रविवार को पूरी रात गोलियों, आंसू गैस के गोलों और सेना के बूटों की आवाज से नहीं बल्कि आवाम की दहाड़ से गूंजता रहा। कई जिलों से आए हजारों लोग रात भर सड़कों पर डटे रहे। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबका एक ही संकल्प है, अब हुक्मरानों की तानाशाही नहीं चलेगी। ये गुस्सा अचानक नहीं भड़का है, ये लावा है जो अब फट चुका है। 7 और 8 जून को रावलकोट ने वो खूनी मंजर देखा जिसने आवाम के सब्र का बांध तोड़ दिया। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो पीओके के इतिहास में ये अब तक का सबसे हिंसक और सबसे संगठित आंदोलन बन चुका है। पहले लोग सिर्फ आटे और बिजली के बिलों पर रोते थे, लेकिन इस बार बात आर पार की लड़ाई पर आ गई है। रावलकोट के इस महा आंदोलन ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के उस खोखले प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा कर रख दी है जिसमें वो कश्मीरियों का हमदर्द बनने का ढोंग करता है। ये नारा अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देता है, क्योंकि इस बार आसिफ मुनीर की फौज के सामने सिर पर कफन बांधे आवाम खड़ी है। आज तक ब्यूरो।
3: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव का असर अब तेल और गैस की किल्लत से आगे बढ़कर भारतीयों की जान की फिक्र में बदल चुका है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर पिछले 3 दिन में हमला किया है उसने भारत को चिंता से भर दिया है।
5: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिण में होते ये धमाके भारत के लिए चिंता की बात क्यों है? सवाल है कि ईरान की तरफ से गिराया गया अपाचे हेलीकॉप्टर क्यों हजारों भारतीय नाविकों की जान आफत में डाल सकता है?
6: But we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers.
7: attacking them very hard.
8: You're resuming bombing?
5: अमेरिका और ईरान के बीच होती जंग की वजह से अब तक भारत को तेल और गैस की टेंशन रही, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में फंसे हजारों भारतीय नाविक जंग की आग से झुलस सकते हैं। हफ्ते के पहले चार दिनों में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू वाले तीन जहाजों पर अब तक अमेरिका की तरफ से हमला हो चुका है। पहला हमला 8 जून को मेरीवैक्स नाम के जहाज पर होता है, जिसपे सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटबेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिनमें 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला अब जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गिनी बिसाऊ के झंडे वाले इस जहाज पर ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। अमेरिका का कहना है कि जहाज के क्रू ने उसका निर्देश नहीं माना, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर 2 हेलफायर मिसाइल दागी। अमेरिकी नौसेना ने बुधवार को 24 भारतीय नागरिकों को ले जा रहे ऑयल टैंकर सेटवेलो पर भीषण हमला किया, इसमें 3 भारतीयों की जान गई है। मरने वालों में 23 साल के नाविक आदित्य शर्मा भी हैं। हमले के बाद भारत में अमेरिका की हरकतों को लेकर गुस्सा है।
9: मैम, कल शाम को मुझे कंपनी से फोन आया था, शिपिंग कंपनी से, कि ऐसे से शिप हिट हुआ है यूएस नेवी के मिसाइल से, तो जो 3 क्रू मिसिंग है उनमें मेरा बेटा भी है। हमारा एक ही बेटा था, वो मेरे परिवार में मेरे मदर है, ब्रदर है, ब्रदर की फैमिली है
3: जी।
9: मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है वो एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी करे, ताकि किसी भी प्रेशर में, चाहे वो कमर्शियल प्रेशर हो या पॉलिटिकल प्रेशर हो, किसी भी शिप को उस तरफ जाने से रोका जाए, ताकि जो क्रू मेंबर होते हैं उनकी लाइफ पे कोई रिस्क ना आए।
5: अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान को कमजोर करने और अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसी के चलते वो जहाजों को निशाना बना रहा है, जिसकी चपेट में भारतीय नाविक भी आ रहे हैं। इसने अमेरिका को लेकर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अमेरिका बिना चेतावनी दिए हमले कर रहा है।
10: आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हर जहाज के पास ऑलमोस्ट डिटेल होती है। जहां तक नेवल शिप की बात करूं मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। उसके बाद भी उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चॉपर से या स्पीड बोट से या उनकी जो क्रूजिंग बोट है उस बोट से उस जहाज को बोर्ड कर सकते थे। अगर उस जहाज के ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो उसको डिटेन करना उनके पास एक पर्याय था, लेकिन जिस तरह से दोनों जहाज को हिट किया गया है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी।
5: 3 दिन में 3 भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हमला करने से भारत और अमेरिका के संबंधों और क्वाड सहयोग पर सवाल खड़े किए गए हैं। तीसरे जहाज पर हमले के बाद भारत ने अमेरिकी राजदूत को तलब करके अपना विरोध जताया है।
11: We have seen that there have been several incidents involving Indian seafarers in West Asia in the last few days. We attach high importance to the welfare and well-being of our seafarers community. We need not re-emphasize this point. Yesterday we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which unfortunately we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest.
5: अमेरिका का कहना है कि ये तीनों जहाज ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जानकारी पहले ही मिल जाती है तब अमेरिका की तरफ से जलवीर जहाज पर हमले का क्या मतलब है।
12: सर, प्लीज शेयर द कोऑर्डिनेट्स।
5: डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंग जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, इसीलिए उनकी तरफ से एक बार फिर ईरान पर जोरदार हमले की चेतावनी दी गई है। खार्ग द्वीप पर कब्जा करने का प्लान बनाया गया है, लेकिन ट्रंप का यह कदम न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद 18,000 भारतीय नाविकों की जान खतरे में डालेगा, बल्कि खाड़ी देशों में रहने वाले 80,00,000 भारतीयों की जान पर भी संकट बनकर छा जाएगा।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: अपना प्लान, अब आज रात को नहीं करेंगे ईरान पर हमला। कहा दोनों देशों के बीच डील बेहद करीब पहुंच चुकी है, तब तक जारी रहेगी नौसैनिक नाकेबंदी। नीति आयोग की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और शिकायतों के तेजी के समाधान पर जोर दिया। 28 राज्यों के सीएम हुए शामिल। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। कहा सरकार की नीति से पूरा समाज त्रस्त है। बोले मोदी ने मरवा दिया, खड़गे ने भी गिनाई खामियां। टीएमसी बागी गुट की नेता काकोली घोष का एनडीए के साथ होने का दावा। कहा 20 सांसद हमारे पक्ष में है, लेकिन आज तक से बोले शत्रुघ्न सिन्हा, मैं ममता के साथ। एमपी की तीनों ही राज्यसभा की सीटों पर बीजेपी की जीत से बढ़कर राहुल गांधी का चुनाव आयोग की जुगलबंदी से सीट चोरी। नियमों के खिलाफ नटराजन की उम्मीदवारी रद्द। ममता बनर्जी की टीएमसी में बगावत की आवाजें बुलंद हैं। जो कभी ममता बनर्जी के खास सिपह सलार हुआ करते थे, आज वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं या फिर पार्टी में रहकर गुट बनाने में लगे हैं। अब टीएमसी के तीसरे राज्यसभा सांसद ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
1: क्या ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकल चुकी है? क्या टीएमसी में सिर्फ ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ही बचेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक एक करके टीएमसी के पार्षद, विधायक, सांसद पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। कल सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया था और आज टीएमसी राज्यसभा के सांसद प्रकाश चिक बाराइक ने भी इस्तीफा दे दिया।
2: देखिए, असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया, ये हम लोग के पक्ष में नहीं आया। साथ ही इस मैंडेट को देखते हुए मैं भी अपना पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि मेरा भी कंस्टिट्यूएंसी में उस तरह रिजल्ट नहीं हुआ। अभी गणतांत्रिक देश का गणोदयता जिसको चाहती है वो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है।
1: तीन दिन में टीएमसी के तीन राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन इन बागियों में सयानी घोष, प्रतिमा मंडल, माला रॉय, मिताली बाग का नाम भी जोड़ लीजिए। कल टीएमसी के चार सांसद बीजेपी नेताओं से मिले। जादवपुर की सांसद सयोनी घोष, जयनगर की प्रतिमा मंडल, कोलकाता दक्षिण के मॉल रॉय और आरामबाग के सांसद मिताली बाग बागी खेमे में शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक हुई, जिसमें बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। करीब एक घंटे तक चारों सांसदों और बीजेपी नेताओं की बैठक चलती रही। बागी गुट का दावा है कि 19 से 20 सांसद उनके संपर्क में हैं। टीएमसी के बागी लोकसभा में अलग गुट बनाना चाहते हैं। अभी लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। अगर ये बागी कामयाब हुए तो लोकसभा में टीएमसी नेता का पद भी इन्हें मिल जाएगा। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और इसीलिए बंगाल पुलिस 4 मई के बाद अपराधियों और आरोपियों की हवाई चप्पल और हाफ पेंट में परेड निकालते हुए नजर आई। फालता में टीएमसी नेता जहांगीर खान की भी ऐसी ही परेड पुलिस ने निकाली है।
3: फालता की जिन गलियों में कभी जहांगीर खान का खौफ पसरा रहता था, उन्हीं गलियों में शुभेंदु राज के भीतर उसे हाफ पैंट पहनाकर घुमाया गया है। खुद को पुष्पा कहने वाले जहांगीर खान की ये केवल परेड नहीं निकाली जा रही, बल्कि फालता के लोगों के दिलों से वो बचा खुचा खौफ भी बाहर किया जा रहा है, जिसका पूरा हिसाब करने का वायदा शुभेंदु अधिकारी ने किया था।
4: আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি সব পেয়ে গেছি, সব পেয়ে গেছি, সবকা সাথ সবকা বিকাশ ভি হোগা সবকা हिसाब भी होगा।
3: फालता की जो सड़कें जहांगीर की मौजूदगी से कहते हैं सुनसान हो जाया करती थी, फालता की उन्हीं सड़कों पर अभिषेक बनर्जी के पुष्पा की ये चुप्पी उस खौफ का अंत है जिसने लोगों को वर्षों तक वोट डालने से भी रोका।
5: क्या लगता है कि इतने दिनों से उनका डर यहाँ पे था?
6: हाँ, उसके लिए डर के लिए सब बाहर निकल नहीं सकता है कि ऐसा किया था। और अभी हम रनिंग सीएम जो है वो तो आके हम लोग का रोड शो किया है, जो सब अपना से वोट दो, कोई डर नहीं करेगा। भय आउट भर सही।
3: किसी भय को निकालने के लिए फालता की सड़क पर जहांगीर खान की परेड निकाली जाती। वो चुपचाप पुलिस वाले का हाथ पकड़ कर गलियों में घूमता देखता, बड़ी बात यह कि अदालत ने पेशी के दौरान जहांगीर खान पैंट पहने दिखा था, लेकिन जब फालतू में उसकी परेड निकलती है तो हाफ पैंट में आ जाता है। जहांगीर खान से पहले टीएमसी के कई नेताओं और अपराधियों को बंगाल पुलिस इसी तरह घुमा चुकी, लेकिन जहांगीर खान का ये रूप अपने आप में अहम है, क्योंकि चुनाव के दौरान वो खुलेआम पुलिस को धमका रहा था। जहांगीर खान फलता ही नहीं, डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर टीएमसी का बड़ा नेता रहा, जिसे फलता से जीत और ममता सरकार बनने का इतना भरोसा था कि वो खुलेआम इलेक्ट्रिक शमशान विरोधियों के अंतिम संस्कार के लिए मांगने लगा।
7: এখানে জাহাঙ্গীর আমাকে আস্তে আস্তে বলেছে, দাদা সব দিয়েছ, একটা বৈদ্যুতিক চুল্লি করে দিতে হবে। আমি ভাবলাম চার তারিখ ফল বেরোনোর পর কিছু লোক তো হার্ট অ্যাটাক করবে, তাদের সৎকারটাও ভালো করে করা আমাদের উচিত।
3: লেকিন 4 মই কো বাজি পলটতি হ্যায় তো জাহাঙ্গীর খান কে সুর নরম হোতে গয়ে আর উসনে ফালতা বিধানসভা সিট সে খুদ কো অলগ করনে মে পহলে আপনি ভালাই সমঝি।
4: কোথায় গেলেন তথাকথিত পুষ্পা নাকি নাম, ওই ডাকাতটা কোথায়, ওই ডাকাতটা কোথায়, কোথায় দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে।
3: ফলতা মে বিজেপি কি জিত কে বাদ জাহাঙ্গীর খান আন্ডারগ্রাউন্ড হো গিয়া আর ফির অচানক উসকি নেপাল বর্ডার সে গিরফতারি হুই। পতা চলা ও ভাগনে কি ফিরাক মে থা, लेकिन खुद को पुष्पा कहने वाले जहांगीर खान की इस नई तस्वीर ने उसके रहे सहे खौफ को खत्म कर दिया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को जनता ने पहले चुनाव में हराया और अब उसके नेता निशाने पर। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी के प्रधान को उठक बैठक करा के भ्रष्टाचार के लिए माफी मंगवाई गई। दुर्गापुर में गिरफ्तार टीएमसी नेता सुकुमार दत्ता पर अंडे फेंके जाते। टीएमसी के इस नेता पर करोड़ों की उगाही और आतंक फैलाने का आरोप। उत्तर 24 परगना की यह तस्वीर देखी जिसमें टीएमसी नेता नौशाद आलम पर भी अंडे फेंके गए। जनता का यह गुस्सा उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसमें दावा है डर और भ्रष्टाचार चरम पर रहा, जिसके सबूत चारों तरफ बिखरे हैं। उत्तर 24 परगना में जहां टीएमसी नेता पर अंडे फेंके जाते हैं, उससे कुछ ही दूरी पर एक स्कूल से 1,77,00,000 रुपए कैश बरामद होता है। बीजेपी का कहना है कि स्कूल से इतना बड़ा कैश मिलना टीएमसी राज में हो रहे भ्रष्टाचार की मिसाल है। बंगाल में 4 मई के बाद से लगातार टीएमसी के नेता निशाने पर हैं। एक तरफ जनता अपना हिसाब बराबर कर रही है, वहीं पुलिस जहांगीर खान जैसे नेताओं को इस तरह घुमाकर उनके खौफ को खत्म करने में जुटी है।
0: टीएमसी इतनी जल्दी बिखर जाएगी इस बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, और इसी तरह विपक्ष ने साल 2024 में ये नहीं सोचा था कि मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के करीब पहुंच जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत और तमिलनाडु में डीएमके से कांग्रेस की कथित धोखेबाजी मानसून सत्र में विपक्ष को बहुत भारी पड़ सकती है।
4: 24 के चुनाव में इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए। विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो।
3: 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को खबरदार करते हुए ये तब कहा जब कांग्रेस और उसके समर्थक नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सूर्यास्त के दावे तक करने लगे थे।
8: आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।
3: तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को याद दिलाया था कि विपक्ष को जनता ने जिताया नहीं बल्कि हराया है।
4: आप सबको शोले फिल्म की मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं पर मौसी मॉरल विक्ट्री तो है ना।
3: 2024 के चुनाव परिणामों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा क्या वो 2026 में सच हो रहा? दो साल बाद न सिर्फ मोदी एक विजेता के रूप में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं वहीं देश को कांग्रेस के कुचक्र से निकालने का दावा भी करते हैं।
4: एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है।
3: 2024 के नतीजों के बाद इतनी जल्दी विपक्ष की ताकत बिखर जाएगी इसकी कल्पना ममता बनर्जी जैसी कद्दावर नेता ने भी नहीं की होगी जिनकी पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखरी पड़ी जिसका असर मानसून सत्र में ताकतवर मोदी सरकार के रूप में दिख सकता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 353 सीटें जीती थी जो मोदी राज में एनडीए का 3 चुनावों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 2024 में एनडीए 292 सीटों पर आ जाती है लेकिन टीएमसी में बगावत करने वाले 19 सांसदों के समर्थन के बाद एनडीए का आंकड़ा लोकसभा में 311 पहुंच जाता है। अप्रैल में जब संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय 528 सांसद लोकसभा में मौजूद थे और 2/3 बहुमत का आंकड़ा 352 था, सरकार को 298 वोट मिले, विधेयक के खिलाफ 230 वोट डाले गए यानी 54 वोटों से वो विधेयक गिर गया। अब सरकार ने इस अंतर को काफी हद तक पाट लिया है। अगर मुद्दों के आधार पर डीएमके के 22 सांसदों का भी समर्थन मिलता है तो एनडीए की ताकत 333 तक हो सकती है। सरकार की नजरें शिवसेना यूबीटी के 9 सांसदों पर भी है, अगर इनमें टूट होती है तो 6 और सांसदों का समर्थन हासिल हो सकता है। इस तरह एनडीए की ताकत बढ़कर 339 तक पहुंच सकती है। बड़ी बात यह कि अप्रैल में संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय एनडीए को 298 सांसदों का समर्थन मिला था, अगर वो 5 वोट भी जोड़े तो एनडीए की संख्या 344 पहुंच जाती है। तो सरकार को उम्मीद है कि अन्य छोटे दल और निर्दलियों के दम पर 2/3 का बहुमत छुआ जा सकता है। यानी 2 साल पहले 240 पर बीजेपी के अटकने को मोदी की हार समझने वाले विपक्ष को नरेंद्र मोदी खबरदार करते हुए जो कुछ कहते हैं वो बात सही निकलती है।
4: कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है। तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है।
3: मोदी के ये कहने के 2 साल बाद लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी विपक्ष मोदी सरकार को 2/3 बहुमत के करीब पहुंचने से रोकता नहीं नजर आ रहा। इसकी वजह टीएमसी के 13 सांसद हैं जिनमें से सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अगर ये बीजेपी में उपचुनाव के बाद राज्यसभा में आते हैं तो एनडीए का आंकड़ा 149 से 152 पहुंच सकता है। वहीं अगर टीएमसी के कुछ और सांसद टूटते हैं, डीएमके के 8 सांसद भी सशर्त समर्थन देते हैं, तो एनडीए राज्यसभा में 2/3 बहुमत के आंकड़े 164 के लक्ष्य को आसानी से पा सकता है। मतलब संसद में संख्या बल के हिसाब से विपक्ष के लिए एनडीए को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मतलब मोदी के करिश्मे के खात्मे की भविष्यवाणी करने वालों को मुंह की खानी पड़ सकती है।
4: मुझे एक किस्सा याद आता है, आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था, तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है।
0: उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव से पहले हलचल तेज हो चुकी है। बीएसपी बैठकें कर रही है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ समीकरण बिठाने का जतन तलाश रही है। कांग्रेस कह रही है कि वो सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और इन सब के बीच बीजेपी ने चुनाव से पहले नौकरी वाला दांव चल दिया है।
9: उत्तर प्रदेश में जितना मौसम का पारा चढ़ा है उससे ज्यादा सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, क्योंकि 27 के समर के लिए सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। एक हलचल बीएसपी में है। समाजवादी पार्टी के पीडीए के जवाब में बीएसपी की भाईचारा कमेटी ओबीसी और दलित की बड़ी बैठक की गई, जिसमें हर जिले के ओबीसी और दलित नेता मौजूद रहे। ऐसा इसलिए ताकि वोट बैंक न टूटे और पीडीए से बचा रहे। एक और हलचल समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जब सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से बातचीत शुरू होगी, तब सबसे पहले कांग्रेस से किन जिलों में उन्हें चुनाव लड़ने में दिलचस्पी है ये पूछा जाएगा। एसपी को लगता है कि बड़ा उद्देश्य बीजेपी को यूपी में हराना है, फिर सीट पर चाहे कोई उम्मीदवार लड़े, बशर्ते वो उम्मीदवार जाति समीकरण को साध रहा हो और जिताऊ हो। हालांकि सूत्रों से खबर है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 80 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि उसकी 403 सीटों पर पूरी तैयारी है।
10: कांग्रेस की कितनी तैयारी है?
11: 400 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ हमने सभी अपनी तैयारी की है। संगठन बूथ स्तर पर जीतने की क्या रणनीति हो सकती है उस पर हम काम कर रहे हैं।
9: तीसरी हलचल बीजेपी में है। माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठक होगी, मगर उसके पहले योगी सरकार ने नौकरी वाला बड़ा दाम चल दिया है। 2026 में 1.5 लाख से ज्यादा नई भर्तियों की तैयारी है। इसके साथ यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग 60,000 शिक्षकों की भर्ती करेगा। मतलब कह सकते हैं कि यूपी में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां 24 नॉर्थ परगना में एक स्कूल में 2.25 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इसके अलावा शराब की कुछ बॉटल्स थी, आपत्तिजनक चीजें भी कुछ मिली हैं।

0: 500 की नोटों की गड्डियां, 200 के नोटों का बंडल और 100-100 रुपए के नोटों का गट्ठर, ये करोड़ों के कैश पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के कांचरापाड़ा में बने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिले हैं। एक करोड़ 77 लाख रुपए के साथ इस स्कूल में शराब की बोतलें और कॉन्डोम के पैकेट भी मिले हैं। स्कूल में एक बेडरूम जैसा सेमी फर्निश्ड कमरा भी है। सवाल ये है कि इतना पैसा स्कूल में आया कहां से?
1: एडमिशन टाकाटा अकाउंटेंट माने भर्ती टाका गुलो एप्रिल मास থেকে স্টুডেন্ট যে ভর্তি হয় সেই টাকা গুলো জমা করেছিল, একটা ওনার উচিত ছিল মানে একদিন বা দুদিন অন্তর ব্যাংকে পাঠানো, উনি ব্যাংকে পাঠায়নি, আড়াটা পুরো অ্যাকাউন্ট সেকশনের পাটে, আর আমি প্রিন্সিপাল হিসেবে শুধুমাত্র আমার একাডেমিক পার্টের আমার দায়িত্ব ছিল, এই পাটায়নি সে ব্যাপারে আমার কোনো নলেজ ছিল না।
0: मतलब स्कूल के मुखिया को ही नहीं मालूम कि स्कूल के भीतर अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए प्रिंसिपल साहब ने ये बताया कि बेडरूम इसलिए है ताकि बच्चे बीमार हो तो आराम कर सके। प्रिंसिपल की सफाई किसी के गले नहीं उतर रही है, लेकिन बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है।
2: তৃণমূল একটা অভিশাপ, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 15 বছরের একটা অভিশাপ। স্কুল থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হচ্ছে, একটা বেডরুম পাওয়া যাচ্ছে এবং সেখানে আরো কিছু পাওয়া যাচ্ছে, আমার বলতে এখানে রুচিতে বাজছে, এই তো অবস্থা।
0: इस पूरे मामले में पुलिस ने स्कूल के कैशियर अभिजीत नाथ और अविक नाथ के साथ ही असिस्टेंट अकाउंटेंट सायन घोष को हिरासत में ले लिया है। अब जानने की कोशिश हो रही है कितना कैश आया कहां से और स्कूल में चल क्या रहा था। दीपक देवनाथ, नॉर्थ 24 परगना, आज तक।
3: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी के पीओके से इस वक्त जो बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। रावलकोट की सड़कों पर इस समय जो हो रहा है वो महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक खुला विद्रोह है।
4: सुनिए इन नारों को, ये नारे किसी आम प्रदर्शन के नहीं हैं, ये सीधे सीधे उस अवैध कब्जे को चुनौती हैं, जिसे पाकिस्तान दशकों से दुनिया के सामने अपना बताता आया है। पीओके का रावलकोट रविवार को पूरी रात गोलियों, आंसू गैस के गोलों और सेना के बूटों की आवाज से नहीं बल्कि आवाम की दहाड़ से गूंजता रहा। कई जिलों से आए हजारों लोग रात भर सड़कों पर डटे रहे। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबका एक ही संकल्प है, अब हुक्मरानों की तानाशाही नहीं चलेगी। ये गुस्सा अचानक नहीं भड़का है, ये लावा है जो अब फट चुका है। 7 और 8 जून को रावलकोट ने वो खूनी मंजर देखा जिसने आवाम के सब्र का बांध तोड़ दिया। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो पीओके के इतिहास में ये अब तक का सबसे हिंसक और सबसे संगठित आंदोलन बन चुका है। पहले लोग सिर्फ आटे और बिजली के बिलों पर रोते थे, लेकिन इस बार बात आर पार की लड़ाई पर आ गई है। रावलकोट के इस महा आंदोलन ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के उस खोखले प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, जिसमें वो कश्मीरियों का हमदर्द बनने का ढोंग करता है। ये नारा अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देता है, क्योंकि इस बार आसिम मुनीर की फौज के सामने सिर पर कफन बांधे आवाम खड़ी है। आज तक ब्यूरो।
3: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव का असर अब तेल और गैस की किल्लत से आगे बढ़कर भारतीयों की जान की फिक्र में बदल चुका है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर पिछले 3 दिन में हमला किया है उसने भारत को चिंता से भर दिया है।
5: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिण में होते ये धमाके भारत के लिए चिंता की बात क्यों है? सवाल है कि ईरान की तरफ से गिराया गया अपाचे हेलीकॉप्टर क्यों हजारों भारतीय नाविकों की जान आफत में डाल सकता है?
6: But we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers. attacking them very hard.
7: You're resuming bombing?
6: Based on the helicopter, I guess we have the right to do that, you know.
5: अमेरिका और ईरान के बीच होती जंग की वजह से अब तक भारत को तेल और गैस की टेंशन रही, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और फारस की खाड़ी में फंसे हजारों भारतीय नाविक जंग की आग से झुलस सकते हैं। हफ्ते के पहले चार दिनों में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भारतीय क्रू वाले तीन जहाजों पर अब तक अमेरिका की तरफ से हमला हो चुका है। पहला हमला 8 जून को मेरीवैक्स नाम के जहाज पर होता है, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटबेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिनमें 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला अब जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गिनी बिसाउ के झंडे वाले इस जहाज पर ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। अमेरिका का कहना है कि जहाज के क्रू ने उसका निर्देश नहीं माना, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर 2 हेलफायर मिसाइल दागी। अमेरिकी नौसेना ने बुधवार को 24 भारतीय नागरिकों को ले जा रहे ऑयल टैंकर सेटवेलो पर भीषण हमला किया, इसमें 3 भारतीयों की जान गई है। मरने वालों में 23 साल के नाविक आदित्य शर्मा भी हैं। हमले के बाद भारत में अमेरिका की हरकतों को लेकर गुस्सा है।
8: मैम, कल शाम को मुझे कंपनी से फोन आया था, शिपिंग कंपनी से, कि ऐसे शिप हिट हुआ है यूएस नेवी के मिसाइल से, तो जो 3 क्रू मिसिंग है उनमें मेरा बेटा भी है। हमारा एक ही बेटा था, वो मेरे परिवार में मेरे मदर है, ब्रदर है, ब्रदर की फैमिली है
3: जी।
8: मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है वो एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी करे, ताकि किसी भी प्रेशर में, चाहे वो कमर्शियल प्रेशर हो या पॉलिटिकल प्रेशर हो, किसी भी शिप को उस तरफ जाने से रोका जाए, ताकि जो क्रू मेंबर होते हैं उनकी लाइफ पे कोई रिस्क ना आए।
5: अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान को कमजोर करने और अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसी के चलते वो जहाजों को निशाना बना रहा है, जिसकी चपेट में भारतीय नाविक भी आ रहे हैं। इसने अमेरिका को लेकर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अमेरिका बिना चेतावनी दिए हमले कर रहा है।
9: आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हर जहाज के पास ऑलमोस्ट डिटेल होती है। जहां तक नेवल शिप की बात करूं मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। उसके बाद भी उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चॉपर से या स्पीड बोट से या उनकी जो क्रूजिंग बोट है उस बोट से उस जहाज को बोर्ड कर सकते थे। अगर उस जहाज के ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो उसको डिटेन करना उनके पास एक पर्याय था, लेकिन जिस तरह से दोनों जहाज को हिट किया गया है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी।
5: 3 दिन में 3 भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हमला करने से भारत और अमेरिका के संबंधों और क्वाड सहयोग पर सवाल खड़े किए गए हैं। तीसरे जहाज पर हमले के बाद भारत ने अमेरिकी राजदूत को तलब करके अपना विरोध जताया है।
10: We have seen that there have been several incidents involving Indian seafarers in West Asia in the last few days. We attach high importance to the welfare and well-being of our seafarer community. We need not re-emphasize this point. Yesterday we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which unfortunately we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest.
5: अमेरिका का कहना है कि ये तीनों जहाज ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सवाल है कि AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से जब क्रू मेंबर्स की जानकारी पहले ही मिल जाती है, तब अमेरिका की तरफ से जलवीर जहाज पर हमले का क्या मतलब है?
11: Sir, please share the coordinates.
5: डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंग जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, इसीलिए उनकी तरफ से एक बार फिर ईरान पर जोरदार हमले की चेतावनी दी गई है। खार द्वीप पर कब्जा करने का प्लान बनाया गया है, लेकिन ट्रंप का यह कदम न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में मौजूद 18,000 भारतीय नाविकों की जान खतरे में डालेगा, बल्कि खाड़ी देशों में रहने वाले 80,00,000 भारतीयों की जान पर भी संकट बनकर छा जाएगा।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: अपना प्लान अब आज रात को नहीं करेंगे ईरान पर हमला, कहा दोनों देशों के बीच डील बेहद करीब पहुंच चुकी है, तब तक जारी रहेगी नौ सैनिक नाकेबंदी। नीति आयोग की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा, प्रधानमंत्री मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और शिकायतों के तेजी के समाधान पर जोर दिया, 28 राज्यों के सीएम हुए शामिल। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा सरकार की नीति से पूरा समाज त्रस्त है, बोले मोदी ने मरवा दिया, खड़गे ने भी गिनाई खामियां। टीएमसी बागी गुट की नेता काकोली घोष का एनडीए के साथ होने का दावा, कहा 20 सांसद हमारे पक्ष में है लेकिन आज तक से बोले शत्रुघ्न सिन्हा, मैं ममता के साथ। एमपी की तीनों ही राज्यसभा की सीटों पर बीजेपी की जीत से बढ़कर राहुल गांधी का, चुनाव आयोग की जुगलबंदी से सीट चोरी, नियमों के खिलाफ नटराजन की उम्मीदवारी रद्द। ममता बनर्जी की टीएमसी में बगावत की आवाजें बुलंद हैं, जो कभी ममता बनर्जी के खास सिपह सलार हुआ करते थे आज वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं या फिर पार्टी में रहकर गुट बनाने में लगे हैं। अब टीएमसी के तीसरे राज्यसभा सांसद ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
1: क्या ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकल चुकी है? क्या टीएमसी में सिर्फ ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ही बचेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक एक करके टीएमसी के पार्षद, विधायक, सांसद पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। कल सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया था और आज टीएमसी राज्यसभा के सांसद प्रकाश चिक बाराइक ने भी इस्तीफा दे दिया।
2: देखिए, असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया, ये हम लोग के पक्ष में नहीं आया, साथ ही इस मैंडेट को देखते हुए मैं भी अपना पद से इस्तीफा दिया क्योंकि मेरा भी कंस्टिट्यूएंसी में उस तरह रिजल्ट नहीं हुआ। अभी गणतांत्रिक देश का गणवदत्ता जिसको चाहती है वो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है।
1: तीन दिन में टीएमसी के तीन राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया है लेकिन इन बागियों में सयानी घोष, प्रतिमा मंडल, माला रॉय, मिताली बाग का नाम भी जोड़ लीजिए। कल टीएमसी के चार सांसद बीजेपी नेताओं से मिले, जादवपुर के सांसद सयोनी घोष, जयनगर की प्रतिमा मंडल, कोलकाता दक्षिण के मॉल रॉय और आरामबाग के सांसद मिताली बाग बागी खेमे में शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक हुई जिसमें बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। करीब एक घंटे तक चारों सांसदों और बीजेपी नेताओं की बैठक चलती रही। बागी गुट का दावा है कि 19 से 20 सांसद उनके संपर्क में हैं। टीएमसी के बागी लोकसभा में अलग गुट बनाना चाहते हैं। अभी लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। अगर ये बागी कामयाब हुए तो लोकसभा में टीएमसी नेता का पद भी इन्हें मिल जाएगा। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और इसीलिए बंगाल पुलिस 4 मई के बाद अपराधियों और आरोपियों की हवाई चप्पल और हाफ पेंट में परेड निकालते हुए नजर आई। फालता में टीएमसी नेता जहांगीर खान की भी ऐसी ही परेड पुलिस ने निकाली है।
3: फालता की जिन गलियों में कभी जहांगीर खान का खौफ पसरा रहता था, उन्हीं गलियों में शुभेंद्र

0: बल्कि फालतू के लोगों के दिलों से वो बचा खुचा खौफ भी बाहर किया जा रहा है, जिसका पूरा हिसाब करने का वायदा शुभेंदु अधिकारी ने किया था।
1: আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি সব পেয়ে গেছি, সব পেয়ে গেছি, সবকা সাথ সবকা বিকাশ ভি হোগা, সবকা হিসাব ভি হোগা।
0: ফালতা কি যো সড়কে জাহাঙ্গীর কি মৌজুদগি সে কহতে হ্যায় সুনসান হো জায়া করতি থি। फालता की उन्हीं सड़कों पर अभिषेक बनर्जी के पुष्पा की चुप्पी उस खौफ का अंत है जिसने लोगों को वर्षों तक वोट डालने से भी रोका।
2: क्या लगता है कि इतने दिनों से उनका डर यहाँ पे था?
3: हाँ, उनर उसके लिए डर के लिए सब बाहर निकल नहीं सकता है कि ऐसा किया था। और अभी हम रनिंग सीएम जो है वो तो आके हम लोग का रोड शो किया है, जो सब अपना से वोट दो, कोई डर नहीं करेगा। भय आउट भर सही।
0: इसी भय को निकालने के लिए फालता की सड़क पर जहांगीर खान की परेड निकाली जाती है। कुछ चुपचाप पुलिस वाले का हाथ पकड़कर गलियों में घूमता देखता। बड़ी बात यह कि अदालत में पेशी के दौरान जहांगीर खान पैंट पहने दिखा था, लेकिन जब फालता में उसकी परेड निकलती है तो हाफ पैंट में आ जाता है। जहांगीर खान से पहले टीएमसी के कई नेताओं और अपराधियों को बंगाल पुलिस इसी तरह घुमा चुकी, लेकिन जहांगीर खान का ये रूप अपने आप में अहम, क्योंकि चुनाव के दौरान वो खुलेआम पुलिस को धमका रहा था। जहांगीर खान फालता ही नहीं, डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर टीएमसी का बड़ा नेता रहा, जिसे फालता से जीत और ममता सरकार बनने का इतना भरोसा था कि वो खुलेआम इलेक्ट्रिक शमशान विरोधियों के अंतिम संस्कार के लिए मांगने लगा।
4: এখানে জাহাঙ্গীর আমাকে আস্তে আস্তে বলেছে, দাদা সব দিয়েছো, একটা বৈদ্যুতিক চুল্লি করে দিতে হবে। আমি ভাবলাম 4 তারিখ ফল বেরোনোর পর কিছু লোক তো হার্ট অ্যাটাক করবে, তাদের সৎকারটাও ভালো করে করা আমাদের উচিত।
0: लेकिन 4 मई को बाजी पलटती है तो जहांगीर खान के सुर नरम होते गए और उसने फालता विधानसभा सीट से खुद को अलग करने में पहले अपनी भलाई समझी।
1: आर कोथाई गेलेन तथाकथित पुष्पा नाकि नाम ओ डाकाटा कोथाई, ओ डाकाटा कोथाई, कोथाई देखा जाच्छे, देखा जाच्छे।
0: फलता में बीजेपी की जीत के बाद जहांगीर खान अंडरग्राउंड हो गया और फिर अचानक उसकी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तारी हुई। पता चला वो भागने की फिराक में था, लेकिन खुद को पुष्पा कहने वाले जहांगीर खान की इस नई तस्वीर ने उसके रहे सहे खौफ को खत्म कर दिया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को जनता ने पहले चुनाव में हराया और अब उसके नेता निशाने पर। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी के प्रधान को उठक बैठक करा के भ्रष्टाचार के लिए माफी मंगवाई गई। दुर्गापुर में गिरफ्तार टीएमसी नेता सुकुमार दत्ता पर अंडे फेंके जाते। टीएमसी के इस नेता पर करोड़ों की उगाही और आतंक फैलाने का आरोप। उत्तर 24 परगना की यह तस्वीर देखी, जिसमें टीएमसी नेता नौशाद आलम पर भी अंडे फेंके गए। जनता का ये गुस्सा उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसमें दावा है डर और भ्रष्टाचार चरम पर रहा, जिसके सबूत चारों तरफ बिखरे। उत्तर 24 परगना में जहां टीएमसी नेता पर अंडे फेंके जाते हैं, उससे कुछ ही दूरी पर एक स्कूल से 1,77,00,000 रुपए कैश बरामद होता है। बीजेपी का कहना है कि स्कूल से इतना बड़ा कैश मिलना टीएमसी राज में हो रहे भ्रष्टाचार की मिसाल है। बंगाल में 4 मई के बाद से लगातार टीएमसी के नेता निशाने पर हैं। एक तरफ जनता अपना हिसाब बराबर कर रही है, वहीं पुलिस जहांगीर खान जैसे नेताओं को इस तरह घुमाकर उनके खौफ को खत्म करने में जुटी है।
5: टीएमसी इतनी जल्दी बिखर जाएगी इस बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, और इसी तरह विपक्ष ने साल 2024 में ये नहीं सोचा था कि मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के करीब पहुंच जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत और तमिलनाडु में डीएमके से कांग्रेस की कथित धोखेबाजी मानसून सत्र में विपक्ष को बहुत भारी पड़ सकती है।
6: 24 के चुनाव में

0: कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए। विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो।
1: दो साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को खबरदार करते हुए ये तब कहा जब कांग्रेस और उसके समर्थक नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सूर्यास्त के दावे तक करने लगे थे।
2: आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, एक साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।
1: तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को याद दिलाया था कि विपक्ष को जनता ने जिताया नहीं बल्कि हराया है।
0: आप सबको शोले फिल्म की मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं पर मौसी, ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं पर मौसी, मॉरल विक्ट्री तो है ना।
1: 2024 के चुनाव परिणामों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, क्या वो 2026 में सच हो रहा? दो साल बाद न सिर्फ मोदी एक विजेता के रूप में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, वहीं देश को कांग्रेस के कुचक्र से निकालने का दावा भी करते हैं।
0: एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है।
1: 2024 के नतीजों के बाद इतनी जल्दी विपक्ष की ताकत बिखर जाएगी, इसकी कल्पना ममता बनर्जी जैसी कद्दावर नेता ने भी नहीं की होगी, जिनकी पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखरी पड़ी, जिसका असर मानसून सत्र में ताकतवर मोदी सरकार के रूप में देख सकता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 353 सीटें जीती थी, जो मोदी राज में एनडीए का तीन चुनावों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 2024 में एनडीए 292 सीटों पर आ जाती है, लेकिन टीएमसी में बगावत करने वाले 19 सांसदों के समर्थन के बाद एनडीए का आंकड़ा लोकसभा में 311 पहुंच जाता है। अप्रैल में जब संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय 528 सांसद लोकसभा में मौजूद थे और दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा 352 था, सरकार को 298 वोट मिले, विधेयक के खिलाफ 230 वोट डाले गए, यानी 54 वोटों से वो विधेयक गिर गया। अब सरकार ने संतर को काफी हद तक पाट लिया है। अगर मुद्दों के आधार पर डीएमके के 22 सांसदों का भी समर्थन मिलता है तो एनडीए की ताकत 333 तक हो सकती है। सरकार की नजरें शिवसेना यूबीटी के 9 सांसदों पर भी है, अगर इनमें टूट होती है तो 6 और सांसदों का समर्थन हासिल हो सकता है। इस तरह एनडीए की ताकत बढ़कर 339 तक पहुंच सकती है। बड़ी बात यह कि अप्रैल में संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय एनडीए को 298 सांसदों का समर्थन मिला था, अगर वो 5 वोट भी जोड़े तो एनडीए की संख्या 344 पहुंच जाती है। तो सरकार को उम्मीद है कि अन्य छोटे दल और निर्दलियों के दम पर 2/3 का बहुमत छुआ जा सकता है। यानी दो साल पहले 240 पर बीजेपी के अटकने को मोदी की हार समझने वाले विपक्ष को नरेंद्र मोदी खबरदार करते हुए जो कुछ कहते हैं वो बात सही निकलती है।
0: कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है, तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है।
1: मोदी की ये कहने के दो साल बाद लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी विपक्ष मोदी सरकार को दो तिहाई बहुमत के करीब पहुंचने से रोकता नहीं नजर आ रहा। इसकी वजह टीएमसी के 13 सांसद हैं, जिनमें से सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अगर ये बीजेपी में उपचुनाव के बाद राज्यसभा में आते हैं तो एनडीए का आंकड़ा 149 से 152 पहुंच सकता है। वहीं अगर टीएमसी के कुछ और सांसद टूटते हैं, डीएमके के 8 सांसद भी सशर्त समर्थन देते हैं, तो एनडीए राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत के आंकड़े 164 के लक्ष्य को आसानी से पा सकता है। मतलब संसद में संख्या बल के हिसाब से विपक्ष के लिए एनडीए को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मतलब मोदी के करिश्मे के खात्मे की भविष्यवाणी करने वालों को मुंह की खानी पड़ सकती है।
0: मुझे एक किस्सा याद आता है, आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था, तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है।
3: उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव से पहले हलचल तेज हो चुकी है। बीएसपी बैठकें कर रही है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ समीकरण बिठाने का जतन तलाश रही है। कांग्रेस कह रही है कि वो सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और इन सब के बीच बीजेपी ने चुनाव से पहले नौकरी वाला दांव चल दिया है।
4: उत्तर प्रदेश में जितना मौसम का पारा चढ़ा है उससे ज्यादा सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, क्योंकि 27 के समर के लिए सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। एक हलचल बीएसपी में है। समाजवादी पार्टी के पीडीए के जवाब में बीएसपी की भाईचारा कमेटी ओबीसी और दलित की बड़ी बैठक की गई, जिसमें हर जिले के ओबीसी और दलित नेता मौजूद रहे। ऐसा इसलिए ताकि वोट बैंक न टूटे और पीडीए से बचा रहे। एक और हलचल समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जब सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से बातचीत शुरू होगी, तब सबसे पहले कांग्रेस से किन जिलों में उन्हें चुनाव लड़ने में दिलचस्पी है ये पूछा जाएगा। एसपी को लगता है कि बड़ा उद्देश्य बीजेपी को यूपी में हराना है, फिर सीट पर चाहे कोई उम्मीदवार लड़े, बशर्ते वो उम्मीदवार जाति समीकरण को साध रहा हो और जिताऊ हो। हालांकि सूत्रों से खबर है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 80 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि उसकी 403 सीटों पर पूरी तैयारी है।
5: कांग्रेस की कितनी तैयारी है?
6: 400 दिनों पर पूरी मजबूती के साथ हमने सभी अपनी तैयारी की है। संगठन बूथ स्तर पर जीतने की क्या रणनीति हो सकती है उस पर हम काम कर रहे हैं।
4: तीसरी हलचल बीजेपी में है। माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठक होगी, मगर उसके पहले योगी सरकार ने नौकरी वाला बड़ा दाम चल दिया है। 2026 में 1.5 लाख से ज्यादा नई भर्तियों की तैयारी है। इसके साथ यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग 60,000 शिक्षकों की भर्ती करेगा। मतलब कह सकते हैं कि यूपी में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
3: अब खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां 24 नॉर्थ परगना में एक स्कूल में 2.25 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इसके अलावा शराब की कुछ बॉटल्स थी, आपत्तिजनक चीजें भी कुछ मिली हैं।

0: 500 की नोटों की गड्डियां, 200 के नोटों का बंडल और 100-100 रुपए के नोटों का गट्ठर, ये करोड़ों के कैश पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के कांचरापाड़ा में बने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिले हैं। एक करोड़ 77 लाख रुपए के साथ इस स्कूल में शराब की बोतलें और कॉन्डोम के पैकेट भी मिले हैं। स्कूल में एक बेडरूम जैसा सेमी फर्निश्ड कमरा भी है। सवाल ये है कि इतना पैसा स्कूल में आया कहाँ से?
1: एडमिशन टाकाटा अकाउंटेंट माने भर्ती टाका गुलो अप्रैल मास थेके स्टूडेंट जे भर्ती होय सेई टाका गुलो जमा करेछिलो। एकटा ओनार उचित छिलो माने एकदिन पर दुदिन अंतर बैंके पाठानो, उनी बैंके पाठायनी। আডাটা পুরো অ্যাকাউন্ট সেকশনের পাটে, আর আমি প্রিন্সিপাল হিসেবে শুধুমাত্র আমার একাডেমিক পার্টের আমার দায়িত্ব ছিল, এই পাটাইনি সে ব্যাপারে আমার কোনো নলেজ ছিল না।
0: मतलब स्कूल के मुखिया को ही नहीं मालूम कि स्कूल के भीतर अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए प्रिंसिपल साहब ने ये बताया कि बेडरूम इसलिए है ताकि बच्चे बीमार हो तो आराम कर सके। प्रिंसिपल की सफाई किसी के गले नहीं उतर रही है, लेकिन बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है।
2: তৃণমূল একটা অভিশাপ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 15 বছরের একটা অভিশাপ। স্কুল থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হচ্ছে, একটা বেডরুম পাওয়া যাচ্ছে এবং সেখানে আরো কিছু পাওয়া যাচ্ছে, আমার বলতে এখানে রুচিতে বাজছে, এই তো অবস্থা।
0: इस पूरे मामले में पुलिस ने स्कूल के कैशियर अभिजीत नाथ और अविक नाथ के साथ ही असिस्टेंट अकाउंटेंट सायन घोष को हिरासत में ले लिया है। अब जानने की कोशिश हो रही है कितना कैश आया कहां से और स्कूल में चल क्या रहा था। दीपक देवनाथ, नॉर्थ 24 परगना, आज तक।
3: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके से इस वक्त जो बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। रावलकोट की सड़कों पर इस समय जो हो रहा है वो महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक खुला विद्रोह है।
4: सुनिए इन नारों को, ये नारे किसी आम प्रदर्शन के नहीं हैं, ये सीधे सीधे उस अवैध कब्जे को चुनौती हैं, जिसे पाकिस्तान दशकों से दुनिया के सामने अपना बताता आया है। पीओके का रावलकोट रविवार को पूरी रात गोलियों, आंसू गैस के गोलों और सेना के बूटों की आवाज से नहीं बल्कि आवाम की दहाड़ से गूंजता रहा। कई जिलों से आए हजारों लोग रात भर सड़कों पर डटे रहे। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबका एक ही संकल्प है, अब हुक्मरानों की तानाशाही नहीं चलेगी। ये गुस्सा अचानक नहीं भड़का है, ये लावा है जो अब फट चुका है। 7 और 8 जून को रावलकोट ने वो खूनी मंजर देखा जिसने आवाम के सब्र का बांध तोड़ दिया। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो पीओके के इतिहास में ये अब तक का सबसे हिंसक और सबसे संगठित आंदोलन बन चुका है। पहले लोग सिर्फ आटे और बिजली के बिलों पर रोते थे, लेकिन इस बार बात आर पार की लड़ाई पर आ गई है। रावलकोट के इस महा आंदोलन ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के उस खोखले प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा कर रख दी है जिसमें वो कश्मीरियों का हमदर्द बनने का ढोंग करता है। ये नारा अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देता है, क्योंकि इस बार आसिफ मुनीर की फौज के सामने सिर पर कफन बांधे आवाम खड़ी है। आज तक ब्यूरो।
3: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव का असर अब तेल और गैस की किल्लत से आगे बढ़कर भारतीयों की जान की फिक्र में बदल चुका है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर पिछले 3 दिन में हमला किया है उसने भारत को चिंता से भर दिया है।
5: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिण में होते ये धमाके भारत के लिए चिंता की बात क्यों है? सवाल है कि ईरान की तरफ से गिराया गया अपाचे हेलीकॉप्टर क्यों हजारों भारतीय नाविकों की जान आफत में डाल सकता है?
6: But we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We're really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers.
7: attacking them very hard.
8: Resuming bombing?
7: Based on the helicopter, I guess we have the right to do that, you know.
5: अमेरिका और ईरान के बीच होती जंग की वजह से अब तक भारत को तेल और गैस की टेंशन रही, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में फंसे हजारों भारतीय नाविक जंग की आग से झुलस सकते हैं। हफ्ते के पहले चार दिनों में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू वाले तीन जहाजों पर अब तक अमेरिका की तरफ से हमला हो चुका है। पहला हमला 8 जून को मेरीवैक्स नाम के जहाज पर होता है, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटबेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिनमें 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला अब जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गिनी बिसाऊ के झंडे वाले इस जहाज पर ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। अमेरिका का कहना है कि जहाज के क्रू ने उसका निर्देश नहीं माना, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर 2 हेलफायर मिसाइल दागी। अमेरिकी नौसेना ने बुधवार को 24 भारतीय नागरिकों को ले जा रहे ऑयल टैंकर सेटवेलो पर भीषण हमला किया, इसमें 3 भारतीयों की जान गई है। मरने वालों में 23 साल के नाविक आदित्य शर्मा भी हैं। हमले के बाद भारत में अमेरिका की हरकतों को लेकर गुस्सा है।
9: कल शाम को मुझे कंपनी से फोन आया था, शिपिंग कंपनी से, कि ऐसे से शिप हिट हुआ है यूएस नेवी मिसाइल से, तो जो 3 क्रू मिसिंग है उनमें मेरा बेटा भी है। हमारा एक ही बेटा था, वो मेरे परिवार में मेरे मदर है, ब्रदर है, ब्रदर की फैमिली है
3: जी।
9: मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है वो एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी करे, ताकि किसी भी प्रेशर में, चाहे वो कमर्शियल प्रेशर हो या पॉलिटिकल प्रेशर हो, किसी भी शिप को उस तरफ जाने से रोका जाए, ताकि जो क्रू मेंबर होते हैं उनकी लाइफ पे कोई रिस्क ना आए।
5: अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान को कमजोर करने और अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसी के चलते वो जहाजों को निशाना बना रहा है, जिसकी चपेट में भारतीय नाविक भी आ रहे हैं। इसने अमेरिका को लेकर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अमेरिका बिना चेतावनी दिए हमले कर रहा है।
10: आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हर जहाज के पास ऑलमोस्ट डिटेल होती है। जहां तक नेवल शिप की बात करूं मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। उसके बाद भी उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चॉपर से या स्पीड बोट से या उनके जो क्रूजिंग बोट है उस बोट से उस जहाज को बोर्ड कर सकते थे। अगर उस जहाज के ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो उसको डिटेन करना उनके पास एक पर्याय था, लेकिन जिस तरह से दोनों जहाज को हिट किया गया है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी।
5: 3 दिन में 3 भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हमला करने से भारत और अमेरिका के संबंधों और क्वाड सहयोग पर सवाल खड़े किए गए हैं। तीसरे जहाज पर हमले के बाद भारत ने अमेरिकी राजदूत को तलब करके अपना विरोध जताया है।
11: We have seen that there have been several incidents involving Indian seafarers in West Asia in the last few days. We attach high importance to the welfare and well-being of our seafarers community. We need not re-emphasize this point. Yesterday we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which unfortunately we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest.
5: अमेरिका का कहना है कि ये तीनों जहाज ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सवाल है कि AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से जब क्रू मेंबर्स की जानकारी पहले ही मिल जाती है, तब अमेरिका की तरफ से जलवीर जहाज पर हमले का क्या मतलब है?
12: सर, प्लीज शेयर द कोऑर्डिनेट्स।
5: डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंग जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, इसीलिए उनकी तरफ से एक बार फिर ईरान पर जोरदार हमले की चेतावनी दी गई है। खार द्वीप पर कब्जा करने का प्लान बनाया गया है, लेकिन ट्रंप का यह कदम न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद 18,000 भारतीय नाविकों की जान खतरे में डालेगा, बल्कि खाड़ी देशों में रहने वाले 80,00,000 भारतीयों की जान पर भी संकट बनकर छा जाएगा।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: अपना प्लान, अब आज रात को नहीं करेंगे ईरान पर हमला, कहा दोनों देशों के बीच डील बेहद करीब पहुंच चुकी है, तब तक जारी रहेगी नौसैनिक नाकेबंदी। नीति आयोग की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा, प्रधानमंत्री मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और शिकायतों के तेजी के समाधान पर जोर दिया, 28 राज्यों के सीएम हुए शामिल। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा सरकार की नीति से पूरा समाज त्रस्त है, बोले मोदी ने मरवा दिया, खड़गे ने भी गिनाई खामियां। टीएमसी बागी गुट की नेता काकोली घोष का एनडीए के साथ होने का दावा, कहा 20 सांसद हमारे पक्ष में है लेकिन आज तक से बोले शत्रुघ्न सिन्हा, मैं ममता के साथ। एमपी की तीनों ही राज्यसभा की सीटों पर बीजेपी की जीत से बढ़कर राहुल गांधी का, चुनाव आयोग की जुगलबंदी से सीट चोरी, नियमों के खिलाफ नटराजन की उम्मीदवारी रद्द। ममता बनर्जी की टीएमसी में बगावत की आवाजें बुलंद हैं, जो कभी ममता बनर्जी के खास सिपह सलार हुआ करते थे, आज वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं या फिर पार्टी में रहकर गुट बनाने में लगे हैं। अब टीएमसी के तीसरे राज्यसभा सांसद ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
1: क्या ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकल चुकी है? क्या टीएमसी में सिर्फ ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ही बचेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक एक करके टीएमसी के पार्षद, विधायक, सांसद पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। कल सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया था और आज टीएमसी राज्यसभा के सांसद प्रकाश चिक बाराइक ने भी इस्तीफा दे दिया।
2: देखिए, असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया, ये हम लोग के पक्ष में नहीं आया, साथ ही इस मैंडेट को देखते हुए मैं भी अपना पद से इस्तीफा दिया क्योंकि मेरा भी कंस्टिट्यूएंसी में उस तरह रिजल्ट नहीं हुआ। अभी गणतांत्रिक देश का गणोदयता जिसको चाहती है वो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है।
1: तीन दिन में टीएमसी के तीन राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन इन बागियों में सयानी घोष, प्रतिमा मंडल, माला रॉय, मिताली बाग का नाम भी जोड़ लीजिए। कल टीएमसी के चार सांसद बीजेपी नेताओं से मिले, जादवपुर की सांसद सयोनी घोष, जयनगर की प्रतिमा मंडल, कोलकाता दक्षिण के मॉल रॉय और आरामबाग के सांसद मिताली बाग बागी खेमे में शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक हुई जिसमें बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। करीब एक घंटे तक चारों सांसदों और बीजेपी नेताओं की बैठक चलती रही। बागी गुट का दावा है कि 19 से 20 सांसद उनके संपर्क में हैं। टीएमसी के बागी लोकसभा में अलग गुट बनाना चाहते हैं। अभी लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। अगर ये बागी कामयाब हुए तो लोकसभा में टीएमसी नेता का पद भी इन्हें मिल जाएगा। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और इसीलिए बंगाल पुलिस 4 मई के बाद अपराधियों और आरोपियों की हवाई चप्पल और हाफ पेंट में परेड निकालते हुए नजर आई। फालता में टीएमसी नेता जहांगीर खान की भी ऐसी ही परेड पुलिस ने निकाली है।
3: फालता की जिन गलियों में कभी जहांगीर खान का खौफ पसरा रहता था, उन्हीं गलियों में शुभेंदु राज के भीतर उसे हाफ पैंट पहनाकर घुमाया गया है। खुद को पुष्पा कहने वाले जहांगीर खान की ये केवल परेड नहीं निकाली जा रही, बल्कि फालता के लोगों के दिलों से वो बचा खुचा खौफ भी बाहर किया जा रहा है, जिसका पूरा हिसाब करने का वायदा शुभेंदु अधिकारी ने किया था।
4: आपने निश्चिंत थाकुन, आमी सब पेये गेछि, सब पेये गेछि, सबका साथ सबका विकास भी होगा, सबका हिसाब भी होगा।
3: फालता की जो सड़कें जहांगीर की मौजूदगी से कहते हैं सुनसान हो जाया करती थी, फालता की उन्हीं सड़कों पर अभिषेक बनर्जी के पुष्पा की ये चुप्पी उस खौफ का अंत है जिसने लोगों को वर्षों तक वोट डालने से भी रोका।
5: क्या लगता है कि इतने दिनों से उनका डर यहाँ पे था?
6: हाँ, उसके लिए डर के लिए सब बाहर निकल नहीं सकता है कि ऐसा किया था। और अभी हम रनिंग सीएम जो है वो तो आके हम लोग का रोड शो किया है, जो सब अपना से वोट दो, कोई डर नहीं करेगा, भय आउट भर सही।
3: किसी भय को निकालने के लिए फालता की सड़क पर जहांगीर खान की परेड निकाली जाती, तो चुपचाप पुलिस वाले का हाथ पकड़ कर गलियों में घूमता देखता, बड़ी बात थी कि अदालत में पेशी के दौरान जहांगीर खान पैंट पहने दिखा था, लेकिन जब फालसा में उसकी परेड निकलती है तो हाफ पैंट में आ जाता है। जहांगीर खान से पहले टीएमसी के कई नेताओं और अपराधियों को बंगाल पुलिस इसी तरह घुमा चुकी, लेकिन जहांगीर खान का ये रूप अपने आप में अहम है, क्योंकि चुनाव के दौरान वो खुलेआम पुलिस को धमका रहा था। जहांगीर खान फलता ही नहीं, डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर टीएमसी का बड़ा नेता रहा, जिसे फलता से जीत और ममता सरकार बनने का इतना भरोसा था कि वो खुलेआम इलेक्ट्रिक शमशान विरोधियों के अंतिम संस्कार के लिए मांगने लगा।
7: এখানে জাহাঙ্গীর আমাকে আস্তে আস্তে বলেছে, দাদা সব দিয়েছ, একটা বৈদ্যুতিক চুল্লি করে দিতে হবে। আমি ভাবলাম চার তারিখ ফল বেরোনোর পর কিছু লোক তো হার্ট অ্যাটাক করবে, তাদের সৎকারটাও ভালো করে করা আমাদের উচিত।
3: লেকিন 4 মই কো বাজি পলটতি হ্যায় তো জাহাঙ্গীর খান কে সুর নরম হোতে গয়ে আর উসনে ফালতা বিধানসভা সিট সে খুদ কো অলগ করনে মে পহলে আপনি
0: टीएमसी इतनी जल्दी बिखर जाएगी, इस बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। और इसी तरह विपक्ष ने साल 2024 में ये नहीं सोचा था कि मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के करीब पहुंच जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत और तमिलनाडु में डीएमके से कांग्रेस की कथित धोखेबाजी मानसून सत्र में विपक्ष को बहुत भारी पड़ सकती है।
4: 24 के चुनाव में इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए। विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो।
3: 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को खबरदार करते हुए ये तब कहा जब कांग्रेस और उसके समर्थक नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सूर्यास्त के दावे तक करने लगे थे।
8: आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।
3: तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को याद दिलाया था कि विपक्ष को जनता ने जिताया नहीं बल्कि हराया है।
4: आप सबको शोले फिल्म की मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं पर मौसी मॉरल विक्ट्री तो है ना।
3: 2024 के चुनाव परिणामों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, क्या वो 2026 में सच हो रहा? 2 साल बाद न सिर्फ मोदी एक विजेता के रूप में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, वहीं देश को कांग्रेस के कुचक्र से निकालने का दावा भी करते हैं।
4: एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है।
3: 2024 के नतीजों के बाद इतनी जल्दी विपक्ष की ताकत बिखर जाएगी, इसकी कल्पना ममता बनर्जी जैसी कद्दावर नेता ने भी नहीं की होगी, जिनकी पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखरी पड़ी, जिसका असर मानसून सत्र में ताकतवर मोदी सरकार के रूप में दिख सकता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 353 सीटें जीती थी, जो मोदी राज में एनडीए का 3 चुनावों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 2024 में एनडीए 292 सीटों पर आ जाती है, लेकिन टीएमसी में बगावत करने वाले 19 सांसदों के समर्थन के बाद एनडीए का आंकड़ा लोकसभा में 311 पहुंच जाता है। अप्रैल में जब संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय 528 सांसद लोकसभा में मौजूद थे और दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा 352 था, सरकार को 298 वोट मिले, विधेयक के खिलाफ 230 वोट डाले गए, यानी 54 वोटों से वो विधेयक गिर गया था। अब सरकार ने संतर को काफी हद तक पाट लिया है। अगर मुद्दों के आधार पर डीएमके के 22 सांसदों का भी समर्थन मिलता है तो एनडीए की ताकत 333 तक हो सकती है। सरकार की नजरें शिवसेना यूबीटी के 9 सांसदों पर भी है। अगर इनमें टूट होती है तो 6 और सांसदों का समर्थन हासिल हो सकता है। इस तरह एनडीए की ताकत बढ़कर 339 तक पहुंच सकती है। बड़ी बात यह कि अप्रैल में संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय एनडीए को 298 सांसदों का समर्थन मिला था। अगर वो 5 वोट भी जोड़े तो एनडीए की संख्या 344 पहुंच जाती है। तो सरकार को उम्मीद है कि अन्य छोटे दल और निर्दलियों के दम पर 2/3 का बहुमत छुआ जा सकता है। यानी 2 साल पहले 240 पर बीजेपी के अटकने को मोदी की हार समझने वाले विपक्ष को नरेंद्र मोदी खबरदार करते हुए जो कुछ कहते हैं वो बात सही निकलती है।
9: कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है। तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है।
3: मोदी के ये कहने के 2 साल बाद लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी विपक्ष मोदी सरकार को 2/3 बहुमत के करीब पहुंचने से रोकता नहीं नजर आ रहा। इसकी वजह टीएमसी के 13 सांसद हैं, जिनमें से सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अगर ये बीजेपी में उपचुनाव के बाद राज्यसभा में आते हैं तो एनडीए का आंकड़ा 149 से 152 पहुंच सकता है। वहीं अगर टीएमसी के कुछ और सांसद टूटते हैं, डीएमके के 8 सांसद भी सशर्त समर्थन देते हैं, तो एनडीए राज्यसभा में 2/3 बहुमत के आंकड़े 164 के लक्ष्य को आसानी से पा सकता है। मतलब संसद में संख्या बल के हिसाब से विपक्ष के लिए एनडीए को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मतलब मोदी के करिश्मे के खात्मे की भविष्यवाणी करने वालों को मुंह की खानी पड़ सकती है।
9: मुझे एक किस्सा याद आता है। सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था, तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है।
0: उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव से पहले हलचल तेज हो चुकी है। बीएसपी बैठकें कर रही है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ समीकरण बिठाने का जतन तलाश रही है। कांग्रेस कह रही है कि वो सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और इन सब के बीच बीजेपी ने चुनाव से पहले नौकरी वाला दांव चल दिया है।
10: उत्तर प्रदेश में जितना मौसम का पारा चढ़ा है उससे ज्यादा सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, क्योंकि 27 के समर के लिए सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। एक हलचल बीएसपी में है। समाजवादी पार्टी के पीडीए के जवाब में बीएसपी की भाईचारा कमेटी ओबीसी और दलित की बड़ी बैठक की गई, जिसमें हर जिले के ओबीसी और दलित नेता मौजूद रहे। ऐसा इसलिए ताकि वोट बैंक न टूटे और पीडीए से बचा रहे। एक और हलचल समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जब सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से बातचीत शुरू होगी, तब सबसे पहले कांग्रेस से किन जिलों में उन्हें चुनाव लड़ने में दिलचस्पी है ये पूछा जाएगा। एसपी को लगता है कि बड़ा उद्देश्य बीजेपी को यूपी में हराना है, फिर सीट पर चाहे कोई उम्मीदवार लड़े, बशर्ते वो उम्मीदवार जाति समीकरण को साध रहा हो और जिताऊ हो। हालांकि सूत्रों से खबर है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 80 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि उसकी 403 सीटों पर पूरी तैयारी है।
11: कांग्रेस की कितनी तैयारी है?
12: 400 तीनों पर पूरी मजबूती के साथ हमने सभी अपनी तैयारी की है। संगठन बूथ स्तर पर जीतने की क्या रणनीति हो सकती है उस पर हम काम कर रहे हैं।
10: तीसरी हलचल बीजेपी में है। माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठक होगी, मगर उसके पहले योगी सरकार ने नौकरी वाला बड़ा दाम चल दिया है। 2026 में 1.5 लाख से ज्यादा नई भर्तियों की तैयारी है। इसके साथ यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग 60,000 शिक्षकों की भर्ती करेगा। मतलब कह सकते हैं कि यूपी में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां 24 नॉर्थ परगना में एक स्कूल में पौने 2 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इसके अलावा शराब की कुछ बॉटल्स थी, आपत्तिजनक चीजें भी कुछ मिली हैं।

0: 500 की नोटों की गड्डियां, 200 के नोटों का बंडल और 100-100 रुपए के नोटों का गट्ठर, ये करोड़ों के कैश पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के कांचरापाड़ा में बने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिले हैं। एक करोड़ 77 लाख रुपए के साथ इस स्कूल में शराब की बोतलें और कॉन्डोम के पैकेट भी मिले हैं। स्कूल में एक बेडरूम जैसा सेमी फर्निश्ड कमरा भी है। सवाल ये है कि इतना पैसा स्कूल में आया कहां से?
1: एडमिशन टाकाटा अकाउंटेंट माने भर्ती टाका गुलो अप्रैल मास থেকে স্টুডেন্ট যে ভর্তি হয় সেই টাকা গুলো জমা করেছিল, একটা ওনার উচিত ছিল মানে একদিন বা দুদিন অন্তর ব্যাংকে পাঠানো, উনি ব্যাংকে পাঠায়নি, আড়াটা পুরো অ্যাকাউন্ট সেকশনের পাটে, আর আমি প্রিন্সিপাল হিসেবে শুধুমাত্র আমার একাডেমিক পার্টের আমার দায়িত্ব ছিল, এই পাটাইনি সে ব্যাপারে আমার কোনো নলেজ ছিল না।
0: मतलब स्कूल के मुखिया को ही नहीं मालूम कि स्कूल के भीतर अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए प्रिंसिपल साहब ने ये बताया कि बेडरूम इसलिए है ताकि बच्चे बीमार हो तो आराम कर सके। प्रिंसिपल की सफाई किसी के गले नहीं उतर रही है, लेकिन बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है।
2: তৃণমূল একটা অভিশাপ, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 15 বছরের একটা অভিশাপ। স্কুল থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হচ্ছে, একটা বেডরুম পাওয়া যাচ্ছে এবং সেখানে আরো কিছু পাওয়া যাচ্ছে, আমার বলতে এখানে রুচিতে বাজছে, এই তো অবস্থা।
0: इस पूरे मामले में पुलिस ने स्कूल के कैशियर अभिजीत नाथ और अविक नाथ के साथ ही असिस्टेंट अकाउंटेंट सायन घोष को हिरासत में ले लिया है। अब जानने की कोशिश हो रही है कितना कैश आया कहां से और स्कूल में चल क्या रहा था। दीपक देवनाथ, नॉर्थ 24 परगना, आज तक।
3: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी के पीओके से इस वक्त जो बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। रावलकोट की सड़कों पर इस समय जो हो रहा है वो महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक खुला विद्रोह है।
4: सुनिए इन नारों को, ये नारे किसी आम प्रदर्शन के नहीं हैं, ये सीधे सीधे उस अवैध कब्जे को चुनौती हैं, जिसे पाकिस्तान दशकों से दुनिया के सामने अपना बताता आया है। पीओके का रावलकोट रविवार को पूरी रात गोलियों, आंसू गैस के गोलों और सेना के बूटों की आवाज से नहीं बल्कि आवाम की दहाड़ से गूंजता रहा। कई जिलों से आए हजारों लोग रात भर सड़कों पर डटे रहे। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबका एक ही संकल्प है, अब हुक्मरानों की तानाशाही नहीं चलेगी। ये गुस्सा अचानक नहीं भड़का है, ये लावा है जो अब फट चुका है। 7 और 8 जून को रावलकोट ने वो खूनी मंजर देखा जिसने आवाम के सब्र का बांध तोड़ दिया। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो पीओके के इतिहास में ये अब तक का सबसे हिंसक और सबसे संगठित आंदोलन बन चुका है। पहले लोग सिर्फ आटे और बिजली के बिलों पर रोते थे, लेकिन इस बार बात आर पार की लड़ाई पर आ गई है। रावलकोट के इस महा आंदोलन ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के उस खोखले प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, जिसमें वो कश्मीरियों का हमदर्द बनने का ढोंग करता है। ये नारा अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देता है, क्योंकि इस बार आसिम मुनीर की फौज के सामने सिर पर कफन बांधे आवाम खड़ी है। आज तक ब्यूरो।
3: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव का असर अब तेल और गैस की किल्लत से आगे बढ़कर भारतीयों की जान की फिक्र में बदल चुका है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर पिछले 3 दिन में हमला किया है उसने भारत को चिंता से भर दिया है।
5: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिण में होते ये धमाके भारत के लिए चिंता की बात क्यों है? सवाल है कि ईरान की तरफ से गिराया गया अपाचे हेलीकॉप्टर क्यों हजारों भारतीय नाविकों की जान आफत में डाल सकता है?
6: But we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers. attacking them very hard.
7: You're resuming bombing?
6: Based on the helicopter, I guess we have the right to do that, you know.
5: अमेरिका और ईरान के बीच होती जंग की वजह से अब तक भारत को तेल और गैस की टेंशन रही, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और फारस की खाड़ी में फंसे हजारों भारतीय नाविक जंग की आग से झुलस सकते हैं। हफ्ते के पहले चार दिनों में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भारतीय क्रू वाले तीन जहाजों पर अब तक अमेरिका की तरफ से हमला हो चुका है। पहला हमला 8 जून को मेरीवैक्स नाम के जहाज पर होता है, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटबेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिनमें 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला अब जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गिनी बिसाउ के झंडे वाले इस जहाज पर ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। अमेरिका का कहना है कि जहाज के क्रू ने उसका निर्देश नहीं माना, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर 2 हेलफायर मिसाइल दागी। अमेरिकी नौसेना ने बुधवार को 24 भारतीय नागरिकों को ले जा रहे ऑयल टैंकर सेटवेलो पर भीषण हमला किया, इसमें 3 भारतीयों की जान गई है। मरने वालों में 23 साल के नाविक आदित्य शर्मा भी हैं। हमले के बाद भारत में अमेरिका की हरकतों को लेकर गुस्सा है।
8: मैम, कल शाम को मुझे कंपनी से फोन आया था, शिपिंग कंपनी से, कि ऐसे सिर्फ शिप हिट हुआ है यूएस नेवी के मिसाइल से, तो जो 3 क्रू मिसिंग है उनमें मेरा बेटा भी है। हमारा एक ही बेटा था, वो मेरे परिवार में मेरे मदर है, ब्रदर है, ब्रदर की फैमिली है
9: जी।
8: मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है वो एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी करे, ताकि किसी भी प्रेशर में, चाहे वो कमर्शियल प्रेशर हो या पॉलिटिकल प्रेशर हो, किसी भी शिप को उस तरफ जाने से रोका जाए, ताकि जो क्रू मेंबर होते हैं उनकी लाइफ पे कोई रिस्क ना आए।
5: अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान को कमजोर करने और अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसी के चलते वो जहाजों को निशाना बना रहा है, जिसकी चपेट में भारतीय नाविक भी आ रहे हैं। इसने अमेरिका को लेकर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अमेरिका बिना चेतावनी दिए हमले कर रहा है।
10: आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हर जहाज के पास ऑलमोस्ट डिटेल होती है। जहां तक नेवल शिप की बात करूं मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। उसके बाद भी उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चॉपर से या स्पीड बोट से या उनकी जो क्रूजिंग बोट है उस बोट से उस जहाज को बोर्ड कर सकते थे। अगर उस जहाज के ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो उसको डिटेन करना उनके पास एक पर्याय था, लेकिन जिस तरह से दोनों जहाज को हिट किया गया है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी।
5: 3 दिन में 3 भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हमला करने से भारत और अमेरिका के संबंधों और क्वाड सहयोग पर सवाल खड़े किए गए हैं। तीसरे जहाज पर हमले के बाद भारत ने अमेरिकी राजदूत को तलब करके अपना विरोध जताया है।
11: We have seen that there have been several incidents involving Indian seafarers in West Asia in the last few days. We attach high importance to the welfare and well-being of our seafarer community. We need not re-emphasize this point. Yesterday we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which unfortunately we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest.
5: अमेरिका का कहना है कि ये तीनों जहाज ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सवाल है कि AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से जब क्रू मेंबर्स की जानकारी पहले ही मिल जाती है, तब अमेरिका की तरफ से जलवीर जहाज पर हमले का क्या मतलब है?
12: Sir, please share the coordinates.
5: डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंग जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, इसीलिए उनकी तरफ से एक बार फिर ईरान पर जोरदार हमले की चेतावनी दी गई है। खार्ग द्वीप पर कब्जा करने का प्लान बनाया गया है, लेकिन ट्रंप का यह कदम न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में मौजूद 18,000 भारतीय नाविकों की जान खतरे में डालेगा, बल्कि खाड़ी देशों में रहने वाले 80,00,000 भारतीयों की जान पर भी संकट बनकर छा जाएगा।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: अपना प्लान अब आज रात को नहीं करेंगे ईरान पर हमला का। दोनों देशों के बीच डील बेहद करीब पहुंच चुकी है, तब तक जारी रहेगी नौ सैनिक नाकेबंदी। नीति आयोग की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और शिकायतों के तेजी के समाधान पर जोर दिया। 28 राज्यों के सीएम हुए शामिल। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा सरकार की नीति से पूरा समाज त्रस्त है। बोले मोदी ने मरवा दिया, खड़गे ने भी गिनाई खामियां। टीएमसी बागी गुट की नेता काकोली घोष का एनडीए के साथ होने का दावा, कहा 20 सांसद हमारे पक्ष में हैं, लेकिन आज तक से बोले शत्रुघ्न सिन्हा, मैं ममता के साथ। एमपी की तीनों ही राज्यसभा की सीटों पर बीजेपी की जीत से बढ़कर राहुल गांधी का, चुनाव आयोग की जुगलबंदी से सीट चोरी, नियमों के खिलाफ नटराजन की उम्मीदवारी रद्द। ममता बनर्जी की टीएमसी में बगावत की आवाजें बुलंद हैं। जो कभी ममता बनर्जी के खास सिपह सलार हुआ करते थे, आज वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं या फिर पार्टी में रहकर गुट बनाने में लगे हैं। अब टीएमसी के तीसरे राज्यसभा सांसद ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
1: क्या ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकल चुकी है? क्या टीएमसी में सिर्फ ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ही बचेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक एक करके टीएमसी के पार्षद, विधायक, सांसद पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। कल सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया था और आज टीएमसी राज्यसभा के सांसद प्रकाश चिक बाराइक ने भी इस्तीफा दे दिया।
2: देखिए, असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया, ये हम लोग के पक्ष में नहीं आया। साथ ही इस मैंडेट को देखते हुए मैं भी अपना पद से इस्तीफा दिया क्योंकि मेरा भी कंस्टिट्यूएंसी में उस तरह रिजल्ट नहीं हुआ। अभी गणतांत्रिक देश का गणोदयता जिसको चाहती है वो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है।
1: तीन दिन में टीएमसी के तीन राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन इन बागियों में सयानी घोष, प्रतिमा मंडल, माला रॉय, मिताली बाग का नाम भी जोड़ लीजिए। कल टीएमसी के चार सांसद बीजेपी नेताओं से मिले। जादवपुर की सांसद सयोनी घोष, जयनगर की प्रतिमा मंडल, कोलकाता दक्षिण के मॉल रॉय और आरामबाग के सांसद मिताली बाग बागी खेमे में शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक हुई जिसमें बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। करीब एक घंटे तक चारों सांसदों और बीजेपी नेताओं की बैठक चलती रही। बागी गुट का दावा है कि 19 से 20 सांसद उनके संपर्क में हैं। टीएमसी के बागी लोकसभा में अलग गुट बनाना चाहते हैं। अभी लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। अगर ये बागी कामयाब हुए तो लोकसभा में टीएमसी नेता का पद भी इन्हें मिल जाएगा। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और इसीलिए बंगाल पुलिस 4 मई के बाद अपराधियों और आरोपियों की हवाई चप्पल और हाफ पेंट में परेड निकालते हुए नजर आई। फालता में टीएमसी नेता जहांगीर खान की भी ऐसी ही परेड पुलिस ने निकाली है।
3: फालता की जिन गलियों में कभी जहांगीर खान का खौफ पसरा रहता था, उन्हीं गलियों में शुभेंदु राज के भीतर उसे हाफ पैंट पहनाकर घुमाया गया है। खुद को पुष्पा कहने वाले जहांगीर खान की ये केवल परेड नहीं निकाली जा रही, बल्कि फालता के लोगों के दिलों से वो बचा खुचा खौफ भी बाहर किया जा रहा है, जिसका पूरा हिसाब करने का वायदा शुभेंदु अधिकारी ने किया था।
4: আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি সব পেয়ে গেছি, সব পেয়ে গেছি, সবকা সাথ সবকা বিকাশ ভি হোগা সবকা हिसाब भी होगा।
3: फालता की जो सड़कें जहांगीर की मौजूदगी से कहते हैं सुनसान हो जाया करती थी, फालता की उन्हीं सड़कों पर अभिषेक बनर्जी के पुष्पा की चुप्पी उस खौफ का अंत है जिसने लोगों को वर्षों तक वोट डालने से भी रोका।
5: क्या लगता है कि इतने दिनों से उनका डर यहाँ पे था?
6: हाँ, उसके लिए डर के लिए सब बाहर निकल नहीं सकता है कि ऐसा किया था। और अभी हम रनिंग सीएम जो है वो तो आके हम लोग का रोड शो किया है, जो सब अपना से वोट दो, कोई डर नहीं करेगा। भय आउट भर सही।
3: इसी भय को निकालने के लिए फालता की सड़क पर जहांगीर खान की परेड निकाली जाती। चुपचाप पुलिस वाले का हाथ पकड़कर गलियों में घूमता देखता, बड़ी बात यह कि अदालत में पेशी के दौरान जहांगीर खान पैंट पहने दिखा था, लेकिन जब फालतू में उसकी परेड निकलती है तो हाफ पैंट में आ जाता है। जहांगीर खान से पहले टीएमसी के कई नेताओं और अपराधियों को बंगाल पुलिस इसी तरह घुमा चुकी है।

0: बीमारी तो आ रहे हैं, पर मौसी मॉरल विक्ट्री तो है ना।
1: 2024 के चुनाव परिणामों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, क्या वो 2026 में सच हो रहा? दो साल बाद न सिर्फ मोदी एक विजेता के रूप में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, वहीं देश को कांग्रेस के कुचक्र से निकालने का दावा भी करते हैं।
0: एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है।
1: 2024 के नतीजों के बाद इतनी जल्दी विपक्ष की ताकत बिखर जाएगी, इसकी कल्पना ममता बनर्जी जैसी कद्दावर नेता ने भी नहीं की होगी, जिनकी पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखरी पड़ी, जिसका असर मानसून सत्र में ताकतवर मोदी सरकार के रूप में देख सकता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 353 सीटें जीती थी, जो मोदी राज में एनडीए का 3 चुनावों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 2024 में एनडीए 292 सीटों पर आ जाती है, लेकिन टीएमसी में बगावत करने वाले 19 सांसदों के समर्थन के बाद एनडीए का आंकड़ा लोकसभा में 311 पहुंच जाता है। अप्रैल में जब संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय 528 सांसद लोकसभा में मौजूद थे और 2/3 बहुमत का आंकड़ा 352 था, सरकार को 298 वोट मिले, विधेयक के खिलाफ 230 वोट डाले गए, यानी 54 वोटों से वो विधेयक गिर गया था। अब सरकार ने इस अंतर को काफी हद तक पाट लिया है। अगर मुद्दों के आधार पर डीएमके के 22 सांसदों का भी समर्थन मिलता है तो एनडीए की ताकत 333 तक हो सकती है। सरकार की नजरें शिवसेना यूबीटी के 9 सांसदों पर भी है, अगर इनमें टूट होती है तो 6 और सांसदों का समर्थन हासिल हो सकता है। इस तरह एनडीए की ताकत बढ़कर 339 तक पहुंच सकती है। बड़ी बात यह कि अप्रैल में संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय एनडीए को 298 सांसदों का समर्थन मिला था, अगर वो 5 वोट भी जोड़े तो एनडीए की संख्या 344 पहुंच जाती है। तो सरकार को उम्मीद है कि अन्य छोटे दल और निर्दलियों के दम पर 2/3 का बहुमत छुआ जा सकता है। यानी 2 साल पहले 240 पर बीजेपी के अटकने को मोदी की हार समझने वाले विपक्ष को नरेंद्र मोदी खबरदार करते हुए जो कुछ कहते हैं वो बात सही निकलती है।
0: कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है, तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है।
1: मोदी के ये कहने के 2 साल बाद लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी विपक्ष मोदी सरकार को 2/3 बहुमत के करीब पहुंचते से रोकता नहीं नजर आ रहा। इसकी वजह टीएमसी के 13 सांसद हैं, जिनमें से सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराईक राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अगर ये बीजेपी में उपचुनाव के बाद राज्यसभा में आते हैं तो एनडीए का आंकड़ा 149 से 152 पहुंच सकता है। वहीं अगर टीएमसी के कुछ और सांसद टूटते हैं, डीएमके के 8 सांसद भी सशर्त समर्थन देते हैं, तो एनडीए राज्यसभा में 2/3 बहुमत के आंकड़े 164 के लक्ष्य को आसानी से पा सकता है। मतलब संसद में संख्या बल के हिसाब से विपक्ष के लिए एनडीए को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मतलब मोदी के करिश्मे के खात्मे की भविष्यवाणी करने वालों को मुंह की खानी पड़ सकती है।
0: सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था, तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है।
2: उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव से पहले हलचल तेज हो चुकी है। बीएसपी बैठकें कर रही है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ समीकरण बिठाने का जतन तलाश रही है। कांग्रेस कह रही है कि वो सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और इन सब के बीच बीजेपी ने चुनाव से पहले नौकरी वाला दांव चल दिया है।
3: उत्तर प्रदेश में जितना मौसम का पारा चढ़ा है उससे ज्यादा सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, क्योंकि 27 के समर के लिए सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। एक हलचल बीएसपी में है। समाजवादी पार्टी के पीडीए के जवाब में बीएसपी की भाईचारा कमेटी ओबीसी और दलित की बड़ी बैठक की गई, जिसमें हर जिले के ओबीसी और दलित नेता मौजूद रहे। ऐसा इसलिए ताकि वोट बैंक न टूटे और पीडीए से बचा रहे। एक और हलचल समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जब सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से बातचीत शुरू होगी, तब सबसे पहले कांग्रेस से किन जिलों में उन्हें चुनाव लड़ने में दिलचस्पी है ये पूछा जाएगा। एसपी को लगता है कि बड़ा उद्देश्य बीजेपी को यूपी में हराना है, फिर सीट पर चाहे कोई उम्मीदवार लड़े, बशर्ते वो उम्मीदवार जाति समीकरण को साध रहा हो और जिताऊ हो। हालांकि सूत्रों से खबर है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 80 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि उसकी 403 सीटों पर पूरी तैयारी है।
1: कांग्रेस की कितनी तैयारी है?
4: 400 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ हमने सभी अपनी तैयारी की है। संगठन बूथ स्तर पर जीतने की क्या रणनीति हो सकती है उस पर हम काम कर रहे हैं।
3: तीसरी हलचल बीजेपी में है। माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठक होगी, मगर उसके पहले योगी सरकार ने नौकरी वाला बड़ा दाम चल दिया है। 2026 में 1.5 लाख से ज्यादा नई भर्तियों की तैयारी है। इसके साथ यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग 60,000 शिक्षकों की भर्ती करेगा। मतलब कह सकते हैं कि यूपी में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
2: अब खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां 24 नॉर्थ परगना में एक स्कूल में 2.25 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इसके अलावा शराब की कुछ बॉटल्स थी, आपत्तिजनक चीजें भी कुछ मिली हैं।

0: 500 की नोटों की गड्डियां, 200 के नोटों का बंडल और 100-100 रुपए के नोटों का गट्ठर, ये करोड़ों के कैश पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के कांचरापाड़ा में बने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिले हैं। एक करोड़ 77 लाख रुपए के साथ इस स्कूल में शराब की बोतलें और कॉन्डोम के पैकेट भी मिले हैं। स्कूल में एक बेडरूम जैसा सेमी फर्निश्ड कमरा भी है। सवाल ये है कि इतना पैसा स्कूल में आया कहाँ से?
1: एडमिशन टाकाटा अकाउंटेंट माने भर्ती टाका गुलो अप्रैल मास थेके स्टूडेंट जे भर्ती होय सेई टाका गुलो जमा करेछिलो। एकटा ओनार उचित छिलो माने एकदिन पर दुदिन अंतर बैंके पाठानो, उनी बैंके पाठायनि। আডাটা পুরো অ্যাকাউন্ট সেকশনের পাটে, আর আমি প্রিন্সিপাল হিসেবে শুধুমাত্র আমার একাডেমিক পাটের আমার দায়িত্ব ছিল, এই পাটাইনি সে ব্যাপারে আমার কোনো নলেজ ছিল না।
0: मतलब स्कूल के मुखिया को ही नहीं मालूम कि स्कूल के भीतर अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए प्रिंसिपल साहब ने ये बताया कि बेडरूम इसलिए है ताकि बच्चे बीमार हो तो आराम कर सके। प्रिंसिपल की सफाई किसी के गले नहीं उतर रही है, लेकिन बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है।
2: তৃণমূল একটা অভিশাপ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 15 বছরের একটা অভিশাপ। স্কুল থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হচ্ছে, একটা বেডরুম পাওয়া যাচ্ছে এবং সেখানে আরো কিছু পাওয়া যাচ্ছে, আমার বলতে এখানে রুচিতে বাজছে, এই তো অবস্থা।
0: इस पूरे मामले में पुलिस ने स्कूल के कैशियर अभिजीत नाथ और अविक नाथ के साथ ही असिस्टेंट अकाउंटेंट सायन घोष को हिरासत में ले लिया है। अब जानने की कोशिश हो रही है कितना कैश आया कहां से और स्कूल में चल क्या रहा था। दीपक देवनाथ, नॉर्थ 24 परगना, आज तक।
3: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी के पीओके से इस वक्त जो बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। रावलकोट की सड़कों पर इस समय जो हो रहा है वो महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक खुला विद्रोह है।
4: सुनिए इन नारों को, ये नारे किसी आम प्रदर्शन के नहीं हैं, ये सीधे सीधे उस अवैध कब्जे को चुनौती हैं, जिसे पाकिस्तान दशकों से दुनिया के सामने अपना बताता आया है। पीओके का रावलकोट रविवार को पूरी रात गोलियों, आंसू गैस के गोलों और सेना के बूटों की आवाज से नहीं बल्कि आवाम की दहाड़ से गूंजता रहा। कई जिलों से आए हजारों लोग रात भर सड़कों पर डटे रहे। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबका एक ही संकल्प है, अब हुक्मरानों की तानाशाही नहीं चलेगी। ये गुस्सा अचानक नहीं भड़का है, ये लावा है जो अब फट चुका है। 7 और 8 जून को रावलकोट ने वो खूनी मंजर देखा जिसने आवाम के सब्र का बांध तोड़ दिया। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो पीओके के इतिहास में ये अब तक का सबसे हिंसक और सबसे संगठित आंदोलन बन चुका है। पहले लोग सिर्फ आटे और बिजली के बिलों पर रोते थे, लेकिन इस बार बात आर पार की लड़ाई पर आ गई है। रावलकोट के इस महा आंदोलन ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के उस खोखले प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, जिसमें वो कश्मीरियों का हमदर्द बनने का ढोंग करता है। ये नारा अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देता है, क्योंकि इस बार आसिम मुनीर की फौज के सामने सिर पर कफन बांधे आवाम खड़ी है। आज तक ब्यूरो।
3: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव का असर अब तेल और गैस की किल्लत से आगे बढ़कर भारतीयों की जान की फिक्र में बदल चुका है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर पिछले 3 दिन में हमला किया है उसने भारत को चिंता से भर दिया है।
5: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिण में होते ये धमाके भारत के लिए चिंता की बात क्यों है? सवाल है कि ईरान की तरफ से गिराया गया अपाचे हेलीकॉप्टर क्यों हजारों भारतीय नाविकों की जान आफत में डाल सकता है?
6: But we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers.
7: attacking them very hard.
8: Resuming bombing?
7: Based on the helicopter, I guess we have the right to do that, you know.
5: अमेरिका और ईरान के बीच होती जंग की वजह से अब तक भारत को तेल और गैस की टेंशन रही, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में फंसे हजारों भारतीय नाविक जंग की आग से झुलस सकते हैं। हफ्ते के पहले चार दिनों में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू वाले तीन जहाजों पर अब तक अमेरिका की तरफ से हमला हो चुका है। पहला हमला 8 जून को मेरिवैक्स नाम के जहाज पर होता है, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेट बेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिनमें 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला अब जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गिनी बिसाऊ के झंडे वाले इस जहाज पर ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। अमेरिका का कहना है कि जहाज के क्रू ने उसका निर्देश नहीं माना, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर 2 हेलफायर मिसाइल दाग दी। अमेरिकी नौसेना ने बुधवार को 24 भारतीय नागरिकों को ले जा रहे ऑयल टैंकर सेटवेलो पर भीषण हमला किया, इसमें 3 भारतीयों की जान गई है। मरने वालों में 23 साल के नाविक आदित्य शर्मा भी हैं। हमले के बाद भारत में अमेरिका की हरकतों को लेकर गुस्सा है।
9: कल शाम को मुझे कंपनी से फोन आया था, शिपिंग कंपनी से, कि ऐसे से शिप हिट हुआ है यूएस नेवी की मिसाइल से, तो जो 3 क्रू मिसिंग है उनमें मेरा बेटा भी है। हमारा एक ही बेटा था, वो मेरे परिवार में मेरे मदर है, ब्रदर है, ब्रदर की फैमिली है
3: जी।
9: मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है वो एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी करे, ताकि किसी भी प्रेशर में, चाहे वो कमर्शियल प्रेशर हो या पॉलिटिकल प्रेशर हो, किसी भी शिप को उस तरफ जाने से रोका जाए, ताकि जो क्रू मेंबर होते हैं उनकी लाइफ पे कोई रिस्क ना आए।
5: अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान को कमजोर करने और अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसी के चलते वो जहाजों को निशाना बना रहा है, जिसकी चपेट में भारतीय नाविक भी आ रहे हैं। इसने अमेरिका को लेकर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अमेरिका बिना चेतावनी दिए हमले कर रहा है।
10: आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हर जहाज के पास ऑलमोस्ट डिटेल होती है। जहां तक नेवल शिप की बात करूं मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। उसके बाद भी उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चॉपर से या स्पीड बोट से या उनके जो क्रूजिंग बोट है उस बोट से उस जहाज को बोर्ड कर सकते थे। अगर उस जहाज के ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो उसको डिटेन करना उनके पास एक पर्याय था, लेकिन जिस तरह से दोनों जहाज को हिट किया गया है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी।
5: 3 दिन में 3 भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हमला करने से भारत और अमेरिका के संबंधों और क्वाड सहयोग पर सवाल खड़े किए गए हैं। तीसरे जहाज पर हमले के बाद भारत ने अमेरिकी राजदूत को तलब करके अपना विरोध जताया है।
11: We have seen that there have been several incidents involving Indian seafarers in West Asia in the last few days. We attach high importance to the welfare and well-being of our seafarers community. We need not re-emphasize this point. Yesterday we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which unfortunately we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest.
5: अमेरिका का कहना है कि ये तीनों जहाज ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सवाल है कि AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से जब क्रू मेंबर्स की जानकारी पहले ही मिल जाती है, तब अमेरिका की तरफ से जलवीर जहाज पर हमले का क्या मतलब है?
12: सर, प्लीज शेयर द कोऑर्डिनेट्स।
5: डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंग जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, इसीलिए उनकी तरफ से एक बार फिर ईरान पर जोरदार हमले की चेतावनी दी गई है। खार द्वीप पर कब्जा करने का प्लान बनाया गया है, लेकिन ट्रंप का यह कदम न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद 18,000 भारतीय नाविकों की जान खतरे में डालेगा, बल्कि खाड़ी देशों में रहने वाले 80,00,000 भारतीयों की जान पर भी संकट बनकर छा जाएगा।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: अपना प्लान, अब आज रात को नहीं करेंगे ईरान पर हमला, कहा दोनों देशों के बीच डील बेहद करीब पहुंच चुकी है, तब तक जारी रहेगी नौसैनिक नाकेबंदी। नीति आयोग की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा, प्रधानमंत्री मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और शिकायतों के तेजी के समाधान पर जोर दिया, 28 राज्यों के सीएम हुए शामिल। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा सरकार की नीति से पूरा समाज त्रस्त है, बोले मोदी ने मरवा दिया, खड़गे ने भी गिनाई खामियां। टीएमसी बागी गुट की नेता काकोली घोष का एनडीए के साथ होने का दावा, कहा 20 सांसद हमारे पक्ष में है लेकिन आज तक से बोले शत्रुघ्न सिन्हा, मैं ममता के साथ। एमपी की तीनों ही राज्यसभा की सीटों पर बीजेपी की जीत से बढ़कर राहुल गांधी का, चुनाव आयोग की जुगलबंदी से सीट चोरी, नियमों के खिलाफ नटराजन की उम्मीदवारी रद्द। ममता बनर्जी की टीएमसी में बगावत की आवाजें बुलंद हैं, जो कभी ममता बनर्जी के खास सिपह सलार हुआ करते थे आज वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं या फिर पार्टी में रहकर गुट बनाने में लगे हैं। अब टीएमसी के तीसरे राज्यसभा सांसद ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
1: क्या ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकल चुकी है? क्या टीएमसी में सिर्फ ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ही बचेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक एक करके टीएमसी के पार्षद, विधायक, सांसद पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। कल सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया था और आज टीएमसी राज्यसभा के सांसद प्रकाश चिक बाराइक ने भी इस्तीफा दे दिया।
2: देखिए, असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया, ये हम लोग के पक्ष में नहीं आया, साथ ही इस मैंडेट को देखते हुए मैं भी अपना पद से इस्तीफा दिया क्योंकि मेरा भी कंस्टिट्यूएंसी में उस तरह रिजल्ट नहीं हुआ। अभी गणतांत्रिक देश का गणतंत्र जिसको चाहती है वो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है।
1: तीन दिन में टीएमसी के तीन राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन इन बागियों में सयानी घोष, प्रतिमा मंडल, माला रॉय, मिताली बाग का नाम भी जोड़ लीजिए। कल टीएमसी के चार सांसद बीजेपी नेताओं से मिले, जादवपुर के सांसद सयोनी घोष, जयनगर की प्रतिमा मंडल, कोलकाता दक्षिण के मॉल रॉय और आरामबाग के सांसद मिताली बाग बागी खेमे में शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक हुई जिसमें बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। करीब एक घंटे तक चारों सांसदों और बीजेपी नेताओं की बैठक चलती रही। बागी गुट का दावा है कि 19 से 20 सांसद उनके संपर्क में हैं। टीएमसी के बागी लोकसभा में अलग गुट बनाना चाहते हैं। अभी लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। अगर ये बागी कामयाब हुए तो लोकसभा में टीएमसी नेता का पद भी इन्हें मिल जाएगा। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और इसीलिए बंगाल पुलिस 4 मई के बाद अपराधियों और आरोपियों की हवाई चप्पल और हाफ पेंट में परेड निकालते हुए नजर आई। फालता में टीएमसी नेता जहांगीर खान की भी ऐसी ही परेड पुलिस ने निकाली है।
3: फालता की जिन गलियों में कभी जहांगीर खान का खौफ पसरा रहता था, उन्हीं गलियों में शुभेंदु राज के भीतर उसे हाफ पैंट पहनाकर घुमाया गया है। खुद को पुष्पा कहने वाले जहांगीर खान की ये केवल परेड नहीं निकाली जा रही, बल्कि फालता के लोगों के दिलों से वो बचा खुचा खौफ भी बाहर किया जा रहा है, जिसका पूरा हिसाब करने का वायदा शुभेंदु अधिकारी ने किया था।
4: आप निश्चिंत थाकुन, आमी सब पे गेछी, सबका साथ सबका विकास भी होगा, सबका हिसाब भी होगा।
3: फालता की जो सड़कें जहांगीर की मौजूदगी से कहते हैं सुनसान हो जाया करती थी, फालता की उन्हीं सड़कों पर अभिषेक बनर्जी के पुष्पा की ये चुप्पी उस खौफ का अंत है जिसने लोगों को वर्षों तक वोट डालने से भी रोका।
5: क्या लगता है कि इतने दिनों से उनका डर यहाँ पे था?
6: हाँ, उसके लिए डर के लिए सब बाहर निकल नहीं सकता है कि ऐसा किया था। और अभी हम रनिंग सीएम जो है वो तो आके हम लोग का रोड शो किया है, जो सब अपना से वोट दो, कोई डर नहीं करेगा, भय आउट भर सही।
3: किसी भय को निकालने के लिए फालता की सड़क पर जहांगीर खान की परेड निकाली जाती है। चुपचाप पुलिस वाले का हाथ पकड़कर गलियों में घूमता देखता, बड़ी बात यह कि अदालत में पेशी के दौरान जहांगीर खान पैंट पहने दिखा था, लेकिन जब फालसा में उसकी परेड निकलती है तो हाफ पैंट में आ जाता है। जहांगीर खान से पहले टीएमसी के कई नेताओं और अपराधियों को बंगाल पुलिस इसी तरह घुमा